0: मुसलमानों की नई मांग, बोले मुसलमान गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करती सरकार। 28 मई को बकरीद है और अब कुर्बानी को लेकर कोहराम मचना शुरू हो गया है। जी हां, यूपी के सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त गाइडलाइंस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखें। सार्वजनिक स्थलों पर यानी खुले में कुर्बानी की अनुमति नहीं है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। नियम न मानने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। अवैध स्लॉटर हाउस और खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: बकरीद का त्योहार लोग विधिवत तरीके से मनाएं, कोई नई परंपरा शुरू न की जाए, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो सड़कों को घेर करके नमाज अदा करे और लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करे। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि कोई खुले में कुर्बानी करे। अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। और अवैध स्लॉटर हाउस पर आज पूरी तरह से निगाहें रखी गई हैं कि कहीं भी कोई अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चलता हुआ पाया गया तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा।
0: कुर्बानी को लेकर सीएम योगी का ऑर्डर आते ही हिंदू संगठनों ने भी मुसलमानों को खुले में कुर्बानी पर चेतावनी देना शुरू कर दिया है।
2: मुस्लिमों का त्योहार बकरीद क्या आया, पूरे देश में माहौल डिस्टर्ब होने लगा। भाई त्योहार मनाओ, बलि दो, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत कार्य करिए। अब देश का बहुसंख्यक भी तैयार हो गया है, अगर आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो वो भी आपका विरोध करेगा। सरकार अपना काम करेगी, हिंदू महासभा ऐलान करती है अगर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी सोसाइटी में अगर आप बलि दोगे, बलि कराओगे, तो उस बलि का जवाब हिंदू महासभा सुअर को कटवा कर देगी। बलि देनी है सही स्थान पे दीजिए, अन्यथा सुअर कटेगा तो आपकी भावनाएं भी तकलीफ दे होंगी।
0: तो कई साधु संतों ने मांग की है कि जहां ईश्वर के धाम है वहां मुसलमान सिर्फ ईद मनाएं, कुर्बानी ना करें।
3: बकरीद के मौके पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जानवरों के काटे जाते हैं, तो अयोध्या है, काशी है, नैमिषारण है, वृंदावन है, मथुरा है, द्वादश शक्तिपीठ है, जहां जहां भगवान के धाम है, जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, तो ऐसे जगह सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जानवर की बलि ना दी जाए।
0: जबकि कई जगहों पर पीस कमेटी मीटिंग बुलाई गई है। तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं, जहां पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया और समझाया कि कैसे कुर्बानी को लेकर सावधानी बरतनी है।
4: पुलिस प्रशासन की ओर से जो पब्लिक है सभी को उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो भी ये 3 दिनों तक इसमें कुर्बानी भी चल रही है तो कुर्बानी के जो अवशेष हैं उन्हें सही तरीके से बाहर रखा जाए, ताकि जब नगर निगम की गाड़ी आए तो उनको कचरे के रूप में वो उठाकर ले जाए, उनको कहीं अव्यवस्थित रूप में ना फेंका जाए, जिससे कि कोई कुत्ता वगैरह आदि वहां से उठाकर ले जाए और अव्यवस्था का माहौल बने, ऐसी स्थिति ना बनने के लिए समझाया गया है लोगों को।
0: बकरीद के मद्देनजर सीएम योगी ने गाइडलाइंस जारी की तो विपक्ष ने सीएम योगी के साथ साथ केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया। अब विपक्ष कह रहा है महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सरकार नफरत वाले मुद्दों को हाईलाइट कर रही है। क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव है, इसलिए विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी इसी तरह के मुद्दे उछालती है।
5: वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
6: मुसलमानों ने तय कर लिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, अब अपने योगी आस्था का सम्मान करेंगे,
7: चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो, 4-4 गुना दाम बढ़ गए, गंभीर चिंतन का समय है। लेकिन सरकार केवल और केवल ध्यान मदरसों पर बुलडोजर चलाओ, सड़क पर नमाज ना पढ़ो, कोई मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे हैं।
8: ये सारे मुद्दे केवल केवल अल्पसंख्यकों के जब त्यौहार आते हैं तभी इन मुद्दों को उठाया जाता है, जानबूझ के उठाया जाता है। देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान को ना भंडारे के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना किसी और आयोजन के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना नमाज पढ़ने के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है। अगर किसी को आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी को है, उनसे जुड़े हुए संगठन को है, उनसे जुड़े हुए लोगों को है।
9: कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो।
0: इससे पहले सीएम योगी सड़क पर नमाज को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं,
9: नियंत्रित कर लो। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रही है, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
10: सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया। सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
0: अब सीएम योगी ने अवैध स्लॉटर हाउस यानी अवैध बूचड़खानों के खिलाफ भी तगड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं, तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी यानी गायों की कुर्बानी को लेकर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। ऐसे में विपक्ष और मुस्लिम उलेमाओं ने मांग शुरू कर दी है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती।
11: गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ।
8: पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि चाहे वो धर्म गुरु हो या विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कि गाय को वो राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दे।
12: गाय को लेकर घमासान पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ और उसी के बाद मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि ना तो गाय की कुर्बानी होगी और ना ही सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रही है, उसे जल्द से जल्द घोषित करे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम शुभेंदु हिंदुत्व वाले हार्डकोर निर्णय ले रहे हैं, जिसमें शुभेंदु ने गोहत्या पर सख्त चेतावनी जारी की है।
0: ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भंगर की हैं। कई पशुपालक सड़कों पर उतरे हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने गाय की कुर्बानी को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। इन पशुपालकों की मांग है कि सरकार कम से कम इस साल सभी आधिकारिक दिशा निर्देशों और कानूनी नियमों का पालन करते हुए पशुओं की बिक्री की अनुमति दें, वरना कई परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
13: पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी, इतनी कि सैकड़ों गायों की गिनती करना नामुमकिन था, लेकिन आज तो 5 से 7 गायें भी नहीं बिकती। पहले बड़ी बड़ी गायें पाली जाती थीं, दूर दूर से गायें लाई जाती थीं, मुसलमान गाय लाते थे, अब सरकार ने कुर्बानी पर रोक लगा दी है। इसी वजह से डर के मारे कोई गाय लाने को तैयार नहीं है, पुलिस उन्हें पीट पीट कर ले जाती है और जो लाते भी हैं वो डरे हुए हैं।
0: लोगों की माने तो हर साल बकरीद से पहले कई किसान और पशुपालक मवेशी पालने में लाखों रुपए का निवेश करते हैं। ईद के बाजार के दौरान इन पशुओं की बिक्री उनकी वार्षिक आय का एक बड़ा हिस्सा होती है। हालांकि व्यापारियों का आरोप है कि इस साल सरकार के नए प्रतिबंधों के कारण खरीदारों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कई पशु बाजारों में खरीद बिक्री की गतिविधियां लगभग ठहर सी गई हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हिंदुत्व की पिच पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फैसले लेने शुरू किए और गाय को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने रेड लाइन खींच दी। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। इसके बाद बंगाल की मशहूर दरगाह, जी हाँ, फुरफुरा शरीफ दरगाह के चीफ ऐलान करते हैं कि इस साल बकरीद पर कोई भी गाय की कुर्बानी न दे।
14: मुस्लिम भाई दर का जो अनुरोध करूँ, अपनारा गोरु किनबेन ना, गोरु अपनारा किने कुर्बानी देबेन ना, आमरा देबो ना। এতে শুধু আমাদের অসুবিধা হয় না অন্য কারো অসুবিধা হয় সেটা দেখার বিষয় আছে। এতে যদি আমরা কুরবানি গরু দিয়া বন্ধ করি তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হব বলে মনে করি।
0: और अब उसका असर पशु बाजारों पर दिख रहा है। मुसलमान गाय खरीदने से बच रहे हैं और पशुपालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अपने स्टैंड पर कायम है।
15: कुर्बानी होच्छे नियम मेने होच्छे एवं सब कुछ शांतिपूर्ण भावे होबे, ठीक नियम मेने होबे, ओपनली होबे ना, कोनो भावे चतुर्दिके ड्रेने रक्त छड़ाबे ना।
16: कुर्बानी तो होगा, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रहा है, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
0: सिर्फ यूपी और बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में भी गाय की कुर्बानी को लेकर सख्त नियम और निर्देश लागू हैं। फडणवीस सरकार ने बकरीद के मद्देनजर सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है और ये भी कहा है कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
17: मको का ही लगना चाहिए और मकों का कार्रवाई होनी चाहिए। रास्ते पे गौ काटना, रास्ते पे कटाई करना, ये कुछ नहीं चलेगा और निश्चित रूप से इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। और किसी को अधिकार नहीं गोवंश हत्या बंदी कायदे का उल्लंघन करने का, किसी को अधिकार नहीं है। किसी ने काटा तो उसको नहीं छोड़ेंगे।
18: इस्लाम का भी जो कायदा है, कानून है, कंसेप्ट है कि जिस देश में, जिस कस्बे में, जिस स्टेट में, जिस जगह आप रहते हैं वहां के कायदे को आपको मानना है। और महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में गौवंश हत्या पे बंदी है, तो ये सभी मुस्लिम समाज के लोगों को ये मानने की जरूरत है।
0: बकरीद पर जहां कुर्बानी के पशुओं की बंडियां सजी हैं, लाखों की कीमत वाले बकरे बिक रहे हैं, लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं, ऐसे में कुर्बानी को लेकर आई सरकारों की गाइडलाइंस पर तगड़ा कोहराम मचा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
12: खबर महंगाई की, जिससे आम जनता बेहाल होती जा रही है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई, अब पेट्रोल पूरे देश में 100 के पार पहुंच चुका है।
0: पेट्रोल पंप की कतार में लगे हर आम आदमी के दिमाग में बस यही सवाल है कि आखिर तेल की कीमतों में लगी आग उसकी जेब को और कितना जलाएगी। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए लीटर हो गया है।
19: आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या एक एक 2-2 रुपए करके इकट्ठा पैसा करते, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
20: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
21: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कर रही है पता नहीं, सुबह पैसे लेके निकलो शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए।
0: सिर्फ 10 दिनों के अंदर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है।
22: चैलेंजेस आर मोर एक्सटर्नल ड्रिवन, वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन remains positive and resilient even today.
0: लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं। वही मामले पर सियासत तेज है।
23: 65 से 70 दिन युद्ध चलता है, लेकिन भारत में तेल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा नहीं होता है।
1: और अब जब जनता पे इतना भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है।
2: खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है, उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है।
0: भले ही खाड़ी में तनाव का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन ये देश की आम जनता का तनाव जरूर बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो।
12: उधर बिहार में अब गमछा पॉलिटिक्स तेज हो गई। सम्राट चौधरी ने आरजेडी के गमछे के रंग पर कटाक्ष किया तो आरजेडी अब सम्राट को घेर रही है।
0: बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जिस गमछे को जीत का प्रतीक बनाया था, आज इसी गमछे के रंग पर बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम सम्राट चौधरी हरे गमछे को एआई से पकड़ने की बात कह रहे हैं।
3: पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा।
0: बात हरे गमछे की हुई तो मामला सीधे आरजेडी तक पहुंच गया। तेजस्वी तिलमिलाए और बिहार सरकार पर सवाल उठाने लगे।
4: इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार के सोच की बात कर रहे हैं। दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है।
0: उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। बिहार के मुख्यमंत्री को एआई ने बताया है, गुंडों के यहाँ छापेमारी करने गई पुलिस को पहले करवानी होगी अपनी तलाशी। सम्राट की पुलिस को आदेश है सिर्फ हरे गमछे वालों को निशाना बनाना है, बाकियों के सामने वर्दी पहनकर लाइन में लगकर अपनी तलाशी देनी है और फिर रेड मारने की गुस्ताखी करने के इनाम स्वरूप सस्पेंड हो जाना है। कभी टोपी तो कभी गमछा, सियासत का यही रंग अब बिहार में चढ़ता नजर आ रहा है। शशि भूषण, पटना, आज तक।
12: नीट पेपर लीक की खबर जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने एनटीए की भूमिका पर सवाल उठा दिए, सरकार एनटीए से जवाब मांगा।
0: नीट पेपर लीक पर जहां सड़कों पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा तो वहीं सवालों के घेरे में परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया। पेपर लीक को लेकर कोर्ट ने एनटीए को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक होना दुख की बात है। वहीं कोर्ट ने एनटीए से ये भी पूछा कि आखिर पिछली गलतियों से उसने क्या सीखा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
24: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए।
0: उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक की एक और आरोपी मनीषा हवलदार को पेश किया गया जहां मनीषा को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। सीबीआई ने मनीषा को पुणे से गिरफ्तार किया था। मनीषा पर फिजिक्स का पेपर लीक कराने का आरोप है। सीबीआई पूछताछ करेगी कि मनीषा के संपर्क में कितने लोग थे। आज तक ब्यूरो।
12: उराई, अब हम आपको उस विवाद की बात बताते हैं जिसने वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ जनता में रोष भर दिया। दिल्ली के जिमखाना क्लब की जमीन को खाली करने का आदेश सरकार ने दिया। ये मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है जिस पर आज सुनवाई होगी। सवाल यह भी है कि कभी अंग्रेजों की मौज मस्ती का अड्डा रहे जिमखाना को बंद करने का मुट्ठी भर लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इन लोगों को गरीबों की चिंता क्यों नहीं है?
25: दिल्ली का ये वही जिमखाना क्लब है जो भारतीय नौकरशाहों, अफसरों और शहर के तमाम वीवीआईपी लोगों के लिए सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल रहा। सफदरजंग रोड के पास हरे भरे लॉन और पुरानी शैली की वास्तुकला के बीच छिपा ये क्लब लंबे समय से देश की राजधानी में रसूख और अपनी खास पहुंच का प्रतीक बनकर विजिटिंग कार्ड की तरह प्रदर्शित किया जाता रहा। लेकिन अब 113 साल बाद केंद्र सरकार की बेदखली के आदेश के बाद ये जिमखाना क्लब एक बार फिर सुर्खियों में, खासकर इसके समर्थन में उठ रही आवाजों और उनकी दलीलों की वजह से।
26: जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में, सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें और वो एक बड़ा जबरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सीनियर सिटीजन भी वहीं उन्हीं का घर भी है। सो मैं उस एंगल से कर रहा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स सेंटर भी है और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं।
25: दिल्ली के जिमखाना क्लब में आम आदमी के लिए सदस्यता हासिल करना नामुमकिन है, जिसकी सदस्यता किसी विरासत से कम नहीं। फिर भी इसे लेकर मोह ऐसा कि आम आदमी पार्टी तक वीवीआईपी कल्चर के प्रतीक जिमखाना क्लब पर सरकार की कार्रवाई के विरोध में उतर आती है।
5: ये बताती है कि इनका ध्यान सिर्फ जमीनों को कब्जा करने में और अपनी सुरक्षा के नाम पे और अपने मित्रों को देने में, उस बड़ी बड़ी जमीन को, उस महंगी जमीन को उपलब्ध कराने में इनकी सारी रुचि है।
25: नई दिल्ली का दिल्ली जिमखाना क्लब लुटियंस दिल्ली के बीचों बीच में है। आजादी के ठीक बाद क्लब का प्रबंधन अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में आया, तब से इस सत्ता का सबसे बड़ा गलियारा बनकर रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 27.3 एकड़ की जमीन पर फैले इसी जिमखाना क्लब को खाली करने का आदेश दिया। सरकार का कहना है कि ये जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ढांचे से जुड़े अहम कामों के लिए चाहिए, लेकिन जिमखाना क्लब को लेकर मोह ऐसा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाता है। इस कानूनी लड़ाई के बीच क्लब के सदस्यों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से सदस्यों और कर्मचारियों के बीच दहशत और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया।
6: Any faith and trust in the committee that is constituted at present, which is run, which is managed by the government itself, because those people who are members of the committee are all government appointees, and obviously they cannot go against the government. Should they go against the government, they will be obviously changed or removed. Under the circumstances, the club has decided that we got to take up the case ourselves.
25: Gymkhana Club के सदस्य कहते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें इस फैसले की कोई पहले से सूचना नहीं दी गई। वहीं जहां तक बात सुरक्षा की है तो पिछले 34 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास के बगल में मौजूद होने पर भी जिमखाना क्लब की तरफ से सुरक्षा में चूक या उल्लंघन की कोई भी घटना सामने ना आने का दावा किया जाता है। 1928 में सरकार ने जिमखाना की 27 एकड़ से ज्यादा की जमीन ₹1,000 सालाना पर दे दी थी। 1947 में अंग्रेज तो यहां से चले गए, लेकिन क्लब के अंदर कुछ नहीं बदला। जमीन वही रही, किराया वही रहा, बस अंदर बैठने वाले बदलते गए। गोरे साहब की जगह देसी रसूखदारों ने ले ली, जिनमें आम आदमी कभी अंदर झांक ही नहीं पाए। सबसे बड़ी बात, ये क्लब कभी खेल का मैदान ही नहीं था। साल 2014-15 से 2018-19 के बीच क्लब में कुल खर्च का खेल पर केवल 2.77% ही खर्च किया गया। बाकी पैसा कैटरिंग, वाइन, शराब, सिगरेट और दूसरे खर्चों में जाता रहा। तो जिमखाना की जमीन मांगी गई खेल के नाम पर, लेकिन यहाँ खेल पर कुछ खर्च ही नहीं होता था। क्लब की सदस्यता भी उन्हें ही मिलती जिनके अपने पहले से इस क्लब के सदस्य थे। ये भी दावा है कि जिमखाना की सदस्यता की आस में हजारों लोगों से ₹44 करोड़ से ज्यादा ले लिए गए, जो पैसा वापस ही नहीं किया गया क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल था। लेकिन अगर सरकार अपने मकसद में अब कामयाब रही तो खेल के नाम पर वीवीआईपी कल्चर की निशानी बनकर खड़े जिमखाना क्लब को आजादी मिलेगी।
12: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पंजाब में इस समय खलबली मची हुई है, जहां पंजाब के मशहूर गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ और लुधियाना की मेयर के घर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई, मगर लुधियाना नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। मेयर का ऑफिस खाली करा लिया गया, दिलजीत दोसांझ की सुरक्षा बढ़ा दी गई।
7: दिलजीत दोसांझ, पंजाब का वो नाम, वो चेहरा जिसकी पहचान अब वैश्विक हो चुकी है। आपको बता दें कि दिलजीत दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी कलाकार हैं। इसके अलावा वो प्रसिद्ध अमेरिकी टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में भी अपने गानों की प्रस्तुति दे चुके हैं। और आज पंजाब में दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिलजीत के साथ साथ लुधियाना की मेयर के ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें लिखा है कि लुधियाना की मेयर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के ठिकानों पर जोरदार धमाके किए जाएंगे। इस धमकी से पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया है। धमकी का ये ईमेल सोमवार सुबह नगर निगम कमिश्नर और दूसरे सरकारी आईडी पर भेजा गया। इस ईमेल में जो लिखा गया वो आपको बताते हैं। सुबह करीब 7:28 पर आई ईमेल का सब्जेक्ट
0: बॉम्ब ब्लास्ट मेयर ऑफिस लुधियाना रखा गया है। ईमेल में धमाकों का समय भी निर्धारित किया गया है, दोपहर 1:11 पर लुधियाना मेयर पर हमले की धमकी दी गई। इसके साथ ही रात 9:11 पर दिलजीत दोसांझ के घर पर धमाके की चेतावनी दी गई। ईमेल में 1984 के सिख दंगों का हवाला देते हुए खून का बदला खून से लेने की बात लिखी गई है। धमकी देने वाले ने लिखा है कि 6 जून तक बम धमाकों के जरिए इन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईमेल के अंत में इसे खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजा बताया गया है। इनमें दो

0: पुलिस महकमा और साइबर सेल अलर्ट हैं। ईमेल के आईपी एड्रेस और सेंडर को ट्रेस करने की त्वरित जांच शुरू कर दी गई है। धमकी के बाद एहतियात के तौर पर लुधियाना नगर निगम के दफ्तर को तुरंत खाली करा लिया गया है और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है।
1: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का गांव लुधियाना के दोसांझ कला के अंदर है और नगर निगम लुधियाना दोनों को गांव दिलजीत के और नगर निगम लुधियाना में बम धमाके 6 जून तक किए जाएंगे। समय भी मेंशन किया गया और खालिस्तान नेशनल आर्मी की ओर से इस मैसेज को, इस ईमेल को रेफर किया गया है।
0: प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और पूरी सतर्कता के साथ चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार ने दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे, इस मौके पर देश भर में सरकार का बड़ा अभियान। लोगों के बीच पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री, सांसद और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपलब्धियों की जानकारी देंगे। दिल्ली में आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का समिट, पश्चिमी एशिया के ताजा हालात के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र पर होगा फोकस। सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर बीकानेर में गृहमंत्री अमित शाह आज बॉर्डर इलाके में बीएसएफ चौकी का करेंगे दौरा। 5 जून को त्रिपुरा, 15 जून को बंगाल जाने का प्लान। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र गंभीर, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर सुरक्षित परीक्षा कराने में सहयोग की अपील की। त्रिशा मौत मामले में सीबीआई की जांच तेज हुई, एफआईआर के बाद जांच टीम भोपाल पहुंची, आरोपी समर्थ को घर ले जाकर पुलिस ने तफ्तीश की।

0: आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे और वो बड़ी खबर पश्चिम एशिया से। अमेरिका और ईरान के बीच जारी उस तनाव की समझौते पर जारी बातचीत के बीच अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ईरान के दक्षिणी हिस्से में मिसाइल साइट पर हमला किया है। खबरों के मुताबिक माइंस बिछाने की कोशिश कर रही ईरान की IRGC की जो बोट है उसको अमेरिकी सेना ने टारगेट किया है। सेंट्रल कमांड ने इसे प्रिवेंटिव स्ट्राइक कहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ये जानकारी दी है और ये बताया है कि दक्षिणी ईरान में उसने मिसाइल दागे हैं। इसी के साथ साथ ही उसके मिसाइल लॉन्चर सिस्टम को नेस्तोनाबूद किया है। 2 ऐसी नाव जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य में माइंस बिछाने की नेवल माइन बिछाने की कोशिश कर रही थी उन नावों को निशाना बनाया है और इसी के साथ साथ एक सरफेस टू एयर मिसाइल सैम लॉन्चर सिस्टम जो कि बंदर अब्बास पोर्ट के पास तैनात था अमेरिकी सेना ने उसको भी नस्तोनाबूद करते ये भी कहा है कि ये सीज फायर का वायोलेशन नहीं है बल्कि प्रिवेंटिव स्ट्राइक है। तो अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की उम्मीद एक बार टूट गई है। ईरान अमेरिकी शर्तों के आगे झुकने को तैयार ही नहीं है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत पटरी पर है। इस बीच इन्होंने खाड़ी देशों से अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की अपील की है जिसमें मध्यस्थ बने पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
1: ईरान से अपनी शर्तें मनवाने में अमेरिका लगातार नाकाम हो रहा है।

0: समझौते पर दस्तखत या ईरान का खात्मा वाला बयान देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि समझौते को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं है। अब ट्रंप ने मुस्लिम देशों से इसराइल के साथ रिश्ते बेहतर करने को कहा है। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की और इसके बाद ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने ईरान संकट को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए अब जरूरी है कि ये सभी देश अब्राहम समझौते में शामिल हों। यूएई और बहरीन पहले से अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा हैं। कुछ देशों के पास शामिल न होने की एक दो वजहें हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर देशों को इस समझौते के लिए तैयार होना चाहिए। ट्रंप के इस ऐलान से पाकिस्तान जैसे देशों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है। इधर ईरान और अमेरिका के बीच जिन मुद्दों पर बातचीत अटकी हुई है उनमें परमाणु प्रोग्राम बड़ा मुद्दा है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरान की न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के शीर्ष कमांडर ने दावा किया है कि ईरान अब युद्ध शुरू होने के वक्त से ज्यादा मजबूत है। ईरान के प्रभावशाली नेता इब्राहिम रजाई ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेहद तल्ख लहजे में सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सैन्य युद्ध के दौरान ईरान की रणनीति आंख के बदले आंख की थी और अब इस राजनयिक युद्ध में उनकी नीति एक्शन के बदले एक्शन की होगी। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ रहा है और बीच का रास्ता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: अलग अलग वैश्विक मंचों पर पश्चिम एशिया के हालात को लेकर चर्चा हो रही है, तो भारत में आज क्वाड विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी होगी। ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हाल ही में चीन यात्रा के तुरंत बाद हो रही है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा का भी आज चौथा दिन है। क्वाड बैठक के बाद वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में क्वाड को लेकर के कोई दिलचस्पी शुरुआत में नहीं दिखाई थी, जिसके चलते पिछले साल क्वाड शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया। इस बैठक से क्वाड समूह के निष्क्रिय होने की तमाम अटकलों पर भी विराम लगेगा, क्योंकि ये चारों क्वाड के देश इसमें शामिल होंगे, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ऐसे में हिंद प्रशांत सुरक्षा समुद्री सहयोग बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो प्रशांत क्षेत्र में देश हैं और एशिया में भारत, इन सब का मिलना एक साथ इस पूरे इलाके में ऊर्जा संकट को लेकर के भी उससे कैसे पार आया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और उसी के साथ साथ हॉर्मुज में यानी पश्चिम एशिया का जो तनाव है वो भी क्वाड शिखर सम्मेलन का एक बड़ा एजेंडा हो सकता है। महत्वपूर्ण खनिजों में कैसे उसे सहयोग मिल सकता, खासकर प्रशांत के जो देश हैं वहां से भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती कैसे सुनिश्चित करेगा, भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ साइबर सुरक्षा, फिर वो चाहे इन चारों देशों में हैं, उनके सामने भी चुनौती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता इस्तेमाल और उसका दूसरा प्रभाव जो है वो ह्यूमन, उस पर कैसे पड़ेगा, उस पर भी चर्चा होगी। हिंद प्रशांत सुरक्षा समुद्री सहयोग सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा होगा। और आखिरकार क्वाड शिखर सम्मेलन जिसकी मेजबानी भारत करेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, खुले में कुर्बानी, सड़क पर ईद की नमाज हुई तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जबकि बंगाल और महाराष्ट्र में भी खुले में कुर्बानी और गाय की कुर्बानी को लेकर सरकारें सख्त निर्देश जारी कर चुकी है। बकरीद में सिर्फ दो दिन बाकी है, मुसलमानों के सामने कुर्बानी की सरकारी गाइडलाइंस मौजूद है और अब चुनौतियां भी हैं कि अगर इन गाइडलाइंस को तोड़ा गया तो एक्शन होगा। आइए देखते हैं कुर्बानी पर कैसे कोहराम मचा है।
2: बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी पर मचा कोहराम, सीएम योगी का ऑर्डर आ गया, खुले में कुर्बानी बर्दाश्त नहीं। न सड़क पर नमाज, न खुले में कुर्बानी, गाइडलाइंस आ गई।
3: अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा।
2: गाय की कुर्बानी पर सख्त चेतावनी तो मुसलमानों की नई मांग, बोले मुसलमान, गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करती सरकार। 28 मई को बकरीद है और अब कुर्बानी को लेकर कोहराम मचना शुरू हो गया है। जी हां, यूपी के सीएम योगी ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त गाइडलाइंस जारी करते हुए स्पष्ट किया है, कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखें। सार्वजनिक स्थलों पर यानी खुले में कुर्बानी की अनुमति नहीं है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। नियम न मानने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। अवैध स्लॉटर हाउस और खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
4: बकरीद का त्योहार लोग विधिवत तरीके से मनाएं, कोई नई परंपरा शुरू न की जाए, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो सड़कों को घेर करके नमाज अदा करे और लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करे। किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि कोई खुले में कुर्बानी करे। अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। और अवैध स्लॉटर हाउस पर आज पूरी तरह से निगाहें रखी गई हैं कि कहीं भी कोई अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस चलता हुआ पाया गया तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा।
2: कुर्बानी को लेकर सीएम योगी का ऑर्डर आते ही हिंदू संगठनों ने भी मुसलमानों को खुले में कुर्बानी पर चेतावनी देना शुरू कर दिया है।
5: मुस्लिमों का त्योहार बकरीद क्या आया, पूरे देश में माहौल डिस्टर्ब होने लगा। भाई त्योहार मनाओ, बलि दो, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत कार्य करिए। अब देश का बहुसंख्यक भी तैयार हो गया है। अगर आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो वो भी आपका विरोध करेगा। सरकार अपना काम करेगी, हिंदू महासभा ऐलान करती है अगर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी सोसाइटी में अगर आप बलि दोगे, बलि कराओगे, तो उस बलि का जवाब हिंदू महासभा सुअर को कटवा कर देगी। बलि देनी है सही स्थान पे दीजिए, अन्यथा सुअर कटेगा तो आपकी भावनाएं भी तकलीफ दे होगी।
2: तो कई साधु संतों ने मांग की है कि जहां ईश्वर के धाम है वहां मुसलमान सिर्फ ईद मनाएं, कुर्बानी ना करें।
6: बकरीद के मौके पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जानवरों के काटे जाते हैं, तो अयोध्या है, काशी है, नैमिषारण्य है, वृंदावन है, मथुरा है, द्वादश शक्तिपीठ है, जहां जहां भगवान के धाम है, जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, तो ऐसे जगह सबसे बड़ी बात है कि किसी भी जानवर की बलि ना दी जाए।
2: जबकि कई जगहों पर पीस कमेटी मीटिंग बुलाई गई है। तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं, जहां पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया और समझाया कि कैसे कुर्बानी को लेकर सावधानी बरतनी है।
7: पुलिस प्रशासन की ओर से जो पब्लिक है सभी को उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो भी ये 3 दिनों तक इसमें कुर्बानी भी चलनी है तो कुर्बानी के जो अवशेष हैं उन्हें सही तरीके से बाहर रखा जाए, ताकि जब नगर निगम की गाड़ी आए तो उनको कचरे के रूप में वो उठाकर ले जाए, उनको कहीं अव्यवस्थित रूप में ना फेंका जाए, जिससे कि कोई कुत्ता वगैरह आदि वहां से उठाकर ले जाए और अव्यवस्था का माहौल बने, ऐसी स्थिति ना बनने के लिए समझाया गया है लोगों को।
2: बकरीद के मद्देनजर सीएम योगी ने गाइडलाइंस जारी की तो विपक्ष ने सीएम योगी के साथ साथ केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया। अब विपक्ष कह रहा है महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सरकार नफरत वाले मुद्दों को हाईलाइट कर रही है। क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव है, इसलिए विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी इसी तरह के मुद्दे उछालती है।
8: वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
9: मुसलमानों ने तय कर लिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, अब अपने भाइयों की आस्था का सम्मान करेंगे, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो, चार चार गुना दाम बढ़ गए, गंभीर चिंतन का समय है। लेकिन सरकार केवल और केवल ध्यान मदरसों पर बुलडोजर चलाओ, सड़क पर नमाज ना पढ़ो, कोई मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगा करके इन गंभीर विषय से ध्यान हटा रहे हैं।
10: ये सारे मुद्दे केवल केवल अल्पसंख्यकों के जब त्यौहार आते हैं तभी इन मुद्दों को उठाया जाता है, जानबूझ के उठाया जाता है। देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान को ना भंडारे के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना किसी और आयोजन के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है, ना नमाज पढ़ने के लिए सड़क रोके जाने पे कोई आपत्ति है। अगर किसी को आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी को है, उनसे जुड़े हुए संगठन को है, उनसे जुड़े हुए लोगों को है।
11: ऐसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है, हमने कहा शिफ्ट में कर लो।
2: इससे पहले सीएम योगी सड़क पर नमाज को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं।
11: नियंत्रित कर लो, नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रही है, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
12: सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया। सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर।
2: अब सीएम योगी ने अवैध स्लॉटर हाउस यानी अवैध बूचड़खानों के खिलाफ भी तगड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं, तो प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी यानी गायों की कुर्बानी को लेकर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। ऐसे में विपक्ष और मुस्लिम उलेमाओं ने मांग शुरू कर दी है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती।
13: गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को। किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ।
10: पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि चाहे वो धर्म गुरु हो या विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कि गाय को वो राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दे।
1: गाय को लेकर घमासान पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ, उसी के बाद मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया कि न तो गाय की कुर्बानी होगी सर, लेकिन सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम शुभेंदु हिंदुत्व वाले हार्डकोर फैसले ले रहे हैं, जिसमें शुभेंदु ने गो हत्या पर सख्त चेतावनी जारी की है।
2: ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भंगर की हैं। कई पशुपालक सड़कों पर उतरे हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने गाय की कुर्बानी को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। इन पशुपालकों की मांग है कि सरकार कम से कम इस साल सभी आधिकारिक दिशा निर्देशों और कानूनी नियमों का पालन करते हुए पशुओं की बिक्री की अनुमति दें, वरना कई परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
14: पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी, इतनी कि सैकड़ों गायों की गिनती करना नामुमकिन था, लेकिन आज तो 5 से 7 गायें भी नहीं बिकती। पहले बड़ी बड़ी गायें पाली जाती थीं, दूर दूर से गायें लाई जाती थीं, मुसलमान गाय लाते थे, अब सरकार ने कुर्बानी पर रोक लगा दी। इसी वजह से डर के मारे कोई गाय लाने को तैयार नहीं है, पुलिस उन्हें पीट पीट कर ले जाती है और जो लाते भी हैं वो डरे हुए हैं।
2: लोगों की माने तो हर साल बकरीद से पहले कई किसान और पशुपालक मवेशी पालने में लाखों रुपए का निवेश करते हैं। ईद के बाजार के दौरान इन पशुओं की बिक्री उनकी वार्षिक आय का एक बड़ा हिस्सा होती है। हालांकि व्यापारियों का आरोप है कि इस साल सरकार के नए प्रतिबंधों के कारण खरीदारों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कई पशु बाजारों में खरीद बिक्री की गतिविधियां लगभग ठहर सी गई हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हिंदुत्व की पिच पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फैसले लेने शुरू किए और गाय को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने रेड लाइन खींच दी। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। इसके बाद बंगाल की मशहूर दरगाह, जी हाँ, फुरफुरा शरीफ दरगाह के चीफ ऐलान करते हैं कि इस साल बकरीद पर कोई भी गाय की कुर्बानी ना दे।
15: मुस्लिम भाइयों का जो अनुरोध करूंगा, अपनारा गोरु किनबेन ना, गोरु अपनारा किने कुर्बानी देबेन ना, आमरा दोबो ना। एते शुद्ध आमादेर असुविधा हय ना अन्य कारो असुविधा हय सेटा देखार विषय आछे। एते जदि आमरा कुर्बानी गोरु दिया बंद करी তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা স্বাবলম্বী হব বলে মনে করি।
2: और अब उसका असर पशु बाजारों पर दिख रहा है। मुसलमान गाय खरीदने से बच रहे हैं और पशुपालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अपने स्टैंड पर कायम है।
16: कुर्बानी होच्छे, नियम में नहीं होच्छे, এবং সবকিছু শান্তিপূর্ণ ভাবে হবে, ঠিক নিয়ম মেনে হবে, ওপেনলি হবে না, কোনোভাবে চতুর্দিকে ড্রেনে রক্ত ছড়াবে না।
17: কুরবানি তো হোগাই, কুরবানি কই মানা করেগা ও ভি নেই শুনেগা, ও কুরবানি সত্তা মে আয়ে শুভেন্দু ঠিক হ্যায় লোক কো উনকো পাস ভোট ডালা ও সরকার চালায়েগি, লেকিন মেরা 1400 সাল সে পহলে সে এক কুরবানি হোকে আ রাই, আগলে দিন জিতনা দিন দুনিয়া রহেগি এক কুরবানি হোগি, গাই কি ভি কুরবানি হোগি, বকরি ভি কুরবানি হোগি, উট ভি হোগি, দুম্বা ভি হোগি, সারে পশু যো হ্যায় ও কুরবানি কা জায়েজ হ্যায়, ও কুরবানি হোগি, কোই রুক সকতা নেই।
2: সিফ ইউপি আর বঙ্গাল হি নহি, মহারাষ্ট্র মে ভি গায় কি কুরবানি কো লেকার সখ নিয়ম আর নির্দেশ লাগু হ্যায়। ফডনবীস সরকার নে বকরিদ কে মদ্দেনজর সড়ক পর নমাজ আর খুলে মে কুরবানি কো লেকার সখ চেতাবনি জারি কি হ্যায় আর ইয়ে ভি কাহা হ্যায় কি আগর কোই নিয়মো কা পালন নহি করতা হ্যায় তো উসে বখশা নহি জায়েগা।
18: মকো কা হি লগনা চাহিয়ে আর মকো কা কারওয়াই হোনি চাহিয়ে, রাস্তে পে গউ কাটনা, রাস্তে পে কটাই করনা, ये कुछ नहीं चलेगा और निश्चित रूप से इस पे कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को अधिकार नहीं गोवंश हत्या बंदी कायदे का उल्लंघन करने का, किसी को अधिकार नहीं है, किसी ने काटा तो उसको नहीं छोड़ेंगे।
19: इस्लाम का भी जो कायदा है, कानून है, कंसेप्ट है कि जिस देश में, जिस कस्बे में, जिस स्टेट में, जिस जगह आप रहते हैं वहां के कायदे को आपको मानना है, और महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में गौवंश हत्या पे बंदी है, तो ये सभी मुस्लिम समाज के लोगों को ये मानने की जरूरत है।
2: बकरीद पर जहां कुर्बानी के पशुओं की मंडियां सजी हैं, लाखों की कीमत वाले बकरे बिक रहे हैं, लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं, ऐसे में कुर्बानी को लेकर आई सरकारों की गाइडलाइंस पर तगड़ा कोहराम मचा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
1: कुर्बानी की सियासत के बाद अब वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे हमसे है, बात महंगाई की, जिसे आम जनता बेहाल होती जा रही। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, पेट्रोल पूरे देश में 100 रुपए के पार पहुंच चुका है।
2: पेट्रोल पंप की कतार में लगे हर आम आदमी के दिमाग में बस यही सवाल है कि आखिर तेल की कीमतों में लगी आग उसकी जेब को और कितना जलाएगी। महंगे कच्चे तेल में झुलसते तेल कंपनियों के मुनाफे को बचाने के लिए एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए और डीजल के दाम 2.71 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब राजधानी में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए में मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपए, डीजल 97.83 रुपए का हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपए और डीजल 99.82 रुपए का मिल रहा है, तो चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और डीजल 99.55 रुपए लीटर हो गया है।
20: आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या 1-1, 2-2 रुपए करके इकट्ठा पैसा करते, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
21: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
22: परेशानी तो इतनी हो रही है कि कुछ कह रही है पता नहीं, सुबह पैसे लेके निकलो शाम को 1 घंटे बाद मालूम पड़ा पैसे बढ़ गए।
2: सिर्फ 10 दिनों के अंदर पेट्रोल 7.38 रुपए और डीजल 7.53 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है।
23: चैलेंजेस आर मोर एक्सटर्नल ड्रिवन, वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन remains positive and resilient even today.
2: लेकिन आवाम को भरोसा नहीं कि ये बढ़े हुए दाम ईरान की जंग खत्म होने के बाद भी कम होंगे या नहीं। वही मामले पर सियासत तेज है।
24: 65 से 70 दिन युद्ध चलता है, लेकिन भारत में तेल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा नहीं होता है।
25: और अब जब जनता पे तब भार पड़ रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, शॉर्टेज चल रही है, तब जनता पे और ये भार डाला गया है।
26: खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है, उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है।
2: भले ही खाड़ी में तनाव का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन ये देश की आम जनता का तनाव जरूर बढ़ा रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: चलो आपको बिहार लिए चलते हैं, वहां गमछा पॉलिटिक्स तेज हो गई है। सम्राट चौधरी ने आरजेडी के गमछे के रंग पर तंज कसा तो आरजेडी अब सम्राट चौधरी को घेर रही है।
2: बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जिस गमछे को जीत का प्रतीक बनाया था, आज इसी गमछे के रंग पर बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम सम्राट चौधरी हरे गमछे को एआई से पकड़ने की बात कह रहे हैं।
0: पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा।
2: बात हरे गमछे की हुई तो मामला सीधे आरजेडी तक पहुंच गया। तेजस्वी तिलमिलाए और बिहार सरकार पर सवाल उठाने लगे।
3: इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं। दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है।
2: उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। बिहार के मुख्यमंत्री को एआई ने बताया है, गुंडों के यहाँ छापेमारी करने गई पुलिस को पहले करवानी होगी अपनी तलाशी। सम्राट की पुलिस को आदेश है सिर्फ हरे गमछे वालों को निशाना बनाना है, बाकियों के सामने वर्दी पहनकर लाइन में लगकर अपनी तलाशी देनी है और फिर रेड मारने की गुस्ताखी करने के इनाम स्वरूप सस्पेंड हो जाना है। कभी टोपी तो कभी गमछा, सियासत का यही रंग अब बिहार में चढ़ता नजर आ रहा है। शशि भूषण, पटना आज तक।
1: और अब बात नी पेपर लीक की, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट ने एनटीए की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार और एनटीए से अदालत ने जवाब मांगा है।
2: नीट पेपर लीक पर जहां सड़कों पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं सवालों के घेरे में परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया। पेपर लीक को लेकर कोर्ट ने एनटीए को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक होना दुख की बात है। वहीं कोर्ट ने एनटीए से ये भी पूछा कि आखिर पिछली गलतियों से उसने क्या सीखा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
4: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए।
2: उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक की एक और आरोपी मनीषा हवलदार को पेश किया गया, जहां मनीषा को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। सीबीआई ने मनीषा को पुणे से गिरफ्तार किया था। मनीषा पर फिजिक्स का पेपर लीक कराने का आरोप है। सीबीआई पूछताछ करेगी कि मनीषा के संपर्क में कितने लोग थे। आज तक ब्यूरो।
1: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
5: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना, टंकी मतलब वेक्टर्स।
6: गाइडेड बाय अ शेयर्ड पर्पस एंड अ स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन, एमरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पुश ईच अदर टू थिंक क्रिएटिवली एंड वर्क कोऑपरेटिवली, knowing that different perspectives lead to new ideas.
7: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
6: Learn more at emory.edu.
8: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
27: कौन से ग्रह आपको लगातार स्वस्थ बनाए रखते हैं? किन कारणों की वजह से लगातार व्यक्ति बीमार रहता है? क्या है व्यक्ति के हमेशा बीमार रहने का कारण और क्या है इसके सरल निवारण? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।

केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे, इस मौके पर देश भर में सरकार का बड़ा अभियान। लोगों के बीच पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री, सांसद और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपलब्धियों की जानकारी देंगे। दिल्ली में आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का समिट, पश्चिम एशिया के ताजा हालात के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र पर होगा फोकस। सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर बीकानेर में गृहमंत्री अमित शाह, आज बॉर्डर इलाके में बीएसएफ चौकी का करेंगे दौरा, 5 जून को त्रिपुरा, 15 जून को बंगाल जाने का प्लान। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र गंभीर, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर सुरक्षित परीक्षा कराने में सहयोग की अपील की। प्रिशा मौत मामले में सीबीआई की जांच तेज हुई, एफआईआर के बाद जांच टीम भोपाल पहुंची, आरोपी समर्थ को घर ले जाकर पुलिस ने तफ्तीश की।

बड़ी खबर, तुषा केस में सीबीआई ने तुषा केस में औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर ली है। भोपाल के कटरा हिल्स थाने में पहले इस मामले को रजिस्टर कर लिया गया है। इसके साथ ही सीबीआई ने पूरे केस को भोपाल पुलिस से टेक ओवर कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम पहले ही भोपाल पहुंच चुकी है और आज से औपचारिक रूप से इसकी जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस केस के सीबीआई के हाथ में जाने के बाद जांच से जुड़े सभी पहलुओं पर नए सिरे से पड़ताल होने की उम्मीद है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लिया था। यह भी कहा था इस मामले में सेंसेशन ना फैलाया जाए, मामले में जांच होगी और जांच जो कि सीबीआई को दी जा चुकी है। सीबीआई ने औपचारिक एफआईआर दर्ज कर ली है, भोपाल पुलिस से केस को टेक ओवर कर लिया है और जांच दल सीबीआई का वो भोपाल पहुंच चुका है। तो तुषा केस सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है भोपाल पुलिस से। अब सीबीआई इस मामले से सारे दस्तावेज ले लेगी, उसके बाद तमाम दस्तावेजों के हैंडओवर के बाद जांच शुरू होगी। इस बीच पुलिस तुषा के पति समर सिंह को लेकर के उसके घर पहुंची और उस सीन को रिक्रिएट किया गया।

0: ट्रिशा केस में अब एक्शन तेज हो गया है। सोमवार देर रात पुलिस की एक टीम ट्रिशा के पति समर सिंह को लेकर घर पहुंची। करीब दो घंटे तक वकीलों की मौजूदगी में घर में पूछताछ हुई। पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर हादसे वाले दिन वहां क्या हुआ था। घर से निकलते वक्त समर्थ पूरी तरह से खामोश था। आज तक के सवालों पर समर्थ ने कोई जवाब नहीं दिया।
1: आपको पछतावा है समर्थ? अच्छा पछतावा है समर्थ? आपको आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए था समर्थ? आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए था?
2: तकरीबन दो घंटे तक ये पूरी पूछताछ यहाँ पे चली समर्थ को लेकर के। जो साइट जो जगह है जहाँ पे सीन ऑफ क्राइम था उसे विजिट कराया गया, रिविजिट कराया गया और उसे कई तरीके की उन परिस्थितियों पे क्या हुआ था उस रात को, कैसे समर्थ उसे नीचे ले गया, कब उसे पता चला यहाँ से जाने, पुलिस ने जानने की कोशिश की और तकरीबन दो घंटे तक समर्थ घर पे रहा।
0: सीबीआई ने ट्रिशा केस मध्य प्रदेश पुलिस से टेक ओवर कर लिया है। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। माना जा रहा है कि आज से सीबीआई की जांच इस मामले में शुरू होगी।
3: नहीं, जैसे ही हमारे पास खबर आएगी, अभी तो कोई ऐसी खबर नहीं है, जैसे ही मान लो सीबीआई को केस हैंड ओवर होता है तो जैसे ही हमारे पास खबर आएगी हम डायरी उनको सौंप देंगे।
0: ट्रिशा 12 मई को अपने ससुराल में फांसी पर लटकी हुई पाई गई थी। भोपाल पुलिस ने दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत ट्रिशा के पति समर सिंह और सास गिरिवाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की बात कही। साथ ही दोनों पक्षों को सार्वजनिक रूप से कुछ कहने की जगह जांच एजेंसियों के सामने बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पंजाब में इस वक्त खलबली मची हुई है। जी हां, पंजाब के मशहूर गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ के लुधियाना के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। लुधियाना नगर निगम के आला अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मेयर का ऑफिस खाली करा लिया गया है तो दिलजीत दोसांझ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखते हैं आखिर बम से उड़ाने की धमकी किसने दी, कहां से यह धमकी आई है।
5: दिलजीत दोसांझ, पंजाब का वो नाम वो चेहरा जिसकी पहचान अब वैश्विक हो चुकी है। आपको बता दें कि दिलजीत दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी कलाकार हैं। इसके अलावा वो प्रसिद्ध अमेरिकी टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में भी अपने गानों की प्रस्तुति दे चुके हैं। और आज पंजाब में दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिलजीत के साथ साथ लुधियाना की मेयर के ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें लिखा है कि लुधियाना की मेयर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के ठिकानों पर जोरदार धमाके किए जाएंगे। इस धमकी से पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया है। धमकी का ये ईमेल सोमवार सुबह नगर निगम कमिश्नर और दूसरे सरकारी आईडी पर भेजा गया। इस ईमेल में जो लिखा गया वो आपको बताते हैं। सुबह करीब 7:28 पर आई ईमेल का सब्जेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट मेयर ऑफिस लुधियाना रखा गया है। ईमेल में धमाकों का समय भी निर्धारित किया गया है। दोपहर 1:11 पर लुधियाना मेयर पर हमले की धमकी दी गई। इसके साथ ही रात 9:11 पर दिलजीत दोसांझ के घर पर धमाके की चेतावनी दी गई। ईमेल में 1984 के सिख दंगों का हवाला देते हुए खून का बदला खून से लेने की बात लिखी गई है। धमकी देने वाले ने लिखा है कि 6 जून तक बम धमाकों के जरिए इन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईमेल के अंत में इसे खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजा बताया गया है। इनमें दो नाम लिखे गए हैं, इंजीनियर गुरनाक सिंह यानी रुकन शाहवाला, डॉक्टर गुरनिवैर सिंह यानी खान राजादा। धमकी के बाद पुलिस महकमा और साइबर सेल अलर्ट हैं। ईमेल के आईपी एड्रेस और सेंडर को ट्रेस करने की त्वरित जांच शुरू कर दी गई है। धमकी के बाद एहतियात के तौर पर लुधियाना नगर निगम के दफ्तर को तुरंत खाली करा लिया गया है और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है।
6: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का गाँव लुधियाना के दोसांझ कला के अंदर है और नगर निगम लुधियाना दोनों को गांव दलजीत के और नगर निगम लुधियाना में बम धमाके 6 जून तक किए जाएंगे। समय भी मेंशन किया गया और खालिस्तान नेशनल आर्मी की ओर से इस मैसेज को, इस ईमेल को रेफर किया गया है। हालांकि इससे क्यों कोई दहशत फैलाना चाहता है या सच में कोई ब्लास्ट करना चाहता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जैसे ही आज सुबह जेनिफर सेनोटे के नाम से ईमेल आई बम से भरी धमकी की, इस ईमेल के बाद प्रशासन हरकत में आया।
5: प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और पूरी सतर्कता के साथ चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार ने दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है।
7: भारतीय जनता पार्टी किस तरह डराया गया, किस तरह के मैनेजर गोलियां चलाने करते होते ताकि दहशत का माहौल बढ़ा के उन्हें बीजेपी शामिल किया जाए, जो पंजाब की आवाज आ, जो साड़ी पंजाबियत की आवाज आ, जो दुनिया के अंदर जानी जाती है कि दलजीत दोसांझ उन्हें डरा के धमका के भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी शामिल करना चाहती है।
5: आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल चुनाव है, उससे पहले पंजाब में राजनीति भी जमकर हो रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी धमकियों को भी बीजेपी से जोड़ रही है। लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी दिलजीत दोसांझ को धमकियां मिल चुकी हैं। सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर फायरिंग हो चुकी है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग का दावा किया। आज तक ब्यूरो।
4: उधर बिहार में अब गमछा पॉलिटिक्स तेज हो गई है। सम्राट चौधरी ने आरजेडी के गमछे के रंग पर तंज किया तो आरजेडी अब सम्राट चौधरी को घेर रही है।
5: बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने जिस गमछे को जीत का प्रतीक बनाया था, आज इसी गमछे के रंग पर बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम सम्राट चौधरी हरे गमछे को एआई से पकड़ने की बात कह रहे हैं।
8: पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बर खाली कह दीजिए एआई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा।
5: बात हरे गमछे की हुई तो मामला सीधे आरजेडी तक पहुंच गया। तेजस्वी तिलमिलाए और बिहार सरकार पर सवाल उठाने लगे।
9: इस तरह का बयान दे करके, हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है कि किस प्रकार का सोच की बात कर रहे हैं। दिखाता है कि नफरत कितना ज्यादा उनके अंदर भरा हुआ है।
5: उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी सम्राट चौधरी पर पलटवार किया। बिहार के मुख्यमंत्री को एआई ने बताया है, गुंडों के यहाँ छापेमारी करने गई पुलिस को पहले करवानी होगी अपनी तलाशी। सम्राट की पुलिस को आदेश है सिर्फ हरे गमछे वालों को निशाना बनाना है, बाकियों के सामने वर्दी पहनकर लाइन में लगकर अपनी तलाशी देनी है और फिर रेड मारने की गुस्ताखी करने के इनाम स्वरूप सस्पेंड हो जाना है। कभी टोपी तो कभी गमछा, सियासत का यही रंग अब बिहार में चढ़ता नजर आ रहा है। शशि भूषण, पटना, आज तक।
4: और बात अब नीट पेपर लीक की, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट ने एनटीए की भूमिका पर सवाल खड़े किए तो सरकार और एनटीए से इस मामले में जवाब मांगा है।
5: नीट पेपर लीक पर जहां सड़कों पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा तो वहीं सवालों के घेरे में परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया। पेपर लीक को लेकर कोर्ट ने एनटीए को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक होना दुख की बात है। वहीं कोर्ट ने एनटीए से ये भी पूछा कि आखिर पिछली गलतियों से उसने क्या सीखा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
10: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए।
5: उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक की एक और आरोपी मनीषा हवलदार को पेश किया गया, जहां मनीषा को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। सीबीआई ने मनीषा को पुणे से गिरफ्तार किया था। मनीषा पर फिजिक्स का पेपर लीक कराने का आरोप है। सीबीआई पूछताछ करेगी कि मनीषा के संपर्क में कितने लोग थे। आज तक ब्यूरो।
4: उधर गाय को लेकर घमासान पश्चिम बंगाल से जो शुरू हुआ था उसके बाद मुसलमानों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि न तो गाय की अब कुर्बानी होगी लेकिन सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। कई सारे हिंदू संगठन भी कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, सरकार है कि सुनती नहीं है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम शुभेंदु हिंदुत्व वाले हार्डकोर फैसले ले रहे हैं जिसमें शुभेंदु ने गो हत्या पर सख्त चेतावनी जारी की है।
5: ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भंगर की हैं। कई पशुपालक सड़कों पर उतरे हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें उन्होंने गाय की कुर्बानी को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। इन पशुपालकों की मांग है कि सरकार कम से कम इस साल सभी आधिकारिक दिशा निर्देशों और कानूनी नियमों का पालन करते हुए पशुओं की बिक्री की अनुमति दें, वरना कई परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
11: पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी, इतनी कि सैकड़ों गायों की गिनती करना नामुमकिन था, लेकिन आज तो 5 से 7 गायें भी नहीं बिकती। पहले बड़ी बड़ी गायें पाली जाती थीं, दूर दूर से गायें लाई जाती थीं, मुसलमान गाय लाते थे। अब सरकार ने कुर्बानी पर रोक लगा दी, इसी वजह से डर के मारे कोई गाय लाने को तैयार नहीं है। पुलिस उन्हें पीट पीट कर ले जाती है और जो लाते भी हैं वो डरे हुए हैं।
5: लोगों की माने तो हर साल बकरीद से पहले कई किसान और पशुपालक मवेशी पालने में लाखों रुपए का निवेश करते हैं। ईद के बाजार के दौरान इन पशुओं की बिक्री उनकी वार्षिक आय का एक बड़ा हिस्सा होती है। हालांकि व्यापारियों का आरोप है कि इस साल सरकार के नए प्रतिबंधों के कारण खरीदारों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कई पशु बाजारों में खरीद बिक्री की गतिविधियां लगभग ठहर सी गई हैं। आपको बता दें कि जैसे ही हिंदुत्व की पिच पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने फैसले लेने शुरू किए और गाय को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने रेड लाइन खींच दी। बंगाल में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज बंद, बंगाल में इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता 1 जून से बंद, बंगाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, बंगाल में मदरसा एवं अल्पसंख्यक मामलों की योजनाओं की समीक्षा, बंगाल में 14 साल से कम उम्र की गाय के वध पर रोक, ओबीसी सूची रद्द कर दोबारा समीक्षा जिसका असर मुस्लिम ओबीसी पर, और बंगाल में घुसपैठ पर रोक के लिए ठोस प्लान की शुरुआत। इसके बाद बंगाल की मशहूर दरगाह, जी हाँ, फुरफुरा शरीफ दरगाह के चीफ ऐलान करते हैं कि इस साल बकरीद पर कोई भी गाय की कुर्बानी न दे।
12: मुस्लिम भाई के जो अनुरोध करोगे, अपना गोरु किन बिन्ना, गोरु अपनारा किने कुर्बानी देवें ना, हमारा दोबो ना, ये शुद्ध हमारे असुविधा है ना अन्य कारो असुविधा है से देखार विषय आछे। ये जो कुरबानी गोरु दिया बंद करी
5: और अब उसका असर पशु बाजारों पर दिख रहा है। मुसलमान गाय खरीदने से बच रहे हैं और पशुपालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अपने स्टैंड पर कायम है।
13: कुर्बानी होच्छे नियम मेने होच्छे एवं सबकिछु शांतिपूर्ण भावे हबे, ठीक नियम मेने हबे, ओपेनली हबे ना, चतुर्दिके ड्रेने रक्त छड़ाबे ना।
14: कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी, सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं।
5: सिर्फ यूपी और बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में भी गाय की कुर्बानी को लेकर सख्त नियम और निर्देश लागू हैं। फडणवीस सरकार ने बकरीद के मद्देनजर सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है और ये भी कहा है कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
15: मको का ही लगना चाहिए और मको का ही कार्रवाई होनी चाहिए। रास्ते पे गौ काटना, रास्ते पे कटाई करना, ये कुछ नहीं चलेगा और निश्चित रूप से इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। और किसी को अधिकार नहीं गोवंश हत्या बंदी कायदे का उल्लंघन करने का, किसी को अधिकार नहीं है। किसी ने काटा तो उसको नहीं छोड़ेंगे।
16: इस्लाम का भी जो कायदा है, कानून है, कंसेप्ट है कि जिस देश में, जिस कस्बे में, जिस स्टेट में, जिस जगह आप रहते हैं वहां के कायदे को आपको मानना है। और महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में गौवंश हत्या पे बंदी है, तो ये सभी मुस्लिम समाज के लोगों को ये मानने की जरूरत है।
5: बकरीद पर जहां कुर्बानी के पशुओं की मंडियां सजी हैं, लाखों की कीमत वाले बकरे बिक रहे हैं, लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं, ऐसे में कुर्बानी को लेकर आई सरकारों की गाइडलाइंस पर तगड़ा कोहराम मचा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और अब आपको वो खबर दिखाते हैं जो रईस की राजधानी दिल्ली में वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ है। वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ जनता को रोष से भर देती है। दिल्ली के जिमखाना क्लब की जमीन को खाली करने का आदेश सरकार ने दिया है। ये मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है जिस पर सुनवाई होगी। और सवाल ये है कि कभी अंग्रेजों की मौज मस्ती का अड्डा रहे जिमखाना को बंद करने का मुट्ठी भर लोग इतना विरोध आखिर कर क्यों रहे हैं।
17: दिल्ली का ये वही जिमखाना क्लब है जो भारतीय नौकरशाहों, अफसरों और शहर के तमाम वीवीआईपी लोगों के लिए सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल रहा। सफदरजंग रोड के पास हरे भरे लॉन और पुरानी शैली की वास्तुकला के बीच छिपा ये क्लब लंबे समय से देश की राजधानी में रसूख और अपनी खास पहुंच का प्रतीक बनकर विजिटिंग कार्ड की तरह प्रदर्शित किया जाता रहा। लेकिन अब 113 साल बाद केंद्र सरकार की बेदखली के आदेश के बाद ये जिमखाना क्लब एक बार फिर सुर्खियों में, खासकर इसके समर्थन में उठ रही आवाजों और उनकी दलीलों की वजह से।
18: जिमखाना क्लब में खेलने आती थी अमृतसर में, सो मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इसमें। और वो एक बड़ा जबरदस्त अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है, बहुत जबरदस्त सीनियर सिटीजन भी वहीं, उन्हीं का घर भी है। सो मैं उस एंगल से कर रहा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स सेंटर भी है। और जो टेनिस के लॉन्स हैं जिमखाना में, वो एशिया के बेस्ट लॉन्स हैं।
17: दिल्ली के जिमखाना क्लब में आम आदमी के लिए सदस्यता हासिल करना नामुमकिन है, जिसकी सदस्यता किसी विरासत से कम नहीं। फिर भी इसे लेकर मोह ऐसा कि आम आदमी पार्टी तक वीवीआईपी कल्चर के प्रतीक जिमखाना क्लब पर सरकार की कार्रवाई के विरोध में उतर आती है।
19: ये बताती है कि इनका ध्यान सिर्फ जमीनों को कब्जा करने में और अपनी सुरक्षा के नाम पे और अपने मित्रों को देने में, उस बड़ी बड़ी जमीन को, उस महंगी जमीन को उपलब्ध कराने में इनकी सारी रुचि है।
17: नई दिल्ली का दिल्ली जिमखाना क्लब लुटियंस दिल्ली के बीचों बीच में है। आजादी के ठीक बाद क्लब का प्रबंधन अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में आया, तब से ये सत्ता का सबसे बड़ा गलियारा बनकर रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 27.3 एकड़ की जमीन पर फैले इसी जिमखाना क्लब को खाली करने का आदेश दिया। सरकार का कहना है कि ये जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ढांचे से जुड़े अहम कामों के लिए चाहिए, लेकिन जिमखाना क्लब को लेकर मोह ऐसा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाता है। इस कानूनी लड़ाई के बीच क्लब के सदस्यों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से सदस्यों और कर्मचारियों के बीच दहशत और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया।
20: Any faith and trust in the committee that is constituted at present, which is run, which is managed by the government itself, because those people who are members of the committee are all government appointees, and obviously they cannot go against the government. Should they go against the government, they will be obviously changed or removed. Under the circumstances, the club has decided that we got to take up the case ourselves.
17: जिमखाना क्लब के सदस्य कहते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें इस फैसले की कोई पहले से सूचना नहीं दी गई। वहीं जहां तक बात सुरक्षा की है, तो पिछले 34 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास के बगल में मौजूद होने पर भी जिमखाना क्लब की तरफ से सुरक्षा में चूक या उल्लंघन की कोई भी घटना सामने न आने का दावा किया जाता है। 1928 में सरकार ने जिमखाना की 27 एकड़ से ज्यादा की जमीन 1000 रुपए सालाना पर दे दी थी। 1947 में अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, लेकिन क्लब के अंदर कुछ नहीं बदला। जमीन वही रही, किराया वही रहा, बस अंदर बैठने वाले बदलते गए। गोरे साहब की जगह देसी रसूखदारों ने ले ली, जिनमें आम आदमी कभी अंदर झांक ही नहीं पाए। सबसे बड़ी बात, ये क्लब कभी खेल का मैदान ही नहीं था। साल 2014-15 से 2018-19 के बीच क्लब में कुल खर्च का खेल पर केवल 2.77% ही खर्च किया गया। बाकी पैसा कैटरिंग, वाइन, शराब, सिगरेट और दूसरे खर्चों में जाता रहा। तो जिम खाना की जमीन मांगी गई खेल के नाम पर, लेकिन यहाँ खेल पर कुछ खर्च ही नहीं होता था।
4: दिल्ली में पद्म अवार्ड्स का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल, कला, साहित्य, मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने वाली शख्सियतों को सम्मानित किया। इस मौके पर दिवंगत लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो हेमा मालिनी और उनकी बेटी आहाना भावुक नजर आए।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट, श्री के पजानीवेल खेल सिलंबम, श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय।
0: भावुकता से भरी एक शाम, विरासत और राष्ट्रपति भवन में तालियों की गड़गड़ाहट। इस शाम का सबसे भावुक पल जब दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंखों में आंसू लिए हेमा मालिनी ने दिवंगत सुपरस्टार की ओर से ये सम्मान ग्रहण किया। वहीं दर्शकों के बीच बैठी बेटी आहाना देओल भी भावुक हुई और आंसू छलकने लगे।
1: सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट,
0: क्रिकेट के मैदान से राष्ट्रपति भवन तक। भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके निडर बल्लेबाजी और परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए उन्हें मिला है।
1: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन,
0: डॉक्टर एन राजम को भी सम्मानित किया गया। भारतीय शास्त्रीय वायलिन में उनके आजीवन योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। तबला वादक पंडित कुमार बोस भी सम्मानित होने वालों में शामिल थे। विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे प्रतिष्ठित अभियानों के लिए याद किया जाता है। सिनेमा और रंगमंच के दिग्गज भी मंच पर मौजूद थे। बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी, दिग्गज अभिनेता अरविंद वैद्य और कुचिपुड़ी नृत्यांगना दीपिका रेड्डी सभी को पद्म सम्मान प्राप्त हुए। और समारोह का एक अविस्मरणीय दृश्य, पारंपरिक मार्शल आर्ट गुरु के पजानीवेल ने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सिनेमा जगत के दिग्गजों और खेल जगत की हस्तियों से लेकर लोक कलाकारों, पत्रकारों और शास्त्रीय संगीत के उस्तादों तक पद्म पुरस्कार 2026 ने उन असाधारण लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने गौरवशाली भारत की कहानी लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: रुक रहे ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
21: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब
22: Typical children's vitamins are basically candy in disguise. Some are filled with 2 teaspoons of sugar, unhealthy chemicals, and other gummy additives that growing kids should never eat. That's why Hiya created the Kids Daily Multivitamin, a chewable vitamin with 15 plus essential vitamins and minerals. Some kids' vitamins are filled with 5 grams of sugar, and sugar is known to contribute to a variety of health issues. Hiya is made with zero sugar and zero gummy additives, yet it tastes great and is perfect for picky eaters. Hiya is made with a blend of 12 organic fruits and veggies and helps support kids' immune systems, energy, brain function, mood, concentration, and more. It's also non-GMO, vegan, dairy-free, allergy-free, gelatin-free, and nut-free. Hiya is designed for kids 2 and up and sent straight to your door, so parents have one less thing to worry about. To receive 50% off your first order, go to hiyahealth.com/no-sugar. Go to hiyahealth.com/no-sugar and get your kids the full body nourishment they need to grow into healthy adults.
23: कौन से ग्रह आपको लगातार स्वस्थ बनाए रखते हैं? किन कारणों की वजह से लगातार व्यक्ति बीमार रहता है? क्या है व्यक्ति के हमेशा बीमार रहने का कारण और क्या है इसके सरल निवारण? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
24: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Baby, one more. or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s Hits or ask your device to play 90s Hits on TuneIn.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे, इस मौके पर देश भर में सरकार का बड़ा अभियान। लोगों के बीच पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री, सांसद और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपलब्धियों की जानकारी देंगे। दिल्ली में आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का समिट, पश्चिम एशिया के ताजा हालात के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र पर होगा फोकस। सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर बीकानेर में गृहमंत्री अमित शाह, आज बॉर्डर इलाके में बीएसएफ चौकी का करेंगे दौरा। 5 जून को त्रिपुरा, 15 जून को बंगाल जाने का प्लान। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र गंभीर, शिक्षा मंत्री ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर सुरक्षित परीक्षा कराने में सहयोग की अपील की। त्रिशा मौत मामले में सीबीआई की जांच तेज हुई, एफआईआर के बाद जांच टीम भोपाल पहुंची, आरोपी समर्थ को घर ले जाकर पुलिस ने तफ्तीश की।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो बार बार बीमार पड़ते हैं। कभी सर्दी जुखाम हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी सर में दर्द हो गया, कभी पेट खराब हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान बार बार बीमार पड़ता है, बार बार उसकी सेहत खराब होती है? और अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है तो उसे क्या उपाय करना चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। हम आज बात कर रहे हैं कि जो लोग लगातार बीमार रहते हैं उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि जो लोग लगातार बीमार रहते हैं उसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं। देखिए, कुंडली का जो लग्न है और लग्न का जो स्वामी है, ये बेसिकली व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है। इसके कमजोर होने से स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ जाता है। सूर्य आपका शरीर है और चंद्रमा आपका मन है, इसीलिए अगर सूर्य बेहतर है तो शरीर बेहतर होगा और चंद्रमा बेहतर है तो आपका मन बेहतर होगा। सूर्य लग्न का कारक है, इसीलिए सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं परेशान करती हैं, उसके शरीर में दिक्कत आने की संभावना रहती है। चंद्रमा मन का कारक है, इसीलिए अगर चंद्रमा गड़बड़ होगा तो मन की समस्याएं ज्यादा होंगी। कुल मिला के ज्योतिष 5 तत्वों का अध्ययन करता है। तो कुंडली के जो तत्व हैं लग्न, पंचम और नवम, इन तत्वों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और जो तत्व कुंडली का मुख्य तत्व है

डॉक्टर होना भी आवश्यक है। अगर कुंडली के तत्व बिगड़ जाएं तो अलग अलग तरह के स्वास्थ्य की समस्या, मानसिक समस्या जीवन में व्यक्ति को परेशान करती है। यानी आप ये समझिए कि जैसे कुंडली अग्नि तत्व वाली है और सूर्य मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो आदमी बीमार रहेगा। यानी कुंडली के तत्व का जो स्वामी है उसका भी ठीक स्थिति में होना जरूरी है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तो देखिए, ग्रहों में आप देखिए सूर्य और चंद्रमा का बेहतर होना, लग्न और लग्न के स्वामी का बेहतर होना और तत्व का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप बीमार रहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल ग्रह ही किसी व्यक्ति को बीमार करते हैं, लगातार बीमार रहने की कुछ अन्य वजह भी होती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के घर की तरंगें ठीक ना हो, अगर घर का वाइब्रेशन ठीक ना हो तो उस घर में रहने से व्यक्ति निरंतर बीमार रहेगा, बीमारी परेशान करेगी। जिन घरों में नियमित रूप से अशांति रहती हो, नियमित रूप से जिन घरों में कलह कलेश रहता हो, वहां भी लोगों को बीमारियां जल्दी होती हैं। अगर आप दूसरों को मानसिक कष्ट पहुंचाते हैं या शारीरिक कष्ट पहुंचाते हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की वजह से आपको भी मानसिक और शारीरिक कष्ट भोगना पड़ेगा।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार बीमारियों के बारे में सोचते हैं, मुझे हृदय रोग है, मुझे पेट में ट्यूमर है, मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लगातार बीमारियों के बारे में सोचते हैं और लगातार बीमारियों के बारे में सोचने से बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी उनके पास आ जाती है। अगर आप जाने अनजाने कोई गलत मंत्र पढ़ने लगे तो मंत्रों की तरंगें अगर गलत हुई तो आप बीमार पड़ जाएंगे। या आपने बिना सोचे विचारे कोई गलत रत्न अगर धारण कर लिया तो भी आप बीमार पड़ेंगे। मंत्रों के गलत उच्चारण करने से, बिना सोचे विचारे गलत रत्न पहनने से आप बीमार भी हो सकते हैं और दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। बीमारियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आप बीमार भी हो सकते हैं और दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। बीमारियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न कविता जी ने हमें लिखा है और कविता जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। 13 सितंबर 1994 का जन्म है, शाम के 6:10, जन्म स्थान है लखनऊ। कविता कह रही हैं कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और बड़ी मुश्किल से जीवन चल पा रहा है। मेरे पति का कोई रोजगार भी सेट नहीं हो पा रहा है और मैं भी कुछ करना चाहती हूं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। सबसे पहले बता दें कविता कि आपका स्थान परिवर्तन होने वाला है। हो सकता है लखनऊ छोड़कर आप किसी और जगह जाने या बसने के बारे में सोचें
जून 2026 से आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में ऐसा लगता है कि अगर आप भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, एजुकेशन फील्ड में जाएं, या खाने पीने की चीज का कोई व्यापार पति के साथ मिल करके करें तो भविष्य में अच्छा रहेगा। जून के बाद स्थान परिवर्तन के साथ जीवन में परिवर्तन होगा और 2027 के अप्रैल के बाद स्थितियां थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। रोज सुबह शाम अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करिए और रोज सुबह सूर्योदय के पहले अगर संभव हो सके तो एक लोटा जल पीपल के वृक्ष में अर्पित करिए, आपको लाभ होगा। देखिए, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और सामान्यतः उनको स्वास्थ्य की समस्या परेशान नहीं करती। कब किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर रहता है? देखिए, मंगल को ज्योतिष में सेनापति कहते हैं ना। सेनापति का काम क्या है? सुरक्षा करना। तो सुरक्षा शरीर की भी करता है और समस्याओं से भी करता है। तो मंगल जो है वो व्यक्ति के जीवन के सुरक्षा का ग्रह है। और अगर मंगल कुंडली में सही जगह बैठा है, मंगल की सिचुएशन ठीक है, तो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है। व्यक्ति की जो इम्यूनिटी होती है वो मजबूत रहती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों से बड़ी सरलता से निकल जाता है। केंद्र में अगर बृहस्पति बैठा है तो ये माना जाता है कि ये भगवान का एक वरदान है आपके लिए। केंद्र का बृहस्पति या बृहस्पति की मजबूती भी व्यक्ति की रक्षा करती है। कुंडली में कई बार बड़े अशुभ योग भी होते हैं, बड़े खराब योग भी होते हैं, लेकिन केंद्र का बृहस्पति व्यक्ति को बचा ले जाता है। हाथ में जो जीवन रेखा है, जिसको आप लाइफ लाइन कहते हैं, उसके बराबर में भी एक रेखा अक्सर शुक्र के पर्वत पे होती है, उसे मंगल रेखा कहते हैं। तो जीवन रेखा और मंगल रेखा का मजबूत होना व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। तमाम मुश्किलों में आने के बावजूद व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। अगर आप अपने घर की तरंगों को बेहतर रखें, अपने घर के वाइब्रेशन को अच्छा रखें, तो आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। आपकी कुंडली कितनी अच्छी हो, आपकी रेखाएं कितनी अच्छी हों, अगर घर की तरंगें अच्छी नहीं होंगी तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार बने रहेंगे। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। तो ऐसा हो सकता है कि आप ग्रहों की वजह से, घर की तरंगों की वजह से लगातार बीमार रहते हों, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी हमेशा लगी रहती है। तो अगर आप लगातार बीमार रहते हैं तो किन उपायों से खुद को ठीक रखेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, उगते हुए सूर्य को जल दीजिए और सूर्य की रोशनी में दो चार मिनट, पांच मिनट खड़े रहिए। सुबह और शाम दोनों समय पूजा उपासना में समय जरूर दीजिए, चाहे 10 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, लेकिन 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को पूजा जरूर करिए। आंतरिक रूप से आपके अंदर शुभता आएगी। अपनी संगति और अपने आहार पर विशेष ध्यान दीजिए। आप खराब लोगों की संगति में रहेंगे, आपको उनके कर्म भी भोगने पड़ेंगे। मांस मदिरा इत्यादि से परहेज करिए, शुद्ध सात्विक और पवित्र आहार ग्रहण करिए। किसी संत या महापुरुष के साथ कुछ समय बिताइए। आजकल सोशल मीडिया पे संतों महापुरुषों की वाणियां रहती हैं, तो अगर मोबाइल देखना ही है तो संत महापुरुष के वचन सुनिए ताकि उनके साथ आपका समय बीते, संस्कार शुद्ध हो। चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करिए, चंदन की खुशबू लगाइए या चंदन के तिलक का प्रयोग करना भी अच्छा रहेगा। सलाह लेकर एक मूंगा या एक पन्ना धारण करिए, इसमें से एक कोई रत्न आपको सूट करेगा, तो जो रत्न आपको सूट करे वो धारण करिए। उसको धारण करने से छोटी छोटी बीमारियों से रक्षा होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, परिवार में मंगलकारी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई में होते हैं। तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है बहुत बार कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने मंत्र कर दिया, मैं बीमार हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई। क्या तंत्र मंत्र के माध्यम से किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? देखिए, तंत्र मंत्र स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते। अगर आपका समय खराब चल रहा है और कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करेगा तो तंत्र मंत्र एक माध्यम बनेगा आपको परेशान करने के लिए। लेकिन आपका समय खराब होगा तभी तंत्र मंत्र काम करेगा। अगर आपका समय बहुत ही अच्छा चल रहा है तो तंत्र मंत्र का कितना भी प्रयोग किया जाए आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी आपकी ग्रह दशा, आपका समय खराब होना चाहिए तभी तंत्र मंत्र के माध्यम से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, पारिवारिक समस्या हल होगी। नंबर 6, विवाद तय हो सकता है। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा, आपके कर्ज की समस्या में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें सचिन चंद्रा ने लिखा है और सचिन चंद्रा हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जून 1996। जन्म का समय शाम के 4:10। जन्म स्थान है लखनऊ। सचिन कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहता हूं लेकिन उसमें अड़चनें बहुत आ रही हैं, तो क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो सकेगा? देखिए सचिन, जिस लड़की की कुंडली आपने भेजी है उस लड़की की कुंडली देखने के बाद
ये संभावना प्रबल है कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा। साल 2027 के अंत में शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं परिवार की तरफ से, लेकिन आगे चल के स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। विवाह आपका इस साल के अगस्त के बाद किसी भी समय दिखाई दे रहा है, लगता है उसके बाद आप विवाह कर लेंगे। रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें, 108 बार सुबह 108 बार शाम को, और एक मोती बनवा के पहने, 8-10 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, परीक्षा में सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खा करके जाइएगा, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा करके जाइएगा, मीटिंग में काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, तो जरा सा सिंदूर का तिलक लगा के जाइएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर वाहन भूमि भवन आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है आज, तो नारंगी रंग का रुमाल अपने साथ में रख के जाइएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

होगा सिंह राशि वालों के लिए, करियर काम अच्छा होगा, तनाव कम होगा, काम की रुकावट दूर होगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक वालों के लिए, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, घर में प्रसन्नता आएगी। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह की चिंता परेशान कर सकती है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना, टंकी मतलब वेक्टर्स।
1: एक बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर वालों को आज सुबह सुबह फिर महंगाई का झटका लगा है, महंगाई का डबल अटैक, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बाद आज से दिल्ली में सीएनजी भी महंगी हो गई है। दिल्ली में सीएनजी अब प्रति किलो 2 रुपए का इजाफा हो चुका है, और यही नहीं 12 दिन में सीएनजी की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। अब नई कीमत के अनुसार दिल्ली में सीएनजी 83.09 रुपए प्रति किलो हो गई है। अचानक हुई बढ़ोतरी की मुख्य वजह वैश्विक तेल संकट, गैस संकट, और जिसके बाद घरेलू स्तर पर बढ़ रही लागत को माना जा रहा है। तो सीएनजी के दाम आज से बढ़ चुके हैं, और ये 12 दिन में चौथी बार सीएनजी की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में जो सीएनजी की कीमत है वो अब 83 रुपए को पार कर चुकी है। और आइए अब देखते हैं नॉनस्टॉप 100।

में सीएनजी की कीमतों में फिर भरी उड़ान, 12 दिन में 6 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी, उपभोक्ताओं की जेब पर सीधे बढ़ा बोझ। राजधानी में सीएनजी उपभोक्ताओं को आज बड़ा झटका लगा है, लगातार दूसरी बढ़ोतरी के बाद कीमत अब 83.09 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। इससे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी थी और अब सीएनजी ने भी चिंता बढ़ा दी है, 12 दिनों में दाम 77 रुपए से बढ़कर 83 रुपए प्रति किलो पहुंच चुके हैं। बीकानेर से गृहमंत्री अमित शाह का बॉर्डर दौरा शुरू हो चुका है, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे गृहमंत्री। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत हो चुकी है, 184 गांव सड़क और 4G नेटवर्क से जुड़ेंगे। आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है, 2026 की इस बैठक की अध्यक्षता एस जयशंकर करेंगे। सुबह 6:50 पर दिल्ली पहुंचेंगे प्रतिनिधि, 8:30 फैमिली फोटो होना है, 9:00 हैदराबाद हाउस में अहम बैठक होगी, 9:50 पर संयुक्त प्रेस बयान आएगा और 11:00 प्रतिनिधिमंडल रवाना होंगे। मार्को रूबियो, पेनी वोंग, तोशिमित्सु मोतेगी सहित क्वाड देशों के मंत्री इंडो पैसिफिक सुरक्षा और रणनीति सहयोग पर चर्चा करेंगे। मुक्त, सुरक्षित और स्थिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर फोकस रहेगा, चीन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और श्रीलंका के पास हालिया घटनाक्रम पर भी मंथन क्वाड में संभव है। क्वाड बैठक के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं और पीएम मोदी से संभावित मुलाकातों पर भी नजर होगी, साल के आखिर में क्वाड शिखर सम्मेलन की भी तैयारियां तेज हो रही है। वेस्ट एशिया तनाव पर सरकार ने भरोसा दिया है कि अगर हालात सुधरे तो 4-5 दिनों में ही सप्लाई सामान्य हो जाएगी। संसदीय समिति को केंद्र का आश्वासन मिला है, ऊर्जा और उर्वरक संकट का फिलहाल कोई खतरा नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मार्ग पर तनाव के बीच भारत की तैयारी है, 78 दिनों से ज्यादा का ऊर्जा भंडार देश में फिलहाल मौजूद है। वेस्ट एशिया संकट से निपटने की तैयारी भी पूरी है, वैकल्पिक आयात और सप्लाई प्लान भी सक्रिय है जिसका दावा सरकार ने किया है। तेल शिपिंग सप्लाई पर सरकार सतर्क है, मंत्रालयों के बीच लगातार समन्वय भी जारी है। तेल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया है कि ईंधन पर टैक्स घटाने से सरकार को 1,00,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, उन्होंने कहा कि सरकार चुपके चुपके जनता की जेब काट रही है। देश में इबोला को लेकर के हाईअलर्ट जारी किया गया है, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इबोला वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील की है। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त कार्रवाई की है, केंद्र और एनटीए को नोटिस भेजा है, एनटीए भंग करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा, एनटीए को लेकर के नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बताया और पीएम मोदी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा। कहा कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को लेकर के नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बताया और पीएम मोदी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई 12वीं के मूल्यांकन में गड़बड़ी और नीट परीक्षा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होने के लायक नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे और ओएस प्रोसेस खत्म करने के मांग के बोले, सीबीएसई मूल्यांकन में गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के इस्तीफा देने वाले 3 बागी विधायक टीवीके नेता से मिले, विजय की पार्टी टीवीके में शामिल हुई। तमिलनाडु सरकार में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का फेरबदल हुआ, टीएस अनबू एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किए गए। कोलकाता में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दूसरी बार जनता दरबार लगाया, हजारों लोगों की फरियाद सुनी। कोलकाता के सॉल्ट लेक में मार्केट में रंगदारी के आरोपों के बाद टीएमसी विधायक की पिटाई हुई, पुलिस ने हिरासत में लिया। आईएएस नीलम मीणा पश्चिम बंगाल की नई मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी नियुक्त की गई है, मनोज कुमार अग्रवाल मुख्य सचिव बनाए गए। विशा केस की जांच जल्दी शुरू करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई भोपाल पहुंची, परिवार को मीडिया में बोलने की बजाय एजेंसी के सामने बात रखने की भी सलाह दी। विशा केस में रिटायर्ड जज सास को हाईकोर्ट का नोटिस, परिजनों के वकील बोले जांच में सहयोग नहीं कर रही है सास गिरीवाला। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वीवीआईपी इलाके में बंगला मिला है, दिल्ली के कामराज लेन में बंगला नंबर 6 उन्हें आवंटित किया गया है। पंजाब निकाय चुनाव में बैलेट पेपर इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है, दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। जमानत पर चल रहे आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा की फिर से मुश्किलें बढ़ी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने उन्हें फिर समन भेजा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 2024 में प्रदर्शन करने के मामले में महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा दोषी करार दी गई है, सजा पर 5 जून को बहस होगी।
बकरीद को लेकर वक्फ बोर्ड ने भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। कहा खुले में कुर्बानी न दी जाए, सभी की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है। विधान परिषद की 17 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव से पहले महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के घमासान मचा है। बीजेपी शिवसेना एनसीपी के बीच 17 सीटों पर सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। महाराष्ट्र में पश्चिम एशिया के तनाव के कारण ईंधन की कमी की अफवाहों के बीच पैनिक बाइंग के चलते डीजल की बिक्री 52% और पेट्रोल की बिक्री 23% बढ़ चुकी है। नीट पेपर लीक केस में दिल्ली कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई। पुणे से गिरफ्तार केमिस्ट्री टीचर पीवी कुलकर्णी की पुलिस कस्टडी 2 दिनों के लिए बढ़ाई गई। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा को भी सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। पूछताछ के बाद 6 दिन की हिरासत में भेजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2026 के पद्म पुरस्कार वितरित किए। पहले चरण में 66 हस्तियों को सम्मानित किया गया। भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान समारोह में सिनेमा संगीत थिएटर जगत की मशहूर हस्तियों को सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र को पद्म विभूषण सम्मान लेते वक्त भावुक हुई हेमा मालिनी। भारतीय महिला क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले विश्व कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुई। राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों पुरस्कार का आकर बेहद खुश दिखी हरमनप्रीत। राजस्थानी लोक कलाकार तगाराम भील को भी पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। तगाराम भील ने अलकोजा वादन को ग्लोबल पहचान दी है। इस साल भारत सरकार ने 131 पद्म सम्मानों की घोषणा की, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। हिमाचल में 28 और 29 मई को कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और आंधी की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने 31 मई तक प्रदेश में अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। प्री मानसून सीजन में राज्य में अब तक सामान्य से 13% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एसी हेलमेट अब राहत देंगे। थर्मोकूलिंग टेक्नोलॉजी से बने डिवाइस का ट्रायल जारी है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध गुलमर्ग रोपवे में खराबी आ चुकी है। हवा में अटके 300 पर्यटकों को सफल रेस्क्यू किया गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व में 2 साल बाद नजर आया टाइगर सुल्तान। जंगल सफारी के दौरान अलवर बफर जोन में सरप्राइज साइटिंग हुई। प्रयागराज में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। हीटवेव से जनजीवन प्रभावित है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के औरैया में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। गर्मी से बेहाल जब लोग हुए, मौसम विभाग ने घरों में रहने की हिदायत दी है। लखीसराय के सदर अस्पताल में बढ़ती गर्मी और हीटवेव को देखते हुए 8 बेड का एसी वार्ड तैनात किया गया है। लोगों से दोपहर में बाहर न निकलने, ज्यादा पानी और ओआरएस पीने की अपील की है। राजस्थान में अगले 3-4 दिन मौसम बेहद शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग की चेतावनी है, 27 मई तक तापमान 46 डिग्री के पार जा सकता है। झारखंड को उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे गर्मी की वजह से वीरान हो चुके हैं। पलामू प्रमंडल में पारा 44 डिग्री के पार जा चुका है। पवित्र हेमकुंड साहिब का प्रकृति ने श्वेत श्रृंगार किया है। कपाट खुलने के 2 दिन बाद यहां जोरदार बर्फबारी का दौर जारी है। हेमकुंड साहिब में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी है। मई की गर्मी के बीच श्रद्धालु यहां बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। सुकमा में ग्रामीणों का अनोखा विरोध हुआ। 10 साल से अधूरी पड़ी सड़क और गड्ढों से परेशान होकर गृहमंत्री अमित शाह को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। गंगा दशहरा पर अयोध्या में राम दरबार की स्थापना की पहली वर्षगांठ के उत्सव की जोरदार तैयारी है। कल कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राम भक्तों के लिए भी खुशखबरी है कि राम मंदिर परिसर के सभी प्रमुख मंदिर अब आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रोपवे में तकनीकी खराबी से हड़कंप मचा। हवा में 300 पर्यटक फंसे। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। टिहरी गढ़वाल के जंगलों में विकराल आग लगी है। 14 हेक्टेयर वन क्षेत्र की चपेट में आए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने काबू पाया। झारखंड के पाकुड़ में रेलवे हाई टेंशन तार की चपेट में आकर डंपर धू धू कर जल गया। चालक ने कूद कर जान बचाई। भोपाल में सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी कार में भीषण आग लगी। 1 कार 2 बाइक जलकर खाक हो गई। झांसी में यात्रियों से भरी लग्जरी बस में आग लग गई। चालक ने 30 यात्रियों की जान बचाई। नागपुर में कार डेकोरेटर दुकान में इलेक्ट्रिक डीपी में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से 5-6 गाड़ियां जलकर खाक हुई। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। महाराष्ट्र के जालना में अचानक बैंक के एटीएम में आग लगी। एटीएम खाक हो गया। लाखों के नुकसान की आशंका। गुजरात के साबरकांठा में एक मैदान में भयंकर आग लगी। ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खेड़ा के हॉस्पिटल के आईसीयू में एसी में आग लगी। अचानक आग लगने के बाद 3 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नवसारी के हिल स्टेशन के पास टोल बूथ पर दुर्घटना हुई। बाल बाल पर्यटक बचे। हादसा सीसीटीवी में कैद। मुंबई के मरीन ड्राइव पर नाकाबंदी के दौरान तेज रफ्तार मर्सिडीज ने 2 पुलिसकर्मियों को मारा। चालक को गिरफ्तार किया गया। गुजरात के राजकोट में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। 2 महिलाओं की मौत हुई। 25 घायल हुए। हादसे के दौरान 62 श्रद्धालु सवार थे। सूरत में तिरुपति मार्केट में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। मासूम बच्चे पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। हैदराबाद में 200 गिरफ्तार से गाड़ी चलाकर वीडियो पोस्ट करने वाला शख्स गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया।
जयपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी, हवा में उछलकर 20 फीट दूर गिरे। कानपुर में मामूली बाइक टक्कर को लेकर के विवाद हुआ, सरेआम पिता पुत्र की चाकू और हेलमेट से पीट पीट कर हत्या की गई, खौफनाक वीडियो सामने आया। भोपाल में नशे में धुत युवकों ने 20 सड़क पर उत्पात मचाया, तेज रफ्तार कार से राहगीरों पुलिसकर्मियों को टक्कर मारी। पटना में 20 सड़क पर पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ, झड़प हुआ दुकानदार पर, युवक ने चाकू से हमला किया। बागेश्वर में पर्यटक और टैक्सी चालक सड़क पर मारपीट का वीडियो सामने आया, वाहनों की मामूली टक्कर के बाद दोनों में विवाद बढ़ा। आरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, घर से ड्यूटी पर लौट रहे स्पेशल ब्रांच में तैनात एएसआई को स्कूल बस ने कुचल दिया।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
6: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
7: एक हिंट तो देते।
8: विक्रम!
7: हिंट
6: बड़े आराम से।
9: बस 2000
10: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
11: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
12: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
15: जेके वॉल मैक्स।
16: बेस्ट पेंट
17: जेके मैक्स।
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
19: जेके मैक्स पेंट्स।
18: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के, क्योंकि ये भाई साहब सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
7: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
5: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
10: Lion O's family, super action family.
6: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
2: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
1: आप कैसे कर लेते हो?
3: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
4: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
5: नहीं
4: और म्यूचुअल फंड्स है
5: सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: The taste of success.
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
12: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
13: ईरान को लेके काफी ज्यादा थेरीज चल रही है, जो सीज फायर अनाउंस हुआ है उसको लेके, कि ईरान शायद यूरेनियम जो है वो नहीं छोड़ेगा और देने पे वो अपनी मंजूरी नहीं देगा, और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके भी काफी चीज चल रही है। आप क्योंकि नेगोशिएट कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं आप हमें कि कहां तक पहुंचा है नेगोशिएशन?
14: मेरा मानना है कि इसके दो पहलू हैं। देखिए, इसे आपको अलग अलग करके देखना होगा। पहला मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो जो कर रहे हैं वह अवैध, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना, खतरनाक और अस्वीकार्य है, और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को यह कहना चाहिए और दुनिया के अधिकांश देश ये कह भी रहे हैं। भारत कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, हर कोई यही कह रहा है। यहां तक कि चीन ने भी पिछले हफ्ते जब हम वहां थे तब हमसे यही कहा था कि ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें कोई देश किसी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर कब्जा कर ले, उन जहाजों को उड़ा दे जो उन्हें टोल देने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, इसे सामान्य नहीं माना जा सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत और पूरी तरह से खोला जाना चाहिए, तो यह इसका पहला चरण है। दूसरा यह है कि ईरान को तीन विषयों पर गंभीरता से बातचीत शुरू करनी होगी। परमाणु हथियार न रखने का उनका वादा, उनकी संवर्धन क्षमताओं पर दीर्घकालिक प्रतिबंध और अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का क्या किया जाए। 60% संवर्धित यूरेनियम रखने का कोई कारण नहीं है जब तक कि आप इसे 90% संवर्धित यूरेनियम में परिवर्तित करके हथियार बनाना न चाहें। इन विषयों पर अभी विचार करना होगा। ये अत्यधिक तकनीकी मुद्दे हैं, इन पर काम करने में समय लगेगा और जाहिर है ईरान को इससे लाभ होगा। जाहिर है ये बातचीत कठिन होने वाली है, लेकिन दुनिया के लिए सबसे जरूरी और तत्काल कदम यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाए। लेकिन हम ऐसी व्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसमें वो टोल वसूलें और वाणिज्यिक जहाजों को उड़ाने की धमकी दें, ये जारी नहीं रह सकता।
15: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
3: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
4: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
5: What about me, Jack? What about me?
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
6: Well played, Jack. Well played.
4: Jack FM, playing what we want.
7: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
8: It's your boy,
7: just
8: Jay-Z.
7: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
9: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
10: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
11: विक्रम एक हिंट तो देते
12: विक्रम
11: हिंट
10: बड़े आराम से
13: और वही कहाँ गए थे घूमने
14: जीके मैक्स
15: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
14: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
15: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट
15: जेके मैक्स
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग
16: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है
17: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे
18: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है
19: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है
18: आप कैसे कर लेते हो
3: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ
19: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो
3: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
19: नहीं और म्यूचुअल फंड्स है
18: सही
11: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें

0: देखते हैं आम पब्लिक पे जो भजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या एक एक दो दो रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए दो रुपए बहुत मायने रखा था।
1: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही।
2: ईरान की जंग थमे 47 दिन हो गए, लेकिन हॉर्मूज संकट का ऐसा कहर कि 2 महीने बाद भी बारूदी आग की तपिश हिंदुस्तान में आवाम की जेब तक पहुंच रही है। 15 मई को पेट्रोल 3 रुपए, डीजल 3 रुपए, 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे, 23 मई को पेट्रोल 90 पैसे, डीजल 91 पैसे, और अब 25 मई की सुबह पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे, डीजल 2 रुपए 71 पैसे। 10 दिन के भीतर 4 बार में पेट्रोल 7 रुपए 38 पैसे, डीजल 7 रुपए 53 पैसे महंगा हो गया। अवाम हलकान है कि जब जंग में दाम नहीं बढ़े तो सीज फायर के बीच हर तीसरे चौथे दिन दाम क्यों बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता गिनाते हैं कि जंग से पहले तक चौथी तिमाही में तेल कंपनियों का मुनाफा 41% बढ़कर 19,470 करोड़ रुपए था, तो हजारों करोड़ रुपए महीने की कमाई करने वाली तेल कंपनियां और सरकार अब धीरे धीरे तेल की कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि कच्चा तेल जब सस्ता होता है तो सरकार और तेल कंपनियां अपनी जेब भरती हैं और महंगे कच्चे तेल का बोझ आवाम की जेब पर डालती हैं, और आंकड़े कहते हैं कि जनवरी से मार्च के बीच इंडियन ऑयल को 15,176 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, लेकिन अप्रैल और मई में 35,000 से 45,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इसी तरह जनवरी से मार्च में भारत पेट्रोलियम को 5,624 करोड़ का मुनाफा हुआ और अप्रैल मई में 18,000 से 22,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान, लेकिन अप्रैल और मई में 35,000 से 45,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इसी तरह जनवरी से मार्च में भारत पेट्रोलियम को 5,624 करोड़ का मुनाफा हुआ और अप्रैल मई में 18,000 से 22,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी जनवरी से मार्च में 4,901 करोड़ रुपए का मुनाफा मिला, लेकिन अप्रैल मई में 17,000 से 20,000 करोड़ के नुकसान का दावा है। जबकि कांग्रेस के नेता आंकड़े गिनाते हैं कि मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में सस्ते कच्चे तेल का फायदा उठाया और उस पर ऊंची दर से टैक्स वसूली करके 15-20 लाख करोड़ रुपए कमाए, जबकि बीजेपी दलील देती है कि 2005 से 10 के बीच जब कच्चे तेल का भाव $147 तक चला गया था, तब मनमोहन सिंह सरकार ने 1,48,186 करोड़ के ऑयल बॉन्ड तेल कंपनियों को दिए थे। इन पर 6.35% से लेकर 8.4% तक ब्याज देना था। तब से 10-15 साल के बीच तेल कंपनियों ने इन बॉन्ड्स को भुनाना शुरू किया, जो 2015 से 2026 तक चलता रहा। इस बीच मोदी सरकार ने 1.71 लाख करोड़ का ब्याज तेल कंपनियों को चुकाया और मूलधन मिलाकर कुल 3.20 लाख करोड़ तेल कंपनियों को देना पड़ा। ऊपर से जब ईरान में जंग छिड़ी

0: मोदी सरकार के 12 साल पूरे देश भर में अभियान चलाएगी बीजेपी, जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे केंद्रीय मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे है और वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का, एक ऐसा न्यूज बुलेटिन जिसे देखने के बाद आपको आधे घंटे के अंदर देश दुनिया की हर बड़ी खबर की जानकारी मिल जाती है। तो आज आपको बताएंगे कि बातचीत की खबरों के बीच ईरान पर अमेरिका ने दोबारा हमला आखिर क्यों किया है, साथ ही बात दिल्ली में आज क्वाड देशों की अहम बैठक पर भी होगी वो खबर भी पूरी बताएंगे। ट्रिशा केस में गिरफ्तार पति समर्थ ने क्या कुछ बोला है और सीबीआई क्या करने वाली है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही एक्टर दिलजीत दोसांझ को किसने धमकी दी है और गुलमर्ग में 6 घंटे से ज्यादा चल रहे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन में कैसे जान बची है ये खबर पर भी होगी बात। दिखाएंगे कि बॉर्डर पर कहां जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और क्या करने वाले हैं, और साथ ही खबर बकरीद से पहले यूपी में जारी फ्लैग मार्च की भी होगी। साथ ही खेल जगत की भी बात होगी, आज आईपीएल के पहले क्वालिफायर मैच किसका पड़ा भारी आपको ये भी बताएंगे। तो तमाम खबरों पर एक एक अपडेट आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले हर रोज महंगाई के नए डोज की खबर, एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक बार फिर से सीएनजी की दर में बढ़ोतरी की गई है, आज हुए इजाफे के मुताबिक सीएनजी प्रति किलो 2 रुपए महंगी हो गई है। इस हिसाब से अब दिल्ली में सीएनजी की नई दर 83.09 रुपए प्रति किलो हो गई है। कुल मिलाकर पिछले 12 दिन में सीएनजी की कीमतों में तकरीबन 6 रुपए का इजाफा हुआ है, और इस बढ़ोतरी के बाद ऑटो और टैक्सी पर भी किराए में बढ़ोतरी का दबाव बढ़ेगा और यह दबाव सीधा आम लोगों की जेब पर आएगा। इससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, अब उसके बाद सीएनजी में भी एक बार फिर से इजाफा हो गया है। 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी महंगी हो गई है। दिल्ली का हाल आपको बताते हैं, दिल्ली में पहले 81.09 रुपए पर सीएनजी थी और जो कि अब 2 रुपए का इजाफा हुआ है तो 83.09 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। तो 2 रुपए के इजाफे के साथ, और ये आपको बताया 15 मई को पहले 2 रुपए का इजाफा हुआ था, सीएनजी की दरें पहले भी बढ़ी थी, फिर 17 मई को 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद भी दाम सीएनजी के बढ़े। 23 मई एक रुपए की बढ़ोतरी, ये चौथी बार है जब सीएनजी के दाम बढ़े हैं और ऐसे में इस सब की मार सिर्फ आम आदमी को झेलनी पड़ेगी। 26 मई को 2 रुपए प्रति किलो पर सीएनजी पहुंच गई, यानी आज एक बार फिर से इजाफा हुआ है। 15 मई से 26 मई के बीच का ये अंतर आपको बता रहे, लगातार अब चौथी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं। इससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो जो लोग, आप समझिए, पेट्रोल डीजल के दाम सुनने के बाद सीएनजी पर शिफ्ट हुए होंगे, वो सोच रहे होंगे कि थोड़ा रिलीफ उनको मिलेगा, वो रिलीफ भी उनको नहीं मिल रहा क्योंकि सीएनजी के दाम भी बढ़ चुके हैं। इससे पहले दूध के दाम भी बढ़ा दिए गए, तो एक एक करके दाम अब बढ़ रहे हैं जिससे महंगाई बढ़ रही है और इसकी पूरी मार आम जनता झेलने वाली है। तो अभी एक दिन पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमत भी बढ़ाई गई, पेट्रोल के भाव 2.61 रुपए और डीजल का भाव 2.71 रुपए महंगा हो गया। तो अब आज से सीएनजी भी महंगी हुई है, वैसे 12 दिनों के अंदर चौथी बार सीएनजी की दरों में बढ़ोतरी हुई है। और हमारे सहयोगी अंशुल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से। अंशुल, अब देखिए, पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, फिर कहीं पर दूध के दाम बढ़े, अब सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं और अब लग रहा है कि ऐसी महंगाई की मार आम जनता काफी ज्यादा झेलने वाली है, और क्या लग रहा है किन चीजों के दाम अभी आगे और बढ़ सकते हैं?
2: जी, सीएनजी के दामों से बढ़ने से जो सबसे ज्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं वो लोग हैं कैब ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, क्योंकि उनका ये कहना है कि सीएनजी के दाम तो पिछले दस दिनों में चार बार बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन उनके पर किलोमीटर रेट में किसी भी तरह का इजाफा नहीं हुआ है। अगर मैं आज की आपको दरें दिखाऊं तो करीब 43 रुपए और 9 पैसे पे प्रति किलो सीएनजी आज बिक रहा है, जो आज सुबह से ही लोग लाइन लगाए हुए हैं यहाँ सीएनजी पंप पे। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो कई लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, सीएनजी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बढ़ोतरी एक के बाद एक हो रही है, आम आदमी की जेब पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। कल हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में पेट्रोल कई सालों बाद 100 पार हुआ, 102 रुपए तक पहुंचा, और आज सुबह उठते ही ये खबर आई कि

0: दोबारा सीएनजी के दामों में भी 2 रुपए का इजाफा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो इन सारी चीजों से काफी परेशान हो रही है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से इनकी मांगे हैं, अगर वो मांगे मान ली जाए तो लोगों का डेली चलना पब्लिक ट्रांसपोर्ट
1: से महंगाई का झटका आम लोगों को लगा है। चलिए अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब दुनिया भर में ऊर्जा संकट से बढ़ती कीमतों के बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की, क्योंकि दोनों देशों के बीच समझौते पर गोपनीय बातचीत की चर्चा है। लेकिन इसी बीच अमेरिकी फोर्स ने एक बार फिर से ईरान के दक्षिणी हिस्से में मिसाइल साइट्स पर हमला कर दिया है। खबरों के मुताबिक माइंस बिछाने की कोशिश कर रही ईरानी नाव को भी अमेरिकी सेना ने टारगेट किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि हमला सेल्फ डिफेंस में किया गया है। वहीं सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फोर्स के खतरे से अमेरिकी सेना की रक्षा के लिए ऐसा किया गया है। ईरान के मिसाइल साइट पर अमेरिका ने हमला किया, माइंस बिछाने की कोशिश कर रही नाव पर निशाना बनाया गया। तो अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की वजह से एक बड़ी खबर दिल्ली से भी है, क्योंकि जहां पर गंभीर वैश्विक हालात के बीच आज क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे, और वही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा का आज चौथा दिन है, ऐसे में वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। उनके साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही पश्चिमी एशिया में जारी तनाव और इससे पड़ रहे गंभीर आर्थिक असर के बीच माना ऐसा जा रहा है कि ऐसे तमाम मसलों पर बात होगी, साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो थोड़ी देर बाद हैदराबाद हाउस में ये मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में कौन कौन से देश शामिल होने वाले हैं, चलिए अब आपको वो बता देते हैं। क्वाड की इस मीटिंग में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश शामिल होंगे। मार्को रूबियो भारत दौरे पर है, वो भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। और साथ ही क्वाड शिखर सम्मेलन में आज पश्चिम एशिया में युद्ध और तनाव के बीच हालात पर चर्चा होगी, और ऊर्जा संकट और जल डमरू खोलने के विकल्पों पर भी बात होने वाली है। तो समझिए किन किन मुद्दों पर बात होगी। इसके अलावा बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और समुद्री सहयोग, साथ ही महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग और सप्लाई चेन की मजबूती, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो नई तकनीक है उन पर भी इस मीटिंग में बातचीत होने की उम्मीद की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज क्वाड की बैठक में शामिल होंगे, इससे पहले उन्होंने कल आगरा और जयपुर का दौरा किया। रूबियो अपनी पत्नी जीनत रूबियो के साथ विश्व प्रसिद्ध ताजमहल पहुंचे, और साथ ही इस भीषण गर्मी के बीच उन्होंने मुगल कालीन ऐतिहासिक स्मारक की खूबसूरती की जमकर सराहना की और इसे दुनिया में प्रेम के अनमोल खजानों में से एक भी बताया। आगरा के बाद रूबियो जयपुर के आमेर महल पहुंचे, तो जलेब चौक में उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया। साथ ही अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी रूबियो के साथ जयपुर पहुंचे और जयपुर का उन्होंने दीदार किया। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर से पेरोल मिल गई है। इस बार राम रहीम को 30 दिनों की पेरोल दी गई है। सुबह करीब 6:30 पर राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से भारी पुलिस सुरक्षा के बीच सिरसा डेरे के लिए रवाना हुए, और पुलिस काफिले के साथ उनकी रवानगी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बताया जा रहा है कि वर्ष 2020 से अब तक राम रहीम को 16वीं बार पेरोल का फायदा मिला। इससे पहले जनवरी में उसे 40 दिनों की पेरोल दी गई थी, जिसके दौरान वो सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रहा था। और राम रहीम को लगातार मिल रही पेरोल को लेकर हरियाणा सरकार पर विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों की ओर से सवाल भी उठते रहे हैं। वहीं डेरा सच्चा सौदा के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में बड़ी संख्या में अनुयायी भी मौजूद है। बात कर लेते हैं टुशा केस की। इस वक्त की एक बड़ी

0: 40 दिनों की पेरोल दी गई थी, जिसके दौरान वो सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रहा था। और राम रहीम को लगातार मिल रही पेरोल को लेकर हरियाणा सरकार पर विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों की ओर से सवाल भी उठते रहे हैं। वहीं डेरा सच्चा सौदा के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में बड़ी संख्या में अनुयायी भी मौजूद है। बात कर लेते हैं टुशा केस की। इस वक्त की एक बड़ी खबर, सीबीआई ने टुशा केस में औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर ली है। भोपाल के कटारा हिल्स थाने में पहले दर्ज मामले को रीरजिस्टर किया गया। और
1: टुशा केस में अब एक्शन तेज हो गया है। सोमवार देर रात पुलिस की एक टीम टुशा के पति समर सिंह को लेकर घर पहुंची। करीब 2 घंटे तक वकीलों की मौजूदगी में घर में पूछताछ हुई। पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर हादसे वाले दिन वहां क्या हुआ था। घर से निकलते वक्त समर्थ पूरी तरह से खामोश था। आज तक के सवालों पर समर्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। सीबीआई ने टुशा केस मध्य प्रदेश पुलिस से टेक ओवर कर लिया है। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। माना जा रहा है कि आज से सीबीआई की जांच इस मामले में शुरू होगी।
2: जैसे ही मान लो सीबीआई को केस हैंड ओवर होता है, तो जैसे ही हमारे पास खबर आएगी हम डायरी उनको सौंप देंगे।
1: टुशा 12 मई को अपने ससुराल में फांसी पर लटकी हुई पाई गई थी। भोपाल पुलिस ने दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत टुशा के पति समर सिंह और सास गिरिवाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की बात कही। साथ ही दोनों पक्षों को सार्वजनिक रूप से कुछ कहने की जगह जांच एजेंसियों के सामने बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो वही पंजाबी सिंगर और लुधियाना की मेयर इंद्रजीत कौर के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और धमकी ईमेल के जरिए दी गई, जिसमें लिखा है कि जो दिलजीत दोसांझ का सपोर्ट करेगा उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। दरअसल कुछ वक्त पहले दिलजीत के मैनेजर के घर पर भी फायरिंग की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली थी, जिसके बाद अब ये नई धमकी दी गई।
3: दिलजीत दोसांझ, पंजाब का वो नाम, वो चेहरा जिसकी पहचान अब वैश्विक हो चुकी है। पंजाब में दिलजीत दोसांझ के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिलजीत के साथ साथ लुधियाना की मेयर के ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें लिखा है कि लुधियाना की मेयर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के ठिकानों पर जोरदार धमाके किए जाएंगे। इस ईमेल में जो लिखा गया वो आपको बताते हैं। सुबह करीब 7:28 पर आई ईमेल का सब्जेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट मेयर ऑफिस लुधियाना रखा गया है। ईमेल में धमाकों का समय भी निर्धारित किया गया है। दोपहर 1:11 पर लुधियाना मेयर पर हमले की धमकी दी गई। इसके साथ ही रात 9:11 पर दिलजीत दोसांझ के घर पर धमाके की चेतावनी दी गई। ईमेल में 1984 के सिख दंगों का हवाला देते हुए खून का बदला खून से लेने की बात लिखी गई है। धमकी देने वाले ने लिखा है कि 6 जून तक बम धमाकों के जरिए इन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईमेल के अंत में इसे खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजा बताया गया है। इनमें 2 नाम लिखे गए हैं, इंजीनियर गुरनाक सिंह यानी रुकन शाहवाला, डॉक्टर गुरनिवैर सिंह यानी खान राजादा। इससे पहले भी दिलजीत दोसांझ को धमकियां मिल चुकी हैं। सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर फायरिंग हो चुकी है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग का दावा किया। आज तक ब्यूरो।
0: और अब खबर गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि देश के अलग अलग बॉर्डर इलाकों का दौरा कर सुरक्षा की समीक्षा करने निकले हैं। दौरे की शुरुआत आज राजस्थान के बीकानेर से हो रही है और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ की सीमा चौकी साचू का दौरा करेंगे और यहां पर वो सीमा पर तैनात जवानों से संवाद करेंगे और सुरक्षा बलों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह बीकानेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके तहत प्रदेश में अलग अलग बॉर्डर से सटे 184 गांव को सड़क और 4G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। रुक करते एक बड़ी खबर का। दरअसल कर्नाटक की सियासत से जुड़ी एक खबर है, क्योंकि आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बड़ा फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम

0: बाद। दोनों दिल्ली में हैं और सुबह 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह मीटिंग तय है, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2028 चुनाव से पहले सत्ता में फेरबदल किया जा सकता है और डीके शिवकुमार को भी कमान देने पर विचार किया जा सकता है। तो वहीं बकरी ईद को लेकर सख्त गाइडलाइंस के बीच यूपी के संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहां पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बकरी ईद से पहले संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया। योगी सरकार के सख्त गाइडलाइंस को देखते हुए वहां प्रशासन अलर्ट है। डीएम, एसपी और अन्य तमाम बड़े अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मोर्चा संभालते दिखे। वहीं पैदल मार्च के दौरान डीएम और एसपी ने मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के दिशा निर्देश दिए।
1: बकरा ईद को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त डीएम और एसपी के साथ भारी पुलिस फोर्स के साथ जो संभल की सड़कों पर पैदल मार्च किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त गाइडलाइंस जारी हुई बकरा ईद के त्यौहार को लेकर के, ऐसे में त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक सड़कों पर उतरे हैं। और आप यहाँ जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो रैपिड रिएक्शन फोर्स और पीएसी के साथ ही जो सिविल पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर इस वक्त पैदल मार्च करते हुए आपको यह नजर आएंगे। और इसी तरह से जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ये पूरा पैदल मार्च यहां पर जो किया जा रहा है। और हालांकि जिस तरीके से संभल में जो है त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर उतरे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि पूरी तरह से जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
0: और अब अगली खबर कश्मीर के गुलमर्ग की, जहां पर गोंडोला राइड के दौरान करीब 300 पर्यटक फंस गए। तकनीकी खराबी की वजह से बेहिसाब संकट बढ़ गया। फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए कई रेस्क्यू टीमें लगातार 6 घंटे से ज्यादा वक्त तक जुटी रहीं। देर रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सका।
2: गुलमर्ग में देश विदेश के पर्यटक पहुंचकर सबसे पहले गंडोला राइड करते हैं। 25 मई को भी कुछ वैसा ही माहौल था। दोपहर में गंडोला के केबिन में बैठकर पर्यटक नजारे देखने निकले, लेकिन तभी गंडोला में कुछ खराबी आ गई। उसका गियर बॉक्स खराब हो गया। बेस से पहले चरण तक जाने वाली 65 केबल कारें बीच रास्ते में ही फंस गई। देखते ही देखते 300 से ज्यादा लोग फंस गए। उनकी जान हवा में ही अटकी रही। खबर मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एसओजी के जवानों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य तेज किया। सीढ़ी के सहारे सेफ्टी गियर्स के साथ केबिन में फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया।
3: वापस चले जा।
2: सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में राहत कार्य चलता रहा। करीब 6.5 घंटे की मशक्कत के बाद कामयाबी मिली। सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया।
4: माल फंक्शन हुआ था इसमें 12-1 बजे के बीच में, और जब तक ये इन्फॉर्मेशन आई 2 बजे से रेस्क्यू एफर्ट शुरू हुआ। हालांकि मौसम काफी खराब रहा, बीच बीच में काफी हेल स्टॉर्म हुआ, बारिश हुई तेज, तो डिफिकल्ट था, लेकिन सबने अच्छा जोश दिखाया इसमें करके।
2: रात तक पर्यटकों को अस्थायी कैंप में पहुंचाया गया तो उन्होंने राहत की सांस ली। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ वीर फरीद, श्रीनगर आज तक।
0: तो सेना और पूरी टीम रेस्क्यू में बेहद ही मुश्किल हालात में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और जबकि जो लोग मुश्किल में थे तब सेना ने किस तरह मदद की, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं।
5: सर, सर, सर, जय हिंद, सब ठीक है, जय हिंद, सब ठीक है। वो भी आ गया,
6: देखो
5: वो आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया, ये
6: कोई टेंशन नहीं,
5: सारे आ गए, बस
6: मुझे नहीं पता
5: सब,
6: आप
5: स्ट्रेचर भी आ गया,
6: कोई टेंशन नहीं, कोई
5: सर, सर, सर, आप ठीक हो, ठीक हो, धरती के ऊपर बैठे हैं, क्या डर है, भारत माँ की डॉटर हो, क्या डर है,
7: आजा आजा आजा, कोई
5: ना, जय हिंद।
0: और अब खबर चंडीगढ़ की, जहां पर एक ही घर में 3 गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद तबाही मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों की दीवारें तक हिल गई है और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट की चपेट में आकर कुछ लोग जख्मी भी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घर में धमाके हुए वहां करीब 1 दर्जन गैस सिलेंडर लगे हुए थे। आशंका है कि यहां गैस सिलेंडर को ब्लैक से बचाने के लिए ब्लैक में बेचने का अवैध कारोबार चल रहा था और जो फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वही पश्चिम बंगाल के मालदा में राज्य का पहला होल्डिंग सेंटर शुरू हो गया है। इंग्लिश बाजार शहर के चंदन पार्क स्थित ये केंद्र पूरे मालदा जिले का एकमात्र होल्डिंग सेंटर है और रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर में लाकर हिरासत में रखा गया। इसमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं और इस सुविधा को कड़ी सुरक्षा घेरे में रखा गया और परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही इस जगह पर 12 पुलिसकर्मी और सिविल डिफेंस के स्टाफ की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही शुभेंदु सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को डिपोर्ट करने के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए थे। वही जिला प्रशासन को इसके निर्देश दिए गए और अब उस पर अमल भी होने लगा है। बात गर्मी की कर लेते हैं। देश भर में गर्मी का प्रचंड प्रहार जारी है। उत्तर भारत से लेकर मध्य और पश्चिम भारत तक आसमान से आग बरस रही है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राजस्थान का कोटा 45.6 डिग्री पर तप रहा है तो जबकि महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी 47.6 डिग्री के साथ देश का सबसे गर्म शहर बन गया है। बिजली कटौती, पानी की किल्लत, गर्म हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी है। यूपी के कई शहर में हालात बेहाल है तो दिल्ली में 14 साल बाद सबसे गर्म रात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भीषण हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और अब खबर हस्तियों को मिले सम्मान की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल, कला, साहित्य और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने वाली शख्सियतों को कल पद्म सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर दिवंगत लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तो हेमा मालिनी और उनकी बेटी यहाना भावुक हो गए।
7: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय।
8: भावुकता से भरी एक शाम, विरासत और राष्ट्रपति भवन में तालियों की गड़गड़ाहट। इस शाम का सबसे भावुक पल जब दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंखों में आंसू लिए हेमा मालिनी ने दिवंगत सुपरस्टार की ओर से ये सम्मान ग्रहण किया। वहीं दर्शकों के बीच बैठी बेटी अहाना देओल भी भावुक हुई और आंसू छलकने लगे। क्रिकेट के मैदान से राष्ट्रपति भवन तक भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके निडर बल्लेबाजी और परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए उन्हें मिला है।
7: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
8: डॉक्टर एन राजम को भी सम्मानित किया गया। भारतीय शास्त्रीय वायलिन में उनके आजीवन योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और समारोह का एक अविस्मरणीय दृश्य पारंपरिक मार्शल आर्ट गुरु के पजानिवेल ने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सिनेमा जगत के दिग्गजों और खेल जगत के हस्तियों से लेकर लोक कलाकारों, पत्रकारों और शास्त्रीय संगीत के उस्तादों तक पद्म पुरस्कार 2026 ने उन असाधारण लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने गौरवशाली भारत की कहानी लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: बात कर लेते हैं अब आईपीएल के। आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 1 में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी और इतिहास भी क्वालिफायर 1 जीतने वाली टीम के पक्ष में रहा। हालांकि मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि मौसम विभाग ने 80% बारिश की संभावना जताई है। अगर मुकाबला धुलता है तो पॉइंट्स टेबल में टॉप रहने के कारण आरसीबी सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। विराट कोहली, शुभमन गिल, साई सदर्शन और रबाड़ा जैसे स्टार खिलाड़ियों पर सभी की नजरें रहेंगी। वहीं धर्मशाला के बल्लेबाजों के लिए मददगार पिच पर एक और हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिल सकता है। चलिए वक्त हो गया है सुपरफास्ट 8 न्यूज का। वही सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में 3 आवारा कुत्तों ने किया एक मासूम बच्चे पर कातिलाना हमला। गुजरात के सपुतारा के पास मालेगांव टोल बूथ पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी जिसके बाद ट्रैक्टर कार से जाकर गिरा। झारखंड के पाकुड़ में बड़ा हादसा टल गया जब रेलवे के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक डंपर में अचानक आग लग गई। भोपाल में रिहायशी सोसाइटी की पार्किंग में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, देखते ही देखते आग ने पास में खड़ी एक दूसरी कार को और दो बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। उत्तर प्रदेश के झांसी में यात्रियों से भरी एक लग्जरी बस में अचानक से लगी आग, बस में सवार थे करीब 30 यात्री। नागपुर के एनआईटी मार्केट के पास की एक दुकान में लगी भयंकर आग, आग ने पास की कार डेकोरेशन दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक मादा हथिनी अपनी मृत शावक को छोड़ने को तैयार नहीं हुई। हथिनी लंबे समय तक अपने बच्चे को सूंड से उठाकर उसे जिंदा करने की कोशिश करती रही। उत्तराखंड के पहाड़ी धामों में मौसम ने ली करवट, सोमवार को बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
9: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना, टंकी मतलब।
10: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
11: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
13: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
16: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
2: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
3: विक्रम एक हिंट तो देते।
4: विक्रम
3: हिंट
5: बड़े आराम से।
6: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
7: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
6: आप कैसे कर लेते हो?
8: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
9: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
10: नहीं
9: और म्यूचुअल फंड्स है
10: सही।
11: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
12: और वही कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट फुटी
14: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट
14: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
2: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खा।
3: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
4: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
7: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
10: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
11: लाइक आई सेड बिफोर, वी बेटर होल्ड दिस इन।
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
13: इन एसोसिएशन विद
14: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
15: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
13: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zuba kesri.
16: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you? Summer cool cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life banaye wonderful.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब वेक्टर्स।
1: यूपी के उन्नाव से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली से गोरखपुर जा रही यात्रियों से भरी स्लीपर बस पलट गई। हादसे में 6 लोगों की वहीं पर मौत हो गई, 19 लोग घायल हैं और कई गंभीर रूप से घायल यात्रियों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती भी कराया गया है। पुलिस के मुताबिक चालक को नींद आने की वजह से बस रेलिंग से जाकर टकरा गई और पलट गई। ड्राइवर को नींद आने की वजह से पूरा हादसा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का।

सीएनजी की कीमतों ने फिर बड़ी उड़ान, 12 दिन में 6 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी, उपभोक्ताओं की जेब पर बढ़ा सक। राजधानी में सीएनजी उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, लगातार दूसरी बढ़ोतरी के बाद कीमत 83.09 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। पेट्रोल डीजल के दाम पर उसके बाद सीएनजी ने बढ़ाई चिंता, 12 दिनों में दाम 77.09 रुपए से बढ़कर 83.09 रुपए प्रति किलो रुपए हुए। बीकानेर से गृहमंत्री अमित शाह का बॉर्डर दौरा शुरू, सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत, 184 गांव सड़क और 4G नेटवर्क से जुड़ेंगे। आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2026, वहीं एस जयशंकर की अध्यक्षता में होगी अहम बैठक। दिल्ली पहुंचे प्रतिनिधि, 9 बजे हैदराबाद हाउस में अहम बैठक, 9:50 पर संयुक्त प्रेस बयान और 11 बजे प्रतिनिधिमंडलों की रवानगी। मार्को रूबियो, पेनी वोंग और तोशिमित्सु मोतेगी सहित क्वाड देशों के मंत्री इंडो पैसिफिक सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग पर करेंगे चर्चा। मुक्त, सुरक्षित और स्थिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर रहेगा फोकस। चीन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और श्रीलंका के पास हालिया घटनाक्रम पर भी मंथन होने की संभावना। दुबई क्वाड बैठक के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं और पीएम मोदी से संभावित मुलाकातों पर भी नजर। साल के आखिर में क्वाड शिखर सम्मेलन की तैयारी तेज। वेस्ट एशिया तनाव पर सरकार का भरोसा, हालात सुधरे तो 4 से 5 दिन में सप्लाई सामान्य। संसदीय समिति को केंद्र का आश्वासन, ऊर्जा और उर्वरक संकट का फिलहाल कोई खतरा नहीं। हॉर्मुज मार्ग पर तनाव के बीच भारत तैयार, 78 दिन से ज्यादा का ऊर्जा भंडार मौजूद। वेस्ट एशिया संकट से निपटने की तैयारी पूरी, वैकल्पिक आयात और सप्लाई प्लान सक्रिय। तेल शिपिंग और सप्लाई पर सरकार सतर्क, मंत्रालयों के बीच लगातार समन्वय जारी। तेल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर बोले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा ईंधन पर टैक्स घटाने से सरकार को करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, बोले सरकार चुपके चुपके काट रही है जनता की जेब। देश में इबोला को लेकर हाई अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इबोला वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार सख्त, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों के मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील की। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त कार्रवाई, केंद्र और एनटीए को नोटिस भेजा, एनटीए भंग करने वाली अर्जी पर मांगा जवाब। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार पर साधा निशाना, एनटीए को नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बताते हुए पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मांगा इस्तीफा। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई 12वीं के मूल्यांकन में गड़बड़ी और नीट परीक्षा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होने के लायक नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और ओएसएम प्रोसेस खत्म करने की मांग की। साथ ही बोले कि सीबीएसई मूल्यांकन में गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय कर दिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के इस्तीफा देने वाले 3 बागी विधायक टीवीके नेता से मिले, विजय की पार्टी टीवीके में हुए शामिल। तमिलनाडु सरकार में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का फेरबदल, टीएस अनबू एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किए गए। कोलकाता में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दूसरी बार लगाया जनता दरबार, हजारों लोगों की सुनी फरियाद। कोलकाता के सॉल्ट लेक में मार्केट में रंगदारी के आरोपों के बाद टीएमसी विधायक की पिटाई, पुलिस ने हिरासत में लिया। आईएएस नीलम मीणा पश्चिम बंगाल के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त, मनोज कुमार अग्रवाल बने मुख्य सचिव। शिशा केस की जांच जल्द शुरू करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भोपाल पहुंची सीबीआई, परिवार को मीडिया में बोलने के बजाय एजेंसी के सामने बात रखने की सलाह। शिशा केस में रिटायर्ड जज सास को हाईकोर्ट का नोटिस, परिजनों के वकील बोले जांच में सहयोग नहीं कर रही सास गिरीबाला। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को वीवीआईपी इलाके में मिला बंगला, दिल्ली में कामराज लेन स्थित बंगला नंबर 6 आवंटित। पंजाब निकाय चुनाव में बैलेट पेपर इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। जमानत पर चल रहे आप पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को फिर से बढ़ी उनकी मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने भेजा समन। दिल्ली के जंतर मंतर पर 2024 में प्रदर्शन करने के मामले में महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा दोषी करार, सजा पर 5 जून को होगी बहस। बकरीद को लेकर वक्फ बोर्ड ने जारी किए सख्त निर्देश, कहा खुले में कुर्बानी ना दें, सभी की भावनाओं का करें सम्मान। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को लेकर बजा बिगुल, विधान परिषद की 17 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव से पहले महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान, बीजेपी शिवसेना और एनसीपी के बीच 17 सीटों पर सहमति बनाने की कोशिशें जारी। महाराष्ट्र में पश्चिम एशिया के तनाव के कारण ईंधन की कमी की अफवाहों के बीच पैनिक बाइंग के चलते डीजल की बिक्री 52% और पेट्रोल की 23% बढ़ी। नीट पेपर लीक केस में दिल्ली कोर्ट में आरोपियों की पेशी, पुणे से गिरफ्तार केमिस्ट्री टीचर पीवी कुलकर्णी और उसकी पुलिस कस्टडी 2 दिन के लिए और बढ़ाई गई।
नीट पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा को सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, पूछताछ के बाद 6 दिन की हिरासत में भेजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2026 के पद्म पुरस्कार किए वितरित, पहले चरण में 66 हस्तियों को किया गया सम्मानित। भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान समारोह में सिनेमा संगीत और थिएटर जगत की मशहूर हस्तियों को किया गया सम्मानित, धर्मेंद्र का पद्म विभूषण सम्मान लेते वक्त भावुक हुई हेमा मालिनी। भारतीय महिला क्रिकेट को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली विश्व कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पुरस्कार पाकर बेहद खुश दिखी। राजस्थानी लोक कलाकार तागाराम भील को भी पद्मश्री सम्मान, तागाराम भील ने अलगोजा वादन को दी ग्लोबल पहचान। इस साल भारत सरकार ने 131 पद्म सम्मानों की घोषणा की है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल। हिमाचल में 28-29 मई को कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। मौसम विभाग ने 31 मई तक प्रदेश में अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। प्री मॉनसून सीजन में राज्य में अब तक सामान्य से 13% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को राहत देंगे एसी हेलमेट, थर्मोकूलिंग टेक्नोलॉजी से बने डिवाइस का ट्रायल जारी। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध गुलमर्ग रोपवे में आई खराबी, हवा में अटके 300 पर्यटकों का सफल रेस्क्यू। सरिस्का टाइगर रिजर्व में 2 साल बाद नजर आया टाइगर सुल्तान, जंगल सफारी के दौरान अलवर बफर जोन में हुई सरप्राइज साइटिंग। प्रयागराज में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा, हीटवेव से जनजीवन प्रभावित, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। यूपी के औरैया में 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा, गर्मी से बेहाल हुए लोग, मौसम विभाग ने दी घर में रहने की हिदायत। लखीसराय के सदर अस्पताल में बढ़ती गर्मी और हीटवेव को देखते हुए 8 बेड का एसी वार्ड किया गया तैयार, लोगों से दोपहर में बाहर न निकलने की लगातार दी जा रही है सलाह। राजस्थान में अगले 3 से 4 दिन मौसम रहेगा बेहद ही गर्म, मौसम विभाग की चेतावनी 27 मई तक तापमान 46 डिग्री तक जा सकता है। झारखंड को उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे गर्मी की वजह से वीरान हुए, पलामू प्रमंडल में पारा 44 के भी पार। हेमकुंड साहिब का प्रकृति ने किया श्वेत श्रृंगार, कपाट खुलने के 2 दिन बाद ही यहां पर जोरदार बर्फबारी का दौर जारी। हेमकुंड साहिब में चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, मई की गर्मी के बीच श्रद्धालु यहां पर बर्फबारी का ले रहे आनंद। सुकमा में ग्रामीणों का अनोखा विरोध, 10 साल से अधूरी पड़ी सड़क और गड्ढों से परेशान होकर गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। गंगा दशहरा पर अयोध्या में राम दरबार की स्थापना की पहली वर्षगांठ का उत्सव, जोरदार तैयारी, कल कई धार्मिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। राम भक्तों के लिए खुशखबरी, राम मंदिर परिसर के सभी प्रमुख मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रोपवे में तकनीकी खराबी से हड़कंप, हवा में फंसे करीब 300 पर्यटक कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। टिहरी गढ़वाल के जंगलों में लगी भयंकर आग, 14 हेक्टेयर वन क्षेत्र चपेट में आया, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने पाया काबू। झारखंड के पाकुड़ में रेलवे के हाईटेंशन तार की चपेट में आकर डंपर धू धू कर जल उठा, चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई। भोपाल में सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी कार में लगी भयंकर आग, एक कार और 2 बाइक जलकर खाक हुई। झांसी में यात्रियों से भरी लग्जरी बस में भयंकर आग लगी, चालक ने बचाई 30 यात्रियों की जान। नागपुर में कार डेकोरेट दुकान में इलेक्ट्रिक डीपी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से 5 से 6 कार जलकर राख हुई, हुआ लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के ज्वाला में अचानक से बैंक के एटीएम में लगी भयंकर आग, एटीएम जलकर खाक हुआ, लाखों का नुकसान। गुजरात के साबरकांठा के एक मकान मैदान में भयंकर आग लगी, ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। खेड़ा के एक हॉस्पिटल के आईसीयू में एसी में लगी अचानक से आग, 3 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। नवसारी के हिल स्टेशन के पास टोल बूथ पर दुर्घटना हुई, बाल बाल बचे पर्यटक, हादसा सीसीटीवी में हुआ कैद। मुंबई के मरीन ड्राइव पर नाकाबंदी के दौरान तेज रफ्तार मर्सिडीज ने 2 पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर, चालक गिरफ्तार। गुजरात के राजकोट में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने की वजह से बड़ा हादसा, 2 महिलाओं की मौत और 25 घायल, हादसे के दौरान कुल 62 श्रद्धालु थे सवार। सूरत में तिरुपति मार्केट में आवारा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्चे पर हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। हैदराबाद में 200 की रफ्तार से गाड़ी चलाकर वीडियो पोस्ट करने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जयपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को मारी भयंकर टक्कर, हवा में उछलकर 20 फीट दूर गिरे, दोनों की हालत गंभीर। कानपुर में मामूली बाइक टक्कर को लेकर विवाद, सरेआम पिता पुत्र की चाकू और हेलमेट से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, खौफनाक वीडियो आया सामने। भोपाल में नशे में धुत युवकों ने बीच सड़क मचाया उत्पात, तेज रफ्तार कार से राहगीरों और पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर। पटना में बीच सड़क पैसे के लेन देन को लेकर विवाद में हुई झड़प, दुकानदार ने युवक पर चाकू से किया हमला। बागेश्वर में पर्यटक और टैक्सी चालक में सड़क पर मारपीट, वाहनों की मामूली टक्कर के बाद बढ़ा विवाद, जमकर चले लात घूंसे। आरा में दर्दनाक सड़क हादसा, घर से ड्यूटी पर लौट रहे स्पेशल ब्रांच में तैनात एएसआई को स्कूल बस ने कुचला, अस्पताल पहुंचने से पहले गई जान।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। मेष राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

आपके योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मकर राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, परिवार में मंगलकारी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
2: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
3: विक्रम एक हिंट तो देते।
4: विक्रम
3: हिंट
5: बड़े आराम से।
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
9: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
10: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
11: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
10: आप कैसे कर लेते हो?
12: मैं धीरज को अपने साथ रखता।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
4: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
5: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
6: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
5: आप कैसे कर लेते हो?
7: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
6: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
8: नहीं
6: और म्यूचुअल फंड्स है
8: सही।
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
10: इन एसोसिएशन विद
11: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
12: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
10: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
13: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
14: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
15: इस हफ्ते का मंगलवार आ रहा है तो 7 दिन पुरानी ये तस्वीरें दोबारा याद आ गई हैं। पिछले हफ्ते बड़े मंगलवार को लखनऊ में अखिलेश यादव भंडारे का प्रसाद बांटते नजर आए थे। हिंदू आस्था को सार्वजनिक करने की समाजवादी परिवार की ऐसी तस्वीरें राजनीति में एक तरह से दुर्लभ है, और इसीलिए जहां एक और सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव यूपी में 2027 के चुनाव के पहले मुस्लिम वोटों के समीकरणों के साथ बीजेपी के हिंदुत्व को रोकने का दांव चल रहे हैं। यहां ये भी सनद रहे कि बड़े मंगलवार पर भंडारे का प्रसाद बांटने के अगले ही दिन अखिलेश यादव ने अपने PDA कार्ड पर ऑडिट वाला दांव चला था, जिसमें उन्होंने जातीय भेदभाव का आरोप दोहराया था।
16: अगर वंचित समाज का कोई व्यक्ति प्रोग्रेसिव डिसीजन लेता है, लैपटॉप बांटता है, एक्सप्रेसवे बनवाता है, डायल 100 बनवाता है या अन्य वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करता है, तो उसका आवाज गंगा जल से धुलवाया जाता है।
15: ये वही अखिलेश हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज के खिलाफ सख्ती को ये कहकर चुनौती दी है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है। उधर योगी आदित्यनाथ बकरीद पर सड़क पर नमाज को रोकने के लिए बेहद मुस्तैद दिखते हैं। पिछले हफ्ते सड़क पर नमाज को लेकर योगी का ये बयान सुर्खियों में था।
17: लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है।

0: बातचीत अच्छी चल रही है, इस बार बिग डील या नो डील। मिडल ईस्ट में बारूदी आहट के बीच दिल्ली में आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक, पश्चिमी एशिया के ताजा हालात को देख हिंद प्रशांत क्षेत्र पर होगा फोकस। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार पहुंचे दिल्ली, नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच सुबह 11 बजे आज कांग्रेस आलाकमान से मीटिंग, मुख्यमंत्री बोले एजेंडा पता नहीं। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे, देश भर में अभियान चलाएगी बीजेपी, जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे केंद्रीय मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, घड़ी भी 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की कुछ झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। जब जमीन से 500 फीट ऊपर अटकी करीब 300 जिंदगियां, तो कैसे देवदूत बनकर आए सेना के जवान, दिखाएंगे आपको गुलमर्ग में चला रेस्क्यू ऑपरेशन अब से कुछ ही देर बाद। कृषा मामले में कहां तक पहुंची है जांच, घर लेकर समर्थ से पूछताछ, इस खबर पर भी होगी हमारी नजर। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म भूषण सम्मान, सम्मान लेते वक्त भावुक हुई हेमा मालिनी और उनकी बेटी आहना। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। महंगाई के नए झटके के साथ किश्तों में महंगाई आ रही है और आज इसकी एक और किश्त आ गई है। एक बार फिर से सीएनजी की दरों में बढ़ोतरी की गई है, आज से दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 2 रुपए महंगी हो गई है। इस हिसाब से अब दिल्ली में सीएनजी की नई दर 83.09 रुपए प्रति किलो हो गई है। कुल मिलाकर पिछले 12 दिन में सीएनजी कीमतों में 6 रुपए का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद ऑटो और टैक्सी पर भी किराए में बढ़ोतरी का दबाव बढ़ेगा और ये दबाव सीधा आम लोगों की जेब पर आएगा। तो पहले की कीमत हम आपको दिखा रहे हैं 81.09 रुपए थी, अब कीमत 2 रुपए बढ़कर 83.09 रुपए हो गई है। ये दिल्ली की कीमतें हम आपको दिखा रहे हैं, इजाफा 2 रुपए का है। 15 मई को 2 रुपए बढ़ाए गए थे और एक बार फिर से आज 2 रुपए का इजाफा प्रति किलो कर दिया गया है। 17 मई को भी 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, 23 मई को 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई, कुल मिलाकर अब तक 4 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है। अंशुल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंशुल, जाहिर तौर पर सीएनजी का महंगा होना माल ढुलाई पर असर डालेगा, रोजमर्रा के सामान जो है वो महंगे हो जाएंगे और साथ ही ऊबर ओला जो तमाम टैक्सी सीएनजी पर पड़ती है उनकी कीमतों पर भी प्रभाव पड़ेगा।
3: जी बिल्कुल, और यही एक सबसे बड़ी वजह है जिसके वजह से जो लोग हैं जो ओला उबर चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान है। उनका ये मानना है कि जिस तरीके से सीएनजी के रेट में पिछले 12 दिन में करीब 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, सीधा सीधा असर उन पर पड़ रहा है और किसी भी तरह से सरकार ने या इनकी कंपनियों ने जो पर किलोमीटर फेयर है उसको नहीं बढ़ाया। अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊं तो दिल्ली के सीएनजी पंप में सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से ये दाम बढ़ा है हर आदमी कहीं ना कहीं इससे परेशान है और आने वाले दिनों में जैसे ये संकट चल ही रहा है युद्ध की वजह से ये दामें और बढ़ सकते हैं। और अगर कंपनियों ने ये फैसला लिया कि इनका पर किलोमीटर कॉस्ट भी बढ़ाया जाए तो एक बार फिर आम आदमी की जेब पे काफी असर पड़ सकता है। तो अब ये देखना होगा कि भारत सरकार कैसे इस संकट से जनता को बाहर निकालती है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिलीफ जो है वो दे पाए, क्योंकि पिछले 12 दिनों में 6 रुपए तक सीएनजी बढ़ना कहीं ना कहीं हर आदमी की जेब पे काफी ज्यादा असर डाल रहा है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, जनता पर महंगाई मैन, मोदी का चाबुक फिर चला है, ये लिखा गया है। सीएनजी 2 रुपए महंगी कर दी गई है, पिछले 12 दिन में सीएनजी में 6 रुपए का इजाफा हुआ है, कब कब बढ़े दाम ये आपको दिखा देते हैं। 15 मई 2 रुपए, 18 मई 1 रुपए, 23 मई 1 रुपए और 26 मई को 2 रुपया बढ़ाया गया और नरेंद्र मोदी अपने अमीर दोस्तों के लिए जनता को लूट रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने महंगाई विस्फोट के लिए अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि भूखे पेट भजन ना होई गोपाला। मनीष तिवारी ने आगे लिखा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन सही कह रही हैं कि 3 F का संकट है, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज, ये पिछले 12 साल में अर्थव्यवस्था के घोर कुप्रबंधन का प्रभाव है। पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर।

0: है क्योंकि पिछले 12 वर्ष में आयात पर निर्भरता बढ़ गई है। 88% कच्चे तेल का आयात किया जाता है। उर्वरक आयात 2025-26 के लिए 18 अरब अमेरिकी डॉलर अनुमानित है। 2013-14 में ये लगभग 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर था। विदेशी मुद्रा 1 अमेरिकी डॉलर 95.32 रुपए की है, जबकि 16 मई 2014 को 58.50 रुपए थी। और आज की दूसरी बड़ी खबर जिस पर दिन भर नजर रहेगी वो है पश्चिम एशिया युद्ध संकट के बीच दिल्ली में कौन विदेश मंत्रियों का सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अलावा ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मुत्सू मोटेगी शिरकत करेंगे। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव और इससे पड़ रहे गंभीर आर्थिक असर के बीच माना जा रहा है कि ऐसे तमाम मसलों पर बात होगी, साथ ही प्रशांत हिंद क्षेत्र को लेकर भी चर्चा की जाएगी। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, युद्ध पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन इसके साथ ही जब विदेश मंत्री बैठ रहे हैं भारत और साथ ही अमेरिका के, किस तरह से परस्पर रिश्ते बरकरार रह सकते हैं जब एक तरफ अमेरिका कई बार फेवरेबल बातें पाकिस्तान के लिए बोलता है?
1: देखिए, द्विपक्षीय एजेंडा नहीं है नेहा, इसके अंदर ये बहुपक्षीय मुलाकात है जिसके अंदर क्वाड के विदेश मंत्री मौजूद रहेंगे। मेरे पीछे जो आप हैदराबाद हाउस देख रही हैं, अब से कुछ देर बाद यहीं पर वो बैठक शुरू होनी है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक जुलाई के बाद ये पहली बार हो रही है। जुलाई 2025 में पिछली बैठक हुई थी और उसके बाद अब ये बैठक करीब करीब एक साल बाद आयोजित हो रही है। और इस बैठक के अंदर महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि पश्चिम एशिया के इस संकट के बीच में, क्योंकि इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है, हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है, जो चोक पॉइंट्स हैं, आखिर उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी समुद्री जो आवाजाही है, माल ढुलाई है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक्स है, उसको सुनिश्चित करना ही एक प्रमुख उद्देश्य था क्वाड का। और उसके नजरिए से देखा जाए तो जो इस समय पश्चिम एशिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से जो संकट इस समय चल रहा है उसको कैसे निदान किया जा सकता है, क्वाड के विदेश मंत्री जाहिर तौर पर विदेश मंत्री मार्को रूबियो से यह सुनना चाहेंगे कि आखिर अमेरिका क्या कर रहा है, क्या फॉर्मूला है। और साथ ही क्वाड के ये साझेदार जो हैं, ये चीन के दबदबे और चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है खासतौर पर हिंद प्रशांत के क्षेत्र के अंदर, उसकी काट मिलकर कैसे की जा सकती है, जो पूर्वी एशिया का इलाका है वहां पर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, आपसी साझेदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है, किसी मानवीय संकट के दौरान रेस्पॉन्स मैकेनिज्म कैसे बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही क्रिटिकल मिनरल, क्रिटिकल सप्लाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये तमाम मोर्चे हैं जिनके ऊपर मिलकर ये क्वाड के देश पहले भी संकल्प जता चुके हैं कि वो मिलकर काम करना चाहते हैं। तो आखिर आगे का रोड मैप क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, पिछले कुछ समय के अंदर अमेरिका का जो रुख और रवैया देखने को मिला है उसके अंदर ऐसा लगता है कि अमेरिका एकला चालों की के मूड में है, वो तय करना चाहता है उसके जो साझेदार हैं, उसके जो दूसरे गठबंधन हैं, चाहे वो क्वाड का गठबंधन हो या नाटो जैसा जो अलायंस हो, उसको लेकर भी देखने को मिला है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बेरुखी सी देखने को मिली है। यहां भारत में जब क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, मार्को रूबियो भी ये संदेश देना चाहेंगे कि ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं में न केवल क्वाड फिगर करता है बल्कि अमेरिका अपने साथियों और अपने रणनीतिक साझेदारों के की चिंताओं के प्रति भी संवेदनशील है। और अगर ऊर्जा संकट की बात की जाए नेहा, तो भारत और जापान इस क्वाड के समूह के अंदर दो प्रमुख ऐसे देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो इस समय ऊर्जा संकट से भी जूझ रही हैं, क्योंकि दोनों ही अपने ऊर्जा संसाधनों का आयात करते हैं। और पश्चिम एशिया के इस मौजूदा संकट या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीते 80 दिनों से बंद होने के कारण वो ऊर्जा सप्लाई इन दोनों देशों की प्रभावित हुई है। तो मिलकर आगे भविष्य में ऐसी कोई चीज ना आए, अगर ऐसी चुनौतियां आती हैं तो क्या वैकल्प तैयार किए जा सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज क्वाड के नेताओं की जो बैठक होगी, क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक के अंदर चर्चा होगी। जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बात त्रिषा मौत मामले की, क्योंकि सीबीआई ने त्रिषा मौत मामले में औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर ली है। भोपाल के कटारा हिल्स थाने में पहले दर्ज मामले को री रजिस्टर किया गया है। इससे पहले कल पुलिस की टीम त्रिषा के पति समर्थ सिंह को लेकर उसके घर पहुंची, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, दोबारा पूछताछ करेगी। आज से सीबीआई केस की औपचारिक जांच शुरू कर रही है। केस अब सीबीआई के सुपुर्द है, भोपाल पुलिस से केस को हैंडओवर कर दिया गया है सीबीआई को।

0: तृषा केस में अब एक्शन तेज हो गया है। सोमवार देर रात पुलिस की एक टीम तृषा के पति समर सिंह को लेकर घर पहुंची। करीब दो घंटे तक वकीलों की मौजूदगी में घर में पूछताछ हुई। पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर हादसे वाले दिन वहां क्या हुआ था। घर से निकलते वक्त समर्थ पूरी तरह से खामोश था। आज तक के सवालों पर समर्थ ने कोई जवाब नहीं दिया।
1: आपको पछतावा है समर्थ? अच्छा पछतावा है समर्थ? आपको आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए था समर्थ? आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए था?
2: तकरीबन दो घंटे तक ये पूरी पूछताछ यहाँ पे चली समर्थ को लेकर के। जो साइट जो जगह है जहाँ पे सीन ऑफ क्राइम था उसे विजिट कराया गया, रिविजिट कराया गया और उसे कई तरीके की उन परिस्थितियों पे क्या हुआ था उस रात को, कैसे समर्थ उसे नीचे ले गया, कब उसे पता चला यहाँ से जाने, पुलिस ने जानने की कोशिश की। तकरीबन दो घंटे तक समर्थ घर पे रहा।
0: सीबीआई ने तृषा केस मध्य प्रदेश पुलिस से टेक ओवर कर लिया है। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। माना जा रहा है कि आज से सीबीआई की जांच इस मामले में शुरू होगी।
3: नहीं, जैसे ही हमारे पास खबर आएगी, अभी तो कोई ऐसी खबर नहीं है, जैसे ही मान लो सीबीआई को केस हैंड ओवर होता है तो जैसे ही हमारे पास खबर आएगी हम डायरी उनको सौंप देंगे।
0: तृषा 12 मई को अपने ससुराल में फांसी पर लटकी हुई पाई गई थी। भोपाल पुलिस ने दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत तृषा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिवाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की बात कही। साथ ही दोनों पक्षों को सार्वजनिक रूप से कुछ कहने की जगह जांच एजेंसियों के सामने बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, आप क्योंकि पूरा सिरे से मामले को खंगालने की कोशिश की जाएगी, उस ओर अब सीबीआई का पहला कदम क्या हुआ है?
2: बिल्कुल नेहा, और आप जी माने कि आज से ये जो तृषा का मामला है बिल्कुल नए तरीके से जांच में शुरू होने वाला है, क्योंकि अब तक जो जांच चल रही थी वो पुलिस के स्तर पे चल रही थी और कल पुलिस ने देर रात को समर्थ को ले जाके स्पॉट रिविजिट भी करवा दिया है। गिरिबाला सिंह और समर्थ आमने सामने थे कल रात को, तकरीबन दो से ढाई घंटे तक घर में रहे। लेकिन आज की बात करें तो आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि सीबीआई ने पहला काम सबसे ये किया है कि मध्य प्रदेश पुलिस से एफआईआर की कॉपी लेकर के एक तरीके से री एफआईआर दर्ज की है अपनी शब्दों में, और अब सीबीआई आज से इस केस की जांच शुरू कर देगी। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक सीबीआई कल देर रात भोपाल पहुंच चुकी है और आज से सीबीआई पहले पुलिस थाने जाएगी, वहां पे समर्थ क्योंकि बंद है कटारा हिल्स थाने में, उसके बाद सीबीआई उन तमाम जगहों पे जाएगी जो एफआईआर में दर्ज है। सीबीआई एम्स हॉस्पिटल भी जा सकती है, समर्थ के घर भी जा सकती है, और मान के चलिए कि आज का पूरा दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आज से ही सीबीआई की तफ्तीश असल मायने में ग्राउंड से शुरू होने वाली है, तो फिर आज इस पे नजर बनी रहेगी। लेकिन इन सबके बीच में बड़ी खबर यही है कि इतने दिनों तक समर्थ जो कि कटारा हिल्स थाने में था, फरार भी चल रहा था उससे पहले, उसे लेकर के उसकी मां के साथ कल आमना सामना करवाया गया है जो हमें जानकारी मिल रही है, और समर्थ और गिरिबाला सिंह दोनों को सामने बैठा के पुलिस के अधिकारियों ने कल जब स्पॉट रिविजिट किया था तो उस दौरान कुछ बयान भी दोनों के लिए गए हैं आमने सामने बैठाकर, क्योंकि ये मैच करने की कोशिश की जा रही है कि मीडिया में गिरिबाला सिंह अब तक क्या कहती आई थी, समर्थ ने क्या बयान दिए थे, दोनों ने अलग अलग जब पुलिस ने बात की थी और अब जब दोनों को एक साथ बैठाया गया है, तो ये तमाम बातें भी जब सीबीआई आज थाने जाएगी, मिलेगी पुलिस के अधिकारियों से, एसआईटी टीम से मिलेगी, एसीपी रजनीश कश्यप से मिलेगी, तो ये तमाम बातें भी सीबीआई देखेगी पहले और उसके बाद आज से सीबीआई जो है अपनी तफ्तीश शुरू करने वाली है।
4: ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर कश्मीरी गुलमर्ग से, जहां पर गोंडोला राइड के दौरान करीब 300 पर्यटक फंस गए। तकनीकी खराबी की वजह से बेहिसाब संकट बढ़ गया। फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए कई रेस्क्यू टीमें लगातार 6 घंटे से ज्यादा वक्त तक जूझती रहीं। देर रात ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सका। अब देख
5: जमीन से करीब 500 मीटर की ऊंचाई पर लटकी हुई केबल कार और नीचे घना जंगल, जरा सोचिए जो लोग वहां फंसे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। ये तस्वीर श्रीनगर के गुलमर्ग में कल चले मैराथन रेस्क्यू ऑपरेशन की है, जब गुलमर्ग के मशहूर कैंटोला केबल कार में तकनीकी खराबी आ गई और करीब 300 लोगों की जिंदगी आसमान में अटक गई।
6: सोमवार दोपहर करीब 12 बजे केबल कार अटकने की घटना हुई। करीब एक घंटे बाद इसकी खबर पुलिस प्रशासन तक पहुंची। खबर लगते ही सारी एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना की चिनार कोर के जवान रस्सियों और सीढ़ियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। करीब 6.5 घंटे की मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
7: मुकम्मल हो चुका है जी, सारे के सारे टूरिस्ट नीचे आ चुके हैं। जो लोग फिजिकली ज्यादा फिट नहीं थे, तकरीबन 45 लोगों को स्ट्रेचर्स पे भी लाया गया है। 320 के करीब लोग जो फंसे हुए थे उनको नीचे लाया गया।
6: सेना के जवानों और पूरी रेस्क्यू टीम ने इस ऑपरेशन को जिस जाबाजी और संवेदनशील तरीके से अंजाम दिया उसकी वानगी देखिए। इस महिला को देखिए, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई, तो सेना के जवान किस तरह से उसे हौसला दे रहे।
8: सब ठीक है। धरती के ऊपर बैठे हैं, क्या डर है? भारत माँ की डॉटर हो, क्या डर है? जय हिंद।
9: चलो
8: अरे हम है ना, अब तो आगे अभी आप चलो।
6: चाहे सीमा की सुरक्षा हो या इस तरह की आपदा, भारतीय सेना का जवाब नहीं।
10: आर्मी वाले लगे हुए हैं जी, गंडोला की फर्स्ट फेज की वो रुक गई थी तो उसके बाद लगे हुए हैं। बारिश पड़ रही है, ठीक है, लेकिन बारिश तूफान कुछ भी नहीं होता हमारी आर्मी के सामने, ठीक है जी। तो मेरी वाइफ भी आ रही है पीछे, उसका भी मतलब एक बंदे के साथ एक जना लगा हुआ है। ऐसे नहीं है कि ग्रुप ग्रुप में लेके आ रहे हैं, सभी को प्रॉपर इंडिविजुअली ध्यान दिया जा रहा है यहाँ।
6: यकीन रेस्क्यू टीम की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक तो दुर्गम इलाका और उस पर भारी बारिश, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। सभी करीब 320 लोग सुरक्षित बचा लिए गए। शिवानी शर्मा के साथ मीर फरीद, गुलमर्ग आज तक।
4: अगली खबर का रुख करेंगे, गृहमंत्री अमित शाह देश के अलग अलग बॉर्डर इलाकों का दौरा कर सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। उनके दौरे की शुरुआत आज राजस्थान के बीकानेर से हो रही है। इस दौरान गृहमंत्री बीएसएफ की सीमा चौकी सांचू का दौरा करेंगे। यहां वो सीमा पर तैनात जवानों से संवाद करेंगे और सुरक्षा बलों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह बीकानेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत प्रदेश में अलग अलग बॉर्डर से सटे 184 गांव और सड़क और 4G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, शुरुआत बीकानेर से, उसके बाद कहां कहां जाने का कार्यक्रम है?
11: देखिए नेहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत पाकिस्तान सीमा हो या फिर भारत बांग्लादेश बॉर्डर, यहां पर स्मार्ट फेंसिंग का एक बड़ा प्रोजेक्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लाया जा रहा है और बीएसएफ के कार्यक्रम में उन्होंने बोला था। आज उनका जो दौरा है महत्वपूर्ण बीकानेर के सांचू बीओपी जो है वहां पर उनकी बैठक होगी। इसके साथ ही 2 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक राजस्थान के बीकानेर में होगी, जिसमें बॉर्डर इलाके के जो 5 SP और DM है उन जिलों के डीएम के साथ बैठक करेंगे। और इसका सीधा मकसद यह है, क्योंकि जब भी कोई घुसपैठ होती है तो फर्स्ट रेस्पोंडर जो है वो उस जिले के डीएम होते हैं। ऐसे में बीएसएफ के साथ और राज्य की पुलिस के साथ इसमें एक कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से हो, उसमें जो है इस बैठक को किया जा रहा है। इसके साथ ही 29 तारीख को गुजरात के भुज, जो कि हरामी नाला कहलाता है, उस इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री जाएंगे। ये 25 किलोमीटर का एक ऐसा दलदली इलाका है जहां पर जो है फेंसिंग नहीं है, तो यहां पर स्मार्ट फेंसिंग या फिर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत किस तरीके से कदम बढ़ाना है उसको लेकर के काम यहां पर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर का जो दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, उसकी शुरुआत जो है जून में, 5 जून त्रिपुरा से कर रहे हैं। इसके साथ ही 15 जून पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा वहां पर सैंक्शन किया गया है, बीएसएफ और राज्य सरकार के द्वारा जमीन दी गई है जिससे वहां पर फेंसिंग बनाई जा रही है।
4: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात कर्नाटक की, जहां की कांग्रेस सरकार में सत्ता का संग्राम एक बार फिर से शुरू हो गया है। सीएम और डिप्टी सीएम में खींचतान की खबरों के बीच सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाया गया है। दोनों नेताओं की आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अहम बैठक होगी और इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में कर्नाटक की लीडरशिप और 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बात होगी। दरअसल हाईकमान को लग रहा है कि सरकार की एक नई शुरुआत की जरूरत है ताकि 2028 तक सब कुछ पटरी पर रहे। तो आज ये अहम बैठक कांग्रेस आलाकमान द्वारा बुलाई गई है जिसमें सिद्धारमैया शिव कुमार भी मौजूद रहेंगे। और सीधे आपको क्वाड की बैठक में ले चलेंगे जहां पर एस जयशंकर बोल रहे हैं।
9: इंक्लूडिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमिक रेसिलियंस एंड एचएडीआर। वी हैव सीन एनकरेजिंग प्रोग्रेस ऑन मेनी इनिशिएटिव्स। As maritime democracies, pluralistic societies, and market economies, we share a responsibility towards a free and open Indo-Pacific. The region must remain a driver of global growth and stability. We will be underlining that today, through our deliberations, which I'm confident will be useful and productive. I thank you all for being here. And I would request you to make your opening remarks, starting with Australia. So over to you, Penny.
4: तो कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार को लेकर जो खींचतान चल रही है उसकी अहम बैठक आज दिल्ली में बुलाई गई है जिसमें सीएम सिद्धारमैया के साथ साथ डीके शिव कुमार भी मौजूद रहने वाले हैं और चर्चा इस बात को लेकर होगी कि अगला जो चुनाव होना है उसमें किस तरह की स्ट्रैटेजी कर्नाटक में कांग्रेस की रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी भी इस बड़ी बैठक में शामिल होने वाले हैं। दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है, ये पहला मौका नहीं है जब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ऐसी किसी बैठक में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं। सीएम पद को लेकर भी खींचतान जारी है क्योंकि 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ था, उसके बाद डीके शिव कुमार सीएम नहीं बनाए गए, सिद्धारमैया ही सीएम के पद पर काबिज रहे। अब सीएम पद को लेकर जो खींचतान है वो क्या आज के इस बैठक में सुलझ पाएगी या नहीं, यही बड़ा सवाल है। पीयूष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, क्या डीके शिव कुमार को अब सीएम बनाया जा सकता है या फिर इन तमाम कयासों पर अब विराम लगाने का वक्त आ गया है? 2028 में तो अब अगले चुनाव ही होने।
12: देखिए, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है नेहा, कि आज इस बात पर फैसला हो जाएगा कि जो लीडरशिप क्राइसिस है कर्नाटका में उसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से हम ये देख रहे हैं किस तरह से कर्नाटका की राजनीति में खींचतान लगातार जारी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी कर्नाटका भवन पे है जहां पर सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री है वो मौजूद है और कुछ देर में वो यहां से निकल के सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जाएंगे क्योंकि 11 बजे के आसपास ये बैठक बुलाई गई है। डीके शिव कुमार भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और दोनों नेताओं के बीच में आज जरूर सहमति कहीं ना कहीं बन जाएगी कि किस तरह से जो लीडरशिप क्राइसिस है उसको सॉल्व किया जाए। सूत्र ये बताते हैं कि लगभग 3 दौरों की बैठक हो सकती है। पहले दौर में सिद्धारमैया के साथ बातचीत होगी, दूसरे दौर में डीके शिव कुमार के साथ बातचीत होगी और तीसरे दौर में दोनों को एक साथ बिठाकर बातचीत होगी ताकि जो लीडरशिप क्राइसिस कर्नाटका में है वो सॉल्व हो जाए। जल्द विधानसभा चुनाव भी कर्नाटका में होने वाले हैं, उससे पहले इस तरह की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए काफी खतरनाक है। जब केरल में मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई थी वहां पर भी एक बड़ी बैठक दोनों नेताओं के साथ पार्टी
4: टॉप। और कल सिद्धारमैया ने इस पूरी मीटिंग को लेकर, बैठक को लेकर क्या कुछ कहा था, सुनिए।
13: One second, many speculations are surrounding, sir. As you are meeting High Command after a long time, many speculations are running around. Will it be a full stop?
14: Speculations are always there.
13: Fuel prices, sir. Have you seen?
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कनाडा के दौरे पर हैं। कल उन्होंने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री महेंद्र सिद्धू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि वो सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां पर पहुंचे।
14: वेरी मच डूएबल गिवन द सिंसियरिटी ऑफ पर्पस गिवन द वंडरफुल वर्क बोथ द नेगोशिएटिंग टीम्स हैव पुट इन over the last 2.5 months since we signed terms of reference in March, and given the trust between the prime ministers of India and Canada and the warmth of that relationship, we feel empowered to be able to make rapid progress, to deliver results not only to businesses but to the people of both countries. I have come with the largest ever business delegation that stepped out of India ever in our history.
4: वहीं दिल्ली में पद्म अवार्ड्स का कल आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल, कला, साहित्य और मनोरंजन जैसे तमाम क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाने वाले शख्सियतों को सम्मानित किया। इस मौके पर दिवंगत लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हेमा मालिनी और उनकी बेटी आहाना इस मौके पर काफी भावुक नजर आए।
15: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट, श्री के पजानीवेल खेल सिलंबम। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय।
16: भावुकता से भरी एक शाम, विरासत और राष्ट्रपति भवन में तालियों की गड़गड़ाहट। इस शाम का सबसे भावुक पल जब दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंखों में आंसू लिए हेमा मालिनी ने दिवंगत सुपरस्टार की ओर से ये सम्मान ग्रहण किया। वहीं दर्शकों के बीच बैठी बेटी आहाना देओल भी भावुक हुई और आंसू छलकने लगे।
15: सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट,
16: क्रिकेट के मैदान से राष्ट्रपति भवन तक भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके निडर बल्लेबाजी और परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए उन्हें मिला है।
15: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन,
16: डॉक्टर एन राजम को भी सम्मानित किया गया। भारतीय शास्त्रीय वायलिन में उनके आजीवन योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। तबला वादक पंडित कुमार बोस भी सम्मानित होने वालों में शामिल थे। विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे प्रतिष्ठित अभियानों के लिए याद किया जाता है। सिनेमा और रंगमंच के दिग्गज भी मंच पर मौजूद थे। बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी, दिग्गज अभिनेता अरविंद वैद्य और कुचिपुड़ी नृत्यांगना दीपिका रेड्डी सभी को पद्म सम्मान प्राप्त हुए। और समारोह का एक अविस्मरणीय दृश्य, पारंपरिक मार्शल आर्ट गुरु के पजानीवेल ने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सिनेमा जगत के दिग्गजों और खेल जगत के हस्तियों से लेकर लोक कलाकारों, पत्रकारों और शास्त्रीय संगीत के उस्तादों तक पद्म पुरस्कार 2026 ने उन असाधारण लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने गौरवशाली भारत की कहानी लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर। इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: सुबह सुबह महंगाई की एक और डोज, पेट्रोल डीजल के बाद 2 रुपए बढ़े सीएनजी के दाम। दिल्ली में 83.09 रुपए प्रति किलो हुई कीमत, 12 दिन में कुल 6 रुपए का इजाफा। ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स पर अमेरिका का जोरदार हमला, का आत्मरक्षा के लिए तहत किया अटैक। ट्रंप बोले बातचीत अच्छी चल रही है, इस बार बिग डील या नो डील। मिडिल ईस्ट में भारतीय आग भी, दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की शुरुआत। पश्चिमी एशिया के ताजा हालात को देख हिंद प्रशांत क्षेत्र पर होगा फोकस। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया डीके शिवकुमार पहुंचे दिल्ली, नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच सुबह 11 बजे आज कांग्रेस आलाकमान से मीटिंग, मुख्यमंत्री बोले एजेंडा पता नहीं। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे, देश भर में अभियान चलाएगी बीजेपी, जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे केंद्रीय मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर...
0: दिल्ली में सीएनजी की कीमतों ने फिर भरी उड़ान, 12 दिन में 6 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी, उपभोक्ताओं की जेब पर बढ़ा बोझ। राजधानी में सीएनजी उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, लगातार दूसरी बढ़ोतरी के बाद कीमत 83.09 रुपए प्रति किलो पहुंची। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी ने बढ़ाई चिंता, 12 दिन में दाम 70.09 रुपए से बढ़कर 83.09 रुपए प्रति किलो हो गए। बीकानेर से गृहमंत्री अमित शाह का बॉर्डर दौरा शुरू, सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत, 184 गांव वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत 184 गांव सड़क और 4G नेटवर्क से जुड़ेंगे। आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, 2024 एस जयशंकर की अध्यक्षता में होगी अहम बैठक। दिल्ली पहुंचे प्रतिनिधि 9 बजे हैदराबाद हाउस में अहम बैठक, 9:50 पर संयुक्त प्रेस बयान और 11 बजे प्रतिनिधिमंडलों की रवानगी। मार्को रूबियो, पेनी वोंग और तोशिमित्सू मोतेगी सहित क्वाड देशों के मंत्री इंडो पैसिफिक सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। मुक्त, सुरक्षित और स्थिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर रहेगा फोकस। चीन, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और श्रीलंका के पास हालिया घटनाक्रम पर मंथन संभव। क्वाड बैठक के साथ विपक्षी वार्ताओं और पीएम मोदी से संभावित मुलाकात पर नजर। साल के आखिर में क्वाड शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज। वेस्ट एशिया तनाव पर सरकार का भरोसा, हालात सुधरे तो 4 से 5 दिन में सप्लाई सामान्य। संसद समिति के को केंद्र का आश्वासन, ऊर्जा और उर्वरक संकट का फिलहाल कोई खतरा नहीं। हॉर्मुज मार्ग पर तनाव के बीच भारत तैयार, 78 दिन से ज्यादा का ऊर्जा भंडार मौजूद। वेस्ट एशिया संकट से निपटने की तैयारी पूरी, वैकल्पिक आयात और सप्लाई प्लान सक्रिय। तेल शिपिंग और सप्लाई पर सरकार सतर्क, मंत्रालयों के बीच लगातार समन्वय जारी। तेल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर बोले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ईंधन और टैक्स घटाने से सरकार को करीब 1,00,000 करोड़ का नुकसान होगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, बोले सरकार चुपके चुपके काट रही है जनता की जेब। देश में इबोला को लेकर हाई अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इबोला वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार सख्त, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त कार्रवाई, केंद्र और एनटीए को नोटिस भेजा, एनटीए भंग करने वाली अर्जी पर मांगा जवाब। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार पर सवाल उठाया, एनटीए को नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बताते हुए पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मांगा इस्तीफा। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई 12वीं के मूल्यांकन में गड़बड़ी और नीट परीक्षा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला, का धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होने के लायक नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे और ओएसएम प्रोसेस खत्म करने की मांग की। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के इस्तीफे देने वाले 3 बागी विधायक टीवीके से मिले, विजय की पार्टी टीवीके में हुए शामिल। तमिलनाडु सरकार में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का फेरबदल, टीएस अनबू एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार पहुंचे दिल्ली, नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच आज कांग्रेस आलाकमान से मीटिंग, मुख्यमंत्री बोले एजेंडा पता नहीं है। केंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे, देश भर में अभियान चलाएगी बीजेपी, जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे केंद्रीय मंत्री। दिल्ली जिमखाना क्लब के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई आज होगी। पश्चिम बंगाल के मालदा में राज्य का पहला होल्डिंग सेंटर शुरू हुआ, पूरे मालदा जिले का एकमात्र होल्डिंग सेंटर। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को होल्डिंग सेंटर में हिरासत में रखा गया, इसमें 3 महिलाएं 6 नाबालिग शामिल। मुर्शिदाबाद में अवैध घुसपैठ के मामले में 3 लोग हिरासत को लेकर लालगोला होल्डिंग सेंटर भेजे गए। कोलकाता के सॉल्ट लेक में मार्केट में रंगदारी के आरोपों के बाद टीएमसी विधायक की पिटाई, पुलिस ने हिरासत में लिया। आईएस नीलम मीणा पश्चिम बंगाल की नई मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त, मनोज कुमार अग्रवाल बने मुख्य सचिव। एनआईए की जांच में लखनऊ में बड़े आतंकी हमले का खुलासा है। एनआईए के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर यूपी के विधानसभा, सचिवालय, बड़ा इमामबाड़ा और अमीनाबाद जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके। जांच में सामने आया कि आरोपी लखनऊ में एक ही कार बम धमाके की तैयारी कर रहे थे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर पेरोल मिल गई। इस बार राम रहीम को 30 दिन की पेरोल दी गई है। भीषण गर्मी की चपेट, पूरा उत्तर भारत, उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक देखने को मिल सकती है भीषण गर्मी और लू का असर। मौसम विभाग के मुताबिक 27 मई तक राज्य के मैदानी जिलों में हीट वेव जैसी स्थिति। हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के कुछ इलाकों में गर्म हवाएं बढ़ा सकती हैं परेशानी। अस्पतालों में दवाइयों, ORS, बर्फ और जरूरी उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश। महाराष्ट्र में बढ़ा लू का प्रकोप, 47.6 डिग्री तापमान के साथ ब्रह्मपुरी देश का सबसे गर्म स्थान। राजस्थान के बड़े हिस्सों में भीषण लू का प्रकोप, 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ कोटा रहा राज्य का सबसे गर्म स्थान। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में ऐतिहासिक ऊंचाई पर बिजली की मांग, आंकड़ों के मुताबिक मई के महीने में 8,647 मेगावाट पहुंची बिजली की डिमांड। 2024 के बाद मई महीने में राजधानी बिजली डिमांड का नया रिकॉर्ड। अधिकारियों ने कहा जून में गर्मी के चरम पर पहुंचने से पहले 9,000 मेगावाट को पार कर सकती है डिमांड। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी के बीच पूरी की जा रही है राज्य की विद्युत आपूर्ति, प्रदेश में 29,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की डिमांड। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के मुताबिक देश में सर्वाधिक बिजली उपलब्ध कराने वाला राज्य बन गया है। समय प्रदेश के इतिहास में पूरी की जा रही सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई। मैदान के रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच लोग कर रहे पहाड़ों का रुख, शिमला में पिछले हफ्ते आई 1,00,000 से ज्यादा टूरिस्ट की गाड़ियां। हेमकुंड साहिब को प्रकृति ने किया श्वेत श्रृंगार, कपाट खुलने से 2 दिन के बाद ही जोरदार बर्फबारी का दौर जारी। हेमकुंड साहिब में चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, मई की गर्मी के बीच श्रद्धालु यहां बर्फबारी का ले रहे हैं आनंद। सुकमा में ग्रामीणों का अनोखा विरोध, 10 साल में अधूरी पड़ी सड़क और गड्ढों से परेशान होकर गृहमंत्री शाह को लिखी चिट्ठी। गंगा दशहरा पर अयोध्या में राम दरबार की स्थापना की पहली वर्षगांठ का उत्सव की जोरदार तैयारी, कल कई धार्मिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। राम भक्तों के लिए खुशखबरी, राम मंदिर परिसर के सभी प्रमुख मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। हिमाचल प्रदेश के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कसौली के जंगलों में भीषण आग, धधकती आग में करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा, दिल्ली से गोरखपुर जा रही बस पलटी, 6 की मौत, 19 घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, लगातार 4th दिन जारी। बाराबंकी हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रेलर से बेकाबू इनोवा कार टकराई, 4 की मौत, 3 घायल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चौरा बस्ती फायरिंग और बम हमले मामले में गिरफ्तारी, आरोपी शमी अहमद को जांच के लिए मौके पर ले जाया गया। बदायूं पुलिस की सफलता, इस्लामपुर डकैती केस में संभल से 5 आरोपी गिरफ्तार, 19,00,000 के जेवरात बरामद, जांच में तेजी। टिहरी गढ़वाल के जंगलों में विकराल आग, 14 हेक्टेयर वन क्षेत्र चपेट में आए, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। झारखंड के पाकुड़ में रेलवे के हाई टेंशन तार की चपेट में आकर डंपर धू कर जला, चालक ने कूद कर बचाई जान। भोपाल में सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी आग में लगी भीषण आग, 1 कार और 2 बाइक जलकर खाक। झांसी में यात्रियों से भरी लग्जरी बस में लगी आग, चालक ने बचाई 30 यात्रियों की जान। नागपुर में कार डेकोरेट दुकान में इलेक्ट्रिक डीपी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से 5 से 6 कारें जलकर राख, लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के जालना में अचानक बैंक के एटीएम में लगी आग, एटीएम जलकर खाक, लाखों का नुकसान। गुजरात के साबरकांठा में एक मैदान में लगी भयंकर आग, ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। केड़ा के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में एसी में लगी आग, 3 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। नवसारी के हिल स्टेशन के पास टोल बूथ पर हुई दुर्घटना, बाल बाल बचे पर अटक। मुंबई के मरीन ड्राइव पर नाकेबंदी के दौरान तेज रफ्तार मर्सिडीज ने 2 पुलिसकर्मियों को मारा, चालक गिरफ्तार। गुजरात के राजकोट में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने से बड़ा हादसा, 2 महिलाओं की मौत, 25 घायल। सूरत में तिरुपति मार्केट में आवारा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्चे पर हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हैदराबाद में 200 गिरफ्तार से गाड़ी चलाकर वीडियो पोस्ट करने वाला शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। जयपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, हवा में चढ़कर 20 फीट दूर गिरे, दोनों की हालत गंभीर। कानपुर में मामूली बाइक टक्कर को लेकर विवाद, सरेआम पिता पुत्र की चाकू और हेलमेट से पीट पीट कर हत्या। भोपाल में नशे में धुत युवकों ने सड़क पर मचाया उत्पात, तेज रफ्तार कार से राहगीरों और पुलिसकर्मियों को मारी गई टक्कर। पटना में बीच सड़क पैसे के लेन देन को लेकर विवाद में हुई झड़प, दुकानदार ने युवक पर चाकू से किया हमला। पंजाबी सिंगर लुधियाना की मेयर इंद्रजीत कौर के घर को बम से उड़ाने की धमकी, मेयर को दलजीत दोसांझ को सपोर्ट करने पर दी गई धमकी। फिल्म डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर में बड़ा विवाद, एक्टर पर शूटिंग शुरू होने से 10 दिन पहले फिल्म छोड़ने का आरोप। रणवीर सिंह को फरहान अख्तर की डॉन 3 को छोड़ना पड़ा महंगा, शिकायत के बाद FWICE ने लगाया इंडस्ट्री में बैन। रणबीर कपूर की रामायण पार्ट 1 में बदल सकती रिलीज डेट, दावा है कि फिल्म इस साल दिवाली में एक हफ्ते पहले 30 अक्टूबर को आ सकती है। एक्शन कॉमेडी के बाद अक्षय ने जॉनर में दिखने जा रहे हैं, अब एलियन से भिड़ेंगे, सामुक में करेंगे हॉलीवुड स्टाइल हॉरर साइंस फिक्शन में एंट्री। 46 फिल्मों के बाद डायरेक्टर डेविड धवन का बॉलीवुड से संन्यास, निर्माता निर्देशक करण जौहर हुए इमोशनल। आज से धर्मशाला में हो रही है प्लेऑफ मुकाबलों की शुरुआत, क्वालिफायर 1 में बेंगलुरु और गुजरात का आमना सामना। मैच जीतने वाली टीम को सीधे फाइनल में मिलेगी एंट्री, जबकि हारने वाली टीम को दूसरे क्वालिफायर में खेलने का मिलेगा मौका। आरसीबी के पास धर्मशाला में खेलने का अच्छा अनुभव, हाल ही में आरसीबी ने इसी मैदान पर पंजाब को हराकर अंक तालिका में पक्का किया था अपना स्थान। गुजरात कप्तान शुभमन गिल और युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन से उम्मीद, वहीं आरसीबी के लिए विराट कोहली का अनुभव साबित होगा प्लस पॉइंट। इस आईपीएल सीजन में दो दो मैच में एक मुकाबले में बेंगलुरु ने गुजरात को 5 विकेट से हराया, वहीं दूसरे मैच में गुजरात ने बेंगलुरु को 4 विकेट से दी मात। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर बोले ट्रंप, कहा अच्छी तरह आगे बढ़ रही है चर्चा, अगर समझौता होता है तो अच्छा और उचित होगा। ईरान बोला अमेरिका से वार्ता कुछ मुद्दों पर सहमति बढ़ी, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पर स्थिति साफ नहीं है। ईरान के वार्ताकार की कतर से प्रधानमंत्री से मुलाकात, कूटनीतिक कोशिश तेज। इसराइल ईरान तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, भारत में ईंधन महंगा। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ट्रंप ने इब्राहिम अकॉर्ड्स में नए देशों को जोड़ने की अपील की। रूसी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, आगे भी होते रहेंगे यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले। रूसी हमले में 4 की गई जान, 80 लोग हुए घायल, रूस का दावा। नीप्रो क्षेत्र में डोब्रो पासोवे इलाके पर हुआ रूस का नियंत्रण। फ्रांस में निर्वासित जीवन बिताने रूस के बड़े फिल्मकार आंद्रेई ने रूस यूक्रेन युद्ध को बताया पुतिन द्वारा शुरू किया गया नरसंहार। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बीच बीजिंग में मुलाकात, जिनपिंग ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बताया अटूट। ईरान शांति प्रयास में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की, जिनपिंग ने एक तरफावाद और शीत युद्ध जैसी सोच के विरोध की बताई जरूरत।
2: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना, टंकी मतलब वेक्टर।
3: It never happens at a good time. The pipe bursts at midnight. The heater quits on the coldest night. Suddenly, you're overwhelmed. That's when home service here. For $4.99 a month, you're never alone. Just call their 24/7 hotline and a local pro is on the way. Trusted by millions, HomeServe delivers peace of mind when you need it most. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
4: Order for Jennifer C.
5: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
4: Yeah. Can you handle that much caffeine?
5: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
4: Oh, really? That's great.
5: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
4: Yeah, you just said that.
5: Did you say I just said that?
4: Yeah, I'm cutting you off.
5: I can't have any more? Why not?
6: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
10: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your master's in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
11: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
12: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
13: Rungta nahi to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar ekdam solid.
14: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
15: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
16: विक्रम, एक हिंट तो देते।
17: विक्रम!
16: हिंट
15: बड़े आराम से।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खा।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं।
11: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
12: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
15: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट,
14: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
16: डायरेक्टर, The taste of success.
17: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
18: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
5: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
6: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना, टंकी मतलब वेक्टर्स।
1: और अब बात महंगाई के झटके की, जो दिल्ली एनसीआर वालों को सुबह सुबह लगा। एक बार फिर से सीएनजी की दरों में इजाफा हुआ है। आज दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 2 रुपए महंगी हो गई है। इस हिसाब से अब दिल्ली में सीएनजी की नई दर 83.09 रुपए प्रति किलो हो गई। कुल मिलाकर पिछले 12 दिन में सीएनजी कीमतों में 6 रुपए का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद ऑटो और टैक्सी पर किराए में बढ़ोतरी का दबाव बढ़ेगा और यह दबाव सीधा आम लोगों की जेब पर आएगा।

0: 9 बज गए मेरे साथ, अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना, टंकी मतलब
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
6: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning. One heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
10: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
11: White shirts, is summer ko cool bana le.
12: Goldie chole masale, jahan jaaye, rishte banaye.
13: Goldie laaye hain Fresh Lock technology. जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
14: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
15: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
16: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
14: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
17: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
15: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
14: जहां खबर वहां खबरदार।
3: इन एसोसिएशन विद
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: हैं, आम पब्लिक पे जो वजन पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले लोगों को नहीं दिखता, नीचे वाले लोगों को बहुत मायने रखा था कि हम लोग क्या एक एक दो दो रुपए करके इकट्ठा पैसा करते हैं, उसके लिए 2 रुपए बहुत मायने रखा था।
1: तो है सर, बढ़ना तो नहीं चाहिए, कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से सैलरी दे, लेकिन सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है।
2: ईरान की जंग थमे 47 दिन हो गए, लेकिन हॉर्मुज संकट का ऐसा कहर कि 2 महीने बाद भी बारूदी आग की तपिश हिंदुस्तान में आवाम की जेब तक पहुंच रही है। 15 मई को पेट्रोल 3 रुपए, डीजल 3 रुपए, 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे, 23 मई को पेट्रोल 90 पैसे, डीजल 91 पैसे, और अब 25 मई की सुबह पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे, डीजल 2 रुपए 71 पैसे। 10 दिन के भीतर 4 बार में पेट्रोल 7 रुपए 38 पैसे, डीजल 7 रुपए 53 पैसे महंगा हो गया। अवाम हलकान है कि जब जंग में दाम नहीं बढ़े तो सीज फायर के बीच हर तीसरे चौथे दिन दाम क्यों बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता गिनाते हैं कि जंग से पहले तक चौथी तिमाही में तेल कंपनियों का मुनाफा 41% बढ़कर 19,470 करोड़ रुपए था, तो हजारों करोड़ रुपए महीने की कमाई करने वाली तेल कंपनियां और सरकार अब धीरे धीरे तेल की कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि कच्चा तेल जब सस्ता होता है तो सरकार और तेल कंपनियां अपनी जेब भरती हैं और महंगे कच्चे तेल का बोझ आवाम की जेब पर डालती हैं, और आंकड़े कहते हैं कि जनवरी से मार्च के बीच इंडियन ऑयल को 15,176 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, लेकिन अप्रैल और मई में 35 से 45 हजार करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। इसी तरह जनवरी से मार्च में भारत पेट्रोलियम को 5,624 करोड़ का मुनाफा हुआ और अप्रैल मई में 18 से 22 हजार करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी जनवरी से मार्च में 4,901 करोड़ रुपए का मुनाफा मिला, लेकिन अप्रैल मई में 17 से 20 हजार करोड़ के नुकसान का दावा है। जबकि कांग्रेस के नेता आंकड़े गिनाते हैं कि मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में सस्ते कच्चे तेल का फायदा उठाया और उस पर ऊंची दर से टैक्स वसूली करके 15-20 लाख करोड़ रुपए कमाए, जबकि बीजेपी दलील देती है कि 2005 से 10 के बीच जब कच्चे तेल का भाव $147 तक चला गया था, तब मनमोहन सिंह सरकार ने 1,48,186 करोड़ के ऑयल बॉन्ड तेल कंपनियों को दिए थे। इन पर 6.35% से लेकर 8.4% तक ब्याज देना था। तब से 10-15 साल के बीच तेल कंपनियों ने इन बॉन्ड्स को भुनाना शुरू किया, जो 2015 से 2026 तक चलता रहा। इस बीच मोदी सरकार ने 1.71 लाख करोड़ का ब्याज तेल कंपनियों को चुकाया और मूलधन मिलाकर कुल 3.20 लाख करोड़ तेल कंपनियों को देना पड़ा। ऊपर से जब ईरान में जंग छिड़ी तब जनता को महंगाई के झटके से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज 13 से घटाकर 3 रुपए किया, डीजल पर एक्साइज 10 रुपए से घटाकर 3 कर दिया। इससे सरकार को 1,00,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है, क्योंकि हमारे देश में जब 1 लीटर पेट्रोल बिकता है तो 11.90 रुपए केंद्र, 15 से 21 रुपए राज्य, 8 से 12 रुपए तेल कंपनी और 3.5 से 4.5 रुपए पेट्रोल पंप वालों की कमाई होती है। इसी तरह 1 लीटर डीजल पर 7.80 रुपए केंद्र, 11 से 15 रुपए राज्य, 4 से 7 रुपए तेल कंपनी और 2.5 से 3.5 रुपए पंप वालों की कमाई होती है। महंगे तेल के कारण सरकार की कमाई घटी है, जबकि तेल कंपनियां धीरे धीरे दाम बढ़ाकर अपने पुराने नुकसान की भरपाई कर रही हैं, क्योंकि तेल कंपनियों के बही खाते में आए भूचाल का अनुमान लगाते हुए बाजार के जानकार पहले ही 20 से 25 रुपए तक दाम बढ़ाने की आशंका जताते रहे, और ऐसा होता है तो पेट्रोल डीजल की महंगाई का असर कार बाइक चला रहे आम लोगों की जेब पर ही नहीं पड़ेगा। ऑटो कैब बस के किराए बढ़ेंगे, ट्रकों की माल ढुलाई महंगी होगी, सब्जियां राशन महंगी होंगे, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, कपड़े दवाइयां सब कुछ महंगा होगा, मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी तो कंपनियों का मुनाफा घटेगा, उत्पादों के दाम बढ़ेंगे तो खपत कम होगी, मांग घटेगी तो उत्पादन घटेगा, उत्पादन घटेगा तो रोजगार कटेगा, असर सीधा विकास दर पर पड़ेगा, क्योंकि कच्चा तेल 10% महंगा होता है तो GDP 1% तक घट जाती है। ऊपर से महंगे तेल की खरीद में घिसते डॉलर का भंडार तेजी से घटा तो चालू खाते का घाटा बढ़ता जाएगा, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक को रेपो रेट बढ़ाना होगा, जिसका असर होम लोन से कार लोन तक पड़ता है। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्ट

0: सबसे पहले बात विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने गए लापता छात्र की। जॉर्जिया में मेडिकल की पढ़ाई करने गए ध्वनित राजदीप का बीते 13 दिनों से कोई पता नहीं लग पा रहा है। बड़ी खबर यह है कि 23 साल का ध्वनित अहमदाबाद का रहने वाला है और अब वो गायब है। परिवार वाले लगातार ध्वनित से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका कोई पता नहीं लग रहा। अब उसके परिवार वालों ने सरकार से गुहार लगाई है ताकि ध्वनित का कुछ पता लगाया जा सके। दरअसल ध्वनित के परिवार वालों की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि कुछ दिन पहले ही बेटे का पुराने मकान मालिक से विवाद हुआ था। ध्वनित जिस पीजी में रहता था वो दक्षिण भारत के अनिल नाम के एक शख्स का था। परिवार वालों का दावा है कि ध्वनित को वहां कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब ध्वनित ने कमरा खाली करने और डिपॉजिट वापस मांगने की बात कही तो विवाद शुरू हो गया। अनिल ने डिपॉजिट लौटाने से इनकार कर दिया। परिवार डिपॉजिट छोड़ने को भी तैयार हो गया उनका ये कहना है, लेकिन ध्वनित के पीजी छोड़ने के बाद भी विवाद नहीं थमा। ध्वनित के पिता डॉक्टर मयूर के मुताबिक अनिल और उसके साथियों ने ध्वनित का फोन छीन लिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान उनकी अनिल से कॉल और चैट्स पर लगातार बातचीत भी हुई है ध्वनित के पिता की, और ध्वनित के पिता का आरोप है कि अनिल ने अभद्र भाषा में बात की और पैसों की मांग भी की। परिवार ने वो रकम भी भेज दी है। इन घटनाओं के बाद डॉक्टर मयूर ने अपने बेटे के लिए भारत वापसी का टिकट भी भेज दिया था। अब परिवार का कहना है कि 14 मई को ध्वनित अपने कमरे से पासपोर्ट और फोन लेकर निकला। उसी दिन दोपहर में उसकी अपने पिता से फोन पर बात हो रही थी लेकिन करीब 20 सेकंड बाद अचानक कॉल कट गया। इसके बाद से उसका फोन लगातार स्विच ऑफ है। परिवार ने तुरंत भारतीय दूतावास, कॉलेज प्रशासन और स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी लेकिन अब तक ध्वनित का कोई सुराग नहीं मिला है। यही वजह है कि परिवार की चिंता लगातार बढ़ती ही जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त जो दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर ध्वनित की जो जॉर्जिया में पढ़ाई कर रहा था और वो भारत का रहने वाला था, अहमदाबाद से था, और दूसरी तस्वीर हम उस चैट की दिखा रहे हैं जो पिता के साथ मकान मालिक की हुई थी जिसमें पिता का दावा है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, और तीसरी तस्वीर उस पत्र की जो परिवार ने लिखा है भारतीय सरकार से गुहार लगाते हुए कि उन्हें अपने बच्चे को ढूंढने में मदद की जाए। तो ये तीन तस्वीरें बयां करती है कहानी, एक पिता जो अपने बेटे को ढूंढ रहा है, जो गायब है, जिससे बात नहीं हो पा रही, परदेश में है और क्या कर रहा है, कहां है, कुछ उन्हें इस वक्त मालूम नहीं है। डर मन में यह है कि जिस शख्स के साथ तनाव था, तू मैमे हुई थी, कहीं कुछ उसके साथ ना हुआ हो। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अतुल तिवारी अहमदाबाद से। अतुल, अब तक क्या पता चल पाया है, क्या जॉर्जिया की पुलिस, वहां की सरकार, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक्शन इस मामले में लिया गया है या परिवार अब भी उम्मीद लगाए बैठा है और कुछ हुआ नहीं?
1: देखिए, बीते 12 दिनों से ध्वनित के माता पिता ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे से उनकी एक बार बात हो जाए, लेकिन 14 मई को आखिरी फ़ोन पे जब बात हुई तो आखिरी बातचीत 20 सेकंड की हुई थी। उसके बाद से ध्वनित का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है और उसके माता पिता कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे से बातचीत हो। इसके लिए ध्वनित का जो बड़ा भाई जिसका नाम मिहिर है वो कैनेडा में रहता था। अहमदाबाद में रहने वाले ध्वनित के माता पिता ने तुरंत ही ध्वनित के बड़े भाई मिहिर को कैनेडा से जॉर्जिया के लिए रवाना कर दिया। बीते 10 से 11 दिन हो चुके हैं, ध्वनित जो कि लापता है उसका बड़ा भाई खुद जॉर्जिया में मौजूद है, लेकिन जॉर्जिया में भारतीय दूतावास के सिवाय किसी की भी मदद अब तक ध्वनित को खोजने को लेकर नहीं मिल पा रही है। जॉर्जिया पुलिस की भी बात करें तो नियमों का हवाला देकर ध्वनित के माता पिता को लगातार यही बताया जा रहा है कि जो भी अब तक जाँच उन्होंने की है उसकी जानकारी वो उसके माता पिता को नहीं दे पा रहे हैं। और साथ ही में ध्वनित के माता पिता जो कि अहमदाबाद में मौजूद हैं, पिता डॉक्टर हैं और माता शिक्षिका हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं गुजरात सरकार से बात करने की, गुजरात सरकार के माध्यम से विदेश मंत्रालय तक अपनी बात पहुंचाने की, और सरकार द्वारा एक सीधी कोशिश जॉर्जिया सरकार से बातचीत करके उनके बेटे को खोजने के लिए की जाए, इस प्रकार की कोशिश में लगे हैं। और कल ही गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी से ध्वनित के पिता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई है। हर्ष संघवी की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक पहल शुरू की गई है, जॉर्जिया सरकार के साथ उनकी बातचीत।

0: जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हुई है। तो कोशिश लगातार यही है कि जो 14 मई को लास्ट में 20 सेकंड की बातचीत हुई थी और जो बातचीत जब हो रही थी उसके बाद ध्वनित को उसके माता पिता ने भारत वापस आने का एक टिकट दिया हुआ था। ध्वनित अपने रूम पर पहुंचा था जहां से वो पासपोर्ट अपना मोबाइल फोन लेकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो रहा था और हो सकता है आने वाले 24 घंटे में ध्वनित भारत में आता, लेकिन ध्वनित एयरपोर्ट तक पहुंच पाता उसके पहले जब उसका फोन कटा तब से वो लगा।
1: बड़ा सवाल यही है कि आखिर ध्वनित कहां है और इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी जॉर्जिया की तरफ से। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। ये खबर राजस्थान से है जहां नकली दवाइयों के जानलेवा जाल का खुलासा हुआ है। 10 दिनों की जांच में यह पता चला है कि राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के दौरान दी जा रही ऑक्सीटोसिन दवा जांच में नकली निकली है। बड़ी खबर यह भी है कि कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में इसी नकली दवा का इस्तेमाल किया गया था जिससे 4 महिलाओं की मौत हुई थी। ये सब महिलाएं प्रसूता थी, प्रेग्नेंट थी। राजस्थान के ड्रग कंट्रोल विभाग ने पूरे प्रदेश में इस दवा की बिक्री और इस्तेमाल पर अब रोक लगा दी है। राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक का ने बताया है कि जैक्सन लैबोरेटरीज अमृतसर के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का सैंपल फेल होने के बाद कोटा के अस्पताल से इसका सारा स्टॉक जब्त कर लिया गया है। हालांकि बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर राजस्थान के सरकारी अस्पताल में इस दवा की सप्लाई कैसे हुई। ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शरद कुमार का जयपुर में। शरद, सवाल बार बार ये पूछ जाना कि नकली दवाएं कैसे पहुंच जाती हैं अस्पतालों तक, डॉक्टरों तक, ये अब बेमानी होते जा रहे क्योंकि राजस्थान में ही हमने नकली कॉफ सिरप से बच्चों की भी मौतें देखी थी और अब प्रेग्नेंट महिलाओं को दिए जाने वाला इंजेक्शन नकली।
2: अंजलि, जो सवाल आप पूछ रहे हैं यही एम्स के जो एक्सपर्ट आए थे कोटा में, जो 5 महिलाओं की मौत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इस दवा का इस्तेमाल आप सरकारी अस्पताल में क्यों कर रहे हो, ये तो एसओपी में है नहीं। तो उस समय अधीक्षक ने कहा था कि सरकार हमें जो एसओपी में दवा है वो खरीद कर नहीं दे रही है, इसलिए हमें ये दवा बाजार से खरीद कर लेनी पड़ी। मगर इसके लिए किससे अप्रूवल लिया था, क्या ड्रग कंट्रोल विभाग ने कोई जांच की थी, इसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाए। वहां से वो सैंपल लिया गया था, 14 दिनों के अंदर इस सैंपल की जाँच हुई है जहां पर दवा ही नहीं थी इसमें। जिस दवा का नाम है वो नील था, यानी पूरी की पूरी दवा ही नकली थी और वो जो 5 महिलाएं मरी हैं उन 5 को दिया गया था। अब ऑक्सीटोसिन महिला जो दवा होती है वो 2 तरह से काम करती है, डिलीवरी के दौरान नॉर्मल डिलीवरी कराती है और ब्लीडिंग रोकती है। नॉर्मल डिलीवरी 5 महिलाओं की नहीं हो पाई क्योंकि दवा काम नहीं की, सिजेरियन करना पड़ा और ब्लीडिंग भी हुई है।
1: डॉक्टरों ने भी कहा था ग्रामीण इलाकों से जांच में पता चलेगा, लेकिन सवाल जरूर उठता है कि नकली दवाई कैसे पहुंची। शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में जो सत्ता का संग्राम है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनके बीच में खींचतान की खबरों के बीच सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया गया है। दोनों नेताओं की आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक अहम बैठक भी होगी। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कर्नाटक की लीडरशिप और 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बात हो सकती है। दरअसल हाईकमान को लग रहा है कि सरकार में एक नई शुरुआत की जरूरत है ताकि 2028 तक सब कुछ पटरी पर रहे। तो सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच खींचतान की खबरें पहले भी आ चुकी हैं। माना जा रहा है कि अब कांग्रेस आलाकमान इस पर स्थायी विराम लगाने की कोशिश में है, लिहाजा कई फॉर्मूले पर भी चर्चा की जा रही है। आइए आपको हम दिखाते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्या है पहला फॉर्मूला। सरकार वैसी ही रहे जैसी है, बस कैबिनेट बदल दिया जाए, मंत्री बदल दिए जाए, सबसे कम उथल पुथल होगी इसमें। ये ऐसा तरीका है कि सिर्फ कैबिनेट में फेरबदल हो, जो मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उन्हें हटाया जाए और डीके शिवकुमार की राय इसमें शामिल जरूर की जाए। यह था पहला फॉर्मूला। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। शिवकुमार बने मुख्यमंत्री, ये कहा जा रहा है, ये सबसे ज्यादा चर्चा में है। डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए और सिद्धरमैया को राज्यसभा भेज दिया जाए। डीके शिवकुमार के साथियों को भी नई कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ऐसे में इससे एक साफ राजनीतिक संदेश जाएगा कि जिसने पार्टी के लिए मेहनत की चुनावों के दौरान भी और बाद में भी उसे इनाम मिला है। अब तीसरा फॉर्मूला, मल्लिकार्जुन खड़गे का कर्नाटक आना। बस इस फॉर्मूले की संभावना सबसे कम मानी जा रही है। अगर बात दोनों नेताओं के बीच नहीं बनी तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन शायद ही इन दोनों को सुहाएगा कि ऐसा हो। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी मौसमी सिंह इंदिरा भवन से। मौसमी, बड़ा दिन है, बहुत दिनों से, महीनों, लगभग साल हो चुका है ये चर्चा चल रही है कि कब बदलाव होगा, तो आज आला कमान के साथ फाइनली दोनों की मुलाकात, क्या माना जा रहा है, क्या एजेंडा रहेगा?
3: जी देखिए, आपको बता दें कि लगभग 11 बजे इंदिरा भवन पे ये बैठक होने वाली है। 6-7 बड़े मंत्री, जिसमें जी परमेश्वरा, एमबी पाटिल शामिल हैं। कर्नाटक के ये मंत्री डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के साथ आ गए हैं। कर्नाटक भवन से सिद्धरमैया निकलेंगे इंदिरा भवन के लिए। अब ये तीनों फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ढाई साल का जो फॉर्मूला है उसकी चर्चा हर बार चली आती है। डीके कैंप कहता है कि ढाई साल का फॉर्मूला तय हुआ था। सिद्धरमैया कैम कहता है कि ऐसी कोई बात होती तो हमें पता चल जाता। हालांकि पार्टी हाईकमांड की तरफ से हमारे सूत्र बता रहे हैं इस बात पर मंथन बहुत गंभीर रूप से हो रहा है कि फेरबदल की जरूरत है। अगर हम 2028 में चुनाव जीतना चाहते हैं तो सरकार को कर्नाटक में रीबूट करना पड़ेगा, ताकि कांग्रेस मॉडल को धुआंधार तरीके से इम्प्लीमेंट करा जा सके और एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। और इसके लिए ये फेरबदल होने वाला है, अगले 1-2 दिन में ये फेरबदल होगा। अब मुख्यमंत्री बदलेगा, जो कि सबसे प्रबल चांस है कि डीके शिवकुमार आ सकते हैं। लेकिन अगर सिद्धरमैया को दिक्कत होती है, पहले भी उन्होंने कहा है कि अगर मुझे हटा रहे हैं तो किसी और दलित चेहरे को सामने लाइए, तो जी परमेश्वरा जो है वो उनकी एंट्री हो सकती है। और इन सब चीजों को लेके 11 बजे मंथन चिंतन होने वाला है।
1: जी मौसमी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह देश में अलग अलग बॉर्डर्स का इलाका जो है उसका दौरा कर रहे हैं और सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं। उनके दौरे की शुरुआत आज राजस्थान के बीकानेर से हो रही है। इस दौरान गृह मंत्री बीएसएफ की सीमा पर बनी चौकी सांचू का दौरा करेंगे। यहां वो सीमा पर तैनात जवानों से संवाद भी करेंगे और सुरक्षा बलों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह बीकानेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत प्रदेश में अलग अलग बॉर्डर से सटे 184 गांवों को सड़क और 4G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। और आइए अब जानते हैं कि इस पूरे जो मिशन है उसका दरअसल मकसद क्या है। तो आइए नजर डाल लेते हैं। पहला मकसद जाहिर तौर पे कि सीमा सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और बॉर्डर्स को सुदृढ़ बनाया जा सका। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भारत की रही है, बार बार ये होता है कि घुसपैठ के कई इलाके निशानदेह किए जाते हैं, उनको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय निकाला जा सके। इसके अलावा बॉर्डर से जो सटे गांव हैं उनका विकास किया जाए, क्योंकि ये आपकी फ्रंट लाइन है। ये बॉर्डर के गांव अगर जुड़े रहेंगे दिल्ली से तो जाहिर तौर पर जो बॉर्डर है वो अच्छी तरह से सुदृढ़ बने रहेंगे। चलिए अब रुक करते हैं हम अगली खबर का, जो आ रही है बंगाल से, और बात घुसपैठियों की ही हो रही है। वहां घुसपैठियों के खिलाफ शुरू हुआ है और इसका असर अब दिखने भी लगा है। बड़ी खबर यह है कि आज सुबह हकीमपुर चेक पोस्ट पर 100 से ज्यादा अवैध प्रवासी इकट्ठा हो गए। कई बॉर्डर चेक पोस्ट पर इसी तरह की भीड़ अब देखी जा रही है। तो हकीमपुर चेक पोस्ट की ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पर प्रवासियों का जमावड़ा बन रहा है। 100 से ज्यादा ये लोग वहां पर पहुंच गए थे। आइए सीधा रुख करते हैं कोलकाता का, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता। तापस, ये जो लोग हैं हकीमपुर चेक पोस्ट पर क्यों पहुंचे हैं, क्या पता चल रहा है?
4: जी देखिए, पिछले एक साल में ये दूसरी बार ये चित्र हमें देखने को मिल रहा है कि पिछले साल तकरीबन अगस्त सितंबर के दौरान हमने देखा था कि हजारों की तादाद में लोग इसी हकीमपुर चेक पोस्ट पे पहुंचे थे, जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए थे और यहाँ रह रहे थे। उस समय SIR इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी, उसी डर से लोग वापस जा रहे थे। और अब नया सरकार आने के बाद जब सरकार ने अपने 3D मॉडल का खुलासा किया है कि पहले डिटेक्ट, फिर डिटेन और उसके बाद डिपोर्ट, तो इसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों पर होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। और इसी डर से ये माना जा रहा है कि 100 के तादाद में लोग एक बार फिर हकीमपुर बॉर्डर पहुंचे हैं आज सुबह से, वो दूसरे छोर पर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि BSF के पास इस तरीके की कोई सूचना फिलहाल नहीं है और इसलिए उन्हें पुशबैक करने का इस समय प्रक्रिया क्या होगा, इस बारे में कोई साफ तौर पे कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन भारी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं, कुछ लोगों ने बकायदा ये भी मान लिया है कि वो अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए थे और अलग अलग जगहों पे हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना के अलग अलग इलाकों में वो काम करते थे, कहीं लोगों के घर में काम करते थे, कहीं मिस्त्री के तौर पर वो काम करते थे। लेकिन अब ये डिटेंशन सेंटर या होल्डिंग सेंटर जिसे कहा जा रहा है, उसके बारे में खुलासा होने के बाद वो इस बात से काफी डरे हुए हैं कि अगर उन्हें होल्डिंग सेंटर में डाल दिया गया तो फिर आगे जाकर क्या होगा, इसलिए वो इसी समय बॉर्डर क्रॉस करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं।
1: जी, शुक्रिया तापस। जाहिर तौर पर वो तो पहुंच गए हैं, लेकिन ये राजनयिक मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है दोनों देशों के बीच। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के धार भोजशाला को लेकर आ रही एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। धार भोजशाला का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। धार भोजशाला मामले में मुख्य मुस्लिम पक्षकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। आपको याद होगा कि हाल ही में धार भोजशाला में जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार के दिन पूजा की गई थी, महाआरती की गई थी और नमाज पर रोक लगा दी गई थी। और अब पता चल रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है, जैसा कि उसने पहले भी ये बात कही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, वो पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। और अब बात देश की पुलिसिया व्यवस्था की, जिसे लेकर दावे तो कई किए जाते हैं, लेकिन आए दिन कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जो इस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर देती हैं। कहीं पुलिस बेबस नजर आती है तो कहीं बेपरवाह। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हाल एक जैसा ही है। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की, जहां दो दिन पहले पुलिस की टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए पहुंची तो अपराधी के घर वाले पुलिस वालों की ही तलाशी लेने लगे। वहीं दूसरी तस्वीर और भी शर्मनाक है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। इस वारदात पर जब पुलिस के आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो हंसते हुए नजर आए। और अब बढ़ रहे हैं ट्विशा केस मौत मिस्ट्री की तरफ। CBI ने ट्विशा केस में औपचारिक रूप से FIR दर्ज कर ली है। भोपाल के कटारा हिल्स थाने में पहले मामले दर्ज किए गए हैं और उसको पहले ही जो मामला था उसको रीरजिस्टर किया गया है। इससे पहले कल पुलिस की टीम ट्विशा के पति समर सिंह को लेकर उसके घर पहुंची और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। तो ट्विशा मामला जो अब CBI के सुपुर्द हो चुका है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उस वक्त की है जब समर्थ को लेकर के पुलिस गई, उससे पूछताछ भी लंबी की गई है। जानने की कोशिश की गई है कि वहां पे जब उसे ले जाया गया तो सीन रिक्रिएट करके क्या जांच में कुछ अहम सुराग मिल पाते हैं। पुलिस चाह रही है कि 2 घंटे तक जो छानबीन की गई उसके बाद कुछ ऐसा निकल के आए जिससे वो पता लगा सके कि उस आखिरी वक्त में क्या हुआ, क्यों ट्विशा की मौत हुई। और इन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए समर्थ सिंह को उसके घर ले जाया गया जहां पर रिक्रिएट किया गया उस सीन को। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है।
5: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब वेक्टर्स।
6: दिस इज द साउंड ऑफ जैक। buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
7: Oh, ouch.
6: However you make money work, we can work with that.
8: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds
10: with artists like James Bay,
11: come on, let it go.
9: Nora Jones,
12: my heart is drained.
9: Daniel Caesar,
13: we both know how,
9: and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House. Or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
15: So thank God I get to wake
14: and everything
15: up
14: else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
16: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
18: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
19: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
20: सोच बदलो और बैंक भी।
21: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
22: जीके मैक्स।
23: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
22: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
24: जेके वॉल मैक्स
25: बेस्ट पेंट,
26: जेके मैक्स।
27: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
28: JK Maxx Paints.
29: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
3: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
4: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
5: नहीं,
4: और म्यूचुअल फंड से
5: सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: बस 2000
8: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा,
9: और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
10: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
11: Like I said before, we better hold the sins.
12: Director, the taste of success.
13: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
14: In association with
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: Chogan perfumes, the French edition for him and her.
17: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
18: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
19: Employers don't hire diplomas, they hire skills. At WGU School of Technology, you'll earn both with a degree backed by industry certifications that prove you're job ready. Learn more at wgu.edu.
20: Tune In's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
21: Tune In is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
22: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
23: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
24: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
25: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
26: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
27: सोच बदलो और बैंक भी।
28: और वही कहाँ गए थे घूमने?
29: जीके मैक्स।
30: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
29: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
30: जेके वॉल मैक्स।
29: बेस्ट पेंट
30: जेके मैक्स।
29: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
2: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
0: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
1: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
4: बस 2000
5: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा,
6: और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
10: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
11: Like I said before, we better hold the sins.
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
2: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
3: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
1: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
4: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
2: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
1: जहां खबर वहां खबरदार।
5: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
6: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

डोज पेट्रोल डीजल के बाद 2 रुपए बढ़े सीएनजी के दाम। दिल्ली में 83.09 रुपए प्रति किलो हुई कीमतें। 12 दिन में कुल 6 रुपए का इजाफा। राजस्थान में नकली दवा रैकेट का खुलासा। कोटा के सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन से हुई थी महिलाओं की मौत। 11 सैंपल जांच में फेल। कई राज्यों तक फैला है ये जाल। मिडल ईस्ट में जंग के बीच दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की शुरुआत। पश्चिमी एशिया के ताजा हालात को देख हिंद प्रशांत क्षेत्र पर फोकस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पहुंचे दिल्ली। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच सुबह 11 बजे आज कांग्रेस आलाकमान की मीटिंग। मुख्यमंत्री बोले एजेंडा पता नहीं। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे। देश भर में अभियान चलाएगी बीजेपी। जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे केंद्रीय मंत्री सांसद और मुख्यमंत्री।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
4: और आइए सीधा रुक करते हैं अब इस वक्त जो क्वाड की मीटिंग है उसके बाद एक साझा बयान जारी किया गया है। एस जयशंकर भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये बयान जारी किया है। दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक थी और उसके बाद सभी देशों ने मिलकर एक साझा बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं और ये बात सभी देश मानते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन फ्यूल की, एनर्जी की, ऊर्जा की ये प्रभावित हुई है, इन सभी देशों का मानना है। बैठक के बाद क्वाड देशों ने ये साझा बयान जारी करते हुए कहा है कि जो फ्यूल क्राइसिस है, ऊर्जा को लेकर जो संकट है, वो सप्लाई चेन के प्रभावित होने की वजह से हुआ है और ये बात चिंता का विषय है सभी क्वाड देशों के लिए। तो चार देशों के ये विदेश मंत्री आज एक साथ बैठे और सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा की गई और साझा बयान में ये बात कही भी गई है कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो ऊर्जा की है, चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे एलपीजी हो, चाहे पीएनजी हो, इस सब को लेकर चिंता है। साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर भी साझा बयान में कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस होगी आतंकवाद के खिलाफ। कई देश हैं इस इलाके के, क्वाड देशों के ही अगर आप बात कर लें तो आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा खास तौर पर भारत के लिए रहा है। ऐसे में भारत ने की तरफ से हमेशा ये पुश रहा है, ये जोर दिया गया है कि जो साझा बयान बने उनमें आतंकवाद पर भी कुछ बात कही जाए और इस बात को साझा बयान में सम्मिलित किया गया है और कहा गया है कि आतंकवाद के खिलाफ से जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। तो न सिर्फ ऊर्जा का संकट बल्कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात भी इस साझा बयान में की गई है। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ने यह साझा बयान जारी किया। क्वाड, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, चार देशों का एक समूह है। इन चार देशों के बीच में तालमेल बना रहे, इनकी जो अपनी परेशानियां हैं उन्हें उजागर किया जा सके और आपसी बातचीत चलती रहे, इसलिए ये समूह है। और इसमें खास तौर पर क्योंकि मार्को रूबियो भी मौजूद थे, ऐसे में ग्लोबल सप्लाई चेन की बात होना अहम है।
5: For the past several months, our officials have advanced collaboration across key Quad priorities, including maritime security, critical technologies, economic resilience and HADR. We have seen encouraging progress on many initiatives. As maritime democracies, pluralistic societies and market economies, we share a responsibility towards a free and open Indo-Pacific. The region must remain a driver of global growth and stability. We will be underlining that today, through our deliberations, which I'm confident will be useful and productive. Each facet of a joint effort makes the region that much better. As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them, while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world. The responsibilities of the Quad will grow commensurately, and we must prepare for that. So, as the host, let me thank my colleagues for their valuable contributions in what has been a very productive and forward-looking meeting. Thank you.
4: तो एक तरफ यूएस और ईरान के बीच जंग की गर्माहट है तो इधर उत्तर भारत में लोग गर्मी से बेहाल हैं। प्रचंड गर्मी के बाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है अब बिजली संकट, जहां सरकार ये दावा कर रही है कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या यूपी के बड़े बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली मिल पा रही है? क्योंकि यूपी के बिजली मंत्री का तो यही दावा है। इन दावों की हकीकत आज तक ने चेक की है, हमने अपनी टीम ग्राउंड पर उतारी है और इन दावों का रियलिटी चेक किया है।

0: लेकिन उसे लाइट नहीं है और ये लोग वहाँ 5 घंटे इंतजार करने के बाद, कर्मचारियों का, अधिकारियों का इंतजार करने के बाद यहाँ कभी नगर उपकेंद्र पर आए हैं।
1: आज से नौतपा शुरू हो चुका है। नौतपा मतलब अगले 9 दिन भीषण गर्मी, कहीं कोई राहत नहीं। देश के कई इलाकों में तापमान 47 से 48 डिग्री चल रहा है। यूपी के कई शहरों में 45 के पार चला गया है। गर्मी इतनी भीषण कि डॉक्टर से लेकर सरकार तक कह रही है कि घरों से बाहर मत निकलना, लेकिन घर में तो बिजली ही नहीं आ रही तो लोग क्या करेंगे। जनसंख्या के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यूपी में ही हालात खराब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली कटौती पर सख्ती दिखाई है। यूपी में मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली की सप्लाई की जाए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या उत्तर प्रदेश के शहरों में 24 घंटे बिजली मिल रही है? क्या लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा में 24 घंटे बिजली मिल पा रही है?
2: मुझे तो हाथ जोड़ के उनसे लाइट सही करवा दीजिए कि हम लोगों को बहुत, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, किचन में काम करते वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है।
1: क्या यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली मिल रही है? क्या इस भीषण गर्मी में यूपी के ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं कट रही?
3: परेशानी, गर्मी के समय है, आम जनता है, बुजुर्ग लोग हैं, मामले तकलीफ हो रही है सभी लोग को, उठने बैठने में और बिजली के सारे सभी लोग हैं।
1: आज हम इसी का रियलिटी चेक करेंगे कि यूपी के शहरों में और ग्रामीण इलाकों में कितनी बिजली आ रही है। लेकिन उससे पहले जरा आपको यूपी के बिजली मंत्री के दावे भी बता देते हैं। ये यूपी के बिजली मंत्री AK शर्मा हैं, पूर्व IAS रहे हैं। आजकल ये हर रोज अपनी एक्स टाइमलाइन पर यूपी में बिजली की स्थिति की जानकारी देते हैं। बढ़िया फोटो खिंचवाकर बताते हैं कि वो काम कर रहे हैं, यूपी वालों को बिजली दे रहे हैं। इन्होंने आज ये पोस्ट किया है, दावा किया कि यूपी में बिजली की महा आपूर्ति हो रही है। ये भी बताया कि कल रात 10:39 तक 31,804 मेगावाट की पीक सप्लाई की गई। कहा कि सर्वत्र 2400 घंटे बिजली दी गई। ये भी दावा किया कि ग्रामीण इलाकों में भी 22 से 22.5 घंटे तक बिजली दी गई। अब जरा यूपी के बिजली मंत्री AK शर्मा के इन दावों का रियलिटी चेक करते हैं। और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, क्योंकि मंत्री जी के दावों की हवा तो प्रदेश की राजधानी में ही निकल रही है। कोई ग्रामीण इलाका नहीं है, प्रॉपर शहरी इलाका लखनऊ का फैजुल्लागंज इलाका, जहां रात रात भर बिजली नहीं आ रही, दिन में बस कुछ ही घंटे बिजली आती है। और इन हालात में भी महिलाओं को घर वालों के लिए खाना तो बनाना ही है।
4: चेहरे पर कितनी भी शिकन हो, चेहरे पर कितना भी पसीना हो, लेकिन ये इनका धर्म है, इनका कर्तव्य है, इसका निर्वहन ये करती नजर आती हैं। इनकी क्या समस्या है इस बिजली समस्या में, जिसे इस वक्त पूरा प्रदेश जूझ रहा है, वो आपको बताएंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के फैजुल्लागंज इलाके में है। हमारे साथ पूनम जायसवाल जी इस वक्त मौजूद हैं। पूनम जी, मैं देख रहा हूं कि आप घर के लिए लंच तैयार कर रही हैं, रोटी बना रही हैं। बिजली की कितनी समस्या है आपके इलाके में और क्या परेशानियों को आप एक महिला के तौर पर घर में झेल रही हैं?
2: सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हम लोगों को, गृहिणियों को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब लाइट नहीं आ रही है, हमको तो BP की प्रॉब्लम है और मुश्किल से 5 रोटी सेकते हैं, हम रुक जाते हैं, बंद कर देते हैं, फिर बैठ जाते हैं थोड़ी देर, फिर रोटी सेकते हैं। इतनी ज्यादा दिक्कत है, और फैन रहता है तो जाके, लाइट रहती तो फैन में बैठ जाओ, लेकिन अब लाइट नहीं रहती तो दिक्कत हो जाती है। और रात रात भर बच्चे जगते रहते हैं, हमारे बच्चे को तो सर दर्द की प्रॉब्लम हो गई है गर्मी की वजह से।
4: आप जैसे बोल रही हैं, मुझसे बात कर रही हैं, आपकी सांस भी फूल रही
2: है। जी, मुझे BP की प्रॉब्लम है ना, इस वजह से, गर्मी की वजह से मैं गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, और मुझे तो बहुत ज्यादा।
4: तो आपके इलाके में तो बता रहे हैं लोग कि रात रात भर लाइट नहीं आ रही है, कैसे
2: लाइट नहीं आती है? रात रात भर लाइट नहीं आती है, रात तो सब बाहर घूमते रहते हैं।
4: 24 घंटे में कितने घंटे लाइट आ रही है?
2: आती जाती रहती है, कभी कभी तो 2-3 घंटे रात में कट जाती है, सुबह 4-5 बजे आती है।
1: तो शहरी इलाकों में 2400 घंटे बिजली सप्लाई का दावा तो फेल हो गया मंत्री जी। पंखा झलते हुए लोग खुद ही बता रहे हैं कि बिजली के क्या हाल है। बिजली आ कम रही है और कट ज्यादा रही है।
4: सोच रहे होंगे कि दोपहर के समय आखिर ये मेरे पीछे जो लोग आप देख रहे हैं मोहल्ले के, ये बाहर आंगन में क्या कर रहे हैं और इनके हाथों में पंखे क्यों हैं? अब बाकी कहानी शायद आप खुद समझ गए होंगे कि इनके हाथों में पंखे इसलिए हैं क्योंकि बिजली की समस्या है और बिजली इस वक्त इनके घरों में नहीं आ रही है। काफी ज्यादा कटिंग लखनऊ के इस क्षेत्र में बिजली की हो रही है, क्या समस्याएं हैं इन्हीं से समझते हैं। आप बताएं मुझे कितना आपके मोहल्ले में दिक्कत इस वक्त बिजली को लेकर है।
5: दिन भर लाइट गायब है, हर एक घंटे के बाद लाइट चली जाती है। रात तो समझ ले कोई सो ही नहीं पा रहा है यहाँ।
4: रात में क्या माहौल रहता है?
5: रात में डेली लाइट चली जाती है, डेली का नियम है 10-11 बजे से रात भर लाइट नहीं आ रही।
4: आप लोग फोन करते हो केंद्रों में, क्या बोलते हैं?
5: बस वही कहते हैं कि यार यहाँ दिक्कत है वहाँ दिक्कत है, बस यही चल रहा है, बहुत परेशान है।
6: बड़ी दिक्कतें हैं, लाइट मतलब कोई टाइम ही नहीं, कब आ रही कब जा रही, यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। टंकी भरी नहीं,
4: समरसेबल ही नहीं चल पाएगा,
6: समरसेबल भी नहीं चल पाता है। और सारा काम शहरी जीवन में सब बिजली पे ही डिपेंड है, चाहे वो मसाला पीसना हो, चाहे वो कपड़ा धुलना हो, चाहे वो पीने का पानी हो, नहाने का, कुछ भी हो, सब बिजली पे डिपेंड है।
1: अब आपको उत्तर प्रदेश के एक और बड़े शहर वाराणसी का हाल दिखाते हैं। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा सर्राफा मार्केट है, वाराणसी का रेशम कटरा। यहाँ हजारों कारीगर सर्राफा से जुड़े हैं, जिनकी पूरी कारीगरी बिजली पर ही निर्भर है। सोने चांदी की शुद्धता मापनी हो या कोई आभूषण पॉलिश करना हो, जिन मशीनों से ये काम होता है उन्हें ठंडा माहौल चाहिए होता है। 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर और बिना बिजली के इस तापमान को बहाल करना मुश्किल हो रहा है।
7: बिजली तकरीबन मतलब कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार कट रही है, मतलब कि 5-5, 6-6 घंटे तक लगातार कट रही है। बीच बीच में 10 मिनट आ रही है, फिर आधे घंटे चली जा रही है, फिर आधे घंटे आ रही है, फिर एक घंटे चली जा रही है। उसके वजह से हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है कि लगातार इसको बैकअप करना, इसके लिए बैकअप करने के लिए हम बैटरी लगाते हैं कि बैटरी जिसके पास बैकअप नहीं रहता है वो पूरा दिन उनका काम बंद हो जाता है, क्योंकि ये सारे मशीनें सब एसी के ही टेम्परेचर में 20-22 डिग्री टेम्परेचर में ही चल पाएगा। उसके अगर अलावा मतलब अगर बंद रहेगा, अगर एसी हमारा नहीं चलेगा तो ये नहीं चल पाएगा मशीन, क्योंकि बहुत महंगी मशीनें आती है, 30 से 32 लाख अमूमन इसका दाम होता है। और हमेशा ये इसको लगातार ये सुबह 10 से चालू होता है, रात के 10 बजे तक ये चलता रहता है। अगर बिजली नहीं अगर इसको मिलेगा तो ये चल नहीं पाएगी। तापमान
1: कानपुर का भी हाल देख लीजिए। कानपुर यूपी का बड़ा महानगर है, दावों में तो यहाँ भी 2400 घंटे लाइट आ रही है, लेकिन रियलिटी चेक हाल बता रहा है। ये कानपुर का एक बैंक्वेट हॉल है जहां पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ है लेकिन लाइट ही नहीं है। अब तो हालात ये हैं कि कारोबारियों को बुकिंग कैंसिल होने का डर सता रहा है।
8: मौजूद है कानपुर में, एक महानगर है, स्मार्ट सिटी है, और ये दोपहर का वक्त है, समय बज रहा है 4:30 के आसपास, और हालत ऐसी है कि फिलहाल एक गेस्ट हाउस के बाहर हूँ मैं। 80 फिट रोड ये मार्केट पड़ती है जहाँ पे तमाम आपको गेस्ट हाउस मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी, और हालत ये है कि लाइट नहीं आ रही है, और जो लोग हैं वो सामने बैठ के आपके गर्मी से कहीं ना कहीं पंखा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हवा लगे, लेकिन इसी तरीके के हालत आपको तकरीबन शहर के कई इलाकों में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जो पंखा है स्विच लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल पंखा बंद है, पूरी तरीके से एयर कंडीशन ये हॉल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेंट्रलाइज एसी है, लेकिन फिलहाल बिजली ना आने की वजह से ना लाइट जल रही है ना ही पंखे चल रहे हैं।
9: यह सुबह 10 बजे गई थी, फिर थोड़ी देर आई, फिर आ जा रही है, मतलब ये समझ के चलिए कि इस भीषण चिलचिलाती गर्मी में जो हाल आप देख ही रहे हो,
8: देख रहा हूँ कि चेहरे पे पसीना जो है वो बता।
9: हाँ, तो ये हाल है कि जब उनसे बात करो अधिकारियों से, ऊपर सरकार प्रयास करी, योगी जी का पेपर पढ़ते हैं, बहुत प्रयास है उनका कि बत्ती 24 घंटे मिले, लेकिन अधिकारियों से बात करी तो कह रहे एवीसी कंडक्टर जो तार डाले गए उसके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। बताइए, अरे कनेक्शन भैया सुबह जोड़ लो, कम से कम वर्किंग आवर्स में तो ना जोड़ो जिससे जो आदमी प्रताड़ित ना हो।
10: यही है कि जनरेटर अगर इस्तेमाल करते हैं तो डीजल की कॉस्ट आएगी, जब डीजल महंगा हो गया, रूम अगर हम रूम भी उठाते हैं तो रूम में कॉस्ट बढ़ जाएगी, रूम हमारा क्यों लेगा कोई, सबसे पहले लाइट नहीं है तो रूम लेने के लिए उसको लाइट चाहिए, एसी चाहिए, जब वो पैसा देगा तो उसको एसी चाहिए, जनरेटर से चलाते हैं तो डीजल की कॉस्ट बढ़ गई, मेरे रूम की कॉस्ट बढ़ जाएगी, रूम उठना बंद हो गया।
8: ये सरकार दावा कर रही है कि 18-24 घंटे जो है बिजली दे रहे हैं या दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि
11: देखिए ये दावे तो सभी फेल हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग तो रोज प्रतिदिन ये सारी चीजें देख रहे हैं, क्योंकि यही कामना कर रहे हैं प्रभु कब लाइट पूरी तरीके से मिलेगी, लाइट तो कत्ता ही मिल नहीं रही है। और जो चाह रहे हैं कि मतलब ये मान लीजिए अगर कुछ घंटे के लिए आ जाए तो वही बहुत है, वो भी नहीं आ रही है, मतलब हर थोड़ी देर में ट्रिप हो रही है।
1: आज तक ब्यूरो।
12: अब सवाल है कि जब सरकार कह रही है कि वो रिकॉर्ड बिजली की आपूर्ति कर रही है तो फिर लोगों को बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है? लोग रात को सो नहीं पा रहे, दिन को आराम नहीं कर पा रहे, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी परेशान हैं। क्या गांव और क्या शहर बिजली की आंख मिचौली जारी है? देखिए ये रिपोर्ट।
1: अपनी ही सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ बीजेपी के पार्षद नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें भ्रष्ट और निकम्मा बता रहे हैं। मथुरा वृंदावन में 24 घंटे बिजली सप्लाई का दावा है, लेकिन असलियत क्या है ये खुद बीजेपी के पार्षद बता रहे हैं।
13: मुकदमा दर्ज कराओ, हम यहाँ धरने में बैठ रहे हैं। नहीं, आप मुकदमा दर्ज कराओ, धमकी दे रहे हो क्या आप मुझको धमकी दे रहे हो क्या? नहीं, निवेदन क्या आप ये कह रहे हो, धमकी दे रहे हो आप? तो आप मुकदमा दर्ज कराओगे मेरे खिलाफ? नहीं, बिजली विभाग क्या गड़बड़ हो? बिजली विभाग तो गड़बड़ है, तभी तो हम आए हैं, नहीं होती तो क्यों आते हम? अरे कहाँ हो रहा है, बारह बारह घंटे आपकी बिजली कटौती चल रही है, आप धमकी दे रहे हो? आप जनता को इतनी सैकड़ों की संख्या में जनता आई, आप उनको धमकी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे हो क्या?
1: सोमवार को बीजेपी के पार्षद शशांक शर्मा ने अपनी ही सरकार के बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया कि वो लगातार पिछले साल दिसंबर के महीने से मेंटेनेंस के लिए कह रहे थे, लेकिन तब अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रही और अब लोगों को 12 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही।
14: माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मथुरा जनपद को बिजली कटौती मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। बार बार वो समय समय पर बोलते रहते हैं कि जो धार्मिक स्थल है वहां 24 घंटे बिजली की आपूर्ति मिले, लेकिन हम 3 वर्षों से ये देख रहे हैं स्थिति कि वृंदावन में अघोषित बिजली कटौती से वृंदावन की जनता त्रस्त हो चुकी है। 24 घंटे में 12 घंटे भी बिजली आपूर्ति वृंदावन की जनता को नहीं मिल पा रही है। मेरे द्वारा दिसंबर से चिल्ला चिल्ला कर एसडीओ जेई और एक्सीएन को बार बार अवगत कराया गया कि आप मेंटेनेंस का काम जो हर वर्ष गर्मी आने से पूर्व जो मेंटेनेंस के काम होने चाहिए थे वो इनके द्वारा नहीं किए गए।
1: यही हाल मेरठ का भी है। मेरठ एक शहरी क्षेत्र है, आदेश के हिसाब से 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन 24 तो दूर, यहाँ तो इतनी बिजली भी नहीं आ रही कि लोग रातों की नींद पूरी कर पाएं या दिन में आराम कर पाएं। लगातार बिजली कटौती हो रही है।
12: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है।
15: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
17: इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर। ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
20: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
21: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
22: Oh, ouch.
21: However you make money work, we can work with that.
23: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
24: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
19: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, Complete Oral Health Ka Sach.
17: In association with
18: Bharat Ki Apni Electric Sawari, Sokudo.
19: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: की बैठक में दुनिया की सप्लाई चेन दुरुस्त करने पर हुआ मंथन, जंगी चुनौतियों पर चर्चा। विदेश मंत्री जयशंकर बोले आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, पूरा समूह एकजुट।
1: कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार पहुंचे दिल्ली।

0: ने कहा कि क्वाड को चर्चा मंच से जो है कार्रवाई मंच बनाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं और ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन सहयोग पर जोर। मार्को रूबियो ने जानकारी दी, कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क और एनर्जी सिक्योरिटी पहल की शुरुआत इसमें होगी।
1: राजस्थान में नकली दवाओं का बड़ा खुलासा, 10 दिन में 11 सैंपल फेल। सरकारी अस्पतालों में दी जा रही है ऑक्सीटोसिन दवा, नकली निकली, सप्लाई पर उठे सवाल। ऊटा मेडिकल कॉलेज में नकली इंजेक्शन से 4 महिलाओं की मौत। जैक्सन लैब के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का सैंपल फेल, पूरा स्टॉक जब्त। देश भर की कंपनी की दवाएं जांच से फेल, राजस्थान से लेकर कई राज्यों तक नकली दवाओं का नेटवर्क उजागर। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों ने फिर भरी उड़ान, 12 दिन में 6 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी, उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ा बोझ। राजधानी में सीएनजी उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, लगातार दूसरी बढ़ोतरी के बाद कीमत 83.09 रुपए प्रति किलो पहुंची। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी ने बढ़ाई चिंता, 12 दिन में दाम 70.09 रुपए से बढ़कर 83.09 रुपए प्रति किलो हुए। बीकानेर से गृहमंत्री अमित शाह का बॉर्डर दौरा शुरू, सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत, 184 सड़क गांव 4G नेटवर्क से जुड़ेंगे।
0: तेल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर बोले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईंधन पर टैक्स घटाने से सरकार को लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर नेता विपक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, बोले कि सरकार चुपके काट रही है जनता की जेब। देश में इबोला को लेकर हाई अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इबोला वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी, सुरक्षित परीक्षा कराने की अपील। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त कार्रवाई, केंद्र और एनटीए को नोटिस, एनटीए भंग करने वाली अर्जी पर जवाब मांगा।
1: कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार पहुंचे दिल्ली, नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच आज कांग्रेस आला कमान की मीटिंग, मुख्यमंत्री बोले एजेंडा पता नहीं। पवन कल्याण ने अपने राजनीतिक सफर पर विचार व्यक्त करते हुए कहा, मैंने आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए राजनीति में कदम रखा। दिल्ली हाईकोर्ट में जिमखाना क्लब बेदखली मामले पर सुनवाई, केंद्र ने रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भूमि आवश्यक बताई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली रेस क्लब को जारी की शो कॉज नोटिस पर रोक लगाने वाले सिंगल जज आदेश रद्द किया, केंद्र की अपील मंजूर। मीरा रोड हाउसिंग सोसाइटी में बकरीद से जुड़ा विवाद बढ़ा, झगड़े के दौरान चाकूबाजी करते दिखा शख्स, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। पश्चिम बंगाल के मालदा में राज्य का पहला होल्डिंग सेंटर शुरू, पूरे मालदा जिले का एकमात्र होल्डिंग सेंटर। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को होल्डिंग सेंटर में हिरासत में रखा, इनमें 3 महिलाएं 6 नाबालिग शामिल। मुर्शिदाबाद में अवैध घुसपैठ के आरोप में 3 लोग हिरासत में लेकर लाल गोला होल्डिंग सेंटर भेजे गए। कोलकाता के सॉल्ट लेक में मार्केट में रंगदारी के आरोपों के बाद टीएमसी विधायक की बिठाई, पुलिस ने हिरासत में लिया। आईएएस नीलम मीणा पश्चिम बंगाल के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त, मनोज कुमार अग्रवाल बने मुख्य सचिव।
0: एनआईए की जांच में लखनऊ में बड़े आतंकी हमले का खुलासा है। एनआईए के मुताबिक आतंकवादियों के निशाने पर यूपी विधानसभा सचिवालय, बड़ा इमामबाड़ा, जमीनाबाद, अमीनाबाद जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके भी शामिल। जांच में सामने आया कि आरोपी लखनऊ में रेकी कर कार बम धमाके की तैयारियां कर रहे थे, एजेंसी ने समय रहते इस साजिश का पर्दाफाश किया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गए हैं और इस बार राम रहीम को 30 दिनों के पैरोल दी गई। साल 2020 से अब तक राम रहीम को 16वीं बार पैरोल का फायदा मिला है, इससे पहले जनवरी में 40 दिनों की पैरोल दी गई थी। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में गैस पाइपलाइन ब्लास्ट की घटना, धमाके के बाद से इलाके में सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, गैस कंपनी की टीमें मौके पर पहुंची। भीषण गर्मी की चपेट में पूरा उत्तर भारत, उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक देखने को मिल सकता है भीषण गर्मी और लू का असर। मौसम विभाग के मुताबिक 27 मई तक राज्य के मैदानी जिलों में हीट वेव जैसी स्थिति, हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून, नैनीताल, चंपावत के कुछ इलाकों में गर्म हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं। अस्पतालों में दवाइयां, ओआरएस, बर्फ और जरूरी उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश, लू और डिहाइड्रेशन के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्थाओं के आदेश। महाराष्ट्र में बढ़ा लू का प्रकोप, 47.6 डिग्री तापमान के साथ ब्रह्मपुरी देश का सबसे गर्म स्थान। राजस्थान के बड़े हिस्सों में भीषण लू का प्रकोप, 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ कोटा रहा राज्य का गर्म स्थान।
1: भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में ऐतिहासिक ऊंचाई पर बिजली की मांग, आंकड़ों के मुताबिक मई के महीने में 8,647 मेगावाट पहुंची बिजली की डिमांड। 2024 के बाद मई महीने में राजधानी में बिजली डिमांड का नया रिकॉर्ड, आधिकारिक उन्होंने कहा जून में गर्मी के चरम पर पहुंचने

0: पहले 9000 मेगावाट को भी पार कर सकती है डिमांड। उत्तर प्रदेश में चरण गर्मी के बीच पूरी की जा रही राज्य की विद्युत आपूर्ति, प्रदेश में 69000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की डिमांड। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के मुताबिक देश में सर्वाधिक बिजली उपलब्ध कराने वाला राज्य बन गया यूपी, इस समय प्रदेश के इतिहास में पूरी की जा रही सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई। मैदानों की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच लोग कर रहे हैं पहाड़ों का रुख, शिमला में पिछले हफ्ते आई 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट की गाड़ियां। जॉर्जिया में 12 दिन से लापता है अहमदाबाद का एमबीबीएस छात्र ध्वनित राजदीप, परिवार ने पीएम मोदी और अमित शाह से लगाई गुहार। पीजी विवाद और फोन कटने के बाद परिवार की बड़ी चिंता, डिपॉजिट विवाद से शुरू हुआ तनाव, लापता ध्वनित को लेकर परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। पीजी मालिक से विवाद के बाद ध्वनित का फोन स्विच ऑफ, 14 मई से कोई सुराग नहीं। परिवार का दावा, पैसे लेने के बावजूद भी नहीं सुलझा विवाद, अभी युवक लापता, भारतीय दूतावास और पुलिस शिकायत के बाद ध्वनित का पता नहीं। ध्वनित की व्हाट्सएप चैट से खुलासा, पीजी मालिक ने दी थी जान से मारने की धमकी।
1: इंस्टाग्राम पर रीलबाज पुलिसकर्मी पर एक्शन, बरेली में लापरवाही करने वाले तीन पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया। मुजफ्फरनगर में नाम पूछकर मुस्लिम चाचा भतीजे को लोगों ने बेरहमी से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कटिहार में एक पंडित ने दूसरे पंडित से छीन ली जजमानी, तो उसके बाद से फिनाइल पी गया। अस्पताल में पंडित ने कहा कि प्रशासन सुनता ही नहीं है, डीएम ने संज्ञान लिया। दक्षिण दिल्ली के लाडोसराय इलाके में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, अब जांच जारी। चंदौली में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक वाहन की टक्कर में 15 लोग जख्मी, 4 की हालत इनमें गंभीर। हिमाचल प्रदेश के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कसौली में जंगलों में भीषण आग, धधकती आग से करोड़ों की वन संपदा राख। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा, दिल्ली से गोरखपुर जा रहे एक बस पलट गई जिसमें 6 की मौत, 19 घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर उनका सर्च ऑपरेशन लगातार 4th दिन जारी है। गंभीर, मुगलान और दोरीमल के घने जंगलों में सेना ऑपरेशन चला रही। बाराबंकी हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रेलर से बेकाबू इनोवा कार टकराई, 4 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चौरा बस्ती में फायरिंग और बम हमला मामले में अब गिरफ्तारी, आरोपी शमी अहमद को जांच के लिए मौके पर ले जाया गया।
0: बदायूं पुलिस की सफलता, इस्लामपुर डकैती केस में संभल से 5 गिरफ्तार, 19 लाख के जेवर बरामद, जांच में तेजी। टिहरी गढ़वाल के जंगलों में लगी विकराल आग, 14 हेक्टेयर वन क्षेत्र चपेट में आए, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। झारखंड के पाकुड़ में रेलवे के हाई टेंशन तार की चपेट में आकर डंपर धू कर जला, चालक ने कूद कर बचाई जान। भोपाल में सोसाइटी के पाकुड़ में खड़ी कार में भीषण आग, 1 कार और 2 बाइक जलकर खाक। झांसी में यात्रियों से भरी लग्जरी बस में लगी आग, चालक ने बचाई 30 यात्रियों की जान। कानपुर में मामूली बाइक टक्कर को लेकर विवाद, सरेआम पिता पुत्र की चाकू और हेलमेट से पीट पीट कर हत्या। भोपाल में नशे में धुत युवकों की सड़क पर उत्पात, तेज रफ्तार कार से राहगीरों और पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर। पटना में बीच सड़क पैसे के लेन देन को लेकर विवाद, दुकानदार ने युवक पर चाकू से किया हमला। पंजाबी सिंगर और लुधियाना की मेयर इंद्रजीत कौर के घर में बम से उड़ाने की धमकी, मेयर को दलजीत दोसांझ का सपोर्ट करने पर दी गई धमकी। इससे पहले दलजीत के मैनेजर के घर पर की गई थी फायरिंग, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली थी।
1: चार धाम यात्रा में भारी बारिश के बीच में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। चारधाम में उमड़ा है भक्तों का मेला और कल लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे भक्त, आंकड़ा 8.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक लगभग 6 लाख से ज्यादा दर्शनों के लिए पहुंचे। यमुनोत्री धाम में भी भक्तों का मेला, अब तक 4 लाख से ज्यादा भक्तों ने लगाई हाजिरी। फिल्म डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर में बढ़ा विवाद, एक्टर पर शूटिंग शुरू होने से 10 दिन पहले फिल्म छोड़ने का आरोप। रणवीर सिंह को फरहान अख्तर की डॉन 3 को छोड़ना पड़ा महंगा, शिकायत के बाद FWIC ने इंडस्ट्री में बैन लगाया। रणबीर कपूर की रामायण पार्ट 1 में बदल सकते रिलीज डेट, दावा की फिल्म इस साल दिवाली से 1 हफ्ते पहले 30 अक्टूबर को आ सकती है। एक्शन कॉमेडी के बाद अक्षय कुमार अब नए जॉनर में रखने वाले हैं कदम और एलियन से भिड़ेंगे इस बार सम्मुख में हॉलीवुड स्टाइल हॉरर साइंस फिक्शन में एंट्री। 40 फिल्मों के बाद डायरेक्टर डेविड धवन का बॉलीवुड से संन्यास, निर्माता निर्देशक करण जौहर हुए इमोशनल।
0: आज से धर्मशाला में हो रहा है प्लेऑफ मुकाबलों की शुरुआत, क्वालिफायर 1 में बेंगलुरु और गुजरात का आमना सामना। मैच जीतने वाली टीम को सीधे फाइनल में कराएगी एंट्री, जबकि हारने वाली टीम को दूसरे क्वालिफायर खेलने का मिलेगा मौका। आरसीबी के पास धर्मशाला में खेलने का अच्छा अनुभव, हाल ही में आरसीबी ने इसी मैदान पर पंजाब को हराकर अंक तालिका में पक्का किया था पहला स्थान। गुजरात कप्तान शुभमन गिल और युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन से उम्मीद, वहीं आरसीबी के लिए विराट कोहली का अनुभव साबित होगा प्लस पॉइंट। इस आईपीएल सीजन में दो दो मैचेस में से एक मुकाबले बैंगलुरु ने गुजरात को 5 विकेट से हराया था, वहीं दूसरे मैच में गुजरात ने बैंगलुरु को 4 विकेट से दी थी मात। अमेरिका ईरान के बीच चल रही बातचीत पर बोले ट्रंप, का अच्छी तरह आगे बढ़ रही है चर्चा और अगर समझौता होता है तो वह अच्छा और उचित होगा। ईरान बोला अमेरिका से वार्ता में कुछ मुद्दों पर सहमति बढ़ी लेकिन परमाणु कार्यक्रम पर स्थिति साफ नहीं। ईरान के वार्ताकारों की कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात, कूटनीतिक कोशिश तेज। इसराइल ईरान तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, भारत में ईंधन महंगा। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ट्रंप ने इब्राहिम अकॉर्ड में नए देशों से जुड़ने की अपील की। बात करते हैं पश्चिम एशिया युद्ध संकट के बीच दिल्ली में चल रही क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों का मुद्दा उठाया। बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल हुए। अमेरिका की ओर से मार्को रूबियो, जापान से तोशिमित्सु मुतेगी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेनी वोंग मौजूद रहे। बैठक में समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, नई तकनीक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की चर्चा हुई। मिडल ईस्ट से बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा संकट भी एजेंडे में शामिल रहा।
2: Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are 4 maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building and HADR activities.
1: ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और इस समय ग्लोबली एक बहुत बड़ा एक कंसर्न बना हुआ। इस बीच में एक क्वाड की बैठक, क्वाड के जो विदेश मंत्री हुआ आपस में बैठे, उन्होंने चिंतन मंथन किया। सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुए है, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडो पैसिफिक का मुद्दा भी उठाया गया क्योंकि इंडो पैसिफिक की जो सुरक्षा है उसके दृष्टि से क्वाड की जो बैठक होती है हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें रक्षा, इसमें इंटेलिजेंस, इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए और भी दूसरी चुनौतियों पर इस क्वाड की बैठक में चिंतन मंथन हुआ है। तो क्वाड की बैठक सिर्फ सुरक्षा तक, टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं थी। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। प्रणय, आज के समय में जो ग्लोबल सिनेरियो बना हुआ है उस समय क्वाड की इंपॉर्टेंस, उसकी प्रासंगिकता और आज की बैठक से क्या निकला इंपॉर्टेंट वो बताएं।
3: देखिए, क्वाड देशों का यदि आप कार्यक्षेत्र देखें, यानी हम हिंद प्रशांत की जब बात करते हैं तो दुनिया भर का करीब करीब 60% जो अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री कारोबार है वो इसी इलाके से होता है। और इसलिए क्वाड देश, जो कि दुनिया के 4 महत्वपूर्ण देश भी हैं, 4 ताकतवर देश भी हैं और दुनिया की आर्थिक सत्ता के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो इनका एक अलग दबदबा है। इसलिए इनकी साझेदारी में ये निर्णय होना कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर क्वाड नए इनिशिएटिव को लॉन्च करेगा, यानी वो धातुएं, वो तत्व जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत इस समय, सेमीकंडक्टर से लेकर चिप से लेकर मिसाइल से लेकर और मेडिकल उपयोग में आने वाली मशीनों में हो रही है, स्मार्टफोन्स में हो रही है, उनकी सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए क्वाड के देश मिलकर आपस में सहयोग करेंगे ताकि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा ऊर्जा संकट सबसे ज्यादा इस समय महसूस किया जा रहा है, जिसकी तपिश महसूस हो रही है पश्चिम एशिया के संकट के मद्देनजर। तो लिहाजा क्वाड के देशों ने तय किया है कि वो एनर्जी इनिशिएटिव भी लॉन्च करेंगे, यानी जो ऊर्जा की आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जा सके, उसमें डिसरप्शंस ना हो। इसके अलावा इंटरनेशनल मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस का जो इनिशिएटिव है उसको एक्सपैंड किया जाएगा और साथ ही जो सैटेलाइट डेटा है वो आपस में शेयर किया जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री का व्यापार है या समुद्री जो जहाजों की आवाजाही है उसकी नियर रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ साझा की जाएगी, ताकि जो शेडो फ्लीट से लेकर जो अवैध कारोबार समुद्र में चलता है उसे कॉम्बैट किया जा सके, जो अवैध फिशिंग होती है, जो मछली पकड़ने का काम होता है अवैध तरीके से समुद्र में उसे रोका जा सके। इसके साथ साथ जो पोर्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है उसको लेकर भी सही होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल जो मैरिटाइम सिक्योरिटी और सर्वेलेंस इनिशिएटिव गया है, तो ये कई महत्वपूर्ण कदम हैं जिनका ऐलान अब से कुछ देर पहले हैदराबाद हाउस में जो दिल्ली का है।
0: आपके पास इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या कुछ कहा क्वाड बैठक के बाद, सुनिए।
4: सो we are beginning to show real achievements and real accomplishments. We are deeply committed to this partnership. It is a linchpin and a cornerstone of our global strategy as a nation in the United States. That's why we're so happy to be here today, and that's why we're excited about the initiatives that we're announcing, and we're even more excited about the initiatives we're going to be working together as these take life and new opportunities present themselves. And I want to thank all of you, all three of you, for being here. I want to thank you for hosting us, Minister Jaishankar, and I want to thank India, by the way, for being a tremendous host. We've been here now for 4 days, and it's been a phenomenal visit. So thank you as well for everything you've done to extend such a welcome and allowing us to meet with so many people, and just as importantly, to be your hosting this event. Thank you.
1: और अब बात करते हैं पंजाब के, जहां पर निकाय चुनाव के दौरान रायकोट में चुनावी हिंसा हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार जगदेव सिंह जग्गा पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल उम्मीदवार को पहले रायकोट के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी हालत को गंभीर देखा गया तो लुधियाना उनको डीएमसी हॉस्पिटल रेफर किया गया। कांग्रेस ने इस हमले के पीछे आम आदमी पार्टी के विधायक पर आरोप लगाया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। पंजाब के रायकोट के वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस उम्मीदवार जगदेव सिंह जग्गा वो मैदान में उतरे हुए, लेकिन उन पर जानलेवा हमला हुआ।
0: अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन, अब पुलिस ने तफ्तीश की है तो इस मामले में क्या चीजें उजागर हो रही?
5: देखिए, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो हाकम सिंह ठेकेदार है, लोकल एमएलए हैं, उनके ये लोग थे, उनके गुंडे वो बता रहे हैं और लोकतंत्र पर हमला इसको बता रहे हैं। और इस एलिगेशन की बुनियाद पर हो सकता है कि पुलिस कंप्लेंट ले और आगे मामला भी दर्ज करे, क्योंकि आप देखिए कि शार्प वेपन से हमला किया गया और कपड़े उनके पूरे लहूलुहान थे जब अस्पताल भी लेकर जाया गया। और यही एक इकलौता लुधियाना का वाक्य नहीं है, इसके अलावा अमृतसर में भी बीजेपी और अकाली दल के बीच क्लैश हुआ है। और इसका अंदेशा कहीं ना कहीं पहले इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टीज ने जताया था कि 2027 के चुनाव है विधानसभा के, उससे पहले सेमीफाइनल है, तो इसमें हो सकता है कि हर एक पार्टी एग्रेसिवली काम कर रही है, लेकिन जिस जो सत्ताधीर पार्टी है वो कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए उस उद्देश्य से कहीं ना कहीं हर तरीके से चुनाव में उतर सकती है। और इस आरोपों के चलते ही आम आदमी पार्टी पर निशाना ये पॉलिटिकल पार्टी साध रही थी, और इसी के चलते ये ऐसे हमले और ऐसे क्लैशेस भी सामने आए हैं। और लॉ एंड ऑर्डर तो पंजाब का सवालिया निशान है ही लॉ एंड ऑर्डर पर, उसी के चलते अब इस घटना में क्या पुलिस एक्शन लेगी, किस पर मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि ये मांग है कि एमएलए के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।
1: हैरान कर देने वाला मामला है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
0: इस बीच महाराष्ट्र के थाने में बकरीद से पहले विवाद के बाद एक शख्स ने कुछ लोगों पर ब्लेड से हमला किया। दरअसल थाने के मीरा रोड स्थित एक सोसाइटी परिसर में बकरीद में कुर्बानी के बकरों के लिए शेड बनाया गया, जिसे लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एक शख्स ने कई लोगों पर ब्लेड से हमला किया। इस मामले में मीरा रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

0: और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
1: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना, टंकी मतलब
2: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
3: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
4: Oh, ouch.
3: However you make money work, we can work with that.
5: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: Director, the taste of success.
9: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.
12: और वही कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स.
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी.
15: जेके वॉल मैक्स
16: बेस्ट पेंट.
17: जेके मैक्स.
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
19: जेके मैक्स पेंट्स.
18: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग.
2: एयू करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम.
4: एयू
7: सोच बदलो और बैंक भी.
5: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है.
1: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही.
5: आप कैसे कर लेते हो?
9: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ.
1: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो
9: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
6: नहीं
1: और म्यूचुअल फंड्स है
6: सही.
13: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बस 2000
3: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
4: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: मुद्दों पर चर्चा, विदेश मंत्री जयशंकर बोले आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस।
1: कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार पहुंचे कांग्रेस हेडक्वार्टर। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच थोड़ी देर में आलाकमान से मीटिंग। मुख्यमंत्री बोले अफवाहों पर ध्यान नहीं देता।
0: महंगाई की कॉर्डोज, पेट्रोल डीजल के बाद 2 रुपए बढ़े सीएनजी के दाम। दिल्ली में 83.09 रुपए प्रति किलो हुई कीमत, 12 दिन में कुल 6 रुपए का इजाफा।
1: राजस्थान में नकली दवा रैकेट का खुलासा। कोटा के सरकारी हॉस्पिटल में नकली इंजेक्शन से हुई थी महिलाओं की मौत। 11 सैंपल जांच में फेल।

0: अपील। कर्नाटक की जहां के लिए आज बेहद अहम दिन साबित हो सकता है। कर्नाटक में कुर्सी को लेकर झगड़े या समाधान निकालने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई
1: और इस बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को बुलाया गया है और साथ ही कर्नाटक कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेताओं को भी चर्चा के लिए बुलाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक क्योंकि लंबे समय से खींचतान की खबरें, नाराजगी की खबरें, यही कहा जाता है कि डीके शिव कुमार किसी तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये घमासान चल रहे से आरोप है। कर्नाटक को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बैठक कांग्रेस ने बुलाई।
0: सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। खड़गे भी आज शामिल होने वाले हैं, राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि 2028 में जो चुनाव होने का नाटक उसको लेकर भी स्ट्रैटेजी बन सकती है, लेकिन कुर्सी को लेकर कोई बड़ा फेरबदल भी संभव है इस बैठक में, उस पर फैसला लिया जाए।
1: क्या होगा उसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया वो भी इस बैठक का हिस्सा है।
2: कर्नाटक की कला जब दायरे तोड़ने लगी, जब आला कमान को लगा कि पानी सिर से ऊपर बहने लगा है, जब जवाब तलाशने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, तो दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेतृत्व में हलचल हुई। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों को दिल्ली बुलाया गया। अब आला कमान की पंचायत में तय होगा कि आगे किसका क्या होना है। सिद्धारमैया के तेवर अब भी झुकने वाले नहीं दिख रहे, साफ कह रहे हैं क्यों बुलाया गया मालूम नहीं। तीन साल से कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच खुली जंग चलती रही है, लेकिन अब जबकि चुनाव में सिर्फ दो साल बचे हैं, तो कांग्रेस आला कमान को संकट का समाधान निकालने की सुधाई है। सूत्रों के मुताबिक तीन दिन पहले कर्नाटक को लेकर कांग्रेस में अहम बैठक हुई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि सिद्धारमैया को इस बैठक के नतीजे के बारे में नहीं बताया गया। सिद्धारमैया को सीधे दिल्ली आने को कहा गया। माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान इस बार कर्नाटक में कुर्सी की लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के मूड में है। कई फॉर्मूले कांग्रेस के सियासी गलियारों में सामने आते रहे हैं। सबसे कम उथल पुथल वाला तरीका यह है कि सिर्फ कैबिनेट में फेरबदल हो, जो मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे उन्हें हटाया जाए और डीके शिव कुमार की राय भी उसमें शामिल हो। ये सबसे ज्यादा चर्चा में है। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए और सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजा जाए, शिव कुमार के साथियों को नई कैबिनेट में जगह मिले। इससे एक साफ राजनीतिक संदेश जाएगा कि जिसने पार्टी के लिए मेहनत की उसे इनाम मिला। ये सबसे कम संभावना वाला विकल्प है, लेकिन इस वक्त कर्नाटक में इतनी उहापोह की स्थिति है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मौसमी सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, वैसे भी कांग्रेस अब कुछ ही राज्यों तक सीमित रह गई है, लेकिन कर्नाटक में अगर लीडरशिप को लेकर ही इतना सस्पेंस और उहापोह बना रहेगा तो ये तो अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है पार्टी की इमेज पर।
3: देखिए नेहा, इसी की तैयारी है कि 2028 में जो चुनाव है असेंबली चुनाव, उसमें किस तरीके से मजबूती से कांग्रेस उतरे, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक नयापन लाने की ज़रूरत है अभी मौजूदा सरकार में। किस तरीके से रिबूट की जाए पूरी सरकार की, एक दमदार तरीके से बीजेपी का सामना करें, क्योंकि ये वो राज्य है जहाँ पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई होती है। हालाँकि ये अगर आप देखें तो कुल मिला के कोशिश ये है कि या तो फिर नेतृत्व में परिवर्तन हो, या फिर कैबिनेट रीशफल हो, या फिर कुछ इस तरह का फॉर्मूला इजाद किया जाए कि एक तरीके से मेकओवर हो सके कर्नाटक सरकार का बतौर कांग्रेस मॉडल, और एक मैस्कॉट के रूप में कर्नाटक सरकार उभरे। और इसी के जद्दोजहद में अभी हम लोग इंदिरा भवन में हैं। आप देखिए पीछे बैठक जो है राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे ले रहे हैं, अभी बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार हैं बैठक में मौजूद। हालांकि 6-7 बड़े मंत्री एमबी पाटिल और परमेश्वरा समेत वो भी आए हुए हैं और वो इन वेटिंग है। जाहिर है कि सीनियर मिनिस्टर्स की भी राय ली जाएगी, लेकिन ये जो 2.5 साल का फॉर्मूला है उस पर सीरियसली इस बार गौर किया जा रहा है। और वो इसलिए भी है कि राज्यसभा की कुछ सीटें आ रही हैं, अगर सिद्धारमैया हटते हैं तो उनको राज्यसभा से लाने की तैयारी की जाएगी। कोई भी बात हो, कोई भी नया मामला जो होगा उसमें सिद्धारमैया की रजामंदी और उनकी नाराजगी को ध्यान में रखा जाएगा। कोई भी मूड में नहीं है कि एक क्षेत्रीय शत्रप के तौर पे जिस तरह से सिद्धारमैया को देखते हैं तो उनको नाराज किया जाए, और यही वजह है कि ये मीटिंगों का दौर चल रहा है।
1: जी मौसमी, आप नजर बनाए रखें, आपके पास हम लौटते हैं, हमारे साथ बने रहिए। कुछ देर पहले खड़गे से कर्नाटक की बैठक को लेकर सवाल भी किया गया था और वो जवाब देने से कन्नी काट गए।
3: सब आप कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक की महत्वपूर्ण बैठक
4: मीटिंग भी है, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं।
3: सर, ये लीडरशिप को लेके लगातार घमासान मचा रहता है, आप तो दशकों से थे कर्नाटक की पॉलिटिक्स में।
5: सर पत्रकार जी,
3: सर क्या खड़गे जी जाएंगे कर्नाटक वापस?
0: मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ी है। मौसमी, आपने तो खड़गे साहब से खुद सवाल पूछा, जवाब देने में इतना वक्त क्यों या फिर जवाब देना मुनासिब उन्होंने क्यों नहीं समझा? आखिरकार चीजें तो कभी ना कभी खुलकर सामने आएंगी या फिर अभी वो सही वक्त ही नहीं आया?
6: हेलो,
3: बिल्कुल सही कहा नेहा आपने कि अभी वक्त नहीं आया है, और पार्टी अध्यक्ष हैं, हालांकि कर्नाटक की सियासत से बखूबी वाकिफ हैं, और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री ये भी बताई जा रही है कि अगर दोनों नेता राजी नहीं होते हैं तो क्या कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट या एक तुरुप के तौर पे खड़गे साहब का नाम रखा जाएगा। हालांकि ये फैसला मैंने किसी से पूछा था तो ये फैसला पूरी तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है। ऑलरेडी वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता विपक्ष है राज्यसभा में, लेकिन अगर उनका नाम आता है और पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है तो उनके नाम पे किसी को गुरेज नहीं होगा। और पहले इस मौजूदा दौर में अकेले दलित मुख्यमंत्री के तौर पे वो पूरे देश में होंगे, तो ये एक बड़ा तुरुप का इक्का हो सकता है। लेकिन उससे पहले पहला सबसे पहला फॉर्मूला यह है कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, कैबिनेट में सिद्धारमैया के तमाम नेताओं को अच्छी तरह से जगह दी जाए, सिद्धारमैया के शायद बेटे को भी कैबिनेट में डाला जा सकता है और सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजाया जाए, इस पर पहले बातचीत होगी। जी परमेश्वरा का भी नाम आ रहा है जो कि एक बड़े दलित चेहरे हैं और पीसीसी भी रहे हैं। जब सत्ता में वापसी पहले कांग्रेस ने की थी तब वो पीसीसी अध्यक्ष थे, लेकिन खुद अपना चुनाव उस वक्त वो हार गए थे इसलिए वो रेस से बाहर हो गए थे। तो जी परमेश्वरा जो कि अभी बैठक में क्या क्या सिद्धारमैया
1: को ये ऑप्शन पसंद है भी या नहीं, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। इस बीच में कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं।
7: ये जो बीजेपी का ट्रोल फैक्ट्री है और जो झूठों का फैक्ट्री है वो तो तमाम 24 घंटा काम कर रहा है कर्नाटक में डिस्टर्ब करने के लिए। ये बीजेपी लोगों का बयान है, बाकी कोई कांग्रेस का नहीं है।
8: लेकिन आपकी पार्टी के अंदर से 50-50 फार्मूले की हरदम बात होती है, तो सीधा
7: कौन बोला 50-50 करते हैं? कोई मीडिया में चप गया तो पार्टी का थोड़ी होता है। मीडिया में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बोलता है, वो खुद का क्या हो रहा है वो नहीं देख रहा है, कांग्रेस के ऊपर क्या देखना है, खुद का एपस्टीन फाइल में क्या हो रहा है करके बात करने के लिए बोलिए, सरेंडर मोदी जाके ट्रंप के साथ क्या किया वो बोलने के लिए बोलिए, वो चर्चा करना चाहिए। कर्नाटक में मजबूत है, 2 साल के बाद बीजेपी को दोबारा कैसे हराना है वो रणनीति तय करने के लिए सिद्धारमैया जी को बुलाया है।
8: तो 5 साल सीएम सिद्धारमैया साहब रहेंगे, जो कि 4 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, 3 में अपर कास्ट सीएम है, यहाँ पर पिछड़े समाज से मुख्यमंत्री
7: सिद्धारमैया जी को जब चुना गया वो 5 साल के लिए चुना गया है। इसके ऊपर कोई गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार का या कोई आरोप हो तो उसको सोचना पड़ेगा, बाकी बीजेपी का जो ट्रोल आर्मी है उसको जवाब देने का जरूरी नहीं है।
8: लेकिन सर जो कैबिनेट विस्तार की बात है, आप भी लंबे समय से इंतजार में हैं।
7: मैंने कभी आपको बोला नहीं मैं इंतजार में हूँ करके तो जो भी है
8: दावेदार हैं आप,
7: जो भी है आला कमान तय करेगा। मैं तो 50 साल हो गया इस पार्टी में, ऐसा मैं कतार में नहीं खड़े होने वाला हूँ, जो भी तय करेगा कांग्रेस पार्टी तय करेगा।
0: मौसमी सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, हरिप्रसाद जी तो सिरे से नकार रहे हैं कि सिद्धारमैया को हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या वो भूल गए हैं वो 50-50 वाला फॉर्मूला जिसमें डीके शिवकुमार के साथ भी डील हुई थी?
3: नेहा, उन वो जो कह रहे हैं उसके पीछे एक वजह है, मुखर और बहुत ही ज़्यादा वोकल विरोधी रहे हैं वो बीजेपी और आरएसएस के, और जाहिर तौर पे जिस तरीके से बीजेपी से एड़ी मतलब कि बहुत ही कांटे का मुकाबला है कर्नाटक में, तो जाहिर तौर पे एक यूनाइटेड फ्रंट रखना है। और ना सिर्फ आप देखिए बीके हरिप्रसाद बल्कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के भी बयान आप देख लीजिए, तो ये कहा जा रहा है हमें पता नहीं क्यों बुलाया है, अगर बुलाया है तो हम जाएंगे। डीके शिवकुमार कह रहे हैं अभी तो मुझे मालूम नहीं कि मुझे बुलाया है। सिद्धारमैया ने भी बोल दिया कि मुझे बुलाया गया है पर मुझे एजेंडा नहीं मालूम किस लिए बुलाया गया है। तो ये सीधे तरफ से पार्टी आलाकमान से ये डायरेक्टिव दिया गया है कि आप नेतृत्व परिवर्तन को लेके कोई भी चर्चा मीडिया में नहीं करेंगे, पहले बैठक होगी, चर्चा होगी किस तरीके का फॉर्मूला ईजाद करना है, और अंदरूनी कलह या गुटबाजी नजर नहीं आनी चाहिए। ये साफ तरीके से सर्कुलर जारी किया गया और इसी वजह से आप देख रहे हैं नेताओं की ये बयानबाजी।
1: ठीक है मौसमी, आप नजर बनाए रखें, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब बात करेंगे राजस्थान के। राजस्थान में नकली दवाइयों के जानलेवा जाल का खुलासा हुआ है। 10 दिनों की जांच में राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के दौरान दी जा रही ऑक्सीटोसिन दवा जांच में नकली निकली है। और बड़ी खबर यह भी है कि कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में इसी नकली दवा का इस्तेमाल किया गया था जिससे 4 महिलाओं की मौत हुई थी।
0: राजस्थान के ड्रग कंट्रोल विभाग ने पूरे प्रदेश में दवा की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि जैक्सन लैबोरेटरीज और अमृतसर के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का सैंपल फेल होने के बाद कोटा के अस्पताल से इसका सारा स्टॉक जब्त कर लिया गया। हालांकि बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर राजस्थान के सरकारी अस्पताल में इस दवा की सप्लाई कैसे हुई।
1: राजस्थान में पिछले 10 दिनों में बड़ी संख्या में बेची जा रही 11 दवाइयों के सैंपल फेल हुए। जांच में बुखार, एलर्जी से लेकर एंटीबायोटिक, पेट के इन्फेक्शन और इमरजेंसी में दी जाने वाली दर्द की दवा तक नकली निकली है। ये सारी दवाइयां देश के अलग अलग हिस्सों में बन रही थी। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र तक की कंपनीज की ये दवाइयां नकली निकल रही हैं।
0: शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, बड़ा सप्लाई चेन नेटवर्क यहां पर काम कर रहा है नकली ड्रग्स, नकली दवाएं सप्लाई करने के लिए। इनके माफिया, इनके हेड्स तक कब तक पहुंचेगी सरकार या पुलिस?
6: नेहा, दुखद बात तो यह है कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं थी जो कोटा में 5 महिलाओं की मौत हुई। कुल 16 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया गया था। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मुख्यतः नॉर्मल डिलीवरी के लिए दिया जाता है, मगर चूंकि ये दवा ही नकली थी तो नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पाई। सर्जेरियन ऑपरेशन हुआ, सर्जेरियन ऑपरेशन में जिसमें से 5 महिलाओं की मौत हो गई, अधिक ब्लीडिंग से या वो कमज़ोर थी इसलिए। और एम्स के जब डॉक्टर आए जांच करने के लिए कोटा मेडिकल हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि ये दवा आप क्यों दे रहे थे, ये दवा तो एसओपी में है नहीं देने के लिए। तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि सरकार की तरफ से जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब है वो नहीं मिल रही थी, तो हमने इजाज़त लेकर मार्केट से खरीद कर ली। अब ये इस मौत का जिम्मेदार कौन है? सीधे सीधे इनका कहना है कि नहीं, वो तो नॉर्मल डिलीवरी कराने वाली दवा है, ब्लीडिंग रोकने वाली दवा है। मौत की वजहों का जो कमेटी बनी है उस पर उसका खुलासा नहीं कर पाई है अभी तक। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से एक गंभीर घटना हुई है कि आप कोई भी दवा मार्केट से खरीद कर लाकर सरकारी अस्पताल में सप्लाई कर लेते हो और इस तरह से मौतें हो जाती है, अपने आप में दिखाता है कि कितना लचर सिस्टम है। अभी कफ सिरप से मौतों का मामला जो है अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इस तरह से नकली दवाओं का फिर से एक नेटवर्क खड़ा हो गया। आप देखिए कि 10 दिनों के अंदर 12 दवाइयां राजस्थान में नकली पाई गई हैं। और कितने, कोई पेट दर्द का है, कोई जो इमरजेंसी में दर्द की दवा है, कोई बुखार का है, कोई एलर्जी का है, और ये सारे देश के अलग अलग हिस्सों में बन के तैयार हो रहे हैं। हमारे ड्रग कंट्रोलर से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक साल में हमने 200 नकली दवाओं के निर्माताओं को हमने केस दर्ज कराया है कोर्ट में, उसमें से कुछ की सजा हो पाई है। तो नियम भी काफी शिथिल है, लेकिन इस मामले में सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा।
1: लापरवाही बिल्कुल उजागर हुई है। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। कसमंडी किला मस्जिद विवाद में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बकरीद के दिन विवाद स्थल पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है। मौके पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। बासी समाज इस विवादित स्थल को राजा कंसा का ऐतिहासिक किला बता रहा है और हिंदू संगठन विवादित स्थल पर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ भी करने वाले यहां थे, क्योंकि लखनऊ में बड़ा मंगल है, हनुमान जी का दिन है और हिंदू संगठनों का मानना है कि जब तक मंदिर में हिंदू पक्ष पूजा नहीं करेगा तब तक ये प्रदर्शन तो होता रहेगा।
0: आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, बकरीद में दो दिन का वक्त बचा है, ऐसे में ऐसा फैसला, ऐसा निर्णय लेना, वहां पर कितना संवेदनशील हो गया है माहौल?
9: बिल्कुल नेहा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बकरीद का दो दिन बचा है और ऐसे में ऐसा निर्णय आना कि वहां पर नमाज नहीं होगी जो विवादित स्थल है, इसमें हिंदू समाज जो है, हिंदू साइड के लोग हैं वो अब यहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ये तो जाहिर होता है कि विवाद अभी भी गहराया हुआ। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो पाएंगे यहां पर फोर्स को तैनात किया गया है, वो भी वेपन्स के साथ में, कि कभी किसी तरीके की परिस्थिति ना बने। और पीछे वो कंसापासी का जो किला है वो बताया गया, उसके पास में ये जो मजार बनी और अंदर कई तरीके की मजारों का निर्माण किया गया है। इस पूरे विवाद को यहां पर देखा जा सकता है, यहीं से बैरिकेटिंग कर दी गई है क्योंकि हिंदू समाज के लोग आज यहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी है और अब वो यहां पर पहुंचेंगे कुछ देर में। तो ये तो साफ हो गया है कि विवाद अभी भी थमा नहीं है, भले ही नमाज की बात कही गई हो कि बकरीद पर नहीं होगी नमाज और इसी जगह पर नमाज पढ़ी जाती थी, अब हिंदू समाज कह रहा है कि शंकर जी का जो ये मंदिर है पीछे, इस मंदिर में वो हनुमान चालीसा करेगा,
1: मुस्लिम यहां पर क्या आके कहना है इस पर तरीके से
9: शिव की पूजा करेगा। और देखिए मुस्लिम पक्ष का मानना है कि वो हमेशा से यहां से नमाज पढ़ रहा है और यहीं पर नमाज पढ़ेगा, यानी कि टकराव की स्थिति बनी हुई है। मुस्लिम पक्ष ना मानने की पूरी तरीके से खड़ा हुआ है कि वह नमाज पढ़ेगा बकरीद पर, और हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो पढ़ने नहीं देगा। पुलिस प्रशासन ने हालांकि मना किया है कि यहां पर नमाज नहीं होगी। अब ऐसे में ये स्थिति बन गई है कि आखिर इन दो दिनों में क्या होने वाला है, क्योंकि आज भी बड़ा मंगल है और आज के दिन भी हिंदू समाज यहां पर नमाज आ रहा है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि लगातार वो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ऐसे में कई संगठन इकट्ठा हो गए हिंदू समाज के, ना कि सिर्फ एक जो पासी समाज है, इसके अलावा कई हिंदू समाज के संगठन इकट्ठा हो गए और यहां पर पहुंच रहे हैं। पुलिस ने जरूर पीछे बैरिकेटिंग कर दी, अगर आप देखेंगे कि यहां पर कोई आ ना पाए, जिस तरीके से पूरे इस एरिया को क्लोज कर दिया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया, यहीं पर स्थिति बनी हुई है कि किसी तरीके से स्थिति को संभाला जाए। तो ये पूरी स्थिति यहां पर बनी हुई है जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में आ गया है। शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है कि किसी भी तरीके की स्थिति को संभाला जा सके, क्योंकि हिंदू समाज पीछे हटने को तैयार नहीं है और ना ही मुस्लिम समाज पीछे हटने को तैयार है, तो दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। और आज हनुमान चालीसा बड़े मंगल पर यहां पर पढ़ा जाना है और इसको लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई है।
1: और बड़ी खबर इस समय राजस्थान से आपको देते, जहां अवैध फैक्ट्रियों पर जानकारी मिल रही है कि छापेमारी की गई है, चेकिंग के लिए छापेमारी की जानकारी इस समय मिल रही है। राजस्थान में ये फैक्ट्रीज पर छापेमारी की गई है। राजस्थान से एक के बाद एक हैरान कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं, खासतौर पर अभी नकली दवाइयां और वो पूरा का पूरा केस ही उजागर है, लेकिन अभी राजस्थान सरकार के मंत्री कार्रवाई कर रहे हैं।
0: देवांकुर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। देवांकुर, कौन कौन सी ये फैक्ट्रियां हैं, कहां पर स्थित है राजस्थान में?
10: देखिए नेहा, ये जयपुर का चोमू का इलाका है, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री जो है राजस्थान के, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, एक बार कैमरा पर्सन निखिल आपको दिखाएं, ये मूंगफली की जो उर्वरक है, जो यहाँ पर आई हुई है मूंगफली, उसको किस तरह से कार्सिनोजेनिक मटेरियल को इस्तेमाल करके, यानी कि जो कैंसरस मटेरियल है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, पॉलिश किया जाता है, यहाँ पे पैकेजिंग किया जाता है और उसके बाद यहाँ से भेजा जाता है, और कितना खतरनाक हो सकता है ये कार्सिनोजेनिक मूंगफली, और यहाँ से ये देश के लगभग हर राज्य में जाती है मूंगफली। और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर क्या खतरा है,
11: देखो ऐसा है, रारी जो दुर्गापुरा हमारा वैज्ञानिकों ने बीज तैयार किया था, RG 510
10: जी,
11: राजस्थान ग्राउंड नट 510, वो 510 बीज के लेबल लगा के ये सीड बेच रहे हैं, सीड इनमें पैकिंग कर रहे हैं, लाखों का बैग यहाँ पर पड़े हुए हैं, और ये दरअसल में मार्केट से खरीदी हुई मूंगफली है और इनको RG 510 के नाम से किसानों को बेच रहे हैं। और RG 510 में कई दो तीन वर्ष पहले ये एफ्लाटॉक्सिन फंगस लग गया था, जिसके कारण ये पहले हमारे इंडोनेशिया सबसे ज्यादा इसको लेता था, हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया में और यूरोपियन कंट्रीज ने एफ्लाटॉक्सिन के कारण प्रतिबंध इंडोनेशिया और यूरोपियन कंट्रीज ने लगा दिया।
5: बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये कि एफ्लाटॉक्सिन की वजह से, और
11: उसके बावजूद बिल्कुल एफ्लाटॉक्सिन कार्सिनोजेनिक है, एफ्लाटॉक्सिन मूंगफली की जान निकाल देती है, उत्पादन कम होता है, तेल भी उसमें कम निकलता है, और ऐसा किसानों के साथ ये धोखा ये कर रहे हैं। ये बालाजी नाम के बालाजी एग्रो इंडस्ट्री सीकर में है और तैयार यहाँ पर कर रहे हैं, उनके बैग आप देख सकते हैं, बालाजी एग्रो
0: ये बहुत शुक्रिया देवंग को इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा शुरू से ब्रेक के लिए, टिकते रहिए आज तक।
12: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना।
13: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
14: Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
15: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
16: It's college football time. College basketball feels
15: Pardon
16: like
15: in
16: it's
15: my take.
17: The Rams catching the Commanders.
15: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
18: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
19: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
12: टंकी मतलब वेक्टर।

दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त ऐसे बोर्ड पर खड़ी है जहां जंग, महंगाई और बाजार का डर एक साथ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप से लेकर किचन तक और शेयर बाजार से लेकर नौकरी तक हर जगह अनिश्चितता का असर महसूस होने लगा है। सबसे बड़ा डर उस समुद्री रास्ते को लेकर है जिससे दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल हासिल करता है। अगर वहां संकट लंबा चला तो 2008 जैसी आर्थिक तबाही का खतरा फिर सिर उठा सकता है। दरअसल अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा बढ़ गया है। रैपिडन एनर्जी ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अगस्त तक ये रास्ता प्रभावित रहा तो दुनिया भर में तेल सप्लाई बुरी तरह बिगड़ सकती है और रोजाना 60 लाख बैरल तेल की कमी हो सकती है, जिससे ब्रेंट क्रूड $130 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका बढ़ जाएगी। वैसे भी तेल की कीमतें फरवरी के बाद से करीब दोगुनी हो चुकी हैं। ये भारत के लिए बड़े मुश्किल हालात हैं, क्योंकि देश में जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात किया जाता है। तेल महंगा होने का असर धीरे धीरे आम आदमी की जिंदगी पर दिखने लगता है। इससे ट्रांसपोर्ट महंगा होने लगा है, दूध, सब्जी, राशन और रोजमर्रा का सामान भी महंगा होता जा रहा है। ऐसे में महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जिससे लोन की ईएमआई का अतिरिक्त बोझ लोगों के बजट को बिगाड़ सकता है। एक्सपर्ट्स इसे इकोनॉमिक डिजास्टर साइकिल मानते हैं। महंगाई बढ़ने पर कंपनियों की लागत बढ़ती है, जिससे कई कंपनियां हायरिंग को धीमी करने के अलावा छंटनी का विकल्प भी आजमाती हैं। इससे लोग गैर जरूरी के साथ साथ खर्च कम करने के लिए तमाम तरह के खर्चों पर लगाम लगाने लगते हैं। कुल मिलाकर मार्केट में मांग घटने से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है और मंदी आने का खतरा बढ़ जाता है। 2008 की मंदी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब अमेरिका में आसान होम लोन के दम पर प्रॉपर्टी बाजार तेजी से बढ़ा, लेकिन जब लोग कर्ज नहीं चुका पाए तो लीमैन ब्रदर्स जैसे बड़े बैंक डूब गए और दुनिया आर्थिक संकट में फंस गई। इस बार खतरा तेल सप्लाई और जंग से पैदा हुआ है। हालांकि राहत की बात है कि आईएमएफ ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है और भारत की जीडीपी ग्रोथ 6% से ज्यादा रहने का अनुमान है। फिलहाल तो घरेलू खपत और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च भारत को मजबूती दे रहे हैं। वहीं आरबीआई के मजबूत फॉरेक्स रिजर्व की वजह से रुपए पर दबाव भी कई दूसरे देशों की करेंसीज पर पड़ रहे दबाव के मुकाबले कम माना जा रहा है। फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी के खतरे के बेहद नजदीक मौजूद है। ऐसे माहौल में परिवारों को इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और अतिरिक्त इनकम के स्रोतों पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी जा रही है, जिससे किसी बड़े आर्थिक झटके का असर कम किया जा सके। आदित्य के राणा, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

क्वाड देशों की बैठक में दुनिया की सप्लाई चेन दुरुस्त करने पर हुआ मंथन, जंगी चुनौतियों पर चर्चा। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, पूरा समूह एकजुट। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार पहुंचे कांग्रेस हेडक्वार्टर। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच थोड़ी देर में आलाकमान से मीटिंग। मुख्यमंत्री बोले, अफवाहों पर ध्यान नहीं देता।

सीएनजी के दाम दिल्ली में 83.09 रुपए प्रति किलो कीमतें, 12 दिन में कुल 6 रुपए का इजाफा। राजस्थान में नकली दवा रैकेट का खुलासा, कोटा के सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन से हुई थी महिलाओं की मौत, 11 सैंपल जांच में फेल, कई राज्यों तक फैला जाल। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे, देश भर में अभियान चलाएगी बीजेपी, जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे केंद्रीय मंत्री, सांसद और मुख्यमंत्री।

नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। और शुरुआत करते हैं सिलसिले की। सबसे पहले बात कर्नाटक की राजनीति की, जिसको लेकर दिल्ली में जबरदस्त हलचल चल रही है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव

0: बैठक अहम बैठक चल रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और सीएम पद के कथित दावेदार डीके शिवकुमार के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक, और इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट बैठक कांग्रेस के नजरिए से कर्नाटक के दृश्य से 2028 में अब चुनाव होने, ढाई ढाई साल के फॉर्मूले की काफी चर्चाएं हुई। डीके शिवकुमार सिद्धरमैया में खटास, दोनों में नाराजगी की बातें कि डीके शिवकुमार अब सीएम पद चाहते हैं और सिद्धरमैया छोड़ना ही नहीं चाहते, और इस बीच में लीडरशिप को लेकर यहां चर्चा संभव है। हमारी संवाददाता मौसम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई। मौसम में क्या कर्नाटक में अब की बार डीके शिवकुमार की सरकार, क्या यह संभव है दिल्ली की बैठक में आज?
1: बिल्कुल संभव है राजीव। देखिए, सबसे प्रबल संभावना यही बन रही है कि नेतृत्व में परिवर्तन होगा, और यही वजह है कि आप देखिए क्रोनोलॉजी पूरी देखिए कि एक तरफ डीके शिवकुमार, दूसरी तरफ सिद्धरमैया को बुलाया जाता है। डीके कहते हैं कि हमें पता नहीं कि हमें बुलाया गया है, सिद्धरमैया कहते हैं हमें एजेंडा पता नहीं है। और यहाँ पे बैठक में पहले जो 10 राजा जी मार्ग पे होनी थी बैठक, वो होते होते फिर इंदिरा भवन हो जाती है जो कि AICC का हेडक्वार्टर है, और जहाँ पे राहुल गांधी खड़गे साहब के साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कर्नाटक के इंचार्ज है उनके साथ ये बैठक ले रहे हैं। जाहिर तौर पे आगे की रूपरेखा डिस्कस हो रही होगी और 2028 में क्या करना है, कैसे चुनाव में जाना है, अगले दो साल किस तरह से सरकार चलानी है, इसको लेके सिद्धरमैया से गहन चर्चा हो रही होगी। क्योंकि अगर नेतृत्व में परिवर्तन होना है, डीके शिवकुमार को लाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सिद्धरमैया राजी होंगे।
0: यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिद्धरमैया मानेंगे। मौसम आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। लेकिन सीएम सिद्धरमैया ने इस बैठक में शामिल होने से पहले कल क्या कहा था, आपको सुनाते हैं।
2: Your meeting high command after a long time, many speculations are running around. Will it be a full stop?
3: Speculations are always there.
2: Beyond prices, sir, have you seen?
0: अब आठ विशा मौत मामले के, इस मामले की जांच सीबीआई औपचारिक रूप से अब शुरू कर रही है, और बीती रात ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। भोपाल पुलिस ने केस को हैंड ओवर ले लिया है। सीबीआई की टीम पहले ही भोपाल पहुंच चुकी है और अब आज से औपचारिक रूप से जांच शुरू कर रही है। सीबीआई जांच अब शुरू कर दी है, एफआईआर दर्ज हो गए है। केंद्रीय जांच एजेंसी को यह जिम्मेदारी राज्य सरकार ने संतुलित की थी और परिवार की भी मांग थी, क्योंकि राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं था। सिस्टम गिरीबाला पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है और आरोप ये थे। और इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह।
4: विशा की मौत के मामले की जांच आज आधिकारिक रूप से सीबीआई शुरू कर देगी। सोमवार देर रात सीबीआई की एक टीम भोपाल पहुंच चुकी है और इस मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली है। माना जा रहा है कि आज सीबीआई दोपहर में किसी भी समय कटारा हिल्स पुलिस थाने पहुंचकर इस केस को अब टेक ओवर कर लेगी। इसके साथ ही त्विशा की मौत की जांच भी नए सिरे से शुरू हो जाएगी, क्योंकि सीबीआई अपने तरीके से अब इस केस से जुड़े हुए तमाम लोगों के बयान भी दर्ज करेगी और उन तमाम जगहों पर भी जाएगी जो कहीं ना कहीं त्विशा की मौत से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सीबीआई भोपाल एम्स के उन डॉक्टरों से भी बात करेगी जिन्होंने त्विशा का पहला पोस्टमार्टम किया था। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: 12:12 रिपोर्ट। में अब अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के सरकारी अस्पताल में चार महिलाओं की मौत की पुष्टि हो गई। इस गुत्थी को सुलझने से ही नकली दवाओं के एक जानलेवा जाल का भी खुलासा हुआ। 10 दिनों की जांच में यह पता चला कि राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के दौरान दी जाने वाली ऑक्सीटोसिन दवा नकली थी। और बड़ी खबर यह भी है कि कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में इसी नकली दवा का इस्तेमाल किया गया था, जिससे चार महिलाओं की मौत हुई थी। राजस्थान के ड्रग कंट्रोल विभाग ने पूरे प्रदेश में इस दवा की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
5: कोटा के सरकारी अस्पताल में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। दरअसल डिलीवरी से पहले ऑक्सीटोसिन 5 ml जो दवा दी गई थी इन महिलाओं को, वो दवा जांच में नकली निकली है। अमृतसर के जैक्सन फार्मा की ये दवा कोटा में प्रसूताओं को डिलीवरी से पहले दी गई थी। इस दवा का मुख्य काम नॉर्मल डिलीवरी कराना और ब्लीडिंग रोकना है, जबकि

0: दवा उन महिलाओं पर काम नहीं की जिसकी वजह से सिजेरियन डिलीवरी कराई गई थी। एम्स से आए विशेषज्ञों ने भी कहा था कि यह दवा नहीं दी जानी चाहिए थी, क्यों दी गई। इसके जवाब में डॉक्टरों ने कहा कि सरकार के पास से सप्लाई नहीं आ रही थी, इसलिए हमने बाजार से ये दवा खरीदी थी। अब जांच में नकली पाए जाने के बाद पूरे राजस्थान में इस दवा के उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई है और स्टॉक को जब्त कर लिया गया है।
1: अब बात करते हैं क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में बैठक की। थोड़ी देर पहले चारों ही देशों के विदेश मंत्रियों का साझा बयान भी सामने आया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बैठक में ज्यादातर चर्चाएं द्विपक्षीय आदान प्रदान और विश्व की वर्तमान स्थिति पर केंद्रित थी। क्वाड होने के नाते स्वाभाविक रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित विशेष मुद्दों पर ध्यान दिया गया। हिंद प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न छोरों पर स्थित चार समुद्री लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए विचारों का आदान प्रदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा।
2: Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are four maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value.
3: भारत की अध्यक्षता में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत के विदेश मंत्रियों की। इस बैठक के अंदर कई महत्वपूर्ण फैसलों के ऊपर आज मुहर लगी। चार महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, जिसके अंदर इंडो पैसिफिक इंटरनेशनल सर्वेलेंस या मैरिटाइम सर्वेलेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ क्वाड देश ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्वाड एनर्जी इनिशिएटिव को भी लॉन्च कर रहे हैं। साथ ही क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया गया है, यानी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के लिए ये चारों देश मिलकर सहयोग करेंगे। इंटरनेशनल और इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस के लिए डेटा को शेयर किया जाएगा, ताकि इलीगल फिशिंग से लेकर जो इलीगल शेडो फ्लीट्स हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। ये सारे देश मिलकर इस चीज को लेकर भी सहयोग करने पर राजी हुए हैं कि किस तरीके से ये आपस में साझेदारी बढ़ाने के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी समुद्री व्यापार के जो मार्ग हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ ही एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से व्यावहारिक सहयोग के सहारे ये क्वाड के साझेदार देश, जो कि मैरिटाइम डेमोक्रेसीज भी हैं, आपस में न केवल साझेदारी कर सकती हैं बल्कि नए साझेदारों के लिए भी एक सुरक्षित माहौल बना सकती हैं। ये इनिशिएटिव जो है वो इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत के क्षेत्र के अंदर न केवल इन देशों की ताकत और दबदबे को बढ़ाएगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में आने वाला जो ढांचा है, आने वाले वक्त की जो रूपरेखा है सत्ता की, वो किस तरीके से आगे आकार लेगी।
1: आबाद गृह मंत्री अमित शाह के मिशन बॉर्डर के गृह मंत्री अमित शाह देश के अलग अलग बॉर्डर इलाकों का दौरा कर सुरक्षा समीक्षा करेंगे और उनके दौरे की शुरुआत आज राजस्थान के बीकानेर से हो रही है। इस दौरान गृह मंत्री बीएसएफ की सीमा चौकी सांचू का दौरा करेंगे। यहां पर सीमा पर तैनात जवानों से संवाद करेंगे और सुरक्षा बलों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह बीकानेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत प्रदेश के अलग अलग बॉर्डर से सटे 184 गांवों को और 4G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
4: केंद्र सरकार के मिशन बॉर्डर सिक्योरिटी के तहत आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भारत पाकिस्तान बॉर्डर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर का अगले कुछ दिनों तक दौरा ऐसे ही जारी रहेगा, जिसकी शुरुआत राजस्थान के बीकानेर से आज हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में बॉर्डर इलाके में सुरक्षा समीक्षा बैठक आज 2 बजे के आसपास कर रहे हैं, जिसमें सबसे खास बात यह है कि राजस्थान के बॉर्डर जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के हरामी नाला 29 मई को दौरा करने के लिए जाएंगे। हरामी नाला एक ऐसा दलदली इलाका है जहां से घुसपैठ की बहुत बड़ी संभावना रहती है, इसलिए स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग के तहत यहां पर कड़े कदम उठाने के लिए सुरक्षा समीक्षा बैठक केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाएगा।
1: अब एक महत्वपूर्ण दौरा इधर लखनऊ में भी शुरू हो चुका है और यह दौरा संघ प्रमुख मोहन भागवत का है और वो लखनऊ में है। उनके अचानक लखनऊ पहुंचने से सियासी सरगर्मी बढ़ गए हैं, क्योंकि अब यूपी बीजेपी के संगठन के लिए नामों का ऐलान होना है। हालांकि आरएसएस प्रमुख की ये यात्रा संघ शिक्षा वर्ग के लिए बताई जा रही है, जिसे कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग प्रथम नाम के साथ जाना जाता है।
5: संघ प्रमुख लखनऊ में रहते हुए किसी से नहीं मिल रहे, वजह बड़ी साफ है। यह पूरा कार्यक्रम संघ शिक्षा वर्ग का है, यानी कि तकरीबन 200 ऐसे संघ के कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश के 4 प्रांतों से जुटे हैं उनका द्वितीय वर्ष, जिसे कि अब कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग प्रथम कहा जाता है, उसके लिए मोहन भागवत का ये प्रवास चल रहा है। हालांकि इस आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ बौद्धिक मीटिंग में उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जिसमें एक बात ये भी है कि अपनी सरकार बनेगी तभी अपनी नीतियां लागू होंगी और साथ साथ जनसंख्या असंतुलन, खासकर हिंदुओं के बीच घटती जनसंख्या को भी उन्होंने रेखांकित किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में अभी भी संगठन के तमाम चेहरे घोषित किए जाने हैं, लेकिन मोहन भागवत किसी सियासी चेहरे से मुलाकात नहीं कर रहे।
1: अगली इंपॉर्टेंट खबर भी लखनऊ से। लखनऊ के कई अहम ठिकानों आतंकवादियों के टारगेट पर थे। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस की चार्जशीट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी मिली है कि आतंकवादियों के निशाने पर यूपी विधानसभा, बापू भवन, सचिवालय, बड़ा इमामबाड़ा, लालबाग और अमीनाबाद जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके थे। लखनऊ के कई अहम ठिकाने आतंकवादियों के निशाने पर थे और बहुत बड़ा खुलासा हुआ। चार्जशीट से यह स्पष्ट हुआ है कि आतंकवादियों के निशाने पर यह भीड़भाड़ वाले इलाके थे।
6: उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि किस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को लखनऊ दहलाने की पूरी तैयारी थी। इस पूरे मामले पर एनआईए ने 7,500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है। अब इस चार्जशीट में साफ तौर से दर्ज किया गया है कि इसमें आरोपी मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन मिलकर काम कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लखनऊ के कई महत्वपूर्ण इलाके इसमें बम ब्लास्ट करने की साजिश थी, जिसमें बापू भवन लखनऊ का सचिवालय, इसके अलावा अमीनाबाद, इसके अलावा बड़ा इमामबाड़ा, साथ ही साथ कई ऐसे जगह जो घनी आबादी वाले हैं वो इस लिस्ट में शामिल थे। सबसे बड़ी बात है कि इसको कार ब्लास्ट के जरिए यानी कि मानव बम बनाने की भी तैयारी थी और जिससे कि इन जगहों पर ब्लास्ट किया जा सके। एनआईए के इस पूरी जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि डॉक्टर शाहीन लगातार इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए सक्रिय थी और ऐसे लोगों को तैयार कर रही थी।
1: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गए और इस बार राम रहीम को 30 दिनों के पैरोल दी गई है। 2020 से अब तक ये 16वां मौका है जब राम रहीम पैरोल या फिर फरलो पर जेल से बाहर आया।
7: गुरमीत, राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिली है, इस बार 30 दिन की। हर बार हाय तौबा मच जाता है क्योंकि गुरमीत रहीम कन्विक्टेड है रेप का, 2017 का मामला है। उसके बाद छत्रपति मर्डर केस, जो कि एक पत्रकार का मर्डर केस है जिन्होंने पूरा मामला उजागर किया था, वहां पे उन्हें राहत जरूर मिली हाई कोर्ट से, लेकिन मामला अभी आगे चलने वाला भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। उसी बीच में कैस्ट्रेशन का मामला है, वो भी पंचकुला कोर्ट में सुना जा रहा है। इसी बीच में बात यही आती है कि क्या कोई आम प्रिजनर है उसे इतना ही मिलता है? अगर यही सवालिया निशान लगातार पूछा जाए हरियाणा सरकार से, तो वहां पे उनका कहना है कि हाँ, हम ये इस तरह का फैसिलिटी सबको देते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, एसजीपीसी लेके गए, लेकिन उन्होंने एक पर्सनल इंटरवेंशन करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पर्सनल केसेस हैं। उन्होंने कहा जेल अथॉरिटी तय करे कि गुड गवर्नेंस के तहत इस तरह से उन्हें एक राहत मिल सकती है।
1: तो दिल्ली जिमखाना क्लब पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और क्लब ने केंद्र सरकार के 5 जून तक जिमखाना क्लब को खाली करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी याचिकाकर्ता विजय खुराना की तरफ से पेश आपको बता दें कि हुए हैं। तो वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्लब का क्या होगा? संजय, अगर आवाज मिल रही हो तो सुनवाई के संदर्भ में जो कुछ भी जानकारियां मिल रही हैं प्लीज बताएं।
8: अपनी मर्जी से खाली नहीं भी करते हैं जिमखाना क्लब तो सरकार फोर्स नहीं करेगी, और साथ ही ये भी कहा कि हम उन्हें वैकल्पिक जमीन दे रहे हैं। जो मेंबर्स इस बात का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो उनकी मेंबरशिप बरकरार रहेगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस क्लॉज 4 का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो लीज है डीड लीज डीड उसके क्लॉज 4 का उल्लेख किया जिसमें कहा गया बिना नोटिस के खाली कराया जा सकता है। तो उनका ये साफ कहना, इस पर कपिल सिब्बल जो इनकी तरफ से पेश हुए स्टाफ की तरफ से उनका ये कहना था कि क्लॉज 4 ये इंपीरियल यानी अंग्रेजों के जमाने का क्लॉज है जो कि अब संविधान लागू होने के बाद सरकार बदल गई है, सब कुछ निजाम बदल गया, लेकिन ये क्लॉज अभी तक वही का वही है, इस क्लॉज का कोई मतलब नहीं है अब। तो ऐसे में उनका ये कहना था कि ये उनका जो लीज है उस लीज को एक तरफा खत्म नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को सुना और उसके बाद एक समन जारी किया है, क्योंकि ये सिविल मैटर है, सिविल सूट है, इसलिए इसमें नोटिस की जगह समन जारी किया जाता है और 8 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई लगाई है। इस बीच केंद्र सरकार सरकार के इस समन का जवाब देगी और उसके बाद 8 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई लगाई।
1: आप नजर बनाए रखें, फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कसमंडी खिला मस्जिद विवाद में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया, बकरीद के दिन विवाद स्थल पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है। मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। पासी समाज इस विवादित स्थल को राजा कंसा का ऐतिहासिक किला बता रहा है। आज हिंदू संगठन विवादित स्थल पर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं, क्योंकि लखनऊ में बड़ा मंगल है, हनुमान जी का दिन है। हिंदू संगठन का मानना है कि जब तक मंदिर में पूजा हिंदू पक्ष नहीं करेगा तब तक तो प्रदर्शन होता रहेगा। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या हिंदू संगठन वहां पर पहुंच गए हैं और क्या सिचुएशन इस समय है?
9: बिल्कुल, मैं आपको बताऊं राजीव, यहाँ पर देखिए हिंदू संगठन पहुंचा है पूजा करने के लिए और थाली लेकर आया है अपने साथ में पूजा की, और उन आड़े हुए हैं कि हम आज बड़ा मंगल है, यहाँ पर हम पूजा करेंगे हनुमान की और हनुमान चालीसा करेंगे, इसी को लेकर यहाँ पर पहुंचा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पुलिस फोर्स ने उनको पूरी तरीके से रोक लिया यहाँ पर और आगे नहीं जाने दे रहे हैं। उनका मानना है कि हाथों में आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स ने रोका हुआ है और आगे नहीं बढ़ने दे रहे, चूंकि ये दावा किया जा रहा है कि वो यहाँ पर सीधे हनुमान चालीसा का पाठ करने आए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, और इसी को लेकर हिंदू महासभा पहुंचा हुआ है। इनसे बात भी करते हैं, ये बताइए कि आप हाथों में थाली लेकर आई हैं, क्या वजह है यहाँ पर?
10: हम लोग यहाँ पे कंसा पासी के किले में हम लोग पूजा करने आए, चूंकि यहाँ मंदिर है और पूजा करने से रोका नहीं जाना चाहिए, इतना पुलिस प्रशासन है यहाँ पे और पूजा करने नहीं दिया जा रहा है।
9: लेकिन यहाँ पर तो कह रहे हैं नमाज बकरीद के दिन नहीं होगी, और फिर आप लोग क्या चाहते हैं?
10: बाकी दिनों में तो होती है, बाकी दिनों में यहाँ नमाज होती है, और जो है आखिर ये भेदभाव क्यों? मंदिर होने के बावजूद हम लोग पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं?
9: तो आप यहाँ पर अभी क्या पूजा करने आए हैं हनुमान चालीसा?
11: हम पूजा ही करने आए, हमें रोका जाएगा तो हम इसी जगह पे पूजा करेंगे, दूर से पूजा, सांकेतिक रूप से पूजा करेंगे, पूजा करके ही जाएंगे यहाँ से।
9: अभी तो नमाज हो नहीं रही है,
11: तो नमाज होनी भी नहीं चाहिए, नमाज जब मंदिर में कहाँ से नमाज आ जाएगी, ये मजार क्यों आई है, इस पे नहीं होनी चाहिए। ये
10: मंगल का दिन है, हम लोग पूजा करके जाएंगे सांकेतिक रूप से।
9: बिल्कुल राजीव, देखिए यहाँ पर जो है भारी तादाद में पहुंचे हुए लोग हैं, और ये क्या मांग क्या है आपकी?
12: हम लोग की मांग है फरार मौलाना को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, इस साजिश का पूरा पर्दाफाश हो। वो मौलाना किसकी सह पे यहाँ आया था, किसकी सह पे उसने यहाँ मजार बनाई, किसकी सह पे यहाँ नमाज पढ़वाई?
1: ठीक है आशीष, नजर बना रखे, फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 12:12 रिपोर्टर में एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। एक बार फिर से सीएनजी की दरों में जबरदस्त इजाफा हुआ है, और आज से दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 2 रुपए महंगी हो गए। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम फिर बढ़ गए हैं। इस हिसाब से अब दिल्ली में सीएनजी की नई दर 83.09 रुपए प्रति किलो हो गई है। कुल मिलाकर 12 दिनों में पिछले सीएनजी की कीमतों में 6 रुपए का इजाफा हुआ।
13: दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर सीएनजी की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। आज सुबह 6 बजे करीब 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी के रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि जो सीएनजी आज से 10 से 11 दिन पहले करीब 77-78 रुपए में मिल रही थी प्रति किलो, वो अब 83 रुपए के आसपास पहुंच गई है, और इसका सीधा सीधा असर जो है ये लोगों की जीवन पे पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर जिन पे पड़ रहा है वो है कैब ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स। जिस तरीके से ये वृद्धि हुई है, इनका ये मानना है कि भारत सरकार को और उनकी कंपनियों को भी कहीं ना कहीं इस पे ध्यान देना चाहिए, और इनका पर किलोमीटर फेयर जो है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि कुछ और पैसा इनकी जेबों में बच सके। लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 से 11 दिनों में करीब 6 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तनाव लोगों में देखा जा रहा है, और अब ये देखना होगा कि भारत सरकार किस तरीके से वो कौन से कदम उठा सकती है जिससे आम जनता की जेब पे जो ये महंगाई का असर पड़ रहा है ये कहीं ना कहीं कम हो सके।
1: अब अगली खबर पटना से। पटना जिले के कुख्यात सोनू मोनू गैंग के ऊपर बड़े पुलिसी एक्शन की तैयारियां चल रही हैं। सोनू और मोनू दो भाइयों के इस गैंग पर नकेल कसने के लिए पुलिस की 3 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा बिहार एसटीएफ को भी इस काम में लगाया गया है।
14: पटना का मुकामा इलाका एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल विधायक अनंत सिंह की अदावत जिस सोनू मोनू गैंग से चलती है वो सोनू मोनू यानी दोनों भाई इस वक्त बिहार पुलिस की रडार पे हैं। दरअसल पिछले दिनों अनंत सिंह के करीबी मुकेश सिंह के ऊपर फायरिंग के मामले में पुलिस लगातार सोनू और मोनू की ओर तलाश रही है। सोनू मोनू के घर पे पिछले दिनों छापेमारी भी की गई थी लेकिन इस दौरान पुलिस की ही चेकिंग सोनू मोनू के परिजन और उसके गुर्गे करते नजर आए थे जिसके बाद 2 थानेदारों के ऊपर गाज भी गिरी थी। अब बिहार पुलिस ने एसटीएफ को सोनू और मोनू के ऊपर शिकंजा कसने के लिए रडार पर लगाया है। साथ ही साथ 3 अलग अलग स्पेशल टीमें भी गठित की गई हैं। देखना होगा कि सोनू मोनू गैंग के ऊपर पुलिस कब तक शिकंजा कस पाती है।
1: और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
15: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाई वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना।
16: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
17: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
18: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
19: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
20: Gone! Home run!
19: NHL. College basketball.
21: He shoots it immediately. He makes it in!
19: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
22: One lap to go.
19: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
15: टंकी मतलब वैक्यूम।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
9: JK Maxx Paints.
8: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
9: लाइक आई सेड बिफोर, वी बेटर होन दिस स्किल्स।
10: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
14: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
15: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
16: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
17: Aaj Tak, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल, पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब वेक्टर्स।
18: मध्य प्रदेश भोपाल से बड़ी खबर हम आपको देते हैं। गिरिबाला सिंह के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। गिरिबाला सिंह, वो लगातार सवालों में है, उनके रसूख का दुरुपयोग करने का उन पर लगातार आरोप है, और ट्विशा की सास है। ट्विशा की सास से अब पूछताछ सीबीआई की टीम करेगी। ट्विशा मौत मिस्ट्री को लेकर अब सीबीआई पूरी तरह से एक्शन मोड में। क्राइम सीन देखकर घर से सीबीआई की टीम बताया जा रहा है कि निकली है, और सहयोग ना करने का, जांच में सहयोग ना करने के आरोप भी लगातार ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह पर है, और उन्हीं के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। ये एक बड़ी खबर इस समय आपको दे दें। सीबीआई की टीम ने एफआईआर भी दर्ज कर ली, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। हमारे साथ संवाददाता रविश पाल सिंह जुड़ गए। रविश, सीबीआई की टीम ने क्या क्या किया है अब तक घर पर?
19: देखिए, करीब आधे घंटे तक सीबीआई की टीम यहाँ मौजूद रही है राजीव, और हमने बात करने की काफी कोशिश की। जैसे ही अभी सीबीआई की टीम निकली है, अब सीबीआई कहाँ जा रही है उसकी जानकारी तो उन्होंने दी नहीं। सीबीआई के 6 सदस्यीय टीम थी, साथ में लोकल पुलिस भी थी, क्योंकि लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अब तक, तो उनको भी साथ में रखा था। करीब आधे घंटे तक सीबीआई के अफसर जो है वो घर के अंदर मौजूद रहे। और आपको एक और बात बता दें कि जो सीबीआई की टीम यहाँ आई है उनमें दो महिला अफसर भी हैं, क्योंकि एक आरोपी गिरिबाला सिंह भी हैं यहाँ पे, तो दो महिला अफसर हैं, 4 सीबीआई के पुरुष अफसर हैं, और ये 6 सदस्यीय टीम जो है वो तकरीबन आधे घंटे तक गिरिबाला सिंह के घर पे रही। उन्होंने मीडिया से तो कोई बात नहीं की, लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक तो क्राइम सीन को देखा है, क्राइम सीन पे पहली बार विजिट किया है सीबीआई ने, आज पहला ही दिन है सीबीआई की जांच का, और दूसरा गिरिबाला सिंह से उन्होंने पूछताछ की। हालांकि बहुत बड़ी पूछताछ नहीं हुई है, क्योंकि आधे घंटे में उन्हें बहुत सी चीजें देखना था। त्विशा कहां पे सबसे पहले मिली, कहां से उसे नीचे लाया गया, त्विशा का कमरा कौन सा था, समर्थ कहां सोता था, घटना वाली रात समर्थ किस कमरे में था, गिरिबाला सिंह कहां थी, ऐसे तमाम कुछ छोटे सवाल जो है उस वक्त पूछे गए हैं अभी, और बहुत ज्यादा अभी कड़ी पूछताछ फिलहाल नहीं हुई है। लेकिन आधे घंटे के बाद सीबीआई की टीम यहां से तेजी से रवाना हो गई है। देखना यह है कि सीबीआई क्या एम्स गई है या फिर सीबीआई किसी और जगह गई है। हम लगातार सीबीआई की टीम के पीछे हैं, देखते हैं सीबीआई की टीम किस जगह पर पहुंच रही है, क्योंकि एक स्पॉट जो है वहां पे सीबीआई का विजिट हो गया है, स्वाभाविक सी बात है जिस तेजी से सीबीआई ने पहले दिन काम शुरू किया है वो आज दिन भर काम करने के मूड में है, रुकने वाली है नहीं। तो अब देखते हैं सीबीआई और अब इस वक्त कहां जाती है, क्योंकि माना जा रहा है कि सीबीआई पुलिस स्टेशन भी जाएगी जहां पर सबको रखा गया है, वहां भी जाएगी, एम्स भी जा सकती है, डॉक्टरों से बात कर सकती है जिन्होंने पहला पोस्टमार्टम किया था। त्विशा का
18: जी अब नजर बना रखें, फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब लखनऊ से आ रहे बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ के पास मेकर्स मंडी के खिलाफ मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। बड़ा मंगल होने की वजह से हनुमान चालीसा हो रहे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि जब तक किले के मंदिर में हिंदू पक्ष पूजा नहीं करेगा तब तक ये प्रदर्शन होता रहेगा। दरअसल महाराज कंस पासी के किले को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है जहां पर मंदिर और मस्जिद दोनों के दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष मजार समेत उर्दू शिलापट लगाने का गंभीर आरोप लगाकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर है, हमें पूजा करने दी जाए। हिंदू किला जो है इस मंदिर वापस करने को लेकर प्रदर्शन वहां पर चल रहा है। साथ ही साथ मौलाना को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस समय ग्राउंड जीरो पर हमारे से जुड़ गए। आशीष, कितनी बड़ी संख्या में हिंदू संगठन पहुंचे हैं और क्या इस समय चल रहा है?
7: बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं अगर राजीव आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में एक तरीके से रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो जमीन पर ही बैठ गए हैं और अपना हिंदू चालीसा करने की बात कर रहे हैं हनुमान, और यहाँ पर पहुंचे देखिए पूजा की थाली लेकर आए थे। पुलिस प्रशासन आप देख सकते इधर खड़ा वो रोकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आगे ही दो कदम पर चल के ये आप लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, क्या क्या चाह रहे हैं?
20: हमारी दो तीन मांगे हैं। यहाँ नमाज पढ़ी गई, हमको मंदिर तक जाके पांच जने जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, चले आएंगे।
7: तो पुलिस तो मना कर रही है, यहाँ पर सब मना है, अभी नहीं जा रहे।
20: ये हमारा ज्ञापन तैयार है, ज्ञापन देंगे। दूसरी मांग, अगर ये नहीं मांगते तो हमको गिरफ्तार करें, हमको ले चले, पता तो चले हिंदू समाज को कि जो पूजा करेंगे वो जेल जाएंगे।
7: तो पुलिस तो रोक रही है, नमाज नहीं हो रही अभी यहाँ पर,
20: नहीं हो रही अभी तो,
21: करी गई पूर्व में, करी गई है पूजा, आज नहीं करने दी जा रही है, पूर्व में करी। तो क्या किसी कोई दिन मुकर्रर किया जाता है कि इस दिन पूजा होगी?
7: बिल्कुल, देखिए राजीव यहाँ पर पूजा की ये थाली लेकर आए हैं और ये पूजा करने के लिए साथ ही साथ ये ज्ञापन भी है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ये चाहते हैं कि यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करें, और इसको लेकर ये कार्यकर्ता अलग अलग जगह से पहुंचे हैं यहाँ पर हिंदू महासभा के, और इधर पुलिस आप देख सकते हैं खड़ी हुई है। क्या ये लोग चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं हिंदू सभा के लोग, कहाँ पूजा करना चाह रहे हैं, जा रहे हैं?
22: नहीं, ये तो गलत है ना, जहाँ विवाद चल रहा है तो वहाँ पे जब दोनों पक्ष नहीं आ रहे हैं, यहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं उनको बता दिया है उन्होंने कि भाई के हम सब कोई नहीं आएगा जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं होगा।
7: बिल्कुल, देखिए यहाँ पुलिस कह रही है दोनों पक्ष यहाँ पर नहीं आएंगे, और इसको लेकर भी पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है और अब आगे नहीं जाने दे रही, जिसके बाद कार्यकर्ता यहीं पर जम गए हैं। पीछे बैरिकेडिंग भी लगा दी गई, और वैसे में मौलाना जो यहाँ पर नमाज पढ़ाते थे उनकी बात कह रहे हैं कि वो कहाँ हैं, और ऐसे में प्रशासन ने इस पूरे जो स्थल आप देख सकते हैं यहाँ पर जाने की बात कह रहे हैं। जो पीछे आप स्थल देख रहे होंगे ये कंसा पासी का किला बताया जाता है, वहीं पर ये नमाज पढ़ने की बात कही जहाँ पर जाने की बात कह रहे हैं हनुमान चालीसा की, और पुलिस के साथ अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हटाया जा रहा है पुलिस के साथ, और यहाँ पर पुलिस के साथ एक झड़प भी देखने को मिल सकती है कि नहीं जाने की कोशिश कर रही पुलिस, इनको हटाने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं हट रहे हैं और अड़े हुए अपनी बात पर कि हनुमान चालीसा हम पढ़ें क्योंकि बड़ा मंगल है
23: आज। बड़ा जी कंसा पासी महाराज जी के किले पर जिस तरह नवाज प्रशासन द्वारा कराया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी उन सभी लोगों को बर्खास्त करें, उनके प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई करें।
7: बिल्कुल, देखिए यहाँ पर नारेबाजी एक तरीके से यहाँ पे जय जयकार कर रहे हैं और यहाँ पर उठने की बात नहीं कर रहे हैं, और साफ तौर से महाराजा कंसा पासी के अमर की बात कह रहे हैं और हजारों की तादाद में कह रहे हैं यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहा है, हटेगा नहीं यहाँ से जब तक वो पूजा नहीं कर रहे।
18: आशीष, अभी तो खैर गिने चुने संख्या में, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो एक नए विवाद, एक तरफ मुस्लिम दूसरी तरफ पासी समाज के लोग, वो वोट जो दलित वोट बैंक में दूसरी सबसे बड़ी भागीदारी रखता है, और खींचतान लखनऊ में राजा कंस पासी किला बनाम मकबरे को लेकर चल रही है।
24: राजा कंस पासी का किला या फिर मकबरा, इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में वो सियासी हंगामा जमीन पर जन्म लेने लगा जिसे बहुत से लोग एक राजनीतिक प्रयोग का संयोग कहने लगे।
7: आपको दिखाएंगे, ये कंसा पासी का बुर्ज है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस बुर्ज के अंदर इस तरीके की मजार जो है वो बनाई गई है। ये दावा किया गया है यहाँ के जो समाज है, कम्युनिटी है उसका, क्योंकि ये माना गया कि ये जो बुर्ज है, ये जो किला नुमा है, ये कंसा पासी का था और यहाँ पर इस तरीके से पूरी नमाजें अदा की जाने लगी है।
24: यहाँ पासी समाज से जुड़े लोग आकर प्रदर्शन करते हैं। गजट के हवाले से ये दावा करते हैं कि जब सालार मसूद गाजी दिल्ली से अवध की तरफ बढ़ा तो राजा कंस पासी ने उससे मुकाबला किया और दावा ये भी कि ये किला राजा कंस पासी का है, जहां मुस्लिम मकबरा बताकर आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज बंद हो।
0: ऐतिहासिक धरोहर है, उस पर कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल मजारे बना देना और फर्जी शिला लेख बना देना, शिलापट लगा देना, जो अभी भी सीमेंटेड दिख रही हैं, ये चिंता का विषय है। अब दूर दूर से लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं और हमारे मंदिर को अगर मस्जिद बताने लगेंगे और हजार साल पुरानी सभ्यता पर कब्जा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ये सनातन सभ्यता के ऊपर प्रघात है, हमला। जाके अंदर देख लीजिए कि क्या ये हजार साल पुरानी आपको कब्रें लग रही हैं। ये कब्जा करने हैं तो सीमेंटेड मजारे बना रही है। ऐसे कई प्रकरण हुए, हमारे टीकननाथ पासी जी का किला, जुड़वा किला परेवा जाल में पड़ता, वहां भी सीमेंटेड मजार बना के लोग अपना करबला मनाने लगे थे।
7: कब से यहां पर नमाज हो रही है?
1: यहां पर तो नमाज बहुत बरसों से हमेशा होती रही है, लेकिन मैं जो हूं यहां से 10 साल से आ रहा हूं।
7: 10 साल से आ रहे हैं और ये बताया था पासी किला है यहां पर?
1: नहीं, किला तो अब ये आप खुद देख के समझ सकते हैं कि ये किला है या ये मकबरा है। किला इतना छोटा नहीं होता।
24: राजनीति के जानकार मानते हैं कि इस नए विवाद की जमीन पर पासी वोट का गणित टिका हुआ है। दलित वोट का हिसाब उत्तर प्रदेश में देखें तो कुल दलित 21% है, जाटव 11% की ताकत उत्तर प्रदेश में रखते हैं, पासी 3.5% की ताकत के साथ है, कोरी 1%, धोबी 1%, खटिक, धनगर, वाल्मीकि और अन्य 4.5%। दलितों के भीतर जाटव के बाद सबसे बड़ी तादाद पासी वोट की है। इसी पासी वोट के दम पर याद करिए, अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद लोकसभा सामान्य सीट पर समाजवादी पार्टी ने पासी समाज से आने वाले देश प्रसाद को उतार कर बीजेपी को उस वक्त हरा दिया जब राम मंदिर का निर्माण तक हो चुका था और तब क्या लखनऊ में पासी बनाम मुस्लिम होते इस मुद्दे से फायदा आगे बीजेपी को हो सकता है। क्या पासी वोट विपक्ष का घटेगा जो 2024 में बढ़ गया था?
18: अब महाराष्ट्र के ठाणे से बड़ी खबर आपको देते हैं। ठाणे जिले में मीरा रोड इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में बकरीद के लिए बकरियों को बांधने और एक शेड बनाने को लेकर विवाद, अब धार्मिक नारेबाजी और हनुमान चालीसा तक पहुंच गए। दरअसल इस सोसाइटी में बकरी विवाद के चलते कथित तौर पर एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर ब्लेड से ही हमला कर दिया। मीरा रोड पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई। ये बताया जा रहा है कि इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। ये तीनों ही विश्व हिंदू परिषद से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिन्होंने सोसाइटी में उन लोगों को का साथ दिया था जो शेड बनाने और बकरियों को बांधने का विरोध कर रहे थे। FIR हर्ष सिंह नाम के व्यक्ति ने दर्ज करवाई है, जो कि इस घटना में खुद भी जख्मी हुआ था। हमारी संवाददाता ने उस सोसाइटी से रिपोर्ट भेजी है, वो भी आपको दिखाते हैं।
2: इस वक्त हम मुंबई के पास मीरा रोड इलाके में हैं। यहाँ पर एक सोसाइटी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पूनम एस्टेट्स क्लस्टर 1, यहाँ पर कल पूरे दिन काफी हंगामा हुआ, जिस दौरान दरअसल कुछ बकरीद क्योंकि आने वाली है तो बकरीद के दौरान बकरे की कुर्बानी देने के लिए कई सारे बकरे यहाँ लाए गए थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है, पहले भी यहाँ पे बकरे लाए गए हैं इस सोसाइटी में, लेकिन इस बार इस तरह से आपत्ति जताई गई कि ज्यादा बकरे लाए गए हैं और साथ ही एक शेड बनाया गया था, जिसकी वजह से लोगों जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने उस शेड को तोड़ने की कोशिश की। इसी बात पे बहुत हंगामा हुआ, कुछ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी आए। ये ज्यादा एस्केलेट होता रहा पूरे दिन में और उसके बाद शाम को देर रात में तकरीबन एक इंसान, कहा जा रहा है कि देर रात को एक शख्स जो है उसने ब्लेड का इस्तेमाल करके विश्व हिंदू परिषद के जो 3 लोग थे वहां पर खड़े उनके ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। इसके ऊपर एक FIR जो यहाँ की पुलिस है उसने दर्ज कर ली है और उसके साथ ही एक शख्स को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस कंफर्म करने की कोशिश कर रही है कि ये वही शख्स है जिसने हमला किया था, जिसके बाद अगर वो कंफर्म हो जाता है उसके बाद उसको अदालत में पेश किया जाएगा हिरासत करने लेने के बाद। तो ये तमाम चीजें हो रही, लेकिन तब तक देखिए सोसाइटी जो है पूरी तरीके से एक छावनी में तब्दील हो गई है। चाहे ये गेट लीजिए या इसके इस इलाके के पूरे सब जगह पुलिस की मौजूदगी दिख रही है, ताकि जिस तरीके से हंगामा हुआ कल वो फिर से ना हो। कैमरामैन किरण सबकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
18: अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार कायम होते ही बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की वापसी का तांता लगना शुरू हो गया है। जब से पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की शुरुआत की है, तब से सरहद पर वापसी करने वाले लोगों की भीड़ देखी जा रही है। उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पोस्ट इलाके में मौजूदा भीड़, इसमें बंगाल में कब और कैसे घुसे थे ये तो नहीं पता, लेकिन शुभेंदु सरकार के आने के बाद से इनकी वापसी जरूर होने लगी है। खासकर जब से सरकार ने अवैध अप्रवासियों यानी कि घुसपैठियों के धरपकड़ के लिए होल्डिंग और डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश जारी किया और वो आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब से बशीरहार उपमंडल के स्वरूप नगर पुलिस थाने में आने वाले बिथारी हाकिमपुर ग्राम पंचायत के लोग हाकिमपुर चेक पॉइंट पर अचानक लोगों की भीड़ देख रहे हैं।
3: पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया।
18: हिंदू सरकार ने शपथ ग्रहण के साथ ही घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया था और अब राज्य के मालदा में घुसपैठियों को रोकने के लिए पहला होल्डिंग सेंटर भी बना दिया गया। यहां पर इंग्लिश बाजार शहर के चंदन पार्क में इस इमारत को होल्डिंग सेंटर के तौर पर चिन्हित किया गया है। बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर में लाकर हिरासत में भी रखा गया। इनमें 3 महिलाएं, 6 नाबालिग भी शामिल हैं। गजोल थाने के पांडा के पकड़े गए 9 बांग्लादेशियों को कड़ी निगरानी में रखा गया है। इस पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 12 पुलिसकर्मियों, 3 सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों, 3 नागरिक स्वयंसेवकों और 1 रसोइयों वाली एक और सुरक्षा और सहायता टीम को भी यहां पर तैनात किया गया है।
4: टीएमसी ने गृह मंत्रालय की गाइडलाइन की खुलेआम अवहेलना करके बंगाल को अवैध घुसपैठियों का, रोहिंग्या घुसपैठियों का सुरक्षित पनाहगाह बना दिया था।
5: क्या नतीजा होगा देखिए अब तक, उसके बाद तो लोग जिस पर जुलुम होगा वो तो सहेंगे नहीं, वो तो लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, उस आवाज सही होगा तो उसके समर्थन भी मिल सकता देश में।
18: ईरान में सुलह के लिए बातचीत के बीच में फिर से संग्राम शुरू हो गया। कल रात अमेरिका ने होर्मुज में ईरानी सेना की ओर से समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने वाली नावों पर हमले किए। ये हमले बढ़े और खबर है कि ईरान के 3 एयरबेस और 5 विमानों को भी ध्वस्त किया गया है।
6: ईरान की जंग में ये तस्वीरें पुरानी हो सकती हैं, लेकिन तबाही कुछ ऐसी ही है। होर्मुज के समंदर में बारूदी सुरंग बिछाते हुए ईरानी सेना और अमेरिकी सेना के बीच जमकर वार पलटवार हुआ है। अमेरिकी सेंटकॉम का दावा है कि ईरान की सेना की ओर से होर्मुज के पास समंदर में बारूदी सुरंग बिछाई जा रही थी, जिसके पकड़े जाने के बाद अमेरिका ने ईरानी सेना पर रक्षात्मक हमले किए हैं। दावा है कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज में IRGC पर हमला करते हुए ईरान के दक्षिणी पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में भी हमले किए हैं। इन अमेरिकी हमलों में ईरान के 3 एयरबेस और 5 विमानों के नुकसान की अपुष्ट खबरें भी सामने आ रही। होर्मुज के आसपास हो रहे इन धमाकों के बारे में US सेंटकॉम के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिंस ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने आज दक्षिणी ईरान में आत्मरक्षा में हमले किए ताकि हमारे सैनिकों को ईरानी सेना से होने वाले खतरों से बचाया जा सके। हमारे निशाने पर मिसाइल लॉन्च साइटें और ईरान की वो नावें थीं जो वहां बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। US सेंट्रल कमांड चल रहे संघर्ष विराम के दौरान संयम बरतते हुए भी अपनी सेना की रक्षा करना जारी रखेगा। अमेरिका के इन हमलों के बाद ईरानी सोशल मीडिया पर ईरान की ओर से पलटवार की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक साथ कई मिसाइलों को लॉन्च करते और आसमान में उनके पटाखे फूटते तस्वीरें ईरान के पलटवार के तौर पर बताई जा रही हैं। हालांकि इन वार पलटवार की आधिकारिक सूचना सिर्फ विदेशी मीडिया में अमेरिकी सेंटकॉम की ओर से दी गई है, जिसमें अमेरिका ने इसे आत्मरक्षा में किए गए हमले का करार दिया है और सीज फायर पर इसका कोई असर नहीं होने का दावा भी किया है। इससे पहले मई की शुरुआत में भी अमेरिकी सेना ने ईरान की उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था जो हॉर्मुज से गुजर रहे अमेरिकी युद्धपोतों पर बिना किसी उकसावे के मिसाइल, ड्रोन और छोटी नावों से हमले की कोशिश कर रहे थे। ईरान की चौखट पर डटे अमेरिका का दावा है कि उसने आत्मरक्षा में ये हमले किए हैं। उधर जिस वक्त ईरानी जमीन पर बारूदी विस्फोट हो रहे थे, तब दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से समझौता ज्ञापन पर चर्चा हो रही थी। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उनकी ईरान से डील हो रही है और इसमें उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ट्रंप ने इससे पहले अमेरिकी सेना को हॉर्मुज के आसपास ईरान की किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने ईरानी सेना पर हमले किए हैं। आज तक ब्यूरो।
18: और उसको लेकर ईरान और ट्रंप की फौज के बीच में कल रात जो बारूदी जंग हुई है उसका असर इस जंग के दूसरे मोर्चे पर भी देखने को मिला है। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला पर खतरनाक हमले किए। नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्ला के खिलाफ हमले और तेज करने को कहा गया है।

0: जंग का भीषण मोर्चा लेबनान में भी खुला हुआ है। इजरायली सेना लेबनान के दक्षिणी इलाकों में हिजबुल्ला के ठिकानों पर टनों बारूद की बारिश कर रही है। जिस दिन लेबनान अपना मुक्ति दिवस मना रहा था, उसी दिन इजरायल के फाइटर विमान और तोपखानों से दक्षिणी लेबनान में बारूद परत रहे थे। इन ताजा हमलों में लेबनान में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हुए। लेबनान की राजधानी बेरूत से लेकर बेका घाटी तक हिजबुल्ला के ठिकाने और सरहद के इलाके इजरायली हमलों की चपेट में आए हैं। इसमें सरहद के टायर और नबाती के आसपास के इलाकों में भयानक बमबारी हुई। पूर्वी बेका घाटी के बालशेख, सोहमोर और जेलाया जैसे इलाकों में भी हिजबुल्ला के ठिकानों को इजरायली सेना ने निशाना बनाया। इसके अलावा बेरूत के करीब दाहिये और राहब में हिजबुल्ला के सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले हुए। इजरायल का दावा है कि पिछले दिनों इजरायली सैनिकों पर फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से हुए हमले के जवाब में हिजबुल्ला के ड्रोन कंट्रोल सेंटर और लॉन्चिंग साइट्स को नष्ट किया गया है। इसके अलावा हिजबुल्ला के स्थानीय कमांडरों के भूमिगत बंकरों और मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर को भी निशाना बनाया गया। हिजबुल्ला ने घनी आबादी वाले इलाकों में जो रॉकेट गाइडेड मिसाइल और बारूद के गोदाम बना रखे थे, उन्हें भी हवाई हमलों में ध्वस्त कर दिया गया।
1: हम हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ही हमारे वीर लड़ाकों ने 600 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। वो हम पर फाइबर ड्रोन से हमला कर रहे हैं। हमारी एक विशेष टीम इस पर काम कर रही है और हम इसका भी समाधान निकालेंगे।
0: इजरायली पीएम नेतन्याहू की इन चेतावनियों के बाद इजरायल ने जिस तरह लेबनान में हमले तेज कर दिए हैं, उसका असर ट्रंप और ईरान की बातचीत पर कितना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले बंद नहीं किए तो इजरायल के हमले और तेज होंगे। आज तक ब्यूरो।
2: छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
3: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब वेक्टर।
4: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स 50 बक्स राइट इन हिज पॉकेट। If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy. Oh, ouch. However you make money work, we can work with that.
5: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
6: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
10: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
11: In association with
12: Bharat ki apni electric Savari, Sokudo.
11: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
4: This is the sound of Jack, buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
12: Oh, ouch.
4: However you make money work, we can work with that.
5: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, Coffeehouse, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
14: किसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। दो राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है, गुजरात और उत्तराखंड, और स्पेशल प्रावधान करकर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स. अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना. टंकी मतलब
1: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
2: Oh, ouch.
1: However you make money work, we can work with that.
3: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस.

और देशों की बैठक में दुनिया की सप्लाई चेन दुरुस्त करने पर हुआ मंथन, जंगी चुनौतियों पर चर्चा। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, पूरा समूह एकजुट। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी डीके शिव कुमार की आलाकमान से मीटिंग, दोनों से राहुल गांधी की अलग अलग मुलाकात। मिश्रा के घर क्राइम सीन का मुआयना कर निकली सीबीआई, गिरिबाला से भी पूछताछ, सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद फिर हो सकते हैं सात से सवाल जवाब। राजस्थान में नकली दवा रैकेट का खुलासा, कोटा से के सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन से हुई थी महिलाओं की मौत, 11 सैंपल जांच में फेल, कई राज्यों तक फैला जाल। महंगाई की कॉरिडोर, पेट्रोल डीजल के बाद 2 रुपए बढ़े सीएनजी के दाम, दिल्ली में 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हुई कीमतें, 12 दिन में कुल 6 रुपए का इजाफा।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप 100 के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर, ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
0: पश्चिम एशिया युद्ध संकट के बीच आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग का बड़ा ऐलान, क्वाड के लिए अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता। क्वाड में समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन पर सहयोग बढ़ेगा, अवैध मछली पकड़ने पर कसा जाएगा शिकंजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, क्वाड बैठक बेहद उत्पादक, समुद्री सुरक्षा सप्लाई चेन पर बढ़ेगा सहयोग। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी बोले, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक ट्रेड के लिए मजबूत सहयोग जरूरी। जापान के विदेश मंत्री ने कहा, बैठक में हमने पश्चिम एशिया की स्थिति और होमो संकट पर चर्चा की। जापान के विदेश मंत्री ने कहा, हमने उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण पर साझा किए विचार। मार्को रूबियो ने कहा, क्वाड को चर्चा मंच से कार्रवाई मंच बनाने की दिशा में बढ़ रहे, ऊर्जा सुरक्षा सप्लाई चेन सहयोग पर जोर। मार्को रूबियो ने जानकारी दी का, क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क और एनर्जी सिक्योरिटी पहल की होगी शुरुआत। राजस्थान में नकली दवाओं का भंडाफोड़, 10 दिन में 11 सैंपल फेल, सरकारी अस्पतालों में दी जा रही ऑक्सीटोसिन दवा नकली निकली, सप्लाई पर उठे सवाल। कोटा मेडिकल कॉलेज में नकली इंजेक्शन से 4 महिलाओं की मौत, जैक्सन लैब के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का सैंपल फेल, पूरा स्टॉक जब्त। देश भर की कंपनी की दवाएं जांच में फेल, राजस्थान से लेकर कई राज्यों तक नकली दवाओं का नेटवर्क उजागर। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों ने फिर भरी उड़ान, 12 दिन में 6 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी, उपभोक्ताओं की जेब पर बढ़ा बोझ। राजधानी में सीएनजी उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, लगातार दूसरी बढ़ोतरी के बाद कीमत 83.09 रुपए प्रति किलो पहुंची। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी ने बढ़ाई चिंता, 12 दिन में दाम 70.09 रुपए से बढ़कर 83.09 रुपए हो गए। बीकानेर से गृहमंत्री अमित शाह का बॉर्डर दौरा शुरू, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत, 184 गांव सड़क और 4G नेटवर्क से जुड़ेंगे। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा है, 1 जून से 8 जून के बीच होगा नामांकन, 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 11 जून नामांकन वापस करने की आखिरी तारीख होगी।

जांच आज से सीबीआई के हाथों में। 12 मई की रात के घटनाक्रम और वित्तीय लेनदेन की हो रही है गहन पड़ताल। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और केशव कुमार पहुंचे कांग्रेस हेडक्वार्टर। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच थोड़ी देर में आलाकमान से मीटिंग। पवन कल्याण ने अपने राजनीतिक सफर पर विचार व्यक्त करते हुए कहा, मैंने आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए राजनीति में कदम रखा। दिल्ली हाईकोर्ट में जिमखाना क्लब बेदखली मामले में सुनवाई। केंद्र ने रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भूमि आवश्यक बताई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली रेस क्लब को जारी किया शो कॉज नोटिस पर रोक लगाने वाला सिंगल जज आदेश रद्द किया। केंद्र की अपील मंजूर। मीरा रोड हाउसिंग सोसाइटी से बकरीद से जुड़ा विवाद बढ़ा। झगड़े के दौरान चाकूबाजी करते दिखा शख्स। पश्चिम बंगाल के मालदा में राज्य का पहला होल्डिंग सेंटर शुरू हुआ। पूरे मालदा जिले का एकमात्र होल्डिंग सेंटर। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को होल्डिंग सेंटर में हिरासत में रखा गया। 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल। मुर्शिदाबाद में अवैध घुसपैठ के आरोप में 3 लोग हिरासत में लेकर लालगोला होल्डिंग सेंटर भेजे गए। बंगाल बीजेपी प्रदेश सामिक भट्टाचार्य की 2 टूक। अगर कोई बीजेपी का झंडा लेकर कारखाने और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से रंगदारी मांगता है तो उसकी जगह जेल है। सामिक भट्टाचार्य ने साफ कर दिया है कि बीजेपी की कोई ट्रेड यूनियन या स्टूडेंट यूनियन नहीं है, इसके लिए लोग सजग रहे। एनआईए की जांच में लखनऊ में बड़े आतंकी हमले का खुलासा है। एनआईए के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर यूपी विधानसभा, सचिवालय, बड़ा इमामबाड़ा, अमीनाबाद जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके। जांच में सामने आया कि आरोपी लखनऊ में रेकी कर कार बम धमाके की तैयारी कर रहे थे, जिनसे उस समय रहते साजिश का पर्दाफाश किया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर पेरोल मिल गई है। इस बार राम रहीम को 30 दिन की पेरोल दी गई है। साल 2020 से अब तक राम रहीम को 16 बार पेरोल का फायदा मिला है। इससे पहले जनवरी में 40 दिन की पेरोल दी गई थी। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में गैस पाइपलाइन ब्लास्ट की घटना। धमाके के बाद इलाके की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और गैस कंपनी की टीमें मौके पर पहुंची। पंजाब नगर निकाय चुनाव को लेकर रायकोट में तनाव। कांग्रेस उम्मीदवार को आप समर्थकों ने पीटा। रायकोट नगर काउंसिल चुनाव में हिंसा। कांग्रेस उम्मीदवार जगदीप सिंह जग्गा पर जानलेवा हमला। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। ईडी की जीरकपुर में बड़ी कार्रवाई। रॉयल एस्टेट दफ्तर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी। चुनाव के बीच जीरकपुर में ईडी का एक्शन जारी। परवीन रॉकी कांसल और नीरज कांसल से जुड़े परिसरों पर रेड। लखनऊ के कसमंडी में बढ़ा तनाव। हिंदू संगठनों का हनुमान चालीसा का पाठ। किले में नहीं होगी बकरीद पर नमाज। भीषण गर्मी की चपेट पूरा उत्तर भारत। उत्तराखंड के अगले 3 दिन तक देखने को मिल सकता है भीषण गर्मी और लू का असर। मौसम विभाग के मुताबिक 27 मई तक राज्य के मैदानी जिलों में हीटवेव जैसी स्थिति बनी रहेगी। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के कुछ इलाकों में गर्म हवाएं बढ़ सकती हैं। अस्पतालों में दवाइयों, ओआरएस, बर्फ और जरूरी उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश। लू और डिहाइड्रेशन के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के आदेश।

महाराष्ट्र में बढ़ा लू का प्रकोप, 47.6 डिग्री तापमान के साथ बहुपुरी देश का सबसे गर्म स्थान। राजस्थान के बड़े हिस्सों में भीषण लू का प्रकोप, 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ कोटा रहा राज्य का सबसे गर्म स्थान। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में ऐतिहासिक ऊंचाई पर बिजली की मांग, आंकड़ों के मुताबिक मई के महीने में 8,647 मेगावाट पहुंची डिमांड। 2024 के बाद मई महीने में राजधानी में बिजली डिमांड का नया रिकॉर्ड, अधिकारियों ने कहा जून में गर्मी के चरम पर पहुंचने से पहले 9,000 मेगावाट को पार कर सकती है डिमांड। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच पूरी की जा रही है राज्य की विद्युत आपूर्ति, प्रदेश में 69,000 मेगावाट से ज्यादा डिमांड। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के मुताबिक देश में सर्वाधिक बिजली उपलब्ध कराने वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश। मैदान के रिकॉर्ड तोड़ देने के बीच लोग कर रहे हैं पहाड़ों का रुख, शिमला में पिछले हफ्ते आई 1,00,000 से ज्यादा टूरिस्ट गाड़ियां। रांची में पानी संकट का पर फूटा लोगों का गुस्सा, बाल्टी लेकर महिलाओं ने किया सड़क जाम। महिलाओं ने बताया 2 महीने से जलापूर्ति ठप, आम जनजीवन हो रहा है प्रभावित। जोधपुर में लूणी क्षेत्र में भीषण जल संकट, 150 गांव प्रभावित, इलेक्ट्रेट पर युवाओं का प्रदर्शन, 15 दिन में समाधान की मांग। इटावा में भीषण गर्मी में पारा हुआ 44 के पार, जिला आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। 45 डिग्री तापमान से पशुपालक परेशान, करनाल भीषण गर्मी से दूध देने की क्षमता प्रभावित। जॉर्जिया में 12 दिन से लापता है अहमदाबाद का एमबीबीएस छात्र ध्वनित राजदीप, परिवार ने पीएम मोदी और अमित शाह से लगाई गुहार। पीजी विवाद और फोन कटने के बाद परिवार की बड़ी चिंता, डिपॉजिट विवाद से शुरू हुआ तनाव, लापता ध्वनित को लेकर परिवार ने गंभीर आरोप लगाए। पीजी माली से विवाद के बाद ध्वनित का फोन स्विच ऑफ, 14 मई से कोई सुराग नहीं। परिवार का दावा, पैसे के लेन देन के बावजूद भी नहीं सुलझा विवाद, अब युवक लापता। ध्वनित को व्हाट्सएप चैट से खुलासा, पीजी मालिक ने दी थी जान से मारने की धमकी। इंस्टाग्राम पर रीलवास पुलिसकर्मी पर एक्शन, बरेली में लापरवाही करने वाले 30 पुलिसकर्मियों पर लिया गया एक्शन। मुजफ्फरनगर में नाम पूछकर मुस्लिम चाचा भतीजे को लोगों ने बेरहमी से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कटिहार में एक पंडित ने दूसरे पंडित से

जज मानी तो पी लिया फिनाल। अस्पताल पंडित ने कहा प्रशासन मेरी सुनता नहीं, डीएम ने संज्ञान लिया। दक्षिण दिल्ली के लाडोसरा इलाके में बिजली के ट्रांसफॉर्मर में लगी आग, जांच जारी। चंदौली भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक वाहन की टक्कर में 15 घायल, 4 की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश की मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कसौली के जंगलों में आग, धधकती आग में करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा, दिल्ली से गोरखपुर जा रही बस पलटी, 6 की मौत, 19 घायल। जम्मू कश्मीर के रजौरी में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन, लगातार चौथे दिन जारी। गंभीर, मुगलान और दोरीमल के घने जंगलों में सेना ने इलाके को घेरा। बाराबंकी हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रेलर से बेकाबू न हुआ कार टकराई, 3 घायल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चौरा बस्ती फायरिंग में बम हमला मामले में गिरफ्तारी, आरोपी शमी अहमद को जांच के लिए मौके पर ले जाया गया। गोरखपुर में वाहन आगे पीछे करने को लेकर दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की, फिर कार में लगाई आग। बुलढाना में पहले 4 मासूम बच्चों को कुएं में फेंका, फिर पिता ने की आत्महत्या। जौनपुर में 1 लाख के नाम के बदमाश रवि यादव के परिजन बोले इस सरकार में यादव होना गुनाह है, बोले पुलिस ने जबरदस्ती कराया अंतिम संस्कार। संभल में रॉन्ग साइड चारी कार और मर्सिडीज के आमने सामने से टक्कर, पिता और बेटी की मौत, 4 लोग घायल। बदायूं पुलिस की सफलता, इस्लामपुर डकैती केस से संभल से 5 आरोपी गिरफ्तार, 19 लाख के जेवरात बरामद, जांच में तेजी। कानपुर में मामूली बाइक टक्कर को लेकर विवाद, सरेआम पिता पुत्र की चाकू और हेलमेट से पीट पीट कर हत्या, खौफनाक वीडियो आया सामने। दिल्ली में लॉन्च हुई शिवराज सिंह चौहान की किताब, पीएम मोदी संग अनुभवों का किया जिक्र। किताब का नाम अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का विमोचन। शिवराज बोले यह सिर्फ किताब नहीं, भावनाओं का दस्तावेज है। पंजाबी सिंगर और लुधियाना की मेयर इंद्रजीत कौर के कार को बम से बनाने की धमकी, मेयर को दलजीत दोसांझ का सपोर्ट करने पर दी गई धमकी। इससे पहले दलजीत के मैनेजर के घर पर हुई थी फायरिंग, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच उमड़ा आस्था का सैलाब, 22 लाख के पार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चारधाम में उमड़ा भक्तों का मेला, करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने किए चारधाम यात्रा। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे भक्त, आंकड़ा करीब 8.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भक्तों में जोरदार उत्साह, 6 लाख से अधिक लोगों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम में लगा भक्तों का मेला, 4 लाख भक्तों ने लगाई हाजिरी। रंगौंद्री को लेकर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर ने बढ़ा विवाद, एक्टर पर शूटिंग शुरू होने से पहले 10 दिन पहले फिल्म छोड़ने का आरोप। रणवीर सिंह को फरहान अख्तर की डॉन्ट्री को छोड़ना पड़ा महंगा, शिकायत के बाद FWIC ने लगाया इंडस्ट्री में बैन। रणबीर कपूर की रामायण पार्ट 1 की बदल सकती है रिलीज डेट, दावा है कि फिल्म इस साल दिवाली से हफ्ते पहले यानी 30 अक्टूबर को आ सकती है। एक्शन कॉमेडी के बाद अक्षय नए जॉनर में रखने जा रहे कदम, अब एलियन से भिड़ेंगे। चार फिल्मों के बाद डायरेक्टर डेविड धवन का बॉलीवुड से संन्यास, निर्माता निर्देशक करण जौहर हुए इमोशनल। आज से धर्मशाला में हो रही है प्लेऑफ का काल की शुरुआत, क्वालिफायर 1 में बैंगलोर और गुजरात का होगा आमना सामना। मैच जीतने वाली टीम से सीधे फाइनल में कराएंगे एंट्री, जबकि हारने वाली टीम को दूसरे क्वालिफायर में खेलने का मौका मिलेगा। आरसीबी के बाद धर्मशाला में खेलने का अच्छा अनुभव, साथ ही आरसीबी ने इसी मैदान पर पंजाब को हराकर अंक तालिका में पक्का किया था पहला स्थान। गुजरात कप्तान शुभमन गिल और युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन से उम्मीद, वहीं आरसीबी के लिए विराट कोहली का अनुभव साबित होगा प्लस पॉइंट। इस आईपीएल सीजन में हुए 2-2 मैचेस में एक मुकाबले में बैंगलोर ने गुजरात को 5 विकेट से हराया था, वहीं दूसरे मैच में गुजरात ने बैंगलोर को 4 विकेट से मात दी थी।

0: बकरीद से पहले थाने जिला के मीरा रोड इलाके की हाउसिंग सोसाइटी में कल बड़ा विवाद हो गया। दरअसल सोसाइटी परिसर में बकरीद पर कुर्बानी के लिए एक शेर बनाया गया, इसी पर कल दो पक्षों में घमासान हुआ। आरोप यह है कि इस विवाद में एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर चाकू से हमला किया, जिसमें तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं। कल देर रात के झगड़े के बाद इलाके में तनाव पसरा है, भारी पुलिस बल की तैनाती है, साथ ही परिसर के बाहर बड़ी तादाद में लोग धरना देकर नारेबाजी कर रहे हैं। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई तमाम जानकारी के साथ। विद्या, ताजा क्या हालात हैं इस एरिया के?
1: बाहर निकालो।
2: बिल्कुल, यहाँ पर देख लीजिए आप, जो लोग हैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफी जोर शोर से। इनका यही कहना है कि जिस इंसान ने लोग पर हमला किया था उसको बाहर निकाला जाए, लेकिन कोशिश इनकी यही है कि जिस तरीके से बकरीद में यहाँ पर जो इश्यू हुआ था वो यहाँ पर न होने दिया जाए। बकरीद में यहाँ पे जिस तरीके से बकरों को यहाँ लाया गया, वो जो मुद्दा है उसको मिलाकर ये लोग सिर्फ मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे सोसाइटी के अंदर बकरों को जो रखा गया था, शेड बनाया गया था, वो यहाँ पर न रहो।
0: स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर?
2: अब आइए लोगों से ही बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं। अब यहाँ पर पहले भी आप लोग इस सोसाइटी से ही हैं?
3: हम लोग यहीं के हैं।
2: यहाँ पर क्या समस्या है? मतलब पहले भी तो बकरीद में बकरे आते थे यहाँ?
3: नहीं, पहले भी बकरे आते थे, लेकिन ये सबका कत्ल खाना होता वहाँ पे काटने के लिए होता था। अभी ये सब यहाँ हिंदू भाई लोग होते हैं।
4: कभी भी नहीं, ये पहली बार लाया गया है, क्योंकि उसी कौम के कमेटी में एक दो आदमी हैं जो फॉल्स लेटर दे के परमिशन दिया गया, अन्यथा परमिशन नहीं है। हमारे महानगर पालिका के द्वारा एक जगह बनाया गया है, वहाँ बकरा रखे और वहाँ कुर्बानी करें। हम लोग जात पात की लड़ाई नहीं है, हम लोग की स्वच्छता की लड़ाई है। 50 से 60 बकरी अंदर बना हुआ है, बदबू इतना दे रहा है, दामा का पेशेंट है, वो आईसीयू में भर्ती हुआ। कुछ जिहादियों के द्वारा बजरंग दल पे चाकू से वार किया गया, वो हमारा मांग है उसको अरेस्ट किया जाए और बकरे को बाहर निकाला जाए।
2: जो बकरे जो यहाँ पर लाए गए हैं सोसाइटी में वो हटाए जाए, और साथ ही इनकी यही मांग है कि जो आरोपी है वो जिसने तीन लोगों पर हमला किया था, बुरी तरीके से चाकू से वार किया था, जिन लोग काफी इंजर्ड भी हैं, एक FIR हालांकि इस केस में रजिस्टर हो चुकी है, तो इनकी यही मांग है कि उसके अरेस्ट की जाए, गिरफ्तारी हो प्रॉपर, और उसके बाद अदालत में पेश होकर लीगल कार्रवाई उसके खिलाफ हो। तो ये तमाम मांगे यहाँ मीरा रोड में है, और यही देखते हुए इस माहौल को, क्योंकि बकरीद के समय में काफी ज्यादा ये समस्याएं होती है यहाँ पर, तो इसकी वजह से एक मार्च पास भी किया गया था 2 दिन पहले मीरा रोड के इस इलाके में। लेकिन फिलहाल जो कोशिश पुलिस की है, ये अभी आला अधिकारी आप देख लीजिए यहाँ पे काफी सारे पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, और आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, उनका यही कोशिश है कि जो माहौल है वो ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर का जो की जो समस्या है वो उत्पन्न ना हो। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए काफी सारे सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। आइए, आप लोग सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पर? आप लोग सोसाइटी के लोग अंदर हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। काफी सारे जो लोग हैं, आप लोग सोसाइटी के लोग हैं?
5: सोसाइटी के नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है।
2: अच्छा, आप लोग बीजेपी के? सोसाइटी के लोग हैं यहाँ पर क्या कोई तो, जो वहाँ आप लोग सोसाइटी से हैं यहाँ पे? आप लोग सोसाइटी से? तो यहाँ पे कोई समस्या हो इस तरह की पहले भी रही है क्या? ये लाइव चल रहा है कि
6: एक सेकंड,
2: समस्या पहले से भी रही है?
6: ये पहले से रही है, अभी समस्या क्या है ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले 2-4 बकरे थे, अभी क्या है इन्होंने 50-60 बकरे ला दिए, उस वजह से हम लोग को यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही, हर चीज में इनको मना किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग अपना लाए हो तो ठीक है, ये लोग बाहर के सोसाइटी के अदर सब ला के बकरा यहाँ जमा,
2: शेड बना गया,
6: शेड बनाया था।
0: ठीक है विद्या, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात लखनऊ के पास कसमंडी किला मस्जिद विवाद की करेंगे। अब हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर हनुमान चालीसा पाठ करने की मांग कर दी है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने चालीसा पाठ की इजाजत नहीं दी है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। उनकी मांग है कि उनको हनुमान चालीसा का पाठ करने दिया जाए। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने बकरीद की नमाज पर रोक लगा दी है। महाराज कंसा पासी के किले को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, जहां मंदिर और मस्जिद दोनों के दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष मजार सहित उर्दू शिलापट्टी लगाने के गंभीर आरोप लगाकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं हिंदू किला मंदिर वापस करने को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है।
1: ये हर हर महादेव के ये नारे जो लग रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं, ये कंसा पासी के किले पर पहुंचे हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों के हैं। और हाथों में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर थाली है, ये पूजा की थाली है जो यहाँ पर पहुंचे हैं पूजा करने के लिए। और उनका मानना है कि यहाँ पर वो पूजा करेंगे क्योंकि आज बड़ा मंगल है, और बड़ा मंगल के साथ साथ यहाँ पर वो चाहते हैं कि हनुमान चालीसा और पूजा पाठ करें। आप तस्वीरों में देखिए कि सभी लोग पहुंचे हुए हैं, पुलिस फोर्स यहाँ पर खड़ी, आप देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है और पुलिस के साथ यहाँ पर झड़प हो रही है पुलिस के साथ में, चूंकि यहाँ पूजा करने पहुंची है तो पुलिस ने झड़प के साथ रोक लिया है इनको और अब आगे जाने नहीं दे रहे हैं, चूंकि ये यहाँ पर जिद पर अड़े हैं और उस वहां तक मस्जिद यानी कि जो मंदिर है कंसा पासी का वहां पर चाहते हैं कि पहुंचे, जिसके बाद यहाँ पर ये सभी जो कार्यकर्ता हिंदू महासभा के हैं वो पहुंचे हुए हैं और वो इन सभी को यहाँ पर पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है कि वो पूजा। आप यहाँ पर
7: कोई आदेश हो बताइए, आप बिना आदेश आप पूजा नहीं रोक सकते,
1: क्या करने आए हैं
7: योगी सरकार? आपको पूजा से नहीं रोक सकती, नमाज पढ़ाई जाएगी तो पूजा भी नहीं रोकी जाएगी, ये हमारा अधिकार है। हम जाएंगे आगे पूजा करेंगे, कोई आदेश दिखाए, कोई आदेश दिखाए किसी को, किसी अदालत ने रोका आपका पूजा से? यहाँ पूजा से रोका मैं,
1: आप पूजा करने से यहाँ पर जो साफ तौर से ये पूरी जो हिंदू सभा है, हिंदू सभा के लोग हैं वो पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए भी नजर आए हैं, क्योंकि वो पूजा करने के लिए अड़े हुए हैं जबकि पुलिस फोर्स जो यहाँ पर प्रशासन ने तैनात कर रखी है।
0: अब आपको दिखाते हैं कैसे 2.5 करोड़ की कार से 45 रुपए के गमले की चोरी की गई। जी हां, लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने गमला चोरी की घटनाओं पर बेहद चुटिले अंदाज में अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि चोरी का एक नया मॉडल है, सुनिए।
8: सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नहीं तो होता क्या है, हम गमला लगाते हैं, कोई कार से आता है और गमला उठा के लेके चला जाता है कार से। अरे जितना कार का तेल लग रहा उसमें से नया गमला भी ले सकते थे, लेकिन ये चोरी का एक नया मॉडल हो गया कि ये तो इतना महंगी कार, मैं देख रहा था बहुत महंगी कार, वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं अब तो हर जगह, हम देखते रहते हैं उससे, और पता लगा कि वो महंगी कार 2.5 करोड़ की कार से 45 रुपए के गमले को चोरी करने के लिए, यानी इतनी अगर इतना प्रयास उन्होंने किया तो 45 रुपए में एक नया गमला लेकर के अपने घर में लगा सकते थे, सम्मान भी रहता और शहर भी अच्छा दिखता। एक बार तो मेरे मन में आया था कि उसकी फोटो में चौराहे पर लगाऊं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज दिल्ली में विमोचन हुआ। ये किताब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखी है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह सिर्फ पुस्तक नहीं बल्कि पीएम मोदी के साथ बिताए गए लम्हों और अपनेपन का दस्तावेज है। शिवराज ने इस किताब में पीएम मोदी के साथ 1991 की एकता यात्रा से लेकर आज तक के अनुभवों को साझा किया है। उन दिनों मुरली मनोहर जोशी की यात्रा में नरेंद्र मोदी संगठनात्मक प्रभारी थे। शिवराज ने कहा कि इस पुस्तक में अनुशासन, तपस्या, समर्पण से बड़े लक्ष्य हासिल करने की सीख युवाओं को प्रेरणा देगी। किताब में पीएम मोदी के नेतृत्व, सुशासन, राष्ट्र सेवा और नीति निर्माण के व्यक्तिगत पक्षों को उजागर किया गया है।
9: मेरा और उनका पहला साथ प्रारंभ हुआ एकता यात्रा से। आतंकवाद चरम पर था, कश्मीर की घाटी, कश्मीर के लाल चौक पे कोई तिरंगा फहराने की कल्पना नहीं कर सकता था। डॉक्टर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, उनके नेतृत्व में एकता यात्रा निकलेगी और कश्मीर के लाल चौक, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरेगा, पूरे भारत को भावनात्मक रूप से एक कर दिया जाएगा, देशभक्ति का ज्वार उठाया जाएगा। और उस यात्रा को संचालित करने का दायित्व पूरी तरह से मिला श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। और उस समय मैं लोकसभा का पहला चुनाव उपचुनाव जीता ही जीता था। मेरे पास स्वर्गीय प्रमोद जी का फोन आया कि एकता यात्रा से युवाओं को जोड़ने के लिए केसरिया वाहिनी बना रहे, तुम उस केसरिया वाहिनी के संयोजक के रूप में काम करो। और तब मेरी पहली मुलाकात हुई आदरणीय नरेंद्र भाई से।
0: फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
10: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना।
11: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स 50 बक्स राइट इन हिज पॉकेट। If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
12: Oh, ouch.
11: However you make money work, we can work with that.
13: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
15: Thank God I get to wake.
14: And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
16: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
17: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
18: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
10: टंकी मतलब व्यक्ति।
0: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
19: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
0: आप कैसे कर लेते हो?
20: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
19: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
20: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
21: नहीं
19: और म्यूचुअल फंड्स है
21: सही।
22: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1,00,000 तक जीत सकते हैं।
12: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
13: Like I said before, we better hold this in.
14: Director, the taste of success.
15: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

कोर देशों की बैठक में दुनिया की सप्लाई चेन दुरुस्त करने पर मंथन, जंगी चुनौतियों पर चर्चा। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, पूरा समूह एकजुट। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी डीके शिव कुमार की आला कमान से मीटिंग, दोनों से मुलाकात राहुल गांधी ने अलग अलग की। ससुराल में क्राइम सीन का मुआयना कर मायके वालों भी मिले सीबीआई अफसर, सासगिर बाला से पूछताछ, सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद फिर हो सकते हैं सवाल जवाब।

महिलाओं की मौत, 11 सैंपल जांच में फेल। महंगाई की और डोज, पेट्रोल डीजल के बाद 2 रुपए बढ़े सीएनजी के दाम। दिल्ली में 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हुई कीमतें, 12 दिन में 6 रुपए का इजाफा।

0: What are you doing?
1: समर, उस दिन रात को क्या हुआ? भाई आप इतना बता दो क्या हुआ? समर, आप इतना बता दो ना यार। समर, हम लोग को भाई,

नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। भोपाल की ट्विशा शर्मा की मौत मामले में अब सीबीआई की जांच तेज है। सैकड़ों सवालों की लंबी लिस्ट है जिन पर सीबीआई के अधिकारी जांच शुरू कर चुके हैं। जांच एजेंसी ने एक दिन पहले एफआईआर दर्ज की और अब ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से सवाल जवाब हो रहे हैं। इससे पहले कल पुलिस की टीम ट्विशा के पति समर्थ सिंह को लेकर उसके घर पहुंची और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। ट्विशा मौत मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। कुछ देर पहले जांच अधिकारी गिरिबाला सिंह के घर पहुंचे और जांच की तीन गाड़ियों से सीबीआई अफसर पहुंचे। इस टीम में दो महिला अफसर भी शामिल थी। जानकारी के मुताबिक करीब आधे घंटे तक वहां जांच पड़ताल हुई, क्राइम सीन का मुआयना किया गया, गिरिबाला सिंह से पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए।

0: साथ है। आप देखिए सीबीआई के अफसर जो है वो मौजूद है यहाँ पे। और फिलहाल अगर आप देख लेते
1: लोग, अरे भैया हमारे को नहीं मालूम, अधिकारी बैठे
2: सर, किस तरह की पूछताछ हुई सर?
0: तो आप देख सकते हैं सीबीआई की टीम फिलहाल आपको दिख जाएगी यहाँ पर मौजूद है। और लगातार जो गिरीबाला सिंह का घर है उसके बाहर सीबीआई के अफसर यहाँ पे मौजूद है और अब गाड़ी में बैठ गए हैं। ये वो गाड़ी है जिससे सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची हुई है। और फिलहाल अगर आप तस्वीरों में देखें तो आज तक ने बात करने की कोशिश की सीबीआई के अफसरों से, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया है। और इस बीच में हम आपको बता दें कि सीबीआई के अफसर जो हैं गाड़ी में बैठकर रवाना हो रहे हैं। हालांकि ये एक ही गाड़ी है, ऐसे अभी और भी अफसर मौजूद हैं अंदर सीबीआई के जो गिरीबाला सिंह के घर में है। ये एक अफसर है जो फिलहाल बाहर निकले हैं और ये यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथों में बैग है और माना जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं इस मौत से जुड़े हुए, जिन्हें फिलहाल यहाँ पर जो सीबीआई के अफसर हैं उन्होंने यहाँ से लिया है। हालांकि मीडिया से कुछ भी नहीं कहा है सीबीआई के अफसरों ने, लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो सीबीआई के अफसर हैं वो यहाँ पे बात करने से बच रहे हैं। और माना जा रहा है कि बाकी के जो अफसर हैं जो अंदर गए हैं वो भी बाहर जल्द ही निकल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल खबर इतनी है कि सीबीआई के अफसर जो हैं करीब आधे घंटे तक अंदर रहे हैं और एक एक करके निकल रहे हैं गिरीबाला सिंह के घर से। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
3: इस बीच बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी, आपको बता दें कि सीबीआई की टीम ट्रिशा के परिवार से मिल रही है। गिरीबाला सिंह से पूछताछ के बाद पीड़ित परिवार से यह अहम मुलाकात है। भोपाल कैंट इलाके में सीबीआई अधिकारी उनसे मुलाकात कर रहे हैं।
0: हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर्षित जो है सीबीआई की जो टीम यहाँ पहुंची है मिलने के लिए, देखिए सीबीआई के अफसर हैं जो हर्षित जो त्विशा का परिवार है उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पे। और बातचीत त्विशा का पूरा परिवार जो है उनसे आज यहाँ पे किया जाएगा। ये बड़ी तस्वीर है, अहम तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि सीबीआई जो है वो पहुंच गई है त्विशा के परिवार से मिलने के लिए उस जगह पर जहाँ पे सीबीआई के जो अफसर है और साथ ही में जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए ये सीबीआई के अफसर है, महिला अफसर भी हैं, क्योंकि त्विशा के परिवार में जो महिलाएं हैं उनसे भी पूछताछ यहाँ पे होगी। तो फिलहाल सीबीआई की टीम पहुंच गई है त्विशा के परिवार से बात करने के लिए। और यहाँ पे पहले ही दिन एक्शन मोड में सीबीआई दिख रही है। पहले गिरीबाला सिंह के घर पहुंची और फिर गिरीबाला सिंह के बाद अब सीबीआई पहुंच गई है त्विशा के परिवार से बातचीत करने के लिए। और पूरी की पूरी जो सीबीआई की टीम है वो अपने तमाम जो सबूत उनके पास मौजूद है, जो केस डायरी उनके पास है, जो एफआईआर है उसे देखते हुए फिलहाल अब सीबीआई की टीम यहां पहुंच गई है। और साथ ही में लोकल पुलिस भी है जो लगातार सीबीआई की टीम के साथ बनी हुई है। और इसी जगह पे पिछले कई दिनों से जो त्विशा का परिवार है वो रुका हुआ है मैस में, और यहीं पे अब सीबीआई की टीम पहुंची है। जैसे कि आज तक ने सबसे पहले बताया था कि गाड़ियों का जो काफिला है वो जिस दिशा में जा रहा था उससे ये तय हो गया था कि वो गाड़ियों का काफिला जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ जा रहा है, और उसी की तरह अब गाड़ियां पहुंच गई हैं कैंटोनमेंट में त्विशा के परिवार से मिलने।
3: रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, पहले सास और पति से पूछताछ, उसके बाद क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, अब उसी से कड़ियां जोड़कर परिवार से पूछताछ की जा रही है, या फिर पहले परिवार से पूछताछ कर चुके हैं उसके बाद क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंचे थे?
0: देखिए त्विशा के परिवार से तो सीबीआई की ये पहली मुलाकात है। जो क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ है वो कल लोकल पुलिस ने किया था एसआईटी ने, और आज सुबह सीबीआई की टीम आ गई। हालांकि क्राइम सीन जो है उन्होंने क्रिएट नहीं किया, रिक्रिएट नहीं किया है, सिर्फ क्राइम सीन को देखा है सीबीआई के अफसरों ने। और महिला अफसर सीबीआई की मौजूद थी क्योंकि गिरीबाला सिंह से उनको बात करनी थी, तो गिरीबाला सिंह से बात हुई है। बहुत विस्तार से बात नहीं हुई है क्योंकि महज आधे घंटे में ये मुलाकात खत्म हो गई थी। इस आधे घंटे में जो हमें जानकारी मिल रही है सीबीआई ने गिरीबाला सिंह से बात की है, वहां पे कुछ कथन उनके लिए हैं। जहां पे त्विशा ने फांसी लगाई थी सीबीआई की टीम ने उस जगह को देखा, उसकी फोटोज खींची है सीबीआई की टीम ने, सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस सीबीआई ने जो है वो लिया है यहां से। और इसके साथ ही त्विशा का कमरा, समर्थ का कमरा, क्योंकि खबर यह है कि त्विशा और समर्थ दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे, तो वहां भी सीबीआई के अफसरों ने जाकर के तफ्तीश की है। और बहुत ज्यादा समय फिलहाल सीबीआई की टीम ने गिरिबाला सिंह के परिवार में नहीं बिताया, आधे घंटे में ये पूरी तफ्तीश हो गई थी, उसके बाद तेजी से ये काफिला निकला है।
3: इस बीच भोपाल पुलिस ने 13 दिन तक जांच की, सुराग तलाशे और त्विशा की मौत की वजह जानने की पूरी कोशिश की। अब उस मिशन में सीबीआई की टीम जुड़ गई है। औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद से सीबीआई ने भोपाल में जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सवाल कई हैं, आरोप गंभीर हैं, जिनकी सच्चाई का पता लगाना केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती है।
4: पंडित जी छोड़ दो उसको।
5: यार ये पंडित जी क्या टाइम पास कर रहे हैं।

0: पूरा फुटेज पंडित जी खाने वाले हैं क्या? पंडित जी उसको शादी मेरे से करनी है, आपसे नहीं।
1: महज 5 महीने पहले शादी हुई थी। त्रिशा ने अपनी नई जिंदगी के नए नए सपने संजोए थे। समर्थ संघ वो जिंदगी के नए सफर पर निकली थी, लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। न त्रिशा रही, न उसके सपने रहे। आखिर समर्थ और त्रिशा के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामला पूर्व मॉडल की मौत तक पहुंच गया? अब जांच एजेंसियों की नजरें त्रिशा के पति समर्थ सिंह पर टिकी हैं, साथ ही गिरिबाला सिंह भी अहम राजदार है। त्रिशा की मौत के बाद समर्थ फरार हो गया था। इधर भोपाल पुलिस मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी, एक एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो दूसरी ओर त्रिशा को भोपाल एम्स पहुंचाने वाला समर्थ अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ कर गायब हो गया था। 22 मई को समर्थ सिंह की गिरफ्तारी हुई। भोपाल पुलिस अब उससे सवाल जवाब करना चाहती है, लिहाजा बीती रात कटारा हिल्स थाने की टीम उसे लेकर उसके घर गई। कटारा हिल्स स्थित उसके घर में तब गिरिबाला सिंह भी मौजूद थी, समर्थ भी पहुंचा। दोनों की मौजूदगी में भोपाल पुलिस ने क्राइम सीन की पड़ताल की। अब जानकारी के मुताबिक भोपाल पुलिस करीब 2 घंटे तक क्राइम सीन पर रही। जिस जगह त्रिशा की लाश फंदे से लटकी हुई मिली, पुलिस ने वहां जांच की। फंदे से उतार कर त्रिशा को जहां लाया गया था उस जगह पर भी जांच की गई। घर के अंदर बारीकी से पुलिस वालों ने सुराग तलाशे।
2: सोमवार शाम को भोपाल पुलिस की एसआईटी समर्थ सिंह को लेकर उसके घर पहुंची थी। करीब 2.5 घंटे तक समर्थ पुलिस के साथ घर में ही मौजूद रहा। इस दौरान स्पॉट वेरिफिकेशन तो करवाया ही गया, लेकिन बताया जा रहा है कि इस दौरान समर्थ और गिरिबाला सिंह से बकायदा घर के भीतर आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी की गई। एसआईटी ने सवाल पूछे कि आखिरकार पुलिस को देर से सूचना क्यों दी गई। पुलिस के मन में ये बात शुरू से खटक रही है कि जब त्रिशा के शव को देखा गया था या फिर त्रिशा को जब फंदे से लटका हुआ पाया गया था तो उसी दौरान पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई। पुलिस के पास सूचना देर से आने की असली वजह जानने की कोशिश सीबीआई भी करेगी और इसीलिए पुलिस पहले से ही इस सवाल का जवाब ढूंढने में जुट गई।
1: भोपाल पुलिस ने समर्थ सिंह से लंबी पूछताछ भी की है। सूत्रों की माने तो समर्थ सवाल के जवाब में ज्यादातर वही बातें दोहरा रहा है जो शुरू से उसकी मां गिरिबाला सिंह कहती रही है। समर्थ ने बताया कि त्रिशा अक्सर कहती थी कि घरेलू महिला वाली जिंदगी उसके लिए मुश्किल है। समर्थ ने पुलिस को यह भी बताया कि मौत वाली रात यानी 12 मई को खाना खाने के बाद दोनों कुछ देर पार्क में टहले और फिर टीवी देखने लगे। बाद में त्रिशा नीचे जाकर परिजनों से फोन पर बात करने लगी, जबकि वो सो गया था। समर्थ ने अपनी मां गिरिबाला सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि त्रिशा की मां का फोन आया था। उन्होंने ही बताया कि त्रिशा फोन नहीं उठा रही। तब अपनी मां के साथ उसने त्रिशा को खोजना शुरू किया। छत पर त्रिशा फंदे से लटकी मिली थी। समर्थ ने पुलिस को बताया कि उसने और उसकी मां ने मिलकर त्रिशा को नीचे उतारा, सीपीआर दिया और फिर भोपाल एम्स लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भोपाल पुलिस को समर्थ ने यह भी बताया कि फरारी के दौरान वो 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक जबलपुर में ही रहा। उसने अपना फोन इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि लोकेशन ट्रेस होने का खतरा था। समर्थ के इस बयान के बाद अब सवाल है कि आखिर कौन समर्थ की मदद कर रहा था। सीबीआई अब समर्थ के ऐसे बयान और उसके मददगारों की जांच करेगी। रमेश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: तो त्रिशा के पति समर्थ से लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की गई, रटा रटाया बयान उसने दिया, लेकिन अब हो सकता है कि सीबीआई को मामला सुपुर्द करने से जांच को नई दिशा मिल सके।

सवालों में उलझ गई त्विशा की मौत। सस्पेंस में फंसी हुई है ये मौत मिस्ट्री। भोपाल की त्विशा शर्मा की मौत पर जारी सस्पेंस और सवालों को सुलझाने का जिम्मा अब सीबीआई ने संभाल लिया। 12 मई को त्विशा की लाश फंदे से लटकी हुई मिली थी और 14 दिन बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। त्विशा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। इस मौत मिस्ट्री को लेकर बेहद गंभीर सवाल है। त्विशा के परिजनों के आरोप के बाद सीबीआई

0: सीबीआई ने नए सिरे से जांच शुरू की। जांच एजेंसियों के सामने सवाल है कि त्रिशा पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, बहुत से विवादों के बाद उसके सामने तलाक का विकल्प भी था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, आखिर क्यों? सीबीआई के सामने अहम सवाल ये भी है कि कथित सुसाइड की असल वजह क्या है, त्रिशा के शरीर पर चोट के निशान कैसे आए। त्रिशा के ससुराल वाले लगातार कह रहे हैं कि उसने फांसी लगाई, ऐसे में सवाल उठता है कि जब वो फंदे पर झूली थी तो समर्थ ने देखते ही पुलिस को फोन क्यों नहीं किया, इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। अहम सवाल ये भी है कि अगर समर्थ की गलती नहीं तो वो क्यों 10 दिनों तक भागता रहा। ऐसे ही सवालों के साथ सीबीआई की टीम भोपाल में है, जहां जांच तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी इस मामले के मुख्य आरोपी और त्रिशा के पति समर्थ सिंह से सवाल जवाब कर सकती है, साथ ही उसकी मां गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ संभव है। और इसकी भी उम्मीद है कि सीबीआई गिरिबाला सिंह के घर पर यानी क्राइम सीन पर जाकर स्थिति का आकलन करे और साक्ष्यों को वेरीफाई करे।
1: त्रिशा की मौत की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है। सीबीआई की टीम भोपाल पहुंच चुकी है और अब सीबीआई के सामने इस मामले से जुड़े कई अनसुलझे सवाल हैं, जो उन्हें जल्द से जल्द सुलझाने होंगे। सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जब समर्थ तो गिरिबाला सिंह ने त्रिशा को फंदे पे झूलते हुए देखा तो फिर पुलिस को उसी वक्त सूचना क्यों नहीं दी गई। सीबीआई ये सवाल समर्थ और गिरिबाला सिंह से जरूर पूछेगी, क्योंकि दोनों ही कानून के बड़े जानकार हैं और उन्हें बखूबी ये पता है कि इस तरीके के मामलों में पहला कॉल पुलिस को किया जाना चाहिए। ऐसे कई सारे सवाल हैं और चुनौतियां हैं जिन्हें सीबीआई के सामने अब जल्द से जल्द सुलझाने की और इस मौत की मिस्ट्री का सच सामने लाने की जिम्मेदारी है।
0: 12 मई को त्रिशा अपने ससुराल में रात में फंदे से लटकी हुई मिली, तब समर्थ ने ना तो पुलिस को इसकी जानकारी थी और ना ही कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। वो त्रिशा को लेकर भोपाल एम्स जा पहुंचा था। ऐसे सवालों को लेकर सीबीआई की स्पेशल क्राइम दिल्ली यूनिट ने एफआईआर दर्ज की। जांच अधिकारी के तौर पर डिप्टी एसपी निशु कुशवाहा की नियुक्ति हुई। त्रिशा का परिवार लगातार समर्थ और उसकी मां पर सवाल उठाता रहा है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले त्रिशा को प्रताड़ित करते थे। आरोप ये भी है कि समर्थ और उसका परिवार 9 दिसंबर 2025 को शादी के समय दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं था। तो दूसरी ओर गिरिबाला सिंह ने त्रिशा के कथित मेडिकल ट्रीटमेंट और मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। दोनों परिवार के अपने अपने आरोप और दावे हैं और उनकी सच्चाई जानने की जिम्मेदारी अब सीबीआई के सामने है। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
2: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पंजाब में इस वक्त खलबली है। पंजाब के मशहूर गायक और एक्टर दिलजीत दोसांज और लुधियाना के घर को बम से उड़ाने की उनकी धमकी है। लुधियाना नगर निगम के आला अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया है। मेयर का ऑफिस खाली करा लिया गया है तो वहीं दिलजीत दोसांज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आपको दिखाते हैं आखिर बम से उड़ाने की धमकी किसने दी और कहां से आई है।

0: दिलजीत दोसांझ को फिर से मिली धमकी। ईमेल से दी गई धमकी धमाके की चेतावनी। मशहूर एक्टर दिलजीत दोसांझ को फिर से धमकी मिली है। इस बार उनके घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिलजीत के साथ साथ लुधियाना की मेयर के ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। मेल में लिखा है कि लुधियाना की मेयर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के ठिकानों पर जोरदार धमाके किए जाएंगे। इस धमकी से पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया। धमकी का ये ईमेल सोमवार सुबह नगर निगम कमिश्नर और दूसरे सरकारी आईडी पर भेजा गया। इस ईमेल में जो लिखा गया वो आपको बताते हैं। सुबह करीब 7:28 पर आई ईमेल आईडी का सब्जेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट मेयर ऑफिस लुधियाना रखा गया है। ईमेल में धमाकों का समय भी निर्धारित किया गया। दोपहर 1:11 पर लुधियाना मेयर पर हमले की धमकी दी गई। इसके साथ ही रात 9:11 पर दिलजीत दोसांझ के घर पर धमाके की चेतावनी दी गई। ईमेल में 1984 के सिख दंगों का हवाला देते हुए खून का बदला खून से लेने की बात लिखी गई। धमकी देने वालों ने लिखा कि 6 जून तक बम धमाकों के जरिए निशाना बनाया जाएगा। ईमेल के अंत में से खालिस्तान नेशनल आर्मी की तरफ से भेजा गया बताया गया। इसमें दो नाम लिखे गए, इंजीनियर गुरनक सिंह रुकन शाहवाला, डॉक्टर गुरनिरवैर सिंह खान राजादा। धमकी के बाद पुलिस महकमा और साइबर सेल अलर्ट पर हैं। एजेंसी ईमेल की आईपी एड्रेस और मेल भेजने वालों को ट्रेस करने में जुटी हैं। एहतियात के तौर पर लुधियाना नगर निगम के दफ्तर को तुरंत खाली करा लिया गया। साथ ही पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई।
1: एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ का गांव दोसांझ कला है लुधियाना में, जहां पर बम ब्लास्ट करने की ईमेल थ्रेट जेनिफर सुनेट के नाम से कल सुबह दी गई। और सोमवार सुबह की इस धमकी के बाद नगर निगम को भी धमकी थी, उसको भी खाली करवाया गया। नगर निगम की जो मेयर हैं उनकी ओर से भी प्रतिक्रिया आई और पुलिस पूरी इसको लेकर अपने अमले के साथ हरकत में आई और साथ साथ इसको लेकर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। पुलिस की ओर से पूरा अपना दस्ता लेकर गांव का, लुधियाना शहर का, जहां पर धमकी आई, बॉम्ब स्क्वाड टीम्स के साथ पूरा मुआयना किया गया और साथ साथ उस वीपीएन एड्रेस की भी जांच की जा रही है जिसके जरिए इंटरनेट यूज कर ये धमकी भरी ईमेल भेजी गई है।
0: प्रशासन पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और पूरी सतर्कता के साथ चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार ने दिलजीत दोसांझ को मिली धमकी पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया।
2: भारतीय जनता पार्टी किस तरह डरा के, किस तरह डराया गया, किस तरह के मैनेजर के उत्ते गोलियां चलाने भी घर के उत्ते ताकि दहशत का माहौल बना के उन्होंने बीजेपी शामिल किया जाए, जो पंजाब की आवाज आ, जो साड़ी पंजाबीयत की आवाज आ, जो दुनिया के अंदर जानी जाती है कि दिलजीत दोसांझ उन्होंने डरा के धमका के भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी शामिल करना चाहती है।
0: आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल चुनाव है, उससे पहले पंजाब में राजनीति भी जमकर हो रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी धमकियों को भी बीजेपी से जोड़ रही है। लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी दिलजीत दोसांझ को धमकियां मिल चुकी हैं। सिंगर दिलजीत के मैनेजर के घर फायरिंग हो चुकी है और लॉरेन बिश्नोई गैंग ने फायरिंग का दावा किया। दिलजीत पंजाब का वो नाम है जिसकी अब वैश्विक पहचान है। वो दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में से एक कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी कलाकार हैं। इसके अलावा वो प्रसिद्ध अमेरिकी टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में भी अपने गानों की प्रस्तुति दे चुके हैं। बॉलीवुड और पंजाब की कई फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। ऐसे में धमकी को लेकर प्रशासन गंभीरता से जांच में जुटा है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।
3: रुकेंगे आज थोड़े से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक।
4: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब
5: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम। And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC. Turn It Up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
9: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
10: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
8: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
11: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
9: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
8: जहां खबर वहां खबरदार।
12: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्वाड देशों की बैठक में दुनिया की सप्लाई चेन दुरुस्त करने पर हुआ मंथन, जंगी चुनौतियों पर चर्चा। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, पूरा समूह एकजुट। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी डी के शिव कुमार की आलाकमान से मीटिंग, दोनों से राहुल गांधी की अलग अलग मुलाकात। वेश्या के ससुराल में क्राइम सीन देखकर मायके वालों से मिले सीबीआई अफसर, सारी कड़ियां जोड़ने के बाद सासगिरी बाला और पति समर्थ से हो सकते हैं सवाल जवाब। राजस्थान में नकली दवा रैकेट का खुलासा, कोटा के सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन से हुई थी महिलाओं की मौत, 11 सैंपल जांच में फेल, कई राज्यों तक फैला जाल। महंगाई की एक और डोज, पेट्रोल डीजल के बाद 2 रुपए बढ़े सीएनजी के दाम, दिल्ली में 83.09 रुपए प्रति किलो हुई कीमतें, 12 दिन में कुल 6 रुपए का इजाफा।

नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित, और जैसा आपको पता है दो बजते हैं और हम न्यूज रूम लाइव में मौजूद रहते हैं खबरों के साथ, और खबरों का सारा डोज आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं आज न्यूज रूम लाइव में किन खबरों के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बलियाबाद में जो कसमंडी है वहां पर किले और मस्जिद को लेकर विवाद चला रहा है। अब यहां पर आज क्या अपडेट है, आज क्या हुआ, हिंदूवादी संगठन जब पहुंचेगी हम आपको बताएंगे। उसके बाद दूसरी खबर आपको हम बताएंगे मीरा रोड यानी मुंबई से जुड़ी हुई, और यहां पर यह बताया जा रहा है कि यहां पर बकरी को लेकर, बकरी पर शेड को लेकर जमकर हंगामा हुआ। अब यहां पर अपडेट क्या है यह भी सारी जानकारी हम आपको देंगे। इसके बाद जो तीसरी खबर है, तीसरी खबर के लिए हम आपको आगे ले चलेंगे, और तीसरी खबर हम आपको बताएंगे राजस्थान, और राजस्थान में नकली दवा से बच के, क्योंकि यहां पर कई महिलाओं की मौत हो गई। और जब पता चला ये जो जाल है ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, ये कई राज्यों में फैला हुआ है, इसको भी पूरा डिकोड हम आपको करेंगे। और 2:30 बजे हम आपको बताएंगे जंगल जंगल आग लगी है, अब आगे क्या हुआ है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जैसा आपको बता रहे हैं बात यहां पर की जाएगी बंगाल में। बंगाल में जब से शुभेंदु सरकार बनी है उसके बाद से लगातार एक्शन हो रहे हैं, और घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ कुछ करने को अब देखे जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अब अभी जो ताजा खबर आ रही है बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की वापसी अब शुरू हो गई है, और इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पोस्ट इलाके में मौजूद भीड़ में शामिल लोग बंगाल में कब और कैसे घुस गए थे ये पता नहीं, लेकिन शुभेंदु सरकार के आने के बाद इनकी वापसी जरूर शुरू हो गई है, खासकर जब से सरकार ने अवैध अप्रवासियों यानी घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए

0: कलेक्शन सेंटर बनाने का आदेश जारी किया और वो आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तब से बशीरहाट उपमंडल के स्वरूपनगर पुलिस थाने में ये देखा गया कि ग्राम पंचायत के लोग हाकिमपुर चेक पॉइंट पर अचानक लोगों की भीड़ देख रहे हैं। अब ये देखिए भीड़,
1: पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया।
0: तो सीधे रुक कर लेते तापस का, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए। तापस, क्या हालात वहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्या एक्शन लिया जा रहा है, बताइए जरा।
2: जी देखिए, पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद सरकार ने नई नीति अपनाई है, 3D यानी डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट। और ये बात सामने आने के बाद एक खलबली सी मची हुई थी और ये वही हाकिमपुर बॉर्डर है जहां एक साल तकरीबन 8 या 9 महीना पहले यहां पे हजारों के तादाद में लोग आए थे जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए थे वो वापस जाने के लिए। ये है वो चेक पोस्ट जहां आप देख सकते हैं कि BSF तैनात है, दूसरे छोर पर बांग्लादेश है थोड़ा आगे जाने पर। और यहां हम आपको मंसर दिखाते हैं कि सैकड़ों के तादाद में जो अवैध रूप से भारत प्रवेश किए थे वो यहां आ पहुंचे हैं और यहां से बांग्लादेश जाने की कोशिश में है। BSF से बातचीत उनकी हुई, हम एक जन से बात करते हैं। ये बताइए कि आप कब आए थे भारत?
3: 3 मार्च।
2: 3 मार्च
3: है।
2: अच्छा, कहाँ से आए थे?
3: एका।
2: अकेले आए थे? अच्छा, तो मैं बांग्ला में ही पूछता, बांग्ला ही जिज्ञेस कुछ। तो एक तो कोथा थे এসেছিলে এবং কি কারণে এসেছিলে এখানে?
3: কাজের মাধ্যমে আইলাম।
2: কাজের জন্য এসেছিলে? কিভাবে এসেছিলে, কোন বর্ডার দিয়ে?
3: ও বহাসে তোমার আছে আংরালি বন্যগড়ি ওই লাইন দিয়ে।
2: কিভাবে এলে পারে?
3: ও সাতরিয়ে।
2: সাতরে এসেছিলে? তো তারপর ফেরত যাচ্ছ কেন?
3: এখন থাকতে দিচ্ছে না সরকারে,
2: তাই চলে যাচ্ছে।
3: হ্যাঁ।
2: কতজন এসেছিলে?
3: আমি একা।
2: একা এসেছিলে? কারো টাকা দিতে হয়েছিল?
3: না।
2: তো ইয়ে ও এক শখস হ্যায় জো ইস इस समय बांग्लादेश जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 3 महीना पहले वो यहाँ पर पहुंचे थे, भारत पहुंचे थे और तैर कर दूसरे छोर से भारत प्रवेश किए थे और उसके बाद काम की तलाश में थे, लेकिन उस बीच सरकार यहाँ पे नया गठन होता है और उसके बाद उन्हें ये खबर होता है कि यहाँ से अवैध रूप से जो प्रवेश किए उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, नहीं तो उन्हें वापिस भेज दिया जाएगा। इसलिए वो खुद चले आए हैं। यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। कल से ये लोगों का आना शुरू हुआ है। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 50 से 55 लोगों को कल भेजा गया था, आज 18 लोगों को कुछ देर पहले BSF के ट्रक में ले जाया गया है। उनका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई किया जाएगा, फिर उन डॉक्यूमेंटेशन को BGB को हैंडओवर किया जाएगा। BGB अपने रिकॉर्ड्स के साथ उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट्स मैच होते हैं तो उन बांग्लादेशी जो नागरिक है उन्हें बांग्लादेश में वापस ले लिया जाएगा। तो और ये उम्मीद जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये तादाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन कितना बढ़ सकता है इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा हिमांशु।
0: अच्छा, आप हमारे साथ तापस बने रहिए क्योंकि यहाँ पर अब बयान भी सामने आ रहे हैं, तो तरुण चौग अन्नान मोल्ला क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर वो भी जरा सुन लेते हैं।
4: TMC ने गृह मंत्रालय की गाइडलाइन की खुलेआम अवहेलना करके बंगाल को अवैध घुसपैठियों का, रोंगिया घुसपैठियों का सुरक्षित पनाहगाह बना दिया था।
5: क्या नतीजा होगा देखिए अब तक, उसके बाद तो लोग जिस पर जुलुम होगा वो तो सहेंगे नहीं, वो तो लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, उस आवाज सही होगा तो उसके समर्थन भी मिल सकता देश में।
0: तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बत्ती गुले लेकिन सियासत फुल हो रही है इस वक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा कि सवाल कौन उठा रहा है बिजली पर, जिनके राज में तारों का काम कपड़े सुखाने के लिए होता था। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं और निशाना साध रहे हैं पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार पर। सीएम योगी कह रहे हैं कि ऊर्जा संकट पर उंगली वो उठा रहे जिनकी सरकार में बिजली के तार पर लोग कपड़े सुखाते थे, बिजली नहीं आती थी और दूसरे सप्ताह में दूसरे जिले में होती थी, पहले सप्ताह में पहले किसी दूसरी जगह पर बिजली दी जाती थी, कभी दिन में दी जाती थी कभी रात में बिजली दी जाती थी। समाजवादी पार्टी के राज में बिजली आती नहीं थी और उस समय लोग क्या करते थे, ये सवाल भी उठा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम तो पूरी बिजली दे रहे हैं, अब पावर स्टेशन पर ही अगर शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर नहीं है तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए।

0: करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे, ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी, उस समय ये लोग क्या करते थे, किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है, अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है, मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है, लेकिन केवल ये जिम्मेदारी पावर कॉरपोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉरपोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें।
1: तो यूपी के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। लखनऊ के पास कस मंडी का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। कस मंडी किला या मस्जिद, इसको लेकर आज हिंदूवादी संगठन वहां पर पहुंच गए और आज वहां कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिली। हनुमान चालीसा पाठ की मांग हिंदूवादी संगठनों की तरफ से की गई है। ये भी आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने चालीसा पाठ की इजाजत नहीं दी तो हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और उनकी ये मांग है कि उनको हनुमान चालीसा का पाठ करने दिया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने बकरीद की नमाज पर भी रोक लगा दी है। लेकिन ये देखिए, ये हालात उस वक्त देखे गए जब हिंदूवादी संगठन वहां हनुमान चालीसा पाठ की मांग कर रहे थे।
2: धर्म का एक नया मोर्चा खुला है मल्लिहाबाद में, जहां कस मंडी किला मस्जिद विवाद में हिंदू संगठन हनुमान चालीसा करने उतर आए। पुलिस की बड़ी तैनाती के बीच जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता किला तक पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस ने इजाजत नहीं दी तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहीं जमीन पर पूजा की थाल के साथ बैठ गए।
3: आप हाथों में थाली लेकर आई हैं, क्या वजह है यहाँ पर, क्या कर रहे हैं?
4: हम लोग यहाँ पे कंसा पासी के किले में हम लोग पूजा करने आए, चूंकि यहाँ मंदिर है और पूजा करने से रोका नहीं जाना चाहिए। इतना पुलिस प्रशासन है यहाँ पे और पूजा करने नहीं दिया जा रहा है।
3: लेकिन यहाँ पर तो कह रहे हैं नमाज बकरीद के दिन नहीं होगी, और फिर आप लोग क्या चाहते हैं?
4: बाकी दिनों में तो होती है, बाकी दिनों में यहाँ नमाज होती है, और जो है आखिर ये भेदभाव क्यों? मंदिर होने के बावजूद हम लोग पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं?
3: क्या मांग क्या है आपकी?
5: हम लोग की मांग है फरार मौलाना को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, इस साजिश का पूरा पर्दाफाश हो। वो मौलाना किसकी सह पे यहाँ आया था, किसकी सह पे उसने यहाँ मजार बनाई, किसकी सह पे यहाँ नमाज पढ़वाई? ऐसे मौलाना को एकदम शुद्धिकरण उसका हो करना चाहिए सरकार।
2: यहाँ काफी देर तक तनातनी की स्थिति रही। हिंदू कार्यकर्ता पूजा करने की जिद पर अड़े थे तो पुलिस उन्हें आगे न बढ़ने देने पर आमादा थी।
3: ये हर हर महादेव के ये नारे जो लग रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं, ये कंसा पासी के किले पर पहुंचे हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों के हैं। और हाथों में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर थाली है, ये पूजा की थाली है जो यहाँ पर पहुंचे हैं पूजा करने के लिए। और उनका मानना है कि यहाँ पर वो पूजा करेंगे क्योंकि आज बड़ा मंगल है, और बड़ा मंगल के साथ साथ यहाँ पर वो चाहते हैं कि हनुमान चालीसा और पूजा पाठ करें। आप तस्वीरों में देखिए कि सभी लोग पहुंचे हुए, पुलिस फोर्स यहाँ पर खड़ी, आप देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है और पुलिस के साथ यहाँ पर झड़प हो रही है पुलिस के साथ में, चूंकि यहाँ पूजा करने पहुंची है तो पुलिस ने झड़प के साथ रोक लिया है इनको और अब आगे जाने नहीं दे रहे हैं चूंकि ये यहाँ पर जिद पर अड़े हैं।
2: विवाद इस बात का है कि ये राजा कंस पासी का किला है या फिर मकबरा, इसी को लेकर मल्लिहाबाद में वो सियासी हंगामा जमीन पर उठने लगा है जिस पर सियासी तबके की भी नजर है। पासी समाज गजट के हवाले से ये दावा करने लगे हैं कि जब सालार मसूद गाजी दिल्ली से अवध क्षेत्र की ओर आगे बढ़ा तो राजा कंस पासी ने उससे मुकाबला किया। ये किला राजा कंस पासी का है जहां मुस्लिम मकबरा बताकर आते हैं।
3: और ये तस्वीर है कि यहाँ पर हिंदू समाज के लोग यानी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो साफ तौर से अब
6: जिद पड़े हैं कि उनको नमाज यहाँ पर रोकनी है और यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिसके लिए पूजा की थाल लेकर पहुंच गए हैं। तो ये इस स्थल पर आज, क्योंकि बड़ा मंगल है और इस बड़े मंगल पर इस आना था यहाँ पर, हिंदू समाज ने पहले ही कहा था और वो आज यहाँ पर पहुंचा हुआ है। अब ऐसे में प्रशासन ने एक तरफ बकरीद पर नमाज की रोक लगाई है, अब हिंदू समाज अड़ा हुआ है पूजा के लिए। लखनऊ के मलिहाबाद से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
1: ठाणे के हाल आपने देख लिए, अब चलिए मुंबई लिए चलते हैं आपको। ठाणे के मीरा रोड जहां मां भारत छड़ी हुई है, किस बात को लेकर? बकरीद को लेकर। अब हुआ ये, यहां पर एक सोसाइटी में शेड बना दी गई। अब शेड बना दी गई तो फिर हंगामा हुआ, क्यों? क्योंकि यहां पर बकरीद है और बकरीद से पहले मीरा रोड में भारी विवाद की स्थिति बन गई है। सोसाइटी परिसर में बकरीद पर कुर्बानी के लिए एक शेड बनाया गया, इसी पर कल दो पक्षों में घमासान हो गया। आरोप है कि इस विवाद में एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए और देर रात के झगड़े के बाद इलाके में तनाव है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया परिसर के बाद, बाहर लोग धरना देकर नारेबाजी भी करने लगे।
7: बिल्कुल, यहाँ पर देख लीजिए आप, जो लोग हैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफी जोर शोर से। इनका यही कहना है कि जिस इंसान ने लोग पर हमला किया था उसको बाहर निकाला जाए, लेकिन कोशिश इनकी यही है कि जिस तरीके से बकरीद में यहाँ पर जो इश्यू हुआ था वो यहाँ पर ना होने दिया जाए। बकरीद में यहाँ पे जिस तरीके से बकरों को यहाँ लाया गया, वो जो मुद्दा है उसको मिलाकर ये लोग सिर्फ मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे सोसाइटी के अंदर बकरों को जो रखा गया था, शेड बनाया गया था, वो यहाँ पर न हो। अब आइए लोगों से ही बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं। अब यहाँ पर पहले भी आप लोग इस सोसाइटी से ही हैं?
8: हम लोग यहीं के हैं।
7: यहाँ पर क्या समस्या है? मतलब पहले भी तो बकरीद में बकरे आते थे यहाँ?
8: नहीं, पहले भी बकरे आते थे, लेकिन ये सबका कत्ल खाना होता वहाँ पे काटने के लिए होता था। अभी ये सब यहाँ हिंदू भाई लोग होते हैं,
9: कभी भी नहीं, ये पहली बार लाया गया है। क्योंकि उसी कौम के कमेटी में एक दो आदमी हैं जो फॉल्स लेटर दे के परमिशन दिया गया, अन्यथा परमिशन नहीं है। हमारे महानगर पालिका के द्वारा एक जगह बनाया गया है, वहाँ बकरा रखे और वहाँ कुर्बानी करें। हम लोग जात पात की लड़ाई नहीं है, हम लोग की स्वच्छता की लड़ाई है। 50 से 60 बकरी अंदर बना हुआ है, बदबू इतना दे रहा है, दामा का पेशेंट है, वो ICU में भर्ती हुआ। कुछ जिहादियों के द्वारा बजरंग दल पे चाकू से वार किया गया, वो हमारा मांग है उसको अरेस्ट किया जाए और बकरे को बाहर निकाला जाए।
1: तो ये तो ठाणे की बात हो गई। अब अगर आप हैं राजस्थान से तो हो जाएं सावधान, क्योंकि राजस्थान में नकली दवा का भंडाफोड़ हुआ है और नकली दवा की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के ड्रग कंट्रोल विभाग ने पूरे प्रदेश में दवा की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। दवा का नाम ऑक्सीटोसिन और ये नकली निकली है। जब जांच की गई तो ये नकली निकली है। 10 दिनों की जांच में राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के दौरान दी जा रही है ऑक्सीटोसिन दवा नकली पाई गई। और ये भी खबर है कि कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में इसी नकली दवा का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 4 महिलाओं की मौत हो गई। अब राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि जैक्सन लेबोरेटरीज अमृतसर के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का सैंपल फेल होने के बाद कोटा के अस्पताल से इसका सारा स्टॉक जब्त कर लिया है। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शरद, राजस्थान में तो लोग सावधान हो गए होंगे, नकली दवा से लोगों की जान जा रही है, अब क्या हो रहा है वहां पर, क्या एक्शन लिया गया अभी तक?
10: सुमित, ये अमृतसर की कंपनी है और एक्शन जहां तक लेने की बात है, सरकार ने जब ये रिपोर्ट आई है तो उसके बाद मीटिंग बुलाई है कि आखिर कैसे ये नकली दवा सरकारी अस्पताल तक पहुंची। अब सरकार इसमें दो तरह की बात कर रही है, कह रही है कि ये सही बात है कि सभी मरने वाले 5 महिलाओं को ये नकली दवा दी गई, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि इसी नकली दवा की वजह से 5 महिलाएं मरी है, क्योंकि ये नकली दवा अगर काम नहीं कर रही थी तो डॉक्टरों के पास ऑप्शन था कि दूसरा दवा दे सकते थे। अब इसे लेकर यहाँ पर, लेकिन बड़ी बात यह है कि नकली दवा अगर अस्पताल में सप्लाई हो रही थी तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमने पूछा। सरकार का कहना है कि हमने इमरजेंसी पावर दे रखे हैं वहाँ मेडिकल कॉलेज में, सरकारी अस्पतालों में, कि हमारी सप्लाई ना आए तो आप बाजार से खरीद सकते हैं। ये इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके सब स्टैंडर्ड नकली दवाओं के खेल का जो भंडाफोड़ हुआ है अपने आप में चौंकाने वाला है। और देखिए, केवल राजस्थान की बात नहीं है, आप जो 12 कंपनियों के दवाओं के यहाँ पर नाम आए हैं, उत्तराखंड में है, महाराष्ट्र में है, हिमाचल में है, न जाने कितनी ऐसी दवाएं हैं जो जो पेट दर्द की है, सर दर्द की है, इसके अलावा बुखार की है, खांसी की है, बहुत सारे दवाएं एंटीबायोटिक हैं, वो अगर नकली निकल रही हैं और लोग लेकर खा रहे हैं और उससे कोई असर ना भी पड़े, तो अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही तो अपने आप में गंभीर बात है। इसलिए सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस बारे में जांच करके बताए कि आखिर किन परिस्थितियों में नकली दवा सरकारी अस्पताल में सप्लाई की जा रही थी और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। सरकार कह रही है कि अभी हमने कमेटी बना दी है, रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। हालांकि जिन्होंने खरीदी थी वहां पर उससे भी हमने बात उनसे भी बातचीत की है, उन्होंने कहा कोई एसओपी नहीं है कि हम जांच कर खरीदें, इमरजेंसी में हमें जो समझ में आता है वो खरीदने का पावर हमारे पास है। तो ये अपने आप पे काफी चौंकाने वाली बात है कि सरकारी अस्पताल में दवा खरीद के लिए एसओपी नहीं है, और ये दवा काम आती है नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए और ब्लीडिंग रोकने के लिए। नॉर्मल डिलीवरी नहीं की गई थी, नहीं हो पाई थी, तो सर्जरियन करनी पड़ी थी और ब्लीडिंग से मौतें हुई है। अब इनका कहना है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई थी, उसकी कई वजह हो सकती है, केवल एक दवा नहीं है, और ब्लीडिंग की वजह ब्लीडिंग से जो मौतें हुई हैं, ब्लीडिंग रोकने के लिए दूसरी भी दवाएं यूज की जा सकती थी, इसलिए इस दवा को नहीं कुछ कहा जा सकता। तो कुल मिला के टेक्निकल टर्म में इस बात को, इसकी गंभीरता को कम किया जा सकता है, मगर नकली दवाएं सरकारी अस्पताल में सप्लाई हो रही थी।
11: आप हमारे साथ बने रहिए शरद, हम दोबारा में आपसे जुड़ेंगे। वहीं टी शिवमंगला की बात यहां पर की जा रही है, फूड एंड ड्रग उसके आयुक्त हैं, उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, क्योंकि बहुत गंभीर बात यहां पर कही गई है। उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है और उस बयान में ये कहा गया है कि माना कि दवाइयां नकली हैं, ये इसमें जांच में सामने आ चुका है, लेकिन मौत की वजह इसे कहना ये ठीक नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? राजस्थान की सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण की आयुक्त डॉक्टर टी शुभ मंगला का कहना है, सुन लेते हैं।
12: कोटा में फिंटेस्पैक हमने जो सैंपल्स अराउंड 20 अलग अलग टाइप के मेडिसिन लिए थे, उसमें 19 वेर ऑल स्टैंडर्ड, एक मेडिसिन जो टोसिन है, जैक्सन फॉर्मा का है, उसमें जो टोसिन जो ब्रांड नेम है उसके अंदर ऑक्सटोसिन करके दवा होना चाहिए, तो उस में दवा था नहीं, उसका कंटेंट जीरो निकला है हमारे पास। और बाकी अदर देन द कंटेंट बीइंग जीरो, उसमें बाकी चीजें दे हैव कम नॉर्मल, लाइक स्टेरिलिटी एंड बाकी टेस्ट हम जो एंडोटॉक्सिन करते हैं वो नेगेटिव आया, बट कंटेंट जीरो आया।
13: तो ये दवा कहां से खरीदी थी और आपने टेस्ट किया था पहले या अभी टेस्ट हुआ है?
12: नहीं, ये दवा हमारे रिपोर्ट्स में जो हमारे पास है वो लोकल परचेज का है, बिकॉज हमने कैटेगराइजेशन करा था कि जब हमने सैम्पलिंग लिया कौन सा आरएमएसएल का है, कौन सा लोकल परचेज है, तो ये लोकल परचेज में दिख रहा है।
11: और चलिए बात कर्नाटक की कर लेते हैं। कर्नाटक में आज का दिन बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से कर्नाटक में जिस तरह का कीस्तान चल रहा है उसको लेकर आज का दिन बहुत अहमियत भरा है। कर्नाटक में कुर्सी को लेकर झगड़े का समाधान निकालने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है, और इस बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डी के शिवकुमार को बुलाया गया है, साथ ही कर्नाटक कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को भी चर्चा के लिए बुलाया। अब इस वक्त ये बैठक चल रही है। अब सूत्रों से जानकारी यह है कि इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सिद्धारमैया, डी के शिवकुमार, के सी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला हैं मौजूद।
14: कर्नाटक की कला जब दायरे तोड़ने लगी, जब आला कमान को लगा कि पानी सिर से ऊपर बहने लगा है, जब जवाब तलाशने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, तो दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेतृत्व में हलचल हुई। सिद्धारमैया और डी के शिवकुमार दोनों को दिल्ली बुलाया गया। अब आला कमान की पंचायत में तय होगा कि आगे किसका क्या होना है। सिद्धारमैया के तेवर अब भी झुकने वाले नहीं दिख रहे, साफ कह रहे हैं क्यों बुलाया गया मालूम नहीं। तीन साल से कर्नाटक में सिद्धारमैया और डी के शिवकुमार के बीच खुली जंग चलती रही है, लेकिन अब जबकि चुनाव में सिर्फ दो साल बचे हैं, तो कांग्रेस आला कमान को संकट का समाधान निकालने की सुधाई है। सूत्रों के मुताबिक तीन दिन पहले कर्नाटक को लेकर कांग्रेस में अहम बैठक हुई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि सिद्धारमैया को इस बैठक के नतीजे के बारे में नहीं बताया गया। सिद्धारमैया को सीधे दिल्ली आने को कहा गया। माना जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान इस बार कर्नाटक में कुर्सी की लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के मूड में है। कई फॉर्मूले कांग्रेस के सियासी गलियारों में सामने आते रहे हैं। सबसे कम उथल पुथल वाला तरीका ये है कि सिर्फ कैबिनेट में फेरबदल हो, जो मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे उन्हें हटाया जाए और डीके शिवकुमार की राय भी उसमें शामिल हो। ये सबसे ज्यादा चर्चा में है, डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए और सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजा जाए, शिवकुमार के साथियों को नई कैबिनेट में जगह मिले। इससे एक साफ राजनीतिक संदेश जाएगा कि जिसने पार्टी के लिए मेहनत की उसे इनाम मिला। ये सबसे कम संभावना वाला विकल्प है, लेकिन इस वक्त कर्नाटक में इतनी उहापोह की स्थिति है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मौसमी सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
15: देखिए बैठक लगातार जारी है, मैं मौजूद हूँ इंदिरा भवन में जहां पर यह बैठक चल रही है। शुरू के 90 मिनट आपकी मतलब 11 बजे ये बैठक शुरू होनी थी, लेकिन शुरू के जो 90 मिनट हैं उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन्होंने आपस में बैठक करी और डीके शिवकुमार सिद्धारमैया को बाहर बिठा के रखा। लेकिन अब थोड़ी देर पहले सिद्धारमैया को गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन्होंने आपस में बैठक करी और डीके शिवकुमार सिद्धारमैया को बाहर बिठा के रखा। लेकिन अब थोड़ी देर पहले सिद्धारमैया को राहुल गांधी ने बुलाया, अकेले उनसे बातचीत की, तो जो सूत्रों का दावा है उसके मुताबिक कि जो खिचड़ी है वो पक रही है और वो एक बड़े बर्तन में पक रही है, यानी कोई बड़ा फैसला यहां से निकल कर आ सकता है। ये जो मीटिंग है, जैसा ये पहले बताया जा रहा था कि ये राज्यसभा चुनावों के लिए है या एमएलसी के चुनावों के लिए, उससे कई आगे बढ़कर यहां पर फैसले हो सकते हैं। क्या कैबिनेट रिशफल का रास्ता यहां से खुलेगा, क्योंकि लगातार मांग उठती रही है कर्नाटका के अंदर कई लोगों के बीच में से, और या फिर डीके शिवकुमार या और किसी का नंबर लग सकता है अगले मुख्यमंत्री पद के लिए, क्योंकि लगातार
11: तो बस यही जानना था कि कर्नाटक का जो दिल्ली में विवाद पहुंचा, इससे समाधान क्या निकल पाता। शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
16: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना।
17: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
18: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
19: Costs shouldn't be a barrier to a teaching career. That's why WGU makes earning a degree in education affordable with flat rate tuition and scholarship opportunities. Make an investment toward making a difference. Learn more at wgu.edu.
20: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
21: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
22: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
23: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
16: टंकी मतलब वेक्टर।
0: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
7: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: AU सोच बदलो और बैंक भी।
9: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
10: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
11: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
12: नहीं,
11: और म्यूचुअल फंड से
12: सही।
13: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
14: करेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
15: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
18: Summer's a gift. The gift of days that last a little longer. A brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event. With specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia. Movement that inspires.
19: Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Event ends 6/1/2016. Dealer for warranty details.
20: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
21: और अभी एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पन्ना से बड़ी खबर आ रही है, जहां निर्माणाधीन कुएं का काम चल रहा था और वहां पर 6 लोग दब जाते हैं, जिनमें से 5 लोगों के मौत की खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के पन्ना में यह बड़ा हादसा हुआ और यहां निर्माणाधीन कुएं धंसने से 6 लोग उस पर दब जाते हैं, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो जाती है। ये बताया जा रहा है कि पन्ना के अजयगढ़ क्षेत्र के बिहार पुरवा में निर्माणाधीन कुआ काम चल रहा था, बहुत से लोग वहां पर मौजूद थे, 6 लोग दब जाते हैं। प्रशासन मौके पर पहुंचता है, मिट्टी निकालने का काम शुरू कर देता है। 5 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हुई है। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। रवीश, क्या जानकारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा?
22: देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कुल 5 शव निकाले जा चुके हैं। दरअसल ये जो इलाका है, यहाँ पे बिन्नू अहिरवार किसान है, उसके खेत में ये कुएं की खुदाई का काम चल रहा था पिछले 10 दिनों से। और ये जो इलाका है जहाँ पे कुआं बन रहा था, उसकी बड़ी भुरभुरी मिट्टी है। और बताया जा रहा है कि 2 मजदूर रात दोपहर करीब 12 बजे के लगभग, जब वो पानी पीने के लिए बाहर, क्योंकि कुएं की खुदाई लगातार चल रही थी, तापमान बहुत तेज था, उनको प्यास लगी, वो बाहर निकलने लगे। तो जब वो बाहर निकल रहे थे तो भुरभुरी मिट्टी अचानक से जो है वो नीचे दबी, और नीचे की जब वो मिट्टी गिरी तो नीचे जो मजदूर काम कर रहे थे, जिनके लिए पानी लेने ये 2 मजदूर बाहर निकले थे, वो सभी 5 मजदूर जो है वो इसमें नीचे दब गए। और शुरुआत से एक शव तो तुरंत निकाल लिया गया था, लेकिन उसके बाद जब प्रशासन की टीम वहां पहुंची जेसीबी के साथ और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो चार शव और निकाले गए और इस तरीके से अब तक कुल पांच शव निकाले गए।
21: रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रवीश, जानकारी के लिए। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बीकानेर, जहां गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रख रहे हैं।
5: चारों चार की संयुक्त जिम्मेदारी करनी है और इसीलिए मैं चतुष्कोणीय ग्रिड का नाम देता हूं। मित्रों, 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूर परिवर्तन आए हैं। सेना का आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं। और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई। मगर मैं मानता हूं कि प्रयास होने के बाद हमें जवाब देना पड़े, ये स्थिति ठीक नहीं है। हमें सुनिश्चित करें कि कोई प्रयास करने की हिम्मत ही न करे, ऐसी सीमा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। और यह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और ये चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड के माध्यम से ही हो सकता है। मित्रों, आज इस ऐतिहासिक चौकी पर सुबह 7 बजे से जहां गर्मी शुरू हो जाती है, दूर दूर तक रेगिस्तान दिखाई पड़ता है, वहां अपने घर से दूर अपने जीवन का सुवर्ण काल आप भारत माता को समर्पित कर रहे हैं। हम सबके हृदय में आपके लिए मान सम्मान और गौरव की भी लागणी है। वो इसलिए है कि आज सीमा के अंदर सिविलियन हमारे देश के नागरिक चैन की नींद इसलिए सो पा रहे हैं कि सीमा पर मेरे सीमा प्रहरी अहर्निश दिन रात ये ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं पूरे देश की ओर से सिंबॉलिक तरीके से सांचू चौकी के जवानों के माध्यम से सारे बीएसएफ के सीमा प्रहरियों को बहुत बहुत संवेदना के साथ प्रणाम करना चाहता हूं कि आपका ये पराक्रम, आपकी देशभक्ति, आपकी साहस और आपकी वीरता ये देश को सुरक्षित बनाए हुए है। आपकी सुविधा के लिए भारत सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी और विश्व की अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी भी अगले 1 साल में आपको उपलब्ध कराई जा रहेगी। मगर ये सब के साथ भी आपका समर्पण का मूल्य कम नहीं होगा, ये सुनिश्चित है। फिर से एक बार अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे।
21: बीएसएफ के प्रहरी सम्मेलन में अमित शाह थे और बीएसएफ के जवान हमेशा गर्मी में देश की रक्षा करते हैं। तो अब गर्मी की बात कर लेते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से हर कोई परेशान है। बत्ती भी गुल हो रही है, सूरज देवता इस वक्त आग बरसा रहे हैं, लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी खबर है कि जंगल जंगल आग लग रही है और आग जब जंगल की लगती है तो उसको बुझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, इतनी आसानी से नहीं बुझती है। तो दूसरी तरफ शहर इस वक्त धुआं हो रहे हैं और अब उत्तराखंड की कुछ अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं और उन्हें देखकर आपको पता लगेगा कि हालात कितने बदतर हो गए हैं। ये देखिए आप, चकराता की तस्वीर है। आमतौर पर खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं लेकिन इस वक्त यहां पर धुआं दिखाई दे रहा है और धुआं क्यों, क्योंकि आग लगी हुई है। चकराता, चमोली, टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग ये वो जगह है जहां पर पर्यटकों का जमावड़ा लगता है लेकिन अभी यहां पर आग लगी हुई है और आग लगने की वजह से प्रकृति का नुकसान, जानवरों की दिक्कत, जानवरों को परेशानी हो रही है, आम लोगों को परेशानी हो रही है और ये जंगल की आग तेजी से फैलती जा रही है और इसको रोकने के लिए इस वक्त सभी प्रयास किए जा रहे हैं जो भी संभव हो सके। आग बुझाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है लेकिन आग भड़कती जा रही है और एक के बाद एक दूसरी जगहों को चपेट में ले रही है क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। सूर्य देवता इस वक्त प्रचंड रूप अपना चुके हैं। अब ये चक्राता की तस्वीरें देखिए, ये जंगल में दूर दूर तक आप देखेंगे धुएं का गुबार यहां पर उठता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आग लगी हुई है और अब आप सोचिए यह कितनी तेजी के साथ फैल रही होगी और इसको बुझाने में कितनी परेशानी हो रही होगी। तो इन तस्वीरों को देखकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि जो हरे भरे जंगल हुआ करते थे, जहां से हमें ऑक्सीजन मिलती थी, जिनका जिन नजारों को देखने के लिए हम पहुंचते थे, वहां पर आग लगी हुई है, वहां पर इस वक्त धुआं उठता दिखाई दे रहा है। लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और सबसे बड़ी चुनौती ये है, ये जो आग फैल रही है ना, इसको रोका जा सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
0: मैदानी इलाकों में पारा इन दिनों आसमान छू रहा है, धरती धधक रही है, प्रचंड गर्मी के बीच जिंदगी दूभर हो गई है। राहत के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां भी मौसम की आफत कम नहीं। उत्तराखंड के तमाम जंगलों में इन दिनों जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि बढ़ता तापमान अब पहाड़ी इलाकों में भी कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों के जंगल भीषण आग की चपेट में है, दूर दूर तक लपटें दिखाई दे रही हैं, धुएं का गुबार फैला हुआ है। तपती गर्मी के बीच जंगल में आग का संकट विकराल रूप लेता जा रहा है। चाहे चमोली हो या रुद्रप्रयाग, टिहरी या पौड़ी गढ़वाल, कमोबेश हालात एक जैसे हैं। तस्वीरें भयावह हैं, लोग जंगल में आग वाले संकट से जूझ रहे हैं, हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड के कई हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं।
6: इस वक्त मौजूद हैं टिहरी जनपद के बिलंगना रेंज में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। टिहरी के लगभग अधिकांश जंगलों में आग ही आग है और लाखों की वन संपदा जो है जलकर खाक हो गई है। टिहरी डीएफओ पुनीत तोमर का कहना है कि लगभग 14 हेक्टेयर के करीब वन भूमि में आग फैली हुई है, जबकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह चारों तरफ धुआं दिख रहा है तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 20 से अधिक हेक्टेयर में जो है चारों तरफ आग लगी होगी।
0: पर्यटकों के बीच बेहद मशहूर चकराता की इन तस्वीरों को देखिए, जंगल में आग की लपटें फैली हुई हैं, दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। जंगलों से उठती आग अब इंसानी बस्तियों तक पहुंच रही है, जिससे लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। अब जंगल में लगी आग के बीच चमोली का भयावह मंजर देखिए, तेज हवाएं हैं और आग की लपटें फैलती जा रही हैं। इस मुसीबत के बीच एक शख्स की जान भी संकट में घिरी है। पौड़ी गढ़वाल में भी हालात बेहद खराब बने हुए हैं। जंगलों में लगी आग के बाद पहाड़ धुएं से ढक गए। बढ़ती गर्मी के बीच आग का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पूरी पूरी रात वन विभाग का अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा है।
12: उत्तराखंड के जंगल लगातार जल रहे हैं और इन पर अगर काबू नहीं पाया गया तो ये एक बड़ी आपदा बनकर हमारे सामने आ सकती है। 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो जाता है और तब से लेकर अब तक 398 घटनाएं अभी तक सामने आई हैं, जिसमें 342 हेक्टर वन क्षेत्र सीधा सीधा प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा क्षेत्र जो प्रभावित हुआ है वो गढ़वाल क्षेत्र है, जहां पर करीब 251 हेक्टर जो है वो प्रभावित हुआ है और 178 घटनाएं सामने आई हैं। सबसे ज्यादा जो विकराल रूप आग ने लिया वो सबसे पहले चमोली के बद्रीनाथ गोपेश्वर वन प्रभाग जो है वहां पर आग जनी शुरू हुई और इसके बाद अब पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और टिहरी के कई क्षेत्रों को अपने चपेट में ले चुकी है। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए फॉरेस्ट टीम तैनात हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार हीट वेव बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक जो सूखे जंगल हैं जहां पर ड्राई कंडीशंस बहुत ज्यादा है, वहां पर आग जो है वो विकराल रूप ले रही है। अगर इस पर समय पर काबू नहीं पाया गया तो ये आग रिहायशी क्षेत्रों में भी पहुंच सकती है।
0: रुद्रप्रयाग के पहाड़ और घाटियों में भी धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। हफ्ते भर पहले हुई हल्की बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग के जंगलों में लगी आग से कुछ राहत मिली, लेकिन फिर से गर्मी और धूप अधिक होने की वजह से जंगल फिर से जल उठे।
23: गर्मी बढ़ रही है, वैसी जंगल में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बागेश्वर के छह अलग अलग रेंजू के जंगल भीषण आग की चपेट में हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये बैजनाथ रेंज का जंगल है जो लगातार धू धू कर जल रहा है। बैजनाथ रेंज की अगर दो अलग अलग क्षेत्र कौसानी और ये भेटे के क्षेत्र में ये जंगल देख सकते हैं आप जो भीषण आग की चपेट में है। साथ ही बैजनाथ रेंज का एक और क्षेत्र है आणा क्षेत्र, वहां भी भीषण आग की चपेट में जंगल है और लगातार जंगल की आग से उठता ये धुआं जो है चारों तरफ पॉल्यूशन कर रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चारों तरफ जो क्षेत्र है वो धुएं से भर चुका है और बाहर से जो आ रहे पर्यटक हैं वो खासकर यहाँ पे मायूस हो रहे हैं क्योंकि हिमालय के दीदार उनको नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन दिनों महानगरों में लगातार गर्मी बढ़ रही है तो पर्यटक पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं और ऐसे में उनको पहाड़ों में आके भी प्रकृति का जो आनंद है वो नहीं उठा पा रहे हैं जिससे वो मायूस लौटने को मजबूर है।
0: केदार घाटी में भी आग का धुआं फैला हुआ है। केदार धाम के लिए उड़ान भरने वाली हेलीकॉप्टर सेवाएं भी इस धुएं के बीच उड़ान भर रही है जो काफी जोखिम भरा है।
1: जंगलों में लगी आग के कारण चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया है। इस समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ हैं और जो घाटियां हैं वह धुएं से भरी हुई हैं। स्थिति यह है कि आधा किलोमीटर भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, चारों ओर धुआं ही धुआं है। अगर केदार घाटी की बात करें तो केदार घाटी में भी लगातार जंगल आग से जल रहे हैं और चारों ओर धुआं ही धुआं है। इस धुएं के बीच केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर भी संचालित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस धुएं के कारण भारी दिक्कतें हो रही हैं।
0: जंगल की भीषण आग की लपटें और धुएं के गुबार ने वन विभाग और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तमाम इलाकों में आग बस्तियों तक पहुंच रही है जिससे खतरा बढ़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड के जंगलों में आग का सिलसिला थम नहीं रहा। आज तक ब्यूरो।
2: तो अभी देख के पता चल रहा था कि ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी। इससे पहले भी उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती रही है लेकिन इस बार ये दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये बताया जा रहा है कि हजारों हेक्टेयर जंगल इस वक्त आग की चपेट में है।
0: उत्तराखंड के कई जिलों में जंगल आग की चपेट में है। आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, मुसीबत में इजाफा हो रहा है और लोगों को आफत झेलनी पड़ रही है। सूबे के कई जिलों से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें जंगलों में दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। धुएं ने पूरे इलाके को ढक रखा है। पहाड़ों पर आग और धुएं वाला यह संकट लोगों को हैरान कर रहा है। दरअसल उत्तराखंड के जंगल पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। अब यहां लगने वाली आग का असर हिमालय के ग्लेशियरों तक महसूस किया जा रहा है। बीते दिनों चमोली से आई तस्वीरों में कुछ ऐसा ही मंजर दिखा। बद्रीनाथ में कंचनजंगा घाटी पर बर्फ का तूफान आया, पहाड़ से बर्फ के गोले बरसने लगे, पानी की तरफ बर्फ बहती दिखी। तस्वीरें देखने में जितनी अद्भुत लग रही हैं, असलियत में उतनी ही खौफनाक है। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के कारण उत्तराखंड में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसी दौरान कंचनजंगा के ऊपर का हिस्सा अचानक टूटकर नीचे की ओर बहने लगा। हालांकि ये ग्लेशियर यात्रा मार्ग तक नहीं पहुंचा और ऊपरी हिस्से में ही रुक गया जिससे बड़ा हादसा टल गया। माना जा रहा है कि चमोली के जंगलों में लगी आग तेजी से बढ़ रही है और यही आग ग्लेशियर टूटने की वजह बनी। इन दिनों गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई पहाड़ी इलाकों से लगातार धुएं और लपटों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगह आग जंगलों से बढ़कर गांवों और आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंचने लगी है। ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर जंगलों में आग लगने की वजह क्या है? गर्मी के मौसम में इस बार जंगलों में आग का खतरा क्यों बढ़ता जा रहा है?
3: अगर हम पिछले 10 साल के डेटा को देखें तो पिछले 10 साल में हर अल्टरनेट ईयर में वनाग्नि की घटना अधिक हुई है। हर अल्टरनेट ईयर में पिछले साल कम हुआ था, जैसे आपने सही बताया कि पिछले साल वनाग्नि घटनाएं मात्र 268 हुई थी, उससे पहले 2024 में वनाग्नि घटनाएं अधिक हुई थी। तो इस प्रकार अल्टरनेट ईयर में चूंकि वनाग्नि घटनाएं अधिक होती है और पिछले साल कम हुआ था, तो इस साल ये एक्सपेक्टेड था कि वनाग्नि घटनाएं अधिक होगी। चूंकि इस साल बरसात भी कम हुई है और उच्च हिमालय क्षेत्र में स्नोफॉल हिमपात भी कम हुआ है।
2: समस्या हर जगह है और समस्या विकराल है, कहीं पर बिजली की दिक्कत, कहीं पर आग की दिक्कत, कहीं पर पानी की दिक्कत, और पानी की दिक्कत भी बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। जितना बिजली परेशान कर रही है उतना ही पानी परेशान कर रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ों पर दिक्कत, अब तो शहर के लोग हैं वो दुआ कर रहे हैं कि बस कैसे भी जल्द से जल्द पानी की समस्या दूर हो जाए और लोगों को पीने का पानी मिल जाए, क्योंकि पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है।
4: तपती गर्मी की मार ऐसी कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। मौसम की इस मार के बीच शहर शहर पीने के पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। शहर शहर से जल संकट की तस्वीरें आ रही हैं। लोग परेशान हैं, पानी के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की, जहां तपती गर्मी के बीच पीने के पानी की किल्लत हुई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाएं बाल्टी लेकर सड़क पर उतर आईं और रोड पर जाम लगा दिया।
7: हम लोग हटेंगे, रोड जाम कर रही है, रात हो चाहे दिन हो, मगर यही जगह रहेंगे।
8: कितने दिनों से पानी नहीं?
7: हम लोग का दो महीना हो गया, आया था एक दिन, सब कोई लूट लिए, हम लोग का नहीं मिला।
9: काफी परेशान हो गए, एकदम जीरो।
24: मैंने बोला हर गली में पानी चाहिए, लेकिन हम लोग का वार्ड नंबर 15 में पानी नहीं है।
4: इधर राजधानी दिल्ली में इस 45 डिग्री की भीषण गर्मी में जगह जगह पानी की परेशानी नजर आ रही है। देवली विधानसभा के दक्षिणपुरी के 10 ब्लॉक में हफ्तों से पानी नहीं आ रहा है। महिलाएं बताती हैं कि पानी की किल्लत के कारण वो दफ्तर जाकर स्नान तक कर रही हैं।
25: बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, अब तो लग रहा है कि हम लोगों को प्यासे ही मरना पड़ेगा। बताइए, सुबह से शाम तक ड्यूटी जाते हैं, वहाँ से आके पानी भरते हैं।
26: अच्छा, बताया जा रहा है कि ड्यूटी जहाँ पर आप लोग जाते हैं वहाँ पे जाके नहाते हैं?
27: साकेत में जाते हैं,
26: साकेत में ही नहा लेते हैं,
27: साकेत में नहाते
26: हैं। दिक्कत हो रही है आपको?
27: बहुत परेशानी थी, चौथी मंदिर से पानी भरने आ रहे हैं हम। चौथी मंदिर से आए, चौथी मंदिर किराया था, अब क्या करें? मकान मालिक तो किराया देगा, मकान मालिक खुद ही नहीं आता देगा, हाँ तो किराएदार है।
26: कितने का पानी मिलता
27: है? कभी 100 रुपए की आती, कभी 120 की आती।
26: 20 लीटर वाली?
27: हाँ,
26: 20 लीटर वाली, पीने वाली?
27: हाँ, पीने वाली।
26: तो काफी दिक्कत हो रही है आपको?
27: बहुत दिक्कत होती है, 300-400 रुपए।
26: कैसे आप लोगों का गुजारा हो रहा है?
27: वो एक एक बोतल ले के गुजारा कर रहे हैं।
4: लोगों की शिकायत है कि यहाँ 250 से 300 घरों में पानी नहीं पहुँच रहा है। ऐसी ही तस्वीर सीमापुरी विधानसभा के दिलशाद गार्डन में दिख रही है, जहां वार्ड नंबर 219 से लेकर जीटीबी एनक्लेव तक में कई दिनों से पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग खाली बाल्टियां और बोतलें हाथ में लेकर जल बोर्ड कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, जिसके बाद
2: और यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।
28: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना।
18: समर्स अ गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ डेज दैट लास्ट अ लिटिल लॉन्गर, अ ब्राइटर स्टेट ऑफ माइंड। सो गिफ्ट योरसेल्फ अ न्यू किया एट द किया समर स्टिकर सेल्स इवेंट विद स्पेशली टैग्ड व्हीकल्स इंक्लूडिंग द सोरेंटो, स्पोर्टेज, कार्निवल एज वेल एज द न्यूरो हाइब्रिड, ऑल बैक्ड बाय अ 10-year 100,000-mile लिमिटेड पावरट्रेन वारंटी। सो द गिफ्ट ऑफ समर कैन कीप ऑन गिविंग फॉर समर्स टू कम। Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Event ends 6/1/2060. Dealer for warranty details.
29: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
18: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
30: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
31: Gone! Home run!
30: NHL.
31: It scores!
30: College basketball.
31: He shoots it immediately. And he makes it in!
30: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
32: One lap to go.
30: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
33: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
6: In association with
10: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
5: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
11: This is the sound of Jack, buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
13: Oh, ouch.
11: However you make money work, we can work with that.
14: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
33: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
16: Hot Mics, now streaming on TuneIn, your go-to show for sports, politics, entertainment, tech, and pop culture. Hosted by me, Billy Bush. Get unfiltered takes, A-list guests, real talk, no fluff. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
17: बस दो दो हजार
19: अगर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो एक लाख तक जीतेगा
20: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग क्रेडिट स्कोर देखो और एक लाख तक जीतो
21: अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
22: यूपी में ना तो सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत होगी ना ही सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी की आजादी सरकार ने अपना इरादा बता दिया है नमाज पढ़ने के लिए सड़क का इस्तेमाल गैर कानूनी होगा योगी सरकार ने कहा है कि सभी धार्मिक आयोजन केवल उनके परंपरागत और निर्धारित स्थलों पर ही किए जाने चाहिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं सरकार के फरमान के बाद पुलिस एक्शन में यूपी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की नई शुभेंदु सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया है राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बकरीद के लिए अब एक दिन ही छुट्टी रहेगी पहले ये छुट्टी 26 और 27 मई को तय थी लेकिन दो दिन पहले ही शुभेंदु सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक बंगाल में 28 मई को बकरीद की छुट्टी रहेगी कुर्बानी को लेकर राज्य सरकारों की सख्ती के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि गोवंश की हत्या धार्मिक भावनाएं भड़काने का कारण बन सकती है अदालत से इस संबंध में गाइडलाइन जारी करने की गुहार लगाई गई। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव लखनऊ आज तक

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ की सांचो पोस्ट का किया दौरा। सरहद और जीरो पॉइंट वाले इलाकों को देखा, जवानों से की मुलाकात। बोले बीएसएफ ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। वॉर देशों की बैठक में दुनिया की सप्लाई चेन दुरुस्त करने पर हुआ मंथन। जंगी चुनौतियों पर चर्चा। विदेश मंत्री जयशंकर बोले आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, पूरा समूह एकजुट। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के आलाकमान से मीटिंग। दोनों से राहुल गांधी की अलग अलग मुलाकात। त्रिशा के ससुराल में क्राइम सीन देखकर मायके वाले मिले सीबीआई अफसर। अब सारी खड़ियां जोड़ने के बाद सास गिरीबाला और पति समर्थ से हो सकते हैं सवाल जवाब। राजस्थान में नकली दवा रैकेट का खुलासा। कोटा के सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन से हुई थी महिलाओं की मौत। 11 सैंपल जांच में फेल, कई राज्यों तक फैला जाल। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल और इस बुलेटिन में सुपरफास्ट अंदाज में शुरुआत करते हैं 100 शहर 100 खबर की। पश्चिम एशिया युद्ध संकट के बीच में आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी बोंग का बड़ा ऐलान, क्वाड के लिए अब तक सबसे मजबूत प्रतिबद्धता। क्वाड में समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन पर सहयोग बढ़ेगा, अवैध मछली पकड़ने पर कसा जाएगा शिकंजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, क्वाड बेहद उत्पादक है, समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन पर सहयोग बढ़ेगा। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी बोले फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए मजबूत सहयोग जरूरी। जापान के विदेश मंत्री ने कहा कि बैठक में हमने पश्चिम एशिया की स्थिति और होर्मुज संकट पर भी चर्चा की। जापान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण पर भी साझा विचार किए। मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड को मंच की कार्रवाई का मंच बनाने की दिशा में अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन सहयोग पर जोर रहे। मार्को रूबियो ने जानकारी दी कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क और एनर्जी सिक्योरिटी पहल की यहां शुरुआत होगी। राजस्थान में नकली दवाइयों का खुलासा। 10 दिनों में 11 सैंपल फेल। सरकारी अस्पतालों में दी जा रही है ऑक्सीटोसिन दवा नकली निकली, सप्लाई पर सवाल उठे। कोटा मेडिकल कॉलेज में नकली इंजेक्शन से 4 महिलाओं की मौत हुई। जैक्सन लैब में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का सैंपल फेल, पूरा स्टॉक अब जब्त।

सीएनजी की कीमतों ने फिर से उड़ान भरी है। 12 दिनों में 6 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी हुई। उपभोक्ताओं की जेब पर बड़ा बोझ। राजधानी में सीएनजी उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा था। दूसरी बढ़ोतरी के बाद अब कीमत 83 रुपए से ज्यादा पहुंच गई। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी ने चिंता बढ़ाई है। 12 दिनों में दाम 77 रुपए से बढ़कर 83 पार कर चुका है। बीकानेर से गृहमंत्री अमित शाह का बॉर्डर का दौरा शुरू। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत शुरुआत। 184 गांव सड़क और 4G नेटवर्क से जुड़ेंगे। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनावों की घोषणा। 1 जून से 8 जून के बीच में नामांकन होगा। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 जून को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख। 18 जून को होगी वोटिंग। 20 जून के पहले पूरी हो जाएगी निर्वाचन की प्रक्रिया। बिहार विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल 28 जून को हो रहा है खत्म। पिछले मौत मामले की जांच आज से सीबीआई के हाथों में। 12 मई की रात के घटनाक्रम और वित्तीय लेनदेन की गहन पड़ताल होगी। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने आलाकमान से मीटिंग। दोनों ही राहुल गांधी से अलग अलग मिले। पवन कल्याण ने अपने राजनीतिक सफर पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए राजनीति में कदम रखा। दिल्ली हाईकोर्ट में जिमखाना क्लब बेदखली के मामले में सुनवाई। केंद्र ने रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए इस भूमि को आवश्यक बताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली रेस क्लब को जारी किया शो कॉज नोटिस पर रोक लगाने वाला सिंगल जज आदेश रद्द किया। केंद्र की अपील मंजूर। मीरा रोड हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ा बकरीद से जुड़ा विवाद बढ़ा। झगड़े के दौरान चाकूबाजी करते दिखा शख्स। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। पश्चिम बंगाल के मालदा में राज्य का पहला होल्डिंग सेंटर हुआ शुरू। पूरे मालदा जिले का एकमात्र होल्डिंग सेंटर। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर हिरासत में रखा गया। इसमें 3 महिलाएं 6 नाबालिग शामिल। मुर्शिदाबाद में अवैध घुसपैठ के आरोप में 3 लोग हिरासत में लिए गए और होल्डिंग सेंटर भेजे गए। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने दोटू कहा कि कोई भी बीजेपी का झंडा लेकर कारखाने या व्यापारिक प्रतिष्ठानों से अगर रंगदारी मांगता है तो उसकी जगह जेल है। समीक भट्टाचार्य ने साफ कर दिया कि बीजेपी की कोई भी ट्रेड यूनियन या स्टूडेंट यूनियन नहीं है, इसीलिए लोग सजग रहे। पंजाब नगर निकाय चुनाव को लेकर रायकोट में बड़ा तनाव। कांग्रेस उम्मीदवार को आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने पीटा। रायकोट नगर काउंसिल चुनावों में हिंसा। कांग्रेस उम्मीदवार जगदेव सिंह जगह पर जानलेवा हमला। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। ईडी की जीरकपुर में बड़ी कार्रवाई। रॉयल एस्टेट दफ्तर समेत कई ठिकानों पर छापेमार। चुनावों के बीच में जीरकपुर में ईडी का एक्शन जारी है। परवीन रॉकी कांसल और नीरज कांसल परिसरों पर रेड। लखनऊ के कस मंडी में बढ़ा तनाव। हिंदू संगठनों का हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान। किले में नहीं होगी बकरीद की नमाज। एनआईए की जांच में लखनऊ में बड़े आतंकी हमले का खुलासा। एनआईए के मुताबिक आतंकवादियों के निशाने पर यूपी विधानसभा सचिवालय बड़ा इमामबाड़ा और अमीनाबाद जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके थे। जांच में यह सामने आया कि आरोपी लखनऊ में रैकी करके कार बम की धमाके की तैयारियां कर रहे थे। एजेंसी ने समय रहते साजिश का पर्दाफाश कर हमले को टाला। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर मिल गई पेरोल। इस बार राम रहीम को 30 दिनों के पेरोल की सजा देके रेप का दोषी। साल 2020 से ही अब तक राम रहीम को 16वीं बार पेरोल का फायदा मिला है और इससे पहले जनवरी में 40 दिन के पेरोल दी गई थी। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में गैस पाइपलाइन ब्लास्ट की घटना। धमाके के बाद से इलाके में अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड पुलिस गैस कंपनी मौके पर पहुंचे। रांची में पानी संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा। बाल्टी लेकर महिलाओं ने सड़क पर लगाया जाम। महिलाओं ने बताया कि 2 महीने से जलापूर्ति ठप है, आम जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है। जोधपुर में लूणी इलाके में भीषण जल संकट। 150 से ज्यादा गांव प्रभावित। कलेक्टर पर युवाओं का प्रदर्शन। 15 दिन में समाधान की मांग। इटावा में भीषण गर्मी से पारा 44 पार। जिला आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसी। 45 डिग्री तापमान से पशुपालक परेशान। करनाल में भीषण गर्मी से दूध देने की क्षमता भी प्रभावित। भीषण गर्मी की चपेट में पूरा उत्तर भारत। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों में भीषण गर्मी और लू का असर दिख सकता है।
मौसम विभाग के मुताबिक 27 मई तक राज्य में मैदानी जिलों में खासतौर पर हीट वेव की स्थिति, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी

नैनीताल और चंपावत के मैदानी इलाके शामिल हैं। गर्म हवाएं बढ़ा सकती हैं परेशानी। अस्पतालों में दवाइयां, ओआरएस, बर्फ और जरूरी उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डिहाइड्रेशन, लू से बचाव के भी निर्देश। महाराष्ट्र में लू का प्रकोप 47.6 डिग्री तापमान, ब्रह्मपुरी देश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजस्थान के बड़े हिस्से में लू का प्रकोप जारी है और कोटा में 45.6 डिग्री रहा टेम्परेचर। भीषण गर्मी के बीच में दिल्ली में ऐतिहासिक ऊंचाई पर बिजली की मांग है। आंकड़ों के मुताबिक मई के महीने में ही 8,647 मेगावाट पहुंची बिजली की डिमांड। जून के महीने में 9,000 मेगावाट बिजली की डिमांड है, उसको क्रॉस कर सकती है। जॉर्जिया में 12 दिनों से लापता अहमदाबाद के एमबीबीएस छात्र ध्वनित राजनीति परिवार ने पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह से लगाई गुहार। पीजी विवाद और फोन कटने के बाद से परिवार की बढ़ी चिंता, डिपॉजिट विवाद से शुरू हुआ तनाव, लापता ध्वनित को लेकर परिवार ने गंभीर आरोप लगाए। पीजी मालिक से विवाद के बाद से ध्वनित का फोन स्विच ऑफ है, 14 मई से कोई भी सुराग नहीं है। परिवार का दावा है कि पैसे लेने के बावजूद भी विवाद नहीं सुलझा, अब युवक लापता है। भारतीय दूतावास और पुलिस से शिकायत के बाद भी ध्वनित का पता नहीं, जान जारी है। ध्वनित की व्हाट्सएप चैट से खुलासा, पीजी मालिक ने दी थी जान से मारने की धमकी। इंस्टाग्राम पर रील बास पुलिसकर्मी पर एक्शन, बरेली में लापरवाही करने वाले 3 पुलिसकर्मियों पर लिया गया एक्शन। मुजफ्फरनगर में नाम पूछकर मुस्लिम चाचा भतीजे को लोगों ने जमकर बेरहमी से पीट दिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कटिहार में एक पंडित ने दूसरे पंडित से छीन ली जजमानी तो फिर फिनाइल पी गया। अस्पताल में पंडित ने कहा कि प्रशासन मेरी सुनता ही नहीं, डीएम ने अब लिया संज्ञान। दक्षिण दिल्ली के लाडूसराय इलाके में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, जांच जारी। चंदौली में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक वाहन की जबरदस्त टक्कर, 15 लोग घायल जिसमें 4 की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कसौली के जंगलों में भीषण आग, धधकती आग में करोड़ों की वन संपदा जलकर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा, दिल्ली से गोरखपुर जा रही बस पलट गई, 6 की मौत, 19 घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार 4th दिन जारी है। गंभीर, मुगलान और दोरीमल के घने जंगलों में यह ऑपरेशन। बाराबंकी हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रेलर से बेकाबू इनोवा कार टकराई, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चौरा बस्ती फायरिंग में बम हमला, मामले में गिरफ्तारी, अब आरोपी शमी अहमद को जांच के लिए लाया गया। गोरखपुर में वाहन आगे पीछे करने को लेकर दबंगों ने एक युवक के साथ जमकर की मारपीट, फिर कार में आग लगा दी। बुलढाणा में पहले 4 मासूम बच्चों को कुएं में फेंका गया, फिर पिता ने आत्महत्या कर ली। जौनपुर में 1,00,000 इनामी बदमाश रवि यादव के परिजन बोले कि सरकार में यादव होना गुनाह है, पुलिस ने जबरदस्ती कराया अंतिम संस्कार। संभल में रॉन्ग साइड आ रही कार और मर्सिडीज के आमने सामने की जबरदस्त टक्कर, पिता और बेटी की मौत, 4 लोग घायल। बदायूं पुलिस की बड़ी कामयाबी, इस्लामपुर डकैती केस में संभल से 5 आरोपी गिरफ्तार, 19 लाख के जेवरात बरामद, जांच भी जारी है। दिल्ली में लॉन्च हुई शिवराज सिंह चौहान की किताब, पीएम मोदी संग अनुभवों का किया जिक्र। किताब का नाम अपनापन, नरेंद्र मोदी संग अनुभव का विमोचन। शिवराज सिंह चौहान बोले कि यह सिर्फ किताब नहीं है, भावनाओं का दस्तावेज है। बारामूला में पहाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर गिरते दिखे, भूस्खलन से यातायात प्रभावित, लगातार बारिश के बाद हुआ लैंडस्लाइड। पंजाबी सिंगर लुधियाना की मेयर इंद्रजीत कौर के घर पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, मेयर को दिलजीत दोसांझ का सपोर्ट करने पर यह धमकी मिली है। वहीं दिलजीत के मैनेजर के घर पर फायरिंग के मामले पर बैन और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 22 लाख श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। चारधाम में भक्तों का मेला, लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा कल दर्शन किए। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्त पहुंच रहे हैं, आंकड़ा अब तक 8.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में भक्तों का मेला, अब तक 4 लाख से ज्यादा भक्तों ने हाजिरी लगाई।
फिर दूल्हा दुल्हन बने रेणुका शहाणे आशुतोष राणा, 25वें एनिवर्सरी पर एक दूसरे को वरमाला पहनाए। उत्तर द पुत्र की रिलीज डेट का ऐलान, 24 जुलाई को 2006 सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। सौरभ गांगुली के घर पर शुरू हुई बायोपिक की शूटिंग 8 जुलाई को रिलीज होगा एक फर्स्ट लुक। फिल्म धुरंधर 2 ने दुनिया भर में शानदार कमाई की। फिल्म ने 67 दिनों में वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। रितेश देशमुख के राजा शिवाजी ने रचा इतिहास, बनी 100 करोड़ कमाने वाली मराठी फिल्म। आज धर्मशाला में हो रहे प्लेऑफ मुकाबलों की शुरुआत और क्वालिफायर 1 में बेंगलुरु और गुजरात के आमने सामने भिड़ंत। मैच जीतने वाली टीम को सीधा फाइनल में जगह मिलेगी और हारने वाली टीम दूसरा क्वालिफायर मैच खेलेगी। आरसीबी के पास धर्मशाला में खेलने का अच्छा अनुभव है और हाल ही में आरसीबी ने पंजाब को यहां पर हराया था। गुजरात को कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन से उम्मीदें हैं, वहीं आरसीबी के लिए विराट कोहली अनुभव साबित होगा उनका प्लस पॉइंट। इस आईपीएल सीजन में 2-2 मैचेस में अब तक मुकाबले में बेंगलुरु और गुजरात को 5 विकेट से हराया, तो वहीं दूसरे मैच में गुजरात ने बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया, तो एक एक मैच जीते हैं।

0: मुंबई के मीरा रोड पर बवाल मच गया, जहां पर हिंदू संगठन मीरा रोड पर अब प्रदर्शन करते दिखाई दिए। दरअसल मीरा रोड में बकरे की कुर्बानी के लिए बने हुए शेड पर ही बवाल मचा। हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। यहां पर एक सोसाइटी में मुस्लिम पक्ष ने बकरीद पर कुर्बानी के लिए एक बकरा शेड बनाया था, जहां पर बकरा रखा गया था, इससे ही वहां विवाद बढ़ गया। तस्वीरें हैं, ये नाराजगी भी जाहिर करते हुए स्थानीय लोग दिखाई दिए हैं और इस शेड का उन्होंने जबरदस्त विरोध किया है। तस्वीरें हैं, मीरा रोड की ये तस्वीरें हैं और एक शेड बकरीद के मौके पर बनाया गया है। उस शेड में अत्यधिक बकरे लाए गए, ये भी आरोप लगाया गया है, उसको तुरंत हटाने की मांग की है और उसी पर ये बवाल जबरदस्त देखने को मिला है और ये प्रोटेस्ट लगातार देखने को मिला। हिंदू संगठन ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि सोसाइटी में ये बकरीद कुर्बानी का बकरा रखा गया, तो 28 तारीख को बकरीद का ये त्यौहार मनाया जाना है, उससे पहले लोग कुर्बानी का जो जानवर है वो लगातार लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर मीरा रोड में बकरीद के लिए कुर्बान करने वाले जानवरों को लेकर उनके लिए एक शेड बनाया गया था, एक तरीके से आप टेम्पररी छत कह सकते हैं, वो बनाई गई थी और उसका विरोध यहाँ पर किया गया। सोसाइटीज के भीतर ये नहीं होना चाहिए। हम ये उस समय की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे, जब नाराजगी जाहिर की गई, हिंदू संगठन के लोग भी आ गए, पुलिस ने उन लोगों को समझाया, वो लोग पुलिस तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे कि इस तरह से शेड बनाना उचित नहीं है इस तरह से। अब हमारे संवाददाता विद्या भी इस खबर पर जुड़ गई। विद्या, हमने काफी तनाव देखा है इस मामले के बाद, वहां पर इस समय क्या हालात हैं, क्या हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष उनमें शांति है, पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, क्या शेड हटाया गया कि नहीं?
1: अरे अल्टिन, मेरा दोस्त कैसे बना भाई?
2: आ गया,
1: लाइव है क्या?
2: डोनल, हाँ आपका लाइव है क्या?
0: विद्या, क्या आवाज मिल रही है आपको?
3: सबसे बड़ा पुलिस का फेलियर है।
1: आप क्या मांग करते प्रशासन से?
3: इससे यही मांग करते हैं, अगर 307 नहीं होता, आगे जाके नहीं होता है, कोई भी हिंदुओं को परेशान करता है तो बजरंग दल का आगे रुके आगे आएगा।
0: अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार कायम होते बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की वापसी का तांता लगना शुरू हो गया है। जब से पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की शुरुआत की है, होल्डिंग एरिया बनाया है, तब से सरहद पर वापसी करने वाले की भीड़ देखी जा रही है। उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पोस्ट इलाके में ये मौजूदा भीड़ दिख रही है और ये लोग बंगाल में कब और कैसे घुसे थे ये तो नहीं पता, लेकिन जब से वहां सरकार बदली है, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार आई, उसके बाद से यह वापस बांग्लादेश जाने की तैयारियां करते हुए दिखाई दिए हैं। खास और ये घुसपैठिए हैं और इनकी धरपकड़ के लिए होल्डिंग और डिटेंशन सेंटर बनाने का भी आदेश दिया गया और वायरल भी सोशल मीडिया पर हो रहा है।
4: पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया।
5: टीएमसी ने गृह मंत्रालय की गाइडलाइन की खुलेआम अवहेलना करके बंगाल को अवैध घुसपैठियों का, रोहिंग्या घुसपैठियों का सुरक्षित पनाहगाह बना दिया था।
6: क्या नतीजा होगा देखिए अब तक, उसके बाद तो लोग जिस पर जुलुम होगा वो तो सहेंगे नहीं, वो तो लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, उस आवाज सही होगा तो उसके समर्थन भी मिल सकता देश में।
0: सीमा पर जमा हुए बांग्लादेशियों पर शुभेंदु अधिकारी का बयान है कि जल्दी जल्दी भागो, हम उन्हें जेल में खाना नहीं खिलाना चाहते हैं। जेल में उन्हें खाना खिलाने में हम अपना पैसा क्यों बर्बाद करें? हमने अधिकारियों से कहा है कि उन्हें सीधे बांग्लादेश भेजें। ये बड़ी स्टेटमेंट है शुभेंदु अधिकारी की। घुसपैठियों को जल्दी जल्दी भगाओ, हम उन्हें जेल में क्यों खिलाएं? हम उन्हें जेल में खाना नहीं खिलाना चाहते हैं, हम क्यों पैसा खर्च करें? वक्त उसे रायचूर से ब्रेक का फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
7: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब
8: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स $50 राइट इन हिज पॉकेट. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy. Oh, ouch. However you make money work, we can work with that.
9: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
11: The Tailgate Top 20.
12: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
11: The Tailgate Top 20.
13: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
12: Try to keep up.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: बस 2000
8: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
9: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Correcto, the taste of success.
2: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर. ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट.
3: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें.

पोस्ट का गृह मंत्री अमित शाह ने किया दौरा, बीएसएफ जवानों से मिलकर बोले, पाकिस्तान को मिला करारा जवाब। क्वाड देशों की बैठक में दुनिया की सप्लाई चेन दुरुस्त करने पर हुआ मंथन, जंगी चुनौतियों पर चर्चा, जयशंकर बोले आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, पूरा समूह एकजुट। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी डीके शिवकुमार की आलाकमान से मीटिंग, दोनों से राहुल की अलग अलग मुलाकात।

0: ऋषा के ससुराल में क्राइम सीन देखकर मायके वालों से मिले सीबीआई अफसर, सारी कड़ियां जुड़ने के बाद सास गिरिबाला पति समर्थ से हो सकती है पूछताछ। और राजस्थान में नकली दवा रैकेट का खुलासा, कोटा के सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन से हुई महिलाओं की मौत, 11 सैंपल जांच में हुए फेल, कई राज्यों तक फैला जाल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में, और खबरदार की शुरुआत हम पश्चिम बंगाल की खबर से कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बैनर्जी जहां कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रही हैं, वहीं शुभेंदु सरकार ने बंगाल के सिंडिकेट के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता से लेकर हुगली तक लगातार बुलडोजर की कार्रवाई करके दावा है कि आम लोगों की उन जमीनों से कब्जा हटाया जा रहा है जिन पर टीएमसी के नेताओं ने कब्जा जमा लिया था।
2: छोड़ने वाला आदमी नहीं हूं हम लोग, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा।
3: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी से बदलाव की तस्वीर बता रही है, जिसमें तृणमूल के स्थानीय पार्षद के करीबी को स्थानीय व्यापारियों से रंगदारी मांगना महंगा पड़ गया। आरोप लगने के बाद सड़क पर रंगदारी मांगने वाले को घसीट कर पीटा गया, उसकी गिरफ्तारी हुई। कथित तौर पर कटमनी मांगने वाले को जनता ने खबरदार कर दिया। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद शहर शहर बुलडोजर चल रहा। कोलकाता, हुगली, आसनसोल में दावा है प्रशासन ने जबरदस्ती कब्जा करके बने टीएमसी के दफ्तरों को बुलडोजर से गिरा दिया। कोलकाता के बेलाघाटा का मातपुकुर इलाका, यहां टीएमसी के एक ऑफिस को ध्वस्त किए जाने के बाद तनाव फैल गया। आरोप है कि साल 2011 में तृणमूल के सत्ता में आने के बाद बेलेघाटा के मातपुकुर में स्थानीय निवासी झरना कुंडू के घर के एक हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया गया था। जमीन मालिक का दावा है कि जमीन पहले एक क्लब बनाने के नाम पर ली गई, लेकिन रातों रात इसे टीएमसी के कार्यालय में बदल दिया गया।
4: हम अभी जहां पर खड़े हुए हैं, उस ये जो जगह है, इस जगह में भी आज ही बुलडोजर चला है, और बुलडोजर चलाया गया जहां पर, वो था तृणमूल कांग्रेस का एक पार्टी ऑफिस। यहाँ पे दो मंजिला पार्टी ऑफिस था तृणमूल कांग्रेस का, जिसको पिछले 11 साल से ये जो जमीन है, उन जमीन के ऊपर जो जमीन मालिक है उनको उनसे ये जमीन हड़प कर यहाँ पे ये दो मंजिला तृणमूल का पार्टी ऑफिस बनाया गया था।
3: स्थानीय सूत्रों के अनुसार जमीन मालिक कई वर्षों से अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दावा है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। 4 मई के बाद सरकार बदली तो हालात बदल गए। जमीन मालिक ने स्थानीय बीजेपी नेताओं से संपर्क किया और अपनी संपत्ति वापस लेने की गुहार लगाई। शनिवार को बेलघाटा के वार्ड नंबर 57 के इस इलाके में स्थानीय बीजेपी नेताओं की मदद से निजी स्वामित्व वाली जमीन मालिक को वापस सौंप दी गई। बाद में मालिक के अनुरोध पर तृणमूल के नियंत्रण वाली जमीन पर कथित तौर पर कब्जा किए गए पार्टी कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त भी कर दिया गया।
4: चार तारीख के बाद जब सत्ता के बदल हुआ, उसके बाद ही इस पार्टी ऑफिस पे गेट पे जो भगवा रंग था वो भगवा रंग भी किया गया था, लेकिन आज बीजेपी के कार्यकर्ता ने वो यहाँ पे मौजूद होके इस जगह को यहाँ पे साफ किया, और इस जगह का जो मालिक है उनके हाथों में सौंप दिया गया।
3: कोलकाता की तरह आसनसोल में बुलडोजर एक्शन पिछले हफ्ते से चल रहा है। आरोप है कि टीएमसी के नेता ने सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जमीन पर ही कब्जा कर लिया, लेकिन सरकार बदलने के बाद टीएमसी काउंसलर के पार्टी ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया गया। आसनसोल में हफ्ते भर में आधा दर्जन टीएमसी कार्यालय तोड़े गए, जिन्हें लेकर दावा है कि वो अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करके बनाए गए। सेल अधिकारियों का कहना है कि ढांचा हटाने के लिए उनकी तरफ से टीएमसी नेता को कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार उन्हें सरकार बदलने पर अपनी जमीन वापस मिली। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध ढांचे को ध्वस्त करके सेल की जमीन वापस ली गई।
5: যা করছে সরকার ভালো উন্নয়ন করছে করুক, আমাদের কোনো ওর মধ্যে বলার দরকার নেই। আমি যাই উন্নয়ন করবে তার সঙ্গে আছি, তার সঙ্গে থাকবো।
3: अब ये तस्वीर देखिए जो हुगली के उत्तर पारा शहर की। यहाँ पर मौजूदा विधायक ने खुद खड़े होकर बुलडोजर से टीएमसी के पार्टी कार्यालय को ढहा दिया। आरोप है कि टीएमसी का ये ऑफिस सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना। इस अवैध ऑफिस से टीएमसी नेता न सिर्फ पार्टी दफ्तर चलाते थे बल्कि घर बनाने के लिए जरूरी बजरी गिट्टी भी बेचने का कारोबार करते थे। बीजेपी का दावा है कि इस तरह कटमनी का यह सिंडिकेट ममता राज में पूरे राज्य में फैलता रहा, जिसे उखाड़ फेंकने का वादा करके बीजेपी सत्ता में आई है। बंगाल में बुलडोजर एक्शन 12 मई को कोलकाता के तिनजाला में चमड़े की एक फैक्ट्री में आग लगने के बाद शुरू हुआ, जहां अवैध फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद तिलजला में कई और अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया और देखते ही देखते पूरे राज्य में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया।
0: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठियों की वापसी का तांता लगना शुरू हो गया और जब से पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की शुरुआत की है, तब से सीमा पर पार करने वाले लोगों की भीड़ देखी जा रही है। उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पोस्ट इलाके में मौजूद भीड़ में शामिल लोग बंगाल में कब और कैसे घुसे ये पता नहीं, लेकिन शुभेंदु सरकार के आने के बाद इनकी वापसी जरूर शुरू हो गई, विशेषकर जब से सरकार ने अवैध अप्रवासियों यानी कि घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए होल्डिंग और डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश जारी किए और वो आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तब से अचानक हाकिमपुर चेकपॉइंट पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है।
2: पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
6: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के सरहदी इलाके में इन दिनों लोगों की भीड़ कुछ ज्यादा ही दिखने लगी है। इसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उनका सामान असबाब है। ये लोग कैमरे का सामना करने से बचते हैं, इन्हें बस एक मौके का इंतजार है कि कब सरहद के उस पार इन्हें जाने की इजाजत दे दी जाए। उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पोस्ट इलाके में मौजूद भीड़ में शामिल लोग बंगाल में कब और कैसे घुसे थे ये पता नहीं, लेकिन शुभेंदु सरकार के आने के बाद इनकी वापसी जरूर शुरू हो गई है। खासकर जब से सरकार ने अवैध अप्रवासियों यानी घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए होल्डिंग और डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश जारी किया और वो आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब से बशीरहाट उपमंडल के स्वरूप नगर पुलिस थाने में आने वाले बिधारी हाकिमपुर ग्राम पंचायत के लोग हाकिमपुर चेक पॉइंट पर अचानक लोगों की भीड़ देख रहे हैं। दरअसल शुभेंदु सरकार ने शपथ ग्रहण के साथ ही घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया था और अब राज्य के मालदा में घुसपैठियों को रोकने के लिए पहला होल्डिंग सेंटर भी बना दिया गया है। यहां इंग्लिश बाजार शहर के चंदन पार्क में इस इमारत को होल्डिंग सेंटर के तौर पर चिन्हित किया गया है। बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर में लाकर हिरासत में रखा भी गया, इनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। गजोल थाने के पांड्या से पकड़े गए 9 बांग्लादेशियों को कड़ी निगरानी में रखा गया है। इस पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 12 पुलिसकर्मियों, 3 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, 3 नागरिक स्वयंसेवकों और 1 रसोइये वाली एक सुरक्षा और सहायता टीम भी तैनात की गई है।
7: टीएमसी ने गृह मंत्रालय की गाइडलाइन की खुलेआम अवहेलना करके बंगाल को अवैध घुसपैठियों का रोहिंग्या घुसपैठियों का सुरक्षित पनाहगाह बना दिया था।
6: एक तरफ बंगाल की सरकार सूबे को घुसपैठिया मुक्त बनाने के वादे को पूरा कर रही है, तो दूसरी ओर सीपीएम जैसी पार्टियां भी अब इन घुसपैठियों को डिटेंशन में रखने का विरोध कर रही हैं। लेफ्ट नेता ने तो इसे अत्याचार करार देकर विरोध बुलंद करने का समर्थन भी कर दिया है।
8: क्या नतीजा होगा देखिए अब तक, उसके बाद तो लोग जिस पर जुलुम होगा वो तो सहेंगे नहीं, वो तो लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, उस आवाज सही होगा तो उसके समर्थन भी मिल सकता देश में।
6: हालांकि इन घुसपैठियों के डिपोर्टेशन की कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन सीएम शुभेंदु ने कहा है कि जल्द ही इन घुसपैठियों को सीमा पार पहुंचा दिया जाएगा। तापस सेन, उत्तर 24 परगना, आज तक।
0: हाकिमपुर चेक पॉइंट पर सैकड़ों अवैध प्रवासी इकट्ठा हैं, वहां का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता तापस सेन।
9: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद सरकार ने नई नीति अपनाई है, 3D यानी डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट। और ये बात सामने आने के बाद एक खलबली सी मची हुई थी, और ये वही हाकिमपुर बॉर्डर है जहां एक साल तकरीबन 8 या 9 महीना पहले यहां पे हजारों के तादाद में लोग आए थे जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए थे वो वापस जाने के लिए। ये है वो चेक पोस्ट जहां आप देख सकते हैं कि बीएसएफ तैनात है, दूसरे छोर पर बांग्लादेश है थोड़ा आगे जाने पर, और यहां हम आपको मंसर दिखाते हैं कि सैकड़ों के तादाद में जो अवैध रूप से भारत प्रवेश किए थे वो यहां आ पहुंचे हैं। इस चेक पोस्ट के उस पार बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सातखीरा डिस्ट्रिक्ट है, और सातखीरा डिस्ट्रिक्ट में इन्हें भेजा जाएगा। और जो प्रोसेस ये बताया गया है कि अमूमन जितने लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ सिलेक्ट किया जाता है, उनके दस्तावेज लिया जाता है, बांग्लादेश के जो दस्तावेज रहे हैं उन दस्तावेजों को बारीकी से परखा जाता है, फिर जो बायोमेट्रिक प्रोसेस है उस बायोमेट्रिक प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है, उनके फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स को रखा जाता है रिकॉर्ड में, फिर उन दस्तावेजों को बांग्लादेश के बीजीबी को हैंडओवर किया जाता है, फिर बीजीबी अपने दस्तावेजों के साथ उन दस्तावेजों को वेरीफाई करते हैं, अगर वो संतुष्ट होते हैं कि जिन्हें भेजा जा रहा है वो बांग्लादेश के नागरिक हैं तब उन्हें दूसरे छोर पर रिसीव कर लिया जाता है बीजीबी के ओर से। फिलहाल जो सूत्र के मुताबिक पता चला है कि तकरीबन 50 के आसपास लोग कल यहां से पहुंच चुके हैं इस हाकिमपुर चेक पोस्ट से दूसरे छोर पर। आज अभी भी सैकड़ों के तादाद में लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। यहां पर कुछ लोग, यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को अंदर ले जाया गया, उन्हें उस ट्रक पे ले जाया जा रहा है जहां उनको आगे जाके वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, और सिर्फ वेरिफिकेशन के बाद बीजीबी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये काफी लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि जिस तरीके से पिछले साल हजारों के तादाद में लोग हाकिमपुर चेक पोस्ट आ पहुंचे थे, शायद इस बार भी ये शुरुआत है और आने वाले समय में और भी तादाद में लोग यहां इकट्ठा होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोध के साथ तपस सेन गुप्ता, आज तक, हाकिमपुर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर।
0: इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध प्रवासियों को लेकर फिर बड़ा बयान दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जल्दी जल्दी भागो, हम उन्हें जेल में रखकर खिलाना नहीं चाहते, आखिर हम जेल में उन्हें खाना खिलाने पर अपना पैसा क्यों बर्बाद करें। हमने अधिकारियों से कहा है कि उन्हें सीधे बांग्लादेश भेज दिया।

0: खबर लखनऊ के पास कसमंडी किला मस्जिद विवाद की, जहां हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर हनुमान चालीसा पाठ करने की मांग कर दी। पुलिस प्रशासन ने हनुमान चालीसा की पाठ करने की अनुमति नहीं दी तो हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इनकी मांग है उनको हनुमान चालीसा का पाठ करने दिया जाए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने बकरी की नमाज पर भी रोक लगा दी है।
1: धर्म का एक नया मोर्चा खुला है मल्लिहाबाद में, जहां कसमंडी किला मस्जिद विवाद में हिंदू संगठन हनुमान चालीसा करने उतर आए। पुलिस की बड़ी तैनाती के बीच जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता किला तक पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस ने इजाजत नहीं दी तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहीं जमीन पर पूजा की थाल के साथ बैठ गए।
2: आप हाथों में थाली लेकर आई हैं, क्या वजह है यहाँ पर?
3: हम लोग यहाँ पे कंसा पासी के किले में हम लोग पूजा करने आए, चूंकि यहाँ मंदिर है और पूजा करने से रोका नहीं जाना चाहिए। इतना पुलिस प्रशासन है यहाँ पे और पूजा करने नहीं दिया जा रहा है।
2: लेकिन यहाँ पर तो कह रहे हैं नमाज बकरीद के दिन नहीं होगी, और फिर आप लोग क्या चाहते हैं?
3: बाकी दिनों में तो होती है, बाकी दिनों में यहाँ नमाज होती है। और जो है आखिर ये भेदभाव क्यों? मंदिर होने के बावजूद हम लोग पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं?
2: क्या मांग क्या है आपकी?
4: हम लोग की मांग है फरार मौलाना को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, इस साजिश का पूरा पर्दाफाश हो। वो मौलाना किसकी सह पे यहाँ आया था? किसकी सह पे उसने यहाँ मजार बनाई? किसकी सह पे यहाँ नमाज पढ़वाई? ऐसे मौलाना को एकदम शुद्धिकरण उसका हो करना चाहिए सरकार।
1: यहाँ काफी देर तक तनातनी की स्थिति रही। हिंदू कार्यकर्ता पूजा करने की जिद पर अड़े थे तो पुलिस उन्हें आगे न बढ़ने देने पर आमादा थी।
2: ये हर हर महादेव के ये नारे जो लग रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं, ये कंसा पासी के किले पर पहुंचे हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों के हैं। और हाथों में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर थाली है, ये पूजा की थाली है जो यहाँ पर पहुंचे हैं पूजा करने के लिए। और उनका मानना है कि यहाँ पर वो पूजा करेंगे क्योंकि आज बड़ा मंगल है, और बड़ा मंगल के साथ साथ यहाँ पर वो चाहते हैं कि हनुमान चालीसा और पूजा पाठ करें। आप तस्वीरों में देखिए कि सभी लोग पहुंचे हुए, पुलिस फोर्स यहाँ पर खड़ी, आप देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है और पुलिस के साथ यहाँ पर झड़प हो रही है पुलिस के साथ में, चूंकि यहाँ पूजा करने पहुंची है तो पुलिस ने झड़प के साथ रोक लिया है इनको और अब आगे जाने नहीं दे रहे हैं चूंकि ये यहाँ पर जिद पर अड़े हैं।
1: विवाद इस बात का है कि ये राजा कंस पासी का किला है या फिर मकबरा। इसी को लेकर मल्लिहाबाद में वो सियासी हंगामा जमीन पर उठने लगा है, जिस पर सियासी तबके की भी नजर है। पासी समाज गजट के हवाले से ये दावा करने लगे हैं कि जब सालार मसूद गाजी दिल्ली से अवध क्षेत्र की ओर आगे बढ़ा तो राजा कंसपासी ने उससे मुकाबला किया। ये किला राजा कंसपासी का है जहां मुस्लिम मकबरा बताकर आते हैं।
2: पर ये तस्वीर है कि यहाँ पर हिंदू समाज के लोग यानी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो साफ तौर से अब जिद पे अड़े हैं कि उनको नमाज यहाँ पर रोकनी है और यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिसके लिए पूजा की थाल लेकर पहुंच गए हैं। तो ये इस स्थल पर आज क्योंकि बड़ा मंगल है और इस बड़े मंगल पर इस आना था यहाँ पर, हिंदू समाज ने पहले ही कहा था और वो आज यहाँ पर पहुंचा हुआ है। अब ऐसे में प्रशासन ने एक तरफ बकरीद पर नमाज की रोक लगाई है, अब हिंदू समाज अड़ा हुआ है पूजा के लिए। लखनऊ के मल्लिहाबाद से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव आज तक।
0: और अब खबर ट्रिशा शर्मा मौत मामले की। इस केस में सीबीआई ने अपनी जांच काफी तेज कर दी। आज सीबीआई के जांच अधिकारी गिरिबाला सिंह के घर पहुंचे। जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम ने करीब आधे घंटे तक वहां जांच पड़ताल की, क्राइम सीन का निरीक्षण किया, साथ ही पूर्व जज गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ की। विभिन्न चुनौतियों के बीच सीबीआई गिरफ्तार समर्थ सिंह और समर्थ सिंह की मां पूर्व जज गिरिबाला से कभी भी सवाल जवाब कर सकती है और गिरिबाला से तो पूछताछ शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या दोनों सब कुछ सच सच बताएंगे? ये सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक मामले की जांच में जुटी भोपाल पुलिस के सामने समर्थ वही बातें दोहराता रहा है जो उसकी मां पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने अब तक ट्रिशा को लेकर कही है।
5: पंडित जी छोड़ दो उसको।
6: यार ये पंडित जी क्या टाइम पास कर रहे हैं आप, पूरा फुटेज पंडित जी खाने वाले हैं क्या?
5: पंडित जी उसको शादी मेरे से करनी है, आपसे नहीं।
7: महज 5 महीने पहले शादी हुई थी। ट्रिशा ने अपनी नई जिंदगी के नए नए सपने संजोए थे। समर्थ संघ वो जिंदगी के नए सफर पर निकली थी, लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। ना ट्रिशा रही, ना उसके सपने रहे। आखिर समर्थ और ट्रिशा के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामला पूर्व मॉडल की मौत तक पहुंच गया? अब जांच एजेंसियों की नजरें ट्रिशा के पति समर्थ सिंह पर टिकी हैं, साथ ही गिरिबाला सिंह भी अहम राजदार है। ट्रिशा की मौत के बाद समर्थ फरार हो गया था। इधर भोपाल पुलिस मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी, एक एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी ओर ट्रिशा को भोपाल एम्स पहुंचाने वाला समर्थ अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ कर गायब हो गया था। 22 मई को समर्थ सिंह की गिरफ्तारी हुई। भोपाल पुलिस अब उससे सवाल जवाब करना चाहती है, लिहाजा बीती रात कटारा हिल्स थाने की टीम उसे लेकर उसके घर गई। कटारा हिल्स स्थित उसके घर में तब गिरिबाला सिंह भी मौजूद थी, समर्थ भी पहुंचा। दोनों की मौजूदगी में भोपाल पुलिस ने क्राइम सीन की पड़ताल की। अब
0: खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज
8: आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब
9: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
10: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: Step into the heart of the American zeitgeist with me, Billy Bush. My new show, Hot Mics, is now streaming on TuneIn. It's the radio talk show that's going to redefine what it means to be in the know. From sports and politics to entertainment, tech, pop culture, and everything in between. You'll hear from A-list stars, athletes, politicians, and more. No filter, no fluff, just the real talk. Because when the mic is hot, the conversations are even hotter. Live Mondays and Wednesdays at 5 p.m. Eastern, 2 Pacific. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
14: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.

ईरान से अपनी शर्तें मनवाने में अमेरिका लगातार नाकाम हो रहा है। समझौते पर दस्तखत या ईरान का खात्मा वाला बयान देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि समझौते को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं है। अब ट्रंप ने मुस्लिम देशों से इसराइल के साथ रिश्ते बेहतर करने को कहा है। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की और इसके बाद ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने ईरान संकट को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए अब जरूरी है कि ये सभी देश अब्राहम समझौते में शामिल हों। यूएई और बहरीन पहले से अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा हैं। कुछ देशों के पास शामिल न होने की एक दो वजहें हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर देशों को इस समझौते के लिए तैयार होना चाहिए। ट्रंप के इस ऐलान से पाकिस्तान जैसे देशों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है। इधर ईरान और अमेरिका के बीच जिन मुद्दों पर बातचीत अटकी हुई है उनमें परमाणु प्रोग्राम बड़ा मुद्दा है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरान की न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के एक शीर्ष कमांडर ने दावा किया है कि ईरान अब युद्ध शुरू होने के वक्त से ज्यादा मजबूत है। ईरान के प्रभावशाली नेता इब्राहिम रजाई ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेहद तल्ख लहजे में सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सैन्य युद्ध के दौरान ईरान की रणनीति आंख के बदले आंख की थी और अब इस राजनयिक युद्ध में उनकी नीति एक्शन के बदले एक्शन की होगी। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ रहा है और बीच का रास्ता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

घुसपैठ और असामान्य जनसंख्या बदलाव को लेकर सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी। रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे इसकी अध्यक्षता। पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था ऐलान। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में दुनिया की सप्लाई चेन दुरुस्त करने पर हुआ मंथन। जंगी चुनौतियों पर चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, पूरा समूह एकजुट।

पहले सीबीआई के अधिकारी सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद सास गिरीबाला और पति समर्थ से हो सकते हैं सवाल जवाब। राजस्थान में डिलीवरी के बाद महिला की मौत मामले में एक्शन। राज्य सरकार ने दवा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए दिया आदेश। नकली दवा की हुई पुष्टि।

0: गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। हम सबसे पहले आपको लिए चलेंगे महाराष्ट्र, बात करेंगे ठाणे की, जहां बकरीद को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है एक खास इलाके में। दरअसल बकरीद से पहले ठाणे जिले के मीरा रोड इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी में कल एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया। दरअसल सोसाइटी परिसर में बकरीद पर कुर्बानी के लिए बाकायदा एक शेड बनाया गया और इसी शेड में कुर्बानी को लेकर, बकरे की कुर्बानी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने बकरे के लिए शेड बनाने का यानी वहां कुर्बानी का विरोध किया। आरोप यह है कि विवाद में एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब ताजा घटना यह है कि एक पक्ष सोसाइटी में सुअर को लेकर आ गया और यह विवाद और ज्यादा बढ़ गया। पुलिस ने सुअर को छीन कर ले जाने की कोशिश भी की। कल देर रात झगड़े के बाद अब पूरे इलाके में तनाव है। भारी पुलिस बल को अब वहां तैनात किया गया है। साथ ही परिसर के बाहर बड़ी तादाद में लोग धरना भी दे रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि यहां पर बकरे की कुर्बानी होगी, तो दूसरा पक्ष कह रहा है अगर बकरे की कुर्बानी होगी तो वहां वो सुअर की कुर्बानी भी करेंगे। दिव्येश मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्येश, आखिर ये पूरा मामला है क्या? हाउसिंग सोसाइटी में शेड क्या कुर्बानी की दृष्टि से बनाया गया है? विस्तार से बताइए, ये विवाद आखिर इतना गर्मा कैसे गया?
1: गौरव, अगर आपको बताएं कि जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं, जो यहाँ पर जमा हुए हैं, जो हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, उनका उनकी अगर बात सुने तो ये बात है कि यहाँ पर 25 से 30 बकरे लाए गए थे। ये आप देख सकते हैं, पूनम एस्टेट क्लस्टर 1, ये हाउसिंग सोसाइटी है और यहाँ पर अंदर 25 से 30 बकरे लाकर रखे गए थे ईद उल अदा की कुर्बानी के लिए। कुर्बानी करनी थी और उसके लिए ये लाकर रखे थे, पर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक यहाँ पर कुर्बानी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में देना अलाउड नहीं है। कोई भी तरीके की कुर्बानी या कत्ल करना किसी जानवर का वो अलाउड नहीं है, ये हाईकोर्ट का निर्देश है। और कुछ जो रहवासी

0: विरोध कर रहे थे इस कुर्बानी का, उन पर धारदार हथियार से किसी ने हमला कर दिया। अब वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में पुलिस से अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने हमला किया, पर उसके बाद ये मामला बिगड़ गया और उसके बाद जो हिंदू संगठन है वो यहाँ पर आकर विरोध करने लगे कि इस तरीके से कुर्बानी, जबकि हाईकोर्ट का निर्देश है तब ये कुर्बानी एक हाउसिंग सोसाइटी में कैसे हो सकती है, इस पर उन्होंने विरोध जताया। वो विरोध जताते हुए उन्होंने बिल्डिंग के अंदर गेट के अंदर जाने की भी कोशिश की, ये डिमांड की कि जितने भी बकरे लाए गए हैं कुर्बानी के मकसद से लाए गए हैं उन्हें यहाँ से हटाया जाए, उन्हें यहाँ से ले जाकर दूसरी जगह रखा जाए, यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी में नहीं रखा जाए। उसके बाद जब विवाद और बढ़ गया तो एक सुअर का बच्चा भी कुछ
1: नहीं, लेकिन ये बताइए जब जो हाईकोर्ट का आदेश साफ है दिवेश कि किसी भी घरेलू इलाके में रेजिडेंशियल सोसाइटी में कुर्बानी नहीं दी जा सकती, तो 25 से 30 बकरे या जितने भी बकरे लाए गए कुर्बानी के लिए, एक इसकी इजाजत किसने दी और दो क्या पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो बकरे को एक हाउसिंग सोसाइटी में लाए हैं कुर्बानी देने के लिए?
0: जी बिल्कुल, पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। जब मामला बिगड़ गया, जब मामला संवेदनशील हो गया और उसके बाद जब हालात बिगड़ते नजर आए कि यहाँ पर रायट्स हो सकते हैं, यहाँ पर यानी किसी तरीके से भीड़ को नियंत्रित करना होगा, तब पुलिस डिप्लॉय की गई है। जो हाईकोर्ट का निर्देश है वो साफ है कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में किसी भी जहां पर लोग रहवासी हैं, जहां पर रहते हैं, वहां पर कुर्बानी नहीं हो सकती, वहां पर कत्ल नहीं किया जा सकता है। पर उसके बावजूद यहां पर बकरे लाए गए और उसी का विरोध कर रहे थे जो इसी सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोग हैं।
1: अब देखना यह है दिवेश कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है जो कोर्ट के आदेश की अवमानना करके एक हाउसिंग सोसाइटी में बकरे लाए हैं कुर्बानी देने के लिए। इसकी इजाजत क्या दी जा सकती है एक सभ्य समाज में? इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और वो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर।

0: सीज फायर और शांति वार्ता के बीच अचानक धधक उठा समंदर। दोहा में सीक्रेट बातचीत, उधर अमेरिकी हमले से फिर दहल उठा ईरान। और मुझ में बारूदी नाव तबाह, अब बातचीत होगी या मचेगी तबाही। डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी, या तो होगी शानदार डील या होगा महायुद्ध। यूरेनियम सौंपने के अल्टीमेटम पर थर्राया मिडल ईस्ट, सस्पेंस हुआ गहरा। महासमझौते की मेज सजने से पहले ही लेबनान में छिड़ गया भीषण संग्राम। नेतन्याहू का सेना को फरमान, क्या तोड़ डालेंगे ईरान से हुआ युद्ध विराम। कतर बना महासंकट मोचा, लेकिन बारूद की गूंज से कांप रही दुनिया। एक तरफ डिप्लोमेसी के बंद कमरे, दूसरी तरफ आसमान से बरस रही इजरायली मिसाइलें। कामयाब होगी दोहा की महाडील या फिर महाविनाश।
1: नए महायुद्ध की कगार पर खड़ा मध्य पूर्व बीती रात एक बार फिर दहल उठा। दरअसल अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है सेंटकॉम, उसने दक्षिणी ईरान के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बंदर अब्बास में एक मिसाइल लॉन्च साइट के अलावा हॉर्मूज में माइंस बिछाने जा रही कई नावों पर, मिलिट्री बोट्स पर जोरदार हमले कर दिए। ये हमले हुए उस वक्त जब ईरान के कुछ वार्ताकार कुछ ही घंटों पहले कतर पहुंचे थे और यहां युद्ध विराम को लेकर और युद्ध को पूरी तरह बंद करने को लेकर बातचीत चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक अटैक हो गया। यह हमला उस वक्त भी हुआ और उस दिन हुआ जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना

0: से साफ शब्दों में कहा कि वो लेबनान में हमले तेज कर दें और ईरान समर्थित और इजराइल की भाषा में जो आतंकी संगठन है हिजबुल्ला, उसे अब जड़ से मिटा दें। जाहिर है जब ईरान के खिलाफ शांति की कोशिशें तेज हो रही हैं तब दो हमले हुए, इससे बातचीत में मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि अगर यह युद्ध बंद होता है तो हर मोर्चे पर पूरी तरह से युद्ध विराम होना चाहिए और युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए। लेबनान युद्ध नहीं होना चाहिए, हूथी विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध नहीं होना चाहिए, ना सीरिया में ना इराक में, हर मोर्चे पर बंदूकें खामोश हो जानी चाहिए। उधर कल देर शाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ईरान के साथ या तो एक बहुत शानदार और सार्थक डील होगी या कोई डील नहीं होगी। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान में मौजूद जो भी संवर्धित यूरेनियम है, लगभग 450 किलोग्राम जो इनरिच यूरेनियम है, या तो वो अमेरिका को सौंपा जाएगा या ईरान में भी और ईरान में ही जो इम्पार्शियल एजेंसीज है, तटस्थ एजेंसीज है, जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसकी देखरेख में उस इनरिच यूरेनियम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर सीजफायर के बीच चल रही बातचीत के दौरान हुए अमेरिकी हमले की है। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक बारूदी सुरंग बिछा रहे जहाज को निशाना बनाया और इसके अलावा बंदर अब्बास पोर्ट के पास सर्फेस टू एयर मिसाइल साइट पर भी एक जोरदार हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह कार्रवाई सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में की गई। सेंटकॉम के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिंस ने कहा है कि अमेरिकी सैनिकों और युद्धपोतों को उनके ऊपर जो खतरा है उसे उस खतरे से बचाने के लिए ये डिफेंसिव ऑपरेशंस किए गए। अमेरिकी सेना का कहना यह है कि बारूदी सुरंगें बिछाने से अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को और अमेरिकी युद्धपोतों को हॉर्मुज की खाड़ी में घुसने के समय खतरा हो सकता है। हालांकि हॉकिंस ने यह भी कहा कि सीजफायर के दौरान अमेरिका लगातार संयम बरत रहा है। वहीं ईरान से आ रही खबरों के मुताबिक ईरान में धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। मेहर न्यूज एजेंसी ने कहा कि बंदर अब्बास में हालात इस समय नियंत्रण में है। ईरान की मीडिया ने सोमवार देर रात बताया कि ईरान के बंदर अब्बास शहर और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास के तटीय इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई। और आइए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि बीती रात अमेरिका का जो हमला हुआ ईरान के किन किन इलाकों में हुआ और अमेरिका ने आखिर इस समय यह हमला किया क्यों है, क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील। एक तरफ सीजफायर चल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर उस चोक पॉइंट पर, देखिए ये जो हॉर्मुज का जलडमरू मध्य है ये इसका मेन चोक पॉइंट है, यहां पर आईआरजीसी की जो दो नावें हैं अमेरिका के मुताबिक ये मिलिट्री बोट्स हैं और ये मिलिट्री बोट्स उस समय वहां पर माइंस, सी माइंस बिछा रही थी, तो उसे रोका गया और इसीलिए इन बोट्स पर हमला हुआ। आपको ये मालूम है कि यहां से न केवल ईरान का बल्कि ओमान का, कुवैत का, बहरीन का, सऊदी अरेबिया का, कतर का, इराक का, और ये ईरान तो है ही, इन सभी देशों का जो तेल है, दुनिया का 20% तेल इसी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है, तेल भी गैस भी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने दो अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया। पहला हमला जो था ये हॉर्मुज के पास आईआरजीसी की दो नौकाओं पर हुआ। अमेरिका ने समुद्र में माइंस बिछाते हुए देखा और इन पर हमला किया। जो दूसरा हमला हुआ वो बंदर अब्बास के उस मिसाइल लॉन्च साइट पर हुआ जहां से अमेरिका के जो विमान उस जगह उड़ते हैं। आईआरजीसी के चार सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है क्योंकि मिसाइल लॉन्च साइट को निशाना बनाना एक बड़ा एस्केलेशन इसे उस रूप में देखा जाता है। अमेरिकी हमले में चार ईरानी नौसैनिक मारे गए और ये उस जगह पर हुआ जहां से बंदर अब्बास से मिसाइल लॉन्च करके अमेरिका के विमानों को और जहाजों को, दोनों को टारगेट किया जा सकता था। अमेरिका इसे एक डिफेंसिव ऑपरेशन यानी रक्षात्मक कार्रवाई बता रहा है। दूसरी तरफ जो जानकार हैं वो मानते हैं बातचीत पर, जो दोहा में कतर में समय बातचीत चल रही है उस पर कोई असर नहीं होगा, बातचीत को इंसुलेट किया जा रहा है इस तरह की घटनाओं से। तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर अभी भी वो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी हमलों का जवाब ईरान भी दे रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के बेहद महंगे ड्रोन को टारगेट करना शुरू किया है और एक ड्रोन को गिरा भी दिया है। बड़ी खबर हम आपको यह बता दें कि एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट, ये फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, ईरान ने दावा किया कि उसने उसे खदेड़ दिया। IRGC ने दावा किया कि उसकी जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, उसने ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसने वाले एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत लगभग $3 करोड़ मानी जाती है। IRGC ने यह भी दावा किया कि उसने एक RQ-4 ड्रोन और घुसपैठ करने वाले एक F-35 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को भी उस पर गोलीबारी की और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी विमान ने कथित तौर पर ईरानी हवाई सेवा से सीमा का उल्लंघन किया था। इससे पहले कल बंदर अब्बास पर हुए अमेरिकी हमले को लेकर बाकायदा एक चेतावनी भी दी गई थी। उसने कहा कि अगर अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम का थोड़ा भी उल्लंघन हुआ तो ईरान के पास जवाबी कार्रवाई करने की वैध और निश्चित सामग्री भी है और अधिकार भी है। IRGC की यह धमकी बेहद गंभीर है और अमेरिका और जानकार ये मान रहे हैं कि ईरान की तरफ से कोई डायल डाउन नहीं है, कोई डायल बैक नहीं है, यानी ईरान घुटनों पर नहीं झुक रहा है, वो बढ़ चढ़ कर जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है और भड़काने वाले बयान भी दे रहा है। और ईरान के सर्वोच्च नेता जो है मुज्तबा अली खमानई, उन्होंने अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए साफ कर दिया है कि अब खाड़ी के देश अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए शील्ड यानी ढाल का काम नहीं कर पाएंगे। पूरे मध्य पूर्व से अमेरिका का वर्चस्व हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। पवित्र हज के मौके पर, हज सीजन के मौके पर उन्होंने एक लिखित संदेश जारी किया। मुज्तबा अली खमानई ने अमेरिका के लिए बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा अमेरिका के पास अब इस क्षेत्र में अपनी शरारतों और मिलिट्री बेस को स्थापित करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचेगा। खमानई ने यह दावा किया कि अमेरिका हर गुजरते दिन के साथ इस क्षेत्र में अपनी पुरानी हैसियत और अपनी पुरानी ताकत को खो रहा है। खमानई ने दुनिया को आगाह करते हुए, सचेत करते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर अब एक नई व्यवस्था उभर कर सामने आ रही है। अब मध्य पूर्व के देश Washington DC के इशारों पर नहीं नाचेंगे, अमेरिका के इशारों पर आगे नहीं बढ़ेंगे और ना ही अमेरिकी बेस को सुरक्षा देने की अपने देशों में गलती करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता का रुख यह साफ दिखाता है कि ईरान 28 फरवरी के बाद से शुरू हुए युद्ध और उसके बाद सीज फायर की मेज पर भी अब कतई झुकने को तैयार नहीं है। लगातार अग्रेसिव, बहुत आक्रामक बयान ईरान की तरफ से आ रहे हैं। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाएगा ताकि उसे अमेरिका मिलाकर नष्ट किया जा सके। ऐसा नहीं तो यह बेहतर होगा कि ईरान के साथ मिलकर उसी जगह पर या किसी दूसरी स्वीकार्य जगह पर उस संवर्धित यूरेनियम को नष्ट कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी लिखा है कि यह जो पूरी प्रक्रिया है और घटना के गवाह के तौर पर IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या कोई एटॉमिक एनर्जी कमीशन या उसके समकक्ष कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लोग वहां मौजूद रह सकते हैं ताकि ये पूरी कार्रवाई एक बेहद पारदर्शी तरीके से हो। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ईरान की के बारे में यह भी लिखा कि अब या तो पूर्ण समझौता होगा या कोई समझौता नहीं होगा। ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ईरान ने अब तक यही कहा है कि परमाणु मुद्दे पर बातचीत को वो इस समय सार्वजनिक नहीं करना चाहता। वैसे एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम को नष्ट करने के लिए तैयार हो गया है, बशर्ते ईरान पर से सारे प्रतिबंध हटाए जाएं और ईरान का जो लगभग $27 बिलियन उसकी पहली खेप उसे लौटाई जाए। ईरान के साथ समझौते को लेकर इस समय बातचीत चल रही है, लेकिन यह बातचीत पाकिस्तान में नहीं है। बातचीत को लेकर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने बातचीत में अब तक मुख्य भूमिका निभा रहे पाकिस्तान को हाशिए पर धकेल दिया है। अब ईरान से बातचीत की कमान कतर को सौंप दी गई है। दोहा में बातचीत हो रही है। कतर ही शांति प्रस्ताव और शांति समझौते के प्रस्ताव को तैयार करने में मुख्य भूमिका इस समय निभा रहा है और इसीलिए ईरान के जो मुख्य वार्ताकार हैं वो सोमवार को कतर पहुंचे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गरीबाफ इस समय कतर की राजधानी दोहा में हैं। दोहा में कतर के प्रधानमंत्री के साथ एक बड़े शांति समझौते को लेकर एक बेहद सीक्रेट और हाई प्रोफाइल बातचीत इस समय चल रही है और जो बातचीत का मुख्य फोकस है वो सबसे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने का, ईरान के संवर्धित यूरेनियम को फिर नष्ट करने का है या फिर उसको अमेरिका को सौंपा जाए। तीसरी बात, जो विदेशों में फ्रीज हुए ईरान के अरबों डॉलर है, जैसे ही संवर्धित यूरेनियम नष्ट हो जाता है तो ये डॉलर दे दिए जाएंगे ईरान को और उस पर जितने प्रतिबंध हैं वो हटा दिए जाएंगे। इसके लिए ईरान का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर भी अब दोहा पहुंच चुके हैं। कतर अमेरिका का बेहद करीबी सहयोगी है। कतर में ही अल उदीद एयरबेस भी है जो मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है। साथ ही कतर में ईरान के साथ अच्छे संबंधों की बात लगातार होती आई है और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, ईरान को बातचीत के टेबल पर वो लेकर आए, लेकिन अब जब अहम बातचीत करनी है और विश्वसनीय लोगों की आवश्यकता है कि वो बातचीत किसी तीसरे देश और खासतौर पर चीन के सामने ना पहुंच जाए, इसीलिए अब आगे की बातचीत कतर में हो रही है। वैसे भी कतर की राजधानी दोहा में ही तालिबान और अमेरिका के बीच डील भी हुई थी, आपको याद होगा, और गाजा में सीजफायर को लेकर भी बातचीत कतर में ही हुई थी। जहां तक अमेरिका का रुख है तो भारत के दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ट्रंप की हर बात को दोहरा रहे हैं कि या तो बहुत अच्छी डील होगी या कोई भी डील नहीं होगी।
1: Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
0: तो क्या पाकिस्तान अब पूरी तरह हाशिए पर आ गया है? पाकिस्तान के लिए मुश्किलें अभी बढ़ भी सकती हैं। कैसे? ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक।
2: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब वेक्टर।
3: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
4: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
3: Learn more at emory.edu.
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
7: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
11: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
13: जेके वॉल मैक्स।
12: बेस्ट पेंट?
13: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
15: In association with
16: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
17: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
15: Hint, bade aaram se. Vimal, bolo zubaan kesri.
18: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
19: Summer cool cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Summer cool cooler, life braai wonderful.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।

केंद्र ने बनाई हाई लेवल समिति, रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर करेंगे अध्यक्षता। बंगाल के मुख्यमंत्री बोले बांग्लादेशियों को जल्दी जल्दी भगाओ। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में सप्लाई चेन और वैश्विक चुनौतियों पर महामंथन। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर बोले आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, पूरा समूह एक मत। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज, हाईकमान की चौखट पर सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम पहुंचे। राहुल गांधी ने दोनों से अलग अलग की मुलाकात। त्रिशा मौत केस में ससुराल में क्राइम सीन देख सीबीआई हैरान। भोपाल में घर का किया दौरा, सास गिरिबाला से हुई पूछताछ, मृतक के परिवार वालों से भी मुलाकात। राजस्थान में डिलीवरी के बाद महिला की मौत मामले में एक्शन, राज्य सरकार ने दवा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने के दिए आदेश, नकली दवा की हुई पुष्टि।

इसराइल और ईरान की दुश्मनी खत्म होने जा रही है। पाकिस्तान और इसराइल में दोस्ती होने जा रही है। खाड़ी देशों में चमत्कार होने जा रहा है। सारे मुस्लिम देश एक साथ, इसराइल भी होगा साथ। ट्रंप का सपना रचने वाला है इतिहास। एक सीक्रेट कॉल से दुनिया बदलने की क्यों जगी आस? ट्रंप ने क्यों उड़ा दी शरीफ और मुनीर की रातों की नींद? जो देश एक दूसरे का विनाश करने को तैयार बैठे हो, जिनके आपस में कूटनीतिक रिश्ते ना हो, उनकी दोस्ती की बिसात बिछाई जा रही है। ऐसे दुश्मनों को दोस्ती करने को कहा जा रहा है, जिनकी सुबह एक दूसरे को गाली देने से शुरू होती है। क्या ये सिर्फ एक शगुफा है, दुनिया बदलने की जिद है, या सरहदों पर होने वाला नया बवंडर?

आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग नाव में पैर रखना पाकिस्तान को अब भारी पड़ने वाला है। दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच अब पाकिस्तान ऐसा बुरा फंसता जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रातों की नींद उड़ रही है। दरअसल ये ताजा मामला जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड्स को लेकर है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया एक ऐसा समझौता है जो कहता है कि इस्लामिक देशों को इसराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसको मान्यता देनी होगी, उसके साथ औपचारिक संबंध बनाने होंगे, व्यापार और वाणिज्य करना होगा और इसराइल के हक में यह है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस्लामिक देश और इसमें पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश भी शामिल हैं, वो इस पर हस्ताक्षर करें, पाकिस्तान इसमें शामिल हो। पाकिस्तान हमेशा से ही इब्राहिम अकॉर्ड को लेकर या फिर उससे पहले इसराइल को मान्यता तक वो नहीं देता, उसको लेकर साफ इनकार करता है, क्योंकि इसराइल पाकिस्तान का कोई नागरिक नहीं जा सकता। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उस पर लिखा है दुनिया के हर देश के लिए वैध, इसराइल के लिए नहीं। मौजूदा हालात में डोनाल्ड ट्रंप ने अगर उसने मना लिया तो अलग बात है, अगर उन्होंने मना कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को तो अमेरिका नाराज हो जाएगा और ये नहीं चाहता कि चीन और ईरान और दूसरे देश वो से नाराज हो जाए। खैर, इसका सबसे ज्यादा फायदा कैसे होगा, नुकसान कैसे होगा, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन फिलहाल चीन के दौरे पर गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक बार फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के साथ साझा बयान में आतंकवाद पर लगाम कसने का वो वादा कर रहे हैं। दुनिया भर में आतंकवाद को पालने पोसने का परोसने का काम करने वाला पाकिस्तान इस पर लगाम कैसे लगाएगा और क्यों लगाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद उसकी विदेश नीति का, उसकी राष्ट्र नीति का एक हिस्सा है और यह बात समझ से परे है कि पाकिस्तान कैसे यह दोमुहापन रोकेगा। पाकिस्तान की जो आतंक की नीतियां हैं उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान की सेना अपने ही घर में अब मारी जा रही है, कभी खैबर पख्तूनख्वा में तो कभी बलूचिस्तान में जबरदस्त विद्रोह हो रहा है। खैर, खैबर पख्तूनख्वा में स्थानीय नागरिक संघर्ष कर रहे हैं, बलूचिस्तान में समय जबरदस्त उबाल है और इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की बिसात पर एक ऐसा पासा फेंका है, किसी भी हालत में पाकिस्तान इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता और उसके लिए बिल्कुल सांप छछूंदर वाली दशा हो गई है, ना उगलते बने ना निगलते बने और पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। अगर उसने डोनाल्ड ट्रंप का आदेश माना तो पाकिस्तान में शहर शहर बवाल हो जाएगा, धार्मिक बवाल हो जाएगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने आखिर इसराइल को मान्यता कैसे दे दी जो मोहम्मद अली जिन्ना के जमाने से नहीं दी जा रही है। पाकिस्तान ने अगर मना कर दिया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा और अमेरिका की नाराजगी बहुत मतलब घुटनों पर जाके घुटनों के बल रेंग रेंग कर व्हाइट हाउस पहुंचकर तो पाकिस्तान अमेरिका की अच्छी किताबों में आया है, तो अमेरिका की नाराजगी उसके लिए महंगी पड़ सकती है। तो आखिर क्या है डोनाल्ड ट्रंप का ये नया आदेश इब्राहिम अकॉर्ड को लेकर और इससे खाड़ी के जो इस्लामिक देश है उनकी राष्ट्रनीति पर, उनकी कूटनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि सऊदी अरब और कतर ये सबसे पहले इब्राहिम अकॉर्ड साइन करें और उसके बाद खाड़ी के अन्य देश करें और पाकिस्तान और तुर्की भी इसमें शामिल हो जाए। देखिए ये रिपोर्ट।

0: ٹرمپ کے شگوفے سے ہوا نیا بوال، ابراہم ایکارڈز پر مچا ہاہاکار، پھنس گیا پاکستان، اب مچے گا کوہرام۔ مہایدھ کے سنکٹ کے بیچ ٹرمپ نے ایک ایسی اپیل کر ڈالی جس نے دھرم کی بساط پر کھڑے کئی دیشوں کو دھرم سنکٹ میں ڈال دیا۔ الجھنوں کا یہ دور شروع ہوا ہے ٹرمپ کی ایک کال کے بعد۔ دراصل ایران کے ساتھ سمجھوتے کو لے کر ٹرمپ نے کئی دیشوں کے لیڈرز کے ساتھ فون پر بات کی تھی۔ اس دوران ٹرمپ نے مسلم دیشوں سے اسرائیل کے ساتھ رشتے بہتر کرنے کو کہہ دیا۔ یہ ورچوئل میٹنگ ہوئی بھی سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکیے، مصر، بحرین اور جارڈن کے نیتاؤں کے ساتھ۔ میٹنگ کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ ساجھا کی جس میں لکھا کہ میں سبھی دیشوں سے انیوارے روپ سے انوروھ کر رہا ہوں کہ وہ ترنت ابراہم سمجھوتے پر ہستاکشر کریں۔ اس کی شروعات سعودی عرب اور قطر دوارا تتکال ہستاکشر کیے جانے سے ہونی چاہیے اور باقی سبھی دیشوں کو بھی ان کا انوسرن کرنا چاہیے۔ یدی وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو انہیں سمجھوتے کا حصہ نہیں بنایا جانا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ کرنا ان کی بری نیت کو درشاتا ہے۔ اگر ایران امریکی راشٹرپتی کے طور پر میرے ساتھ سمجھوتے پر ہستاکشر کرتا ہے تو اس بے مثال ویشوک گٹھ بندھن کا حصہ بننا ان کے لیے بھی ایک سمان کی بات ہوگی۔ ابراہم اکارڈ دراصل 2020 میں امریکہ کی پہل پر ہوا ایک ایسا سمجھوتا ہے جس کے تحت کئی عرب دیشوں نے اسرائیل کے ساتھ اوپچارک رشتے بنائے اور اسے مانیتا دی۔ اس کا مقصد عرب اسرائیل دشمنی کو کم کرنا اور ویاپار کے ساتھ ساتھ رکشا کے کھیتر میں سہیوگ بڑھانا تھا۔ اس سمجھوتے میں باقی دیشوں کو بھی شامل کرنے کی ٹرمپ کی اپیل کے بعد اب مسلم دیشوں میں بوال مچ گیا۔ خاص طور پر پاکستان بری طرح پھنس گیا۔ ایک طرف وہ پچھلے کچھ وقت سے امریکہ کی جی حضور میں لگا ہوا ہے اور اب ٹرمپ کے نردیش کو ٹھکرانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا۔ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو مانیتا نہیں دی، اوپر سے فلسطینی سمرتھک ہونا اس کے ڈی این اے میں شامل رہا ہے۔ اگر اس نے ٹرمپ کی اپیل کو مان لیا تو پاکستان کی راجنیتی اور کوٹ نیتی میں یہ سب سے بڑے بونڈر کی شروعات ہوگی۔ پاکستان پہلے ہی کئی مورچوں پر گھرا ہوا ہے۔ ایران یدھ کی وجہ سے اس کی ارتھ ویوستھا بری طرح چرمرا چکی ہے۔ خیبر سے لے کر بلوچستان تک اس کی فوج کو ہر دوسرے دن استھانیہ لوگوں کے ورودھ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب اگر اسرائیل کی طرف ذرا بھی نرم رخ اپنایا تو پاکستان میں ایک بڑا دھارمک ودروہ جنم لے سکتا ہے، اور اگر پاکستان نے ایسا نہ کیا تو ٹرمپ کی ناراضگی جھیلنی پڑ سکتی ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے ہی ابراہم ایکارڈز کا حصہ ہونے سے نہ صرف بچتا رہا بلکہ کھلے عام خلافت بھی کرتا رہا۔
1: مت کو کسی لیول کے اوپر اپروچ کیا گیا یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یا کسی اور جگہ سے؟
2: وی ہیو اے ویری کلیئر سٹینڈ کہ یہ چیز جو ہے ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور اب دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر جو ہے ہم واحد ملک ہیں جن کے اوپر جن میں انکلوڈ ہی نہیں ہے اسرائیل کا نام۔
3: اس کنٹروورسی کو بھی آپ کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ ابراہم اکارڈز کا پاکستان حصہ بننے جا رہا ہے، اس سب کے نتیجے میں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟
4: نہیں، ہم کسی اکارڈ کا حصہ نہیں بننے جا رہے۔ ہماری پالیسی جو ہے اپنی ویزا اسرائیل ریمینز ایز اٹ از، لیکن وی آر پارٹنر ان ایٹ کنٹریز تاکہ ہم وہاں خون جو بہ رہا ہے معصوم لوگوں کا، 64,000 بہ چکا ہے لوگوں کا، اس کو ہم روک۔
5: The spirit is that, you know, Abraham, being the common heritage and the common forefather of the three great revealed religions, including Judaism, so there is a certain context to that. Our position with respect to it is that there are certain benchmarks that have to be achieved for this purpose for Pakistan, and that is a viable contiguous state of Palestine with Al-Quds Al-Sharif, Jerusalem as its capital.
0: پاکستانی نہیں کئی عرب دیش بھی دوبدہ میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ اس سمجھوتے میں فلسطین کے مدے کو پوری طرح نظر انداز کیا گیا ہے، جبکہ عرب دیشوں کے لیے وہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ آج تک بیورو۔
6: اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل یہ ابراہم اکارڈز ہیں کیا جس کو لے کر پاکستان اس سمے اتنا گھبرا رہا ہے کہ اسے ہستاکشر کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا ہے ابراہم اکارڈز؟ امریکہ کی پہل پر شروع ہوا ایک ایسا سمجھوتا ہے جو اسرائیل کو مانیتا دینے کی بات کرتا ہے۔ جن دیشوں نے اس پر ہستاکشر کیے ہیں ان کے اسرائیل کے ساتھ راجنیک سمبندھ ستھاپت ہو گئے ہیں۔ تو امریکہ کی پہل پر یہ شروع ہوا اسلامک دیشوں کے ساتھ اسرائیل کے رشتوں کو پہلے ستھاپت کرنا، پھر مضبوط کرنا۔ फिर कारोबार हो, तकनीक और रक्षा में सहयोग हो, मध्य पूर्व में शांति बनाए रखना इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश इस पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं। ऐसे कुल मिलाकर 5 देश हैं जिन्होंने 2020 और 2025 के बीच इस पर हस्ताक्षर अब तक कर दिए हैं। लेकिन दबाव इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से सबसे ज्यादा सऊदी अरब और कतर पर है, क्योंकि वो जानते हैं ये इस्लामिक देशों के एक तरह से लीडर हैं। अगर ये साइन कर देंगे तो बाकी पिछलग्गू पाकिस्तान जैसे वो कर ही देंगे। क्या है अब्राहम अकॉर्ड? इसका ऐलान हुआ था 13 अगस्त 2020 को, शुरुआत हो गई थी 15 सितंबर 2020 को जब हस्ताक्षर शुरू हो गए थे अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर। अच्छा, इसके बारे में जो 13 अगस्त 2020 को जो इसका ऐलान हुआ वो ये था कि इस्लामिक देशों के बीच और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध सबसे पहले स्थापित हो जाएंगे। एक बार जब आप एक दूसरे के देश में अपने एम्बेसडर्स को तैनात कर देंगे तो उसके बाद आप एक दूसरे देशों को जानेंगे, वहां पर आपका व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा, एक दूसरे की आप मदद करेंगे, पर्यटन वहां पर बढ़ेगा, एक दूसरे के देश में आप आवाजाही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जैसा मैं आपको बता रहा था संयुक्त अरब अमीरात ने उस पर हस्ताक्षर किए 2020 में, और ठीक उसके बाद बहरीन ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए, कुछ महीनों बाद मोरक्को ने भी हस्ताक्षर कर दिए। कुल मिलाकर 5 देशों ने इस पर अब तक हस्ताक्षर किए हैं। 2021 में सूडान ने उस पर हस्ताक्षर किए और एक हद तक कजाकिस्तान ने पिछले वर्ष 2025 में कजाकिस्तान ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिया। हालांकि ये भी बात आपको बता दूं कि सूडान की औपचारिक प्रक्रिया अभी उनके देश में होनी बाकी है। तो 5 इस्लामिक देशों ने अब तक इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब दबाव यह है कि सऊदी अरब और कतर कर दे, उसके बाद तुर्की और पाकिस्तान कर दे। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दरअसल पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दोनों ही चीन की यात्रा पर है। वहां शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हुई, चीन के प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। अच्छा, बड़ी बातें क्या हुई? व्यापार, निवेश, उद्योग, कृषि, ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड पर। देखिए, दरअसल शांति दूत बन रहा पाकिस्तान जो है वो तेहरान के बाद अब वो चीन पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि वो चीन को भी नाराज नहीं करना चाहते। वो जानते हैं अब्राहम अकॉर्ड अगर सऊदी अरेबिया ने साइन कर दिया तो उनके पास बहाना मिल जाएगा, वो साइन कर देंगे। अगर सऊदी अरेबिया ने नहीं किया तो अमेरिका से नाराजगी हो जाएगी, अमेरिका की नाराजगी हो जाएगी, तब वो चीन के पाले में बैठना चाहते हैं। ट्रंप की बात मानी तो इसराइल को देनी पड़ेगी मान्यता, और ये मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 1947 से इसको नहीं शुरू किया या 1948 में नहीं किया तो ये कैसे 2026 में कर दे बिना अपने देश को मनाए। इसके लिए इसराइल को मान्यता दी तो अपने देश में समस्या हो जाएगी। शी जिनपिंग के साथ मिलके पाक के लीडर चीन की नाराजगी, वो कैसे वो अमेरिका की नाराजगी को झेलेंगे? तो चीन उनकी मदद करेगा, ये उनको उम्मीद है। इसीलिए वो दावे तो ये कर रहे हैं कि बातचीत हो रही है व्यापार पर, निवेश पर, उद्योग पर, कृषि पर, क्लीन एनर्जी पर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर, इन पर सहयोग करना है। लेकिन अंदर की बात क्या है कि ट्रंप की बात ना मानी तो अमेरिका की नाराजगी तय है और तब चीन के कदमों में एक बार फिर गिरेंगे और बोलेंगे माई बाप बचा। ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में भी पाकिस्तान को शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि अगर शामिल नहीं हुए देश तो वो समझ जाएंगे कि इनकी मंशा, इनकी नियत साफ नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन वो जेल में बैठे हैं और आरोप यही लग रहा है कि क्योंकि वो अमेरिका की बात नहीं मान रहे थे तो अमेरिका ने उन्हें जेल में डलवा दिया। आसिम मुनीर अमेरिका का गंदा काम कर रहे हैं, वो अमेरिका की डील करते हैं। इस बार पाकिस्तान ना माना तो अमेरिका के साथ रिश्तों पर असर पड़ेगा, और ये बात यूएस के जो सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम इस बात को कह भी चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को बुरा भला बोलना शुरू भी कर दिया है। अच्छा, अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो चीन की यात्रा पर हैं। यहां पर शी जिनपिंग के साथ उन्होंने मुलाकात की, चीन के प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी बातचीत हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई, व्यापार, वाणिज्य, निवेश, उद्योग, क्लीन एनर्जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, दोस्ती के कसीदे भी पढ़े गए, बड़े बड़े दावे भी किए गए। बाद में एक साझा बयान भी जारी किया गया, कहा यह गया कि पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम कसने की कोशिश करेगा। दरअसल पाकिस्तान अपने ही घर में स्थानीय लोगों के खिलाफ ऑपरेशंस कर रहा है और खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, वहां उसका जबरदस्त विरोध भी हो रहा है, जबरदस्त खिलाफत एक तरह से मूवमेंट चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। हाल ही में खबरें ऐसी भी आई कि चीन के लोगों की सुरक्षा पर भी वहां खतरा बढ़ गया है। तो अब बेचारा पाकिस्तान करे तो क्या करे, अपना घर नहीं संभाल रहा है, ना संभाल पा रहा है और चला है आतंकवाद को खत्म करने। ऊपर से उसकी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर अपना घर संभालने की जगह दुनिया को संभालने पर निकले, शांति दूत बन रहे हैं, तेहरान से लेकर बीजिंग के दौरे कर रहे हैं, लेकिन उड़ रहा है पाकिस्तान का मजाक, हर मोर्चे पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। आतंकवाद पर लगाम कसने का पाकिस्तान ने वादा किया, लेकिन यह दुनिया जानती है कि सबसे बड़ा आतंकवाद का समर्थक और उसको पाल पोस कर उसका निर्यात करने वाला देश पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म भी कहते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान के लिए समस्या अब बढ़ती जा रही है। अच्छा, इस बीच यह जानना भी जरूरी है कि इब्राहिम अकॉर्ड समझौते से इजराइल को क्या फायदा हुआ अब तक, और वो कौन कौन से इस्लामिक देश हैं जो अब इजराइल को मान्यता देते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश यह है कि 2023 के बाद जो हुआ उसके बाद अब मामला आगे सुलझता जाए। अब्राहम अकॉर्ड समझौते से पहले और अब्राहम अकॉर्ड समझौते के बाद की क्या स्थिति है। इजराइल जैसा आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा देश है, जॉर्डन मिस्र ये देश है जिनके साथ पहले ही इसराइल के संबंध सुधर चुके थे, उनके साथ अलग अलग अकॉर्ड्स हो चुके हैं तुर्की और अजरबैजान के साथ। हालांकि तुर्की के साथ अब एक बार फिर इसराइल के संबंध खराब हो रहे हैं, वो तो अर्दोहान की वजह से, रिसेप अर्दोहान के समय में ये रिश्ते बिगड़ रहे हैं। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड समझौते के बाद इसराइल के जो संबंध है, सबसे पहले 2020 में संयुक्त अरब अमीरात और फिर बहरीन, सबसे पहले इन दोनों ने हस्ताक्षर किए, फिर सूडान, हालांकि एक वहां पर अग्रीमेंट बचा है, मोरक्को और कजाकिस्तान, इनके साथ ये समझौते हो चुके हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद ये है कि अब बाकी देश भी अगर शामिल हो जाते हैं तो एक ऐतिहासिक नया मध्य पूर्व बनकर उभरेगा जहां शांति होगी और प्रगति होगी। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
7: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना, टंकी मतलब वेक्टर्स।
8: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
10: Step into the heart of the American zeitgeist with me, Billy Bush. My new show, Hot Mics, is now streaming on TuneIn. It's the radio talk show that's going to redefine what it means to be in the know. From sports and politics to entertainment, tech, pop culture, and everything in between. You'll hear from A-list stars, athletes, politicians, and more. No filter, no fluff, just the real talk. Because when the mic is hot, the conversations are even hotter. Live Mondays and Wednesdays at 5 p.m. Eastern, 2 Pacific. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening. Now.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
9: इस वक्त हम यरूशलम के उस इलाके में हैं जहां से तीन अलग अलग धर्मों के वो धार्मिक स्थान दिखाई देते हैं जिनके लिए पूरी दुनिया से लोग यहां पर आते हैं। इसका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि एक साथ आपको यहां पर एक गोल्डन डोम दिखाई देगा जो जुडाइज्म यानी कि ज्यूज के लिए रिलीजियस प्लेस है। डोम ऑफ रॉक इसके अंदर है, इसे टेम्पल माउंट भी कहा जाता है। और इसके अलावा यहां पर माउंट एलेक्सा यानी वो धार्मिक स्थल जिसे मक्का के बाद दूसरा सबसे अहम स्थल माना जाता है इस्लाम के लिहाज से, और तमाम चर्च भी यहां पर मौजूद हैं। तो जेरूशलम में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, इन तीनों का एक संगमागम देखने को मिलता है। और अगर हम इतिहास की बात करें, इस इलाके ने तमाम युद्ध देखे और आज भी पश्चिम एशिया युद्ध में इस पर इस पूरे युद्ध का असर साफ दिखाई दे रहा है। जेरूशलम में इस वक्त हम चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के बाहर हैं और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था, यानी क्रिश्चियनिटी के लिए बेहद अहम, बहुत महत्वपूर्ण ये जगह है। और यहां पर वेस्ट एशिया वॉर के दौरान कुछ मिसाइल्स के इम्पैक्ट देखने को मिले। मिसाइल्स जो ईरान की तरफ से आ रही थी उन्हें इंटरसेप्ट किया गया और उनके श्रैपनल्स इस इलाके में भी गिरे। और ये जो होली सेपल्कर है यहां पर भी उसका इम्पैक्ट दिखाई दिया। अगर हम इसराइल की बात करें तो तमाम नए बिल्डिंग्स में स्ट्रक्चर्स हैं जो शेल्टर्स हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि ये एंशंट सिटी है, ये जब बना था तब इस तरह के शेल्टर्स का कोई कल्चर नहीं था, यहां पर कोई भी शेल्टर नहीं है। लेकिन फिर भी जब ये मिसाइल्स का इम्पैक्ट यहां पर आया तो कोई हताहत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ। और लोगों का ये मानना है कि ये एक चमत्कार से कम नहीं था। और किसी भी धर्म की तरह यहां के लोगों की भी ये मान्यता है कि चर्च हो या फिर सिनेगॉग या फिर दूसरी इमारतें, मस्जिद, जहां पर भी इस तरह के इम्पैक्ट आए, लोगों को भगवान ने या उनके ईश्वर ने सुरक्षित रखा। कैमरा पर्सन सचिन चंडोक के साथ शिवानी शर्मा, इसराइल से।
13: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच, in association with
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी Sokudo,
13: Chogan Perfumes, the French edition for him and her, durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions,

घुसपैठ डेमोग्राफिक बदलाव पर केंद्र ने बनाई हाई लेवल कमिटी, रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर करेंगे अध्यक्षता। बंगाल सीएम बोले बांग्लादेशों को जल्दी जल्दी भगाओ। क्वाड समिट में सप्लाई चेन और वैश्विक चुनौतियों पर महामंथन। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, पूरा समूह एकजुट।

0: चौखट पर सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम राहुल गांधी ने दोनों से अलग अलग की बात। त्विशा केस की जांच में जुटी सीबीआई ने देखा क्राइम सीन। भोपाल में सास गिरवाला से हुई पूछताछ, मृतक के परिवार वालों से भी मुलाकात। राजस्थान में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, मामले में एक्शन। राज्य सरकार ने दवा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराने के दिए आदेश, नकली दवा की हुई पुष्टि।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश में बकरीद के पहले उठ रहे विवादों और हिंदू मुसलमान वाली सियासत पर होगा, क्योंकि एक तरफ लखनऊ के बलियाबाद में अचानक पासी समुदाय के राजा कंसा पासी के किले का विवाद बढ़ने लगा है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में बकरीद की कुर्बानी को लेकर फिर बखेड़ा खड़ा हो रहा है। वैसे बकरीद अभी दो दिन दूर है, लेकिन ठाणे की एक सोसाइटी में बकरों की कुर्बानी से पहले इंसानों में ब्लेडबाजी हो गई है। बीएचपी के 3 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। पूरी सोसाइटी में पुलिस का पहरा बैठाना पड़ा है। माहौल ऐसा बिगड़ा है कि पुलिस को फ्लैग मार्च भी करना पड़ा। विवाद यह था कि रिहायशी सोसाइटी के अंदर 3-4 दर्जन बकरे लाए गए थे और कुर्बानी के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया था। वहां रहने वाले हिंदू सुधी नागरिकों की यह अनुचित लगा और विरोध वहां पर जमकर शुरू हो गया। बात झड़प तक पहुंच गई, मारपीट हो गई तो मुकदमा भी हुआ। सोसाइटी के गेट पर धरना प्रदर्शन, नारे जयकारे शुरू हो गए। विरोध करने वाले वहां सुअर लेकर भी पहुंच गए, जिसे पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मौके से हटाया। फिर माहौल को शांत करने के लिए बकरों को सोसाइटी से निकाला जाने लगा, प्लेटफॉर्म भी तोड़ दिया गया। बकरीद पर बिना मंजूरी के कुर्बानी पर रोक लगी हुई। पुलिस ने कुर्बानी के लिए 3-4 जगह चिन्हित की हुई है, लेकिन अब इस पर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया कह रहे हैं कि एमआईएम जैसी पार्टी के लोग नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीजेपी के विधायक संजय उपाध्याय ने कहा है कि बकरे का जवाब सुअर से दिया जाए। समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बकरीद की कुर्बानी पर जो शोर मचा है, उस पे सियासत का कितना जोर है, इसी पर हम आज के दंगल में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखें।
3: मुल्क की आवाम आए दिन पेट्रोल डीजल सीएनजी की महंगाई से परेशान है, फिर भी कहीं रिहायशी सोसाइटी में बकरों की कुर्बानी पर बवाल है, तो कहीं किले में मजार के खिलाफ जय श्री राम का नारा। पहले इनका मामला समझिए। मलिहाबाद के कसमंडी में 11वीं सदी के राजा कंसा पासी के किले के बाहर जमा हुए ये भक्तगण बड़े मंगल की विशेष पूजा की चाहत लिए पहुंचे।
4: पूजा करेंगे, अब पूजा करेंगे, हमारा अधिकार है पूजा करना।
5: महाराज जी के किले पर जिस तरह नवाज प्रशासन द्वारा कराया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी उन सभी लोगों को बर्खास्त करें।
6: हिंदू होने के नाते मेरा धर्म है पूजा करना, पूजा के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी चाहिए।
3: ये खंडहर बरसों से खाली पड़े हैं और अब इनकी दरो दीवार गर्द में लिपटी तारीखों के दरारों में इबादत बस सियासत खोजती है। इस जिद का दौरे उसूल बस इतना कि किला हिंदू राजा पासी का तो मजार मुस्लिम सालार गाजी की यादों वाली कैसे हो सकती।
7: कंसा पासी का किला है, यहाँ नमाज नहीं पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, जाते थे मंदिर में तो एक डाक बाबा बने हुए थे।
8: ये हमारे दादाओं के जमानों से नमाज हो रही, जो अब वो लोग तो नहीं रहे, अब हम लोग हैं तो हम लोग नमाज पढ़ेंगे।
3: मौका है बकरीद करीब, अब तो माहौल भी मुफीद। मजार के मुकाबले सुंदरकांड पढ़ने का शगुफा ऐसा गर्म हुआ कि पहरे में संगीने तर गई, फिर ना तो पाठ हुआ न नमाज की इजाजत मिली। इस सियासत का मकसद व मंजिल और मौजू हासिल बस इतना कि जिस समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में अवधेश प्रसाद को पीडीए का चेहरा बनाया, उसी पासी समाज के लोग किले पर कब्जे और मजार पर नमाज के विरोध में उठ खड़े हुए।
9: बीजेपी जो है इस प्रदेश में किसी न किसी तरीके से इस प्रदेश में सामान्यता लड़ाई झगड़ा दंगा कराना चाहती है। यहाँ तक पासी सरकार बात किया है, पासी समाज ने हमेशा देश को बनाने का काम किया है, देश में आप दादी भाईचारा कायम करने का काम
3: करूँगा। मजहब की सियासत बनाम जात की बात करने वाले मानते हैं कि दरअसल इस नए विवाद की जमीन पर पासी वोट के गणित का फॉर्मूला सेट किया जा रहा है, क्योंकि दलित वोट का हिसाब उत्तर प्रदेश में देखें तो कुल दलित आबादी 21%, जाटव 11%, यूपी में पासी 3.5% की ताकत रखते हैं, कोरी 1%, धोबी 1%, खटिक, धनगर, बाल्मीकि और अन्य 4.5%। दलितों के भीतर जाटव की बात सबसे बड़ी तादाद पासी वोट की है, जिससे समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले पाले से खींच कर हिंदूवादी राजनीति के रंग में रंगने की कोशिश कंसा पासी के किले में हो रही है। और अब थाने के मीरा रोड में हुए इस बवाल की कहानी भी सुनिए। सोसाइटी के गेट पर नारेबाजी करते ये लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि यहाँ बकरे के नाम पर शुरू हुए झगड़े में ब्लेडबाजी हो गई। विवाद इतना बड़ा कि बकरीद की कुर्बानी के लिए सोसाइटी के अंदर बकरे लाए जाने लगे, कुर्बानी के लिए शेड बना दी गई। इसका विरोध हुआ तो झड़प हो गई, 3 हिंदू युवक जख्मी हुए, पुलिस को मुकदमा लिखना पड़ा, पहरेदारी बैठानी पड़ी।
10: 2-4 बकरे थे, अभी क्या है इन्होंने 50-60 बकरे ला दिए।
11: कुछ जिहादियों के द्वारा बजरंग दल पे चाकू से वार किया गया, वो हमारा मांग है उसको अरेस्ट किया जाए और बकरे को बाहर निकाला।
3: मामला बढ़ने लगा, भीड़ भी बढ़ी, पुलिस का तनाव, बीजेपी के नेता मौके पर आने लगे, आखिरकार सोसाइटी में से बकरों को बाहर निकाला जाने लगा।
12: अब आधे बकरे निकल गए, बाकी आधे शाम तक निकल जाएंगे, ये सोसाइटी में एक भी बकरे की कुर्बानी नहीं होगी।
3: इस सोसाइटी के बवाल से पुलिस

0: वैसे बकरीद पर कुर्बानी का विवाद पिछले कुछ वर्षों से अक्सर दिख रहा है। इस बार बंगाल से लेकर असम तक, यूपी से तेलंगाना तक बकरीद की कुर्बानी को लेकर राजनीति, पुलिस प्रशासन ने ज्यादातर जगहों पर सार्वजनिक कुर्बानी पर रोक लगा रखी। मुंबई से विद्या के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: तो एक तरफ सरकार कहती है कि ये सिविक इशू है, यानी नागरिक समस्या है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इसे धार्मिक अधिकार का मामला भी उठाने की कोशिश करती है। लेकिन आपने सुना कि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया कह रहे हैं कि सोसाइटी के भीतर वो कुर्बानी नहीं देने देंगे। मुस्लिम पक्ष का मानना है कि ये उनकी धार्मिक परंपरा है और वो उसे निभाने का उनको अधिकार है। लेकिन पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग राज्यों में बकरीद के पहले इस तरीके की घटनाएं आम होती जा रही है। इस पर ही हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या ये धार्मिक ध्रुवीकरण का, धार्मिक सियासत का मामला है या सिविक इशू है, इस पर भी चर्चा होना जरूरी है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, डॉक्टर एम एच खान समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर अपनी भूमिका रखेंगे, क्योंकि लखनऊ के भीतर भी कंसापासी के गढ़ के सामने, किले के सामने आज इसी तरीके का प्रदर्शन भी वहां पर किया गया। वहां पर एक मजार भी है और उसके सामने भी प्रदर्शन करने की कोशिश हुई। सैयद असीम वकार AIMIM के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट और उसके साथ साथ अमितोष पारिक नेशनल स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल मैं अपने पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ठाणे में मीरा रोड में भाईंदर में जहां पर यह मामला हुआ है, बकरीद से पहले सोसाइटी के अंदर कुर्बानी पर विवाद के पीछे क्या राजनीति है, क्या राजनीति है, इस पर भी चर्चा होगी। क्या अदालतों के निर्देशों, नगर निकायों के नियमों की अनदेखी करके कुर्बानी करना जायज है, इसीलिए मैंने सवाल उठाया कि क्या यह सिविक इशू है, क्या यह नागरिक समस्या है या कोई राजनीतिक समस्या के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है, क्योंकि बयानबाजी कुछ और हो रही है। तीसरा सवाल, क्या देश में हर त्योहार पर हिंदू मुसलमान वाली सियासत का खतरनाक ट्रेंड क्या शुरू हो चुका है, और यह ट्रेंड अगर शुरू हो गया है तो कब खत्म होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो ठाणे से आ रही है, क्योंकि ठाणे की सोसाइटी के अंदर जो बकरे की कुर्बानी का विवाद अब सुलझा लिया गया है, यह बड़ी खबर है। मीरा रोड की सोसाइटी में आ रही है, क्योंकि पुलिस के जो DCP है महाराष्ट्र पुलिस के, उनका यह दावा है कि सोसाइटी के अंदर कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को हटाया जा रहा है और सोसाइटी के रहने वाले लोगों के बीच सहमति बन गई है कि यहां बकरीद के दिन कुर्बानी नहीं होगी, यानी सार्वजनिक कुर्बानी यहां पर नहीं दी जाएगी। यह बात यहां पर साफ कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से विवाद रहा, और ये विवाद सिर्फ ठाणे में नहीं है, उत्तर प्रदेश में इसी तरीके के आदेश दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल के भीतर ईद की छुट्टियां सुर्खियों में, वहां पर एक दिन की छुट्टी कर दी गई है, असम में मस्जिद कमेटियों का फैसला हो गया है कि कुर्बानी किस तरीके से होगी, उन्हें खुद से ही फैसला लेना पड़ा, और दिल्ली सरकार ने भी गाइडलाइंस वहां पर इश्यू किए, और इसी के चलते यहां पर अब ठाणे की सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी नहीं होगी, ये भी बात साफ यहां पर कर दी गई है। DCP ने क्या कहा है वो जरा एक बार सुन ले।
2: के रहवासी इसका विरोध कर रहे थे और सोसाइटी के रहवासी जब विरोध कर रहे थे तो कुछ लोगों पर, जो सोसाइटी जो लोग विरोध कर रहे थे उन पर धारदार किसी हथियार से या ब्लेड से हमला किया गया, कुछ लोगों को चोटें आई और उसके बाद स्थिति बहुत ही बिगड़ गई। हिंदू संगठन यहाँ पर भारी मात्रा में पहुँचे, हिंदू संगठन से जुड़े लोग, VHP बजरंग दल से जुड़े लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि डिमांड यही है कि बकरे जो रखे गए हैं, और कहा जा रहा है कि 25 से 30 बकरे रखे गए हैं, आइए हम DCP साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी जो सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा
3: बात कर लेता हूँ,
2: बस सर सिचुएशन के बारे में जानना था, अभी क्या सिचुएशन?
3: कुछ इशू नहीं, यहाँ पे जो सोसाइटी का इंटरनली डिसाइड हो गया है कि वो बकरे शिफ्ट करेंगे, तो अभी उनका प्रोसेस चालू है, वो शिफ्ट हो जाएगी, दोनों जो भी ग्रुप्स है सोसाइटी में उनके बीच में, सबके बीच में कंसेंसस है।
2: ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, आप देख सकते हैं कि सोसाइटी ने आपस में डिसाइड।
1: तो प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर तो विवाद अब सुलझता नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये विवाद को रूप दिया गया, आपके नेता वहां पर कह रहे थे कि नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश है, ऐसा क्यों होता है कि हर बार बकरीद के पहले इतनी बड़ी संख्या में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है और बार बार वहां पर जाके जय श्री राम के नारे लगाने पड़ते हैं, ये क्या मामला है?
4: नहीं, बकरीद के समय आप सोसाइटीज में जहां पर बकरीद बकरा नहीं काटना चाहिए वहां बकरा काटने की जिद क्यों होती है? जब जो है गायों को जो है बलि देना प्रतिबंधित है तो आप गाय काटने की जिद क्यों?

0: करते हैं मुसलमान समाज के लोग। मैं तो भी वर्षों से देख रहा हूँ विविध स्थानों पर, महाराष्ट्र में गौ हत्या प्रतिबंध जो है लंबे समय से है, वहां पर गाय काटने की ये जीत क्यों? उत्तर प्रदेश में तो दशकों से गौ हत्या प्रतिबंधित, वहां पर गाय काटने की जीत क्यों? बंगाल में गाय काटने की जीत क्यों? सोसाइटी के भीतर जहां परमिशन नहीं है, सऊदी अरेबिया और यूएई में भी अगर सड़क पर कोई बकरा काटता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो वहां क्या विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए हैं क्या? यूएई में क्या भारतीय जनता पार्टी का राज है क्या? तो आप गैर कानूनी काम करते ही क्यों हैं? सवाल ये पैदा होता है, आपको किसी भी स्थान पर शांति से रहने में समस्या क्या है? तो आपको अगर अशांति आप फैलाएंगे, आप जो वहां की स्थानीय स्वायत्त निकाय के जो नियम है उनका उल्लंघन करने पर आमादा होंगे, तो सोसाइटीज की तरफ से विरोध नहीं होना चाहिए। आप सोसाइटी में जहां पर मुसलमान भी रह रहा है, हिंदू भी रह रहा है, वहां पर कुछ मुसलमान बकरे लेकर आए और काटने लगे और हिंदू उसका विरोध कर दे तो अपराध है ये। इसको आज तक अपराध की दृष्टि से देखेगा तब तो गजब हो जाएगा।
1: तो आपको कुर्बानी से कोई परहेज नहीं है? कुर्बानी कर सकते हैं,
0: प्रारंभ कर देंगे।
1: कुर्बानी से परहेज नहीं है आपको? परहेज इस बात से है कि अगर जहां के स्थानीय निकाय के जो नियम है उसका उल्लंघन होगा तो आपको परहेज है, यही बात है ना आपकी?
0: नियत स्थान, हाँ निश्चित तौर पर जहां नियत स्थान है वहां कीजिए ना कुर्बानी। भाई हिंदुओं में भी एक बड़ा समाज है जो मांसाहार करता है, लेकिन अपने घर के नीचे ही मांस काटने लगेगा क्या? नहीं काटता ना वो। हिंदुओं के समाज में बड़ा वर्ग जो है वह भी मांसाहारी है, लेकिन वो जो है अपनी सोसाइटी में मांस काटने की जिद तो नहीं कर रहा है ना, तो ये क्यों जिद कर रहे हैं? क्या कारण है? आप जो नियत स्थान
1: तो इसीलिए वहां पर सुअर लाया जाएगा,
0: वहां बकरे को जिबा कीजिए,
1: वहां पर सुअर इसीलिए लाया जाएगा। नहीं बात ठीक है, लेकिन इसीलिए सुअर लाया जाएगा वहां पर?
0: नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा प्रश्न।
1: अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा है तो वहां का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सुनिए तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पर बीजेपी रूल करती है, लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास है, सरकार बीजेपी की है, उसके बावजूद भी अगर ऐसा होता है तो वहां पर सुअर लाया जाएगा? किरीट सोमैया वहां पर सुअर लेकर पहुंच जाएंगे, पुलिस को सुअर लेकर हटाना पड़ेगा वहां पर?
0: नहीं, अगर वहां पर, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि क्या है जब इनके यहां बकरा काटने की अगर परंपरा है तो हमारे खटिक और पासी समुदाय की सुअर की बलि देने की परंपरा भी है। आप काटिए बकरा, वहां काटेंगे सुअर, तो बकरा काटने की अगर अनुमति है तो सुअर काटने की भी अनुमति होगी।
1: मैं
0: तो सुअर देख के भागी।
1: मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूं,
0: क्योंकि हमारे यहां भी
1: पासी और खटिक सुअर लाया गया था,
0: सुअर काटने की बलि की परंपरा
1: वहां पर जो सुअर लाया गया था उसमें यह कहा गया था कि सुअर हम वराह पूजा करना चाहते हैं। वराह पूजा होती है सितंबर में, भाद्रपद महीने में होती है, हम पूजा करने के लिए सुअर को लेके आइए कहा गया था। अभी आप काटने की बात कर रहे हैं तो एक बात फिक्स करिए ना कि काटना है कि पूजा करनी है।
0: परंपरा है हमारा,
1: नहीं जो लाया गया था सुअर वो पूजा करने के लिए लाया गया था
0: भी है हमारा खटिक, वो पूजा पूजन का भी परंपरा है, हमारे पूजन की भी परंपरा, बलि की भी परंपरा
1: काटी है ना।
0: हिंदू समुदाय में खटिक समुदाय जो है वो सुअर की बलि की परंपरा भी है।
1: सवाल तो ये भी उठेगा ना, आप सत्ताधारी पार्टी है, वहां पर पुलिस प्रशासन शांति करने की कोशिश कर रही है, शांति बहाली की कोशिश कर रही है, वहां पर आप सत्ताधारी पार्टी सुअर लेके पहुंच जा रही है। आपके आपके विधायक वहां पर कहते कि हम सुअर लेके चले जाएंगे, नहीं आपको
0: अपराध हो गया,
1: भरोसा नहीं है उनका, भरोसा नहीं है।
0: नहीं उनको बकरा, वो बकरा लेके जा सकते, ये सुअर लेके नहीं जा सकते। बकरा लेना मुसलमान जो है उसको अपराध करने का अधिकार है और प्रत्युत्तर देने का अधिकार हिंदू को नहीं है, हिंदुस्तान में ही रह रहे ना साहिल।
1: तो बकरा ले जाना कोई अपराध नहीं है
0: के कारण आपको
1: अगर वहां के सिविक जो नियम लगा के रखे हुए हैं,
0: सुअर ले जाना,
1: अगर उन नियमों का उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई होगी ना। बकरा ले जाना कोई अपराध नहीं है, पुलिस है, पुलिस काम कर रही है, पुलिस को सुअर लेके भागना पड़ रहा है,
0: सुअर पर भी कार्रवाई होगी।
1: महाराष्ट्र में जहां पर बीजेपी की सरकार है पुलिस को सुअर हाथ में लेके भागना पड़ रहा है शुक्ला जी।
0: हाँ तो बकरा और सुअर दोनों समान है, अगर बकरा काट की पूजा की जा सकती है, बलि चढ़ाई जा सकती है, तो सुअर की पूजा और बलि भी जो है स्वाभाविक तौर पर हो सकती है।
1: सैयद असीम
0: बकर जाने इतनी आपत्ति क्या है?
1: प्रेम शुक्ला जी इस बात को
0: बकरा क्यों ले आए आप?
1: धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो किसी भी कानून व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका बेसिकली कहने की ये कोशिश है कि जहां पर नियम लगा के रखे हुए हैं कि आप पब्लिकली इस तरीके से कुर्बानी नहीं दे सकते, सार्वजनिक तौर पर कुछ जगह है वहां पर फिक्स की गई है, जैसे मुंबई में 109 जगह है कि जहां पर आप कुर्बानी कर सकते हैं, जहां पर यह घटना हुई वहां पर 4 से 5 जगह ऐसी है। फिर भी रिहायशी इलाके में इस तरीके से प्लेटफॉर्म बनाकर पब्लिकली 40-50 बकरों की कुर्बानी, इसी को लेकर तो आक्षेप हुआ है ना। तो आपको लगता है कि यह धार्मिक मामला है या सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है या सिविक इश्यू है?
2: नहीं नहीं, देखिए हमारे मानने न मानने से कुछ नहीं होता है। ये कौन सा मामला है इसको आप भी बेहतर जानते हैं। रही बात कुर्बानी की, तो इधर मैं देख रहा हूं इधर 6-7 साल से बकरीद से पहले इस्लाम धर्म में हर फिरके के मौलाना इस बात का ऐलान करते हैं बेचारे 2 दिन पहले 3 दिन पहले कि सार्वजनिक स्थानों पे कुर्बानी मत कीजिए, ऐसी जगहों पे मत कीजिए जिससे किसी दूसरे धर्म या वर्ग के को आहत होना पड़े या उनको तकलीफ हो या उनको दुख हो। ये मौलाना ऐलान कर रहे हैं, हकीकत है ये ऐलान होता है, हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ खालिद रशीद साहब हैं लखनऊ में, वो ऐलान करते हैं कि किसी दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए आपके इस अरकान से, कुर्बानी से। लेकिन मसला सर ये है कि सारी पशुओं की मोहब्बत बकरीद पे क्यों आती है? क्या मुर्गे को पशु नहीं माना जाता है या उसमें जान नहीं होती है, या सुअर लेके पहुंचे जा रहे काटने के लिए? सर ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये 22 लाख जो बच्चे पेपर नहीं दे पाए, कोई आत्महत्या के ले रहा है, उस पर तो सड़क पर उतरते नहीं है। इंसान के बच्चे अपनी खुदकुशी किए ले रहे हैं सरकार की गलती से, उस पर तो बीजेपी के लोग चुपचाप बैठे हुए शांति बनाए हुए। महंगाई कहां से कहां पहुंचे जा रही है, अपराध इतना बढ़ रहा है कि कहीं किसी लड़कियों को मारा जा रहा है, कहीं बच्चों को मारा जा रहा है, कहीं स्मगलिंग मानो
1: तो आपका कहने का मतलब यह है, आपका कहने का मतलब यह है कि यहां पर जिस, मैं सुनिए तो ये कहने, देखिए अब जैसे ये सोसाइटी का मामला है, यहां पर 40-50 बकरे लाए गए थे, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था सोसाइटी के भीतर, रिहायशी सोसाइटी है, वहां पर रहने वाले लोगों ने कहा कि भाई यहां पर मत करिएगा, ये अलाउड नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है आपके पास, ये कानूनन अलाउड नहीं है। उसके बावजूद भी वहां पर करने की कोशिश हुई, उसके बाद मामला भड़का, मौका मिल गया सियासत करने का। कहीं ना कहीं इसको भी तो रोकने की जरूरत है कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं है कि इसको रोकना चाहिए?
2: एक मिनट, नहीं नहीं बात को सुनिए पहले आप। मसला यह है कि अभी गाय पर इतना बोल रहे थे, मुसलमानों में गाय की कुर्बानी उर्बानी कोई नहीं करता है, खाली कहने की बात है, जहां करता है वहां दिखता है, जहां कुर्बानी होती है वहां दिखती है। बंगाल में अभी आपने देखा कितना बड़ा बवाल शुरू हो गया, अब गाय पाल कौन रहा है, गाय पाल कर बेच कौन रहा है? कुर्बानी करने के लिए तो आखिर में पहुंची ना, पहले बछड़ा लिया गया, बछड़े को पाल के बड़ा किया गया, बड़ा करके गाड़ियों में लाद के आप बाजार में लेकर आए।
1: बीजेपी के नेता कह रहे हैं, सोमैया कह रहे हैं कि आप लोगों ने किया है, AIMIM ने इस बात को किया हुआ है, जरा उनकी उनकी रिएक्शन सुना दीजिएगा। वो उनको तो हर जगह पाकिस्तान दिखाई देता है, तो वो कह रहे हैं कि जो नया नगर का इलाका है जहां पर ये मामला घटा है पूरा,
2: क्या क्रीड सोमैया? सर सर सर बात को सुनिए, इतनी उम्र का आदमी अपने को नेता कहता है, आज टिका कहां पर है? बकरे और मुर्गे और सुअर पर, ये उसकी राजनीति है? इतने बड़े अगर नेता होते तो विश्व स्तर की बात कर रहे होते, इतने ही बड़े अगर अकलमंद होते तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देश को आगे लेके जाया जाए उस पर बात कर रहे होते। आप किसकी नाम ले रहे जो सुअर की राजनीति कर रहा है इतनी उम्र आने के बाद, उसको आप नेता बता रहे? नेता है वो स्वर्ग की राजनीति कर रहा बैठकर, उसको आप नेता कह दे रहे हैं? सर क्या कमाल कर दिया था
1: उन्होंने, क्या कहा? जरा विधायक है वहां के, यहां बैठे उपाध्याय बुरुली के विधायक है वहां पर, उनका ये कहना है कि अगर बकरा निकलेगा तो सुअर भी निकलेगा। अब मुझे ये जो कंपैरिजन है वो नहीं समझ में आया है, लेकिन मैं अमितोष पारिक जी से भी पूछूंगा कि ये बकरा और सुअर एक साथ क्यों आता है भाई? बकरे की कुर्बानी की जाती है, इसीलिए तो बकरी ईद कहा जाता है उसे। संजय उपाध्याय ने कहा, क्या कहा वो जरा एक बार सुन लेते हैं।
3: बोरीवली के सुमेर नगर में एक ही परिवार रहता है, उसके बावजूद छह छह बकरे लाकर उसने रखे हैं, पूरी सोसाइटी विरोध में है। मैं इशारा देना चाहता हूं और मैं पुलिस और महानगर पालिका को कहता हूं, जो आपको आदेश प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से हाउसिंग सोसाइटी में इस प्रकार की कत्ल की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। देश के संविधान में आस्था रखने वाले अल्पसंख्यक समुदाय ने देश के कानून को मानना चाहिए, लेकिन बार बार वो ये दिखाते हैं कि उनकी आस्था इस देश के संविधान में, इस देश के कानून व्यवस्था में नहीं है। वो शरिया को ही मानते हैं और इसके लिए अगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो फिर बकरी का जवाब सुअर से दिया जाएगा।
4: इलीगल कुर्बानी होना ही नहीं चाहिए, मना है, इलीगल कुर्बानी नहीं करना है, परंतु जहाँ जो सोसाइटीज है वहाँ पर साइड में कहीं भी एक पर्दा लगा करके कुर्बानी का परमिशन दिया जाता है, उन लोगों को परमिशन देना चाहिए। सरकार को ये करना चाहिए और वादा किया मुख्यमंत्री जी ने, उस दिन मीटिंग भी हुई थी, कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, सब मिलजुल के देश में रहना चाहिए, हर धर्म के लोगों को अपना त्यौहार मनाना चाहिए। सरकार को थोड़ा इस पर नजर डाल करके जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनके साथ एक्शन लेना चाहिए।
1: डॉक्टर एम एच खान, आपने सुना संजय उपाध्याय कह रहे हैं कि बकरा निकलेगा तो सुअर भी निकाला जाएगा।
5: साहिल जी, आप जो बात कह रहे थे वही मुझे समझ में आ रही है। अरे भाई, कुर्बानी होती है तो कुर्बानी का गोश्त लोग खाते हैं, तो आप क्या सुअर ले आके वहाँ कुर्बानी करके आप उसका गोश्त खाएंगे? ये सब चीज़ें बहकावे वाली बातें हैं साहब। क्यों बीजेपी के सरकार शासन में ही ऐसी बातें होती हैं? जितनी बातें हो रही हैं बीजेपी के शासन में हो रही हैं, बीजेपी का जहाँ शासन नहीं हमारे सब बातें नहीं हो रही हैं। आप महंगाई को भूल जाएंगे क्या? आप नीट की परीक्षा को भूल जाएंगे क्या? आप डीजल पेट्रोल के दाम को भूल जाएंगे क्या? आपने किसानों के लिए भी कोई कसर छोड़ी है क्या? किसान को कहते हैं जैविक खेती करिए, जैविक खेती कहाँ से करेगा? वो चलाता है ट्रैक्टर, वो चलाता है थ्रेसर, वो चलाता है पंप, इसके लिए डीजल जरूरत होती है। डीजल कौन देगा किसानों को? किसान अगर नहीं चलाएगा ट्रैक्टर, रोज आप तेल के दाम बढ़ा रहे हैं, इसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ डाइवर्जन है, पीडीए के फार्मूले से ये पूरा हिंदुस्तान घबराए हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है उससे घबराए हुए हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मैं उसके इसको उसके विरोध में नहीं हूं, मैं उसके पक्ष में हूं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने हिसाब से संविधान के अनुसार अपने त्यौहार को मनाने का हक है और होना चाहिए सबको। अब देखिए, यहाँ आप गोरखपुर की बात कर लीजिए, गोरखपुर में तरकुलहा देवी हैं, तरकुलहा देवी के स्थान पर हर साल मेला लगता है और वहाँ बलि किस चीज़ की चढ़ाई जाती है? वहाँ बलि चढ़ाई जाती है बकरे की। तो बकरे की बलि चढ़ा करके खुलेआम मैदान में बकरी बलि चढ़ाई जाती है और लोग उसका प्रसाद खाते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या कहा जा रहा है कि 14 साल के ऊपर का ही जानवर कुर्बानी हो सकती है। तो क्या बकरा 14 साल का होता है? बकरा 14 साल का नहीं होता है, उसकी कुल उम्र होती है 10 से 12 साल, और 14 साल के ऊपर किसकी उम्र होती है? गाय, बछड़ा, भैंस, गाय सबकी होती है।
1: लेकिन तो ये नियम तो दूध देने वाले पशुओं के लिए है ना एमएच खान जी? मुद्दा यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बीजेपी ये सवाल उठाने की कोशिश करी कि जो नियम बनाए हुए हैं, जैसे ये सोसाइटी का मामला है, नियम बनाया हुआ है, वहां के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया हुआ है, म्यूनिसिपालिटी ने बताया हुआ है कि आप इस तरीके से पब्लिकली नहीं कर सकते। उसका जब विरोध हुआ, तब हमला हुआ, उसके बाद वहां पर बीजेपी वीएचपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और सुअर लेके वहां पर आंदोलन करना शुरू कर दिया, जय श्री राम के नारे लगना शुरू हो गया।
5: नहीं नहीं, वो
1: मामला तो लॉ एंड ऑर्डर का था, मामला तो सिविक इश्यू था।
5: नहीं नहीं, मैं कह तो रहा हूं वो ठीक बात है, नहीं करना चाहिए था। जहां जहां अलाउ किया है शासन ने वही करना चाहिए। और हम अभी देखिए बात कर रहे हैं, हमारे सारे धर्म गुरु कह रहे हैं कि आप कुर्बानी जो है ऐसे जगह पर करिए, साफ सफाई रखिए, जहां पर किसी को।
1: शांतनु गुप्ता, एमएच खान एक और एक मुद्दा यहां पर उपस्थित करना चाह रहे थे, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी शासित जो राज्य है वहीं पर इस तरीके की तस्वीरें दिखाई देती है, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जो नॉन बीजेपी शासित राज्य है वहां पर तो इस तरीके से कोई बवाल नहीं दिखाई देता।
6: मेरे ख्याल से एम एच खान जी कहना चाह रहे हैं कि जहां बीजेपी शासित है वहीं कानून का कड़ाई से पालन हो रहा है, बाकी जगह आंख मुंदी जा रही है अपने वोट बैंक के लिए, अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से डिबेट का कोई पॉइंट बचा नहीं, क्योंकि सबने मान लिया है कि डेजिग्नेटेड स्थानों पर आपने साहिल भाई खुद बताया 109 जो डेजिग्नेटेड स्थान है उस पर ही कुर्बानी होनी चाहिए, अपार्टमेंट में आके, सोसाइटी में आके, किसी के घर के पीछे कुर्बानी अनडेजिग्नेटेड स्पेस पर नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सबने मान लिया, तो मेरे ख्याल से डिबेट का पॉइंट रह नहीं गया है। मतलब ये हर बार क्यों होता है कि मुस्लिम समाज को हर चीज इलीगली करनी है, नमाज सड़क पे पढ़नी है, वक्फ की जमीन है आपके पास, करिए ना, आपके पास इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन, 48 लाख एकड़ जमीन पूरे पूरे पूरे देश में है, वहां पे जाया करिए, नमाज सड़कों में पढ़नी है, सोसाइटियों में लाके बकरे काटने क्यों करना है, केवल ये मैं बार बार कहता हूं इस बात को, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए करना है केवल, क्योंकि डेजिग्नेटेड स्थान है वहां पे जाया करिए, किसने कहा आपको, आपको कानून व्यवस्था भी देगा, वहां पे पुलिस भी होगी उन जगहों पे, बिल्कुल आराम से आप त्यौहार मनाइए, लेकिन त्यौहार हिंदुओं को चिढ़ाने का माध्यम ना बनाइए। अगर त्यौहारों का आप हिंदुओं को चिढ़ाने का माध्यम बनाएंगे तो सरकारें जहां पे भाजपा की होंगी, जहां पे भी राष्ट्रवादी सरकारें होंगी, वो आपको ऐसा करने से रोकेंगी।
1: ये है हिंदुओं को चिढ़ाने का मुद्दा कैसे, आप जरा एक्सप्लेन करिए मुझे शांतनु जी, कि हिंदुओं को चिढ़ाने का मामला कैसे हो जाता है, अगर बकरी पर बकरी उसपे हिंदुओं को चिढ़ाने का मुद्दा कहां से हो जाता है?
6: बिल्कुल आप जी,
1: ये तो कानून का मुद्दा हो गया ना, ये तो सरकार के रूल को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं उसका मुद्दा हो गया, जो नियम है उसको लागू करने का मुद्दा हो गया, सरकार की मशीनरी वहां पर जाकर नियम लागू करेगी उसमें, इस पे हिंदुओं को चिढ़ाने का मुद्दा कहां से हो गया, वो एक्सप्लेन करिए, उसके बाद असीफ वकार उसका जवाब देंगे।
6: हिंदू समाज में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो वेजिटेरियन है, जो मांस मच्छी नहीं देखता है, उसको कटता हुआ देखना उसके लिए बड़ा एक बड़ा बड़ा अशम्य सा दृश्य होता है, वो नहीं चाहता कि सामने देखे, वो उन दुकानों के सामने से नहीं गुजरता। ऐसे लोग होते हैं जहां पे नॉनवेज की मार्केट होती है, वो उसका रास्ता बदल के जाते हैं, तो अपने सामने नहीं देखना चाहता अपनी सोसाइटी में, इसीलिए कानून के नियम भी बनाए गए, कोई दंगा फसाद होगा इसलिए। तो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप जाके आप किसी का साइकोलॉजी टेस्ट करिए, इन लोगों का इनका मतलब ही वही है, ये बोलते हैं जाके सड़कों पे कि इनकी जो नमाजें सड़कों पे पढ़ी जाती हैं, इनके पास मस्जिदों में जगह होती है, शिफ्ट में पढ़ सकते हैं, केवल शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए कि वो 20 मिनट 15 मिनट के लिए पुलिस हटा
1: दो। कुल मिलाकर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सार्वजनिक तौर पर जो भी त्योहार मनाए जाते हैं वो उस धर्म की स्ट्रेंथ दिखाने के लिए त्योहार मनाए जाते हैं, वो धार्मिक रूप से नहीं मनाए जाते, यही कहने का मतलब है ना आपका?
6: मैंने आपको दो खास एग्जांपल दिए,
1: सार्वजनिक तौर पर कई त्योहार मनाए जाते हैं, सिर्फ किसी एक धर्म पर नहीं मनाए जाते हैं।
6: ना ना ना, आपके धर्म से इतर हटके, आपके धर्म में खुद ही हमें एम एच खान जी ने कहा कि जहाँ पे हाइजीन हो, दूसरे को तंग ना करके, ऐसा ही मस्जिद के लिए कहा जाता है।
1: आपने बहुत सारे मुद्दों पर बात की है, जरा मुझे इसका जवाब दीजिए ना, आप बोल रहे हैं कि स्ट्रेंथ, शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए इस तरीके से किए जाते हैं, तो कई धर्मों के त्योहार है जो सड़क पर बनाए जाते हैं, मैदान पर मनाए जाते हैं, बड़े बड़े आंदोलन आयोजन कराए जाते हैं, तो वो शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए होते हैं कि धार्मिक धार्मिक सद्भावना के लिए होते हैं, या धार्मिक रूप से अपने आप को सामने रखने के लिए होते हैं, किस वजह से होते हैं?
6: भाई आप अपने प्रश्न इतना खुश हो जाते हैं कि उसे ही चार बार बोल दिया, मुझे उत्तर तो सुन लीजिए मेरे, अपने प्रश्न में इतना मत खुश हो जाइए, मैं उसको उत्तर देने तो दीजिए मुझे, मैं 3 बार उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने प्रश्न को पुनः दोहरा दे रहे, मैं वही बता रहा हूँ।
1: आप कहीं और चले गए, इसके लिए मुझे
6: मैं वहीं आ रहा था, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी बस 10 सेकंड की, वहीं आ रहा था बिल्कुल, एक बार भूमिका बतानी पड़ती है। देखिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो आंसर भी इंपॉर्टेंट होगा, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी त्यौहार शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होता, जहां पे आप अपने धर्म कायदे कानून से खिलाफ हट के सड़कों पे आते हैं, ना तो उनका धर्म कहता है कि सड़कों पे काटो, ना तो उनका धर्म कहता है कि सड़कों में नमाज पढ़ो, और ना कानून कहता है, आप अपने धर्म से कानून से हटके केवल सड़कों पर इसलिए आते हैं हिंदुओं को चढ़ाने के लिए, शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, ये मेरा उत्तर है।
1: ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तब यह मामला शो ऑफ स्ट्रेंथ का हो सकता है।
6: उनके धर्म का भी उल्लंघन कर रहे हैं, उनके धर्म में भी नहीं लिखा है कि सड़कों में नमाज पढ़े, उनके धर्म में भी नहीं लिखा है कि सड़कों पे काटे, धर्म का भी उल्लंघन कर रहे हैं।
1: किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि सड़क पर उतरकर आप अपना त्योहार मनाइए, लेकिन आपको भी पता है कि
6: सड़कों पे होती है यात्रा,
1: भारत में नहीं तो पूरे दुनिया भर में त्योहार मनाए जाते हैं इस तरीके से,
6: कांवर यात्रा में तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना ही
1: पड़ेगा। मतलब किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि सड़क पर उतरकर त्योहार मनाइए, असीम बकाल जवाब देना चाहते ठीक है असीम बकाल जी।
2: नहीं देखिए बात समझिएगा, यहां जो नफरत का मामला है वो सबसे ज्यादा वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज की तरफ से सभी जातियों धर्मों के खिलाफ फैलाया जाता है। इसको मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं यहां बैठकर शांतनु को गुप्ता जी पढ़ रहा हूं, इसलिए इसी देश में जब मुसलमान नहीं थे तो दलितों को आगे हांडी और पीछे झाड़ू बंधवा दी जाती थी, किस बात की सजा देते थे आप उनको? इसी देश में जब सड़क पर दलित चलते थे तो पीछे से सड़क धुलवाई जाती थी, वो कौन सी कुर्बानी बिचारे कर रहे थे?
1: नहीं, लेकिन
2: इसी धर्म में
1: वो ये कह रहे हैं
2: दलितों की
1: जानबूझकर कानून और नियम होते हुए भी मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरकर नमाज करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ कुर्बानी भी इसी तरीके से करते हैं, जबकि नियम क्लियर है एकदम, जानबूझकर ताकत दिखाने के लिए।
2: सर
1: ये कहने का मतलब है उनका, उसका जवाब दीजिए, आप उस पर कुछ कहना चाह रहे थे।
2: जोशी जी बात तो नहीं, मैं आपके हिसाब से जवाब थोड़ा दूंगा, जो मुझे आता है, जो मुझे मालूम है, वो सब।
1: अरे उन्होंने जो बोला है उस पर मैं पूछ रहा हूं,
2: आप बता रहे हैं मुसलमान,
1: मेरे हिसाब से मत जवाब दीजिए,
2: सुन तो लीजिए सर। यहां तो आप बता रहे हैं कि मुसलमान नियम तोड़ रहे हैं। एक दौर ऐसा था कि दलित स्त्रियां अपने वच नहीं ढक सकती थी, वो कौन सा नियम तोड़ रही थी कि वच ढकेंगी तो टैक्स देना पड़ेगा, कौन सा नियम तोड़ रही थी वो?
1: देखिए आप
2: जिन पर आपने
1: आप
2: नियम
1: इतिहास पे जाएंगे तो बहुत सारी खुदाई होगी,
2: जवाब नहीं सर आपके पास,
1: जाएंगे तो बहुत सारी खुदाई होगी। आज की स्थिति में
2: करिए ना खुदाई, मैं तो जा रहा हूं खुदाई करिए। अगर आप में हिम्मत है जोशी जी तो बोलिए।
1: अमितोष पारिक, अमितोष पारिक
7: मैं काउंटर करना चाह रहा हूँ,
1: एक एक देखिए, अमितोष पारिक बोलेंगे उसके बाद आपके पास आऊंगा मैं। अमितोष
7: धन्यवाद, धन्यवाद साहिल भाई, मुझे लगा था मैं इन सबको सुन के ही चला जाऊंगा, कुछ बोलने का मौका आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि डिबेट थी कुर्बानी पे,
1: बोलिए,
7: डिबेट थी कुर्बानी पे, डिबेट थी कुर्बानी के वायलेंस का या फिर किस तरह से
0: किया गया, इसका उत्तर देने दें।
7: मैं एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, मैं मेरी बात रख लेता हूँ। लेकिन असीम वकार को समाजवादी पार्टी को इतना इंटरेस्ट आता है कि वो पीडीए की और हिंदू समाज को बांटने की डिबेट लिया है। मुझे बताइए कि असीम वकार इसमें दलित और हिंदू और ब्राह्मण समाज लिया है और वो पीडीए पार्टी के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, जो कि काउ स्मगलर्स को टिकट देके चुनाव लड़ाते ब्लॉक का, जो कि वहां 34 केसेस किसी काउ स्मगलर पे होते हैं, इलीगल काउ स्लॉटर में पाया जाता है, उसको वहां पे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। वो समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करती है, दलित दिवाली की बात करती है, जहां कुंभ में उनको गरीबी नहीं दिखती, वो एमआईएम जो बिना मैनिफेस्टो के चुनाव लड़ती है, जिनके पार्टी के लोग कहते हैं कि जगह नहीं छोड़ेंगे, जो कुछ दिनों पहले दलित पे अत्याचार करने वाले लोगों पे चुप हो जाते हैं, जो टीसीएस नासिक में दलित बहन जाती तब अपने मुंह से शब्द निकालते हैं और हमारे को ब्रेस्ट टैक्स की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ डिबेट का पार्ट नहीं था। एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए, एक पूरा वेस्टर्न मीडिया के ऊपर में ब्रेस्ट टैक्स की बात करते हैं, देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ द ब्रेस्ट टैक्स एवर इन्वॉल्वड इन द हिस्ट्री, लेकिन बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री में लाए हुए सवालों को भारत में हिंदू समाज को बांटने की बात करते हैं। अब मैं आता हूं अपने इस पॉइंट पे, कुर्बानी पे। एक केस हुआ था साहिल भाई, जीव मैत्री ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पैरा 7 के अंदर में लिखा गया है, और पैरा 7 के अंदर में क्या लिखा गया है कि कहीं पे भी आप पब्लिक सोसाइटी के अंदर में किसी भी प्रकार से स्लॉटर नहीं कर सकते। बॉम्बे का उदाहरण था, अगर स्लॉटर करना ही नहीं था तो क्यों करा गया, वैसे पहली बार नहीं हुआ साहिल भाई मीरा रोड के अंदर में। देखिए मीरा रोड के अंदर में 2023 के अंदर में इशू हुआ था, सेम इशू उठा था जब लोग बकरे लेके आए थे और हिंदू सोसाइटी ने उस पर ऑब्जेक्ट करा था, लेकिन नहीं हुआ। उसी समय वजूद के ऊपर में एफआईआर मीरा रोड पे होती है, एक एफआईआर फाइल होती है, गणेश को अब्यूज करा जाता है और कहा जाता है यही बकरा काटेंगे, सारे मीरा रोड के उदाहरण है। तो क्यों हो रहा है भैया, जब असीम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कह दिया नमाज सड़क पे नहीं पढ़ सकते, इनको सड़क पे पढ़नी है, मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अशोक लहरी, और अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने कह दिया कि गाय नहीं काट सकते लेकिन इनको गाय काटने की मांग करनी है, आपको ये कह दिया गया लगातार तरीके से। आप देखिए क्या हो रहा है, क्यों ऐसे इश्यू उठाए जाते हैं। उड़ीसा के अंदर गाय काटने पर रोका जाता है तो उसको संतोष परिणाम को मार दिया जाता है, गौरक्षक को हरियाणा में मार दिया जाता है, बेलगवी के अंदर में बलगवी में काउ स्लॉटर करने वाले को रोकते तो मार दिया जाता है, तौस्तन दास को मार दिया जाता है बंगाल के अंदर में, गणेश शेखले और विवेक को मार दिया जाता है और दो साधु को मार दिया जाता है। कौन से लोग हैं जो गाय को काटते हैं, इफ्तार करके गंगा के अंदर में अपना मीट फेंकते हैं, दुबरी और बहादुरपुर में गाय का सर काट के मंदिर में फेंक देते हैं, वो राष्ट्र पशु की मांग करेंगे। यह है इंटेंसिटी का विषय, यह है इंटेंशन का विषय। सरकार के नियम होने के बाद, कानून होने के बाद, रूल्स एंड रेगुलेशन होने के बाद, फिर भी सोसाइटी
1: में बकरे उल्लंघन का विषय है ना, कानून के उल्लंघन का विषय पुलिस क्यों नहीं हैंडल करती जबकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। सवाल तो यही उठता है ना, वहां पर जय श्री राम के नारे क्यों लगाए जाते हैं, यह भी तो सवाल उठता है ना, वहां पर राजनीति क्यों होती है, वहां पर धार्मिक सियासत क्यों पहुंच जाती है, एक्शन लीजिए। जैसे पुलिस वहां पर पहुंच गई, शिकायत हो गई, पुलिस वहां पर पहुंच गई, आपको अपने सरकार पर भरोसा नहीं है क्या अमितोष जी?
7: बिल्कुल है सरकार पर भरोसा, इसलिए एक्शन ले लिया गया। भरोसा उन लोगों पर नहीं है जो सरकार के कानूनों का भी पालन ना करते, उसको मजहबी लंग देते हैं, भरोसा उन लोगों पर नहीं है जो सरकार के आदेश के बाद सोसाइटी के अंदर में बकरे लेके आते हैं, भरोसा उन लोगों का नहीं है जो खुलेआम काउस लेटर को ट्रक को ले जाते हैं, हरियाणा हैदराबाद का विषय था ना, एमआईएम के नेता ही थे जो लेके गए थे ट्रकों को, उन लोगों पर भरोसा नहीं सरकार पर।
1: जो सुअर लेके वहां पर पहुंच गए उन पर क्या क्या केस होना चाहिए, सुअर लेके वहां पर पहुंच गए उन पर क्या केस होना चाहिए?
7: साहिल भाई सुअर काटने के लिए
1: लेके पहुंच गए, उन पर क्या केस होना चाहिए?
7: सुअर काटने के लिए पहुंचे क्या?
1: बोला गया ना, अरे विधायक ने कहा सुअर काटेंगे हम। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि सुअर काटते हैं खाटे, अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि सुअर काटेंगे, अभी थोड़ी देर पहले, अरे अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे प्रेम शुक्ला जी सुअर काटेंगे।
7: साहिल भाई मुजफ्फरनगर के दंगे आपको याद होंगे, था सुअर के अफवाह फैला के दंगे कर दिए गए थे, वो कब का समय था? वो समय अब नहीं है। सुअर लेके गए वरा देवे किसी हिंदू को अधिकार रखने का।
1: अदालत और कानून की बातें सभी के लिए होनी चाहिए अमितोष जी। अगर अदालत और कानून का उल्लंघन हो रहा है, किसी भी नियम का उल्लंघन हो रहा है, तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ में जो सुअर लेके जा रहा है वो किस मंशा से जा रहा है वहां पर, उसका भी तो जवाब मिलना चाहिए ना। वो किस मंशा से जा रहा है?
7: ये बकरे को पूछते
1: हैं क्या? कानून व्यवस्था लागू कराने के लिए जा रहा है वहां पर, कानून व्यवस्था और नियम लागू कराने के लिए सुअर लेके जा रहा है। सुअर की पूजा अगर आप करने जा रहे हैं तो वो अलाउड है कानून में?
7: साहिल भाई तो कानून में
1: उसकी इजाजत है,
7: सुअर की पूजा अलाउड नहीं है, वरा देव का
1: इजाजत है उसकी,
7: बंद कर देंगे।
1: प्रेम शुक्ला जी जैसे सितंबर में होती है वरा पूजा, सितंबर महीने में होती है।
7: अब आप बोले एक सेकंड साहिल भाई,
1: सितंबर महीने में होती है।
7: रामनवमी आ रही तो मैं राम को पूछूंगा सिर्फ रामनवमी पे?
1: चलिए ठीक है,
7: सवाल हुआ भाई।
1: एम एच खान जी पहले जवाब दीजिए, उसके बाद शांतनु जी के पास मैं चलूंगा। एम एच खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं कब से, आप जवाब दीजिए अमितोष जी।
5: मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये अभी शांतनु जी भी कह रहे थे हिंदू कोई ऐसा काम नहीं करता, हिंदू कोई ऐसा, असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था चुनाव के पीछे में? असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं गाय के मांस को खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, अपने घर में खाइए, बाहर मत खाइए। और गिरिराज सिंह क्या है, हिंदू नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि
0: आप सुअर का मांस खाइए,
5: खाओ
0: आप भी,
5: सनातन बचाओ, सनातन बचाओ,
0: भी सुअर का मांस खाए,
5: अरे आप खाओ ना, आपको आप
0: खाइए,
5: अरे सुअर के मांस आप खाओ, हम नहीं खाते हैं, आप खाओ ना, आप खाओ, जब आपको मिर्ची लग गई बहुत कस के, बहुत कस के मिर्ची लग गई, बहुत कस के मिर्ची लग गई,
0: अरे सुअर खून लग गई और सुअर का मांस खाओ, मिर्ची आपको लग रही है, सुअर खाने वाले
1: आपको एमएच खान जी, प्रेम शुक्ला जी एमएच खान जी, हम लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं। शांतनु गुप्ता जी ने सही कहा था कि हम लॉ एंड ऑर्डर पे कुर्बानी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो मुद्दा और बातचीत लॉ एंड ऑर्डर पर ही होनी चाहिए, उसी मुद्दे पर टिके रहिएगा, यहां वहां भटकेंगे तो मामला भटक जाएगा। एमएच खान जी जवाब दीजिए, उसके बाद शांतनु गुप्ता बात करेंगे। चलिए
5: मैं यही कह रहा हूं कि संविधान के हिसाब से देश चलेगा। आप इन्होंने शुक्ला जी ने किस तरह से बात कही है ये पूरा देश देख रहा है। हमने इनको कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा सुअर खोर
0: संविधान बताएंगे।
5: देखिए दूसरी बात ये है कि आप
0: सुअर खोर संविधान बताएंगे।
5: देखिए आप बोलने के हाँ? अरे आप आके मुंह में बवासीर है क्या? आपके मुंह में बवासीर है क्या? बवासीर है आपके मुंह में? बवासीर है क्या? बवासीर है आपके मुंह में?
1: जरा एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज असीम वकार जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद शांतनु जी उसका जवाब देंगे। असीम वकार जी
2: नहीं सर, डिबेट को डिबेट की तरह कराइए तो ज्यादा बेहतर है, बात समझिएगा। हम आपके चैनल टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ।
1: तो कौन बढ़ा रहा है सर?
2: आप यहाँ पर अगर
1: कौन सा ऐसा सवाल है कि जो नहीं पूछा गया
2: सर? बात को समझिए,
1: कायदे की बात ही तो हो रही है,
2: बात को समझिए सर।
1: उनके ऊपर ही सवाल पूछे हैं असीम वकार जी। जी
2: नहीं, आप फिर मैंने आपसे कह दिया जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। मैंने 2015 में एक नारा लगाया था और आज फिर कह रहा हूं, 2015 से मैं कह रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। राष्ट्रीय माता कोई मुसलमान इस तरह नहीं बोलेगा। अगर मोदी जी में हिम्मत है और शाह साहब में हिम्मत है तो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। गाय पालना, लाना, ले जाना, बिजनेस करना, बेचना सब हराम हो जाएगा। काटना तो बहुत दूर की बात।
1: अमितोष पारिक जी
2: हम मुसलमान
1: अभी तो अभी तो नहीं घोषणा
2: राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए।
7: साहिल जी
2: ये आप क्यों नहीं कर रहे?
1: अमितोष पारिक जी
7: मैं जवाब देता हूँ इसका। साहिल भाई देखिए इसका बहुत ही
1: लीगल, एक ही वक्त मामला खत्म हो जाएगा।
7: हाँ बहुत लीगल जवाब है इसका। 2022 में इसके ऑलरेडी पीआई लग चुकी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में। जब आप भारत का संविधान उठा के देखेंगे तो भारत के संविधान में एंट्री 2 ऑफ 7 शेड्यूल एंट्री 15 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ स्टेट लिस्ट, वहां पर एनिमल कैटल लिखा हुआ है, आर्टिकल 48 में भी उसका प्रोटेक्शन लिखा है, जो कि डीपीएसपी राइट है, इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट। और इसीलिए स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से सारी सरकारें जहां जहां राज्य के अंदर में वहां पर एक्ट बने हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, किस तरह के हाइपोथेटिकल मांग है ये कि अगर आप राष्ट्रीय माता घोषित कर देंगे तो हम काटना नहीं बंद कर देंगे, तो मतलब तब तक हिंदू की धार्मिक आस्था आपके लिए आस्था ही नहीं है, हिंदू के सेंटीमेंट्स आपके लिए सेंटीमेंट्स ही नहीं है। मैं आपको चार उदाहरण देता हूँ,
2: मुसलमान नहीं काट रहा है, मुसलमान नहीं काट रहा है, गलत बोल रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं
7: टेक्स का, आपको तो बोलने का अधिकार
2: नहीं, 100% व्यापारी हिंदू है,
7: नहीं बोले,
2: अरे छोड़िए, पाल रहे हैं गाय को, बड़ा कर रहे हैं गाय को, बेच रहे हैं, हिंदू व्यापारी,
7: सुभद्रा के अंदर में, कन्नौज में, शामली के अंदर में गाय काट दी गई, अमेठी जगन्नाथ के अंदर में, दिल्ली में गाय काट देते हैं, लखीमपुर के अंदर में गाय का मीट हनुमान टेंपल में फेंक देते हैं, धुबरी, बदरपुर, लखीमपुर, गोपालपुरा में फेंक देते हैं। मुझे लगता है जो लोग लगातार तरीके से गाय को सिर्फ हिंदू सेंटीमेंट हर्ट करने के लिए काट काट के या तो नदी में फेंकते हैं या सर के फेंकते हैं हनुमान मंदिर में, वो राष्ट्रीय पशु
2: लोग गैर मुसलमान है जो ये काम कर रहे हैं
7: ना, आप ब्रेस्ट चेक का जवाब दे
2: पाते हैं, 90% लोग गैर मुसलमान है, पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है, गिरफ्तार हुए हैं ऐसे लोग,
7: छोड़िए आप, 1966 में गोली चला दी थी इंदिरा गांधी ने,
1: मेरा सवाल कायम है,
8: प्रेम शुक्ला की आवाज नहीं निकल रही है, प्रेम शुक्ला
7: की मैं निकाल रहा हूँ आवाज, मेरी आवाज का जवाब दीजिए ना, क्या हो गया समाजवादी पार्टी को, जो काउंस मजदूर को बताओ मैं चुनाव लड़ा था ब्लॉक पार्ट का, कन्नौज में गाय काट के फेंक दी जाती है, शामली में गाय फेंक दी जाती है, साजनपुर में फेंक दी जाती है, अमेठी में फेंक दी जाती है, इतना एमएस खान का तलीका से भैया दस बात मानी है,
8: हिंदू समाज के लोग चलाते हैं,
7: मुसलमान हिंदू समाज के लोग चलाते हैं, एक जैसी डिबेट को बोलना बंद करिए, मोनोटोनस डिबेट बंद करिए, सरकार के साथ है,
8: चलता है सर, समाज एक एक साथ चलता है, सबके
1: प्रेम शुक्ला जी
8: के साथ चलता है, पीडीए का फार्मूला,
1: प्रेम शुक्ला जी ना बजेगी बास ना बजेगी बांसुरी, ठीक है जी, इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि अगर इतना ही मुद्दा है, हर बार बकरीद के पहले, हर बार किसी बड़े त्योहार के पहले, अगर बार बार इस तरीके से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो एक तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे बड़ा सवाल होता है, इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए, जो मुद्दा एम एच खान ने ओरिजिनली उठाया था, शांतनु गुप्ता जी से मैंने पूछा था कि बीजेपी शासित राज्यों में ही इस तरीके से बवाल क्यों होता है, सवाल
0: बताइए, सुअर भी राष्ट्रीय पशु नहीं है तो सुअर इनके घर लाके काटूं मैं, सुअर भी राष्ट्रीय पशु नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के घर पे लाकर
1: सवाल का जवाब दीजिए ना,
0: चलेगा क्या,
1: सवाल एक बार फिर, सवाल एक बार फिर,
0: पशु होगा तभी काटेंगे,
1: सवाल एक बार फिर,
0: राष्ट्रीय पशु,
1: सवाल एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ,
0: पशु जब नहीं रहेगा तो नहीं काटेंगे, ही कह रहे हैं
1: प्रेम शुक्ला जी, मैं सवाल एक बार फिर पूछता हूँ, बीजेपी शासित राज्यों में ही ये चीजें क्यों होती है, क्यों इस तरीके की तस्वीरें दिखाई देती है, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पर सवाल नहीं खड़ा होता है, इसका जवाब दीजिए सबसे,
0: बाकी राज्यों में
1: क्या लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं है, आपके पार्टी के नेता कार्यकर्ता वहां पर पहुंच जाते हैं,
0: बाकी अब आप निष्कर्ष निकाल के बैठ गए,
1: मैं पूछ रहा हूं आपसे,
0: कांग्रेस राज्यों में बकरा जो है घर घर काटा जाता है, मैं बता रहा हूं ना, मैं जिस सोसाइटी में मुंबई में रहता हूं उस सोसाइटी में 2014 तक बकरा खुला खुल काटा जाता था और शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं होती थी, आज शिकायत पर कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस के कार्यकाल में बकरे जो है काटे जाते थे, सड़क पर नमाज को जो है संरक्षण दिया जाता था, आज नहीं दिया जा रहा है, तो जैसे ही कानून की बात हो रही है ये चिचिया रहे हैं, अगर राष्ट्रीय पशु गाय नहीं है काटेंगे तो राष्ट्रीय पशु तो सुअर भी नहीं है, तो जाके कोई इनके घर पर सुअर काटेगा चलेगा इनको,
1: लेकिन गाय काटने की बात कर कौन रहा है, कौन उसका सपोर्ट कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी ने बोला गाय काटने की बात, किसी ने बोली गाय काटने की बात, किसी ने कही, किसने कहा, किसने बोला, पूरी चर्चा में किसने बोला गाय काटने की बात कही, किसने कही,
0: अभी
1: रमेश खान जी जवाब दीजिए, आपने कहा इस बात को, कहा एम एच खान जी, आपने कहा है तो बता दीजिएगा, यहाँ पर कानून व्यवस्था का मुद्दा है,
8: मैंने नहीं कहा, मैंने कानून व्यवस्था की बात उठाई है, मैंने सुअर को काटने की बात नहीं कही है, ये प्रेम शुक्ला जिसने सुअर की बात कही उसको बोलने की हिम्मत नहीं है, उसको बोलने की हिम्मत नहीं है,
0: ये सुअर खो रहा है, ये सुअर खो रही है,
8: बच्चे हो
0: तुम, सुअर खो रहे, तू तो आग बंद कर, चिरकुट सुअर खोर हो तुम, सुअर खोर हो तुम,
1: चलिए बस खत्म, नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्रेम शुक्ला जी, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, मुद्दा कुर्बानी को लेकर उठ रहा था, मुद्दा कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहा था, मुद्दा सिविक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर उठ रहा था, इस बीच एक दूसरे को जिस तरीके से राजनीतिक सियासत के गलियारों में खड़ा किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में सवाल इस बात का भी उठता है कि जब देश के सामने इतनी बड़ी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को दूर करते हुए जब भी बकरीद या कोई भी त्योहार इस तरीके से आता है, तब आखिरकार इस तरीके के बखेड़े क्यों खड़े होते हैं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें बनी रहेगी, आप देख करिए।
9: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब
10: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर। Two taps later, Clear says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
15: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
16: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं।
2: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
3: अनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
9: जेके वॉल मैक्स।
10: बेस्ट पेंट
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
9: जेके वॉल मैक्स।
10: बेस्ट पेंट
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
7: जेके मैक्स पेंट्स।
12: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: इन एसोसिएशन विद
14: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
15: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
13: हिंट, बड़े आराम से। विमल बोलो जुबां केसरी।
16: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेर आर यू?
17: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
18: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

मैदानी इलाकों में पारा इन दिनों आसमान छू रहा है, धरती धधक रही है, प्रचंड गर्मी के बीच जिंदगी दूभर हो गई है। राहत के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां भी मौसम की आफत कम नहीं है। उत्तराखंड के तमाम जंगलों में इन दिनों जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि बढ़ता तापमान अब पहाड़ी इलाकों में भी कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों के जंगल भीषण आग की चपेट में हैं। दूर दूर तक लपटें दिखाई दे रही हैं, धुएं का गुबार फैला हुआ है। तपती गर्मी के बीच जंगल में आग का संकट विकराल रूप लेता जा रहा है। चाहे चमोली हो या रुद्रप्रयाग, टिहरी या पौड़ी गढ़वाल, कमोबेश हालात एक जैसे हैं। तस्वीरें भयावह हैं। लोग जंगल में आग वाले संकट से जूझ रहे हैं। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड के कई हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। पर्यटकों के बीच बेहद मशहूर चकराता की इन तस्वीरों को देखिए। जंगल में आग की लपटें फैली हुई हैं। दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। जंगलों से उठती आग अब इंसानी बस्तियों तक पहुंच रही है, जिससे लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। अब जंगल में लगी आग के बीच चमोली का भयावह मंजर देखिए। तेज हवाएं हैं और आग की लपटें फैलती जा रही हैं। इस मुसीबत के बीच एक शख्स की जान भी संकट में घिरी है। पौड़ी गढ़वाल में भी हालात बेहद खराब बने हुए हैं। जंगलों में लगी आग के बाद पहाड़ धुएं से ढक गए। बढ़ती गर्मी के बीच आग का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पूरी पूरी रात वन विभाग का अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा है। रुद्रप्रयाग के पहाड़ और घाटियों में भी धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। हफ्ते भर पहले हुई हल्की बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग के जंगलों में लगी आग से कुछ राहत मिली, लेकिन फिर से गर्मी और धूप अधिक होने की वजह से जंगल फिर से जल उठे। केदार घाटी में भी आग का धुआं फैला हुआ है। केदार धाम के लिए उड़ान भरने वाली हेलीकॉप्टर सेवाएं भी इस धुएं के बीच उड़ान भर रही हैं, जो काफी जोखिम भरा है। जंगल की भीषण आग की लपटें और धुएं के गुबार ने वन विभाग और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तमाम इलाकों में आग बस्तियों तक पहुंच रही है, जिससे खतरा बढ़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड के जंगलों में आग का सिलसिला थम नहीं रहा। आज तक ब्यूरो।

0: मुल्क की आवाम आए दिन पेट्रोल डीजल सीएनजी की महंगाई से परेशान है, फिर भी कहीं रिहायशी सोसाइटी में बकरों की कुर्बानी पर बवाल है तो कहीं किले में मजार के खिलाफ जय श्री राम का नारा। पहले इनका मामला समझिए। मलिहाबाद के कसमंडी में 11वीं सदी के राजा तंसा पासी के किले के बाहर जमा हुए ये भक्तगण बड़े मंगल की विशेष पूजा की चाहत लिए पहुंचे। ये खंडहर बरसों से खाली पड़े हैं पर अब इनकी दरों दीवार गर्द में लिपटी तारीखों के दरारों में इबादत बस सियासत खोजती है। इस जिद का दौरे उसूल बस इतना कि किला हिंदू राजा पासी का तो मजार मुस्लिम सालार गाजी की यादों वाली कैसे हो सकती है। मौकाए बकरीद करीब था तो माहौल भी मुफीद, मजार के मुकाबले सुंदरकांड पढ़ने का शगुफा ऐसा गर्म हुआ कि पहरे में संगीने तर गई, फिर न तो पाठ हुआ न नमाज की इजाजत मिली। इस सियासत का मकसद और मंजिल और मौजू हासिल बस इतना कि जिस समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में अवधेश प्रसाद को पीडीए का चेहरा बनाया उसी पासी समाज के लोग किले पर कब्जे और मजार पर नमाज के विरोध में उठ खड़े हुए। मजहब की सियासत बनाम जात की बात करने वाले मानते हैं कि दरअसल इस नए विवाद की जमीन पर पासी वोट के गणित का फॉर्मूला सेट किया जा रहा है, क्योंकि दलित वोट का हिसाब उत्तर प्रदेश में देखें तो कुल दलित आबादी 21%, जाटव 11%, यूपी में पासी 3.5% की ताकत रखते हैं, कोरी 1%, धोबी 1%, खटिक धनगर बाल्मीकि और अन्य 4.5%। दलितों के भीतर जाटों के बाद सबसे बड़ी तादाद पासी वोट की है, जिसे समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले पाले से खींचकर हिंदूवादी राजनीति के रंग में रंगने की कोशिश कंसा पासी के किले में हो रही है। और अब थाने के मीरा रोड में हुए इस बवाल की कहानी भी सुनिए। सोसाइटी के गेट पर नारेबाजी करते ये लोग इसलिए नाराज है क्योंकि यहाँ बकरे के नाम पर शुरू हुए झगड़े में ब्लेडबाजी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि बकरीद की कुर्बानी के लिए सोसाइटी के अंदर बकरे लाए जाने लगे, कुर्बानी के लिए शेड बना दी गई। इसका विरोध हुआ तो झड़प हो गई, 3 हिंदू युवक जख्मी हुए, पुलिस को मुकदमा लिखना पड़ा, पहरेदारी बैठानी पड़ी। मामला बढ़ने लगा, भीड़ भी बढ़ी, पुलिस का तनाव भी। बीजेपी के नेता मौके पर आने लगे, आखिरकार सोसाइटी में से बकरों को बाहर निकाला जाने लगा।
1: अब आधे बकरे निकल गए हैं, बाकी आधे शाम तक निकल जाएंगे। ये सोसाइटी में एक भी बकरे की कुर्बानी नहीं होगी।
0: इस सोसाइटी के बवाल से पुलिस सतर्क हो गई। अमन कमेटी की मीटिंग से लेकर फ्लैग मार्च तक के इंतजाम करने पड़े। बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित है और कुर्बानी के लिए जगह भी तय कर दी गई। वैसे बकरीद पर कुर्बानी का विवाद पिछले कुछ वर्षों से अक्सर दिख रहा है। इस बार बंगाल से लेकर असम तक, यूपी से तेलंगाना तक बकरीद की कुर्बानी को लेकर राजनीति, पुलिस प्रशासन ने ज्यादातर जगहों पर सार्वजनिक कुर्बानी पर रोक लगा रखी। मुंबई से विद्या के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: तो मुद्दे बहुत है। एक तरफ सरकार कहती है कि प्रतिबंध केवल सार्वजनिक स्थलों पर इस तरीके से कुर्बानी देने को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ धार्मिक अभिव्यक्ति का मुद्दा, धार्मिक परंपरा का मुद्दा भी उठाया जाता है, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाया जाता है। आखिरकार कौन सा मुद्दा बड़ा, इसीलिए चर्चा होना जरूरी था। फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। आप देखते रहिए आज
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

डेमोग्राफिक बदलाव पर केंद्र ने बनाई हाई लेवल कमेटी। रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर करेंगे अध्यक्षता। बंगाल के सीएम बोले बांग्लादेशियों को जल्दी जल्दी भगाओ। फेड समिट में सप्लाई चेन और वैश्विक चुनौतियों पर महामंथन। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, पूरा समूह एकजुट। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज। हाईकमान की चौखट पर सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम राहुल गांधी ने दोनों से अलग अलग की बात।

अभी अभी यह खबर आ रही है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को कांग्रेस हाईकमान ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दे और उनकी जगह पर डीके शिवकुमार शायद मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। सिद्धरमैया को सीएम पद छोड़ने को कहा गया, उसके बदले में सिद्धरमैया को राज्यसभा भेजने की बात चल रही है। उन्हें हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली में

0: नहीं कहना चाहते हैं तो नमस्कार कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं साहिल कि अमूमन तौर पर या आम तौर पर जब से हम इस पार्टी को कवर कर रहे हैं, राज्यसभा चुनाव और एमएलसी चुनावों के लिए इतनी बड़ी लंबी लंबी बैठकें नहीं होती हैं, उसमें भी तब जब तीन राज्यसभा में से कम एक नाम जो है वो तय है, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, दो ही राज्यसभा के लिए आपको डिस्कशन करना है, उसमें भी मुख्यमंत्री से अलग से मुलाकात होती है, दो राउंड की मीटिंग होती है, तमाम नेता, बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि समथिंग इज नॉट एडिंग अप। और कुल मिलाकर अभी तो क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कहा गया है कि देखिए ये जो मीटिंग थी ये राज्यसभा के लिए थी या फिर एमएलसी के लिए थी, लेकिन जो अगर पार्टी चाहती तो पार्टी इस पूरी चीजों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी, ये बोल के कि देखिए लीडरशिप के ऊपर कोई सवाल नहीं है और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया है, अपना पूरा कार्यकाल करेंगे, या अभी ऐसा कोई सवाल नहीं उठता, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया, और मात्र ये कहा गया कि देखिए ये जो बैठक है ये राज्यसभा और एमएलसी के लिए। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं, आप क्योंकि आधिकारिक
1: राहुल जरा दिन भर क्या क्या हुआ उस पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि अब बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से फिलहाल हम आज तक पर चला रहे हैं कि सिद्धरामैया मान गए हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ेंगे। सिद्धरामैया एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई अब तक दो बार कर चुके हैं। ऐसे में डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने का अगर फैसला लिया गया है तो कितना मुश्किल था, और इस बार ऐसा क्या हुआ, क्योंकि इसके पहले भी कई बार डीके शिवकुमार दिल्ली का दरवाजा खटखटा चुके हैं लेकिन उनको यह मौका नहीं दिया गया था। इस बार ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते सिद्धरामैया को हटाने का फैसला लिया गया और डीके शिवकुमार मान के चल रहे हैं कि डीके शिवकुमार शायद मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और चॉइस कंसेंसस के तौर पर और चॉइस भी उभर सकती है। राहुल
0: देखिए साहिल, 21 मई को सिद्धरमैया सरकार ने 3 साल अपने पूरे कर लिए हैं। पिछले 6 महीने से लगातार हर महीने पे एक तारीख दी जाती है डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं उनके द्वारा कि देखिए नवंबर क्रांति आने वाली है, दिसंबर क्रांति आने वाली है, वो पढ़ते पढ़ते अब मई तक आ गई है, और वो लगातार इस बात को लेकर पुश कर रहे हैं कि आलाकमान ने एक वादा किया था, ढाई ढाई साल का फॉर्मूला था, उसको अब आप पूरा करिए। देखिए दो चीजें हैं महत्वपूर्ण जो कि आलाकमान को साधनी है, एक है ओबीसी वोट बैंक। सिद्धरमैया ओबीसी जाति से आते हैं, कांग्रेस पार्टी के 4 मुख्यमंत्री हैं, 3 अगड़े हैं, एकमात्र ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, ये उनके फेवर में जाता है। डीके शिवकुमार के फेवर में ये जाता है कि वो यंग हैं, उनको ट्रबल शूटर कहा जाता है, रिसोर्सफुल आदमी है, और क्योंकि पार्टी चाहती है कि 28 का जो चुनाव है वो वापस से पार्टी जीते, 29 का जो लोकसभा है उसमें फिर बेहतर प्रदर्शन करे, तो आप ये मान के चलिए। और देखिए कर्नाटका का आप थोड़ा सा अंदाजा केरला से लगा सकते हैं कि केरला में क्या हुआ। केरला के अंदर ज्यादातर विधायक केसी वेणुगोपाल के साथ थे, लेकिन वहां पे पॉपुलर सेंटीमेंट जो है वो सतीशन के साथ में था। राहुल गांधी खुद बहुत लाइक करते हैं केसी वेणुगोपाल में, इसे कतई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए सतीशन को चुना। तो क्या ऐसा यहां पर भी होगा कि भले ही विधायक का एक समर्थन हो एक गुट का, सिद्धरमैया को बड़े बड़े गुट का, लेकिन क्योंकि पार्टी चाहती है उनको फ्यूचर देखना है, एक युवा मतलब कम उम्र के व्यक्ति को कमान दी जाए तो कम से कम अपनी पूरी जी जान लड़ा दे कि सरकार जो है वापस आए, पहले मैं ये 2 साल अपने पूरे करूं और फिर पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद के पर बैठूं। तो ये तमाम चीजें हैं जो साधनी है आला कमान के लिए, लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में भी कहा, अमूमन तौर पर इतनी लंबी बैठकें राज्यसभा चुनावों के लिए, एमएलसी चुनावों के लिए कांग्रेस दफ्तर में देखने को नहीं मिलती है, तो आप ये मान के चलिए कि खेल अभी बाकी है और इट इज मोर व्हाट देन इट मींस।
1: जरा वो तस्वीरें चलाइए राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए, जरा वो तस्वीरें चलाते हैं, क्योंकि जिसमें आज सुबह जब कांग्रेस के मुख्यालय में डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया एक साथ वहां पर पहुंचे, जब मीटिंग हो रही थी तब डीके शिवकुमार वहां पर दिखाई दे रहे हैं कि सिद्धरमैया के साथ बैठे हुए हैं, दोनों के चेहरे पर किसी भी तरीके से कोई एक दूसरे के खिलाफ भावना नजर नहीं आ रही है, दोनों एकदम शांति से इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग हो रही है उसका सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल आज की स्थिति में क्या कारण है कि यह सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है, अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से औपचारिक ऐलान इसका क्यों नहीं किया गया है, डीके शिवकुमार पार्टी के मुख्यालय से निकलकर कहां गए हुए हैं, क्या सिद्धरमैया अभी भी पार्टी मुख्यालय में है और उसके बाद बाहर आकर इस बारे में कोई औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा, और कौन कर सकता है यह ऐलान, क्योंकि केसी वेणुगोपाल अमूमन हमने देखा कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तमिलनाडु का फैसला भी उन्होंने ही आकर ऐलान किया था कि हम टीवीके को सपोर्ट कर रहे हैं, कर्नाटक के बारे में भी किससे आप उम्मीद करते हैं कि यह फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा राज्य है और बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी वहां पर सत्ता में आई थी। हालांकि सिद्धरामैया के चेहरे के आधार पर ही वो सत्ता में

0: गई थी। ये बात ठीक है कि डीके शिवकुमार ट्रबल शूटर है, जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर खतरे में रही है डीके शिवकुमार को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। जो रिसॉर्ट पॉलिटिक्स है उसमें भी डीके शिवकुमार का हाथ नहीं पकड़ सकता, यह भी कहा गया है। लेकिन फिर भी चुनाव जीतने के लिए ओबीसी चेहरा सिद्धरमैया को आगे किया गया था, तो आज की सूरत में क्या औपचारिक ऐलान की हम उम्मीद करें थोड़ी देर में?
1: देखिए, इसकी संभावना बेहद कम है क्योंकि औपचारिक घोषणा तो अभी एक स्टेटमेंट किया जा चुका है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हमने डिस्कशन किया राज्यसभा चुनावों के लिए, एमएलसी इलेक्शंस के लिए, और आप जो चीज़ें स्पेकुलेट कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन इसका लेकिन ये सब तमाम चीजें हमेशा के लिए भी खत्म की जा सकती थी, जैसे मैंने कहा साहिल एक लाइन बोलकर कि अपना जो की लीडरशिप चेंज का कोई सवाल पैदा नहीं होता और जो पूरा अपना पूरा करेंगे। मुझे ये लगता है कि अब जो चीजें हैं वो कम से कम दो तीन हफ्तों के लिए आगे चली गई हैं। 18 जून का अब हमें इंतजार कि राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी किसको भेजती है, और देखिए कैबिनेट रिशफल की भी बातें हो रही थी, उस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं मिली। एक बात दर्शकों को हमें बतानी चाहिए कि अगर कैबिनेट रिशफल होता है बिना मुख्यमंत्री को बदले तो ये एक तरीके से अभेदान होगा सिद्धरमैया के लिए, और एक तरीके से मोहर होगी कि आप जाइए अपने 2 साल अपने पूरे करिए। तो कैबिनेट रिशफल को लेकर भी कोई शब्द नहीं किया गया, जबकि सिद्धरमैया लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने कैबिनेट के अंदर फेरबदल कर पाए, लेकिन अभी तक उनको आला कमान ने ये मंजूरी नहीं दी है क्योंकि डीके शिवकुमार की तरफ से ये लगातार कहा
0: इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि पंजाब के भीतर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर वहां पर जब चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था उसके बाद पंजाब में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसी सूरत में अब कांग्रेस का औपचारिक ऐलान कब होगा उसका इंतजार रहेगा। धन्यवाद राहुल, इस पूरे खबर पर आप भी नजर बनाए रखिए, यह बड़ी खबर थी इसलिए हम यहां पर इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपके सामने हैं। आप देखेंगे हल्ला बोल, आप देखते रहिए आज तक।
2: तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहां पर मौजूद जनता का। आज चर्चा इस बात पर होगी, आप देख रहे हैं मेरे साथ तस्वीरें जरूर पीछे में है, क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश की लड़ाई हो जिसके लिए 2027 के लिए अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है, वो क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कि आप सड़कों पर अब नमाज नहीं पढ़ सकते। वैसे कानून भी यही कहता है, लॉ ऑफ द लैंड यही कहता है। उनका ये कहना है कि अगर जगह कम पड़ रही है तो अपनी संख्या कम कीजिए। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव, वो एक तरफ हनुमान जी का प्रसाद भी बांट रहे हैं और दूसरी तरफ 95.5 का नया फॉर्मूला भी ढूंढ रहे हैं 2027 की लड़ाई। ये 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे आए हैं उससे बीजेपी बम है, क्योंकि असम में हेमंत बिस्व शर्मा हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हुए एक बार फिर से सत्ता में आए हैं। बंगाल में आज तक बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, वो हिंदुत्व की बात करते करते जिसमें खुलकर आपने देखा होगा शुभेंदु अधिकारी जो आज मुख्यमंत्री है वो ये कह रहे थे कि हमें तो हिंदुओं का ही वोट चाहिए और मिलेगा, वो वहां पर जीते। दक्षिण के राज्यों में अगर आप देखिए तो केरलम में जरूर कांग्रेस पार्टी अपने यूडीएफ के साथ आई है, विजय एक नए आविष्कार के तौर पर तमिलनाडु में आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर पुडुचेरी में फिर बीजेपी की सरकार गठबंधन की बन गई है। तो बीजेपी क्या हिंदुत्व के हाईवे पर तेज तर्रार दौड़ रही है और क्या विपक्ष के पास इसके लिए कोई काट है, या वो कहेंगे कि ये तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये तो ये करते हैं, या उससे आगे जाकर क्या वो एक ऐसा विकल्प देंगे कि जनता उन पर भरोसा करे। आज इसी पर बहस करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और सूर्या मैथिल जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें ये रिपोर्ट। ये उत्तर 24 परगना में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाकिमपुर चेक पोस्ट है। बंगाल में बीजेपी की नई सरकार अपने 3D फॉर्मूले यानी डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट पर बेहद सख्त है। इसी के बाद बॉर्डर चेक पोस्ट पर वापस बांग्लादेश जाने के लिए ऐसी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।
3: और यहाँ आप देख सकते हैं कि हकीमपुर, ये वही हकीमपुर है जहाँ साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे, SIR जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी, तो अब लोग यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पहुंचे थे, जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए। एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है, जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे, वो यहाँ पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाएं।
4: अच्छा,
3: ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से, और ये देख सकते हैं कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपने जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी।
4: এখানে দমদম থাকতাম ও ক্যান্সারের রোগী তো তাই হসপিটালে চিকিৎসা করতে এসেছিলাম।
2: बंगाल में घुसपैठ के संदिग्धों में हड़कंप मचा हुआ है और बीजेपी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि घुसपैठ अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा।
5: कोई नया कानून नहीं है
6: जी,
5: अरे लोग चला जाना चाहिए। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, ये दामाद है ये लोग।
2: घुसपैठ के खिलाफ सख्ती सिर्फ बंगाल में नहीं, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के खिलाफ बॉर्डर वाले राज्यों का दौरा करने का फैसला किया है। मंगलवार को अमित शाह राजस्थान के सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट पर पहुंचे, यानी घुसपैठियों के खिलाफ अमित शाह के नए मिशन का आगाज हो चुका है।
7: BSF की परंपरागत ड्यूटी को नए डायमेंशन से देखना पड़ेगा। अब तक जो हम करते आए हैं, सीमा के उस पार कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण न करे, अवैध स्मगलिंग पर नजर रखना, घुसपैठ पर नजर रखना और अहरनिश इनकी सीमा पार की गतिविधियों को हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से नजर में रखकर हमारी तैयारियों को भी पैनी करना।
2: घुसपैठ पर मोदी सरकार की ये सख्ती बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा का वो एजेंडा है जिसे वो राम मंदिर, आर्टिकल 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर सफलता के बाद लागू कर रही है। यही वो मुद्दे हैं जिनसे बीजेपी का हिंदुत्व चुनावों में बेहद मजबूत नजर आता है। वैसे तो विपक्ष आज भी सरकार के सामने आई चुनौतियों के बीच अपना राजनीतिक रास्ता तलाशने की कोशिश करता है। मसलन मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से देश पर आई आर्थिक चुनौतियों को विपक्ष मोदी सरकार की नाकामी के तौर पर गिना रहा है। पेट्रोल डीजल और CNG के दामों में हुई बार बार बढ़ोतरी को विपक्ष ने स्लो पॉइजन तक कह दिया है।
8: ये मोदी जी की टैक्टिक्स है, हर रोज स्लो पॉइजनिंग टू किल पुअर पीपल, और ये हमेशा यही काम करते हैं कि थोड़ा थोड़ा बढ़ाना, लेकिन आज एक वीक में अगर 10-12 रुपए सब बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं और मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं।
2: पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब विपक्ष ने सरकार को फ्लॉप करार दिया है, देश के मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन आज जब मोदी सरकार को सत्ता में आए 12 साल हो गए हैं तो विपक्ष के हर सवाल का सीधा जवाब बीजेपी का विकास और हिंदुत्व का मॉडल है। हिंदुत्व के इसी हाईवे पर विपक्ष से बीजेपी बहुत आगे निकल गई लगती है। आज तक ब्यूरो। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सांसद जी, आप ही से सवाल है कि ये जो हिंदुत्व के हाईवे पर आप दौड़ रहे हैं ये तो दिख रहा है, लेकिन सवाल है कि असल मुद्दों पर जब आप जाइए तो जनता, आप देखिए ना, मतलब चीफ जस्टिस भी अगर कोई कॉकरोच जैसा शब्द की ये कर देते हैं तो एक दिखता है कि भाई पूरा जोर एक नई पार्टी बनाने की तरफ पड़ जाता है उसी नाम से। तो आज सवाल ये है कि क्या आप जनता उनके असल मुद्दों से कटकर हिंदुत्व के हाईवे पर सिर्फ चुनाव जीत रहे हैं, सिर्फ इमोशनल इश्यूज पर चुनाव जीत रहे हैं या असल काम भी हो रहा है?
9: देखिए, जिसको आप सो कॉल्ड हिंदुत्व का हाईवे कहते हैं, भारत की वास्तविक पहचान का वो प्रतीक है। जब हम 2000 साल के आक्रमण और 800 साल की प्रत्यक्ष गुलामी के बाद आजाद हुए तो बड़ी सहज स्वाभाविक बात थी कि एक दो पीढ़ी उस गुलामी की मानसिकता से बाहर आने में लग जाती है। इसीलिए 1990s का डिकेड, यानी जब आजादी के 40-42 साल हो गए थे, तब हिंदुत्व का राइज हुआ। ये और कुछ नहीं था, भारत का अपना नैसर्गिक स्वरूप में ऊपर आना था। उस समय लोगों ने कहा हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, थोड़ी चल पाएगी, ज्यादा नहीं चल पाएगी। अब वो मैं इसमें नहीं जाना चाहता, बीजेपी की 89 सीटें आई, 86 आ रहे, इससे ज्यादा नहीं आएंगी, 120 मैक्सिमम हो गई, 160 अब इससे ज्यादा नहीं होगी, 182 इससे ज्यादा नहीं होगी। अब उसके बाद जिस ढंग से भारत की उस मूल आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया, अब उसके विपरीत में उठकर भारत नैसर्गिक स्वरूप में आ रहा है। और जो मैं बात पहले कह चुका हूं फिर मैं कह रहा हूं, आजादी के बाद इस देश के 2 टुकड़े हुए, अब 3 टुकड़े हुए, 2 मुस्लिम राष्ट्र बने, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और अब वो वास्तविक सेकुलर राष्ट्र के रूप में तब्दील हो रहा है। इसलिए इन लोगों को समस्या नजर आ रही है। और जहां विकास की बात है, मुद्दे की बात, तो भाई राहुल गांधी खुद ही कहते हैं ना कि ये तो हिंदुत्व वाले हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब तक उनको हिंदू समझ में आता है हिंदुत्व नहीं, जब तक हिंदू वालों की सरकार थी तो भारत की ग्रोथ रेट क्या थी? 2%, 1.5%, 1.8%, बस इतनी। और भारत का मजाक उड़ाया जाता था ये कहके कि ये तो हिंदू ग्रोथ रेट है, 2% से ऊपर तो इंडिया ग्रो नहीं कर सकता। रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या रहती थी 1973-74 में? 26%। मगर जब से हिंदुत्व वाले आए हैं, आज बताइए ग्रोथ रेट कितनी है? 7.4%। वर्ल्ड की ऑल मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा। रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है अभी? इसके दाम बढ़ने के बाद 3.4% है, वरना दिसंबर में 1.33% था। जब हिंदू वालों की सरकार थी, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जब वो ढांचा खड़ा हुआ था, $1 बिलियन से कम था 1991 में। सोना गिरवी रखा गया था, दो दो बार रुपी का डिवेल्युएशन हुआ था, और अब $100 बिलियन पहुंचा अटल जी की सरकार में, $500 बिलियन क्रॉस किया मोदी जी की सरकार में। और उस जमाने में क्या होता था? कोई आता था, मारकर चला जाता था। अब भारत जाता है, ठोंक के चला आता है। पहले हम चिल्लाते रहते थे कि देखिए देखिए ऐसा हो रहा है, अब वो कहता है कि कोई मारा जा रहा है। अभी देखिए, अभी वो पता नहीं अज्ञात हमलावरों ने, पुलवामा के अटैक के जो मुख्य आरोपी था हामिद बुरहान, वो अज्ञात हमलावरों के द्वारा मार दिया गया है। अब पता नहीं क्या परिस्थिति हो रही है, यानी खुद ही पाकिस्तान के अंदर एक बार डाउन होता चला जा रहा है। तो किसी भी पैरामीटर पर देखें तो विकास हो, ग्रोथ हो, भारत का अपना सेल्फ डिफेंस हो, उन सब में भारत का नैसर्गिक राइज है। जो जो हिंदुत्व का राइज हुआ है, त्यो त्यो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है, त्यो त्यो भारत की डिफेंस ताकत बढ़ी है। और अभी जो बंगाल में जीत हुई है, उस पर तो जो मैंने बोला था, फिर रिपीट कर देता हूं, भारत के पूर्वी भाग में शक्ति की आराधना होती है और 3 प्रमुख शक्ति केंद्र माने जाते हैं, त्रिपुरा की माँ त्रिपुर सुंदरी, असम की माँ कामाख्या और बंगाल में कलकत्ता की काली जी। माँ त्रिपुर सुंदरी का 2 बार आशीर्वाद मिला, माँ कामाख्या का 3 बार आशीर्वाद मिला, और अब इस बार कलकत्ते की काली माँ का भी पूरा आशीर्वाद मिल गया। तो अब हिंदू धर्म की शक्ति को जागृत होने से कोई रोक नहीं सकता, जिसे अटल जी ने अपनी कविता की एक पंक्ति में कहा था कि हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो अब एक नया स्वरूप भी आ रहा है कि मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।
2: चलिए भाई राजकुमार भाटी जी, माइक उठाइए और बताइए कि क्या ये बीजेपी का ही साइड इफेक्ट है, जो समाजवादी पार्टी कहती थी कि हमारे लिए पूजा पद्धति, धर्म, पूजा जो भी है वो निजी है, पर्सनल है, हम उसको जग जाहिर नहीं करते, हम क्यों दिवाली हो, मंदिर हो, जाने का वीडियो डालें। लेकिन अब अखिलेश जी भी डालने लगे हैं, वो हनुमान जी की पूजा भी करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, तो उसका वीडियो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्या ये बीजेपी का साइड इफेक्ट है?
6: भारतीय राजनीतिज्ञों में हनुमान के सबसे बड़े पुजारी अगर कोई थे तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। वो हनुमान की हमेशा पूजा करते थे, हनुमान का व्रत रखते थे। सैफई परिवार में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में, जिस तरह से हिंदू तीज त्यौहार जिस शानदार तरीके से मनाए जाते हैं, शायद किसी और परिवार में नहीं मनाए जाते। बड़े मंगल पर लखनऊ में भंडारे लगते हैं, डिम्पल यादव कई बार उन भंडारों में सेवा करने गई हैं, अब नहीं, बहुत पहले, 2-4 साल पहले भी। तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हम भी हिंदू हैं, हमारी भी अपनी आस्था है, हम भी अपनी संस्कृति को मानते हैं, अपने देवी देवताओं को मानते हैं और अपने तरीके से पूजन करते हैं। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से सवाल पूछे जाते हैं, मंदिर कब जाओगे, वो कब जाओगे, ये कब जाओ, आस्था पे किसी की पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। अभी हमारे त्रिवेदी जी ने कहा, सुधांश त्रिवेदी जी ने, कि भारत की मूल आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया। भारत की मूल आत्मा है भारत का संविधान, जो कहता है सामाजिक आर्थिक न्याय की बात, भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिया जाएगा। भारत के किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता होगी। भारत की जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो भारत की आत्मा है। आप क्या कर रहे हैं? अभी कल ही अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने 9 साल के अंदर 22 परीक्षाओं में ओबीसी पीडीए समाज के 11,514 नौकरियों की चोरी की है। ओबीसी को लगातार नौकरियों से बाहर करने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। आप हिंदुत्व के हाईवे पर दौड़िए, लेकिन सारे हिंदुओं को लेकर दौड़िए नहीं। आप 15% हिंदू को लेकर आगे दौड़ जाना चाहते हैं और 85% को हाईवे से धक्का दे देना चाहते हैं। इसी तरह आपने पश्चिम बंगाल में किया, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही देखिए मंडल आयोग की सिफारिश है कि 27% ओबीसी के लिए आरक्षण दिया जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में मात्र 17% था, मध्य प्रदेश में भी 15% है। इन्होंने उसे बढ़ाने के बजाय 17 को 7 कर दिया, 17% आरक्षण को जो ओबीसी 54% 65% देश में, उसे 7% पे ले आए। तो हमें केवल शिकायत यह है कि भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, भारत के संविधान को मत तोड़िए, भारत के दबे कुचले पिछड़े दलित पीडीए समाज का शोषण मत करिए, उनके पदों की चोरी मत करिए, अच्छा, उनके साथ अन्याय मत करिए।
2: पीडीए में कौन कौन है सर?
6: पीडीए में वो तमाम लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं,
2: पीछे कौन है?
6: जो पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हैं, पीछे पिछड़ा भी है। देखिए
2: पीड़ित, दुखी, अपमानित, मतलब
6: आप
2: अरे जात है सर, कहां
6: हमारे नारों पे हंसते हैं,
2: हम कहां
6: आप हमारे एजेंडा पे हंसते हैं।
2: अच्छा अखिलेश जी से मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि पिछड़ा दलित है और आप इसका नया दे रहे हैं, मतलब जो प्रवक्ता है वो नया गढ़ देगा,
6: नया नहीं है बिल्कुल,
2: तो फिर सही सही बताइए ना।
6: नहीं सही सही बताओ
2: क्या है।
6: पीडीए में पिछड़ा भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, अल्पसंख्यक भी है, आधी आबादी भी है,
2: आदिवासी
6: दुखी भी है, अपमानित भी है,
2: संख्यक
6: सामान्य वर्ग के भी जो लोग इनकी सरकार से पीड़ित है। खुशी दुबे के साथ क्या हुआ? चार दिन मात्र हुए थे उसकी शादी को, उस बेटी को जेल भेज दिया गया।
9: पीडीए का एक ही फुल फॉर्म है,
6: अखिलेश यादव जी ने उठाई।
9: पीडीए का एक ही फुल फॉर्म है, परिवारवादी, दबंग और अपराधी। बाकी वो जिस भी कैटेगरी में पाए जाते हो वो सारी कैटेगरी में इनके साथ आ जाते हैं। अब इन्होंने ये बात कही तो मैं भी कहना चाहता हूं, जब इनकी सरकार आती है तो कितने पिछड़ों को मिलता है? सारा का सारा उत्तर प्रदेश की प्रतिभा 4 जिलों के 50-60 परिवार के लोगों के बीच में दिखाई पड़ने लगती है। सब जगह उन्हीं का सिलेक्शन होता है, मैक्सिमम 100 परिवार हैं जिनको सारा का सारा लाभ मिलता है। फॉरगेट अबाउट गैर यादव पिछड़ा, यादव समाज में एक ढंग का व्यक्ति नहीं मिलता है। 35 साल हो गए इस पार्टी को बने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, कभी इन्होंने एक योग्य यादव व्यक्ति को भी नहीं बनाया।
2: भाटी जी, आप कभी बनिएगा?
9: किसी से कोई नहीं मतलब है। और एक जो पिछड़ों के आरक्षण की बात बताना चाहता हूं, जानते हैं इनमें क्या है? पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या किया था, 77 जातियां जोड़ी ओबीसी में, उसमें 74 मुस्लिम। उसके लिए अगर मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा ना दिया होता ओबीसी आयोग को, तो ओबीसी आयोग ने पूछा कि भाई ये कैसे हो गया, ये 77 में 74 मुस्लिम कैसे? जानते क्या बोले? वो कन्वर्ट होने से पहले वो लोग ओबीसी थे इसलिए। तो पूछा गया इतनी भारी मात्रा में कन्वर्जन कैसे हो गया, तो कोई जवाब नहीं दे पाए। चूंकि वो रद्द हो गया ओबीसी कमीशन से, इसलिए वो ऑटोमेटिकली घटकर वो आ गया। और मैं अंत में कहूंगा साहब, पूजा तो सही बात है, वो तो शंकर जी की पूजा रावण भी करता था और शंकर जी की पूजा राम भी करते थे। कौन किस हेतु से करता था यह भगवान देखते हैं। राम जब रामेश्वरम में भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की तो उन्होंने कहा रामस्य ईश्वरा या सा रामेश्वरम, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। शंकर जी ने कहा नहीं, राम ईश्वरा यस्य सा रामेश्वरम। तो शंकर जी ने हनुमान रामचंद्र जी की पूजा की, रावण ने कभी राम की पूजा नहीं की। और जो राम के मंदिर में नहीं गए तो राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारन हारा।
2: चलिए अवैध दुबे जी, अब आप मोर्चा संभालिए। मतलब पहले तो सर बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अक्सर कांग्रेस वाले बुरा मान जाते हैं जब भी मैं ये सवाल पूछती हूँ। आपके अस्तित्व की लड़ाई है और ऐसी खबर आई कि मायावती जी के साथ मिलने की कोशिश हो रही है, ऐसा समाज बहुजन समाज पार्टी ने पोस्ट किया। तो क्या आप लोग चाहते हैं मायावती जी से कोलिशन करें, गठबंधन बनाएं, और वो इसके लिए तैयार नहीं है? क्या चल क्या रहा है सर आपकी पार्टी का यूपी में?
10: उचित समय आएगा तो आपके सहित समूचे देश को ये बात पता लग जाएगी। सवाल ये है, प्रश्न ये किया अंजना जी ने कि हिंदू अस्मिता और हिंदू आस्था का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी है और वो उस आधार पर सत्ता के रथ पर सवार है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने व्याख्या की त्रिपुर सुंदरी की, कामाख्या देवी की और माँ कालका की। उनके पुत्रों को दगा और धोखा दे करके आप हिंदू आस्था या हिंदू अस्मिता की बात कर सकते हैं? हिंदू धर्म सत्ता की सीढ़ी मात्र भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्यों रटते रहते हैं दिन भर ये, क्यों इतनी आध्यात्मिक बातें करते हैं? जानते हैं क्योंकि जो पाप है उसको छुपाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 3,287 बलात्कार हर साल होते हैं, बेटियों का 7,919 अपहरण हर साल होते हैं, महिला और बच्चों पर अपराध 43,901, ये सारे आंकड़े हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। मर्डर 3,290, एसिड अटैक दो प्रांत हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा एसिड अटैक होते हैं। सबसे ज्यादा एनीमिया बच्चों में, और जो अब हेल्थ की बात बता रहा हूं, हेल्थ की स्थिति यह है कि अभी हाईकोर्ट का ने ऑर्डर दिया है टेक एक्शन अगेंस्ट डिटोरेटिंग मेडिकल फैसिलिटीज इन स्टेट, उन्होंने कहा हाथ से निकल जाए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसके पहले इसको संभाल लीजिए। 50% महिलाएं खून की कमी की शिकार है, 65% बच्चे खून की कमी के शिकार हैं। एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स मोदी जी ने अभी दिया है प्रमाण पत्र योगी जी को, उन्होंने कहा है कि जो सिंगल टीचर आप चौंक जाएंगे, 6,28,000 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर एक शिक्षक के भरोसे हैं, 9,508
2: इतने मुद्दे फिर भी जनता आपको वोट क्यों नहीं दे रही?
10: सुनिए ना,
2: सवाल तो ये है ना सर, इतने सारे मुद्दे और ये बच्चे सुन भी रहे, सबको
9: मुद्दे खोजने वियतनाम जर्मनी चले
10: गए। जिस दिन
2: समाजवादी पार्टी पर फिर भी उनको भरोसा है, तभी उन्होंने 2024 में ललकारा है इतनी बुरी तरह से।
10: एक दृश्य दिखाया
2: आपको, कितना सीट आया सर?
10: आपने एक दृश्य दिखाया था अभी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर का, एक बड़ा सा दृश्य आपने दिखाया, ऐसा का ऐसा ही दृश्य मैंने 2019 में प्रधानमंत्री जी का देखा। वो कह रहे थे ये शुभेंदु अधिकारी टेलीविजन पर घूस लेता हुआ पकड़ा गया, इसके खिलाफ क्या कोई एक्शन नहीं लोगे? जानते हो क्या हुआ उस मुकदमे का? 5 लोग थे उस नारदा स्कैम में जिनको टीवी पर दिखाया था, 4 को सीबीआई ने पकड़ा है, 4 को, एक को नहीं पकड़ा।
2: ये आप चुनाव के पहले भी बोल रहे थे, कितना सीट आया। तो अब सर, आपका रोड मैप क्या है? आप एक मजबूत विपक्ष देश को क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये सवाल है।
10: ये अंततः जनता को तय करना है। हम ये बात उठाते रहेंगे कि हिंदू अस्मिता का प्रश्न नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संसाधनों की लूट का प्रश्न है। 8,000 करोड़ के अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम करते हैं, 10,000 करोड़ रुपए इनके खाते में होते हैं, अगर 500 वैभवशाली इमारतें, ऐसी बड़ी बड़ी 500 करोड़ की इमारतें इनके दफ्तर के रूप में तब्दील होती, तो हम प्रश्न उठाएंगे कि एक गरीब को 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए देते प्रधानमंत्री जी, और आपका कार्यालय 500 करोड़ में बन रहा है, तो ये सवाल हम उठाएंगे। हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी, आज जो एनर्जी क्राइसिस है हिंदुस्तान की, उसके मूल रूप से जनक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नहीं बनाए प्रधानमंत्री जी, 2005 में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाए थे उसके बाद नहीं बनाए। 32 यूरिया के खाने हिंदुस्तान में है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाए थे। जानते क्या दिया है अभी पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट, उन्होंने कहा है कि ये 40 और 50 साल पुराने हो गए, 25-40 साल पुराने हो गए हैं और 7-50 साल पुराने हो गए।
2: एक सवाल मुझे पूछने दीजिए अभय जी, आप लगातार बोल रहे हैं, बहुत अच्छा आप बोलते हैं और आपके लिए इस पर आपका साधुवाद। आप पिछले 5 साल के अपने डिबेट्स का उठा लीजिए, यही बातें आप हर बार कहते हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है, 19 में आपने चौकीदार चोर है कहा था, 2027 के चुनाव के पहले, अब आप गद्दार कह रहे हैं पीएम और एचएम को, आपको लग रहा है इससे आप पे भरोसा जगेगा जनता का? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है साहब?
10: जिसने जिसने विश्वासघात किया हो, जिसने विष के वास में विष घोल दिया हो, जिसने विश्वास में भारत के, उनको क्या कहें? अगर वफादारी की होती तो वफादार कहते हैं अंजना जी। हमने जो भी कहा ये इतिहास साक्षी है, हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह सत्ता की भूख में नहीं मरे जा रहे हैं। इन्होंने इस प्रजातंत्र को समाप्त करके अपनी सत्ता की भूख मिटाई है। यहाँ वेस्ट बंगाल में जनादेश नहीं ज्ञानादेश लिया, एसआईआर की अवैधानिक प्रक्रिया, सर्वोच्च अदालत, आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, आप जानते हो क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट?
2: एसआईआर तो केरल में भी हुआ था, वहां आपकी सरकार बन गई का तो सांप सूंघ गया।
9: नहीं,
10: सांप के डसने का सवाल है।
2: अरे सर, डसने वसने का नहीं है, आपको अपने नेतृत्व पर कितना सर, असल सवालों का कांग्रेस सामना नहीं करना चाहती है। एंथनी रिपोर्ट में आपको याद नहीं दिलाना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों को फिर परेशानी होगी, लेकिन जहां जहां मुस्लिम तुष्टिकरण होता है वहां वहां आप ही बीजेपी की जमीन तैयार करते हैं। दूसरा, आपके नेतृत्व पर जनता को कितना भरोसा है बताइए ना, क्या राहुल गांधी मोदी के सामने खड़े होकर मैं लीडर बन रहा हूं ऑपोजिशन का, कोई आप लोगों में एकता है? आपके पास क्या विकल्प है जो आप दे रहे हैं जनता को, आप बताइए ना।
10: आपने कहा मुस्लिम तुष्टिकरण, हमने कभी शमशान कब्रिस्तान नहीं किया। अगर आप इतनी नफरत करोगे तो किसी को तो वोट देगा मुस्लिम समाज का आदमी? फिर अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है तो आप कहते हो 90% वोट देके तुष्टिकरण किया।
2: अरे बेशर्म, एक बार जवाब ले लेते हैं।
11: 2014 में जब आप सत्ता से जा रहे थे तो 126 देश लुटियंस की सबसे बहुमूल्य प्रॉपर्टियां वक्फ किसने की थी, ये भी बता दीजिएगा अभय जी। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, अभी इन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए अंजना जी, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, आप महिला अस्मिता की तो बात आप करिए ही मत बिल्कुल भी। राजस्थान में जब आपकी सरकार थी तो आप ही के मंत्री खड़े होकर बोल रहे थे ना कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहां बलात्कार हो सकते हैं। उसके अलावा कर्नाटक के अंदर किस प्रकार के टिप्पणियां रेप के ऊपर की गई, मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता हूँ, आंखों से आंसू आते हैं।
10: एक और चीज सुनिए अभय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला,
11: पूरी बात सुन लीजिए। अब आप
10: समाजवादी पार्टी की 3,000 बलात्कार का आरोपी
12: प्रधानमंत्री जी की सत्ता की
11: अच्छा ये बताइए किसकी सरकार में हुए थे वो बलात्कार? अब यही बता दीजिए किसकी सरकार में हुए थे बलात्कार? जब जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन था तब ये बलात्कार हुए थे और आपकी सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया था।
12: प्रधानमंत्री जी सुनिए, हम पर सवाल खड़ा करोगे?
11: आप बीच में लगातार बोलेंगे ये आपकी मुकदमा आपको बताता है
12: सब जगह
2: दुबई जी भी सक दीजिए मुझे बारी बारी
11: लगातार बोलते रहेंगे।
2: जल्दी बोलिए।
11: एक बात और, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे क्यों नहीं विश्वास करता आज का युवा? कारण बताता हूं मैं, इनके कर्मों के कारण नहीं करता है। आपको याद होगा 2012 से 2017 के बीच में जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोगों के अध्यक्ष और चेयरमैन कौन थे? सभी यादव थे। उसके अलावा 2000 मैं नाम गिना रहा हूं आपको, आप नाम लीजिए,
12: कांस्टेबल भर्ती घोटाला
11: उनके मलकीत सिंह यादव थे, उसके अलावा यूपीएसएसएससी के राजकिशोर यादव थे, यूपीएससीएसएसपी के आश्रम यादव थे, यूपीएचईएससी के लाल बिहारी यादव थे। आप ये नाम जो मैं बोल रहा हूँ चेक करवा लीजिएगा। दूसरी चीज, 2013 के अंदर किस प्रकार से एक ही समुदाय के 90% एसडीएम बन जाते हैं, ये समाजवादी पार्टी के अलावा किसी भी सरकार में नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं अंजना जी, जब से 2012 से 2017 के बीच में इन चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोगों के द्वारा चयनित 40,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो थे उनकी जांच अभी भी सीबीआई इंक्वायरी में चल रही है, क्योंकि वहां पर भाई भतीजा बात किया गया। और आप जो बात कर रहे हैं घोटालों की, अगर मैं घोटालों पे गिनवाने में आऊंगा कि आपका गोधरा, आपका गोमती रवन फ्रंट घोटाला, लैपटॉप घोटाला, आपका पेंशन घोटाला, समाजवादी पार्टी 50 लाख में से 7 लाख तो समाजवादी पार्टी के नेता जो गाड़ियों में चलते थे वो 500 रुपए की पेंशन ले रहे थे। ये जनता जानती है कि जब भी आप आते हैं तो सरकार में लूट और खसोट मचाते हैं। क्या कारण रहा कि जब से बाबा की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश निवेश के लिए उपयुक्त हो गया? क्यों देश का दूसरा बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? कैसे जेवर का एयरपोर्ट बन गया भाई, यही बता दो। कैसे डिफेंस के कॉरिडोर बन गए, यही बता दो आप। कैसे 40 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू हो गए, यही बता दो आप। क्यों उत्तर प्रदेश में एक जिला एक माफिया खत्म करके जब एक जिला एक प्रोडक्ट बना तो उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में गूंज रहा है?
2: ठीक है,
11: आप बताइए
2: छोटा सा जवाब, आप दोनों तय कर लीजिए आपस में, छोटा भाई बड़ा भाई कर लीजिए, अपना तय कर लीजिए कौन है भाई।
12: देखिए यही डिबेट जल्दी डिबेट को ऐसे ही भ्रमित करते हैं। क्या कहा कि उस आयोग में यादव इस आयोग कास्ट के साथ जोड़कर दिखाना चाहिए, ये नहीं बताते कि जब योगी जी आए, आदित्यनाथ जी आए,
13: सबसे ज्यादा इनका नेता पत्रकार से लेके कोई सवाल पूछे
12: साहब है,
13: और जब उनकी खुद की जात पूछी जाए तो बिगड़ा जाते हैं। अच्छा संसद में,
12: अच्छा सुनिए ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाला 2024 उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार में, यूपी टीटी घोटाला 2021 आदित्यनाथ जी की सरकार में, यूपी सहायक शिक्षक भर्ती घोटाला, यूपी पीसीएस घोटाला, यूपी पुलिस एसआई घोटाला, यूपी
11: एपीएस भर्ती घोटाला 2012 से 13 के बीच में, एपीओ 2015, आरओ एआरओ 2013-14, लोअर सबोर्डिनेट 2013,
2: जोर से चिल्लाइए,
11: सरकारी डॉक्टर और एलोपैथिक 2012 से 2016, एक्सीलेंट टेक्निकल 2016,
2: नहीं दे रहा और जोर से,
11: 2015-16 जूनियर असिस्टेंट 2016, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी टीम पीजी शिक्षक 2013,
2: चिल्लाइए सर चिल्लाइए,
13: भर्ती घोटाला 2012-14
2: हो गया। आप पसीना पसीना पूछ लीजिए, सुधांशु जी, सुधांशु जी, आप दोनों से सवाल बारी बारी से होगा, आप दोनों से हुई होगा। सुधांशु जी, 43 सीटें लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की आई थी, आपको इस बात की चिंता नहीं है कि आपने तमाम जगहों पर जो अभी राज्य में आप चुनाव जीते उस पर तो आप खुशी मना रहे हैं कि हमें आशीर्वाद मिल गया, लेकिन अयोध्या ये भाई साहब ले गए, तो ये आपके लिए चैलेंज है या नहीं?
12: अयोध्या, रामेश्वरम, चित्रकूट, भगवान प्रभु श्री राम ने दंड दिया।
2: सर थोड़ा इनको भी बोल लेने दीजिए, यूपी में ये जीतते हैं, थोड़ा बोल लेने दीजिए,
12: हम भी जीते साथ में दोनों।
9: देखिए जो इन्होंने बोला वैसे वो पार्लियामेंट में बोल चुका हूँ 2024 के बाद, भगवान की लीला ये समझ ही नहीं पाए। इन्होंने कहा कि हम अयोध्या हारे, हम बस्ती हारे, यानी वशिष्ठ का हम प्रयाग हारे, वहां से रामेश्वरम, नासिक सब हम हारे ना। ये वो लोग थे जो कहते थे राम हुए कि नहीं सबूत बताओ, राम अयोध्या में हुए कि नहीं सबूत बताओ। वो अपने मुंह से बता रहे थे अयोध्या भी राम की थी, बस्ती भी राम की थी, प्रयागराज भी राम का था, नासिक भी राम का था, रामेश्वरम भी राम का था। और उसके बाद जो राम ने लीला दिखाई वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई, अब तो 2 साल में कहां से कहां, कहां से कहां दुनिया पहुंच गई। और हम लोगों ने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता, बिहार जीता, बंगाल जीता, और
13: ये दोनों तो आपस में लड़के अलग हो गए. मतलब अब ये जो साथ में थे चुनाव में समाजवादी पार्टी साथ में नहीं रही. और उत्तर प्रदेश में क्या चेंज हुआ सिर्फ एक लाइन में बताता हूं, बाकी ठीक है बहस करते रहेंगे. 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या छवि थी, हम लोग जब बचपन में थे कट्टे बनते थे उत्तर प्रदेश में. अब डिफेंस कॉरिडोर में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस बनता है जो 3-3 देशों का एक्सपोर्ट हो रहा है. अगर इसके बाद भी किसी को बदला हुआ नजारा ना दिखाई पड़ रहा हो तो उसे समझना चाहिए. और रही बात इसकी कि कौन हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करता है, तो आज केरल में इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई है और यह वही मुस्लिम लीग है जिसने देश का विभाजन किया था. और अगर कोई यह कहना चाहे तो मैं चैलेंज करके कहता हूं, इस मुस्लिम लीग के संस्थापक मार्च 1949 में मोहम्मद इस्माइल और पी के पोकर साहब बहादुर थे जो कि पार्टीशन से पहले मद्रास प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष था और उसने सेपरेट इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगस्त 1947 में मांगा. और अगर आप कहते हैं ये वो मुस्लिम लीग नहीं है तो आप भी इंदिरा कांग्रेस है वो वाली कांग्रेस नहीं है. अब मैं ये बताना चाहता हूं, सुनिए एक मिनट पूरी बात सर, एक लाइन पूरी हो जाए. असम में इनके कितने मेले जीत के आए, 19, उसमें मुसलमान कितने हैं, 18. और हम नहीं कह रहे, बद्रुद्दीन अजमल ने कहा कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है. इसलिए इनको समझना चाहिए, आज आप मुस्लिम लीग के दम पे केरल में सत्ता में हैं. राहुल गांधी कहां लड़ने गए थे, वायनाड, वहां का डेमोग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए. कारण जानते क्या है, ये मेहनत करना नहीं चाहते, सुविधा की राजनीति. ये कहते हैं बंगाल हम जीते, अरे अमित शाह जी जाके वहां 20 दिन रहे, राहुल गांधी कितने दिन रहे बोलिए. चलिए आसाम में तो आप नेता प्रतिपक्ष थे, कितने दिन रहे, जब चुनाव चल रहा था तो ग्रेट निकोबार से लेकर वियतनाम घूम रहे थे. और उसके बाद लौट क्या कहेंगे, एसआईआर हो गया. अरे एसआईआर पे तो शशि थरूर जी का स्टेटमेंट अवेलेबल है कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने जो वोटर लिस्ट में घपला कर रखा था वो एसआईआर से क्लियर हो गया तो कांग्रेस को फायदा मिला. ये शशि थरूर जी का वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके देख ले.
2: ठीक है, भाटी जी बोलिए, भाटी जी बोलिए. भाटी जी नहीं सर, नहीं उत्तर प्रदेश में बहस हो रही है, भाटी जी
13: सुनिए.
2: भाटी
13: जी ने छोड़ा इनके लिए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपना मुझसा बुरा ना कोई.
2: चलिए
14: सुधांशु त्रिवेदी जी,
2: भाटी जी आज सवाल ये है, आज सवाल ये है कि आपको
14: नहीं, मैंने सवाल
2: लोकसभा चुनाव,
14: सवाल तो
2: लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में तो आपने अच्छा किया, लेकिन वो मोमेंटम आप विधानसभा तक कैसे बरकरार रखे.
14: सुधांशु जी इतना कमाल करते हैं, कह रहे हैं कि इनकी पार्टी जीते तो प्रभु राम की कृपा और इनकी पार्टी हारे तो प्रभु राम की लीला. मतलब हारे तो भी राम इनके साथ, जीते तो भी राम इनके साथ.
13: हरि व्यापक सर्वत्र समाना.
14: और सूर्या मैथिल जी ने इतना धुआंधार झूठ बोला लगातार, सब घोटाले गिनवा दिए. कह रहे कि उसमें गोमती रिवर फ्रंट में और हाईवे में भी घोटाला, दोनों की जांच योगी जी ने बैठाई. मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले इनकी जांच बैठाई.
11: लैपटॉप
14: और दोनों में क्लियरेंस आ चुकी है,
11: कहीं नहीं आई. फर्जी बातें मत फैलाइए यहां पर,
14: बीच में नहीं चिल्लाओगे, बीच में आई है. अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, आप लगातार झूठ बोल रहे थे, मैं इसके बावजूद भी नहीं.
11: मेरा एक प्रश्न हो रहा है आपसे,
14: मैं अपनी बात पूरी कर लूं.
11: जी
14: मैं पूरी कर लूं अपनी बात. देखिए अखिलेश यादव जी ने एक सड़क बनाई जो देश की सबसे शानदार सड़क है, आज भी आगरा से लखनऊ 304 किलोमीटर की गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस लिंक रोड बनाई, जो एक्सप्रेसवे नहीं है केवल चार लेन की सड़क है. 91 किलोमीटर की लागत आई 7200 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए पर किलोमीटर. अखिलेश जी 40 करोड़ में पर किलोमीटर में शानदार सड़क बनाए तो हम घोटालेबाज, और योगी जी उसी सड़क को 80 करोड़ में बनाए, उससे भी बेकार सड़क को, तो वो ईमानदार हो गए. कम से कम कुछ तुलना तो किया करो, कुछ अध्ययन तो किया करो, कम से कम कुछ चीजें समझे तो करो. दूसरी बात, असली मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 7,933 पीडीए की नौकरियों की चोरी हुई है. और ये हाईकोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश
2: निकाले आप पीडीए कैसे निकाले उसमें से, मतलब आपको
14: ओबीसी और एससी
2: तो पीड़ित दुखी तो सारे होंगे ना उसमें,
14: ओबीसी और एससी की
2: जिसका भी कटा होगा.
14: अच्छा चलो ओबीसी एससी
2: सारे पीड़ित दुखी
14: होंगे. ठीक है, वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती में 88 पदों की चोरी हुई है. एडेड जूनियर हाई स्कूल मास्टर हेडमास्टर में 547 पदों की चोरी हुई है. ग्राम पंचायत अधिकारी में 232 पदों की चोरी हुई है. कुल मिला के 11,514 पद एससी और ओबीसी के चोरी किए गए हैं. इन वर्गों से ऐसी क्या नफरत है, क्या ये हिंदू नहीं है, क्या ये हिंदुत्व में नहीं आते.
2: अब जात का खेल रहे हैं, अब जाति का कार्ड खेल रहे
14: हैं. वो तो हमारा संविधान कह रहा है. ओबीसी और एससी कैटेगरी जाति नहीं है,
2: बाकियों का दुख नहीं है क्या? अरे सर बाकियों का दुख नहीं है क्या, जिनका सबकी बात क्यों नहीं कर सकते,
14: बाकियों के लिए
2: तो
14: चोरी की गई है
2: ना, कि जितने का करना है सबकी बात नफरत है,
12: वो भी तो हम पे चिपका है। मैं आप एक एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा,
2: बोलिए
12: बताइए, मुस्लिम लीग के साथ आपने कभी कोई सरकार नहीं बनाई?
9: नहीं,
12: पक्का
9: 1941 में प्रजातंत्र पार्टी।
12: अरे भाई सुन तो लो, पहले पूरा सवाल सुन लो, मत जाइए 41-42।
9: तो चलो इन्होंने स्वीकार किया कि अभी इनका मुस्लिम लीग के साथ है।
12: सुनो ना भाई,
9: बताइए भाई,
12: एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस ने 2012, सब गूगल करिएगा आप लोग, स्थानीय निकाय में मुस्लिम लीग के कारपोरेटर्स जीते, उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। इनकी पार्टी का जन्म कैसे हुआ साहब बताइए, फजलुल हक कौन था? 23 मार्च 1940 को मीनारे पाकिस्तान पर जिसने अलग पाकिस्तान का संकल्प पढ़ा,
9: पाकिस्तान तो बना ही नहीं था 23 मार्च 1940 को, मीनारे पाकिस्तान कहां से आ गई?
12: भारत छोड़ा आंदोलन का आगाज किया इसने,
9: मतलब
12: उस फजलुल हक के साथ इन्होंने सरकार बनाई वेस्ट बंगाल में, और एक रिजोल्यूशन पास किया, जानते क्या, कि भारत छोड़ो के आंदोलन को कैसे कुचलना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संयुक्त रूप से एक मेमोरेंडम गवर्नर को देकर के आए कि भारत छोड़ो। तो ये मुस्लिम लीग से इनका नाता पुराना है, कहते चुपचाप गाय का मांस खा लो, इनका चीफ मिनिस्टर कहता है यहां हिंदू मुस्लिम करके उत्तर प्रदेश में घर में घुस के हत्या कर देंगे, और वहां कहते हैं चुपचाप गाय का मांस खा लो, इनका एक मिनिस्टर कहता है कैन समबडी स्टॉप मी, मैं खाता हूं गाय का मांस, उसने गाय का मांस खाया तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और जिसने पाकिस्तान भेजने की धमकी दी मुख्तार अब्बास नकवी उसको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। तो हिंदू आस्थाओं से खेल रहे हैं, इन्होंने राम जी ने जो दंड दिया ना, देखिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दंड दिया।
2: अरे अभय जी आप इनके ट्रैप में फंस रहे हैं, आप भी वही घूम रहे हैं
9: भैया, मैंने
2: आपको बाकी नीट पर घेरिए, इनको असल असल मुद्दों पर तो घेरिए।
12: मैं वही कह रहा हूँ, जो कांग्रेस
9: बात का जवाब और आज का भी जवाब देता हूँ,
12: पार्टी बनी है वो इनकी सरकार के खिलाफ जेन जी में जो गुस्सा है उसका प्रतीक है।
2: कांग्रेस में काहे नहीं आते?
12: नहीं कांग्रेस देखिए,
2: एक यही तो सवाल है,
12: एक निष्पक्ष आवाज है जेन जी की, जो इन्होंने नीट का स्कैम किया, लगातार भर्ती और प्रवेश परीक्षा के स्कैम है उसकी, उसका प्रतिफल है ये, और ये दिनों दिन बढ़ता जाएगा। इन्होंने अभी कुछ अकाउंट उनके ब्लॉक किए हैं, सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाता है उनकी आवाज बंद करने की कोशिश
9: हो गया। अब बोलने पहले बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट बाय पॉइंट जल्दी जल्दी जवाब देता हूं। इन्होंने कहा 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब थे, हिंदू महासभा ने फजलुल हक की प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई।
12: नहीं ये बोला ही नहीं मैंने, मैंने मुस्लिम लीग नहीं बोला सुधांशु।
2: अच्छा, आप लोग दोनों 27 में आने का क्या लेंगे?
9: 46 में बाद
2: में 2027 में आने का आप दोनों क्या लेंगे बताइए, मैं आपको
9: करवा दूंगा। मैं कहीं बोला भाई साहब, ये क्या तरीका, मैंने आपकी इतनी शांति से
2: 40-47
9: मैंने आपकी इतनी शांति से बात सुनी। अब सुनिए एक पॉइंट मैं जरूर बोलूंगा, 1946 में जब नेहरू प्रधानमंत्री बने अंतरिम सरकार के, 2 सितंबर 1946 को वेवेल के द्वारा शपथ लेकर, क्वीन की निष्ठा की शपथ लेकर, यूनियन जैक के नीचे उस सरकार का बजट प्रस्तुत किया। भाई देखिए आप नंबर टर्न में बोलिए सर,
2: बारी बारी से प्लीज।
9: लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर था मुस्लिम लीग का, जो बाद में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, और इसको प्रणब मुखर्जी साहब ने 2008-09 में अपनी उसमें कोट किया है। आप ही के नेता की कहानी, आपकी जुबानी। अब आइए आज के ऊपर आते हैं, जो इन्होंने कहने का प्रयास किया, इन्होंने बिल्कुल मान लिया कि ये पूरी तरीके से आज जैसे आजादी के समय कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी थी, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। आसाम और केरल इनको बता रहे हैं। और सुनिए एक लाइन सर, ये किसने बोला, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। अब कुछ मुस्लिम लीग का हम रह गया है क्या भैया? अब इनको बताता हूं, ये आए SC ST के अंदर, एक तो बात थोड़ा सा भाटी जी के मुंह से गलत निकल गई, SC ST कास्ट है, OBC क्लास है, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट वर्ड है एंड अदर बैकवर्ड क्लास वर्ड है। और अब SC से इनको कितनी मोहब्बत थी, शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन एंड प्रमोशन किसने खत्म किया? सपा की सरकार ने बैकडेट से खत्म किया। हजारों SC के लोग प्रमोट जो थे वो डिमोट हो गए इनकी सरकार में। और इनकी सरकार में क्या हुआ, खुद काशीराम जी का लेटर है, 31 मई 1995 को मेरे पास लेटर है, अभी दिखा सकता हूं, जिसमें उन्होंने लिखा, मुलायम सिंह सरकार में हो रहे निरंतर अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार प्रताड़ना और कोई सुनवाई ना होने से दुखी होकर मैं उसे वापस ले रहा हूं, और एक एक दलित विधायक को पकड़कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करके मायावती जी की हत्या का प्रयास, ये मायावती जी का आरोप है हमारा नहीं। और यूपी में जो एक बार नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, वो किसने लगाया था? दलितों ने लगाया था, दलित पार्टी ने लगाया था, हम नहीं लगाए थे। इसीलिए मैं कहता हूं एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, PDA के पता नहीं कितने चेहरे बना देते हैं लोग।
2: चलिए जल्दी से छोटा
11: रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम ऊपर से बड़े भूले। आप देखिए यहां पर PDA खूब लगातार चिल्ला रहे हैं भाटी साहब, जरा इनसे पूछिए ना 2012 से 17 के बीच में कितना पीडीए अपना मंत्रिमंडल में रखे थे, ये 58 का इनका मंत्रिमंडल था, जरा इनसे पूछिए ना कितने दलित थे और कितनी महिला थी और कितना जो है ओबीसी वर्ग का इन्होंने
2: जेंसी की इतनी बातें हो रही है, आप में से कितने लोग ये पीडीए वीडीए समझते हैं, अगर कोई है तो हाथ उठाइए, एक दो, आप लोग सोचिए कि आप लोग का कनेक्ट क्या है।
11: एक चीज और,
12: दलित समझते हो आप लोग, दलित सब समझते हैं, समझते हैं ना, पिछड़ा समझते हैं।
13: पीडीए की डेफिनेशन में कंफ्यूजन है भाई,
12: नहीं समझो,
13: इसीलिए आप जो तरह तरह की डेफिनेशन बता रहे
11: हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश को बताना चाहता हूँ, आज असम और पश्चिम बंगाल में तो जिस प्रकार से कांग्रेस को नकारा गया है, एक और चीज मैं बताऊं सुधांशु जी,
2: जल्दी जल्दी,
11: दिल्ली के अंदर नगर निगम में भी कांग्रेस के अगर पार्षद आए हैं 7 तो वो केवल मुस्लिम थे।
12: हाँ भाई,
11: तो दिल्ली के अंदर भी इनको नकारा गया और केवल मुस्लिम तो पार्टी का तमगा सबसे पहले दिल्ली ने दिया।
15: हिंदुत्व में सर्वोपरि गर्ल्स की इम्पोर्टेंस होती है, गर्ल्स को माता माना जाता है, आपकी पार्टी इतने टाइम से रूलिंग पार्टी है, बस गर्ल्स की सेफ्टी नहीं है।
2: जल्दी
13: वैसे हाँ, गर्ल्स की सेफ्टी कहां पर नहीं है, डाटा है कि कन्विक्शन रेट अगेंस्ट द क्राइम ऑफ वुमेन पूरे वर्ल्ड में पूरे इंडिया में है 22%, यूपी में 50% और बंगाल में जहां एक दिन भी हमारी सरकार नहीं थी 3.4%। एनीबॉडी कैन गो एंड चेक।
16: मैम मेरा क्वेश्चन सुधांशु सर से है कि अगर किसी भी विपक्षी नेता पे कोई भी अगर ईडी कोई घोटाला होता है तो उस पर ईडी सीबीआई लगाकर आप लोग उसका खानदान खंगाल देते हैं, अगर नीट पेपर लीक होता है उसमें आपके नेता बोलते हैं मदन दिलावर जो बोलते हैं कि ये नीट का पेपर कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको क्या बोलना चाहेंगे?
2: जल्दी से जवाब दीजिए जल्दी।
13: नहीं देखिए, नीट के बारे में धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पेशल बैठक ली है, आज एनटीए के चीफ जो थे वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी आए हैं और ये पूरी की पूरी जांच सीबीआई को दे दी गई है और पूरी गंभीरता के साथ, और आगे की देर में ये ना हो इसके लिए भी बाकायदा मीटिंग की ली गई है
12: सारे सीबीआई।
2: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।
17: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना, टंकी मतलब वेक्टर्स।
18: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
19: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
20: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
21: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
22: It's college football time. College basketball feels
21: Pardon
22: like it's
21: my take.
22: The Rams catching the Commanders.
21: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
20: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
23: It's your boy,
20: just
23: Jay-Z.
20: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. Here we go.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
8: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते। ये भाई साहब सब पचा देते,
9: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
10: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
11: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
12: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
13: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
14: एक हिंट तो देते।
15: विक्रम!
14: हिंट।
13: बड़े आराम से।
16: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
18: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
17: आप कैसे कर लेते हो?
19: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
18: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
20: नहीं,
18: और म्यूचुअल फंड्स है
20: सही।
21: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
22: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: बस दो दो हजार
2: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो एक लाख तक जीतेगा।
3: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर क्रेडिट स्कोर देखो और एक लाख तक जीतो।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: Like I said before, we better hold the sins.
8: Character, the taste of success.
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: जन गण और मन तीनों जब मिलते हैं तब गण राज्य बनता है। RSS और कुछ नहीं है, शुद्ध यूरोप की नकल करने वाले लोग हैं। जो सेकुलर राजनीति कही जाती है उसकी गलतियों, उसके पाखंड, उसके झूठ, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। समाज से संवाद और सत्ता से संघर्ष, ये हमारा फॉर्मूला होगा। आज इस देश में देशद्रोह की राजनीति चल रही है

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
5: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिनभर की सभी बड़ी खबरें, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जंग से जूझती दुनिया के हालात पर क्वाड मंथन, सुपर शक्तियों के सामने भारत की दो टूक, हर हाल में आतंकांत जरूरी, चारों देशों का साझा बयान, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता जरूरी। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृह मंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। कर्नाटक में सीएम के बदलाव को लेकर सस्पेंड जारी, सूत्रों की खबर, मीटिंग में सिद्धारमैया को पद छोड़ने को कहा गया, बैठक के बाद मीडिया से बोले वेणुगोपाल, ऑल इज वेल। शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कर्नाटक में सीएम के बदलाव को लेकर सस्पेंस जारी है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि आज हुई बैठक में सिद्धारमैया से सीएम पद छोड़ने को कहा गया है। सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजने की बात भी हुई है, हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस की ओर से सीएम हटाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। कर्नाटक के सीएम परिवर्तन को लेकर सस्पेंस जारी है, सिद्धारमैया राज्यसभा जाएंगे या सीएम पद पर बने रहेंगे, इस पर भी सस्पेंस है। कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, सिद्धारमैया को सीएम पद छोड़ने के लिए कहा गया था। मौसमी सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, क्या वजह है कि सिद्धारमैया इतना अड़े हुए हैं? क्या उन्हें राहुल गांधी का सपोर्ट हासिल है? राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि वो राज्यसभा जाएं सीएम पद छोड़ के?
6: देखिए, जो खबर आ रही है नेहा कि हालांकि केसी वेणुगोपाल ने बाहर आके बोला कि सिर्फ राज्यसभा के कैंडिडेट्स और एमएलसी को लेके ये चर्चा हुई है, पर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो वन ऑन वन बैठक हुई सिद्धारमैया मिले खड़गे और राहुल गांधी से, और उसके बाद वन ऑन वन राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई, कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन को लेकर एक गंभीर चर्चा हुई है। सिद्धारमैया को ये ऑफर किया गया कि वो राज्यसभा के रास्ते दिल्ली की राजनीति आकर संभाले, और जिस तरीके से वो एक बड़ा ओबीसी चेहरा है, तो कांग्रेस की जो पिच रही है, ओबीसी पिच, उसको लेकर 2029 की तैयारी में उनका योगदान बहुत जरूरी है। इस तरह की बात सिद्धारमैया के सामने रखी गई है। हालांकि इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, उन्होंने कुछ समय मांगा है, सोच विचार करके वो बताएंगे इस बारे में, और हाँ या ना में जवाब उन्होंने इस पूरे मसले पर नहीं दिया। उसके बाद डीके शिवकुमार से बैठक हुई है खड़गे और राहुल गांधी की।
5: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पर चढ़ रही है और पारा लगातार जो चढ़ता जा रहा है, आसमान से आग भी बरस रही है। ऐसी गर्मी में यूपी में कहीं कहीं बिजली कटौती की खबरें आई हैं, लेकिन सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं है कि बिजली की किल्लत है, बल्कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली कटौती को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा है।
7: मई का महीना मार डालने पर उतारू है, आसमान से आग बरस रही है, तापमान चढ़ता जा रहा है, प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसी भीषण गर्मी में अगर बिजली गुल हो जाए तो समझिए मुसीबत की मार कई गुना ज्यादा हो गई। पिछले कुछ दिनों से यूपी में बिजली कटौती की खबरें आ रही थी, लोगों की मुश्किलें दिख रही थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने बत्ती गुल पर सवाल उठाए थे। अब सीएम योगी ने बिजली कटौती पर समाजवादी पार्टी को घेरा है।
8: ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे, ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी।
7: योगी ने याद दिलाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली का आलम क्या था।
8: किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में।
7: सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि गांवों और शहरों में निर्बाध बिजली मिले, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कई जगहों में गर्मी फुल है, बत्ती गुल है। आज तक ब्यूरो।
5: बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार कायम होते ही बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की वापसी का तांता लगना शुरू हो गया है। जब से पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की शुरुआत की, तब से सरहद पर वापसी करने वालों की भीड़ देखी जा रही है।
9: देगा, लेकिन दामाद है।

0: बात की। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत राजस्थान के कुल 184 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है। इनमें श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के गांव शामिल हैं। इन गांवों में सड़क संपर्क, 4G नेटवर्क, टेलीविजन कनेक्टिविटी और विद्युत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा।
1: वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई, मगर मैं मानता हूं कि प्रयास होने के बाद हमें जवाब देना पड़े, ये स्थिति ठीक नहीं है। हम ये सुनिश्चित करें कि कोई प्रयास करने की हिम्मत ही न करे, ऐसी सीमा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है।
0: थाने में बकरीद से पहले बवाल देखने को मिला। दरअसल मीरा रोड इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के लिए बकरे लाए गए, जिसका हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान यहां ब्लेडबाजी की गई, लेकिन तनाव जब बढ़ गया तब सोसाइटी में कुर्बानी का विरोध कर रहे लोग सोसाइटी के बाहर सुअर लेकर पहुंच गए।
2: मुंबई से सटे ठाणे की हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हंगामा बरपा है। हिंदूवादी दलों के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग यहाँ सुअर लेकर पहुँचे हैं। सुअर को पुलिस वाला इनसे छीनता है, लेकर भागता है, लेकिन ये फिर इसे छीन लेते हैं। दरअसल बकरीद के पहले इस हाउसिंग सोसाइटी के बाहर 3 दिन से हंगामा बरपा है। आरोप है कि सोसाइटी के भीतर कुर्बानी के लिए बकरे लाए गए हैं और जहां कुर्बानी देनी है वहां 3 शेड भी बनाया गया है। हिंदूवादी दलों के नेता इस कुर्बानी के खिलाफ हैं। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की, बात नहीं बनी तो विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। तब भी किसी ने नहीं सुनी तो विरोध ने सुअर लेकर पहुंच गए।
3: बकरा घर के अंदर पाल रहे हैं काटने के लिए, उसका विरोध करने के लिए हम लोग आए
4: हैं। हम लोग सुअर का बच्चा लाए कि जब तक हम गेट के बाहर रखने वाले, जब तक कि आप लोग बकरा नहीं निकालेंगे, जब तक हम लोग सुअर को इधर गेट के सामने सुअर को बिठा के रखेंगे और हम लोग भी बैठेंगे।
2: इसके पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने प्रदर्शनकारियों पर ब्लेड चलाए, कई लोगों को खून खून कर दिया। मामला बढ़ा तो बीजेपी नेता किरीट सुमैया भी यहां पहुंचे।
5: मुस्लिम धर्मान जिहादियों ने प्रयास किया, बकरे रखे गए, अब आधे बकरे निकल गए, बाकी आधे शाम तक निकल जाएंगे। ये सोसाइटी में एक भी बकरे की कुर्बानी नहीं होगी।
6: अंदर 25 से 30 बकरे लाकर रखे गए थे ईद उल अदा की कुर्बानी के लिए, कुर्बानी करनी थी और उसके लिए ये लाकर रखे थे, पर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक यहाँ पर कुर्बानी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में देना अलाउड नहीं है। कोई भी तरीके की कुर्बानी या कत्ल करना किसी जानवर का वो अलाउड नहीं है, ये हाईकोर्ट का निर्देश है।
2: बकरीद से पहले दोनों पक्षों के बीच यहाँ तनाव चरम पर है। मुंबई से विद्या और दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो।
0: ऐसे ही विवाद की एक तस्वीर लखनऊ से आए। दरअसल लखनऊ के पास कास मंडी किला मस्जिद को लेकर विवाद गहरा रहा है। हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं किला है, इसलिए यहां हनुमान चालीसा पढ़ने दिया जाए। हिंदू संगठनों को प्रशासन से इजाजत नहीं दी गई, लेकिन तनाव बढ़े ना इसलिए प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय से कह दिया कि बकरीद के दिन यहां नमाज न पढ़े।
2: मलिहाबाद के कसमंडी किले में पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच ये बहस पूजा को लेकर है। कसमंडी किला मस्जिद विवाद में हिंदू संगठन हनुमान चालीसा करने पहुंचे तो पुलिस बलों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई।
7: क्यों पढ़ी गई? उन्होंने नमाज पढ़ी है, पूजा करेंगे, अब पूजा करेंगे, हमारा अधिकार है पूजा करना।
8: आप क्या चाहते हैं?
7: हम अदालत तक जाएंगे इस मामले को लेकर।
2: पुलिस ने इजाजत नहीं दी तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहीं जमीन पर पूजा की थाल के साथ बैठ गए, जिसके बाद दूर से ही पूजा करके वहां से चले गए।
7: राम राम राम राम जय जय सिया राम, राम राम राम जय सिया राम।
2: पिछले काफी वक्त से मलिहाबाद में राजा कंस पासी का किला और मकबरे को लेकर घमासान चल रहा है। एक पक्ष इसे किला बता रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष इसे मकबरा कह रहा है। पासी समाज गजट के हवाले से ये दावा करने लगे हैं कि जब सालार मसूद गाजी दिल्ली से अवध क्षेत्र की ओर बढ़ा तो राजा कंस पासी ने उससे मुकाबला किया। ये किला राजा कंस पासी का है, जहां मुस्लिम मकबरा बताकर आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जिसे बंद करने की मांग हो रही है।
8: मकामी लोगों को।

0: पर कोई एतराज नहीं, मकामी जो हिंदू भाई हैं उन्हें वहां कोई एतराज नहीं है और आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन बाहरी लोग आकर न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, नए नए मसाइल खड़े करते हैं और जिससे कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की सालिमियत को एक बड़ा खतरा पहुंचता है।
1: बहरहाल यहां लगातार तनाव बना हुआ है जिसे देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: और अब आपको दो राज्यों के दो शहरों की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई। पहली खबर बेगूसराय से, जहां सड़क विवाद में लाठी डंडे चले, तो पटियाला में भी ऐसी ही मारपीट की तस्वीर सामने आई।
3: यहां छिड़ा है भीषण युद्ध, जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं, एक दूसरे को जमकर कूटा जा रहा है। तस्वीरें बिहार में बेगूसराय की हैं। बताया जा रहा है कि यहां गांव वालों की मांग पर सड़क का निर्माण हो रहा था, लेकिन कुछ दबंग नहीं चाहते थे कि इस रास्ते पर सड़क बने। इसी विवाद में मामला बढ़ता गया और जमकर मारपीट हुई। किसी का सिर फूटा, किसी का जबड़ा टूटा, अब लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। दूसरी तस्वीर पटियाला के समाना की है। यहां दो पक्षों में लात घूंसे चल रहे हैं, जमकर मारपीट हो रही है। मारपीट के साथ यहां पत्थरबाजी भी देखने को मिली। दरअसल पंजाब में नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, इसी कड़ी में पटियाला के समाना में वार्ड नंबर 10 बूथ पर कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की, जिसके बाद बवाल बढ़ा और मारपीट शुरू हो गई। पुलिस अब मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज तक ब्यूरो।
2: अरे बात कुत्तों के आतंक की करेंगे। सूरत में कुत्तों के झुंड ने एक बच्चे पर हमला किया। कुत्तों के हमले में बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। एक दिन पहले आवारा कुत्तों ने सहारनपुर में भी एक बच्ची पर हमला किया था, जिससे बच्ची की जान चली गई थी।
3: ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। आवारा कुत्तों ने एक बार फिर से किया है जानलेवा अटैक। सूरत के तिरुपति टेक्सटाइल मार्केट की तस्वीरें हैं ये। एक बच्चा कुत्ते से बचकर भागने की कोशिश करता है, मगर कुत्ता उस पर अटैक कर देता है। इधर से दो कुत्ते और झपटते हैं और तीनों मिलकर इस बच्चे को काटने और नोचने लगते हैं। बताया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं सूरत में बार बार हो रही हैं। एक दिन पहले ही यूपी के शाहजहांपुर में भी आवारा कुत्ते ने एक बच्ची पर हमला किया था। कुत्ते ने बच्ची को इस कदर नोचा और काटा था कि बच्ची की जान चली गई। आवारा कुत्तों के आतंक का ये हाल तब है जब एक हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर पाबंदी लगाने और पकड़ने का आदेश दिया था, फिर भी आवारा कुत्तों का आतंक खत्म नहीं हो रहा। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात को और देशों के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में बैठक की। थोड़ी देर पहले चारों देशों के विदेश मंत्रियों का साझा बयान सामने आया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बैठक में ज्यादातर चर्चाएं द्विपक्षीय आदान प्रदान और विश्व के वर्तमान स्थिति पर केंद्रित थे। क्वाड होने के नाते स्वाभाविक रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित विशेष मुद्दों पर ध्यान दिया गया। चूंकि क्वाड के देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न छोरों पर स्थित चार समुद्री लोकतांत्रिक देश हैं, इसीलिए विचारों का आदान प्रदान महत्वपूर्ण रहा।
4: Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are four maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value.
2: और अब बात शेयर बाजार की। आज घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 489 अंक टूटकर 76,009 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 118 अंकों की कमजोरी रही और ये 23,913 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में कमजोरी के बीच रुपए में भी दबाव देखने को मिला। डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.43 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। वही सराफा बाजार में भी आज गिरावट का रुख जारी रहा। 10 ग्राम सोने की कीमत 900 रुपए टूटकर 157,722 रुपए पर आ गई, जबकि चांदी प्रति किलो 3,404 रुपए की गिरावट के साथ 266,950 रुपए पर बंद हुई। और बात आईपीएल 2026 की, इसके क्वालिफायर में पहले मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आमने सामने हैं। गुजरात ने धर्मशाला में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, जीतने वाली टीम सीधे फाइनल्स में जाएगी।
1: विराट की टीम को एक और फाइनल का इंतजार, गिल के गुजरात भी आर पार के लिए तैयार। आज धर्मशाला के वादियों में एक तरफ कोहली की गूंज होगी तो दूसरी तरफ शुभमन की टीम का शोर डिफेंडिंग चैंपियन को चुप कराने के अभियान में जुटेगा। आईपीएल के क्वालिफायर एक में बेंगलुरु और गुजरात आमने सामने होंगे और दांव पर लगा होगा फाइनल का टिकट। लीग दौर में दोनों टीमों ने 9-9 जीत हासिल की थी और टॉप 2 में फिनिश किया था। इस सीजन में दोनों टीमों का 2 बार आमना सामना हुआ है और दोनों ने 1-1 जीत हासिल की है। पहले बेंगलुरु को 5 विकेट से जीत मिली थी, जबकि दूसरे मुकाबले को गुजरात ने 4 विकेट से जीता था। बेंगलुरु के लिए बल्लेबाजी में विराट कोहली और गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार विरोधी टीम को पूरे सीजन में परेशान करते रहे हैं, जबकि गुजरात के साई सुदर्शन और रबाड़ा के आंकड़े भी उनके ड्रेसिंग रूम का हौसला बढ़ाते रहे हैं। पिछले 15 सीजन में 12 बार ऐसा हुआ है कि क्वालिफायर एक जीतने वाली टीम ही चैंपियन बनी है। अब देखना यह है कि आज का विजेता इस सिलसिले को आगे बढ़ाता है या नहीं। आज तक ब्यूरो।
2: इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब वेक्टर।
6: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
8: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
10: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
13: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
12: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
14: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
10: जेके मैक्स पेंट्स।
9: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते,
12: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
13: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
14: बस 2000
15: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
16: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
17: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
18: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
19: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
20: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
21: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
22: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
23: नहीं,
22: और म्यूचुअल फंड से
23: सही।
24: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े।
25: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
26: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
27: एक हिंट तो देते।
26: हिंट बड़े आराम से।
28: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
29: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
30: सोच बदलो और बैंक भी।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Character, the taste of success.
2: Like I said before, we better own the sins.
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
5: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहां खबर वहां खबरदार।
14: इन एसोसिएशन विद
15: E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
17: अपनी ही सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ बीजेपी के पार्षद नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें भ्रष्ट और निकम्मा बता रहे हैं। मथुरा वृंदावन में 24 घंटे बिजली सप्लाई का दावा है, लेकिन असलियत क्या है यह खुद बीजेपी के पार्षद बता रहे हैं। सोमवार को बीजेपी के पार्षद शशांक शर्मा ने अपनी ही सरकार के बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया कि वो लगातार पिछले साल दिसंबर के महीने से मेंटेनेंस के लिए कह रहे थे, लेकिन तब अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रही और अब लोगों को 12 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही। यही हाल मेरठ का भी है। मेरठ एक शहरी क्षेत्र है, आदेश के हिसाब से 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन 24 तो दूर, यहां तो इतनी बिजली भी नहीं आ रही कि लोग रातों की नींद पूरी कर पाएं या दिन में आराम कर पाएं। लगातार बिजली कटौती हो रही
18: है।
17: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों का क्या हाल है अब आपको ये दिखाते हैं। ये यूपी का चंदौली है जहां पारा 45 के पार चला गया। कायदे से यहां 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन हालात ये हैं कि बिजली लगातार कट रही है। बिजली आती है, लोड पड़ता है और कट जाती है। गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में क्या हालात है अब जरा ये भी देख लीजिए। यहां भी बिजली आने या जाने का कोई वक्त फिक्स नहीं है। लोग भीषण गर्मी में परेशान है, हालात खराब है। कुल मिलाकर सरकार दावे कुछ भी करे, लेकिन हकीकत यह है कि यूपी के शहरी इलाकों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली किसी ख्वाब से कम नहीं है। प्रचंड गर्मी में बिजली की भीषण किल्लत बनी हुई है। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: जंग से जूझती दुनिया के हालात पर क्वाड में मंथन, सुपर शक्तियों के सामने भारत की दो टूक हराल, में आतंक कान जरूरी, चारों देशों का साझा बयान, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता जरूरी। देश की सीमा को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृहमंत्री राजस्थान में, भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति घुसपैठ, और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। डीके शिव कुमार बन सकते हैं कर्नाटक के सीएम, सूत्रों की खबर। बैठक में सिद्धारमैया को पद छोड़ने के लिए कहा गया, उन्हें राज्यसभा के लिए बनाने की कोशिश। राजस्थान में डिलीवरी के बाद महिलाओं की मौत का हो गया हिसाब, नकली दवा के चलते 5 महिलाओं की गई थी जान, दवा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश। कृषा केस की तय तक जाने में जुटी सीबीआई, जांच टीम ने आत्महत्या की जगह का लिया जायजा, सास गिरिबाला सिंह से पूछताछ, मृतक के घर वालों से की बातचीत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं नेहा बाथम। इस वक्त हिंदुस्तान के तमाम शहर भीषण गर्मी की चपेट में हैं और इस गर्मी की वजह से भारी भीड़ की परेशानी हो रही है। पहाड़ चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश के पहाड़, हालात एक जैसे ही हैं। नॉर्थ इंडिया में तापमान 44 से 45 डिग्री के पार चला गया है, तो लोगों ने पहाड़ों का रुख कर लिया है, गाड़ी उठाई और हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ की तरफ चल पड़े। नतीजा ये है कि इस वक्त पहाड़ बुरी तरह से चौक हो चुके हैं, हर जगह जाम लग रहा है, 4 घंटे की यात्रा 10 घंटे में हो रही है और लोग हैं कि रुक ही नहीं रहे।

मैदानों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तापमान 45 के पार है। कई शहरों में तो बिजली का भी गंभीर संकट है, लाइट ही नहीं आ रही। भीषण गर्मी में जल संकट भी हो गया है, शहरों में पानी की सप्लाई भी ठीक से नहीं हो पा रही।

0: ऐसे में लोगों को इस प्रचंड गर्मी में पहाड़ दिख रहे हैं। लोगों ने उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों का रुख कर लिया है। नतीजा ये है कि पहाड़ों पर भीड़ का भारी दबाव पड़ गया है, भयंकर जाम लगा हुआ है। लोग मैदानों से निकलकर पहाड़ों की तरफ जा तो रहे हैं लेकिन जाम में फंस जा रहे हैं। सबसे पहले आपको भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक 6,13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं। मई के महीने में कभी भी इतने ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन नहीं किए। अभी तक का रिकॉर्ड 2023 का है, जब पूरे सीजन में 18 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, और इस बार की भीड़ देखकर लग रहा है कि यह रिकॉर्ड टूट जाएगा। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगातार नजर आ रही हैं। जून के महीने में और अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अब सवाल है कि इतनी भीड़ मैनेज कैसे होगी, क्योंकि अभी से बद्रीनाथ के रास्ते में जाम के हालात बने हुए हैं। जोशीमठ में वैकल्पिक रूप से एक साइड फिर दूसरी साइड की गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, फिर भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं।
1: बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी मई का महीना पूरा नहीं हुआ है, अपने नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर लगातार गाड़ियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो वहीं जोशीमठ में वन वे सिस्टम, गेट सिस्टम करने के बावजूद जाम की स्थिति बनी हुई है। गाड़ियां आधा घंटे में 7 से 8 किलोमीटर लंबी लाइन गाड़ियों की लग रही है।
0: मई में ही पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं, तो जून के महीने में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। यही हाल केदारनाथ धाम में भी है। ये केदारनाथ का वीआईपी गेट है, देखिए दर्शनों के लिए कितनी भीड़ उमड़ी हुई है, कैसे धक्का मुक्की हो रही है। हालात ये हैं कि घंटों लाइन में रहने के बाद भी दर्शन नहीं हो पा रहे। नौबत यहां तक आ गई कि हर भक्त 2,500 रुपए की वीआईपी पर्ची कटवाकर अंदर जाना चाहता है और उसे भी जगह नहीं मिल पा रही। अभी तक करीब 9 लाख लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा शुरू हुए अभी 1 महीने का वक्त हुआ है और इस 1 महीने में इतने यात्री केदारनाथ धाम में कभी नहीं पहुंचे।
2: पहली बार देखा गया है कि मात्र 34 दिन में इतनी अधिक संख्या में तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। हर रोज 30,000 के आसपास यात्री केदार धाम पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तुंगनाथ, मधमेश्वर सहित जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता है, यहाँ भी पर्यटकों की भारी भीड़ है। आए दिन बद्रीनाथ एवं केदारनाथ हाईवे पर जाम लग रहा है। पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों के अधिक पहुँचने के कारण अव्यवस्थाएं भी हावी हो गई हैं।
0: लोगों को किस किस तरह की समस्या हो रही है, अब ये जानिए। 8-8 घंटे लाइन में लगने के बावजूद लोग दर्शन नहीं कर पा रहे।
3: ये बुजुर्गों को भी गालियां निकाल के धक्के दे रहे थे, औरतों को धक्के मार रहे थे बदतमीजी से।
4: इतने बुजुर्ग हैं, यहाँ कहा जाता है कि 60 साल से ऊपर वालों के लिए दर्शन।
3: अरे उन्होंने कहा कोई वीआईपी नहीं है सब, मतलब कुछ बद्दी बद्दी गालियां बोली उन्होंने। मतलब तो ठीक है, एक बुजुर्ग बाबा चलने लगनी साथ मुझे उनको धक्का मारा होगा।
5: मैंने यहाँ पे मतलब कि रात में 1 बजे से दर्शन की लाइन में लगा था और सुबह की 8 बजे तक लाइन में लगा था, लेकिन लाइन में एक भी पसंद ली नहीं है। अभी पुलिस वाले बोलते हैं कि अभी भी ये ऐसे ही रहेगी, तो इसलिए हम लोगों ने बाहर आ गए दोबारा से वो अंदर जाने।
6: मैनेजमेंट कैसा आपका
5: यहाँ पे? मैनेजमेंट एक बकवास है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। हम लोग बोले धक्का मुक्की हो गया तो पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे।
7: यहाँ पर हम 1 बजे रात से ही लाइन लगे हैं, 1 बजे रात से, जबकि हमको अभी मन के चलिए अभी टाइम हो रहा है, अभी हमको दर्शन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर प्रशासन वगैरह कोई सुविधा नहीं है, वीआईपी जो है वो सबका दर्शन हो रहा है। हम लोगों के लिए मतलब कोई दिक्कत नहीं, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है।
4: मंदिर समिति के द्वारा
7: कोई सुविधा नहीं,
4: बिल्कुल
7: बिल्कुल नहीं।
4: आप खुश हो?
7: अभी हमको देखिए, हम 1 बजे रात में लाइन लगे, अभी हमको पूजा है।
0: सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भी मौसम बदल गया है, जमकर बर्फबारी हो रही है। 3 दिन पहले ही हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं और यहाँ भी हेमकुंड साहिब के रास्ते में भीड़ और जाम लगना शुरू हो गया है। जोशीमठ में जमकर बारिश हो रही है तो मौसम काफी ठंडा हो गया है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में मौसम बदलते ही बर्फबारी हो गई। शनिवार को ही हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं और कपाट खुलते ही बर्फबारी हुई, ठंड भी बढ़ गई और भारी संख्या में संगत हेमकुंड साहिब पहुंच रही है। आबाद को नैनीताल का हाल दिखाते हैं। नॉर्थ इंडिया के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में नैनीताल में भीड़ बढ़ गई है। वीकेंड पर तो नैनीताल और आसपास के इलाकों में पर्यटकों का जबरदस्त दबाव देखने को मिला था। मॉल रोड पर दिन भर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। नैनी झील भी भयंकर भीड़ का दबाव झेल रही है। आज तक ब्यूरो,
6: यही हाल हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों का है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के पर्यटक खास तौर पर हिमाचल जाते हैं और नतीजा ये है कि हिमाचल के पहाड़ जाम हो गए हैं। कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी, सब जगह भीड़ ही भीड़ है।

0: हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली भी इस वक्त भयंकर जाम से जूझ रही है। सुहाने मौसम और वादियों का आनंद लेने पहुंचे सैलानियों का सफर अब ट्रैफिक जाम की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। मनाली लेह मार्ग पर करीब 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। वीकेंड मनाने लोग जाते हैं तो उनका पूरा वीकेंड ही बर्बाद हो जाता है।
1: मैं फिलहाल इस समय मनाली ले राष्ट्रीय मार्ग राज्य मार्ग पर हूं, तो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रैफिक वाहनों की एक लंबी कतार जो है इस पूरे इलाके में लग चुकी है। करीब 7 से 8 किलोमीटर जो लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है। लोग अब खासे खासे परेशान हो रहे हैं, तो आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये करीब 3 से 4 किलोमीटर का जाम जो है ये हमारे बिल्कुल सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो लोग हैं, लोगों साथ के साथ साथ जो पर्यटक हैं जो घूमने के लिए यहाँ आए हैं, वो काफी जो परेशान नजर आ रहे हैं।
0: गाड़ियां तो बस जैसे सड़क पर रेंगती हुई नजर आई। यही हाल मनाली रोहतांग मार्ग का भी रहा, जहां पर्यटकों को घंटों जाम में फंसना पड़ा। हालात ऐसे रहे कि सामान्य तौर पर 4 घंटे में तय होने वाला सफर 8 से 10 घंटे में पूरा करना पड़ रहा है।
2: चीज़ है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं अभी वैकेशन में आए हुए, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सफ़र करना पड़ा। मतलब मान के चलो आप मुश्किल से 4 घंटे जैसा तो आदमी ट्रैफिक में रह गए हैं, तो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा तकलीफ हुई है। हाँ ठीक है, बट जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो वेदर है, जो सीन सिनेरियो है, वो उसको भी एंजॉय कर लेते हैं।
3: 7 बजे निकला था जी सुबह होटल से, नगर रोड सी, मैंने रोहतांग जाना था। रोहतांग कस्टमर को घुमाया, आज घुमा के 3-4 घंटे जाम में लगे हैं मेरे। उसके बाद 1 घंटा मैंने घुमाया, अब 3-4 घंटे वापसी में लग रहे हैं। अब जहाँ इन्होंने जाना है वहाँ कम से कम जिस जगह घूमना है, हडिम्बा टेम्पल, वो बंद हो जाना है। इतना आज का दिन खराब हो गया, मतलब जाम ज्यादा है सर, बहुत ट्रैफिक के लिए थोड़ी दिक्कत है।
4: ठीक है, और ट्रैफिक जो है मतलब प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है, इतना बुरा हाल है। ठीक है, कस्टमर भी परेशान हो रहे हैं, सुबह से निकले हैं। ठीक है, प्रशासन मतलब आपको ट्रैफिक का कोई बंदा नहीं मतलब दिखेगा कोई भी। ठीक है, ऊपर से रोड की जो हालत है, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही रफ रोड है। 4-5 घंटे सुबह और 4-5 घंटे मतलब अभी फंसे हैं जाम में। ठीक है, पूरे रास्ते में जाम ही है।
0: ये रोहतांग पास और शिंकुला की ओर जाती हुई गाड़ियों की तस्वीरें हैं। यहाँ करीब 4,000 वाहन एक साथ पहुंच गए, जिसकी वजह से भारी जाम लग गया। प्रशासन की ओर से रोहतांग पास के लिए केवल 1300 वाहनों को ही अनुमति दी गई थी। यहाँ बीते दिनों ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने रोहतांग का रुख करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ आकर वो भारी जाम में फंस गए। मनाली रोहतांग मार्ग की ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। सड़क पर दूर दूर तक गाड़ियों की लाइनें नजर आ रही हैं। सारी गाड़ियां एक के पीछे एक करके फंस गई हैं। ट्रैफिक आगे बढ़ ही नहीं रहा। जैसे ही लोगों को बर्फबारी की खबर मिल रही है, वो तुरंत पहुंच जा रहे हैं और यहां आकर जाम में फंस जा रहे हैं। यही हाल मंडी का भी है। ये चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। ये जाम पंडो से थलोट तक दिन भर लग रहा है। कई जगहों पर वाहन घंटों तक रेंगते रहे, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: पहाड़ों पर घूमने के लिए पर्यटन स्थल होते हैं, तो मैदानी इलाकों पर पर्यटन के लिए मंदिर होते हैं। गर्मी है तो क्या, धार्मिक पर्यटन तो कहीं से कम नहीं हो रहा है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों के मंदिर में भारी भीड़ है। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, सब जगह लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। खासतौर पर आज गंगा दशहरा के मौके पर भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे।
0: ऐसा नहीं है कि ये भीड़ सिर्फ पहाड़ों पर हो रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। ये अयोध्या की तस्वीरें हैं। ज्येष्ठ माह के चौथे बड़े मंगल के मौके पर रामनगरी अयोध्या पूरी तरह भक्तिमय रंग में नजर आई। सुबह से ही भगवान हनुमान के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विशेष रूप से प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। बड़े मंगल के अवसर पर अयोध्या में जगह जगह भंडारे, प्रसाद वितरण और धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़े मंगल पर प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में भी आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं। हनुमान जी की पूजा के लिए इस दिन की विशेष महत्ता है, इसीलिए लोग 45 डिग्री के तापमान की परवाह किए बगैर हजारों की संख्या में बस दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। गर्मी में लोगों के पैर न जलें, इसलिए जमीन पर कालीन भी बिछाए गए और गर्मी से बचने के लिए पंखे की भी व्यवस्था की गई। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भीषण गर्मी है, गर्मी के ऊपर आस्था भारी पड़ गई। लोग सुबह से ही ऐसी ही लंबी लंबी लाइनों में लगे रहे।
6: आज ज्येष्ठ माह का चौथा बड़ा मंगल है और हम इस वक्त संगम के लेटे हनुमान मंदिर में हैं। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो सुबह से लगी हुई है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु सुबह से ही बजरंगबली के दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और बजरंगबली से अपने परिवार और देश की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर बजरंगबली लेटी हुई अवस्था में श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं और जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूरी होती है। आज गंगा दशहरा भी है और गंगा दशहरा में श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं, अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। तो प्रयागराज में ज्येष्ठ माह में आज बजरंगबली के दर्शन कर श्रद्धालु फूल चढ़ा रहे हैं, तुलसी चढ़ा रहे हैं और बजरंगबली को आम चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज्येष्ठ माह में आम चढ़ाने की भी यहाँ पर परंपरा है।
0: आज गंगा दशहरा भी है, इसीलिए संगम नगरी प्रयागराज में गंगा दशहरा पर भी भारी संख्या में लोग संगम में स्नान करने के लिए उमड़े हैं। गंगा के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। वैसे ही भीषण गर्मी है। प्रयागराज तो उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में शामिल है। यहाँ तापमान लगातार 45 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है और ऐसे में गर्मी के साथ आस्था आ गई तो लोग हजारों की संख्या में संगम में डुबकी लगाने पहुंच गए।
7: आज गंगा दशहरा का शुभ अवसर है जिसमें मैं अपने सपत्नी गंगा स्नान करने के लिए आया हूं। गंगा माँ के हम सौभाग्य से प्रयागवासी भी हैं। गंगा माँ की कृपा है कि जो हम यहाँ के वासी हैं और ये तपोस्थली है प्रयाग और सभी तीर्थों का राजा इसे कहा जाता है।
5: वक्त ही इस ब्रेक का उछला है, अब बने रहिए हमारे साथ, टिकते रहिए आज तक।
8: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना, टंकी मतलब।
9: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
10: Oh, ouch.
9: However you make money work, we can work with that.
11: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
12: Discover your new favorites on TuneIn. With over 100,000 music, news, and sports stations to choose from, there's always something to listen to. Even podcasts and audiobooks for you to enjoy. Stay connected for all new recommendations and follow us on social media at TuneIn on Facebook, Instagram, and X. And start listening today. Just ask your device to play TuneIn.
13: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. So thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: मुझे लगा मैं नहीं पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है
15: ब्रीदेबल फैब्रिक्स ऑसम कंफर्ट एफर्टलेस स्टाइल एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
7: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
8: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
9: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
10: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
11: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ।
12: म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
13: नहीं,
12: और म्यूचुअल फंड से
13: सही।
14: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
15: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
16: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
17: सोच बदलो और बैंक भी।
18: Character, the taste of success.
19: Like I said before, we better own the sins.
20: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
21: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
22: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
20: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
23: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
21: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
20: जहां खबर वहां खबरदार।
24: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
25: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना, टंकी मतलब
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: जंग से जूझती दुनिया के हालात पर क्वाड में मंथन, सुपर शक्तियों के सामने भारत की दो टूक, हर हाल में आतंक का अंत जरूरी, चारों देशों का साझा बयान, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता जरूरी। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृह मंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। डीके शिवकुमार बन सकते हैं कर्नाटक के सीएम, सूत्रों की खबर, बैठक में सिद्धरमैया को पद छोड़ने के लिए कहा गया, उन्हें राज्यसभा के लिए मनाने की कोशिश। राजस्थान में डिलीवरी के बाद महिलाओं के मौत का होगा हिसाब, नकली दवा के चलते 5 महिलाओं की गई थी जान, दवा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश। ट्रिशा केस की तह तक जाने में जुटी सीबीआई जांच टीम ने आत्महत्या की जगह का लिया जायजा, सास गिरिबाला सिंह से पूछताछ, मृतक के घर वालों से बातचीत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। घुसपैठ शब्द सुनते ही आपको लगता होगा कि जो किसी स्थान, सीमा या क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से चुपके से या जबरदस्ती प्रवेश करे, लेकिन आज इसी घुसपैठ से परेशान आम आदमी की कई खबरों से हम खबरदार करेंगे। सबसे पहले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर ले चलेंगे, जहां घुसपैठिए उल्टे पांव लौटने लगे हैं, जहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सीधे कह रहे हैं भाग घुसपैठिए भाग। इसके बाद आम आदमी के जीवन में मिलावट की उस घुसपैठ से खबरदार करेंगे, जिसकी वजह से दवा ही जिंदगी देने की जगह लेने लग गई। दावा है कि राजस्थान में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत उस इंजेक्शन की वजह से सरकारी अस्पताल में हो गई, जिसमें वो दवा का 0 कंटेंट निकला, जिसका होना जरूरी था। आगे फिर आपको हम धर्म के नाम पर सियासी घुसपैठ से खबरदार करेंगे, जिसकी वजह से मुंबई जैसे शहर की सोसाइटी में अब बकरीद से पहले हंगामा हो रहा है। और फिर बेरोजगारों को परेशान करती सरकारी बदइंतजामी की घुसपैठ से खबरदार होना जरूरी है, क्योंकि देश के आम लोगों के बच्चे किसी भी परीक्षा में बैठे वो ढंग से कराई ही नहीं जा रही। NTA, CBSE के बाद SSC का हाल देखेंगे तो माथा पीट लेंगे। लेकिन सबसे पहले उस घुसपैठ से खबरदार करते हैं जो जनता और देश दोनों की सुरक्षा के लिए खतरा बनती है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, खासकर घुसपैठ को लेकर। SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ पहुंची थी, वैसी ही भीड़ आज बांग्लादेश की सीमा से सटे बॉर्डर पर वापसी का इंतजार कर रही है। घुसपैठियों की इस चिंता को शुभेंदु ने यह कहकर और बढ़ा दिया कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से भागना ही होगा।

0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास इन चेहरों को गौर से देखते जाइए। ये लोग वो घुसपैठिए हैं जो जल्द से जल्द अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों में इस खौफ की वजह शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने राज्य में रहने वाले हर घुसपैठिए को ये कहकर खबरदार कर दिया, भागो जल्दी भागो।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा,
0: तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाग घुसपैठिया भाग। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की इस दो टूक ने राज्य में छिपे घुसपैठियों में खलबली मचा दी। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पर पहुंच गए। सवाल है कि क्या बांग्लादेश इन्हें वापस लेगा?
1: बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, तो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लें। ये सब बांग्लादेशी है तो ले लेना चाहिए।
0: तो शुभेंदु अधिकारी को भरोसा है कि बांग्लादेश इन सब घुसपैठियों को वापस ले लेगा। क्या वाकई में बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना इतना आसान होगा?
2: पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया।
0: शुभेंदु सरकार घुसपैठियों को चुन चुनकर राज्य से निकालना चाहती। इसके लिए मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर खोला गया। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर में लाकर हिरासत में रखा गया। इनमें 3 महिलाएं, 6 नाबालिग शामिल। जैसे ही खबर राज्य में छिप कर रहने वाले घुसपैठियों तक पहुंची, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया, बांग्लादेश की सीमा के पास पहुंचने लगे।
3: ये वही हकीमपुर है जहां साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे। SIR जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी, तो अब लोग यहां पर काफी तादाद में यहां पहुंचे थे। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे वो यहां पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाएं।
0: शुभेंदु सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की रही है। इसी सिलसिले में मुर्शिदाबाद में प्रशासन ने एक साथ 3 लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा। इन 3 बांग्लादेशी नागरिकों ने मुर्शिदाबाद के लालगोला और भगवानगोला सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। ऐसा ही एक घुसपैठिया आज तक संवाददाता तापस सिंह गुप्ता को हकीमपुर बॉर्डर में मिलता है, जिसने खुद कबूल किया कि वो पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहा था।
3: आप हिंदी बोल सकते हैं?
4: ना, बांग्ला में।
3: अच्छा, अपना नाम की?
4: असद अली।
3: असद अली, अपना बाड़ी कोथा है?
4: नोला दृष्टि,
3: जशोर। कत बचर आगे?
4: 5 बचर आगे।
3: 5 बचर आगे की जन्म
4: ब्रेन आउटब्रेक डाक्তার দেখাইছে।
3: ডাক্তার দেখানোর জন্য এসেছিলেন না? আপনি কি পাসপোর্টে এসেছিলেন?
4: না, আমি ব্ল্যাকে এসেছিলাম।
3: কিসে ব্ল্যাকে এসেছিলেন?
4: জি,
3: মানে দালালের মারফত?
4: না, একা চলে এসেছি।
3: একাই এসেছি?
4: তখন দালাল ছিল।
3: আচ্ছা,
4: একা হেঁটে চলে এসেছি।
3: একা হেঁটে চলে এসেছি? কোনো কারো কি কোনো টাকা দিতে হয়নি?
4: না।
3: আচ্ছা, তারপর কতদিন ধরে চিকিৎসা চালাচ্ছে?
4: দেখেন, এখানে লেখা আছে 6 বছর।
3: আচ্ছা, এটা
0: তো আজ তক সে বাতচিত মে বাংলাদেশ তে আয় ঘুসপাইটিয়ে নে খুদ বাতায়া কি ও পিছলে 5 সাল সে পশ্চিম বঙ্গাল মে রহতা হ্যায়, ও ভি বিনা পাসপোর্ট কে अवैध रूप से बड़े आराम से बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ करने में कामयाब रहा और पिछले 5 साल में सुरक्षा एजेंसियों की उस पर नजर भी नहीं पड़ी।
3: ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से, और ये देख सकते कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपनी जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 जून 2024, और तब से वो यहाँ पर है। कह रहे हैं कि 5 साल थे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एटा कौन हॉस्पिटल? CNM, अच्छा, चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये कोलकाता के बेनियापुकुर में एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर वो इस अपना मेडिकल इलाज करवाने के लिए आए थे।
0: तो सोचिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में असद अली नाम का बांग्लादेशी घुसपैठिया पांच साल से रहता आया, जो बांग्लादेश के जैसोर शहर के नाला दृष्टि का रहने वाला है, जो कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन असद अली जैसे घुसपैठियों को जैसे ही पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर खुलने की खबर लगती है, ये भागकर वापस बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच जाते हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये।
5: शुभेंदु
1: जल्दी जल्दी भागो,
5: शुभेंदु
1: बांग्लादेश भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा।
0: शुभेंदु अधिकारी सरकार की योजना बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ को सौंपने की है। शुभेंदु कह भी चुके हैं कि वो घुसपैठियों को अदालत नहीं बल्कि सीधे बॉर्डर ले जाएंगे ताकि डिटेक्ट, डिलीट और डिपो

0: सरकार के तेवरों का ही असर है कि राज्य में इधर उधर छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद सीमा पर पहुंच रहे हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
1: यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ज्यादातर लोग जिनसे हम बात कर रहे थे वो 5-6 साल या 8 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन हर किसी का एक अलग कहानी है। लेकिन अगर दूसरे छोर से देखा जाए कि अवैध तरीके से रात के अंधेरे में वो भारत में प्रवेश किए थे, सवाल ये है कि वो इस तरीके से प्रवेश किए, सालों साल वो पश्चिम बंगाल में रहे और बिना डिटेक्शन के, अब जब होल्डिंग कैंप की बात की जा रही है तब एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। पुलिस की ओर से भी इन्हें कहा गया है, ये बता रहे हमें, कि इस वजह से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है।
2: 12 मई को शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की गले मिलते हुए फोटो वायरल हुई थी। इस पर हेमंत बिस्व शर्मा ने लिखा था, बुरे दिन। इसके आगे उन्होंने लिखा, आप जानते हैं कौन, और साथ में शुभेंदु अधिकारी को टैग किया। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी तुरंत जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कोई इनाम नहीं होगा। आज जिस तरह से शुभेंदु घुसपैठियों में खौफ भर रहे हैं, उसने घुसपैठ से इनकार करने वालों के मुंह पर भी ताला लगा दिया।
3: I have a border constituency. Who wants to live in India now? I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators and a lot of things in Bangladesh are actually better. Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India.
0: देश में जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ को बेकार कहा हुआ बताता है, उसे महुआ मित्रा की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर बैठे इन घुसपैठियों को देखना चाहिए, जिन्हें अक्सर कई राजनीतिक दल और नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए झुठलाते हैं।
1: ये हाकिमपुर चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट के उस पार बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सातखीरा डिस्ट्रिक्ट है और सातखीरा डिस्ट्रिक्ट में इन्हें भेजा जाएगा। और जो प्रोसेस ये बताया गया है कि अमूमन जितने लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ सिलेक्ट किया जाता है, उनके दस्तावेज लिया जाता है, बांग्लादेश के जो दस्तावेज रहे हैं।
0: याद करिए बंगाल में जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तब भी ऐसे ही बॉर्डर पर लोग बांग्लादेश जाना शुरू हुए थे।
4: ये लॉकडाउन बहुत आगे माने अर्ली लॉकडाउन शुरू हुई ये तुम्हार बड़ा फल लॉकडाउन कई बस
5: আমি দু বছর এক মাস হয়েছে এখানে আসছিলাম, চোরাই পথে আসছি, কোন পথে আসছি সেটা বলতে পারবো না।
6: কেন এসেছি
5: আসছিলাম, আমার ওয়াইফ অনেক অসুস্থ ছিল, তার মানসিক হয়েছে, কিডনিতে সমস্যা ছিল।
0: তব ডর থা লেকিন কুছ দিন কা হো সকতা হ্যায়, ইনহে লাগা হো কি জ্যাসা পহলে হ্যায় वैसा ही चलता रहेगा। जैसे ये बांग्लादेश जाकर पश्चिम बंगाल में रहते आए हैं, रहते रहेंगे। लेकिन बीजेपी न सिर्फ सत्ता में आई बल्कि शपथ लेने के 20 दिन से कम वक्त में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया और बांग्लादेशी घुसपैठिए डर के मारे अब खुद ही बंगाल छोड़ने लगे।
7: बहुत कष्ट कर रहे, खूब कष्ट कर रहे,
8: दिने आशा जाए रातो आशा
9: जाए,
8: काज करार जन्य।
0: तो बांग्लादेश से घुसपैठ करवाने का बंगाल में अवैध कारोबार चलता है, जो 9,000 रुपए की रिश्वत लेकर बांग्लादेशियों की बंगाल में एंट्री करवा देता है। सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश से आने वाले ये लोग या तो काम की तलाश में भारत आते हैं या फिर इलाज करवाने के, मतलब भारत में बांग्लादेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं और भविष्य दिखता है, जो उन्हें घुसपैठ के लिए प्रेरित करता है, जो उस दावे के बिल्कुल उल्टा है कि भारत में कोई क्यों आना चाहेगा। लेकिन इस मामले में सबसे खबरदार करने वाली बात यह है कि भारत में घुसपैठ करना आसान है और घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजना थोड़ा कठिन।
1: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए 3D नीति अपनाई है, यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। और इसी के तहत अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर में एक बार फिर सैकड़ों तादाद में लोग जो अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत प्रवेश किए थे, उनकी भीड़ नजर आ रही है। एक के बाद एक लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा।
2: पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बदलते जनसांख्यिकी কে পরিবর্তন

0: परिवर्तन को लेकर खबरदार किया था बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद इसे रोकने के लिए। जहां बांग्लादेश की सीमा पर बाढ़ लगाई जा रही है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में घुसपैठ रोकने के मिशन पर काम शुरू कर दिया।
1: बॉर्डर के सुरक्षित करा अभारतीयों देर दर्जा देखिए दा घुसपैठिया हटाओ, जाओ जहां से आया था उस रास्ता से जाओ वापस, जाओ बांग्लादेश।
2: पश्चिम बंगाल जीतने के बाद बीजेपी सरकार अब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए चक्रव्यूह रच चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की योजना पूरे देश में घुसपैठ रोकने के साथ डेमोग्राफी बदलने का सपना देखने वालों के मंसूबे ध्वस्त करने की है।
3: कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें।
2: तो जो लोग भारत की सीमाओं में चोरी छिपे घुसकर फर्जी दस्तावेज बनवाकर इस देश की डेमोग्राफी बदलने का सपना देख रहे थे, उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जिस महामिशन का संकल्प लिया,
4: घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे, घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने उस पर मुहर लगाते हुए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज के गठन का ऐलान कर दिया है, जो पूरे भारत में अवैध प्रवास और दूसरे कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन का अध्ययन करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सीमा को स्मार्ट बॉर्डर बनाने की है, जहां से घुसपैठ करना असंभव होगा।
3: ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 1647 किलोमीटर पर ही बाढ़ लगाई गई है। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बीएसएफ को तारबंदी के लिए जमीन सौंप दी गई, जिसने बॉर्डर पर अपना काम भी शुरू कर दिया। बीजेपी अपने ट्रिपल डी फॉर्मूले यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट को सख्ती से लागू कर रही है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में सिर्फ मिजोरम में बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह की योजना बीजेपी शासित राज्यों में बांग्लादेश से घुसपैठ करीब करीब खत्म करने के लिए बीएसएफ को स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल करके घुसपैठ के हर रूट को खत्म करने का मंत्र दिया गया है।
3: अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून थून कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है।
2: घुसपैठ रोकने के इसी प्लान पर अमित शाह त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बीच होल्डिंग सेंटर बनने के बाद जिस तरह से खलबली देखी जा रही है, उसने भारत में घुसपैठ की समस्या और चुनौती को एक बार फिर सबके सामने लाने का काम किया है।
0: सत्ता बंगाल में लंबे वक्त तक टीएमसी की रही तो दावा है कि गुंडागर्दी की घुसपैठ आम लोगों को परेशान करती रही। जहां पहले हम देख चुके हैं किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता तक अपने दफ्तर को टीएमसी के कब्जे से नहीं छुड़ा पाते थे और बीजेपी राज आने पर टीएमसी के कब्जे से अपना ऑफिस कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आजाद कराया। वहीं आज खबर बिस्वजीत मंडल की, जो 5 साल तक टीएमसी के लोकल नेता के डर से घर से दूर रहे लेकिन अब वापस घर लौटे।
2: पूजा करते हुए घड़ियाल बजाते इस चेहरे को देखिए, नाम बिस्वजीत मंडल, दक्षिण 24 परगना की कैनिंग पूर्व विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता 5 साल बाद अपने घर में वापस आ पाए? वो घर जिसे 2021 विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी नेता के डर से बिस्वजीत मंडल को दावा है छोड़ना पड़ा। वो घर जो दावा है कि टीएमसी के नेता शौकत मुल्ला के कहने पर इसलिए बुलडोजर चलवा कर कई जगहों पर गिरवा दिया गया क्योंकि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता बिस्वजीत मंडल रहते थे। दावा है कि टीएमसी के नेता यहां चाहते थे कि बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं के घर तोड़कर इतना डरा दो कि कभी यहां बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई ना बचे। लेकिन बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के बाद, शुभेंदु सरकार आने के बाद हिम्मत वापस मिली तो बीजेपी के नेता विकास सरदार के साथ बिस्वजीत मंडल अपने उस घर में वापस लौटे, पूजा पाठ किया, लोगों को दोबारा गृह प्रवेश का प्रसाद खिलाया।
5: सारा पश्चिमबंग मानुष तादेर जीवने बाँचार एकटा स्वाद पेयेछे যে আমরা অন্তত হিন্দু মানুষ এই পশ্চিমবঙ্গে বাস করতে পারবো। এতদিন আমাদের কোনো মানুষ পাশে দাঁড়ায়নি, অ্যাকচুয়ালি এখানে বোমা বন্দুকের রাজত্ব হয়, যেটা শৌকত মোল্লাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু এনআইএ তদন্ত করে যদি এখন এই অস্ত্র উদ্ধার করা হয়, হাজার হাজার অস্ত্র কিন্তু উদ্ধার হবে।
2: বিশ্বজিৎ মন্ডল কে ইস বাত কে সবুত হ্যায় কি হর বার বঙ্গাল মে চুনাও কে বাদ জো হিংসা হোতি রহি উসমে টিএমসি কে লোক চুন চুন কর নিশানা বানাতে থে। लेकिन अब की बार न केवल उस हिंसा पर रोक लगी है बल्कि सत्ता बदलने पर साहस जुटाकर लोग घर भी लौटने लगे। वहीं बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कहीं लेफ्ट और टीएमसी राज की तरह कटमनी का चलन न चलने लगे, इसलिए खुद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चेतावनी दे रहे हैं।
6: बहुत लोग 4 घंटा में भगवा गुलाल लगा लिया, हाथ में बीजेपी का झंडा उठा लिया और कारखाना के दरवाजे में पहुंच गया, तो इसको चिन्हित करने का काम सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी है। जो पैसा मांगेगा मान लीजिएगा, जो यूनियन करेगा आपका कंपनी में जाकर, हम आपको बोलकर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नाम पर कोई सिंडिकेट नहीं है, किसी को पैसा मत दीजिए।
0: और अब आज तक पर यह अगली खबर, देश के दूसरे राज्य के दर्शक ध्यान से देखकर खबरदार हो जाएं क्योंकि बड़ी खबर आई है। राजस्थान में कोटा के सरकारी अस्पताल में नकली ऑक्सीटोसिन दवा से जुड़े मामले में अब पता चला है कि यही नकली दवा राजस्थान के कोटा के अलावा दिल्ली, इंदौर और यूपी के गोंडा में भी सप्लाई हुई है, जिसकी सूचना आगे दे दी गई है। यानी देश के 4 राज्य में अब तक वो दवा मरीजों को दी गई जो नकली है। ये नकली दवा आम आदमी की जिंदगी में जानलेवा भी बनी है, चिंता पैदा करने वाला यह सवाल इसीलिए क्योंकि 4 मई से 17 मई के बीच राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पताल में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई जिन्हें यही नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था।
7: आपकी बच्ची होती तो क्या करते आप? आपकी बच्ची, आपकी बहू होती तो क्या करते आप?
2: परिवार रोते रहे, मौतें होती रही। माएं खौफ में जीती रही, हेल्थ डिपार्टमेंट सोता रहा। आंसू दर आंसू गर्भवती मां बच्चों को जन्म देकर दम तोड़ती रही, परिवार बिलखता रहा। धीरे धीरे आंदोलन बनने लगा कि आखिर गर्भवती महिलाओं की जान क्यों जा रही है। गर्भवती पायल ने 4 मई को दोपहर 12:58 पर दम तोड़ दिया। गर्भवती ज्योति ने 4 मई को ही दोपहर 1:35 पर अंतिम सांस ली। गर्भवती पिंकी महावर की मौत 7 मई को दोपहर 3 बजे हुई। गर्भवती प्रिया महावर की जान 8 मई सुबह 8 बजे चली गई। शिरीन ने 17 मई दोपहर 3 बजे दम तोड़ा। राजस्थान के एक ही जिले कोटा में 4 मई से 17 मई 14 दिन में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई। कभी कहा गया किडनी फेल हो गई, कहीं कहा गया हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल यानी दोनों सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की मौत एक बड़ा सवाल बन गई। महिलाओं की जान जाती रही और तब जाकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर नींद से आधे जागे अस्पताल का दौरा करके खाना पूर्ति कराए। पर अब जाकर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के भीतर मौत की अंधेर नगरी से खबरदार होना जरूरी है, क्योंकि जहां कोटा के सरकारी अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक गर्भवती महिलाओं की मौत पर पर्दा डालता रहा, वहां दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के कहने पर हुई दवाओं की जांच से डराने वाला सच सामने आया। सच गर्भवती महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन लगने का जिसमें दवा का कंटेंट जीरो निकला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को लगाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जांच रिपोर्ट का पन्ना है। इस पन्ने पर साफ साफ लिखा है कि अमृतसर की जैक्सन लेबोरेटरीज की तरफ से बनाया गया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसकी जांच में ये नमूना आईपी के अनुरूप नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं। इसी रिपोर्ट में कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गंभीर रूप से अवमानक है, यानी मानक के विपरीत। मतलब जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डिलीवरी के दौरान प्रसव प्रक्रिया को सुगम बनाने, लेबर पेन में आगे की प्रक्रिया को सरल करने और डिलीवरी के बाद होने वाले खून के बहाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उस इंजेक्शन में वो ड्रग ही नहीं थी, उसका कंटेंट जीरो था। तो क्या इसी वजह से कोटा में 5 गर्भवती महिलाओं की जान चली गई? आज तक मैं सीधे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से ही सवाल किया।
8: कोटा में जो 5 प्रसूताओं की जो मौत हुई थी, उसका जो सैंपल कोलकाता भेजा गया था, वो ड्रग्स में फेल हो चुका है।
9: अभी ऐसा कि पूरे ड्रग्स इंजेक्टेबल्स जो 20% दवाइयां जो हमारा मेडिकल कॉलेज ने खरीदे हैं, वो और हमारे जो RMSCL की दवाइयों की उनकी पूरी जांच करके पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था। इसमें बेसिकली क्या है कि कोई इतनी जल्दी 7 घंटों के अंदर कोई मौत के कगार पे आ जाए और उसके 7-8 घंटे में डेथ हो जाए, ये कोई चीज है जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है।
8: प्रथम दृष्टया कोई लापरवाही लग रही है, बड़ी कार्रवाई
9: अब देखिए ऐसा है, बड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर सब तथ्य सामने आ जाए उसके पश्चात मैं उसका जवाब।
2: मंत्री जी देखिए अब आप, यही वो जांच रिपोर्ट है जो राजस्थान के खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण विभाग ने जारी की, लेकिन शर्मनाक हालत है। 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई और जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उन्हें लगा वो दवा ही पूरी नकली निकली, मतलब उसमें ऑक्सीटोसिन का कंटेंट था ही नहीं। रिपोर्ट सबके सामने है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं जांच रिपोर्ट आने दीजिए।
9: पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था।
2: 22 दिन बीत चुके हैं, राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग अब तक मौत का कारण खुलकर बोल नहीं पा रहा। मंत्री जांच रिपोर्ट का इंतजार करा रहे हैं, जबकि जांच करने वाले उन्हीं के राज में दवा का सच बता देते हैं।
10: कोटा में लास्ट 15-20 डेज बैक हमने जो सैंपल्स अराउंड 20 अलग अलग टाइप के मेडिसिन लिए थे, उसमें 19 वेर ऑल स्टैंडर्ड। एक मेडिसिन जो टोसिन है, जैक्सन फार्मा का है, उसमें जो टोसिन जो ब्रांड नेम है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन करके दवा होना चाहिए, तो उस में दवा था नहीं, उसका कंटेंट जीरो निकला है।
2: जिस नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में दवा के नाम पर कुछ था ही नहीं, वो कोटा में स्थानीय स्तर पर ही खरीदी गई थी। 10,000 इंजेक्शन जेके लोन अस्पताल गए और 2,479 इंजेक्शन न्यू मेडिकल कॉलेज।
11: जो सैंपलिंग जितनी दवाइयों की गई थी उसमें से ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन का एक बैच, उसमें एक्टिव कंटेंट नहीं मिला है जांच में, तो उसके लिए हमने उचित स्तर पर कार्रवाई के लिए लिख भी दिया है। ये मेडिकल कॉलेज कोटा की RC पे हम लोगों ने परचेज ऑर्डर दिया था।
12: प्रिंसिपल होने का अर्थ कतई ये नहीं है कि मैं किसी के क्लिनिकल जजमेंट पे कोई क्वेश्चन करूं।
13: नहीं सर, आपकी बात सही है, पर जो
12: मैं अपना जवाब दे चुका हूं,
13: जो महिलाओं को ये दिक्कत हुई सर, तो इसमें डॉक्टरों को क्यों नहीं पता लगा इनको कि
12: ये डॉक्टर बता सकता है, मैं नहीं बता सकता।
14: मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं मैं क्या बताऊं, अधीक्षक कहते हैं दवा तो मेडिकल कॉलेज की मंजूरी से खरीदी और स्वास्थ्य मंत्री 3 हफ्ते बाद भी जांच रिपोर्ट का इंतजार करके मामला लटकाते हैं।
15: आखिर कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में ये नकली दवा पहुंची कैसे? इमरजेंसी खरीद के नाम पर सब स्टैंडर्ड दवाइयों के खरीद का बड़ा रैकेट सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। दवा खरीदने वाले अधीक्षक कह रहे हैं कि अगर ये दवा नकली थी तो फिर डॉक्टर ने दूसरी दवा का प्रयोग क्यों नहीं किया। डॉक्टर का कहना है कि दवा नकली है, यह पता कैसे चलेगा जो दूसरी दवाइयों का प्रयोग करेंगे। अब बड़ा सवाल है कि जब इन दवाइयों से मौत नहीं हुई है तो फिर मौतें कैसे हुई है, इसके बारे में आखिर कौन बताएगा।
14: राजस्थान सरकार ने टोसिन इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी जैक्सन लेबोरेटरीज के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराने का आदेश दिए, जिसके मालिक कहते हैं कि कमी इंजेक्शन में नहीं है, राजस्थान के सरकारी विभाग में है।
16: वो तो स्टोरेज के ऊपर भी डिपेंडेंट है, स्टोरेज जब मतलब पे गलत हो जाएगी तो इसका इफेक्ट होगा। आज हम किसी भी दवा को अगर 1 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं तो उसके कंटेंट्स खत्म हो जाते हैं, तो ये ऐसी ही कोई नेग्लिजेंस हुई है।
14: एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालकर जांच रिपोर्ट आने दीजिए बताकर चेहरा बचाने का काम हो रहा है, लेकिन इस सच को तो कोई नहीं झुठला सकता कि नकली बेकार जो किसी के काम के लायक इंजेक्शन नहीं था वो गर्भवती महिलाओं को लगा जिनकी मौत बाद में हुई है। अब जरूरी है कि इन्हीं चेहरों के साथ जांच आगे की जाए। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: और अब राजनीति के मैदान से आती 2 बड़ी खबरों से खबरदार करते हैं। खबर कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक से, जहां बड़ी सियासी हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले दिल्ली से खबर आई कि हाईकमान ने सिद्धरमैया को इस्तीफा देकर दिल्ली में राज्यसभा में आने के लिए कहा है, जिस पर सिद्धरमैया ने कहा है कि सोचकर बताएंगे। वहीं कर्नाटक से खबर है कि सूत्रों के अनुसार सीएम सिद्धरमैया को राज्यसभा के लिए राजी किया जाना बाकी है और मुख्यमंत्री अपने करीबी मंत्रियों संग बैठक इस पर कर रहे हैं। तो क्या आप कर्नाटक में लंबे वक्त से मुख्यमंत्री पद का इंतजार करते डीके शिवकुमार के दिन बदलने वाले हैं?
17: I also request you to, for heaven's sake, now stop your speculation.
14: सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार जब दिल्ली में बैठक करके निकलते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी का ध्यान इस बात पर रहता है कि राहुल गांधी के साथ भीतर हुए मंथन में कर्नाटक में क्या फेरबदल होगा या नहीं, इस पर कुछ भी ना कहा जाए।
18: Today entire discussion is only concentrated on coming Rajya Sabha elections and council elections of Karnataka. Whatever speculation you people are doing, that is only speculation, no reality at all.
14: लेकिन क्या सिद्धारमैया के चेहरे पर दिखती थोड़ी निराशा और डीके शिवकुमार के चेहरे पर हल्का सा सुकून जो नजर आता है, क्या कर्नाटक की वही सबसे बड़ी खबर है? क्या कर्नाटक में आखिरकार डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पाने जा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी से सिद्धारमैया की विदाई का वक्त अब आ चुका है? ना कुछ सिद्धारमैया बोलते हैं, ना कुछ डीके शिवकुमार बोलते हैं। लेकिन आज तक संवाददाता खबर देते हैं कि सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया से मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा जा चुका है। हाईकमान ने सिद्धारमैया से राज्यसभा के रास्ते दिल्ली आने और फिर एक बड़ी भूमिका निभाने को कहा है। भरोसा सिद्धारमैया को हाईकमान ने ये भी दिया कि बाकी सभी मामलों और उनकी समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा।
19: इंदिरा भवन में लगभग 7 घंटे बैठक चली। इस बैठक में जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से पार्टी नेतृत्व ने 1-on-1 बातचीत की तो उनको जो ऑफर रखा उसको लेकर सिद्धारमैया ने कहा कि उनको सोचने का कुछ समय चाहिए। राज्यसभा के जरिए दिल्ली की राजनीति संभालने के बारे में उनको विचार विमर्श करने की जरूरत है और इसलिए वो अभी हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते।
14: तो क्या बार बार दिल्ली तक आकर खाली हाथ लौट कर जाने वाले डीके शिवकुमार के अब 6 दिन आने जा रहे हैं, जिन्होंने राहुल गांधी से जनवरी में हुई मुलाकात के बाद लिखा था कि कोशिशें भले नाकाम हो जाएं, दुआएं नाकाम नहीं होती, तो क्या वही दुआएं अब डीके शिवकुमार की पूरी होंगी जिनको 2.5 साल बाद कुर्सी मिलने का भरोसा दिया गया, या फिर अब भी कोई पेच डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के बीच में है?
19: कांग्रेस हाईकमान पर अक्सर फैसले टालने को लेकर आरोप लगते आए हैं, जिसकी कीमत भी कांग्रेस को कभी सत्ता गवा के राज्यों में और या फिर नेता गवा के चुकानी पड़ी है। लेकिन पहले केरला और अब कर्नाटक में जिस तरीके से पार्टी हाईकमान और खासतौर से राहुल गांधी सक्रिय नजर आए हैं, कहीं ना कहीं नेतृत्व को भी इस बात का एहसास है कि अगर 2029 में कांग्रेस की बारी आनी है तो फैसले कड़े लेने होंगे और पूरी तैयारी से उतरना होगा। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलेन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
0: मौसमी सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ रही हैं इसी खबर पर। मौसमी, जिस तरह की पेचीदा स्थिति खड़ी हो चुकी है इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए, उसमें गुंजाइश कितनी लग रही है कि सिद्धरमैया मानेंगे इस बात को?
19: जी देखिए श्वेता, ये तो यक्ष प्रश्न है कि सिद्धरमैया मानेंगे कि नहीं। देखिए, उनके सामने जो ऑफर रखा गया है राज्यसभा का, अब ये देखना होगा कि क्या वो राज्यसभा के रास्ते दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं या पार्टी आलाकमान से कहते हैं नहीं, मुझे राज्यसभा नहीं आना और मैं इस्तीफा दे देता हूं, क्योंकि वो ये बात पहले भी कह चुके हैं कि जैसा राहुल गांधी चाहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो ये लगातार अब गेंद जो है वो सिद्धरमैया के पाले में है। उन्होंने कुछ दिन का वक्त मांगा है और एक दो दिन का, और अपना फैसला वो पार्टी आलाकमान को बताएंगे। पर ये तय है कि पार्टी आलाकमान ने नेतृत्व परिवर्तन का मन बना लिया है और अब 2013 या 2019 नहीं है, सिद्धरमैया के लिए भी 80 साल के वो हो गए हैं, एक लंबी पारी बतौर सत्ता में और बतौर सीएम सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ज्यादा रार नहीं ठहरेगी और बात बन जाएगी कांग्रेस के लिए।
0: बहुत शुक्रिया मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौसमी बता रही हैं कि जिस तरह का फॉर्मूला है उसमें मुमकिन है ये संभव हो जाए। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं, पहले एनटीए फिर सीबीएसई और अब एसएससी। परीक्षा कराने वाली हर बड़ी संस्था ने क्या मजाक बना दिया है परीक्षा व्यवस्था का? ये सवाल इसीलिए क्योंकि नीट के इम्तिहान में क्या हुआ, सीबीएसई ने 12वीं के पेपर जांचने में क्या किया, ये किसी से छुपा नहीं। हमने आज तक पर लगातार सबसे पहले इस पर खबरदार किया। कल ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है को कहना पड़ा कि एनटीए तो पहले की कमी से कोई सबक नहीं सीखता, लेकिन सबक तो एसएससी ने भी इस पूरे गड़बड़ झाले में किसी से नहीं सीखा। जहां एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 चल रही है, लेकिन प्रयागराज में जहां 500 कंप्यूटर ही सेंटर पर थे, वहां दावा है कि 1000 से ज्यादा लोगों को परीक्षा देने भेज दिया गया। नतीजा ये हुआ कि जमकर हंगामा हुआ, ऐसा ही गोरखपुर में भी हुआ और बिहार तक हंगामा चलता रहा। सवाल है कि ऐसे हालात क्यों होते हैं? क्या इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कभी चिन्हित करके कार्रवाई होती है या फिर केवल बेरोजगारों को यूं ही परेशान किया जाता है?
20: हमारा पेपर 3 बजे एंट्री है, 4:30 बजे गेट क्लोजिंग, 4 बजे गेट क्लोजिंग है। हम लोग यहाँ 3 बजे से आके खड़े, आधे बच्चों का पेपर हो रहा, आधे बच्चों को अंदर ही नहीं ले जाने दे रहे हैं।
21: यहाँ पे लोगों को समझिए 200-200 किलोमीटर से लोग आए हुए हैं, यहाँ कुछ लोगों का पेपर हो रहा है, कुछ लोगों का हो ही नहीं रहा है। ये कहाँ का नियम है कि जो आधे लोग पेपर में बैठा के पेपर दिलवाया जा रहा है, आधा सीट कह रहे हैं कि मेरे पास सीट ही नहीं है।
20: 500 में से 250 बच्चों का हो जाता है,
22: जितना सीट यहाँ था उतना हमने ले लिए। वही तो आपको मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण जो सीट का जो होता है अलॉटमेंट, यहाँ गलती से ज्यादा हो गया था, तो उस लिए हम ये बाकी हम सबको नहीं ले सकते, जितना हुआ उतना लिए।
23: बोल रहा है सर परीक्षा कैंसिल कर दी गई है,
24: क्या कारण क्या है?
23: ये हम तो अभी आई वे किए, बोल रहे थे हमें, मेरा 3rd सिटिंग था,
24: 3 सिटिंग में परीक्षा।
23: हाँ, बोल रहा है टेक्निकल इशू की वजह से,
24: टेक्निकल इशू की
23: वजह से। ये कुछ बोल ही नहीं रहे अपने मन में,
24: माइकिंग तो कर रहे हैं कि कैंसिल कर दिया गया।
23: फिर बोल रहे हैं कैंसिल होगा, अगले दिन परीक्षा होगा।
24: कहाँ से आए?
25: यूपी से।
24: अच्छा, एग्जाम हुआ आपका?
25: एग्जाम कहाँ हुआ, इसी में था, पता ना क्या कि अंदर, और रद्द कर दिया उसको,
24: रद्द कर दिया।
25: फिर रात बजा के आए, फिर अब जाएंगे, फिर रात बजा के आएंगे अगले दिन।
0: और अब धर्म की लड़ाई से खबरदार करते हैं, जहां बकरीद पर मुंबई की सोसाइटी तक बवाल पहुंच गया है।
14: ठाणे की मीरा रोड में सोसाइटी के गेट पर नारेबाजी करते ये लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि यहां बकरे के नाम पर शुरू हुआ झगड़ा ब्लेडबाजी तक पहुंच गया।
1: विवाद इतना बढ़ा कि बकरीद की कुर्बानी के लिए सोसाइटी के अंदर बकरे लाए जाने लगे, कुर्बानी के लिए खेत बना दी गई, इसका विरोध हुआ तो झड़प हो गई, 3 हिंदू युवक जख्मी हुए, पुलिस को मुकदमा लिखना पड़ा, पहरेदारी बैठानी पड़ी।
3: 2-4 बकरे थे, अभी क्या है इन्होंने 50-60 बकरे ला दिए।
4: कुछ जिहादियों के द्वारा बजरंग दल पे चाकू से वार किया गया, वो हमारा मांग है उसको अरेस्ट किया जाए और बकरे को बाहर निकाला।
1: मामला बढ़ने लगा, भीड़ भी बढ़ी, पुलिस का तनाव भी, बीजेपी के नेता मौके पर आने लगे, आखिरकार सोसाइटी में से बकरों को बाहर निकाला जाने लगा।
5: अब आधे बकरे निकल गए, बाकी आधे शाम तक निकल जाएंगे, ये सोसाइटी में एक भी बकरे की कुर्बानी नहीं होगी।
1: इस सोसाइटी के बवाल से पुलिस सतर्क हो गई, अमन कमेटी की मीटिंग से लेकर फ्लैग मार्च तक के इंतजाम करने पड़े, बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित है और कुर्बानी के लिए जगह भी तय कर दी गई।
6: स्लॉटरिंग के लिए महानगर पालिका ने 3 जगह पे परमिशन दिया है, उसमें भाईंदर वेस्ट में एक जगह पे, SK स्टोन दूसरी जगह, और थर्ड जो है काशीगांव में, ऐसे 3 जगह पे महानगर पालिका ने परमिशन दे दिए।
1: वैसे बकरीद पर कुर्बानी का विवाद पिछले कुछ वर्षों से अक्सर दिख रहा है, इस बार बंगाल से लेकर असम तक, यूपी से तेलंगाना तक बकरीद की कुर्बानी को लेकर राजनीति, पुलिस प्रशासन ने ज्यादातर जगहों पर सार्वजनिक कुर्बानी पर रोक लगा रखी।
0: भगवान के दर पर भी अगर आम आदमी और VIP में भेदभाव होने लगे तो फिर खबरदार करना जरूरी है। केदारनाथ में भक्तों की भीड़ रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन जो उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार नहीं देख पा रही वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। केदारनाथ में दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु हर मुसीबत हंसते हुए झेल कर पहुंच रहे हैं, लेकिन दावा है कि 8-12 घंटे लाइन में खड़े होकर भी उन्हें दर्शन नहीं हो पा रहा। इसकी वजह श्रद्धालुओं के मुताबिक VIP लाइन की दीवार है, जिसे तोड़ने के बजाय प्रशासन उसे मजबूत करता दिखता है।
7: 1 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, ना कोई व्यवस्था है, ना लाइन चल रही है, 8 बजे लाइन चलनी चालू हुई है।
26: पर हम 1 बजे रात से ही लाइन लगे हैं, 1 बजे रात से, जबकि हमको अभी मन के चलिए अभी टाइम हो रहा है, अभी हमको दर्शन हुआ है, ठीक है।
1: ये उस आम आदमी का दर्द है जो भक्ति के दम पर केदारनाथ तो पहुंच गया, लेकिन वहां प्रशासन की बद इंतजामी ने इसका मन खट्टा कर दिया। दुर्भाग्य ये कि अकेले नहीं।
7: मैं नोएडा से आया हूँ और मैंने यहाँ पे मतलब की रात में 1 बजे से दर्शन की लाइन में लगा था और सुबह के 8 बजे तक लाइन में लगा था, लेकिन लाइन में 1% खुली नहीं है और पुलिस वाले बोलते हैं कि अभी भी ऐसे ही रहेगी, तो इसलिए हम लोगों ने बाहर आ गया, उसको छोड़ दिया, दोबारा से वो अंदर जाने।
27: मैनेजमेंट कैसा आपका?
7: मैनेजमेंट एक बार बकवास है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं, हम लोग बोल रहे धक्का मुक्की हो गया तो वो पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे।
1: केदारनाथ में भक्तों के इसी सैलाब के दम पर आने वाले दिनों में अपनी कामयाबी का डंका सत्ताधारी सरकार और व्यवस्था पीटती दिखेगी, लेकिन उस कहानी में जयपुर के श्याम खंडेलवाल के साथ हुई बदसलूकी का जिक्र नहीं होगा, जिनसे पुलिस वालों ने धक्का मुक्की की और गाली गलौज तक की।
28: समस्या ये है, बुजुर्गों को भी गालियां निकाल के धक्के दे रहे थे, औरतों को धक्के मार रहे थे बदतमीजी से।
29: इतने बुजुर्ग हैं, यहाँ कहा जाता है कि 60 साल से ऊपर वालों के लिए दर्शन,
28: अरे उन्होंने कहा कोई VIP नहीं है सब, मतलब बद्दी बद्दी गालियां बोली उन्होंने।
1: उत्तराखंड सरकार ने पूरे देश को केदारनाथ आने का न्योता तो दिया,
30: श्रद्धालु आ रहे हैं, हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक प्रकार से उनके दर्शन हो, एक प्रकार से आना जाना हो, सुव्यवस्थित हो, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, अभी हमारा बहुत अच्छी सबके दर्शन भी हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं।
1: भक्त भी देश के कोने कोने से वहां पहुंचे, लेकिन सरकारी बद इंतजामी की वजह से आम आदमी क्या यहां भी पीछे छूटा? दर्शन करने में उसके पसीने छूट गए, अगर कुछ याद रह गया तो प्रशासन की नाकामी और लापरवाही।
7: बारिश से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आने जाने के लिए भी ऐसे बदमाशी भी करते हैं, रास्ते में शैतानी करते हैं, कच्चर वाले।
31: एक मित्र था कल,
32: उसके साथ आए आप लोग?
7: हम राजस्थान अलवर से, भैरव से, ना मतलब कि लैट्रिन बाथरूम की ऐसी कोई व्यवस्था, एक एक घंटे बाथरूम करने के लिए 1 घंटे रुकना पड़ रहा है यहाँ पे।
33: लगे थे लोग सुबह 3 बजे उठ करके 4 बजे से लाइन में लगे हैं, अभी 12:30 बज गया, अभी तक नंबर नहीं आया, अभी मंदिर बंद हो गया।
1: केदारनाथ में महीने भर के अंदर 9 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके, पहले कभी इतने श्रद्धालु दर्शन करने नहीं पहुंचे। रविवार को 29,787 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। इस तरह केदारनाथ में श्रद्धालुओं को करीब तीन सेकंड दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन केदार मंदिर समिति की रिकॉर्ड कमाई के बावजूद बाबा के भक्तों की क्या बेकदरी होती है? भगवान के दरबार में भी आम और खास में क्या भेदभाव होता है? केदारनाथ का वीआईपी गेट देखिए, जहां दर्शनों के लिए कितनी भीड़ उमड़ी है, धक्का मुक्की हो रही है। बद इंतजामी का आलम यह कि हर कोई इससे बचने के लिए 2,500 रुपए की वीआईपी पर्ची कटवाकर अंदर जाना चाहता है। इसके बावजूद केदार बाबा के दर्शन करने की मुराद आम आदमी की पूरी नहीं हो पा रही।
2: यहाँ पे ढंग ना कुछ सेवा पानी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बेचारी बूढ़ी माँ मेरी बहुत परेशान है,
8: चक्कर आ रहे
2: ना कुछ भी नहीं है। सही का प्रशासन कुछ नहीं है,
8: कमी है बहुत ज्यादा बढ़िया।
2: रात के 10 बजे खड़े हैं इधर पे, अब तक 100 मीटर आगे नहीं सरके।
1: तो केदारनाथ में प्रशासन ने भक्तों को तो बुला लिया, लेकिन तस्वीरें गवाही दे रही कि बद इंतजामी भी इस बार नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। सवाल है कि ये घंटों में लाइन लगने के बावजूद श्रद्धालु दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे? प्रशासन और बद्री केदार मंदिर समिति क्या भक्तों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की जिम्मेदारी लेगा? जिस वीआईपी लाइन को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही उसे लेकर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? इतने सारे सवालों के बीच प्रशासन मान किसी दूसरी दुनिया में जी रहा, कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है।
2: यहाँ पे ढंग की ना कुछ सेवा पानी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बेचारी बूढ़ी माँ मेरी बहुत परेशान है,
8: चक्कर आ रहे
2: यहाँ कुछ भी नहीं है। सही का प्रशासन कुछ नहीं है,
8: कमी है बहुत ज्यादा बढ़िया।
2: रात के 10 बजे खड़े हैं इधर पे, अब तक 100 मीटर आगे नहीं सरके।
1: केदारनाथ में भक्त दुनिया भर की मुसीबतों को हंसते हुए सिर्फ इसलिए झेल रहा है ताकि उसे अपने भगवान के दर्शन हो जाए। प्रशासन चाहे जितनी अपनी पीठ ठोक ले, लेकिन देश देख रहा है कि पहाड़ी से गिरने वाले पत्थरों के खतरे से बचते बचाते भोलेनाथ के वक्त हर कुर्बानी देते हुए केदारनाथ पहुंच रहे हैं। लेकिन आम आदमी की इस भावना की कद्र न करके वीआईपी लोगों को दर्शन करवाने के लिए आम लोगों को दावा है कि इंतजार करवाया जा रहा है। सोचिए, केदारनाथ में भक्तों को दर्शन के लिए 2 से 3 सेकंड के बीच ही मिल पा रहा है। भीड़ का दबाव इतना है कि मंदिर को भी ज्यादा देर तक खोला जा रहा है। कुछ दिन पहले ही खबर आई कि 22 घंटे मंदिर खोला जा रहा है, इसके बावजूद आम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे। केदारनाथ में बेतहाशा आ रहे श्रद्धालुओं ने पर्यावरण विदों की चिंता भी बढ़ा दी है। एक तरफ उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रहा अंधाधुंध निर्माण है, दूसरी तरफ प्लास्टिक और दूसरा कचरा जिससे केदारनाथ आने वाले लोग नदी किनारे और पहाड़ों पर फेंक रहे हैं।
9: पारिस्थितिक दृष्टिकोण से भी गाड़ियां ढेर सारी, एक हाई कार्बन फुटप्रिंट इस दिनों पूरे पहाड़ पर बनता है। और सबको जानना चाहिए कि गाड़ियों का निकला हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यही हमारे पहाड़ के ग्लेशियर्स आदि के लिए ज्यादा हानिकारक है, और यही जिसको कि हम बहुत से रूप में जानते हैं कि ग्लेशियर आज तेजी से पिघल रहे हैं। उनमें एक कारण ये भी है कि जिस तरह से गाड़ियों का जमवाड़ा पहाड़ में धीरे धीरे हो रहा है, स्थानीय पारिस्थितिकी पर सीधा आक्रमण, और जो कचरा ढेर सारा इन यात्राओं के कारण जो नदियों में होता है, पहाड़ के पहाड़ ही पहाड़ में कूड़े के खड़े हो चुके, तो अभी एक बड़े चिंतन की आवश्यकता है क्योंकि ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं।
1: वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप रहिए खबरदार।
10: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना।
11: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
15: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
16: After multiple assassination attempts, they can't even get...
17: They're reliable.
18: Always when I need them.
15: To live sports action.
19: One-hand jam by LeBron on the break.
20: That's another three, Steph Curry.
15: And your favorite music.
21: Well, the dawn begins to crack.
15: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
22: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
23: टंकी मतलब वेक
24: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
25: खोल फैन से घर को सजाएं।
27: कूल फैंस बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
25: कूल फैंस घर की शान बढ़ाएं।

0: और वही कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
3: भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
2: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
4: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
5: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते।
6: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
7: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
8: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
11: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
10: आप कैसे कर लेते हो?
12: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
13: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
12: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
14: नहीं,
13: और म्यूचुअल फंड्स है
14: सही।
15: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
16: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
17: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
18: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर, Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
20: Aaj Tak, Desh ka sarvashreshth news channel, powered by Vectus. Agli baar dukaan par jana to tanki nahi, Vectus mangna. Tanki matlab?
21: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
22: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
23: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brassiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
24: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
9: चालो या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
1: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना ले।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: Director, the taste of success.
4: Like I said before, we better hold this in.
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
7: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
6: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं।
10: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
0: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाली।
1: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
0: हिंट, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिर बकरीद पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कुर्बानी क्यों दी जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे की एक हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के बकरों को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि समाज सड़क पर आ गया। विरोध में कोई सुअर ले आया तो कहीं हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। बात सिर्फ बकरों की नहीं है, बात उस सोच की है जो 2026 में भी हमें कानून के चश्मे से नहीं केवल धर्म के चश्मे से देखना सिखाती। आज आपको बताएंगे कि जब यूएई जैसे मुस्लिम देश जिस कुर्बानी को डिजिटल बना चुके हैं उस पर हमारे देश में बवाल क्यों काटा जा रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से चाहते क्या हैं। सीज फायर को आज 49 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 49 दिनों में ट्रंप ने इतनी बार अपनी विशलिस्ट बदली है कि सिर घूम जाए। कभी वो 11 बार डील होने का दावा करते हैं तो कभी 8 बार अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं, कभी कहते हैं युद्ध खत्म हो गया, कभी शर्तें थोपने लगते हैं। हद तो तब हो गई जब कल ही डील फाइनल होने की खबर आ रही थी और अचानक अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पर हमला कर दिया। अब इस बारूद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप की बातों पर भरोसा करें या इरादों पर। आखिर अमेरिका चाहता क्या है। और आखिर में 26 मई के दिन मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आपको बताएंगे कि इन 12 सालों में भारत कितना बदला। लेकिन आज सबसे पहले हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिर बकरीद पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कुर्बानी क्यों दी जा रही। आज महाराष्ट्र के ठाणे में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों पर काफी विवाद हुआ। हिंदू पक्ष का कहना यह था कि इन बकरों को हाउसिंग सोसाइटी में रखना नियमों के खिलाफ है और इनसे बीमारियां फैल सकती। मुस्लिम पक्ष का कहना यह था कि अगर वो रहते ही इस हाउसिंग सोसाइटी में है तो वो इन बकरों को कहां लेकर जाएं और अपना त्योहार कैसे मनाएं। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच काफी संघर्ष हुआ। स्थिति यह बन गई कि प्रशासन को इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी और क्योंकि विरोध के बाद भी मुस्लिम परिवारों ने हाउसिंग सोसाइटी के परिसर से बकरों को नहीं हटाया, इसीलिए हिंदू पक्ष के कुछ लोग वहां सुअर लेकर पहुंच गए जिससे तनाव और भी बढ़ गया। देखिए, पिछले कुछ सालों में त्योहारों को लेकर हिंदू और मुसलमानों का संघर्ष बढ़ने लगा है। अगर हिंदू पक्ष रामनवमी या हनुमान जयंती पर मस्जिद के पास से शोभा यात्रा निकालता है तो इस पर मुस्लिम पक्ष विवाद करता है। अगर मुसलमान बकरीद पर हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को रखना चाहते हैं तो इस पर हिंदू पक्ष आपत्ति जताता है। और इन घटनाओं से कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह धारणा बनती है कि हिंदुओं और मुसलमानों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश खत्म होती जा रही है। और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कभी था ही नहीं और नहीं आगे कभी हो सकता है। लेकिन आज ऐसे लोगों को हम साल 1857 की एक घटना के बारे में बताना चाहते हैं और मैं चाहती हूं कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और सुने। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना गया। विद्रोह का कारण यह था कि अंग्रेजों की राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल होती थी उनमें गाय और सुअर की चर्बी होने का दावा था। वजह तो कई सारी थी लेकिन ये लास्ट ट्रिगर बना था उस क्रांति का। उस वक्त इस घटना ने हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट किया। बाद में इसी एकजुटता को तोड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत बकरीद का इंतजार करने लगी। अंग्रेजों का मानना था कि जब बकरीद पर मुसलमान गोवंश की कुर्बानी देंगे तब इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी, हिंदू मुसलमानों के दंगे होने से उनका काम आसान हो जाएगा। वही डिवाइड एंड रूल वाली बात। उस दौर में ब्रिटिश अफसर कीथ यंग ने अपनी पत्नी को लिखे पत्रों में साफ लिखा था कि उन्हें उम्मीद है कि बकरीद पर हिंदू और मुसलमानों में बड़ा झगड़ा होगा और अंग्रेज बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। ये बात
आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने समझ ली थी। उन्हें पता था अगर बकरीद की कुर्बानी पर सांप्रदायिक तनाव फैला तो इसका सीधा फायदा अंग्रेजों को होगा। इसी डर को देखते हुए बहादुर शाह जफर ने यह फरमान जारी किया कि बकरीद पर दिल्ली में गाय की कुर्बानी पूरी तरह बंद रहेगी। उन्होंने कई जगहों पर बकरों की कुर्बानी पर भी रोक लगाई और कोतवालों को यह आदेश दिया कि जहां गाय छिपाकर रखी जाए वहां कार्रवाई हो और उल्लंघन करने वालों को सख्त से सख्त सबक सिखाया जाए। ये कदम हिंदू मुसलमानों की एकता को बरकरार रखने के लिए उठाया गया था और इसका असर भी हुआ। उस साल बकरीद पर कुर्बानी को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई हिंसा नहीं हुई और इससे ये सीख भी मिली कि हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर देश के लिए रह सकते हैं। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो का सिद्धांत अपनाया और पश्चिम बंगाल को बांटकर इस खाई को गहरा करने की कोशिश की। और सोचिए आज हम 2026 में कुछ जगहों पर वही सब होते हुए देख रहे हैं जो एक जमाने में अंग्रेज चाहते थे। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसे हर कोई हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखना चाहता है लेकिन कोई भी इसे कानून के चश्मे से नहीं देखना चाहता। ठाणे की घटना में सारा विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ मुस्लिम परिवारों ने कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को हाउसिंग सोसाइटी के एक परिसर में बांध दिया और वहां एक टिन का शेड बना दिया। अब कानून कहता है कि ऐसा करने के लिए नगर पालिका और उस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों की अनुमति जरूरी होती है लेकिन इस मामले में आरोप है कि मुस्लिम पक्ष ने नगर पालिका से कोई इजाजत नहीं ली। इसके बाद जब हिंदू पक्ष ने विरोध किया तो यह मामला हिंदू और मुसलमानों का बन गया। मुसलमानों को यह लगा कि हिंदू उन्हें उनका त्योहार मनाने से रोक रहे हैं जबकि हिंदुओं को यह लगा कि आज अगर इन बकरों को हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में रखा गया

कैसे दी जाती। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में शहरों में हाउसिंग सोसाइटीज में रहने का कल्चर बढ़ गया है, इसीलिए अब इस पर विवाद होने लगा है। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी एक समूह में रहने वाले लोगों के लिए उनकी संयुक्त छत होती है, जिसके नीचे वो अपने परिवारों के साथ रहते हैं और ये परिवार अलग अलग धर्म, अलग जाति, अलग पंथ के हो सकते हैं। इसीलिए हाउसिंग सोसाइटीज में रहने के लिए कुछ विशेष नियम और कानून होते हैं, जो सरकारें नहीं बल्कि इन्हीं सोसाइटीज में रहने वाले लोग या बिल्डर द्वारा तय किए जाते हैं। इनमें जो प्रमुख नियम होता है वो है एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ रहना। लेकिन कई बार अलग अलग धर्मों और जाति के लोगों के बीच विवाद होता है, इसीलिए ऐसे मामलों में सरकारों और अदालतों को दखल देना पड़ता है। जैसे इस बार बहुत सारे राज्यों ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर कई तरह की गाइडलाइंस जारी की। हालांकि इन गाइडलाइंस के बाद भी ये विवाद होते हैं, और इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे देश में लोग कानून से ऊपर धर्म को समझने लगते हैं। ये बात सही है कि पहले जब शहरों में हाउसिंग सोसाइटी का कल्चर नहीं था, तब लोग कुर्बानी के लिए जानवरों को अपने घर पर लाते थे। लेकिन आज जब किसी हाउसिंग सोसाइटी में एक छत के नीचे अलग अलग धर्म के हजारों लोग रह रहे हैं, तो क्या वहां कुर्बानी के लिए जानवरों को रखना किसी भी रूप में सही हो सकता है? और क्या आपको नहीं लगता कि वक्त के हिसाब से और कानून के अनुसार इस परंपरा को बदला जाना चाहिए? हम जानते हैं कि यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि परंपरा बदलने से उनके धर्म की अवमानना होगी, लेकिन इन लोगों को आज हम मुस्लिम देशों का उदाहरण देना चाहते हैं। यूएई एक मुस्लिम देश है, जहां दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में भारत के बहुत सारे मुसलमान नौकरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन आपको पता है, यूएई में अब बकरीद की कुर्बानी को कई जगह पर डिजिटल बना दिया गया है। वहां नून और करीम जैसे कंपनियों ने बकरीद के लिए ऑनलाइन कुर्बानी सेवा की शुरुआत की है, जिसमें लोग बकरीद के लिए मोबाइल ऐप पर जाकर अपनी पसंद के जानवर को चुनते हैं, ऑनलाइन उसके लिए भुगतान करते हैं, और इसके बाद कुर्बानी उन्हें लाइव वीडियो कॉल पर दिखाई जाती है, जिसमें जानवरों का मीट बाद में उनके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। अब ये होता इसीलिए है क्योंकि यूएई में खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर या हाउसिंग सोसाइटीज में जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध है, और क्योंकि वहां लोग अपने घरों में या हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में जानवरों की कुर्बानी नहीं दे सकते, इसीलिए वो ऑनलाइन बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं। अब सोचिए, अगर यूएई एक मुस्लिम देश होकर ऐसा कर सकता है, तो फिर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होकर ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे देश में कानून होते हुए भी लोग हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों को रखना चाहते हैं, और कुछ मामलों में उनकी कुर्बानी भी वहीं देना चाहते हैं? ये स्थिति भी तब है जब दुनिया के ज्यादातर देशों में ऐसा नहीं होता। लेकिन जब बात हमारे देश की आती है, तो आपको फुटपाथ पर, सड़कों पर, रिहायशी इलाकों में और यहां तक कि हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में कुर्बानी के लिए खरीदे गए जानवर नजर आएंगे, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। हालांकि हमारे देश में कानून की स्थिति जैसी है, उसे आप इन आंकड़ों से भी समझ लीजिए। एनसीआरबी के अनुसार 2024 में हमारे देश में प्रदूषित हवा और गंदे पानी को लेकर केवल 18 पुलिस मामले दर्ज हुए। इनमें भी जिस दिल्ली को पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित माना जाता है, वहां इसके खिलाफ एक भी पुलिस मामला दर्ज नहीं हुआ। 7 राज्यों में इक्का दुक्का मामले दर्ज हुए। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कानून की नजर में भारत में वायु प्रदूषण जैसी कोई समस्या ही नहीं। अगर होती तो दर्ज हुए आंकड़ों में आपको नजर आती। और सोचिए, आज से कुछ साल बाद कोई आंकड़ों से प्रदूषण को समझने की कोशिश करेगा तो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि 2024 में शायद दिल्ली में वायु प्रदूषण और गंदे पानी की कोई समस्या ही नहीं थी, क्योंकि होती तो ऐसे मामलों को आंकड़ों में दर्ज किया जाता, और यही हमारे देश में कानून का राज। रोमन इतिहासकार टैकिटस ने के हवाले से एक कथन लिखा जाता है, जिस समाज में भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, वहां कानून भी बहुत ज्यादा होते हैं। और शायद हमारे देश की भी यही स्थिति है। हमारे देश में इसीलिए इतने कानून हैं, क्योंकि इन कानूनों का कोई ईमानदारी से पालन नहीं करना चाहता, और इसी वजह से हाउसिंग सोसाइटी में बकरे लाने पर विवाद होता है, और इसी वजह से प्रदूषित हवा में जरा सुधार नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से क्या चाहते हैं। ये सवाल शायद अब ईरान भी पूछना चाहता होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी विश लिस्ट को इतनी बार बदला है कि अब समझ ही नहीं आ रहा कि ये युद्ध आखिर रुकेगा कैसे। आज सीज फायर को लागू हुए 49 दिन पूरे हो चुके हैं, और इन 49 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 11 बार ये दावा कर चुके हैं कि ईरान और अमेरिका की डील होने वाली है। 8 बार ये कह चुके हैं कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो उसका अंजाम बुरा होगा।
5 बार ये कह चुके हैं कि ईरान को

अमेरिका की शर्तें माननी ही होंगी। तीन बार कह चुके हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए सहमत हो गया है और तीन बार ही यह कहा है कि युद्ध अब लगभग समाप्त हो चुका है। अब इन अलग अलग बातों में भी सबसे अजीब बात यह है कि जब 24 घंटे पहले से यह कहा जा रहा था कि अमेरिका और ईरान की डील फाइनल हो चुकी है और कभी भी इसका ऐलान हो सकता है, तब अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पर हमला कर दिया और इस हमले के बाद यह सवाल फिर पूछा जाने लगा कि अमेरिका आखिर ईरान से चाहता क्या है। कल रात अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मिसाइल लॉन्च पैड्स और मिलिट्री बोट्स को निशाना बनाया। 3 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के अनुसार यह हमला किसी उकसावे में नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस में किया गया। इसके लिए ईरान में अमेरिकी नौसेना के लिए खतरा बन रहे मिसाइल लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया और समुन्दर में माइंस बिछाने की कोशिश कर रही ईरानी नावों पर भी हमला किया गया। अमेरिकी सेना का यह भी कहना है कि वो युद्ध विराम का सम्मान करती है लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकती। दूसरी तरफ इस हमले से भड़के ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान ने साफ कहा है कि उसने अमेरिका और इसराइल के तमाम ठिकानों की पहचान कर ली है और अगर दोबारा ऐसी हिमाकत हुई तो वो जवाबी हमला करेगा, जिसकी अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए,

0: The straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it.
1: इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब भी ये कह रहे हैं कि उनकी ईरान से शांति समझौते को लेकर शानदार बातचीत चल रही है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता बेहद करीब है, जिसके तहत ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका लाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में ईरान या किसी तीसरे देश में नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि यहां भी इस दावे को लेकर स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। भारत आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान को कूटनीति का पूरा मौका दे रहा है, लेकिन वो किसी जल्दबाजी में नहीं है। या तो ईरान के साथ एक अच्छा और ठोस समझौता होगा, वरना अमेरिका के पास ईरान से निपटने के दूसरे रास्ते भी खुले हैं। अब इस धमकी से ईरान भी आग बबूला हो गया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच अभी अंतिम समझौता होना संभव नहीं है, और ये बात अमेरिका को बहुत चुभ रही है। इतनी चुभ रही है कि अब से कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक नए बयान में यह धमकी दी है कि जब तक फाइनल डील साइन नहीं होती, तब तक ईरानी जहाजों पर अमेरिकी नौसेना का ब्लॉकेड जारी रहेगा। हालांकि अमेरिका यहां शायद एक गलती कर रहा है। अमेरिका ने अब तक न जाने कितनी बार दबाव और धमकियों से ईरान को झुकाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया, और इस बार भी वो अमेरिका की धमकियों से डर जाएगा ऐसा लगता नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार ट्रंप की आर्ट ऑफ द डील पर इस बार ईरान भारी पड़ता दिख रहा है, और ईरान तब तक समझौते के लिए तैयार नहीं होगा जब तक कि उसे उसमें अपनी जीत नजर ना आए। अब ये देखिए अमेरिका को कैसा समझौता चाहिए और ईरान को कैसा समझौता चाहिए। ट्रंप एक ऐसा समझौता चाहते हैं जो दुनिया में अमेरिका की हेजेमनी यानी उसके वर्चस्व को बरकरार रखे। इस समझौते को देखकर दुनिया को यह लगे कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप झुकने वालों में से नहीं बल्कि झुकाने वालों में से हैं, और अमेरिका अब भी सबसे बड़ा सुपर पावर है। ट्रंप ऐसा समझौता चाहते हैं जिससे वो मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगी देशों का भरोसा जीत पाए, उन्हें यह कह पाए कि अमेरिका ने उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा। इसमें भी वो सऊदी अरब को ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका ने ईरान को मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने से रोका, और ऐसा इस डील से मुमकिन करके ट्रंप ने दिखाया। अब ट्रंप ऐसा समझौता चाहते हैं जिससे अमेरिका में उनकी गिरी हुई साख को सहारा मिल जाए। इसके लिए वो ये चाहेंगे कि ईरान का यूरेनियम किसी भी तरह नष्ट हो जाए, जिससे वो अमेरिका के लोगों को कह सके कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन ईरान इस समझौते से कुछ और चाहता है। ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है ऐसा समझौता जिसमें उसकी जीत नजर आए, दुनिया यह कहे कि ईरान ने अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने भी हार नहीं मानी, और ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाए। ईरान ऐसा समझौता चाहता है जिसमें उसे अपने यूरेनियम अमेरिका को न सौंपना पड़े, और वो अपनी जनता को यह दिखा पाए कि ईरान दबाव और धमकियों से झुकता नहीं है। ईरान ऐसा समझौता चाहता है जिसमें उसका आर्थिक फायदा हो। अमेरिका ने ईरान की जो $100 बिलियन की संपत्तियां और फंड फ्रीज किए हुए हैं उन्हें रिलीज किया जाए, और ईरान ऐसा समझौता भी चाहता है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर उसके अधिकार को मान्यता दी जाए और वो युद्ध का भी अमेरिका से मुआवजा वसूल सके। और क्योंकि यहां अमेरिका और ईरान दोनों के उद्देश्य इस समझौते से अलग अलग हैं, इसीलिए यह समझौता पिछले 49 दिनों से लटका हुआ है। इस बीच अमेरिका के हमलों ने दुनिया की टेंशन और बढ़ा दी है। जब शांति वार्ता की सुगबुगाहट थी तो कच्चे तेल की कीमतों में 7% की भारी गिरावट देखी गई, लेकिन जब अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की तो वापस कच्चे तेल की कीमतों में 2% का उछाल आ गया, और ब्रेंट क्रूड में ये $99 प्रति बैरल पहुंच गया। इस अस्थिरता के बीच इन तस्वीरों की बात करना भी जरूरी है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फेवरेट जनरल और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त बीजिंग के दौरे पर हैं। ये दोनों वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गले लगा रहे हैं। शी जिनपिंग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ चीन का रिश्ता अटूट है। मैं अगर शब्दशः आपको राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान पढ़कर बताऊं तो उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां चाहे जैसी बदलें, चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देगा। अब ये बयान बहुत लोगों को सामान्य लग सकता है, लेकिन भारत के लिहाज से इसके मायने गहरे हैं। इससे ये समझ आता है कि अब भारत के लिए टू फ्रंट की थ्योरी पुरानी हो चुकी है। यानी अब तक जो कहा जाता था ना कि भारत के सामने पाकिस्तान और चीन दो मोर्चों पर चुनौती है, वो बात पुरानी हो चुकी। अब नई स्थिति यह है कि भारत का सामना एक ही फ्रंट पर है और यह फ्रंट पाकिस्तान की सीमा से लेकर चीन की सीमा तक खुला हुआ है, और अब चीन और पाकिस्तान में भारत के लिए कोई फर्क नहीं। आप इन तस्वीरों को देखिए, इसके बाद हम आपको चीन और पाकिस्तान की इस भारत विरोधी मित्रता के बारे में बताएंगे।

0: 信任。
1: पिछले 75 वर्षों से जब से चीन और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं, दोनों देशों ने आपसी समझ, भरोसे और सहयोग को बढ़ाया है और एक मजबूत पारंपरिक दोस्ती निभाई है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक भरोसे और सहयोग ने दोनों की तरक्की में अहम योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हालात जैसे भी हों, चीन ने हमेशा पड़ोसी नीति में चीन पाकिस्तान संबंधों को प्राथमिकता दी है।
2: And this unique relationship is next to none. Your Excellency, last year I witnessed Chinese military prowess at the parade. I was invited there, and that showed the world that under your dynamic leadership, China is not only a world-class economic power, it is also a military power meant for progress and peace in the world.
3: इस मुलाकात में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड बताया, जिसका मतलब होता है हर परिस्थिति का साझेदार और मित्र, जबकि शहबाज शरीफ ने चीन को आयरन ब्रदर बताया, जिसका मतलब होता है लोहे जैसा मजबूत भाई। अब चीन और पाकिस्तान की ये मित्रता यूं ही नहीं उमड़ रही, बल्कि चीन यहां ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के करीब होते हुए भी उसके साथ ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान ये दिखा रहा है कि अमेरिका के साथ उसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप, जबकि चीन के साथ उसकी ज्यादा मित्रता है। हालांकि इस मित्रता में अपने अपने फायदों की मात्रा भी बहुत अधिक है। चीन पाकिस्तान को इसीलिए अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि वो दक्षिण एशिया में भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को अहम मानता है, खासकर सीमा विवाद, इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड और अमेरिका भारत नजदीकी के कारण चीन की चिंता उसे पाकिस्तान के करीब लाती। दूसरा, चीन ये भी जानता है कि मलक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता को घटाएं और पाकिस्तान के जरिए अरब सागर तक अपनी सीधी पहुंच बनाए। इसके लिए उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है और अब वो पाकिस्तान में इसका दूसरा भाग लॉन्च करना चाहता है। तीसरा, चीन ये भी चाहता है कि पाकिस्तान अपने देश में उसकी कंपनियों और नागरिकों को खास सुरक्षा दे, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान से कुछ मांगा जाए तो वो ना नहीं करता, और इसीलिए ना नहीं करता क्योंकि उसकी भीख मांगने की आदत है। वो कोई भी चीज इसीलिए मानता है ताकि उसे आधार बनाकर सामने वाले देश से लोन या आर्थिक मदद मांग सके। जैसे यहां भी चीन ने कहा कि वो बलूचिस्तान में उसकी कंपनियों को सुरक्षा दे, तो पाकिस्तान ने सीपैक और चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक विशेष फोर्स बना दी है, जिसका नाम रखा गया है स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन। अब इस दौरे पर दो और चीजें हुई जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई। इनमें पहली घटना यह थी कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सीधे बीजिंग न जाकर इस बार चीन के झीजियांग प्रांत पहले गए। ये चीन का कोई मामूली प्रांत नहीं है। इस प्रांत को चीन के सबसे अमीर और औद्योगिक रूप से विकसित प्रांतों में गिना जाता है, जिसकी जीडीपी 1.3 ट्रिलियन डॉलर की है। आसान भाषा में समझें तो अगर चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, तो झीजियांग उस फैक्ट्री के सबसे शक्तिशाली इंजन्स में से एक है। और इसीलिए सोचिए, अगर पाकिस्तान बीजिंग से पहले इस प्रांत में गया है तो वो चीन से क्या मांग रहा होगा। दुनिया चीन से बिजनेस और उद्योग मांग रही है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे कोई और कहानी भी हो सकती है। इस खबर की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि अब टू फ्रंट की थ्योरी पुरानी हो चुकी है और चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक ही फ्रंट बन चुके हैं। ऐसा हमने इसलिए कहा था क्योंकि कल जब शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही थी, तभी पहलगाम हमले में पाकिस्तान और चीन का एक नया कनेक्शन सामने आया। एनआईए के अनुसार पहलगाम हमले के बाद उसने जिन आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था, उन आतंकियों के पास से एक गोप्रो कैमरा बरामद हुआ था। अब गोप्रो एक अमेरिकी कंपनी है, जिससे एनआईए ने यह पूछा कि आतंकियों के पास मिले इस कैमरे को उसने किस देश को बेचा था। और जब जांच हुई तो गोप्रो कंपनी ने बताया कि यह कैमरा चीन के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा था, और यह डिस्ट्रीब्यूटर भी उसी झीजियांग प्रांत से जुड़ा हुआ हो सकता है, जहां 24 मई को शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर बीजिंग जाने से पहले रुके थे। अब एनआईए ये पता लगा रही है कि ये गोप्रो कैमरा चीन में किसने खरीदा, वहां से वो पाकिस्तान कैसे पहुंचा, और क्या इसके पीछे किसी मिलिट्री लिंक्ड नेटवर्क का भी हाथ हो सकता है। इस कहानी से आप इतना समझ गए होंगे कि पाकिस्तान और चीन की ये मित्रता अटूट क्यों है और क्यों भारत के लिए ये दोनों देश अब एक ही फ्रंट माने जाएंगे। वैसे चीन की एक परेशानी ये भी है कि आज दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें तीन बड़े नतीजे निकले। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच ये सहमति बनी है कि चारों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्र की निगरानी करेंगे। पोर्ट से जुड़ी सुविधाओं पर एक एक्सपर्ट टीम बनाने पर विचार होगा और फिजी में एक नया पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू होगा और अंडर सी केबल्स पर भी चारों देश मिलकर काम करेंगे। इन्हीं चारों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स यानी जरूरी खनिजों पर भी अपना फ्रेमवर्क तय कर लिया है जिसमें भारत और अमेरिका के बीच इस पर अलग से समझौता भी हुआ है। और तीसरा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्वाड ने एक नई पहल शुरू की है जिसमें इसमें तकनीक, प्रबंधन, नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विश्लेषण और इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्सरसाइज जैसी चीजें शामिल हैं। अब सोचिए, ये देश अगर इंडो पैसिफिक में इतनी टाइट फील्डिंग करेंगे तो चीन कैसे यहां आउट नहीं होगा।
0: We've just concluded a very substantive and

0: 26 मई के दिन मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आपको बताएंगे कि इन 12 सालों में भारत कितना बदला। 12 साल पहले आज ही के दिन 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद यह तारीख भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे खास तारीख बन गई।
1: श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी,
2: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
0: आज से 12 साल पहले जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब उस वक्त का दौर शायद बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा। उस वक्त देश में यूपीए सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा था कि कांग्रेस पार्टी केवल 44 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि बीजेपी जनता पार्टी के बाद पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी बनी थी जिसने अपने दम पर लोकसभा में प्रचंड बहुमत हासिल किया था और 282 सीटें जीती थी। इस अविश्वसनीय जीत का चेहरा नरेंद्र मोदी थे जो गुजरात में भी एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाकर आए थे और 2001 से लगातार वहां के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो वो दिल्ली में ऐसे जमे कि आज उनके 12 साल पूरे हो चुके हैं। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार के इन 12 सालों में भारत कितना बदला और कितना आगे बढ़ पाया। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 10वें स्थान पर थी। फ्रांस, इटली, ब्राजील, रूस और कनाडा की अर्थव्यवस्था का आकार हमसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज इसी सूची में 6ठे स्थान पर हम हैं। ये स्थान भी इसी महीने 2 अंक नीचे आया है क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। 2003-04 में एनडीए की सरकार के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय 23,203 रुपए थी। इसके बाद यूपीए के 10 साल के शासन में यही आय 79,118 पर पहुंची, लेकिन मोदी सरकार के 12 सालों में ये आय बढ़कर 2,19,000 रुपए हो गई और इसमें 178% की वृद्धि हुई। हालांकि यहां ये बहस भी होती है कि किस सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा बढ़ी, तो आंकड़े बताते हैं कि यूपीए की सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था 709 बिलियन डॉलर से 2.04 ट्रिलियन डॉलर की हुई थी जिसमें 187.7% की वृद्धि हुई थी, लेकिन मोदी सरकार में यह अर्थव्यवस्था डबल होकर 4.15 ट्रिलियन डॉलर की हुई और इसमें 103% की वृद्धि हुई। यानी यहां वृद्धि यूपीए सरकार से कम है, लेकिन मोदी सरकार में कोविड जैसा संकट आया और अब ईरान युद्ध से ऐसा प्रभाव हुआ जो पहले की सरकारों में नहीं रहा था। 2014 से पहले भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का 13.9% योगदान था, इंडस्ट्री का 26.1% योगदान और सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा 59.9% योगदान। लेकिन मोदी सरकार ने इसे बदलने की कोशिश की है। अब इंडस्ट्री का योगदान 26% से बढ़कर 30.6% हुआ है, कृषि का योगदान 14.4% पर आया है। यहां आपको भारत के निर्यात के भी आंकड़े देखने चाहिए। 2014 से पहले भारत की छवि एक बाजार के रूप में होती थी जो दुनिया के लिए खरीदार है लेकिन दुनिया को कुछ बेच नहीं सकता। 2013-14 में भारत का कुल निर्यात 466 बिलियन डॉलर का था, लेकिन आज यही निर्यात 860 बिलियन डॉलर का हो गया है। इनमें भी हमारा रक्षा निर्यात अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा। पहले हम दुनिया से हथियार खरीदते थे, अब हम खुद के लिए भी बना रहे हैं और हमारा रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए हो गया है जो यूपीए सरकार से 5,501% ज्यादा है। यहां विपक्षी पार्टियां ये भी आरोप लगाती हैं कि मोदी सरकार में कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर खर्च कम हुआ है, लेकिन ये भी दावा गलत है। 2013-14 में यूपीए सरकार का सब्सिडी पर सालाना खर्च 2 लाख 54,000 करोड़ रुपए था। आज मोदी सरकार में सब्सिडी पर सालाना खर्च 4,54,000 करोड़ रुपए है और ये उस वक्त से 2,00,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। ये बात सही है कि रुपए के मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, रोजगार के मोर्चे पर और महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। यह भी सच है कि मोदी सरकार में जनधन खातों से लेकर शौचालयों के निर्माण, डिजिटल लेनदेन और स्टार्टअप कल्चर की पूरी तस्वीर भी बदली है। 2014 से पहले हमारे देश में केवल 350 स्टार्टअप थे, जबकि सिर्फ 4 कंपनियां यूनिकॉर्न थी जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती। लेकिन मोदी सरकार में यही स्टार्टअप 350 से बढ़कर अब 2,00,000 से ज्यादा हो गए और यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या भी 4 से 120 हो गई। यहां आप इस नक्शे को भी देखिए, 2014 से पहले भारत के केवल 6 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें थी, लेकिन आज भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। और इसी दौरान मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग 70% है। मोदी सरकार में भारत की विदेश नीति भी बदली है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का कई देशों के नेताओं के साथ सहज और भरोसे का रिश्ता दिखता है। जैसे हाल ही में इटली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी को मेलेडी ट्रॉफी गिफ्ट की। अब ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। इटली दुनिया का वो देश है जिसने महंगे और लग्जरी ब्रांड्स दुनिया को दिए हैं, जैसे फरारी, लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा, अरमानी, गुची, फेंडी, सब इटली के हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 1 रुपए की मेड इन इंडिया मेलेडी ट्रॉफी गिफ्ट की, जो उनकी डिफरेंट स्टाइल विदेश नीति के बारे में बताती है। 4 मई को जब ममता बनर्जी की सरकार गिर गई तो पश्चिम बंगाल में रह रहे रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को लग गया था कि अब उनका दाना पानी बंद होने वाला है। 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब और क्लियर हो गया कि अब तो पश्चिम बंगाल से अवैध घुसपैठियों की रवानगी तय है। पिछले 24 घंटे में देश के गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों के लिए जिस तरह के बयान दिए हैं उसका असर बांग्लादेश की सीमा पर दिखने लगा है। गृहमंत्री अमित शाह ने सीधे सपाट शब्दों में कहा कि घुसपैठ से देश में अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और यह भारत के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने बताया कि इस चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, जिसमें रिटायर्ड जज, पूर्व आईएएस आईपीएस अधिकारी और गृह मंत्रालय से जुड़े कुछ अधिकारी शामिल होंगे। मतलब यह है कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध घुसपैठियों को कह दिया है कि या तो खुद चले जाओ वरना डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट फॉर्मूले पर भगाया जाएगा।
3: सीए रावताई जरा नहीं तारा खोलें कंप्लीटली।
4: जो लोग सीए के दायरे में नहीं आते वो अवैध घुसपैठिए हैं, उन्हें राज्य पुलिस द्वारा सीधे गिरफ्तार किया जाएगा।
3: गिरफ्तार करबे,
4: हिरासत में लेकर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। बीएसएफ बीडीआर से बात करके उनको रिपोर्ट करने की व्यवस्था करेगी।
3: बीडीआर के संगे कथा बोले तादर के रिपोर्ट करार व्यवस्था करबे।
4: डिटेक्ट, डिलीट और रिपोर्ट करने के लिए डीजीपी और गृह सचिव को बोल दिया गया है।
3: आईन आज थेके कार्यकर हलो, माननीय डीजीपी के एवं होम सेक्रेटरी के बोले दा हलो।
0: सच ये है कि अवैध घुसपैठ केवल एक राज्य की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। लेकिन इस समस्या की संवेदनशील नब्ज भारत से लगती बांग्लादेश की सीमा है। भारत और बांग्लादेश में करीब 4,096 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से आगे जुड़ती है। इसमें भी अकेले पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की 2,216 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। जब बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की बात होती है तो पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबी सीमा इसी राज्य की है। साल 2004 में यूपीए सरकार के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने राज्यसभा में बताया था कि 31 दिसंबर 2001 तक देश में 1,20,00,000 अवैध बांग्लादेशी थे और इसमें भी करीब 57,00,000 पश्चिम बंगाल में, 50,00,000 असम में रह रहे थे। हालांकि तब इन आंकड़ों को लेकर विवाद हो गया था और बाद में इसे सुनी सुनाई बातों पर दिए गए आंकड़े कहा गया। लेकिन इसके बाद 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि देश में 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए हैं। और चिंताजनक बात यह है कि देश में ज्यादातर घुसपैठ बांग्लादेश के रास्ते हो रही है और इसमें भी पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे आगे है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने 2017 से 2021 के बीच गिरफ्तार किए घुसपैठियों पर एक रिपोर्ट दी। इसके मुताबिक भारत में घुसपैठ करने वाले 84% घुसपैठिए पश्चिम बंगाल की सीमा से गिरफ्तार किए गए थे। जिन जिलों में सबसे ज्यादा घुसपैठिए पकड़े गए उनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना का नाम सबसे ऊपर था और ये तीनों जिले पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले हैं। अब आप खुद सोचिए कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार अवैध घुसपैठ को लेकर सख्ती क्यों दिखा रही है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों को खोजने और इन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी। इस कदम के बाद से पश्चिम बंगाल में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों में भगदड़ सी मची हुई है। बांग्लादेश से लगती सीमा पर इस वक्त कई अवैध घुसपैठिए बेचैन नजर आ रहे हैं।
5: जो करना है सरकार करे।
6: संदेश साफ है, या तो खुद चले जाओ नहीं तो सरकार पकड़ेगी और फिर अपने तरीके से भेजेगी। यानी दोनों ही स्थितियों में अवैध घुसपैठियों को भारत में न एक इंच जमीन मिलेगी और न ही एक भी पैसा कमाने का मौका। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं इनमें वो लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से चोरी छिपे या यूं कहें कि ममता सरकार की अनदेखी की वजह से अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में बसे हुए थे। इन बांग्लादेशियों ने शुभेंदु अधिकारी के उस बयान को बहुत गंभीरता से लिया है जिसमें कहा गया है कि अवैध रूप से रहने वालों को सरकार डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेगी। इस बयान के बाद से नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर अवैध बांग्लादेशियों की भीड़ जुटने लगी है। ये सारे अपने देश लौटना चाहते हैं। उन्हें महसूस होने लगा है कि अब उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। इनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो 4-5 सालों से पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में रह रहे थे।
7: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद सरकार ने नई नीति अपनाई है 3D यानी डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट। और ये बात सामने आने के बाद एक खलबली सी मची हुई थी। ये बताइए कि आप कब आए थे भारत?
8: 3 मार्च।
7: 3 मार्च
8: है।
7: अच्छा, कहाँ से आए थे? अकेले आए थे। ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से। और ये देख सकते कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपनी जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 जून 2024।
9: 5 बसर आगे दमदम राजेंद्र सिंह का एखान का सरकार राखबे ना फिर जाती खुलना जिला बेनापोल
10: दमदम कैटरबिने छो
11: बसर
10: प्रशासन राखबे ना कि करो
11: राजमिस्त्री का एनआरसी चालू है तो को सबूत नहीं
6: सोचिए ये देश की सुरक्षा से कितना बड़ा खिलवाड़ है कि अवैध रूप से कोई घुसपैठिया हमारे देश में वर्षों से मौजूद था और उसको भगाने के कोई प्रयास नहीं किए गए। बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ करने वाले व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा व्यक्ति देश में दंगे करवा सकता है, भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर हमले करवा सकता है। बावजूद इसके इस मुद्दे पर ममता राज में कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन सरकार बदली तो घुसपैठियों को लेकर जज्बात बदल गए, हालात बदल गए।
12: ये सब बांग्लादेशी है, उसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा।
6: तय ये हुआ कि जो बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में मौजूद थे उनकी पहचान करने और कागजी कार्रवाई के बाद सीमा पार भेजा जाएगा और इसके लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को भी जानकारी दे दी गई है और वो अपने स्तर पर भी हर बांग्लादेशी की पहचान कर रहे हैं।
8: अनुप्रवेशकारियों के लिए भारत में अब कोई जगह नहीं बचेगा। बंगाल एक सेफ पैसेज था, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश से मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एक्शन लिया, उसे बंद कर दिया।
6: पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरे राज्य में अवैध घुसपैठियों की पहचान की मुहिम छेड़ दी है और जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको खास तरह के होल्डिंग सेंटर्स में रखा जा रहा है। घुसपैठ से प्रभावित जिलों में सबसे तेज एक्शन लिए गए हैं। जिन जिलों में सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है उनमें एक मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद प्रशासन ने अवैध घुसपैठ पर एक्शन लेते हुए 3 बांग्लादेशियों को पकड़ा और उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा है। प्रशासन ने एक 3 मंजिला इमारत को होल्डिंग सेंटर की तरह बना लिया है। इस जगह पर गिरफ्तार किए गए सभी अवैध बांग्लादेशियों को वेरिफिकेशन तक रखा जाएगा और उसके बाद बीएसएफ की मदद से डिपोर्ट किया जाएगा। मालदा भी बंगाल के उन सीमावर्ती जिलों में से एक है जहां घुसपैठ बड़ी समस्या है, इसीलिए मालदा में भी एक होल्डिंग सेंटर बनाया गया है जहां फिलहाल 9 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा गया है। इस होल्डिंग सेंटर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं ताकि यहां पर रखे गए अवैध घुसपैठिए भाग न जाएं।
13: अगर कोई घुसने का कोशिश करेगा तो वहां पर बीएसएफ को तो रोक देना चाहिए, उसको अंदर ले आकर डिटेंशन काम का क्या जरूरत है। अगर कोई एक भी इलीगल घुसपैठियो है घुसा कैसे, तो बीएसएफ था वहां पर। बीएसएफ किसका था? बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट का था, होम मिनिस्ट्री का था, तो घुसा कैसे?
14: मेरा ख्याल से इनको विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी में ऐलान किया जो बेआईनी घुसपैठी है, जो इनलीगल सिस्टम में कोई देश से भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कहीं त्रिपुरा बॉर्डर हो, कहीं जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। आगे देखिए दस्तक सईद अंसारी के साथ और देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
1: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
2: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
3: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
2: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
4: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
5: है। भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
4: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
6: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
7: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
8: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
7: ज्यादा बड़ी ना है,
8: छोटे ऑन कर दे,
9: ऑन कर दे, ऑन कर दे,
7: पैक कर दे समर कूल।
8: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
6: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
7: एक हिंट तो देते।
8: हिंट बड़े आराम से
9: कूल फैंस से घर को सजाएं।
10: कूल फैंस, बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
9: कूल फैंस, घर की शान बढ़ाएं।

0: ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
1: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
0: ज्यादा बड़ी ना है।
1: छोटे ऑन कर दे, ऑन कर दे, ऑन कर दे,
0: पैक कर दे समर कूल।
1: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: एक हिंट तो देते।
5: विक्रम!
4: हिंट
3: बड़े आराम से।
6: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
7: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: Cool stylish fans enhance home decor with beautiful fans.
0: Hint, बड़े आराम से। विमल, बोलो जुबां केसरी।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: युद्ध से जूझती दुनिया की स्थिति पर क्वाड में मंथर, सुपर शक्तियों के सामने भारत की दो टूक, हर हाल में आतंक का अंत जरूरी, चारों देशों का साझा बयान, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता जरूरी। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ में राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। कर्नाटक के सीएम हो सकते हैं डीके शिवकुमार, सूत्रों के अनुसार इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धरमैया, दिल्ली में आलाकमान ने दोनों के साथ की थी बैठक। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा पर दी सख्त चेतावनी, कहा यदि कोई बेटियों से छेड़छाड़ या अपराध का दुस्साहस करेगा तो चुकानी होगी भारी कीमत। प्रयागराज अब भय अराजकता माफियागिरी से मुक्त। और ट्रिशा केस के तहत तक जाने में जुटी सीबीआई, जांच टीम ने आत्महत्या की जगह का किया निरीक्षण, सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह से पूछताछ, मृतका के घर वालों से बातचीत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका दस्तक में। रात के 10 बज रहे हैं, आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक, और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की भागम भाग शुरू हो गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के 3D यानी डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट एक्शन के बाद बॉर्डर पर हड़कंप समझ गया। सैकड़ों घुसपैठिए उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर बैठे हुए हैं। घुसपैठियों की आंखों में मुख्यमंत्री शुभेंदु का डर और खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज हम आपको भारत और बांग्लादेश बॉर्डर से अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, तो साथ ही साथ ये भी दिखाने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव में जो कहा था और शुभेंदु राज में वो पूरा भी हो रहा है। घुसपैठियों को कैसे चुन चुन कर खदेड़ा जा रहा है, देखिए।
3: बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठियों की भागम भाग, सीएम शुभेंदु का 3D एक्शन, घुसपैठियों में मचा हड़कंप, डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, सीएम शुभेंदु का सीधा फॉर्मूला, घुसपैठियों का बंगाल निकाला, बांग्लादेश बॉर्डर पर जुटी भीड़, सीएम शुभेंदु का चला चाबक, बंगाल से भागने लगे घुसपैठिए। जब से टीएमसी के 15 साल का शासन उखाड़ कर बीजेपी आई है, सीएम शुभेंदु ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, और जैसे ही शुभेंदु सरकार ने बंगाल में 3D एक्शन यानी डिटेक्ट डिलीट एंड रिपोर्ट शुरू किया और बंगाल के हर जिले में होल्डिंग सेंटर खोलकर घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की, बंगाल में छुपे बैठे बांग्लादेशी घुसपैठियों में एक हड़कंप मच जाता है। सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए सीएम शुभेंदु के खौफ से बॉर्डर की तरफ दौड़ने लगते हैं। अब एक तरफ बंगाल में सीएम शुभेंदु का ऑपरेशन डिटेक्ट डिलीट एंड रिपोर्ट जारी है, पुलिस प्रशासन घुसपैठियों की धरपकड़ में जुटा है। ये तस्वीरें बंगाल के मुर्शिदाबाद की हैं, जहां 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार करके होल्डिंग सेंटर में भेज दिया गया, तो दूसरी तरफ डर के मारे भारी संख्या में घुसपैठिए खुद ब खुद बॉर्डर पर जुटना शुरू हो गए।
4: नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का।
3: सीएम शुभेंदु ने साफ कहा है कि पुलिस और आरपीएफ घुसपैठियों की धरपकड़ के बाद उन्हें कोर्ट न भेजकर सीधे बीएसएफ को सौंपे। उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर घुसपैठियों का जमावड़ा, बंगाल छोड़कर घुसपैठिए बॉर्डर पर जुटे, अब रिपोर्ट करने की तैयारी। यह है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर चेकपोस्ट की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहां घुसपैठिए आकर बैठ गए हैं और बंगाल छोड़कर भागने की तैयारी में हैं।
5: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद सरकार ने नई नीति अपनाई है, 3D यानी डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट। और ये बात सामने आने के बाद एक खलबली सी मची हुई थी, और ये वही हाकिमपुर बॉर्डर है जहां एक साल तकरीबन 8 या 9 महीना पहले यहाँ पे हजारों के तादाद में लोग आए थे जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए थे वो वापस जाने के लिए। ये है वो चेक पोस्ट जहाँ आप देख सकते हैं कि बीएसएफ तैनात है, दूसरे छोर पर बांग्लादेश है थोड़ा आगे जाने पर, और यहाँ हम आपको मंसर दिखाते हैं कि सैकड़ों के तादाद में जो अवैध रूप से भारत प्रवेश किए थे वो यहाँ आ पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 50 से 55 लोगों को कल भेजा गया था, आज 18 लोगों को कुछ देर पहले बीएसएफ के ट्रक में ले जाया गया है, उनका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई किया जाएगा, फिर उन डॉक्यूमेंटेशन को बीजेपी को हैंडओवर किया जाएगा, बीजेपी अपने रिकॉर्ड्स के साथ उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट्स मैच होते हैं तो उन बांग्लादेशी जो नागरिक है उन्हें बांग्लादेश में वापस ले लिया जाएगा। तो और ये उम्मीद जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये तादाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है।
3: आपको बता दें कि बंगाल में घुसपैठियों में भगदड़ जिला स्तर पर होल्डिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा के बाद शुरू हुई है। सीमा पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक पकड़े जाने और जेल जाने के डर से ये घुसपैठिए अब खुद ही अपनी पहचान उजागर कर वापस लौटने की गुहार लगा रहे हैं।
6: बहुत कष्ट कर सब माने सब किस कर
7: আমি এখানে দমদম থাকতাম, ও ক্যান্সারের রোগী তো তাই হসপিটালে চিকিৎসা করতে এসেছিলাম।
8: আপনি কি পাসপোর্টে এসেছিলেন?
9: না, আমি বিলাক এসেছিলাম।
3: सिर्फ उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर ही नहीं, मालदा के सीमावर्ती इलाकों में भी सैकड़ों बांग्लादेशी पुरुष और महिलाएं वापस बांग्लादेश लौटने के लिए सीमा पर जुटे हैं।
10: मैं जिस लोकसभा सीट से सांसद हूं, वो बांग्लादेश की सीमा से लगी है। भारत में आकर कौन बसना चाहता है? बांग्लादेश की GDP और स्वास्थ्य सुविधाएं

0: जी हाँ, मीरा रोड पर बनी सोसाइटी के गेट पर नारेबाजी होने लगती है। विवाद इसलिए होता है क्योंकि बकरीद पर कुर्बानी के लिए सोसाइटी में बकरे लाए जा रहे थे। बकरों के लिए एक शेड बना दिया गया था। इसी बात पर विरोध शुरू हो गया। एक पक्ष ने बकरे के लिए शेड बनाने का विरोध किया। इस विवाद में एक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। अब एक पक्ष सोसाइटी में सुअर लेकर आ गया, जिससे ये विवाद और बढ़ गया। पुलिस ने सुअर को छीन कर ले जाने की भी कोशिश की।
1: दो चार बकरे थे, अभी क्या है, इन्होंने 50-60 बकरे ला दिए।
2: कुछ जिहादियों के द्वारा बजरंग दल पे चाकू से वार किया गया। वो हमारा मांग है, उसको अरेस्ट किया जाए और बकरे को बाहर निकाल।
0: मामला बढ़ने लगा तो भीड़ भी बढ़ी और पुलिस का तनाव भी। बीजेपी के नेता मौके पर आने लगे। आखिरकार सोसाइटी में से बकरों को बाहर निकाला जाने लगा और सोसाइटी में कुर्बानी के बकरों के लिए बनाया गया शेड तोड़ दिया गया।
3: आधे बकरे निकल गए, बाकी आधे शाम तक निकल जाएंगे। ये सोसाइटी में एक भी बकरे की कुर्बानी नहीं होगी।
4: मना है, इलीगल कुर्बानी नहीं करना है, परंतु जहाँ जो सोसाइटीज है वहाँ पर साइड में कहीं भी एक पर्दा लगा करके कुर्बानी का परमिशन दिया जाता है। उन लोगों को परमिशन देना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए। और वादा किया मुख्यमंत्री जी ने, उस दिन मीटिंग भी हुई थी, कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, सब मिलजुल के देश में रहना चाहिए, हर धर्म के लोगों को अपना त्यौहार मनाना चाहिए। सरकार को थोड़ा इस पर नजर डाल करके जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनके साथ एक्शन।
0: सोसाइटी के इस बवाल से पुलिस सतर्क हो गई है। अमन कमेटी की मीटिंग से लेकर फ्लैग मार्च तक के इंतजाम किए गए हैं।
5: महानगर पालिका ने तीन जगह पे परमिशन दिया है, उसमें भाईंदर वेस्ट में एक जगह पे, एसके स्टोन दूसरी जगह, और थर्ड जो है काशीगांव में। ऐसे तीन जगह पे महानगर पालिका ने परमिशन दे दी है।
0: आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पहले ही बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। यहां तक कह दिया गया है कि अगर किसी ने गाय की कुर्बानी की तो उस पर मकोका जैसी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फडणवीस सरकार ने बकरीद के मद्देनजर सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं और ये भी कहा है कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
6: मकोका ही लगना चाहिए और मकोका ही कार्रवाई होनी चाहिए। रास्ते पे गौ काटना, रास्ते पे कटाई करना, ये कुछ नहीं चलेगा और निश्चित रूप से इस पे कड़ी कार्रवाई होगी।
0: वैसे बकरीद पर कुर्बानी का विवाद पिछले कुछ वर्षों से अक्सर दिख रहा है, लेकिन इस बार बंगाल से लेकर असम तक और यूपी से लेकर तेलंगाना तक बकरीद की कुर्बानी को लेकर सियासत हुई है। पुलिस प्रशासन ने ज्यादातर जगहों पर सार्वजनिक कुर्बानी पर रोक लगा रखी है। ठाणे से विद्या और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
7: पर आइए अब हम आपको पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं का डर दिखाते हैं। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा का खेल खत्म हो चुका है। आज आतंक का प्रिंसिपल जमीन के दो गज नीचे दफन हो चुका है, लेकिन हमजा के खात्मे से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादियों का काल धुरंधर घूम रहा है। ऐसे में आतंक के आकाओं को डर सता रहा है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। हाफिज सईद हो, सैयद सलाहुद्दीन हो, जकीउर रहमान लखवी हो या फिर मौलाना मसूद अजहर, धुरंधर से हर कोई खौफ में है, डर रहा है।
0: पाकिस्तान में आतंक के आकाओं की उड़ी नींद। एक एक कर कब्र में दफन होते देश के दुश्मन। पाकिस्तान से पीओके तक आतंकियों का डर। जो आतंक फैलाएगा दो गज जमीन के नीचे जाएगा। खबर में आतंकी हमजा, आका है अभी जिंदा। ये तस्वीरें पीओके के मुजफ्फराबाद की हैं। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में आतंकी साजिश का मास्टरमाइंड हमजा जमीन के दो गज नीचे खबर में पहुंच चुका है। ये वही हमजा है जिसने पुलवामा आतंकी हमले की साजिश रची थी। भारत का मोस्ट वांटेड था, लेकिन पीओके में अज्ञात हमलावर ने भारत के दुश्मन के गुनाहों का हिसाब कर दिया। हमजा जमीन के दो गज नीचे दफन हो चुका है। हमजा मारा गया तो पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंक के आकाओं को अपनी मौत का डर

0: सताने लगा है। इसका सबूत है हमजा के जनाजे में पहुंचे आतंक के आकाओं की ये तस्वीरें। पहली तस्वीर आतंकी संगठन अल बद्र के आका बख्त जमीन खान की है। आप देख सकते हैं कड़े पहरे में जमीन खान पहुंचा था। आसपास हथियार बंद आतंकियों का घेरा था। ठीक ऐसे ही कड़े पहरे में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाहुद्दीन पहुंचा। खास तौर पर जमीन खान और सलाहुद्दीन का वीडियो बनाने की मनाही थी क्योंकि अज्ञात हमलावर से पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका खौफ खा रहे हैं। पता नहीं किस घड़ी अज्ञात हमलावर उन्हें भी जमीन के दो गज नीचे पहुंचा दे।
1: बीते दो से तीन सालों में एक सेट पैटर्न के तहत पाकिस्तान से लेकर पीओके तक के अलग अलग शहरों में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों को अज्ञात हमलावर ठिकाने लगा रहा है। हमजा की मौत उसी सेट पैटर्न का हिस्सा मालूम पड़ती है। हालत यह है कि हमजा के नमाज जनाजा में बड़े बड़े आतंकी संगठनों के आका पहुंचे थे, लेकिन इस नमाज जनाजा में भी अज्ञात हमलावरों का खौफ साफ दिखाई दिया। आतंक के आकाओं की सुरक्षा में अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकी दिखाई दिए। उन्हें डर था कि यहां भी कोई अज्ञात हमलावर उनको ठिकाने न लगा दे।
0: हमजा का जैसे ही खेल खत्म हुआ, पाकिस्तानी सेना और ISI की आतंकी साजिश से एक बार फिर पर्दा उठ गया। भारत के मोस्ट वांटेड हमजा को पाकिस्तान ने स्कूल का प्रिंसिपल बताया। दावा किया कि हमजा पीओके के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया से ये बात छिपाई कि हमजा आतंक के स्कूल का प्रिंसिपल था। दरअसल आतंक के प्रिंसिपल का असली सच इन दो तस्वीरों में छिपा हुआ है। पहले वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमजा के हाथ में AK-47 जैसा हथियार है। ये वीडियो हमजा के मारे जाने से कुछ दिन पहले का है, जो बताता है कि हमजा आतंक के स्कूल का प्रिंसिपल था। दूसरा वीडियो हमजा के जनाजे में जुटे आतंक के आकाओं का है, जहां आतंकी संगठन अल बद्र के चीफ और हिजबुल मुजाहिदीन का आका पहुंचा था। ये तस्वीरें पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। अब आपको आतंक के प्रिंसिपल हमजा बुरहान की पूरी कुंडली दिखाते हैं। 14 फरवरी 2019 पुलवामा जम्मू कश्मीर, दोपहर 3:30 बजे आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। जब हमले में आतंकी हमजा के मास्टरमाइंड होने का पता चला, तो भारत ने 2022 में उसे UAPA के तहत आतंकी घोषित किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान जाने से पहले हमजा बुरहान कभी दक्षिण कश्मीर का कमांडर था। साल 2018 में हमजा और उसकी ब्रिगेड ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी रिलीज किया था, जिसमें वो खुद अपना नाम बोलता है और अपने मिशन के बारे में बताता है।
2: हमजा बुरहान, डिविजनल कमांडर साउथ कश्मीर, आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ इस वजह से कि जो ताहब में अल बद्र मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है, जिसमें कुछ मुर्तजीन जख्मी हुए हैं। हम अल बद्र मुजाहिदीन इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और आइंदा भी ऐसे ग्रेनेड और पुलिस वालों पे हमले, SPF पे हमले, पॉलिटिकल वर्कर्स के हमले की जिम्मेदारी आज से ही अहद अपना बनाते हैं। इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज से ही हमारा टारगेट ये मुर्तदीन होंगे और लाजिमन जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, इसको हम आज से ही ये आखिरी वार्निंग होती है इनके नाम, कोई वार्निंग हम नहीं इनके लिए। बेशक हमारा बस एक ही पैगाम होगा, अगर ये पीछे मुड़े तो ठीक, वरना ये अपने अंजाम को नजर रखे।
0: रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा और शोपिया में हमजा का नेटवर्क तेजी से फैला। उसने यूसुफ बलोच नाम के एक हथियार सप्लायर के साथ मिलकर भर्ती और हथियार पहुंचाने का काम शुरू किया। हर महीने नए लड़कों को आतंकी संगठनों में शामिल किया जाता और कुछ ही समय बाद उनमें से कई मारे जाते। आरोप है कि ये पूरा नेटवर्क विचारधारा से ज्यादा पैसों और फायदे के लिए चलाया जा रहा था। श्रीनगर के लाबायपुरा एनकाउंटर का मामला भी उसके नाम से जोड़ा गया। हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार पुलवामा के रात्रिपुरा इलाके का रहने वाला था, लेकिन साल 2017 में वो पाकिस्तान चला गया। और हमजा खतरनाक आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ जाता है। अल बद्र घोषित आतंकी संगठन है। अल बद्र में शामिल होने के बाद हमजा 2019 में पुलवामा हमले की साजिश में शामिल होता है। अब हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमन गुलजार डार का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
3: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे ट्रंप ने फिर से किया हमला, मुस्तफा खामनेई लेंगे बदला। आप देखते रहिए

0: where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स
1: बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
5: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना ले।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
9: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
10: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
11: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
12: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही।
13: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
5: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
6: विक्रम, एक हिंट तो देते।
7: विक्रम!
6: हिंट।
5: बड़े आराम से।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: Character, the taste of success.
10: Like I said before, we better hold the sins.
11: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाली।
15: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
16: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
17: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
18: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
16: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
19: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
17: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
16: जहां खबर वहां खबरदार।
20: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
21: हर कोई ये कह देता है अरे ये नहीं खाइए, ये नहीं खाना, ये छोड़ना पड़ेगा, मैं मीठा छोड़ दूंगी तो मेरा वजन कम हो जाएगा। किसी को किडनी डैमेज था तो डॉक्टर ने बोल दिया होगा कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट मत लो या आप कम खाओ। वहां से ये तोड़ मरोड़ के ये बन गया कि प्रोटीन से किडनी डैमेज होती है। प्रोटीन चाहिए बालों को भी, जो इतना हम प्रोटीन के अगेंस्ट है ना, बालों को भी प्रोटीन चाहिए। प्रॉब्लम खाने में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है उसके एक्सेस में। पोर्शन मेक्स पॉइजन।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है एक बार फिर से आपका। ईरान के साथ पीस डील की चर्चाओं के बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से हमला कर दिया। अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरानी नौसेना के जहाज और ईरान के मिसाइल ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए। शांति वार्ता के बीच ईरान के हमले के बाद एक बार फिर से महायुद्ध छिड़ने की पूरी संभावना है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी दी। ईरान की धमकी का मतलब है महायुद्ध हुआ तो अब की बार ईरानी बारूद का विध्वंसक कहर इसराइल पर टूटेगा।
4: I'm saying two or three days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time.
5: शांति वार्ता के बीच ईरान पर फिर हमला। ईरान के मिसाइल ठिकाने पर भारी बमबारी। मुश्तबा ने खाई विध्वंसक बदले की कसम। दुनिया के नक्शे से इसराइल को मिटा देंगे। ईरान का दावा, अमेरिकी ड्रोन को ढेर किया। पीस डील अटकी, महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू। ट्रंप का फिर हमला, मुश्तबा लेंगे बदला। अभी ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील पर बात बनती, उससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर ईरान पर एक बार फिर हमला शुरू हो गया। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में मिसाइल के ठिकानों पर बड़ा हमला किया। वहीं हॉर्मुज में माइंस बिछाने वाली ईरानी नौसेना की नाव पर भी हमला हुआ। हमला उस वक्त हुआ जब ईरानी वार्ताकार पीस डील पर चर्चा के लिए कतर में हैं और चंद घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ पीस डील पर सहमति बनने की उम्मीद जताई है। हालांकि ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी सेना की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि ये हमले आत्मरक्षा में किए गए और उनका मकसद ईरानी बलों से सैनिकों को होने वाले खतरे से बचाना था। अमेरिकी सेना जारी युद्ध विराम के दौरान संयम बरतते हुए अपने सैनिकों की रक्षा करती रहेगी। हमले बंदर अब्बास के पास किए गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह हमला सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में की गई सैन्य कार्रवाई है। दरअसल अमेरिकी सेना का आरोप है कि हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने से अंतर्राष्ट्रीय जहाजों और अमेरिकी युद्ध पोतों को निशाना बनाया जा सकता था। ऐसे में अमेरिकी सैनिकों और युद्ध पोतों को खतरे से बचाने के लिए ये हमले किए गए। अमेरिकी हमले को ईरान ने इस युद्ध विराम का उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिकी आतंकवादी सेना ने ईरानी क्षेत्र में अपना आक्रामक रवैया जारी रखते हुए फारस की खाड़ी के जल क्षेत्र में घुसपैठ की है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने सटीक खुफिया निगरानी के बाद पलटवार करते हुए अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को रोका और मार गिराया। ईरानी सेना ने अमेरिका के एक RQ-4 ग्लोबल हॉक निगरानी ड्रोन और एक घुसपैठ करने वाले F-35 सुपरसोनिक स्टेल्थ स्ट्राइक फाइटर पर भी गोलीबारी की, जिससे उन्हें भागने और ईरानी एयर स्पेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिका का अपना दावा है और ईरान का अपना। ईरान की माने तो अमेरिकी सेना की हिमाकत का माकूल जवाब दे दिया गया है। अगर एक बार फिर अमेरिका ने ईरान पर हमले की गुस्ताखी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिका या इसराइल की तरफ से किए गए किसी भी नए हमले का और ज्यादा बलपूर्वक जवाब ईरान देगा। ईरान ने हमले के लिए अपने टारगेट निर्धारित कर लिए हैं और युद्ध के लिए तैयार है। किसी भी नए आक्रमण की प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होगी। ईरान के हमले पिछले संघर्षों की तुलना में ज्यादा गंभीर, भारी और मजबूत होंगे। ईरान ही हुर्मुज को नियंत्रित करेगा। अगर युद्ध फिर से शुरू होता है और ईरान को अपने तेल का निर्यात करने से रोका जाता है तो इससे पूरे इलाके से तेल का निर्यात पूरी तरह रुक जाएगा। ईरान की हिट लिस्ट पर क्या है ये ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनई ने बता दिया है। मुश्तबा ने धमकी देते हुए कहा है कि दुनिया के नक्शे से इसराइल का अस्तित्व मिटना तय है। ईरान की इस धमकी का मतलब यही है कि दोबारा युद्ध शुरू हुआ तो निशाने पर इसराइल होगा। संभव है कि इसराइल के खिलाफ ईरान अपनी विनाशकारी मिसाइलों का इस्तेमाल करे जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। ईरान ने इसराइल को मिटाने की धमकी उस वक्त दी है जब अमेरिका ने दोबारा हमला किया और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लेबनन से हिजबुल्ला के खिलाफ बड़े सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया है।
1: רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה. למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדפשה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדפשה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נכה אותם שוק על ירך.
5: सवाल यही है कि शांति वार्ता के बीच नेतन्याहू की धमकी और ईरान पर अमेरिका के हमले का मतलब क्या है? डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कभी ट्रंप ईरान के साथ पीस डील को लेकर उम्मीद जताते हैं तो कभी ईरान पर हमले की धमकी देते हैं।
6: We're in a war because I think you would agree we cannot let lunatics have a nuclear weapon. Do you agree? You know, their leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone. And they were pretty evil people. Not pretty evil. They were evil. They killed 42,000 protesters. 42,000. And in a period of 2 weeks, they killed 42,000 protesters. But we had to get this done, and we're really doing well. And they're getting decimated. They have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are all gone. We have to make sure that they don't have a nuclear weapon. We stopped them with the B-2 bombers. If we didn't do that, we would have had a nuclear weapon. Israel would have been blown to pieces. The Middle East would have been blown to pieces. I think Europe would have been blown to pieces.
5: दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता में सबसे बड़ा पेच एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर फंसा हुआ है। ट्रंप ये दावा कर चुके हैं कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को तैयार हो गया है, लेकिन ट्रंप के इस दावे को ईरान सिरे से खारिज कर चुका है। ईरान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रखा है कि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को नहीं सौंपेगा और न ही अपना परमाणु प्रोग्राम बंद करेगा। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी के मुताबिक समझौता तभी होगा जब अमेरिका ईरान की 5 शर्तों को मानेगा। अजीजी के मुताबिक ईरान की मुख्य मांगों में लेबनन समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करना, दोबारा हमला न होने की गारंटी देना, नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, हुर्मुज पर ईरानी सिस्टम को स्वीकार करना, ऑयल प्रतिबंध हटाना और ईरान की जब्त की गई प्रॉपर्टी को वापस करना शामिल है। ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम को शांति वार्ता से दूर रखा है, जबकि अमेरिका का पूरा फोकस ईरान के परमाणु प्रोग्राम के इर्द गिर्द घूम रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि एनरिच्ड यूरेनियम को या तो तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाए ताकि उसे वापस ले जाकर नष्ट किया जा सके, या ईरान के साथ मिलकर उसे उसी जगह पर या किसी अन्य स्वीकार्य स्थान पर नष्ट कर दिया जाए, जो कि ज्यादा बेहतर विकल्प है। इस पूरी प्रक्रिया और घटना के गवाह के तौर पर परमाणु ऊर्जा आयोग या उसके समकक्ष कोई संस्था मौजूद रहेगी। मतलब साफ है कि ट्रंप बार बार ईरान पर एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने का दबाव बना रहे हैं। ट्रंप का मकसद ईरान को उसके एनरिच यूरेनियम से परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, जबकि ईरान इससे इनकार करता रहा है। दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता इसी मुद्दे पर अटकी हुई है।
7: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we could talk a little bit about what that looks like, but that's not what the president wants, and I don't think it's what the Iranians want either.
5: अमेरिका के विदेश मंत्री मानते हैं कि ईरान के साथ या तो अच्छी पीस डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी। डील नहीं हुई तो इसका मतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा युद्ध तय है।
8: Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
5: ईरान ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, तो अमेरिका की पूरी कोशिश है ईरान पर दबाव बनाकर डील के लिए उसे राजी करना। लेकिन ईरान के रुख से साफ है कि वो झुकेगा नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ दोबारा युद्ध लड़ने को तैयार है। आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डील को लेकर एक बार फिर से ईरान को बड़ी धमकी दी है। जी हां, अब ट्रंप ने कहा है कि या तो न्यूक्लियर डस्ट यानी कि परमाणु सामग्री अमेरिका को सौंपो या फिर वहां खुद नष्ट करो। अब एक तरफ तो ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड यानी कि इसराइल के साथ मुसलमान देशों के रिश्ते सुधारने की बात कह दी। अब इससे ट्रंप की जी हुजूरी करने वाला पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। ट्रंप की इस बात को पाकिस्तान की सरकार खारिज करती दिख रही है। तो आइए हम आपको दिखाएं कि आगे अब क्या होगा।

0: ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान यूरेनियम सौंपे या खुद नष्ट करे। ट्रंप की धमकी से डील होगी या महायुद्ध की आग भड़केगी। अब कदर करेगा मध्यस्थता, पाकिस्तान का पत्ता कटा। ट्रंप ने कैसे उड़ा दी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींद। ट्रंप ने बुरा फंसाया, क्या इसराइल से दोस्ती करेगा पाकिस्तान। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 24 घंटों में 5 बड़ी बातें हुई हैं। पहली बात, ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं होगी, या तो अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, ईरान की दोहा वार्ता में हॉर्मुज और यूरेनियम मुद्दा सबसे अहम। जी हाँ, ईरान के शीर्ष प्रतिनिधि मंडल की कतर यात्रा में हॉर्मुज स्ट्रेट और हाईली एनरिच यूरेनियम सबसे अहम मुद्दा बने हुए हैं। साथ ही ईरान की फ्रीज संपत्तियों को जारी करने पर भी बातचीत हो रही है। तीसरी बात, अमेरिका और ईरान के बीच डील अटकी हुई है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रविवार को ही दोनों देश सीज फायर बहाने और हॉर्मुज खोलने को लेकर समझौता कर सकते हैं। चौथी बात, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा है कि ईरान में कोई भी बड़ा फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा। पांचवी बात, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने लेबनन और हिजबुल्ला के समर्थन में संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान इसराइल के खिलाफ लेबनन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ खड़ा है। अब सबके दिमाग में एक ही बात चल रही है, आखिर अमेरिका और ईरान के बीच डील कैसे होगी। अगर डील नहीं हुई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे खुलेगा, क्योंकि तेल गैस के संकट के चलते न सिर्फ दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है बल्कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में महंगाई भी धावा बोल रही है। ऐसे में ईरान के साथ समझौते को लेकर चल रही बातचीत में पाकिस्तान को साइड कर दिया गया है और ईरान से बातचीत की कमान कतर को सौंप दी गई है। कतर ही शांति समझौते के प्रस्ताव को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है और इसीलिए ईरान के मुख्य वार्ताकार सोमवार को कतर पहुंचे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची और मुख्य वार्ताकार बाघेर गालिबाफ इस समय कतर की राजधानी दोहा में हैं। दोहा में कतर के प्रधानमंत्री के साथ एक बड़े शांति समझौते को लेकर बेहद सीक्रेट और हाई प्रोफाइल बातचीत चल रही है। बातचीत का मुख्य फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने, ईरान के संवर्धित यूरेनियम को नष्ट करने और विदेशों में फ्रीज, ईरान के अरबों डॉलर वापस दिलाने पर है, जिसके लिए ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी दोहा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में कतर अमेरिका का करीबी सहयोगी है। कतर में ही अल उदैद एयरबेस है जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। साथ ही कतर ईरान के साथ भी अच्छे संबंध रखता है। ट्रंप ने पहले पाकिस्तान का इस्तेमाल ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए किया, लेकिन अब सबसे अहम बातचीत के लिए कतर को आगे किया है। वैसे भी कतर की राजधानी दोहा में ही तालिबान और अमेरिका की डील हुई थी और गाजा में सीज फायर को लेकर बातचीत भी यहां हो चुकी है। जहां तक अमेरिका का रुख है तो भारत दौरे पर आए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ट्रंप की ही बात को दोहरा रहे हैं कि या तो अच्छी डील होगी या नहीं होगी।
1: Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple of days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think, like anything with something like this, it's going to take a couple of days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
0: अब एक तरफ से मध्यस्थता से पाकिस्तान का पत्ता कट रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप ने ये बोलकर पाकिस्तान को बुरी तरह फंसा दिया है कि सभी मुस्लिम देश इसराइल से रिश्ते सुधारें। महायुद्ध के महासंकट के बीच ट्रंप ने एक ऐसी अपील कर डाली है जिसने धर्म की बिसात पर खड़े कई देशों को धर्म संकट में डाल दिया है। उलझनों का ये दौर शुरू हुआ है ट्रंप की एक कॉल के बाद। दरअसल ईरान के साथ समझौते को लेकर ट्रंप ने कई देशों के लीडर्स के साथ फोन पर बात की थी। इस दौरान ट्रंप ने मुस्लिम देशों से इसराइल के साथ रिश्ते बेहतर करने को कह दिया। ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, बहरीन और जॉर्डन के नेताओं के साथ। मीटिंग के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट साझा की, जिसमें लिखा कि मैं सभी देशों से अनिवार्य रूप से अनुरोध कर रहा हूं कि वो तुरंत अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करें। इसकी शुरुआत सऊदी अरब और कतर द्वारा तत्काल हस्ताक्षर किए जाने से होनी चाहिए और बाकी सभी देशों को भी उनका अनुसरण करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इस समझौते का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करना उनकी बुरी नीयत को दर्शाता है। अगर ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर मेरे साथ समझौते पर हस्ताक्षर करता है तो इस बेमिसाल वैश्विक गठबंधन का हिस्सा बनना उनके लिए भी एक सम्मान की बात होगी। अब्राहम अकॉर्ड दरअसल 2020 में अमेरिका की पहल पर हुआ एक ऐसा समझौता है जिसके तहत कई अरब देशों ने इसराइल के साथ औपचारिक रिश्ते बनाए और इसे मान्यता दी। इसका मकसद अरब इसराइल दुश्मनी को कम करना और व्यापार के साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना था। इस समझौते में बाकी देशों को भी शामिल करने की ट्रंप की अपील के बाद अब मुस्लिम देशों में बवाल मच गया है। खासतौर पर पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। एक तरफ वो पिछले कुछ वक्त से अमेरिका की जी हुजूरी में लगा हुआ था और अब ट्रंप के निर्देश को ठुकराने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को मान्यता नहीं दी है। ऊपर से फिलिस्तीनी समर्थक होना उसके डीएनए में शामिल रहा है। अगर उसने ट्रंप की अपील को मान लिया तो पाकिस्तान की राजनीति और कूटनीति में ये सबसे बड़े बवंडर की शुरुआत होगी। पाकिस्तान ने अगर इसराइल की तरफ जरा भी नरम रुख अपनाया तो वहाँ एक बड़ा धार्मिक विद्रोह जन्म ले सकता है, और अगर पाकिस्तान ने ऐसा ना किया तो ट्रंप की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। पाकिस्तान हमेशा से ही अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा होने से न सिर्फ बचता रहा है बल्कि खुलेआम मुखालफत भी करता रहा है।
2: मत को किसी लेवल के ऊपर अप्रोच किया गया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से या किसी और जगह से?
3: वी हैव अ वेरी क्लियर स्टैंड कि ये चीज जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब दूसरा ये है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो है, हम वाहिद मुल्क हैं जिनके ऊपर जिनमें इंक्लूड ही नहीं है इसराइल का नाम।
4: इस कंट्रोवर्सी को भी आप कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स का पाकिस्तान हिस्सा बनने जा रहा है, सबके नतीजे में ऐसा कुछ होने जा रहा है?
5: नहीं, हम किसी अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। हमारी पॉलिसी जो है अपनी विज़ इज़राइल रिमेन्स एज इट इज, लेकिन वी आर पार्टनर इन एट कंट्रीज ताकि हम वहां खून जो बह रहा है मासूम लोगों का, 64,000 बह चुका है लोगों का, उसको हम रोक।
6: The spirit is that, you know, Abraham being the common heritage and the common forefather of the three great revealed religions, including Judaism. So there is a certain context to that. Our position with respect to it is that there are certain benchmarks that have to be achieved for this purpose for Pakistan, and that is a viable contiguous state of Palestine with Al-Quds al-Sharif, Jerusalem as its capital.
0: अकेला पाकिस्तान ही नहीं, कई अरब देश भी दुविधा में फंस गए हैं क्योंकि इस समझौते में फिलिस्तीन के मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है, जबकि अरब देशों के लिए वो एक अहम मसला है। आज तक ब्यूरो।
7: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।

0: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है.
2: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे.
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स.
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी.
6: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट.
7: जेके मैक्स.
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स. जेके मैक्स पेंट्स. खुशियों के रंग.
8: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. AU
9: सोच बदलो और बैंक भी.
10: Like I said before, we better own the sins.
11: ग्यारह मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
12: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
13: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीओ को पता नहीं.
11: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
14: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
12: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
11: जहां खबर वहां खबरदार.
15: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा. मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील.
16: सीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं. यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है. दो राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है, गुजरात और उत्तराखंड, और स्पेशल प्रावधान करकर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है. नरेंद्र मोदी सरकार ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है.

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जंग से जूझती दुनिया के हालात पर क्वेड में मंथन, सुपर शक्तियों के सामने भारत की दो टूक, हर हाल में आतंकान जरूरी, चारों ही देशों का ताजा बयान, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता जरूरी। देश की सीमाओं को अवैध बनाने के मिशन पर गृहमंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा किया, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। कर्नाटक के सीएम हो सकते हैं डीके शिव कुमार, सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धरमैया, दिल्ली में आलाकमान ने दोनों के साथ की थी बैठक। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा पर दी सख्त चेतावनी, कहा यदि कोई बेटियों से छेड़छाड़ या अपराध का दुस्साहस करेगा तो चुकानी होगी भारी कीमत। प्रयागराज अब है अराजकता और माफिया गिरी से मुक्त। और पिशा केस की तह तक जाने में जुटी सीबीआई जांच टीम ने आत्महत्या की जगह का लिया जायजा, सास गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ, मृतक के घर वालों से की बातचीत।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जिस देश में हर 15 मिनट में एक, हर घंटे चार, हर 24 घंटे में 90 और हर साल 32,000 से ज्यादा रेप होते हों, उसी देश में दो दो रेप करने वाले रेपिस्ट को हर साल सरकार छुट्टियां मनाने जेल से बाहर भेज देती है। जी हाँ, हरियाणा सरकार की बेपनाह मोहब्बत के चलते दो दो रेप के जुर्म में 20-20 साल की सजा काटने वाला गुरमीत राम रहीम 30 दिन की छुट्टी मनाने एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। वैसे 40 दिन की छुट्टी मनाकर अभी 2.5 महीने पहले ही वो जेल वापस लौटा था। अभी कुछ दिनों की ही तो बात है, हमारे प्रधानमंत्री ने देश से अपील की थी कि राष्ट्रहित में लोग डीजल पेट्रोल बचाएं, विदेश जाने से बचें, विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। बहुत से लोगों पर इस अपील का असर भी हुआ, लेकिन ये वो चिकना खड़ा है जिस पर जब कानून ही अपना कोई असर नहीं छोड़ पाए तो फिर बाकी के असर की बात ही क्या करें। विदेश तो नहीं पर भाई देश में ही जब मन करता है छुट्टियां मनाने निकल पड़ता है। वैसे जेल के बाहर निकलकर छुट्टियां मनाना इसे शायद विदेश जैसा ही लगता हो। डीजल पेट्रोल बचाने की बात भी शायद इन जैसे लोगों के लिए नहीं कही गई। देखिए कैसे साहब गाड़ियों के काफिले के साथ दनदनाते हुए जेल के बाहर छुट्टियां मनाने निकल पड़े हैं। छुट्टी वो भी पूरे 30 दिन की, यानी हद ही है। हम सब जो आजाद हैं वो भी साल में मुश्किल से एक या बहुत ज्यादा हुआ तो दो बार छुट्टियों में घूमने निकलते हैं, गर्मी की छुट्टी या फिर सर्दी की छुट्टी। पर हरियाणा सरकार ने तो सचमुच बेशर्मी की हद ही पार कर दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे वाले इस देश में दो दो बेटियों के रेपिस्ट जिसे 20-20 साल की सजा मिल चुकी है, वो हर 2-4 महीने में ठीक इसी तरह जेल से छुट्टियां मनाने बाहर आ जाता है। सिर्फ 4 महीने पुरानी तस्वीर है ये, इसी साल 5 जनवरी की। तब भी रोहतक की सुनारिया जेल से धूल उड़ाती गाड़ियों का ऐसा ही काफिला निकला था। तब उसे 40 दिन की छुट्टी मिली थी। 4 महीने बाद 26 मई की सुबह सुबह उसी सुनारिया जेल से फिर गाड़ियों का वैसे ही एक काफिला निकला। इस बार 10 दिन कम यानी 30 दिन की छुट्टी मिली है। जी हाँ, अब तो ये खबर भी खबर नहीं लगती, पर खबर यह है कि गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान उर्फ बाबा राम रहीम उर्फ राम रहीम उर्फ डेरा सच्चा सौदा प्रमुख उर्फ लव चार्जर और न जाने कितने ही उर्फ को अपने नाम में समेटे दो दो साध्वी का रेपिस्ट एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। पिछले 6 सालों में ये रिकॉर्ड 16वीं बार है जब राम रहीम पेरोल या फरलो पर छुट्टियां मनाने जेल से बाहर आया है। देश के किसी प्राइवेट या सरकारी दफ्तर में भी इतनी छुट्टियां किसी को नहीं मिलती। अमूमन प्राइवेट कंपनी या सरकारी नौकरी में एक साल में तकरीबन 45 छुट्टियां ही मिलती है, लेकिन अभी आधा साल पूरा भी नहीं हुआ है और हरियाणा सरकार राम रहीम को 2 किस्तों में 70 छुट्टियां दे चुकी है। 5 जनवरी को 40 छुट्टी और अब 26 मई को 30 छुट्टियां। यानी कमाल देखिए कि जो हरियाणा सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों को भी साल में 45 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं देती, वही हरियाणा सरकार अपने चहेते राम रहीम को जो एक रेपिस्ट है और कातिल भी, जो एक सजा याफ्ता कैदी है, उसे सिर्फ इसी साल पहले 5 महीने में ही अब तक 70 छुट्टियां दे चुकी है। जबकि जब से राम रहीम को सजा मिली है यानी 2020 से अब तक पिछले 6 सालों में 16 किस्तों में वो 435 छुट्टियां ले चुका है। देश भर में किसी भी नौकरी पेशा शख्स को 6 साल में इतनी छुट्टी मिल ही नहीं सकती, लेकिन वाहरी हरियाणा सरकार एक रेपिस्ट और कातिल से इतनी हमदर्दी कि हर 2-4-5 महीने में उसे जेल के बाहर पेरोल या फरलो के नाम पर छुट्टियां मनाने भेज देती है। जनवरी में 40 दिन की पेरोल पर छुट्टियां मनाने बाहर आया राम रहीम अपनी छुट्टियां पूरी कर फरवरी में ही जेल लौटा था। कायदे से इस हिसाब से देखें तो 3 महीने से भी कम वक्त में वो फिर से जेल से बाहर आ चुका है। 26 मई की सुबह 6:24 पर राम रहीम सुनारिया जेल से बाहर निकला और 9 बजे के आसपास सिरसा डेरा पहुंच गया। اس کے قافلے میں 8 مہنگی گاڑیاں شامل تھیں۔ یہ جو گاڑیاں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، کچھ گاڑیاں اس کے آگے یا پیچھے رہ گئی۔
1: اس سمے ہم روہتک کی سنہریا جیل کے مکھیہ ناکے پہ ہیں، اور یہاں سے محض قریب آدھا کلومیٹر دور ہی سنہریا جیل ہے، جہاں پر رام رحیم 2017 سے جو شادیوں کے ریپ کے معاملے میں سزا کاٹ رہا ہے، اور ابھی فی الحال رام رحیم کو لگاتار جو پیرول یا فرلو مل رہی ہے، اس کے انوسار جو رام رحیم کو پھر ایک بار ہریانہ سرکار دوارا جو ہے پیرول دی گئی ہے۔ اس بار جو ہریانہ سرکار دوارا 30 دن کی ان کی پیرول ہے وہ منظور کی گئی ہے، اور صبح آج 6:34 پر روہتک کی سونہریا جیل سے جو سرسا ڈیرا میں پولیس قافلے کے ساتھ وہ نکلے ہیں۔ فی الحال جو سوال یہی اٹھتے ہیں کہ رام رحیم پر ہریانہ سرکار اتنی مہربان کیوں ہوتی ہے، کیونکہ عام قیدیوں کے اپیکسا انہیں بار بار پیرول یا فرلو دی جاتی ہے۔ رام رحیم پر کافی سنگین گمبھیر آروپ جو ہے لگے ہوئے تھے کہ 2 شادیوں کے ساتھ یون شوشن کا معاملہ ہے، ان کے 10 سال کی وہ سزا کاٹ رہے ہیں، انہیں پترکار چھترپتی ہتیا معاملے میں بھی جو ہے سزا ملی تھی، لیکن ہائی کورٹ دوارا اس سزا کو لے کر روک لگائی، اس کے بعد جو ہے پریزن جو سپریم کورٹ کی طرف گئے ہیں۔

0: ये हरियाणा के डीजीपी साहब है। 26 मई को हुई यानी जिस दिन राम रहीम 30 दिन की छुट्टी पर जेल से बाहर आया, ये हरियाणा के क्राइम का हिसाब किताब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये बता रहे थे कि राज्य में कानून व्यवस्था कितनी अच्छी हालत में है, अपराधियों और उनकी गिरफ्तारी की गिनती भी गिना रहे थे। लेकिन जब हमारी रिपोर्टर ने डीजीपी साहब से ये पूछा कि एक बलात्कारी को बार बार पेरोल और फरलो के नाम पर छुट्टियां कैसे मिल जाती, तो सुनिए सेकंड भर में डीजीपी साहब ने इस सवाल को कैसे निपटा दिया।
1: काफी एम्फेसिस है क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने में, लेकिन एक बड़ी बात ये आ रही है सर कि बार बार गुरमीत राम रहीम को जिस तरह से पेरोल और फरलो मिलते हैं, सवाल यही आता है कि ऐसा बार बार लॉन्ग रोक क्यों दिया जा रहा है।
2: नहीं, वो पेरोल का कार्य है, वो प्रिजन डिपार्टमेंट का है, उनको।
0: अब तो राम रहीम का इतनी बार अंदर बाहर आना जाना हो चुका है कि खुद नेता भी हैरान है, लोगों का तो खैर कहना ही क्या।
3: गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिली है, इस बार 30 दिन की। हर बार हाई तौबा मच जाता है क्योंकि गुरमीत रहीम कन्विक्टेड हैं, रेप का 2017 का मामला है, उसके बाद छत्रपति मर्डर केस जो कि एक पत्रकार का मर्डर केस है जिन्होंने पूरा मामला उजागर किया था, वहां पे उन्हें राहत जरूर मिली हाई कोर्ट से, लेकिन मामला अभी आगे चलने वाला भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। उसी बीच में कैस्ट्रेशन का मामला है, वो भी पंचकुला कोर्ट में सुना जा रहा है। इसी बीच में बात यही आती है कि क्या कोई आम प्रिजनर है उसे इतना ही मिलता है? अगर यही सवालिया निशान लगातार पूछा जाए हरियाणा सरकार से, तो वहां पे उनका कहना है कि हाँ, हम ये इस तरह का फैसिलिटी सबको देते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, एसजीपीसी लेके गए, लेकिन उन्होंने एक पर्सनल इंटरवेंशन करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पर्सनल केसेस हैं।
0: न ढूंढने से मिला, न याद को याद आ रहा है कि देश में इससे पहले किसी रेपिस्ट या कातिल के साथ सरकार, कानून, पुलिस या सिस्टम ने ऐसी मोहब्बत, हमदर्दी या अपनापन दिखाया हो। ढूंढ कर ढूंढ लीजिए और कहीं मिल जाए तो बताइए कि क्या इस देश में किसी कातिल या बलात्कारी को जो उम्र कैद और अलग से 20 साल की सजा काट रहा हो, जिसे जेल गए हुए सिर्फ 8 साल हुए हों, उन 8 सालों में 16 किश्तों में 435 दिन की आजादी राम रहीम के अलावा किसी और कैदी को मिली है? दो साधवियों के साथ रेप के मामले में 20 साल की सजा, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में उम्र कैद की सजा। 24 अक्टूबर 2020 पहली बार एक दिन की पेरोल, 21 मई 2021 दूसरी बार मिली पेरोल, 7 फरवरी 2022 21 दिन की पेरोल, 17 जून 2022 30 दिन की पेरोल, अक्टूबर 2022 40 दिन की पेरोल, 21 जनवरी 2023 40 दिन की पेरोल, 20 जुलाई 2023 30 दिन की पेरोल, 20 नवंबर 2023 21 दिन की पेरोल, 19 जनवरी 2024 50 दिन की पेरोल, 13 अगस्त 2024 21 दिन की फरलो, 1 अक्टूबर 2024 20 दिन की फरलो, 28 जनवरी 2025 30 दिन की पेरोल, 9 अप्रैल 2025 21 दिन की फरलो, 5 अगस्त 2025 40 दिनों की पेरोल, 5 जनवरी 2026 40 दिन की पेरोल, 26 मई 2026 30 दिनों की पेरोल, 6 साल में कुल 435 दिन राम रहीम जेल के बाहर।
4: सीरियल रेपिस्ट है, सीरियल किलर है, और माननीय न्यायालय द्वारा जिस पर इस बात की बकायदा मोहर लग चुकी है कि ये एक व्यक्ति समाज में रहने के काबिल नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर पैरोल देकर सरकार बार बार अगर बाहर निकाल रही है, तो मैं ये कहूँगा कि समाज के ऊपर इससे बड़ा कोई और कलंक, इससे बड़ा कोई और धब्बा हो नहीं सकता।
0: 15वीं बार राम रहीम ने

0: जेल से बाहर जाने के लिए जो दलील दी वो ये कि डेरा सच्चा सौदा के दूसरे ग्रुप शाह सतनाम सिंह की बर्थ एनिवर्सरी है, उसमें शामिल होने के लिए राम रहीम ने 40 दिनों की पेरोल मांगी। रोहतक के डिविजनल कमिश्नर ने राम रहीम की अर्जी हमेशा की तरह फौरन मंजूर कर ली और 5 जनवरी को राम रहीम सुनरिया जेल से दंदनाता हुआ निकला और सिरसा में अपने आश्रम जा पहुंचा। हरियाणा सरकार की राम रहीम को लेकर इस मोहब्बत के बारे में जब सवाल पूछा गया तो कमाल ये कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीधे थैंक यू बोल दिया। ये बात इसी साल 5 जनवरी की है जिस दिन राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आया था।
1: सर, राम रहीम को लेके बहुत बड़ा बवाल है, आपने लगातार बोला है।
2: थैंक यू, मेरे ख्याल सवाल नहीं रहा, बहुत वो माननीय कोर्ट का काम है। थैंक यू, आप सब
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कमाल यह है कि राम रहीम रेप और मर्डर केस के 2 मामलों में उम्र कैद और 20 साल की सजा तो काट ही रहा। इसके अलावा अभी कम से कम 5 ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें कई गवाहों की गवाहियां होनी बाकी हैं। जाहिर है वो गवाह भी डरे हुए हैं, क्योंकि बाहर आकर राम रहीम आसानी से उन गवाहों को डरा धमका सकता है। इतना ही नहीं, रेप के जिन 2 मामलों में उसे सजा हुई उनकी पीड़ितों को खतरा है। हालांकि पत्रकार के कत्ल के मामले में कुछ दिन पहले ही अदालत ने राम रहीम को बरी कर दिया था, जिसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई है।
4: गुरमीत राम रहीम, सबको ये जानना जरूरी होगा कि एक तो 2 रेप केसेस में कन्विक्टेड है और 2 मर्डर केसेस में कन्विक्टेड है, जिसमें एक में उसकी अपील अलाउ होगी हाईकोर्ट में और उसकी अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट दैट एक्विटल ऑर्डर, और एक जो मर्डर केस की अपील सुनी गई है उसका फैसला आएगा। ये तो 4 केस हैं। 5वां केस है कि उसने गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक डाल के 2007 में जो स्वांग रचाया था, तो उसका भी उसके ऊपर केस पेंडिंग पड़ा है। और जो 6वां केस है जो उसने साधुओं को नपुंसक बनाया है, जो पंचकुला की कोर्ट में पेंडिंग है।
0: जिस पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने राम रहीम का कच्चा चिट्ठा खोला था और जिसकी वजह से राम रहीम रामचंद्र का कत्ल करवा दिया, उनके बेटे अंशुल का तो मानना है कि बार बार पेरोल और फरलो के नाम पर राम रहीम को बाहर भेजने की बजाय हरियाणा सरकार को सीधे उसे छोड़ ही देना चाहिए। दरअसल राम रहीम को जेल गए जब 5 साल हो चुके थे, तब हरियाणा सरकार ने राज्य में सजायाफ्ता कैदियों के लिए पेरोल और फरलो का पूरा नियम आनन फानन में बदल डाला था। पहले पंजाब और हरियाणा में पेरोल और फरलो को लेकर एक ही कानून था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राम रहीम को फायदा पहुंचाने के लिए मई 2022 में हरियाणा सरकार जेल नियम के तहत एक नया एक्ट लेकर आई, जिसका नाम था प्रिजनर गुड कंडक्ट टेम्परेरी लीव एक्ट 2022। इस नए एक्ट में ये प्रावधान था कि सजायाफ्ता कैदी साल में 2 बार 40-40 दिनों की पेरोल ले सकते हैं। हालांकि ये पेरोल या फरलो अमूमन हीनियस क्राइम यानी जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को नहीं मिलते, लेकिन हरियाणा सरकार ने खेल ये किया कि उसने 2-2 साधवियों से रेप और 1 पत्रकार का मर्डर करने के बावजूद राम रहीम को जघन्य अपराधी कभी माना ही नहीं, जिसका फायदा राम रहीम पिछले 8 सालों में 15 बार छुट्टियां लेकर उठा चुका है।
4: इससे पहले पंजाब और हरियाणा का एक्ट सेम था, तो इन्होंने स्पेशली हरियाणा का अपना एक्ट बनाया जिसमें ये प्रावधान डाल दिया कि साल में 2 बारी कोई भी जो कैदी है वो 40-40 दिन की पेरोल जा सकता है। अब बात यह है कि उसमें हीनियस ऑफेंसेस भी कुछ डिफाइन किए गए हैं, कुछ नॉन हीनियस भी डिफाइन किए गए हैं। जो इसका जो ऑफेंस है वो हीनियस में डिफाइन नहीं किया गया, सो जिसके कारण ये है कि साल में ये 2 बारी पेरोल पे आ जाता है।
0: अब आप ही बताएं, अगर रेप और मर्डर करने वाला अपराध हीनियस क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? लेकिन सरकार मेहरबान तो कुछ भी हो सकता है। उसी सरकार कानून और सिस्टम को ठेंगा दिखाते हुए जब जब राम रहीम जेल से बाहर आता है तो ये बता जाता है कि उसके आगे कोई कुछ नहीं, असली गुरु वही है।
4: ये बार बार पेरोल पे क्यों आता है? क्योंकि जब ये पेरोल पे आता है तो अपने आश्रमों में जाके ये लोगों को एड्रेस करता है, और एक आदमी जो जिसकी इतने केसों में कन्विक्शन हुई हो, जब वो लोगों में जाके एड्रेस करता है तो मेरे मुताबिक कि इट अंडरमाइंस द जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स, भी मैं भी अदालतें भी मेरा कुछ नहीं कर सकी, तो मैं तो गुरु का गुरु हूँ।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत पूरी हरियाणा सरकार ये कहते नहीं थकती कि राम रहीम को बार बार पेरोल या फर्लो कानून के तहत मिल रहा है, इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं। लेकिन इसी हरियाणा में पिछले 6 सालों के अंदर राम रहीम के अलावा किसी और रेपिस्ट या कातिल को 435 दिन की छुट्टी मिली हो, उसका कोई रिकॉर्ड ढूंढे नहीं मिलता। जिस पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के कत्ल के इल्जाम में राम रहीम को उम्र कैद की सजा मिली, उन्हीं रामचंद्र के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो इस मामले में खुद दखल दे। फिलहाल हरियाणा सरकार और कानून की कृपा से अगले 30 दिनों तक राम रहीम सिरसा के अपने उसी आश्रम में रहेगा जहां से 8 साल पहले 2017 में उसकी बारात निकली थी। 30 दिनों की गिनती के हिसाब से इस बार राम रहीम 25 जून को जेल वापस पहुंचेगा, यानी तब तक रॉक स्टार और लव चार्जर बाबा की ऐश। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ बलजीत सिंह, सिरसा आज तक। हमारे देश में इस वक्त 75,000 से ज्यादा ऐसे कैदी हैं जो अलग अलग जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अकेले हरियाणा की जेलों में ही करीब 3,000 ऐसे कैदी हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली है। लेकिन क्या मजाल जो हरियाणा सरकार की ये मोहब्बत कभी उनके हिस्से आ जाए। वैसे भी कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो फिर ये भी सही। देश भर में उम्र कैद की सजा काट रहे करीब 75,000 से ज्यादा कैदी हैं, लेकिन इन कैदियों को कभी वो नसीब नहीं हुआ जो राम रहीम को हुआ। अकेले हरियाणा में ही उम्र कैद की सजा काट रहे 2,824 कैदी हैं, लेकिन ज्यादातर के लिए इतना पेरोल और फरलो आज भी एक ख्वाब ही है। यह और बात है कि हरियाणा सरकार ने कोर्ट में ये बताया है कि कानून की तब्दीली का फायदा राम रहीम की तरह बाकी के कैदी भी उठा रहे। वैसे खुद राम रहीम के पेरोल पर उसके वकील क्या कहते हैं, आपको वो भी सुनना चाहिए।
3: पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की इंसा जी को आज स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा 40 दिन की जो पेरोल दी गई है, जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं, जितनी बार भी पूज्य गुरु जी को पेरोल या फरलो दी जाती है स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, वो कानूनी दायरे के अंदर ही दी जाती है। उनकी बनती पेरोल ही उन्हें हमेशा दी जाती है और उनकी बनती पेरोल ही आज 40 दिन की उन्हें दी गई है। इस 40 दिन की पेरोल के दौरान पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रहेंगे।
0: वैसे बिल्किस बानो केस को छोड़ दे तो पेरोल पर बाहर रहने का बाबा राम रहीम का रिकॉर्ड अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा सकता है। दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो की ओर से दिए गए एक हल्फनामे में ये बताया गया था कि उसके गुनहगार 11 लोगों में से 10 लोग सजा पाने के बाद 1,000 दिनों का पेरोल और फरलो ले चुके हैं। इसके अलावा पेरोल और फरलो को लेकर जिन कैदियों की चर्चा होती रही उनमें फिल्म स्टार संजय दत्त और कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा का नाम शामिल है। देश के अलग अलग जेलों में बंद मौजूदा या पहले का कोई भी दूसरा ऐसा कैदी नहीं है जिसे इतने कम वक्त में पेरोल और फरलो के नाम पर इतनी लंबी लंबी छुट्टियां दी गई। राम रहीम से पहले फिल्म स्टार संजय दत्त को भी फरलो या पेरोल पर रिहाई को लेकर सवाल उठे थे। अपनी पूरी सजा के दौरान संजय दत्त फिर भी 160 दिन की पेरोल या फरलो की आजादी हासिल कर सके थे। संजय दत्त की इस आजादी को लेकर जब मीडिया में शोर उठा तब बाद में पेरोल या फरलो के नाम पर उनकी आजादी पर ब्रेक लगा दी गई थी। दिल्ली के चर्चित जेसिका लाल मर्डर केस के मुजरिम मनु शर्मा को भी अपने वक्त में पेरोल और फरलो पर बार बार रिहाई देने को लेकर सवाल उठे थे। पेरोल पर रिहाई के दौरान एक बार तो मनु शर्मा को अपने दोस्तों के साथ एक नाइट क्लब में डांस करते पाया गया था, तब यह खबर मीडिया में काफी सुर्खियां बनी थी। इसके बाद से मनु शर्मा की रिहाई पर भी ब्रेक लगा दी गई थी। हालांकि बरसों जेल में रहने के बावजूद मनु शर्मा भी राम रहीम के 7-8 सालों का भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, जो कि राम रहीम ने 7-8 सालों के अंदर ही पेरोल और फरलो पर इतनी आजादी हासिल कर ली जो मनु शर्मा के हिस्से में आई ही नहीं। अब जाहिर है जब शख्सियत देखकर पेरोल और फरलो का इस तरह मजाक बनेगा तो लोग सवाल तो पूछेंगे, लिहाजा राम रहीम को पैरोल देने के हरियाणा सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जेल में बेशुमार कैदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद बाहर नहीं निकल पा रहे, दूसरी तरफ सरकार बार बार राम रहीम को पैरोल देती जा रही है। सवाल यही है कि अगर सरकार को इससे कोई फायदा नहीं है तो राम रहीम पर इतनी मेहरबानी क्यों। हालांकि हरियाणा सरकार ने इसे एक रूटीन अफेयर करार दिया है। सरकार का कहना है कि पेरोल हर मुजरिम का हक है और राम रहीम दूसरे मुजरिमों से अलग नहीं। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और रोहतक से सुरेंद्र सिंह के साथ बलजीत सिंह, सिरसा आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देख।
5: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
8: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

जंग से जूझती दुनिया के हालात पर क्वेड में मंथन, सुपर शक्तियों के सामने भारत की दो टूक, हर हाल में आतंकवाद जरूरी, चारों देशों ने साझा बयान दिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता जरूरी। देश की सीमाओं को अवैध बनाने के मिशन पर गृहमंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा किया, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंजेस को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। कर्नाटक के सीएम हो सकते हैं डीके शिव कुमार, सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धरमैया, दिल्ली में आलाकमान ने दोनों के साथ की थी बैठक। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सिलीगुड़ी साइबर थाने में केस, पिछले साल सनातन धर्म पर की थी अभद्र टिप्पणी। एसएम पोर्टल हैक, धोने के दावे को सीबीएसई ने खारिज किया, कहा असली मूल्यांकन पोर्ट का यूआरएल अलग है, छात्रों के अंक या अन्य डेटा पोर्टल पर नहीं।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। हर त्योहार से पहले मजहबी विवाद होना संयोग है या सियासी प्रयोग? ठाणे के मीरा रोड इलाके में एक सोसाइटी में बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर बवाल हुआ है। यहां कुर्बानी के लिए 50 से ज्यादा बकरे लाए गए थे, जिसका हिंदुवादी संगठनों ने विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान 3 बीएचपी के कार्यकर्ताओं पर हमला भी किया गया, लेकिन तनाव तब बढ़ गया जब सोसाइटी में कुर्बानी का विरोध कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ता स्वर लेकर पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए।
1: सड़क पर जय श्री राम का उद्घोष। सड़क पर हिंदू संगठनों की हनुमान चालीसा। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर दी चेतावनी। सड़क पर सुअर को लेकर संग्राम। ये बवाल बकरीद से पहले मुंबई से सटे ठाणे में हुआ। दरअसल मीरा रोड की पूनम स्टेट क्लस्टर 1 हाउसिंग सोसाइटी में बकरीद के पहले 3 दिन से हंगामा हो रहा था। यहाँ मुस्लिम परिवार सोसाइटी के अंदर कुर्बानी के लिए 40 से 50 बकरे लाए। बाकायदा सोसाइटी के अंदर कुर्बानी के लिए 3 शेड भी बनाया जा रहा था, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक सोसाइटी में कुर्बानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
2: हम इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, मीरा रोड के पूनम स्टेट क्लस्टर 1 बिल्डिंग में, जहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति कल से ही तनावपूर्ण थी यहां पर, क्योंकि यहां पर बहुत से बकरे लाए गए हैं इस सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर बकरे लाए गए हैं कुर्बानी के लिए, ईद अल अधा की कुर्बानी के लिए लाए गए, और जिसे सोसाइटी के ही कुछ रहवासी विरोध कर रहे थे। सोसाइटी के रहवासी इसका विरोध कर रहे थे, और सोसाइटी के रहवासी जब विरोध कर रहे थे तो कुछ लोगों पर, जो लोग विरोध कर रहे थे उन पर धारदार किसी हथियार से या ब्लेड से हमला किया गया। कुछ लोगों को चोटें आई और उसके बाद स्थिति बहुत ही बिगड़ गई। हिंदू संगठन यहां पर भारी मात्रा में पहुंचे। हिंदू संगठन से जुड़े लोग, वीएचपी बजरंग दल से जुड़े लोग यहां पर पहुंचे।
1: सोसाइटी के हिंदू परिवारों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन फिर भी बकरे नहीं हटे तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा संभाला। उसके बाद जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इसी प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने 3 हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई।
3: मार दिया अपने,
1: घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने ब्लेड से हमला करने वाले की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ऐलान कर दिया कि अगर सोसाइटी से बकरे नहीं हटाए गए तो वो इसके जवाब में सुअर को लाएंगे। लेकिन सुअर को लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। कभी पुलिस वाला सुअर को पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश करता, तो कभी बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस से सुअर को छीनने की कोशिश करते दिखे।
4: इन्होंने 50-60 बकरे ला दिए।
3: कुछ जिहादियों के द्वारा बजरंग दल पे चाकू से वार किया गया। वो हमारा मांग है, उसको अरेस्ट किया जाए और बकरे को बाहर निकाल।
1: आखिर पूरे दिन चले हंगामे के बाद पुलिस ने सोसाइटी के दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष सोसाइटी से बकरे हटाने को तैयार हो गया। और फिर पुलिस ने 3 गाड़ियों में भरकर 42 बकरों को उस जगह पर पहुंचा दिया, जहां बीएमसी ने सामूहिक तौर पर कुर्बानी देने के लिए निश्चित किया।
2: आप देख सकते हैं मीरा रोड के पूनम एस्टेट में, आप देख सकते हैं मीरा रोड महानगर पालिका पुलिस की गाड़ी बकरे जो लाए गए थे इस सोसाइटी में, उन्हें भरकर अब ले जाया जा रहा है। इन बकरों को भरकर ले जाया जा रहा है। ये 3 ट्रक जो है आप देख रहे हैं, ये पहला ट्रक है आप देख रहे हैं, जो 25 से 30 बकरे यहां पर लाए गए थे, उन्हें भरकर ले जाया जा रहा है। ये दूसरी ट्रक है और ये देखिए बकरे भी दिखाई दे रहे हैं। ये है तीसरी ट्रक जो बकरे लाए गए थे उन्हें ले जाया जा रहा है।
5: भाई कहाँ ले जा रहे हैं इनको? एनएसको
2: एनएसको ले जा रहे हैं। एनएसको नाम की कोई जगह है जहां पर डेडिकेटेड जगह बनाई।
1: आखिरकार 3 दिन की मशक्कत के बाद बकरों को सोसाइटी से शिफ्ट कर दिया गया तो बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे हिंदुत्व की जीत करार दिया
2: और अब जाकर सोसाइटी वालों ने तय किया, जो कि डीसीपी राहुल चौहान ने भी हमें बताया था कि आपस में उन्होंने तय किया कि बकरे सोसाइटी में नहीं रहेंगे। हाईकोर्ट का भी निर्देश है कि इस तरीके की कुर्बानी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए और इस वजह से ये बकरे अब यहाँ से हटाए जा चुके हैं। आप आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं।
3: ये देखो यहाँ से हटे नहीं, सारे के सारे बजरंग दल यहाँ डटे रहे। अल्टीमेट दिया था कि 1 घंटा के अंदर अगर बकरा नहीं निकलेगा तो हम लोग गेट के अंदर घुसेंगे और जबरदस्ती बाई हुक एंड बाई कुक बकरा को निकालेंगे।
6: और हम लोग कल से इनको बोल रहे थे कि बकरा ऐसा आप सिंपल में बकरा अगर रूल नहीं है सोसाइटी में तो इसको खाली कर दो, लेकिन ये लोग बोले नहीं नहीं नहीं। आज हमको पूरा शासन प्रशासन लेके आज हमको देवा भाऊ और यहाँ के हमारे आमदार नरेंद्र मेहता सब ने ताकत लगाई तो ये आज जो फल मिला हमको एक हिंदुत्ववादी जीत हुई है। ये
2: तो आप देख सकते हैं कि भाजपा के जो नेता हैं, बजरंग दल के नेता हैं, लोकल नगर सेवक हैं, ये सारे ही लोग यहाँ पर जोर लगाए हुए थे कि किसी तरह ये पूनम एस्टेट में जो 25, 30, 40 बकरे लाए गए थे कुर्बानी के लिए उन्हें कुर्बानी यहाँ पर सोसाइटी में नहीं होने देना है। लोग यहाँ पर रहने वाले भी विरोध कर रहे थे।
1: पुलिस भी 3 दिन तक काफी तनाव में रही, लेकिन बवाल खत्म होने के बाद भी सोसाइटी में बकरीद तक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
7: पूनम क्लस्टर सोसाइटी में एक कुछ लोगों ने जो बकरीद के लिए कुर्बानी देने के लिए जो है वो सोसाइटी में लेके आए थे, तो उसके बाद कुछ लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया था। ऑब्जेक्शन रेज करते ही प्रशासन ने एक मीटिंग लिया, प्रशासन में डिस्कशन करके महानगर पालिका ने उनको एक पर्यायी जगह जो है उसका अरेंजमेंट किया। आज यहाँ पे सोसाइटी में जो 2 ग्रुप है उन्होंने कंसेंसस से डिसाइड किया कि जो बकरी है वो यहाँ से हटाएंगे और जो महानगर पालिका ने जो प्लेस डिसाइड किया है वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो अभी जो बकरे थे सोसाइटी से जो महानगर पालिका का जो जगह है वहाँ पे शिफ्ट कर दिए है, अभी यहाँ पे कोई भी इशू नहीं।
1: पूरे मामले में सियासत तेज होती जा रही है। बोरीवली से बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने कहा है कि अगर अल्पसंख्यक संविधान की जगह शरिया का पालन करेगा तो हम बकरों का जवाब सुअरों से देंगे।
8: सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से हाउसिंग सोसाइटी में इस प्रकार की कत्ल की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। देश के संविधान में आस्था रखने वाले अल्पसंख्यक समुदाय ने देश के कानून को मानना चाहिए, लेकिन बार बार वो ये दिखाते हैं कि उनकी आस्था इस देश के संविधान में, इस देश के कानून व्यवस्था में नहीं है, वो शरिया को ही मानते हैं और इसके लिए अगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो फिर बकरी का जवाब सुअर से दिया जाएगा।
9: इलीगल कुर्बानी होना ही नहीं चाहिए, मना है, इलीगल कुर्बानी नहीं करना है, परंतु जहाँ जो सोसाइटीज है वहाँ पर साइड में कहीं भी एक पर्दा लगा करके कुर्बानी का परमिशन दिया जाता है, उन लोगों को परमिशन देना चाहिए। सरकार को ये करना चाहिए और वादा किया आप मुख्यमंत्री जी ने, उस दिन मीटिंग भी हुई थी कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, सब मिलजुल के देश में रहना चाहिए, हर धर्म के लोगों को अपना त्यौहार मनाना चाहिए। सरकार को थोड़ा इस पर नजर डाल करके जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनके साथ एक्शन लेना चाहिए।
1: फिलहाल बकरीद से पहले हुए इस बवाल से मुंबई का सियासी पारा चढ़ गया है। सवाल है कि हर त्योहार से पहले मजहबी विवाद होना महज संयोग है या फिर सोचा समझा सियासी प्रयोग।
2: तनावपूर्ण माहौल था, पशु बकरा भी एक पशु है और सुअर भी एक पशु है, इसीलिए दोनों को एक प्रोटेस्ट के तौर पर यहाँ पर लाया गया था, पर तनावपूर्ण सिचुएशन जरूर बनी थी। यहाँ पर पुलिस को उस सुअर को छीनकर ले जाना पड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती भी की गई, अभी भी पुलिस तैनात है, पर जो बकरे लाए गए थे वो सोसाइटी में वो हटा दिए गए हैं। कैमरा पर्सन नितिन वर्ने और विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मीरा रोड। आज
0: बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी ठाड़े की इस सोसाइटी में पहुंचे। उन्होंने मीरा रोड इलाके को मिनी पाकिस्तान करार दे दिया।
10: मैंने यहाँ के लोगों से बातचीत की, पुलिस ऑफिसर बाकी ऑफिसर से, यहाँ पर आग लगाने का कुछ मुस्लिम धर्मांजीवादियों ने प्रयास किया, बकरे रखे गए, ये जो यहाँ पर नया नगर मीरा रोड को नया पाकिस्तान का स्वरूप कांग्रेस के जियादी नेता उद्धव ठाकरे के जियादी नेता MIM देना चाहते हैं, उसके कारण 20 दिन पहले एक चौकीदार की हत्या करने का प्रयास हुआ और इसके लिए हमने इस बार कहा एक भी बकरा कटेगा नहीं।
0: ठाणे बकरीद विवाद में चाकूबाजी में घायल BHP कार्यकर्ता हर्ष सिंह ने FIR दर्ज करवाई थी और पुलिस ने हमला करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। हमारी संवाददाता विद्या ने हर्ष सिंह से बात की।
11: मीरा रोड की एक सोसाइटी में कल पूरे दिन हंगामा इस बात पे हुआ था कि कुछ जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने बकरे लेके आए थे और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे उसे अपोज कर रहे थे। दरअसल बकरे पहले भी लाए जाते थे लेकिन इश्यू इस बात पे हुआ था कि बहुत ज्यादा बकरे लाए गए थे बकरीद के लिए और एक शेड बना दिया गया था जिसके ऊपर काफी हंगामा हुआ। बाहर से भी कुछ लोग आए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के भी लोग आए थे और इस हंगामे के दौरान एक शख्स ने चाकू निकाला और लोगों पर हमला कर दिया। 3 लोग घायल हो गए, इसमें से एक शख्स हमारे साथ है। आप लोग कहाँ, आप लोग सोसाइटी में रहते हैं?
12: कौन? नहीं, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हम वो साइड रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद से हूँ, बजरंग दल, जय श्री राम। मेरा नाम हर्ष सिंह है। जो जैसे कि हम कल 8 बजे यहाँ पे इकट्ठा हुए थे जिनके अंदर ये जियादी लोग ने बकरी लाया था जो कि अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हम वही चर्चा सब कर रहे थे, हमारे जिला मंत्री नागना जी कामले भी थे उपस्थित और यहाँ पे हमारे अन्य कार्यकर्ता सब लोग उपस्थित थे। तो हम लोग ऐसी बातचीत हो रहा था, सोसाइटी वाले भी थे, उन लोग भी अपना सब प्रॉब्लम्स बता रहे थे ऐसा वैसा। तो उसमें एक अन्य व्यक्ति आया था बाहर से जिसने नागना जी का नाम पूछा।
11: कितने बजे के आसपास?
12: ये हम कुछ 12:50 पे हुआ था टाइम पे। वो व्यक्ति आया था, अननोन व्यक्ति, उसने पहले पूछा कि नागना जी कौन है। तो हमने बोला कि
11: नागना जी कौन है?
12: ये हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला मंत्री है मीरा भाईंदर के।
11: अच्छा। ठीक है, उनके बारे में पूछा?
12: हाँ, उनके बारे में पूछा कि कौन है क्या है वो। तो हमने बोला कि आप नाम ये सब क्यों पूछ रहे हो आपको? हाँ, तो ऐसी थोड़ा वाद विवाद हुआ, उसने फट से चाकू निकाला और जैसे ही मारने जा रहा था फट से हम मैंने देख लिया और हाथ डाल दिया।
11: तो आपके चोट कुछ टाँके हुए?
12: हाँ, 4 टाँके लगे और बहुत गहरी चोट आई है।
11: और भी लोग इंजर्ड हुए
12: जब भागने लगा तो, और दो हमारे 2 कार्यकर्ता को लगा है, उनको भी काफी गहरी चोट आई है। अच्छा। और अभी मेरे को सिटी स्कैन और सोनोग्राफी के लिए बुलाया गया है।
11: तो अभी वो जो आरोपी जो जिसने किया था, क्या वो आइडेंटिफाइड है, कौन है वो, क्या आप लोगों ने, क्या पुलिस ने उसको पकड़ लिया?
12: हाँ, वो पुलिस कस्टडी में, हमने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पकड़ के उसको लाया और पुलिस को थामा।
0: महाराष्ट्र सरकार मुंबई के मरीन ड्राइव के किनारे सरकारी जमीन पर बने 10 मुख्य जिमखानों की जांच और सर्वे की तैयारी में है। यह कदम दिल्ली जिमखाना को खाली करने के हालिया आदेश के बाद उठाया गया है और फडणवीस सरकार लीज अग्रीमेंट, किराया नियमों के पालन और जिमखाना परिसर में होने वाले कमर्शियल इवेंट्स की समीक्षा करवाएगी।
13: महाराष्ट्र गवर्नमेंट या कलेक्टर से कोई नोटिस नहीं आया और हमारे जिमखाना का इश्यू और वहां का जो दिल्ली का जिमखाना का इश्यू बिल्कुल डिफरेंट है। दरअसल वो दिल्ली का जिमखाना है ना, वो 23 एकड़ की जगह है और प्राइम मिनिस्टर के घर के बिल्कुल बाजू में है, प्लस वहां प्रोटेक्शन के लिए या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने शायद उसको एक्वायर करने की बात की होगी। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र के जो हमारे बॉम्बे के जिमखाना है ना, हमारा बड़ा कॉर्डियल रिलेशन है गवर्नमेंट से भी और कलेक्टर से भी, हमको कोई लेटर, कोई इंक्वायरी, कोई परेशानी कुछ भी नहीं है।
14: ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना को केंद्र सरकार की ओर से मिली नोटिस के बाद अब मुंबई के कई सारे ऐसे एलीट जिमखाना और क्लब्स हैं जो महाराष्ट्र सरकार की रडार पर आ चुके हैं। फिलहाल मैं मरीन ड्राइव के उस आइकॉनिक जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़े से बड़े कुल मिलाकर ऐसे 10 जिमखाना है जो ठीक मरीन ड्राइव के सामने यहाँ पर पिछले कई सालों से ऑपरेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये गवर्नमेंट ओन्ड लैंड पर यानी कलेक्टर लैंड पर ये सारे जिमखाना जो है वो चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस्लाम जिमखाना है, पारसी जिमखाना है, उसी के बगल में आप देखे तो जैन जिमखाना है, यहाँ पर आगे जाके देखे तो पुलिस जिमखाना है। इसके अलावा ये तो बहरहाल छोटे जिमखाने में गिना जाता है, लेकिन इसके अलावा मुंबई में CCI क्लब है, MCA क्लब है और उसी के साथ महालक्ष्मी रेसकोर्स एक ऐसी बड़ी जगह है जहां पर बड़े बड़े क्लब ऑपरेट करते हैं। और ये सभी क्लब जो है ये गवर्नमेंट की लैंड पर है, 99 साल की लीज पर उन्हें सरकार ने 1875 में दिया गया था। उनकी लीज खत्म होने के बाद उनके किराए जो है वो बढ़ाए गए थे, लेकिन फ्री रेंट पॉलिसी को लेकर सभी ये जो क्लब के प्रतिनिधि है उन्होंने कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज किया था, जिसके बाद अब 2025 में इसमें सुधार किया गया है। हालांकि लीज को लेकर, कई सारे नियमों के उल्लंघन को लेकर सरकार और इन क्लब के प्रतिनिधियों में काफी बहस भी होती रहती है, सुनवाई भी होती रहती है। लेकिन क्योंकि अब दिल्ली जिमखाना को नोटिस सर्व किया गया है, क्या मुंबई के इन हुज हु लोगों को कैटर करने वाले जिमखानों को भी इसी तरह की नोटिस सर्व की जाएगी, और सामान्य मुंबईकरों को, सामान्य जनता को क्या इसमें और ज्यादा एक्सेस मिल पाएगा, ये सवाल अब मुंबईकर पूछ रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सलाहकार और पूर्व अध्यक्ष बाल मलकीत सिंह ने बार बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे मारने वाला जहर बंद करो, एक ही बार में ईंधन की कीमतें बढ़ा दो।
15: पिछले 10 दिनों में चौथी बार डीजल के प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, तकरीबन 8 रुपए की यह बढ़ोतरी है, और आने वाले समय में ये भाव जो है वो और बढ़ सकता है। इससे जो ट्रक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, जिनके भरोसे आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन जो है वो चलती है, उनका क्या इम्पैक्ट है वो जानने के लिए इस वक्त हम वडाला ट्रक टर्मिनस में खड़े हैं। यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि कई ट्रक जो है, तकरीबन 40% जो ट्रक्स हैं वो खड़ी हो चुकी है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के एडवाइज़र बाल मलकीत सिंह जी हमारे साथ हैं। कंटिन्यूसली फरवरी से हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया क्राइसिस, उस समय पे फ्यूल प्राइजेस नहीं बढ़े थे तो डिमांड का इशू था, लेकिन अब पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि बिजनेस जो है एक स्टैंड स्टिल पर आ गया है, जिसमें फ्यूचर काफ़ी अनसर्टन लग रहा है।
16: देखिए, लगातार चौथी बढ़ोतरी आज हुई है पिछले 10 दिन में, जो लगभग 8 रुपये प्रति लीटर है। इसके कास्केडिंग इफेक्ट डायरेक्टली हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट में आते हैं, क्योंकि डीजल एक मेजर कॉम्पोनेंट है, लगभग 55% हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट का हिस्सा है। और इसके साथ में सिर्फ डीजल की ना बात करें, बात हम करें कि हमारा जो अदर जो कंपोनेंट्स हैं, टायर हैं, जो एड ब्लू है, स्पेयर्स हैं, ऑयल्स हैं, लूप्स हैं, इस तरह से जो महंगाई का असर हमारे को, परिवहन उद्योग को बहुत लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, बहुत संकट में लेके आ रहा है। इसके कारण बहुत बड़ी परेशानी है और ये उद्योग बहुत चिंतित है।
0: पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। मुंबई कर ज्यादातर दादा मार्केट से ही सब्जियां खरीदते हैं। हमारी संवाददाता ने दादा मार्केट के हालात का जायजा लिया है, पता चला ये कि सब्जियों की कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं।
17: कुछ समय से जो डीजल, पेट्रोल और गैस की जो दाम बढ़े हैं, उसके बाद काफी सारे लोग कह रहे हैं कि सब्जियां और सबके दाम बढ़ गए हैं। इस वक्त हम हैं मुंबई के दादर इलाके के एक होलसेल मार्केट में। आइए, यहां पर जो दुकानदार है, आइए उनसे ही बात करते हैं।
18: कोई ज्यादा बाजार नहीं बढ़ा है, वही सब पहले से
19: जैसे बिक्री उससे कम हो गई है, पहले
17: बिक्री कम हो गई है एकदम। तो क्या मतलब क्या भाव चल रहा है, किस चीज का, किस चीज में महंगाई हुई?
20: महंगाई ग्राहक नहीं है, क्या महंगाई है?
17: सब्जी कौन सी महंगी हुई?
20: सब्जी कोई नहीं, महंगी नहीं ज्यादा है, सस्ती है, लेकिन कहने वाला बिक नहीं रहा है इसमें।
17: मैम आपसे बात कर सकते हैं कि यहाँ पे आप मार्केट अक्सर आती होंगी? हाँ। तो यहाँ पर दाम कुछ बढ़ा है क्या?
21: हाँ, अभी मैंने भिंडी लिया, लास्ट टाइम मैं 60 रुपए में लेके गई, अभी 80 रुपया किलो है।
17: अच्छा, तो 20 रुपए सीधे किलो।
21: हाँ हाँ, सब में काकड़ी वाकड़ी सब में बढ़ गया है।
17: बढ़ गया यार, दुकानदार तो कह रहे हैं कुछ नहीं बढ़ा।
21: नहीं नहीं बढ़ा है।
17: आप क्या खरीद रही थी पहले, जो आपको पता था?
21: सब्जी सब थोड़ा थोड़ा सब में बढ़ गया है,
17: सब में बढ़ गया। हाँ हाँ, कितना कितना मतलब?
21: 5-10-20 ऐसा। हाँ,
17: मिनिमम 20 रुपए में बढ़ा है, तो
22: थोड़ा थोड़ा है, बाकी ज्यादा नहीं है।
17: वो लोग कह रहे थे कि 10-20 रुपए बढ़ गया है।
22: अभी देखो, सब चीज बढ़ेगा तो बढ़ने वाला ही है, तो क्या खाएंगे? नहीं खाना तो
17: खाने बात, लेकिन दाम बढ़ा हुआ है।
22: हाँ, वो तो फर्क पड़ता ही है ना, हर एक चीज में बढ़ेगा ही।
17: तो जैसा आपने सुना, दुकानदार भले ही कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं है, लेकिन कस्टमर्स बता रहे हैं कि कुछ कुछ दाम जरूर बढ़ गया है। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
0: मुंबई के विश्व प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के सौंदर्यीकरण परियोजना के उद्घाटन समारोह में सीएम फडणवीस और उनके साथ दोनों ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनित्रा पवार भी मौजूद थे। सभी ने बप्पा के दर पर मत्था टेका। इस मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई, जिसमें दिखाया गया था कि मंदिर को कैसे संवारा जाए।

0: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen. And you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
0: डॉन 3 कंट्रोवर्सी के बीच अभिनेता रणबीर सिंह मैसूर पहुंचे हैं। उन्होंने मां चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की है। वो बिना किसी पूर्व सूचना के आम भक्तों की तरह यहां पहुंचे थे। कतार में खड़े हुए देवी चामुंडेश्वरी के दर्शन किए। सूत्रों के अनुसार ये यात्रा अदालत के उस निर्देशों का पालन करने का एक हिस्सा थी जिसमें उन्हें माफी मांगने के लिए कहा गया था। विशेष पूजा के बाद रणबीर ने मंदिर परिसर में काफी देर तक समय बिताया। भीतर ही उन्होंने गर्भगृह के पास बैठकर ध्यान किया। गर्भगृह के प्रवेश द्वार तक मास्क उन्होंने पहना हुआ था, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने से पहले उसे हटा दिया। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

0: जंग से जूझती दुनिया के हालात पर क्वेड में मंथन, सुपर शक्तियों के सामने भारत की दो टूक, हर हाल में आतंक का अंत जरूरी, चारों देशों का साझा बयान, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता जरूरी। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृहमंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। कर्नाटक के सीएम हो सकते हैं डीके शिवकुमार, सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धरमैया, दिल्ली में आलाकमान ने दोनों के साथ की थी बैठक। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सिलीगुड़ी साइबर थाने में केस, पिछले साल सनातन धर्म पर की थी अभद्र टिप्पणी। और ओएसएम पोर्टल हैक होने के दावे को सीबीएसई ने खारिज किया, कहा असली मूल्यांकन का कोर्ट का यूआरएल अलग है, छात्रों के अंक या अन्य डेटा पोर्टल पर नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

कर्नाटक में सिद्धरमैया छोड़ सकते हैं सीएम का पद, डी के शिव कुमार को मिल सकती है कमान। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरमैया को मीटिंग में सीएम पद छोड़ने को कहा गया है, राज्यसभा जाने की पेशकश। यूपी में बिजली कटौती सियासत पर योगी आदित्यनाथ का पलटवार, बोले पिछली सरकार में बिजली के तारों पर लटकती थी कपड़े। बिजली संकट को लेकर अखिलेश ने फिर से योगी सरकार को घेरा, बोले डबल इंजन से निकल रहा है धुआं। यूपी में एनकाउंटर को लेकर भी अखिलेश ने सरकार को घेरा, बोले पीडीए के लोगों को लग रहा है का हो रहा है फेक एनकाउंटर। घुसपैठियों को शुभेंदु अधिकारी का दो टूक, बोले देश के नहीं है ये दामा, जल्द छोड़े हिंदुस्तान। पश्चिम बंगाल के मालदा में राज्य का पहला होल्डिंग सेंटर शुरू हुआ, बांग्लादेश सीमा पर वापस जाने के लिए लगी कतारें। मुर्शिदाबाद के अवैध घुसपैठ के आरोप में तीन लोग हिरासत में लेकर लालगोला होल्डिंग सेंटर्स भेजे गए। बंगाल बीजेपी प्रदेश समेक भट्टाचार्य की चेतावनी, बीजेपी का झंडा दिखाकर वसूली करने वालों को भेजा जाएगा जेल। पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन जारी है, आसनसोल में टीएमसी और लेफ्ट के दफ्तर ढहाए गए। ठाड़े में सोसाइटी में कुर्बानी पर मचा है कोहराम, आखिरकार सुलझा सोसाइटी के बाहर किए गए कुर्बानी के बकरे। सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाए गए थे बकरे, हिंदुवादी संगठनों ने किया था विरोध। सोसाइटी के बाहर सुअर लेकर प्रदर्शन, प्रदर्शन के दौरान ब्लेडबाजी में तीन लोग घायल हो गए थे। मलियाबाद में किले और मकबरे को लेकर आसमान घमासान जारी है, हिंदू संगठन हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए पहुंचे, पुलिस ने हिंदू संगठनों को पूजा करने से रोका, दूर से हनुमान चालीसा पढ़कर रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह ने की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत, बीकानेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर से आगाज किया गया। शाह बोले बॉर्डर पर लगेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम, आतंकी हमलों पर लगाम लगेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में जिमखाना क्लब बेदखली मामले की सुनवाई, केंद्र ने रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भूमि आवश्यक बताई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को फिर से मिली पैरोल, 30 दिन के लिए पैरोल पर बाहर राम रहीम। एनआईए की जांच में लखनऊ में बड़े आतंकी हमले का खुलासा, यूपी विधानसभा सचिवालय बड़ा इमामबाड़ा और अमीनाबाद जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके टारगेट पर थे। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों ने फिर से बढ़ी उड़ान, 12 दिन में 6 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी की गई। राजधानी में सीएनजी उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, लगातार दूसरी बढ़ोतरी के बाद कीमत 83 रुपए 9 पैसे हुई। पंजाब नगर निकाय चुनाव को लेकर राजकोट में तनाव, कांग्रेस के उम्मीदवार को आम आदमी पार्टी समर्थकों ने पीटा। ईडी की जीरकपुर में बड़ी कार्रवाई, रॉयल स्टेट दफ्तर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी शिवराज की किताब का विमोचन, प्रधानमंत्री के साथ रिश्तों का किताब में जिक्र। त्रिशा के मौत के मामले में सीबीआई ने शुरू किया जांच, त्रिशा की ससुराल पहुंची जांच टीम। करीब आधे घंटे त्रिशा के ससुराल में सीबीआई की टीम ने पड़ताल की, क्राइम सीन का भी मुआयना किया, त्रिशा के मायके में भी सवाल जवाब। त्रिशा केस में एसआईटी टीम पर सवाल, केस डायरी पूरी न होने पर सीबीआई ने नाराजगी दिखाई। लखनऊ में शादी के 6 महीने के बाद महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, ससुराल में फांसी से लटका हुआ मिला शव। परिवार ने लगाया दहेज उत्पीड़न का मामला, जांच में जुटी हुई है पुलिस। पश्चिम एशिया युद्ध संकट के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग का बड़ा ऐलान, क्वाड के लिए अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता। क्वाड में समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन पर सहयोग बढ़ेगा, अवैध मछली पकड़ने पर कसा जाएगा शिकंजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, क्वाड बैठक बेहद उत्पादक, समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन पर भी बढ़ेगा सहयोग। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी बोले फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के लिए मजबूत सहयोग जरूरी। हरिद्वार में टाइगर का शिकार करने वालों पर एक्शन, दो लोगों को किया गया गिरफ्तार। गुजरात के नर्मदा में बीजेपी एमपी जशु राठवा का बंदूक लेकर जश्न मनाते हुए वीडियो वायरल हुआ है, निकाल चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की रैली में शामिल थे। वायनाड में महिला पर हाथी ने हमला, बोला था महिला की मौत हुई। इंदौर में डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, गाड़ी टकराने पर शुरू हो गया था विवाद। इंदौर में वेयरहाउस विवाद में किडनैपिंग हुई, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दो पक्षों में विवाद, जमकर लाठी डंडे चले। ग्वालियर में बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मारी थी, युवक की मौत हुई। मेरठ में गैंगस्टर को पकड़ने गई पुलिस से परिवार की झड़प हुई, जमकर हंगामा। मथुरा में शराब पीने से रोकने पर पति ने पत्नी की हत्या कर डाली, आरोपी फरार। ग्वालियर में पति पत्नी बने लुटेरे, पत्नी की शादी दूसरे शख्स से कराकर लूटपाट की गई। राजस्थान में नकली दवाओं का बड़ा खुलासा, 10 दिनों में 11 सैंपल फेल हुए। सरकारी अस्पतालों में दी जा रही ऑक्सीटोसिन दवा नकली निकली, कोटा मेडिकल कॉलेज में नकली इंजेक्शन से 4 महिलाओं की मौत।
जैक्सन लैब के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का सैंपल फेल हुआ, पूरा स्टॉक जब्त किया गया। देश भर की कंपनियों की दवाएं जांच में फेल हुई हैं। राजस्थान से लेकर कई राज्यों तक नकली दवाओं का नेटवर्क उजागर। अलीगढ़ में दो ट्रकों की भिड़ंत हुई, 3 लोगों की मौत हुई। रांची में पानी के संकट पर फूटा है लोगों का गुस्सा, बाल्टी लेकर महिलाओं ने किया सड़क जाम। महोबा में पानी के लिए लंबी कतार, टैंक के बाहर मच गई थी लूट। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में भीषण सड़क संकट, 150 गांव प्रभावित हुए। कलेक्ट्रेट पर युवाओं का प्रदर्शन, 15 दिनों में समाधान की मांग। इटावा में भीषण गर्मी से पारा हुआ 44 के पार, जिला आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने कसी है कमर। 45 डिग्री तापमान से पशुपालक परेशान, करनाल में भीषण गर्मी से दूध देने की क्षमता प्रभावित हुई। इंस्टाग्राम पर रीलबाज पुलिसकर्मियों पर एक्शन, बरेली में लापरवाही करने वाले 3 पुलिसकर्मियों पर लिया गया था एक्शन। मुजफ्फरनगर में नाम पूछकर मुस्लिम चाचा भतीजे को लोगों ने बेरहमी से पीटा, सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वीडियो वायरल हुआ, हंगामा। कटिहार में पंडित ने दूसरे पंडित से छीन ली थी जजमानी तो पी लिया फिनाइल, अस्पताल में पंडित ने कहा प्रशासन मेरी सुनता ही नहीं, डीएम ने संज्ञान लिया। दक्षिणी दिल्ली के लादूसराय इलाके में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी, जांच जारी। चंदौली में भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रक और मैजिक वाहन की टक्कर में 15 लोग घायल हुए, 4 की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कसौली के जंगलों में भीषण आग लगी, धधकती आग में करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा, दिल्ली से गोरखपुर जा रही बस पलट गई, 6 की मौत हुई, 19 घायल हुए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, लगातार 4th दिन जारी। गंभीर, मुलगान और दोरीमल के घने जंगलों में सेना ने इलाके को घेरा। बाराबंकी हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रेलर से बेकाबू इनोवा कार टकराई, 4 की मौत हुई, 3 घायल हुए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चौड़ा बस्ती फायरिंग और बम हमला मामले में गिरफ्तारी, आरोपी शमी अहमद को जांच के लिए मौके पर ले जाया गया। गोरखपुर में वाहन आगे पीछे करने को लेकर दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट कर डाली, फिर कार में आग लगा दी। बुलढाणा में पहले 4 मासूम बच्चों को कुएं में फेंका गया, फिर पिता ने आत्महत्या की। जौनपुर में 1 लाख इनामी बदमाश रवि यादव के परिजन बोले सरकार में यादव होना गुनाह है, बोले पुलिस ने जबरदस्ती कराया अंतिम संस्कार। संभल में रॉन्ग साइड से आ रही कार और मर्सिडीज की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हुई, पिता और बेटी की मौत हुई, 4 लोग घायल हुए। बदायूं पुलिस की सफलता, इस्लामपुर डकैती केस में संभल से 5 की गिरफ्तारी, 19 लाख रुपए के जेवरात भी बरामद किए गए, जांच में तेजी। चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच भी उमड़ा है आस्था का सैलाब, अब तक 22 लाख के पार पहुंचा श्रद्धालुओं का दर्शन करने का आंकड़ा। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे भक्त, आंकड़ा पहुंचा है 8.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक करीब 6 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में लगा भक्तों का मेला, अब तक करीब 4 लाख भक्तों ने लगाई हाजिरी। फिर दूल्हा दुल्हन बने रेणुका शाणे और आशुतोष राणा, 25वीं एनिवर्सरी पर एक

रितेश देशमुख की राजा शिवाजी ने रच दिया इतिहास, बनी पहली 100 करोड़ कमाने वाली मराठी फिल्म। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का पलटवार, ईरान ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुजतबा खामनेई का बड़ा बयान, खाड़ी देश अब अमेरिकी ठिकानों के लिए नहीं बनेंगे ढाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेलारूस के विपक्ष के नेता स्वेतलाना से मुलाकात की है, दोनों नेताओं के बीच जंग के ताजा हालात को लेकर चर्चा। रूसी हथियार कंपनियों से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मांग, ड्रोन हमलों से बचने के लिए भारी और अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत। पुतिन ने कहा फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए AK-47 काफी नहीं, यूक्रेन की तरफ से लगातार हो रहे ड्रोन हमलों में रूसी फैक्ट्रियों और रिफाइनरीज को भारी नुकसान हुआ है। रूस की चेतावनी के बाद यूक्रेन के ओडिशा में भीषण हमला, एक शख्स की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए। रूस के बाद उत्तर कोरिया का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में दागी बैलिस्टिक मिसाइल समेत कई और मिसाइलें। दक्षिण कोरिया की सेना का दावा, उत्तर कोरिया ने एक साथ कई हथियारों का परीक्षण किया। इजरायली सेना का पूर्वी लेबनान में भीषण हमला, हवाई हमले में 12 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में रहा पुराना ओवरपास पुल, मलबे में 3 लोग दबे, मौत हुई, 3 घायल हुए। एलजीएम में ट्रेन और स्कूल बस में भीषण टक्कर हुई, हादसे में 2 छात्र समेत 4 लोगों की मौत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिर बकरीद पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कुर्बानी क्यों दी जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे की एक हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के बकरों को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि समाज सड़क पर आ गया। विरोध में कोई सुअर ले आया तो कहीं हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। बात सिर्फ बकरों की नहीं है, बात उस सोच की है जो 2026 में भी हमें कानून के चश्मे से नहीं केवल धर्म के चश्मे से देखना सिखाती। आज आपको बताएंगे कि जब यूएई जैसे मुस्लिम देश जिस कुर्बानी को डिजिटल बना चुके हैं उस पर हमारे देश में बवाल क्यों काटा जा रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से चाहते क्या हैं। सीज फायर को आज 49 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 49 दिनों में ट्रंप ने इतनी बार अपनी विशलिस्ट बदली है कि सिर घूम जाए। कभी वो 11 बार डील होने का दावा करते हैं तो कभी 8 बार अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं, कभी कहते हैं युद्ध खत्म हो गया, कभी शर्तें थोपने लगते हैं। हद तो तब हो गई जब कल ही डील फाइनल होने की खबर आ रही थी और अचानक अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पर हमला कर दिया। अब इस बारूद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप की बातों पर भरोसा करें या इरादों पर। आखिर अमेरिका चाहता क्या है। और आखिर में 26 मई के दिन मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आपको बताएंगे कि इन 12 सालों में भारत कितना बदला। लेकिन आज सबसे पहले हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिर बकरीद पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कुर्बानी क्यों दी जा रही। आज महाराष्ट्र के ठाणे में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों पर काफी विवाद हुआ। हिंदू पक्ष का कहना यह था कि इन बकरों को हाउसिंग सोसाइटी में रखना नियमों के खिलाफ है और इनसे बीमारियां फैल सकती। मुस्लिम पक्ष का कहना यह था कि अगर वो रहते ही इस हाउसिंग सोसाइटी में है तो वो इन बकरों को कहां लेकर जाएं और अपना त्योहार कैसे मनाएं। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच काफी संघर्ष हुआ। स्थिति यह बन गई कि प्रशासन को इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी और क्योंकि विरोध के बाद भी मुस्लिम परिवारों ने हाउसिंग सोसाइटी के परिसर से बकरों को नहीं हटाया, इसीलिए हिंदू पक्ष के कुछ लोग वहां सुअर लेकर पहुंच गए, जिससे तनाव और भी बढ़ गया। देखिए,

0: पिछले कुछ सालों में त्योहारों को लेकर हिंदू और मुसलमानों का संघर्ष बढ़ने लगा है। अगर हिंदू पक्ष रामनवमी या हनुमान जयंती पर मस्जिद के पास से शोभा यात्रा निकालता है तो इस पर मुस्लिम पक्ष विवाद करता है। अगर मुसलमान बकरीद पर हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को रखना चाहते हैं तो इस पर हिंदू पक्ष आपत्ति जताता है। और इन घटनाओं से कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह धारणा बनती है कि हिंदुओं और मुसलमानों में एक दूसरे के लिए गुंजाइश खत्म होती जा रही है। और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कभी था ही नहीं और न ही आगे कभी हो सकता है। लेकिन आज ऐसे लोगों को हम साल 1857 की एक घटना के बारे में बताना चाहते हैं और मैं चाहती हूं कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और सुने। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना गया। विद्रोह का कारण यह था कि अंग्रेजों की राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल होती थी उनमें गाय और सुअर की चर्बी होने का दावा था। वजह तो कई सारी थी लेकिन यह लास्ट ट्रिगर बना था उस क्रांति का। उस वक्त इस घटना ने हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट किया। बाद में इसी एकजुटता को तोड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत बकरीद का इंतजार करने लगी। अंग्रेजों का मानना था कि जब बकरीद पर मुसलमान गोवंश की कुर्बानी देंगे तब इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी, हिंदू मुसलमानों के दंगे होने से उनका काम आसान हो जाएगा। वही डिवाइड एंड रूल वाली बात। उस दौर में ब्रिटिश अफसर कीथ यंग ने अपनी पत्नी को लिखे पत्रों में साफ लिखा था कि उन्हें उम्मीद है कि बकरीद पर हिंदू और मुसलमानों में बड़ा झगड़ा होगा और अंग्रेज बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। ये बात आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने समझ ली थी। उन्हें पता था अगर बकरीद की कुर्बानी पर सांप्रदायिक तनाव फैला तो इसका सीधा फायदा अंग्रेजों को होगा। इसी डर को देखते हुए बहादुर शाह जफर ने यह फरमान जारी किया कि बकरीद पर दिल्ली में गाय की कुर्बानी पूरी तरह बंद रहेगी। उन्होंने कई जगहों पर बकरों की कुर्बानी पर भी रोक लगाई और कोतवालों को यह आदेश दिया कि जहां गाय छिपाकर रखी जाए वहां कार्रवाई हो और उल्लंघन करने वालों को सख्त से सख्त सबक सिखाया जाए। ये कदम हिंदू मुसलमानों की एकता को बरकरार रखने के लिए उठाया गया था और इसका असर भी हुआ। उस साल बकरीद पर कुर्बानी को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई हिंसा नहीं हुई और इससे ये सीख भी मिली कि हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर देश के लिए रह सकते हैं। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो का सिद्धांत अपनाया और पश्चिम बंगाल को बांटकर इस खाई को गहरा करने की कोशिश की। और सोचिए आज हम 2026 में कुछ जगहों पर वही सब होते हुए देख रहे हैं जो एक जमाने में अंग्रेज चाहते थे। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसे हर कोई हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखना चाहता है लेकिन कोई भी इसे कानून के चश्मे से नहीं देखना चाहता। ठाणे की घटना में सारा विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ मुस्लिम परिवारों ने कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को हाउसिंग सोसाइटी के एक परिसर में बांध दिया और वहां एक टिन का शेड बना दिया। अब कानून कहता है कि ऐसा करने के लिए नगर पालिका और उस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों की अनुमति जरूरी होती है लेकिन इस मामले में आरोप है कि मुस्लिम पक्ष ने नगर पालिका से कोई इजाजत नहीं ली। इसके बाद जब हिंदू पक्ष ने विरोध किया तो यह मामला हिंदू और मुसलमानों का बन गया। मुसलमानों को यह लगा कि हिंदू उन्हें उनका त्योहार मनाने से रोक रहे हैं जबकि हिंदुओं को यह लगा कि आज अगर इन बकरों को हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में रखा गया तो कल यहां इनकी कुर्बानी भी दी जा सकती है जिससे इस विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। अब यहां होना यह चाहिए था कि नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी खुद सतर्क रहते और नियमों का पालन कराने के लिए कदम उठाते लेकिन क्योंकि प्रशासन ने अपना काम सही से नहीं किया इसीलिए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष खुद एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए और इसके बाद इस हाउसिंग सोसाइटी में काफी हंगामा हुआ और आरोप है कि कुछ लोगों ने एक हिंदू लड़के पर ब्लेड से हमला कर दिया जिससे तनाव बढ़ गया। आप तस्वीरें देखिए।
1: उसका पूरा मार दिया, इधर मार दिया अपने, ए हर्ष इधर आ, ए हर्ष इधर आ,
2: हर्ष हर्ष हर्ष
1: पूरा भाई का हाथ फाड़ दिया।
3: ये क्या ब्लेड हमने मारे,
1: ब्लेड मारे पूरा हाथ में, उसके हाथ में ब्लेड मारा, उसके ब्लेड।
4: पुलिस वाले बचा रहे उसको, ये ब्लेड मारे हम लोग को, ब्लेड मारा है कि मुसलमान ने, इधर हिंदू का रहे, हमें हिंदू है ना दादा, मारेगा क्या, ब्लेड मारेगा हम लोग को,
0: इस घटना के बाद हिंदू परिवारों ने इस हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करके मुस्लिम पक्ष का विरोध किया और ये कहा कि वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को रखने की इजाजत कभी नहीं देंगे, जबकि मुस्लिम परिवारों का कहना है कि जब वो रहते यहां हैं तो इन बकरों को कहां रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये विवाद पहली बार हो रहा है। 2023 में भी ठाणे जिले के इसी मीरा रोड इलाके में एक व्यक्ति जब दो बकरों को बकरीद के लिए अपनी हाउसिंग सोसाइटी में लेकर आया था तब भी इस पर काफी विवाद हुआ था और उस वक्त कुछ लोग इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहुंच गए थे, जहां कोर्ट ने अपने 2019 के फैसले को फिर से दोहराया था। हाईकोर्ट का कहना यह था कि जानवरों की कुर्बानी उन्हीं निर्धारित स्थानों पर हो सकती है जिन्हें नगर पालिका या नगर निगम ने चिन्हित किया है। अब कानूनी तौर पर यह मामला आईने की तरह साफ दिखता है, जिसमें कोई विवाद होना नहीं चाहिए। अदालत कहती है हाउसिंग सोसाइटी में जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह एक छोटा सा लूप होल भी है जो इस पूरे विवाद की नींव बनता है, उसकी जड़ बनता है। अदालत ये तो कहती है कि हाउसिंग सोसाइटी या रिहायशी इलाकों में जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, लेकिन अदालत ये नहीं कहती कि इन जानवरों को कुर्बानी से पहले वहां रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। और इसी बात को आधार बनाकर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी में केवल बकरीद तक इन बकरों को रखना चाहते हैं, लेकिन वो इनकी कुर्बानी निर्धारित स्थानों पर ही देंगे, जबकि हिंदू पक्ष इसका विरोध करता है। अगर आप इस मामले को देखेंगे तो यहां भी विवाद यही था कि हिंदू पक्ष को लगता है कि ये बकरे हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी देने के लिए लाए गए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष साफ कह रहा है कि वो इन बकरों को कुर्बानी के लिए नहीं बल्कि बकरीद तक अपने घर पर रखने के लिए लेकर आए हैं, जो एक परंपरा है। अब इतिहास को देखें तो ये बात गलत भी नहीं निकलती। मध्य युग से लेकर अब तक हमारे देश में बकरीद के त्योहार पर घरों में ही बकरों की कुर्बानी देने की परंपरा रही है और यही वजह है कि भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि भारत में बकरीद पर कितने जानवरों की कुर्बानी कहां और कैसे दी जाती। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में शहरों में हाउसिंग सोसाइटीज में रहने का कल्चर बढ़ गया है, इसीलिए अब इस पर विवाद होने लगा है। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी एक समूह में रहने वाले लोगों के लिए उनकी संयुक्त छत होती है, जिसके नीचे वो अपने परिवारों के साथ रहते हैं और ये परिवार अलग अलग धर्म, अलग जाति, अलग पंथ के हो सकते हैं। इसीलिए हाउसिंग सोसाइटीज में रहने के लिए कुछ विशेष नियम और कानून होते हैं जो सरकारें नहीं बल्कि इन्हीं सोसाइटीज में रहने वाले लोग या बिल्डर द्वारा तय किए जाते हैं। इनमें जो प्रमुख नियम होता है वो है एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ रहना। लेकिन कई बार अलग अलग धर्मों और जाति के लोगों के बीच विवाद होता है, इसीलिए ऐसे मामलों में सरकारों और अदालतों को दखल देना पड़ता है। जैसे इस बार बहुत सारे राज्यों ने बकरीद पर कुर्बानी को लेकर कई तरह की गाइडलाइंस जारी की, हालांकि इन गाइडलाइंस के बाद भी ये विवाद होते हैं और इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे देश में लोग कानून से ऊपर धर्म को समझने लगते हैं। ये बात सही है कि पहले जब शहरों में हाउसिंग सोसाइटी का कल्चर नहीं था तब लोग कुर्बानी के लिए जानवरों को अपने घर पर लाते थे, लेकिन आज जब किसी हाउसिंग सोसाइटी में एक छत के नीचे अलग अलग धर्म के हजारों लोग रह रहे हैं तो क्या वहां कुर्बानी के लिए जानवरों को रखना किसी भी रूप में सही हो सकता है? और क्या आपको नहीं लगता कि वक्त के हिसाब से और कानून के अनुसार इस परंपरा को बदला जाना चाहिए? हम जानते हैं कि यहां कुछ लोग कहेंगे कि परंपरा बदलने से उनके धर्म की अवमानना होगी, लेकिन इन लोगों को आज हम मुस्लिम देशों का उदाहरण देना चाहते हैं। यूएई एक मुस्लिम देश है जहां दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में भारत के बहुत सारे मुसलमान नौकरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन आपको पता है यूएई में अब बकरीद की कुर्बानी को कई जगह पर डिजिटल बना दिया गया है। वहां नून और करीम जैसे कंपनियों ने बकरीद के लिए ऑनलाइन कुर्बानी सेवा की शुरुआत की है, जिसमें लोग बकरीद के लिए मोबाइल ऐप पर जाकर अपनी पसंद के जानवर को चुनते हैं, ऑनलाइन उसके लिए भुगतान करते हैं और इसके बाद कुर्बानी उन्हें लाइव वीडियो कॉल पर दिखाई जाती है, जिसमें जानवरों का मीट बाद में उनके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। अब ये होता इसीलिए है क्योंकि यूएई में खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर या हाउसिंग सोसाइटीज में जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध है और क्योंकि वहां लोग अपने घरों में या हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में जानवरों की कुर्बानी नहीं दे सकते, इसीलिए वो ऑनलाइन बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं। अब सोचिए, अगर यूएई एक मुस्लिम देश होकर ऐसा कर सकता है तो फिर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होकर ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे देश में कानून होते हुए भी लोग हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों को रखना चाहते हैं और कुछ मामलों में उनकी कुर्बानी भी वहीं देना चाहते हैं? यह स्थिति भी तब है जब दुनिया के ज्यादातर देशों में ऐसा नहीं होता, लेकिन जब बात हमारे देश की आती है तो आपको फुटपाथ पर, सड़कों पर, रिहायशी इलाकों में और यहां तक कि हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में कुर्बानी के लिए खरीदे गए जानवर नजर आएंगे, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। हालांकि हमारे देश में कानून की स्थिति जैसी है उसे आप इन आंकड़ों से भी समझ लीजिए। एनसीआरबी के अनुसार 2024 में हमारे देश में प्रदूषित हवा और गंदे पानी को लेकर केवल 18 पुलिस मामले दर्ज हुए। इनमें भी जिस दिल्ली को पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित माना जाता है, वहां इसके खिलाफ एक भी पुलिस मामला दर्ज नहीं हुआ। 7 राज्यों में इक्का दुक्का मामले दर्ज हुए। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कानून की नजर में भारत में वायु प्रदूषण जैसी कोई समस्या ही नहीं। अगर होती तो दर्ज हुए आंकड़ों में आपको नजर आती। और सोचिए, आज से कुछ साल बाद कोई आंकड़ों से प्रदूषण को समझने की कोशिश करेगा तो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि 2024 में शायद दिल्ली में वायु प्रदूषण और गंदे पानी की कोई समस्या ही नहीं थी, क्योंकि होती तो ऐसे मामलों को आंकड़ों में दर्ज किया जाता और यही हमारे देश में कानून का राज। रोमन इतिहासकार टैकिटस ने के हवाले से एक कथन लिखा जाता है, जिस समाज में भ्रष्टाचार ज्यादा होता है वहां कानून भी बहुत ज्यादा होते हैं। और शायद हमारे देश की भी यही स्थिति है। हमारे देश में इसीलिए इतने कानून हैं क्योंकि इन कानूनों का कोई ईमानदारी से पालन नहीं करना चाहता और इसी वजह से हाउसिंग सोसाइटी में बकरे लाने पर विवाद होता है और इसी वजह से प्रदूषित हवा में जरा सुधार नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से क्या चाहते हैं। ये सवाल शायद अब ईरान भी पूछना चाहता होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी विश लिस्ट को इतनी बार बदला है कि अब समझ ही नहीं आ रहा ये युद्ध आखिर रुकेगा कैसे। आज सीज फायर को लागू हुए 49 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 49 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 11 बार यह दावा कर चुके हैं कि ईरान और अमेरिका की डील होने वाली है। 8 बार यह कह चुके हैं कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो उसका अंजाम बुरा होगा। 5 बार यह कह चुके हैं कि ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी ही होंगी। 3 बार कह चुके हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए सहमत हो गया है और 3 बार ही यह कहा है कि युद्ध अब लगभग समाप्त हो चुका है। अब इन अलग अलग बातों में भी सबसे अजीब बात यह है कि जब 24 घंटे पहले से यह कहा जा रहा था कि अमेरिका और ईरान की डील फाइनल हो चुकी है और कभी भी इसका ऐलान हो सकता है, तब अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पर हमला कर दिया और इस हमले के बाद यह सवाल फिर पूछा जाने लगा कि अमेरिका आखिर ईरान से चाहता क्या है। कल रात अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मिसाइल लॉन्च पैड्स और मिलिट्री बोट्स को निशाना बनाया। 3 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के अनुसार यह हमला किसी उकसावे में नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस में किया गया। इसके लिए ईरान में अमेरिकी नौसेना के लिए खतरा बन रहे मिसाइल लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया और समुद्र में माइंस बिछाने की कोशिश कर रही ईरानी नावों पर भी हमला किया गया। अमेरिकी सेना का यह भी कहना है कि वो युद्ध विराम का सम्मान करती है लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकती। दूसरी तरफ इस हमले से भड़के ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान ने साफ कहा है कि उसने अमेरिका और इसराइल के तमाम ठिकानों की पहचान कर ली है और अगर दोबारा ऐसी हिमाकत हुई तो वो जवाबी हमला करेगा, जिसकी अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए,

0: The streets have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does
1: it. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब भी ये कह रहे हैं कि उनकी ईरान से शांति समझौते को लेकर शानदार बातचीत चल रही है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता बेहद करीब है, जिसके तहत ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका लाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में ईरान या किसी तीसरे देश में नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि यहां भी इस दावे को लेकर स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। भारत आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान को कूटनीति का पूरा मौका दे रहा है, लेकिन वो किसी जल्दबाजी में नहीं है। या तो ईरान के साथ एक अच्छा और ठोस समझौता होगा, वरना अमेरिका के पास ईरान से निपटने के दूसरे रास्ते भी खुले हैं। अब इस धमकी से ईरान भी आग बबूला हो गया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच अभी अंतिम समझौता होना संभव नहीं है, और ये बात अमेरिका को बहुत चुभ रही है। इतनी चुभ रही है कि अब से कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक नए बयान में यह धमकी दी है कि जब तक फाइनल डील साइन नहीं होती, तब तक ईरानी जहाजों पर अमेरिकी नौसेना का ब्लॉकेड जारी रहेगा। हालांकि अमेरिका यहां शायद एक गलती कर रहा है। अमेरिका ने अब तक न जाने कितनी बार दबाव और धमकियों से ईरान को झुकाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया, और इस बार भी वो अमेरिका की धमकियों से डर जाएगा ऐसा लगता नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार ट्रंप की आर्ट ऑफ द डील पर इस बार ईरान भारी पड़ता दिख रहा है, और ईरान तब तक समझौते के लिए तैयार नहीं होगा जब तक कि उसे उसमें अपनी जीत नजर ना आए। अब ये देखिए अमेरिका को कैसा समझौता चाहिए और ईरान को कैसा समझौता चाहिए। ट्रंप एक ऐसा समझौता चाहते हैं जो दुनिया में अमेरिका की हेजेमनी यानी उसके वर्चस्व को बरकरार रखे। इस समझौते को देखकर दुनिया को यह लगे कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप झुकने वालों में से नहीं बल्कि झुकाने वालों में से हैं, और अमेरिका अब भी सबसे बड़ा सुपर पावर है। ट्रंप ऐसा समझौता चाहते हैं जिससे वो मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगी देशों का भरोसा जीत पाए, उन्हें यह कह पाए कि अमेरिका ने उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा। इसमें भी वो सऊदी अरब को यह दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका ने ईरान को मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने से रोका, और ऐसा इस डील से मुमकिन करके ट्रंप ने दिखाया। अब ट्रंप ऐसा समझौता चाहते हैं जिससे अमेरिका में उनकी गिरी हुई साख को सहारा मिल जाए। इसके लिए वो ये चाहेंगे कि ईरान का यूरेनियम किसी भी तरह नष्ट हो जाए, जिससे वो अमेरिका के लोगों को कह सके कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन ईरान इस समझौते से कुछ और चाहता है। ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है ऐसा समझौता जिसमें उसकी जीत नजर आए, दुनिया यह कहे कि ईरान ने अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने भी हार नहीं मानी, और ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाए। ईरान ऐसा समझौता चाहता है जिसमें उसे अपने यूरेनियम अमेरिका को न सौंपना पड़े, और वो अपनी जनता को यह दिखा पाए कि ईरान दबाव और धमकियों से झुकता नहीं है। ईरान ऐसा समझौता चाहता है जिसमें उसका आर्थिक फायदा हो। अमेरिका ने ईरान की जो $100 बिलियन की संपत्तियां और फंड फ्रीज किए हुए हैं उन्हें रिलीज किया जाए, और ईरान ऐसा समझौता भी चाहता है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर उसके अधिकार को मान्यता दी जाए और वो युद्ध का भी अमेरिका से मुआवजा वसूल सके। और क्योंकि यहां अमेरिका और ईरान दोनों के उद्देश्य समझौते से अलग अलग हैं, इसीलिए यह समझौता पिछले 49 दिनों से लटका हुआ है। इस बीच अमेरिका के हमलों ने दुनिया की टेंशन और बढ़ा दी है। जब शांति वार्ता की सुगबुगाहट थी तो कच्चे तेल की कीमतों में 7% की भारी गिरावट देखी गई, लेकिन जब अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की तो वापस कच्चे तेल की कीमतों में 2% का उछाल आ गया, और ब्रेंट क्रूड में यह $99 प्रति बैरल पहुंच गया। इस अस्थिरता के बीच इन तस्वीरों की बात करना भी जरूरी है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फेवरेट जनरल और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त बीजिंग के दौरे पर हैं। ये दोनों वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को गले लगा रहे हैं। शी जिनपिंग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ चीन का रिश्ता अटूट है। मैं अगर शब्दशः आपको राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान पढ़कर बताऊं तो उन्होंने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां चाहे जैसी बदलें, चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देगा। अब यह बयान बहुत लोगों को सामान्य लग सकता है, लेकिन भारत के लिहाज से इसके मायने गहरे हैं। इससे यह समझ आता है कि अब भारत के लिए टू फ्रंट की थ्योरी पुरानी हो चुकी है। यानी अब तक जो कहा जाता था ना कि भारत के सामने पाकिस्तान और चीन दो मोर्चों पर चुनौती है, वो बात पुरानी हो चुकी। अब नई स्थिति यह है कि भारत का सामना एक ही फ्रंट पर है और ये फ्रंट पाकिस्तान की सीमा से लेकर चीन की सीमा तक खुला हुआ है, और अब चीन और पाकिस्तान में भारत के लिए कोई फर्क नहीं। आप इन तस्वीरों को देखिए, इसके बाद हम आपको चीन और पाकिस्तान की इस भारत विरोधी मित्रता के बारे में बताएंगे।

0: 信任，相互支持。
1: पिछले 75 वर्षों से जब से चीन और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं, दोनों देशों ने आपसी समझ, भरोसे और सहयोग को बढ़ाया है और एक मजबूत पारंपरिक दोस्ती निभाई है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक भरोसे और सहयोग ने दोनों की तरक्की में अहम योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हालात जैसे भी हों, चीन ने हमेशा पड़ोसी नीति में चीन पाकिस्तान संबंधों को प्राथमिकता दी है।
2: And this unique relationship is next to none. Your Excellency, last year I witnessed Chinese military prowess at the parade. I was invited there, and that showed the world that under your dynamic leadership, China is not only a world-class economic power, it is also a military power meant for progress and peace in the world.
3: इस मुलाकात में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड बताया, जिसका मतलब होता है हर परिस्थिति का साझेदार और मित्र, जबकि शहबाज शरीफ ने चीन को आयरन ब्रदर बताया, जिसका मतलब होता है लोहे जैसा मजबूत भाई। अब चीन और पाकिस्तान की ये मित्रता यूं ही नहीं उमड़ रही, बल्कि चीन यहां ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के करीब होते हुए भी उसके साथ ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान ये दिखा रहा है कि अमेरिका के साथ उसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप, जबकि चीन के साथ उसकी ज्यादा मित्रता है। हालांकि इस मित्रता में अपने अपने फायदों की मात्रा भी बहुत अधिक है। चीन पाकिस्तान को इसीलिए अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि वो दक्षिण एशिया में भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को अहम मानता है, खासकर सीमा विवाद, इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड और अमेरिका भारत नजदीकी के कारण चीन की चिंता उसे पाकिस्तान के करीब लाती। दूसरा, चीन ये भी जानता है कि मलक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता को घटाएं और पाकिस्तान के जरिए अरब सागर तक अपनी सीधी पहुंच बनाए। इसके लिए उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है और अब वो पाकिस्तान में इसका दूसरा भाग लॉन्च करना चाहता है। तीसरा, चीन ये भी चाहता है कि पाकिस्तान अपने देश में उसकी कंपनियों और नागरिकों को खास सुरक्षा दे, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान से कुछ मांगा जाए तो वो ना नहीं करता, और इसीलिए ना नहीं करता क्योंकि उसकी भीख मांगने की आदत है। वो कोई भी चीज इसीलिए मानता है ताकि उसे आधार बनाकर सामने वाले देश से लोन या आर्थिक मदद मांग सके। जैसे यहां भी चीन ने कहा कि वो बलूचिस्तान में उसकी कंपनियों को सुरक्षा दे, तो पाकिस्तान ने सीपैक और चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक विशेष फोर्स बना दी है, जिसका नाम रखा गया है स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन। अब इस दौरे पर दो और चीजें हुई जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई। इनमें पहली घटना ये थी कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सीधे बीजिंग न जाकर इस बार चीन के झीजियांग प्रांत पहले गए। ये चीन का कोई मामूली प्रांत नहीं है। इस प्रांत को चीन के सबसे अमीर और औद्योगिक रूप से विकसित प्रांतों में गिना जाता है, जिसकी जीडीपी 1.3 ट्रिलियन डॉलर की है। आसान भाषा में समझें तो अगर चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है तो झीजियांग उस फैक्ट्री के सबसे शक्तिशाली इंजन्स में से एक है। और इसीलिए सोचिए, अगर पाकिस्तान बीजिंग से पहले इस प्रांत में गया है तो वो चीन से क्या मांग रहा होगा। दुनिया चीन से बिजनेस और उद्योग मांग रही है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे कोई और कहानी भी हो सकती है। इस खबर की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि अब टू फ्रंट की थ्योरी पुरानी हो चुकी है और चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक ही फ्रंट बन चुके हैं। ऐसा हमने इसलिए कहा था क्योंकि कल जब शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही थी, तभी पहलगाम हमले में पाकिस्तान और चीन का एक नया कनेक्शन सामने आया। एनआईए के अनुसार पहलगाम हमले के बाद उसने जिन आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था, उन आतंकियों के पास से एक गोप्रो कैमरा बरामद हुआ था। अब गोप्रो एक अमेरिकी कंपनी है, जिससे एनआईए ने यह पूछा कि आतंकियों के पास मिले इस कैमरे को उसने किस देश को बेचा था। और जब जांच हुई तो गोप्रो कंपनी ने बताया कि यह कैमरा चीन के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा था और यह डिस्ट्रीब्यूटर भी उसी झीजियांग प्रांत से जुड़ा हुआ हो सकता है, जहां 24 मई को शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर बीजिंग जाने से पहले रुके थे। अब एनआईए ये पता लगा रही है कि ये गोप्रो कैमरा चीन में किसने खरीदा, वहां से वो पाकिस्तान कैसे पहुंचा, और क्या इसके पीछे किसी मिलिट्री लिंक्ड नेटवर्क का भी हाथ हो सकता है। इस कहानी से आप इतना समझ गए होंगे कि पाकिस्तान और चीन की ये मित्रता अटूट क्यों है और क्यों भारत के लिए ये दोनों देश अब एक ही फ्रंट माने जाएंगे। वैसे चीन की एक परेशानी ये भी है कि आज दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें तीन बड़े नतीजे निकले। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच ये सहमति बनी है कि चारों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्र की निगरानी करेंगे। पोर्ट से जुड़ी सुविधाओं पर एक एक्सपर्ट टीम बनाने पर विचार होगा और फिजी में एक नया पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू होगा और अंडर सी केबल्स पर भी चारों देश मिलकर काम करेंगे। इन्हीं चारों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स यानी जरूरी खनिजों पर भी अपना फ्रेमवर्क तय कर लिया है जिसमें भारत और अमेरिका के बीच इस पर अलग से समझौता भी हुआ है। और तीसरा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्वाड ने नई पहल शुरू की है जिसमें इसमें तकनीक, प्रबंधन, नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विश्लेषण और इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्सरसाइज जैसी चीजें शामिल हैं। अब सोचिए, ये देश अगर इंडो पैसिफिक में इतनी टाइट फील्डिंग करेंगे तो चीन कैसे यहां आउट नहीं होगा।

0: 26 मई के दिन मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आपको बताएंगे कि इन 12 सालों में भारत कितना बदला। 12 साल पहले आज ही के दिन 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद यह तारीख भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे खास तारीख बन गई।
1: श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
2: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
0: आज से 12 साल पहले जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तब उस वक्त का दौर शायद बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा। उस वक्त देश में यूपीए सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा था कि कांग्रेस पार्टी केवल 44 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि बीजेपी जनता पार्टी के बाद पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी बनी थी जिसने अपने दम पर लोकसभा में प्रचंड बहुमत हासिल किया था और 282 सीटें जीती थी। इस अविश्वसनीय जीत का चेहरा नरेंद्र मोदी थे जो गुजरात में भी एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाकर आए थे और 2001 से लगातार वहां के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो वो दिल्ली में ऐसे जमे कि आज उनके 12 साल पूरे हो चुके हैं। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार के इन 12 सालों में भारत कितना बदला और कितना आगे बढ़ पाया। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 10वें स्थान पर थी। फ्रांस, इटली, ब्राजील, रूस और कनाडा की अर्थव्यवस्था का आकार हमसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज इसी सूची में 6ठे स्थान पर हम हैं। ये स्थान भी इसी महीने 2 अंक नीचे आया है क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। 2003-04 में एनडीए की सरकार के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय 23,203 रुपए थी। इसके बाद यूपीए के 10 साल के शासन में यही आय 79,118 पर पहुंची, लेकिन मोदी सरकार के 12 सालों में ये आय बढ़कर 2,19,000 रुपए हो गई और इसमें 178% की वृद्धि हुई। हालांकि यहां ये बहस भी होती है कि किस सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा बढ़ी। तो आंकड़े बताते हैं कि यूपीए की सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था 709 बिलियन डॉलर से 2.04 ट्रिलियन डॉलर की हुई थी, जिसमें 187.7% की वृद्धि हुई थी, लेकिन मोदी सरकार में ये अर्थव्यवस्था डबल होकर 4.15 ट्रिलियन डॉलर की हुई और इसमें 103% की वृद्धि हुई। यानी यहां वृद्धि यूपीए सरकार से कम है, लेकिन मोदी सरकार में कोविड जैसा संकट आया और अब ईरान युद्ध से ऐसा प्रभाव हुआ जो पहले की सरकारों में नहीं रहा था। 2014 से पहले भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का 13.9% योगदान था, इंडस्ट्री का 26.1% योगदान और सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा 59.9% योगदान। लेकिन मोदी सरकार ने इसे बदलने की कोशिश की है। अब इंडस्ट्री का योगदान 26% से बढ़कर 30.6% हुआ है, कृषि का योगदान 14.4% पर आया है। यहां आपको भारत के निर्यात के भी आंकड़े देखने चाहिए। 2014 से पहले भारत की छवि एक बाजार के रूप में होती थी जो दुनिया के लिए खरीदार है लेकिन दुनिया को कुछ बेच नहीं सकता। 2013-14 में भारत का कुल निर्यात 466 बिलियन डॉलर का था, लेकिन आज यही निर्यात 860 बिलियन डॉलर का हो गया है। इनमें भी हमारा रक्षा निर्यात अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा। पहले हम दुनिया से हथियार खरीदते थे, अब हम खुद के लिए भी बना रहे हैं और हमारा रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए हो गया है जो यूपीए सरकार से 5,501% ज्यादा है। यहां विपक्षी पार्टियां ये भी आरोप लगाती हैं कि मोदी सरकार में कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी पर खर्च कम हुआ है, लेकिन ये भी दावा गलत है। 2013-14 में यूपीए सरकार का सब्सिडी पर सालाना खर्च 2 लाख 54,000 करोड़ रुपए था। आज मोदी सरकार में सब्सिडी पर सालाना खर्च 4,54,000 करोड़ रुपए है और ये उस वक्त से 2,00,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। ये बात सही है कि रुपए के मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, रोजगार के मोर्चे पर और महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। यह भी सच है कि मोदी सरकार में जनधन खातों से लेकर शौचालयों के निर्माण, डिजिटल लेनदेन और स्टार्टअप कल्चर की पूरी तस्वीर भी बदली है। 2014 से पहले हमारे देश में केवल 350 स्टार्टअप थे, जबकि सिर्फ 4 कंपनियां यूनिकॉर्न थी जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती। लेकिन मोदी सरकार में यही स्टार्टअप 350 से बढ़कर अब 2,00,000 से ज्यादा हो गए और यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या भी 4 से 120 हो गई। यहां आप इस नक्शे को भी देखिए, 2014 से पहले भारत के केवल 6 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें थी, लेकिन आज भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। और इसी दौरान मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग 70% है। मोदी सरकार में भारत की विदेश नीति भी बदली है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का कई देशों के नेताओं के साथ सहज और भरोसे का रिश्ता दिखता है। जैसे हाल ही में इटली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी को मेलेडी ट्रॉफी गिफ्ट की। अब ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। इटली दुनिया का वो देश है जिसने महंगे और लग्जरी ब्रांड्स दुनिया को दिए हैं, जैसे फरारी, लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा, अरमानी, गुची, फेंडी, सब इटली के हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 1 रुपए की मेड इन इंडिया मेलेडी ट्रॉफी गिफ्ट की, जो उनकी डिफरेंट स्टाइल विदेश नीति के बारे में बताती है। अब 4 मई को जब ममता बनर्जी की सरकार गिर गई तो पश्चिम बंगाल में रह रहे रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को लग गया था कि अब उनका दाना पानी बंद होने वाला है। 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब और क्लियर हो गया कि अब तो पश्चिम बंगाल से अवैध घुसपैठियों की रवानगी तय है। पिछले 24 घंटे में देश के गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों के लिए जिस तरह के बयान दिए हैं उसका असर बांग्लादेश की सीमा पर दिखने लगा है। गृहमंत्री अमित शाह ने सीधे सपाट शब्दों में कहा कि घुसपैठ से देश में अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और यह भारत के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने बताया कि इस चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, जिसमें रिटायर्ड जज, पूर्व आईएएस आईपीएस अधिकारी और गृह मंत्रालय से जुड़े कुछ अधिकारी शामिल होंगे। मतलब यह है कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध घुसपैठियों को कह दिया है कि या तो खुद चले जाओ वरना डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट फॉर्मूले पर भगाया जाएगा।
3: सीए रावताई जरा नहीं तारा होलिन कंप्लीटली।
4: जो लोग सीए के दायरे में नहीं आते वो अवैध घुसपैठिए हैं, उन्हें राज्य पुलिस द्वारा सीधे गिरफ्तार किया जाएगा।
3: गिरफ्तार करबे,
4: हिरासत में लेकर बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। बीएसएफ बीडीआर से बात करके उनको डिपोर्ट करने की व्यवस्था करेगी।
3: बीडीआर संगे कथा बोले तादर के डिपोर्ट करार व्यवस्था करबे।
4: डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने के लिए डीजीपी और गृह सचिव को बोल दिया गया है।
3: आईन आज थेके कार्यकर हलो, माननीय डीजीपी के एवं होम सेक्रेटरी के बोले दा हलो।
0: सच ये है कि अवैध घुसपैठ केवल एक राज्य की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। लेकिन इस समस्या की संवेदनशील नब्ज भारत से लगती बांग्लादेश की सीमा है। भारत और बांग्लादेश में करीब 4,096 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से आगे जुड़ती है। इसमें भी अकेले पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की 2,216 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। जब बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की बात होती है तो पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबी सीमा इसी राज्य की है। साल 2004 में यूपीए सरकार के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने राज्यसभा में बताया था कि 31 दिसंबर 2001 तक देश में 1,20,00,000 अवैध बांग्लादेशी थे और इसमें भी करीब 57,00,000 पश्चिम बंगाल में, 50,00,000 असम में रह रहे थे। हालांकि तब इन आंकड़ों को लेकर विवाद हो गया था और बाद में इसे सुनी सुनाई बातों पर दिए गए आंकड़े कहा गया। लेकिन इसके बाद 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि देश में 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए हैं और चिंताजनक बात यह है कि देश में ज्यादातर घुसपैठ बांग्लादेश के रास्ते हो रही है और इसमें भी पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे आगे है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने 2017 से 2021 के बीच गिरफ्तार किए घुसपैठियों पर एक रिपोर्ट दी। इसके मुताबिक भारत में घुसपैठ करने वाले 84% घुसपैठिए पश्चिम बंगाल की सीमा से गिरफ्तार किए गए थे। जिन जिलों में सबसे ज्यादा घुसपैठिए पकड़े गए उनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना का नाम सबसे ऊपर था और ये तीनों जिले पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले हैं। अब आप खुद सोचिए कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार अवैध घुसपैठ को लेकर सख्ती क्यों दिखा रही है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों को खोजने और इन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी। इस कदम के बाद से पश्चिम बंगाल में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों में भगदड़ सी मची हुई है। बांग्लादेश से लगती सीमा पर इस वक्त कई अवैध घुसपैठिए बेचैन नजर आ रहे हैं।
5: संदेश साफ है, या तो खुद चले जाओ नहीं तो सरकार पकड़ेगी और फिर अपने तरीके से भेजेगी। यानी दोनों ही स्थितियों में अवैध घुसपैठियों को भारत में न एक इंच जमीन मिलेगी और न ही एक भी पैसा कमाने का मौका। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं इनमें वो लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से चोरी छिपे या यूं कहें कि ममता सरकार की अनदेखी की वजह से अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में बसे हुए थे। इन बांग्लादेशियों ने शुभेंदु अधिकारी के उस बयान को बहुत गंभीरता से लिया है जिसमें कहा गया है कि अवैध रूप से रहने वालों को सरकार डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेगी। इस बयान के बाद से नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर अवैध बांग्लादेशियों की भीड़ जुटने लगी है। ये सारे अपने देश लौटना चाहते हैं। उन्हें महसूस होने लगा है कि अब उनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। इनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो 4-5 सालों से पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में रह रहे थे।
6: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद सरकार ने नई नीति अपनाई है 3D यानी डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट। और ये बात सामने आने के बाद एक खलबली सी मची हुई थी। ये बताइए कि आप कब आए थे भारत?
7: 3 मार्च।
6: 3 मार्च
7: है।
6: अच्छा, कहाँ से आए थे? अकेले आए थे? ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से। और ये देख सकते कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपनी जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 जून 2024।
8: 5 बस हो रहा है दमदम राजनीतिक सरकार खुलना जिला बेनापोल
9: ये दमदम कैटर में छिल बस पर प्रशासन राखबे ना कि करो बोलो
10: राजमिस्त्री का एनआरसी चालू है हमारे तो कोई सबूत नहीं
5: सोचिए ये देश की सुरक्षा से कितना बड़ा खिलवाड़ है कि अवैध रूप से कोई घुसपैठिया हमारे देश में वर्षों से मौजूद था और उसको भगाने के कोई प्रयास नहीं किए गए। बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ करने वाले व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा व्यक्ति देश में दंगे करवा सकता है, भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर हमले करवा सकता है। बावजूद इसके इस मुद्दे पर ममता राज में कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन सरकार बदली तो घुसपैठियों को लेकर जज्बात बदल गए, हालात बदल गए।
11: ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा।
5: तय ये हुआ कि जो बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में मौजूद थे उनकी पहचान करने और कागजी कार्रवाई के बाद सीमा पार भेजा जाएगा और इसके लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को भी जानकारी दे दी गई है और वो अपने स्तर पर भी हर बांग्लादेशी की पहचान कर रहे हैं।
7: अनुप्रवेशकारियों के लिए भारत में अब कोई जगह नहीं बचेगा। बंगाल एक सेफ पैसेज था, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश से मुख्यमंत्री ने ड्रास्टिक एक्शन लिया, उसे बंद कर दिया।
5: पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरे राज्य में अवैध घुसपैठियों की पहचान की मुहिम छेड़ दी है और जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको खास तरह के होल्डिंग सेंटर्स में रखा जा रहा है। घुसपैठ से प्रभावित जिलों में सबसे तेज एक्शन लिए गए हैं। जिन जिलों में सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है उनमें एक मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद प्रशासन ने अवैध घुसपैठ पर एक्शन लेते हुए 3 बांग्लादेशियों को पकड़ा और उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा है। प्रशासन ने एक 3 मंजिला इमारत को होल्डिंग सेंटर की तरह बना लिया है। इस जगह पर गिरफ्तार किए गए सभी अवैध बांग्लादेशियों को वेरिफिकेशन तक रखा जाएगा और उसके बाद बीएसएफ की मदद से डिपोर्ट किया जाएगा। मालदा भी बंगाल के उन सीमावर्ती जिलों में से एक है जहां घुसपैठ बड़ी समस्या है, इसीलिए मालदा में भी एक होल्डिंग सेंटर बनाया गया है जहां फिलहाल 9 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा गया है। इस होल्डिंग सेंटर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं ताकि यहां पर रखे गए अवैध घुसपैठिए भाग न जाएं।
12: अगर कोई घुसने का कोशिश करेगा तो वहां पर बीएसएफ को तो रोक देना चाहिए, उसको अंदर ले आकर डिटेंशन कम का क्या जरूरत है। अगर कोई एक भी इलीगल घुसपैठियो है घुसा कैसे, तो बीएसएफ था वहां पर। बीएसएफ किसका था? बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट का था, होम मिनिस्ट्री का था, तो घुसा कैसे?
13: मेरा ख्याल से इनको विरोध करने का कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी में ऐलान किया जो बेआईनी घुसपैठी है, जो इनलीगल सिस्टम में कोई देश से भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कई त्रिपुरा बॉर्डर हो, कई जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।

डॉक्टर्स। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, खासतौर से घुसपैठ को लेकर। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ पहुंची थी, वैसी ही भीड़ बांग्लादेश की सीमा से सटे बॉर्डर पर वापसी का इंतजार कर रही है। घुसपैठियों की इस चिंता को शुभेंदु ने यह कहकर और ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से भगाकर ही रहेंगे।

0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास इन चेहरों को गौर से देखते जाइए। ये लोग वो घुसपैठिए हैं जो जल्द से जल्द अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने राज्य में रहने वाले हर घुसपैठिए को ये कहकर खबरदार कर दिया, भागो जल्दी भागो।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा,
0: तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाग घुसपैठिया भाग। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की इस दो टूक ने राज्य में छिपे घुसपैठियों में खलबली मचा दी। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पर पहुंच गए। सवाल है कि क्या बांग्लादेश इन्हें वापस लेगा?
1: बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, तो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लें। तो ये सब बांग्लादेशी है तो ले लेना चाहिए।
0: तो शुभेंदु अधिकारी को भरोसा है कि बांग्लादेश इन सब घुसपैठियों को वापस ले लेगा। क्या वाकई में बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना इतना आसान होगा?
2: पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया।
0: शुभेंदु सरकार घुसपैठियों को चुन चुन कर राज्य से निकालना चाहती है। इसके लिए मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर खोला गया। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर में लाकर हिरासत में रखा गया। इनमें 3 महिलाएं, 6 नाबालिग शामिल। जैसे ही खबर राज्य में छिप कर रहने वाले घुसपैठियों तक पहुंची, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया, बांग्लादेश की सीमा के पास पहुंचने लगे।
3: ये वही हकीमपुर है जहां साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे। SIR जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी, तो अब लोग यहां पर काफी तादाद में यहां पहुंचे थे। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे वो यहां पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाएं।
0: शुभेंदु सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की रही है। इसी सिलसिले में मुर्शिदाबाद में प्रशासन ने एक साथ 3 लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा। इन 3 बांग्लादेशी नागरिकों ने मुर्शिदाबाद के लालगोला और भगवानगोला सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। ऐसा ही एक घुसपैठिया आज तक संवाददाता तापस सेन गुप्ता को हकीमपुर बॉर्डर में मिलता है, जिसने खुद कबूल किया कि वो पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहा था।
3: आप हिंदी बोल सकते हैं?
4: बांग्ला।
3: अच्छा, अपना नाम की?
4: असद अली।
3: असद अली, अपना बाड़ी कोथा है?
4: नोला दृष्टि,
3: जशोर। कत बचर आगे?
4: 5 बचर आगे।
3: 5 बचर आगे की जन्म
4: ब्रेन डाक्তার দেখাইছে।
3: ডাক্তার দেখানোর জন্য এসেছিলেন না? আপনি কি পাসপোর্টে এসেছিলেন?
4: না, আমি ব্ল্যাকে এসেছিলাম।
3: কিসে ব্ল্যাকে এসেছিলেন?
4: জি,
3: মানে দালালের মারফত?
4: না, একা চলে এসেছি।
3: একাই এসেছি?
4: না, তখন দালাল ছিল।
3: আচ্ছা,
4: একা হেঁটে চলে এসেছি।
3: একা হেঁটে চলে এসেছি? কোনো কারো কি কোনো টাকা দিতে হয়?
4: না।
3: আচ্ছা, তারপর কতদিন ধরে চিকিৎসা চালাচ্ছে?
4: দেখেন, এখানে লেখা আছে 6 বছর।
3: আচ্ছা, এটা
0: তো আজ তক সে বাতচিত মে বাংলাদেশ থেকে ঘুসপাইঠিয়ে নে খুদ বাতায়া কি ও পিছলে 5 সাল সে পশ্চিম বঙ্গাল মে রহতা হ্যায়, ও ভি বিনা পাসপোর্ট কে अवैध रूप से बड़े आराम से बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ करने में कामयाब रहा और पिछले 5 साल में सुरक्षा एजेंसियों की उस पर नजर भी नहीं पड़ी।
3: ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से, और ये देख सकते कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपने जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 जून 2024, और तब से वो यहाँ पर है। कह रहे हैं कि 5 साल थे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एटा कौन हॉस्पिटल, CNM, अच्छा चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये कोलकाता के बेनियापुकुर में एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर वो इस अपना मेडिकल इलाज करवाने के लिए आए थे।
0: तो सोचिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में असद अली नाम का बांग्लादेशी घुसपैठिया पांच साल से रहता है, जो बांग्लादेश के जैसोर शहर के नाला दृष्टि का रहने वाला है, जो कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन असद अली जैसे घुसपैठियों को जैसे ही पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर खुलने की खबर लगती है, ये भागकर वापस बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच जाते हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है।
5: शुभेंदु
1: जल्दी भागो,
5: शुभेंदु
1: भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा।
0: शुभेंदु अधिकारी सरकार की योजना बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ को सौंपने की है। शुभेंदु कह भी चुके हैं कि वो घुसपैठियों को अदालत नहीं बल्कि सीधे बॉर्डर ले जाएंगे ताकि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू की जा सके। बंगाल में नई सरकार के तेवरों का ही असर है कि राज्य में इधर उधर छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद सीमा पर पहुंच रहे हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
3: यहां आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ज्यादातर लोग जिनसे हम बात कर रहे थे वो 5-6 साल या 8 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन हर किसी का एक अलग कहानी है। लेकिन अगर दूसरे छोर से देखा जाए कि अवैध तरीके से रात के अंधेरे में वो भारत में प्रवेश किए थे, सवाल ये है कि वो इस तरीके से प्रवेश किए, सालों साल वो पश्चिम बंगाल में रहे और बिना डिटेक्शन के, अब जब होल्डिंग कैंप की बात की जा रही है तब एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। पुलिस की ओर से भी इन्हें कहा गया है, ये बता रहे हमें कि इस वजह से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है।
6: 12 मई को शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की गले मिलते हुए एक फोटो वायरल हुई थी, जिस पर हिमंत बिस्व सरमा ने लिखा था बुरे दिन। इसके आगे उन्होंने लिखा आप जानते हैं कौन और साथ में शुभेंदु अधिकारी को टैग कर दिया था। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी तुरंत जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कोई इनाम नहीं होगा।
7: I have a border constituency. Who wants to live in India now? I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators and a lot of things in Bangladesh are actually better. Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India.
0: देश में जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ को बेकार का हवा बताता है उसे महुआ मित्रा की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर बैठे इन घुसपैठियों को देखना चाहिए, जिन्हें अक्सर कई राजनीतिक दल और नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए झुठलाते हैं।
3: हाकिमपुर चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट के उस पार बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सातखीरा डिस्ट्रिक्ट है और सातखीरा डिस्ट्रिक्ट में इन्हें भेजा जाएगा। और जो प्रोसेस ये बताया गया है कि अमूमन जितने लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ सिलेक्ट किया जाता है, उनके दस्तावेज लिया जाता है, बांग्लादेश के जो दस्तावेज रहे हैं।
0: याद करिए बंगाल में जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तब भी ऐसे ही बॉर्डर पर लोग बांग्लादेश जाना शुरू हुए थे।
8: ये लॉकडाउन बहुत आगे माने आखिरी लॉकडाउन शुरू हुई ये तुम्हार बेनाफल लॉकडाउन कई बस
9: আমি 2 বছর 1 মাস হয়েছে এখানে আসছিলাম, চেরাই পথে আসছি, কোন পথে আসছি সেটা বলতে পারবো না।
10: কেন এসেছিলাম?
9: আসছিলাম আমার ওয়াইফ অনেক অসুস্থ ছিল, তার মানসিক হয়েছে কি

0: वक्त में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया और बांग्लादेशी घुसपैठिए डर के मारे अब खुद ही बंगाल छोड़ने लगे।
1: बहुत कष्ट कर खूब कष्ट कर
2: दिन आसा जाए रातो
3: आसा जाए
2: काज करार जन्य
0: तो बांग्लादेश से घुसपैठ करवाने का बंगाल में अवैध कारोबार चलता है जो 9000 रुपए की रिश्वत लेकर बांग्लादेशियों की बंगाल में एंट्री करवा देता है। सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश से आने वाले ये लोग या तो काम की तलाश में भारत आते हैं या फिर इलाज करवाने के, मतलब भारत में बांग्लादेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं और भविष्य दिखता है जो उन्हें घुसपैठ के लिए प्रेरित करता है, जो उस दावे के बिल्कुल उल्टा है कि भारत में कोई क्यों आना चाहेगा। लेकिन इस मामले में सबसे खबरदार करने वाली बात यह है कि भारत में घुसपैठ करना आसान है और घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजना थोड़ा कठिन।
4: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए 3D नीति अपनाई है, यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। और इसी के तहत अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर में एक बार फिर सैकड़ों तादाद में लोग जो अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत प्रवेश किए थे उनकी भीड़ नजर आ रही है। एक के बाद एक लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा।
5: पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बदलते जनसांख्यिकी का परिवर्तन को लेकर खबरदार कर दिया है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद इसे रोकने के लिए जहां बांग्लादेश की सीमा पर बाढ़ लगाई जा रही है, वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश भर में घुसपैठ रोकने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है।
6: बॉर्डर के सुरक्षित करा, अभारतीयों देर दर्जा देखिए दा, घुसपैठिया हटाओ, जाओ जहां से आया था उस रास्ता से जाओ वापस, जाओ बांग्लादेश।
0: पश्चिम बंगाल जीतने के बाद बीजेपी सरकार अब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए चक्रव्यूह रच चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की योजना पूरे देश में घुसपैठ रोकने के साथ डेमोग्राफी बदलने का सपना देखने वालों के मंसूबे ध्वस्त करने की है।
7: कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें।
0: तो जो लोग भारत की सीमाओं में चोरी छिपे घुसकर फर्जी दस्तावेज बनवाकर इस देश की डेमोग्राफी बदलने का सपना देख रहे थे, उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जिस महामिशन का संकल्प लिया,
8: घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने उस पर मुहर लगाते हुए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज के गठन का ऐलान कर दिया है, जो पूरे भारत में अवैध प्रवास और दूसरे कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन का अध्ययन करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सीमा को स्मार्ट बॉर्डर बनाने की है, जहां से घुसपैठ करना असंभव होगा।
7: ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
0: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्ला

0: प्रदेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 1647 किलोमीटर पर ही बाड़ लगाई गई है। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बीएसएफ को तारबंदी के लिए जमीन सौंप दी गई, जिसने बॉर्डर पर अपना काम भी शुरू कर दिया। बीजेपी अपने ट्रिपल डी फॉर्मूले यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट को सख्ती से लागू कर रही है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में सिर्फ मिजोरम में बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह की योजना बीजेपी शासित राज्यों में बांग्लादेश से घुसपैठ करीब करीब खत्म करने के लिए बीएसएफ को स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल करके घुसपैठ के हर रूट को खत्म करने का मंत्र दिया गया है।
1: अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है।
0: घुसपैठ रोकने के इसी प्लान पर अमित शाह त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बीच होल्डिंग सेंटर बनने के बाद जिस तरह से खलबली देखी जा रही है, उसने भारत में घुसपैठ की समस्या और चुनौती को एक बार फिर सबके सामने लाने का काम किया है।
2: सत्ता बंगाल में लंबे वक्त तक टीएमसी की रही, तो दावा यह कि गुंडागर्दी की घुसपैठ आम लोगों को परेशान करती रही, जहां पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर को टीएमसी के कब्जे से नहीं छुड़ा पाया करते थे, और बीजेपी राज आने पर टीएमसी के कब्जे से अपना ऑफिस कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आजाद करवाया है।
0: पूजा करते हुए घड़ियाल बजाते इस चेहरे को देखिए, नाम विश्वजीत मंडल, दक्षिण 24 परगना की कैनिंग पूर्व विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता 5 साल बाद अपने घर में वापस आ पाए? वो घर जिसे 2021 विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी नेता के डर से विश्वजीत मंडल को दावा है छोड़ना पड़ा। वो घर जो दावा है कि टीएमसी के नेता शौकत मुल्ला के कहने पर इसलिए बुलडोजर चलवा कर कई जगहों पर गिरवा दिया गया क्योंकि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता विश्वजीत मंडल रहते थे। दावा है कि टीएमसी के नेता यहां चाहते थे कि बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं के घर तोड़कर इतना डरा दो कि कभी यहां बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई ना बचे। लेकिन बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के बाद, शुभेंदु सरकार आने के बाद हिम्मत वापस मिली तो बीजेपी के नेता विकास सरदार के साथ विश्वजीत मंडल अपने उस घर में वापस लौटे, पूजा पाठ किया, लोगों को दोबारा गृह प्रवेश का प्रसाद खिलाया।
3: सारा पश्चिम बंगाल मानुष तादेर जीवने बाँचार एकटा स्वाद पेयेछे যে আমরা অন্তত হিন্দু মানুষ এই পশ্চিমবঙ্গে বাস করতে পারবো। এতদিন আমাদের কোনো মানুষ পাশে দাঁড়ায়নি, অ্যাকচুয়ালি এখানে বোমা বন্দুকের রাজত্ব হয়, যেটা শৌকত মোল্লাকে মমতা ব্যানার্জী পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু এনআইএ তদন্ত করে যদি এখন এই অস্ত্র উদ্ধার করা হয়, হাজার হাজার অস্ত্র কিন্তু উদ্ধার হবে।
0: বিশ্বজিৎ মন্ডল কে ইস বাত কে সবুত হ্যায় কি হর বার বঙ্গাল মে চুনাও কে বাদ জো হিংসা হোতি রহি উসমে টিএমসি কে লোগ চুন চুন কর নিশানা বানাতে থে। लेकिन अब की बार न केवल उस हिंसा पर रोक लगी है, बल्कि सत्ता बदलने पर साहस जुटाकर लोग घर भी लौटने लगे। वहीं बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कहीं लेफ्ट और टीएमसी राज की तरह कटमनी का चलन न चलने लगे, इसलिए खुद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चेतावनी दे रहे हैं।
4: बहुत लोग 4 घंटा में भगवा गुलाल लगा लिया, हाथ में बीजेपी का झंडा उठा लिया और कारखाना के दरवाजे में पहुंच गया, तो इसको चिन्हित करने का काम सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी है। जो पैसा मांगेगा मान लीजिएगा, जो यूनियन करेगा आपका कंपनी में जाकर, हम आपको बोलकर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नाम पर कोई सिंडिकेट नहीं है, किसी को पैसा मत दीजिए।
2: राजस्थान में कोटा के सरकारी अस्पताल में नकली ऑक्सीटोसिन दवा से जुड़े मामले में अब पता यह चला है कि यह नकली दवा राजस्थान के कोटा के अलावा दिल्ली, इंदौर और यूपी के गोंडा में भी सप्लाई की गई है, जिसकी सूचना आगे दे दी गई है। चिंता पैदा करने वाला सवाल इसलिए क्योंकि 4 मई से 17 मई के बीच राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पताल में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई थी, जिन्हें ये नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था।
5: आपकी बच्ची होती तो क्या करते आप? आपकी बच्ची, आपकी बहू होती तो क्या करते आप?
6: परिवार रोते रहे, मौतें होती रही। माएं खौफ में जीती रही, हेल्थ डिपार्टमेंट सोता रहा। आंसू दर आंसू गर्भवती मां बच्चों को जन्म देकर दम तोड़ती रही, परिवार बिलखता रहा। धीरे धीरे आंदोलन बनने लगा कि आखिर गर्भवती महिलाओं की जान क्यों जा रही है। गर्भवती पायल ने 4 मई को दोपहर 12:58 पर दम तोड़ दिया। गर्भवती ज्योति ने 4 मई को ही दोपहर 1:35 पर अंतिम सांस ली। गर्भवती पिंकी महावर की मौत 7 मई को दोपहर 3 बजे हुई। गर्भवती प्रिया महावर की जान 8 मई सुबह 8 बजे चली गई। शिरीन ने 17 मई दोपहर 3 बजे दम तोड़ा। राजस्थान के एक ही जिले कोटा में 4 मई से 17 मई 14 दिन में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई। कभी कहा गया किडनी फेल हो गई, कहीं कहा गया हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल यानी दोनों सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की मौत एक बड़ा सवाल बन गई। महिलाओं की जान जाती रही और तब जाकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर नींद से आधे जागे अस्पताल का दौरा करके खाना पूर्ति कराए। पर अब जाकर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के भीतर मौत की अंधेर नगरी से खबरदार होना जरूरी है, क्योंकि जहां कोटा के सरकारी अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक गर्भवती महिलाओं की मौत पर पर्दा डालता रहा, वहां दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के कहने पर हुई दवाओं की जांच से डराने वाला सच सामने आया। सच गर्भवती महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन लगने का जिसमें दवा का कंटेंट 0 निकला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को लगाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जांच रिपोर्ट का पन्ना है। इस पन्ने पर साफ साफ लिखा है कि अमृतसर की जैक्सन लेबोरेटरीज की तरफ से बनाया गया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसकी जांच में ये नमूना आईपी के अनुरूप नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं। इसी रिपोर्ट में कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गंभीर रूप से अवमानक है, यानी मानक के विपरीत। मतलब जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डिलीवरी के दौरान प्रसव प्रक्रिया को सुगम बनाने, लेबर पेन में आगे की प्रक्रिया को सरल करने और डिलीवरी के बाद होने वाले खून के बहाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उस इंजेक्शन में वो ड्रग ही नहीं थी, उसका कंटेंट 0 था। तो क्या इसी वजह से कोटा में 5 गर्भवती महिलाओं की जान चली गई? आज तक ने सीधे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से ही सवाल किया।
7: कोटा में जो 5 प्रसूताओं की जो मौत हुई थी, उसका जो सैंपल कोलकाता भेजा गया था, वो ड्रग्स में फेल हो चुका है।
8: अभी ऐसा कि पूरे ड्रग्स इंजेक्टेबल्स जो 20% दवाइयां जो हमारा मेडिकल कॉलेज ने खरीदे हैं, वो और हमारे जो RMSCL की दवाइयों की उनकी पूरी जांच करके पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था। इसमें बेसिकली क्या है कि कोई इतनी जल्दी 7 घंटों के अंदर कोई मौत के कगार पे आ जाए और उसके 7-8 घंटे में डेथ हो जाए, ये कोई चीज है जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है।
7: प्रथम दृष्टया कोई लापरवाही लग रही है, बड़ी कार्रवाई एक्शन की जरूरत है?
8: देखिए ऐसा है, बड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर सब तथ्य सामने आ जाए उसके पश्चात मैं उसका जवाब।
6: मंत्री जी देखिए, अब आप यही वो जांच रिपोर्ट है जो राजस्थान के खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण विभाग ने जारी की, लेकिन शर्मनाक हालत है। 5-5 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई और जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उन्हें लगा वो दवा ही पूरी नकली निकली, मतलब उसमें ऑक्सीटोसिन का कंटेंट था ही नहीं। रिपोर्ट सबके सामने है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं जांच रिपोर्ट आने दीजिए।
8: पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था।
6: 22 दिन बीत चुके हैं, राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग अब तक मौत का कारण खुलकर बोल नहीं पा रहा। मंत्री जांच रिपोर्ट का इंतजार करा रहे हैं, जबकि जांच करने वाले उन्हीं के राज में दवा का सच बता देते हैं।
9: कोटा में लास्ट 15-20 डेज बैक हमने जो सैंपल्स अराउंड 20 अलग अलग टाइप के मेडिसिन लिए थे, उसमें 19 वेर ऑल स्टैंडर्ड। एक मेडिसिन जो टोसिन है, जैक्सन फार्मा का है, उसमें जो टोसिन जो ब्रांड नेम है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन करके दवा होना चाहिए, तो उस में दवा था नहीं, उसका कंटेंट जीरो निकला है।
6: जिस नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में दवा के नाम पर कुछ था ही नहीं, वो कोटा में स्थानीय स्तर पर ही खरीदी गई थी। 10,000 इंजेक्शन जेके लोन अस्पताल गए और 2,479 इंजेक्शन न्यू मेडिकल कॉलेज।
10: जो सैंपलिंग जितनी दवाइयों की गई थी उसमें से ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन का एक बैच, उसमें एक्टिव कंटेंट नहीं मिला है जांच में, तो उसके लिए हमने उच्च स्तर पर कार्रवाई के लिए लिख भी दिया है। ये मेडिकल कॉलेज कोटा की आरसी पे हम लोगों ने परचेज ऑर्डर दिया था।
11: प्रिंसिपल होने का अर्थ कतई ये नहीं है कि मैं किसी के क्लिनिकल जजमेंट पे कोई क्वेश्चन करूं।
12: नहीं सर, आपकी बात सही है, पर जो
11: मैं अपना जवाब दे चुका हूं।
12: जो महिलाओं को ये दिक्कत हुई सर, तो इसमें डॉक्टरों को क्यों नहीं पता लगा इनको कि
11: ये डॉक्टर बता सकता है, मैं नहीं बता सकता।
6: मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं मैं क्या बताऊं, अधीक्षक कहते हैं दवा तो मेडिकल कॉलेज की मंजूरी से खरीदी, और स्वास्थ्य मंत्री 3 हफ्ते बाद भी जांच रिपोर्ट का इंतजार करके मामला लटकाते हैं।
13: आखिर कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में ये नकली दवा पहुंची कैसे? इमरजेंसी खरीद के नाम पर सब स्टैंडर्ड दवाइयों के खरीद का बड़ा रैकेट सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। दवा खरीदने वाले अधीक्षक कह रहे हैं कि अगर ये दवा नकली थी तो फिर डॉक्टर ने दूसरी दवा का प्रयोग क्यों नहीं किया। डॉक्टर का कहना है कि दवा नकली है, यह पता कैसे चलेगा जो दूसरी दवाइयों का प्रयोग करेंगे। अब बड़ा सवाल है कि जब इन दवाइयों से मौत नहीं हुई है तो फिर मौतें कैसे हुई है, इसके बारे में आखिर कौन बताएगा।
6: राजस्थान सरकार ने टोसिन इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी जैक्सन लेबोरेटरीज के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराने का आदेश दिए, जिसके मालिक कहते हैं कि कमी इंजेक्शन में नहीं है, राजस्थान के सरकारी विभाग में है।
14: वो तो स्टोरेज के ऊपर भी डिपेंडेंट है, स्टोरेज जब मतलब गलत हो जाएगी तो इसका इफेक्ट होगा। आज हम किसी भी दवा को अगर 1 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं तो उसके कंटेंट्स खत्म हो जाते हैं, तो ये ऐसी ही कोई नेग्लिजेंस हुई है।
6: एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालकर जांच रिपोर्ट आने दीजिए बताकर चेहरा बचाने का काम हो रहा है, लेकिन इस सच को तो कोई नहीं झुठला सकता कि नकली बेकार जो किसी के काम के लायक इंजेक्शन नहीं था वो गर्भवती महिलाओं को लगा, जिनकी मौत बाद में हुई है। अब जरूरी है कि इन्हीं चेहरों के साथ जांच आगे की जाए। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
2: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

जंग से जूझती दुनिया के हालात पर क्वेड में मंथन सुपर शक्तियों के सामने भारत की दो टूक, हर हाल में आतंक का अंत जरूरी, चारों देशों का साझा बयान, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता जरूरी। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृहमंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। कर्नाटक के सीएम हो सकते हैं डीके शिव कुमार, सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धरमैया, दिल्ली में आलाकमान ने दोनों के साथ की थी बैठक। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सिलीगुड़ी साइबर थाने में केस, पिछले साल सनातन धर्म पर की थी अभद्र टिप्पणी। और ओएसएम पोर्टल हैक होने के दावे को सीबीएसई ने खारिज किया, कहा असली मूल्यांकन का कोर्ट का यूआरएल अलग है, छात्रों के अंक या अन्य डेटा पोर्टल पर नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, खासतौर से घुसपैठ को लेकर। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ पहुंची थी, वैसी ही भीड़ बांग्लादेश की सीमा से सटे बॉर्डर पर वापसी का इंतजार कर रही है। घुसपैठियों की इस चिंता को शुभेंदु ने यह कहकर और ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से भगाकर ही रहेंगे।

0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास इन चेहरों को गौर से देखते जाइए। ये लोग वो घुसपैठिए हैं जो जल्द से जल्द अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों में स्टॉफ की वजह शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने राज्य में रहने वाले हर घुसपैठिए को ये कहकर खबरदार कर दिया, भागो जल्दी भागो।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये।
0: तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाग घुसपैठिया भाग। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की इस दो टूक ने राज्य में छिपे घुसपैठियों में खलबली मचा दी। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पर पहुंच गए। सवाल है कि क्या बांग्लादेश इन्हें वापस लेगा?
1: बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, तो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेंगे। तो ये सब बांग्लादेशी है तो ले लेना चाहिए।
0: तो शुभेंदु अधिकारी को भरोसा है कि बांग्लादेश इन सब घुसपैठियों को वापस ले लेगा। क्या वाकई में बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना इतना आसान होगा?
2: पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया।
0: शुभेंदु सरकार घुसपैठियों को चुन चुन कर राज्य से निकालना चाहती है। इसके लिए मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर खोला गया। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर मिलाकर हिरासत में रखा गया। इनमें 3 महिलाएं, 6 नाबालिग शामिल। जैसे ही खबर राज्य में छिप कर रहने वाले घुसपैठियों तक पहुंची, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया, बांग्लादेश की सीमा के पास पहुंचने लगे।
3: ये वही हकीमपुर है जहां साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे। SIR जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी, तो अब लोग यहां पर काफी तादाद में यहां पहुंचे थे। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे वो यहां पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाएं।
0: शुभेंदु सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की रही है। इसी सिलसिले में मुर्शिदाबाद में प्रशासन ने एक साथ 3 लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा। इन 3 बांग्लादेशी नागरिकों ने मुर्शिदाबाद के लालगोला और भगवानगोला सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। ऐसा ही एक घुसपैठिया आज तक संवाददाता तापस सेन गुप्ता को हकीमपुर बॉर्डर में मिलता है, जिसने खुद कबूल किया कि वो पिछले 5 से पश्चिम बंगाल में रह रहा था।
3: आप हिंदी बोल सकते हैं?
4: ना, बांग्ला में।
3: अच्छा, अपना नाम की?
4: असद अली।
3: असद अली, अपना बाड़ी को था?
4: नोला दृष्टि
3: जशोर। कत बचर आगे?
4: 5 बचर आगे।
3: 5 बचर आगे की जन्म?
4: ब्रेन आउटब्रेक डाक्তার দেখাইছে।
3: ডাক্তার দেখানোর জন্য এসেছিলেন? আপনি কি পাসপোর্টে এসেছিলেন?
4: না, আমি ব্ল্যাকে এসেছিলাম।
3: কিসে ব্ল্যাকে এসেছিলেন?
4: জি,
3: মানে দালালের মারফত?
4: না, একা চলে এসেছি।
3: একাই এসেছি?
4: না, তখন দালাল ছিল।
3: আচ্ছা,
4: একা চলে এসেছি।
3: একা হেঁটে চলে এসেছি? কোনো কারো কি কোনো টাকা দিতে হয়নি?
4: না।
3: আচ্ছা, তারপর কতদিন ধরে চিকিৎসা চালাচ্ছেন?
4: দেখেন, এখানে লেখা আছে 6 বছর।
3: আচ্ছা, এটা
0: তো আজ তক সে বাতচিত মে বাংলাদেশ থেকে আয় ঘুসপাইঠিয়ে নে খুদ বাতায়া কি ও পিছলে 5 সে পশ্চিম বঙ্গাল মে রহতা হ্যায় ও ভি বিনা পাসপোর্ট কে अवैध रूप से बड़े आराम से बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ करने में कामयाब रहा और पिछले 5 में सुरक्षा एजेंसियों की उस पर नजर भी नहीं पड़ी।
3: ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से, और ये देख सकते कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपनी जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 जून 2024, और तब से वो यहाँ पर है। कह रहे हैं कि 5 थे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एटा कौन हॉस्पिटल? CNM। अच्छा, चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये कोलकाता के बेनियापुकुर में एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर वो इस अपना मेडिकल इलाज करवाने के लिए आए थे।
0: तो सोचिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में असद अली नाम का बांग्लादेशी घुसपैठिया पांच साल से रहता है, जो बांग्लादेश के जैसोर शहर के नाला दृष्टि का रहने वाला है, जो कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन असद अली जैसे घुसपैठियों को जैसे ही पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर खुलने की खबर लगती है, ये भागकर वापस बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच जाते हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये। जल्दी जल्दी भागो
0: शुभेंदु,
1: करना है सरकार करेगा।
0: शुभेंदु अधिकारी सरकार की योजना बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ को सौंपने की है। शुभेंदु कह भी चुके हैं कि वो घुसपैठियों को अदालत नहीं बल्कि सीधे बॉर्डर ले जाएंगे ताकि डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू की जा सके। बंगाल में नई सरकार के तेवरों का ही असर है कि राज्य में इधर उधर छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद सीमा पर पहुंच रहे हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
3: यहां आप देख सकते हैं कि
0: जा सके बंगाल में नई सरकार के तेवरों का ही असर है कि राज्य में इधर उधर छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद सीमा पर पहुंच रहे हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
3: यहां आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ज्यादातर लोग जिनसे हम बात कर रहे थे वो 5-6 साल या 8 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन हर किसी का एक अलग कहानी है। लेकिन अगर दूसरे छोर से देखा जाए कि अवैध तरीके से रात के अंधेरे में वो भारत में प्रवेश किए थे, सवाल ये है कि वो इस तरीके से प्रवेश किए, सालों साल वो पश्चिम बंगाल में रहे और बिना डिटेक्शन के, अब जब होल्डिंग कैंप की बात की जा रही है तब एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। पुलिस की ओर से भी इन्हें कहा गया है, ये बता रहे हमें कि इस वजह से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है।
5: 12 मई को शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की गले मिलते हुए एक फोटो वायरल हुई थी, जिस पर हिमंत बिस्व सरमा ने लिखा था बुरे दिन। इसके आगे उन्होंने लिखा आप जानते हैं कौन और साथ में शुभेंदु अधिकारी को टैग कर दिया था। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी तुरंत जवाब दिया, उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कोई इनाम नहीं होगा।
6: आई हैव अ बॉर्डर कंस्टिट्यूएंसी, हु वांट्स टू लिव इन इंडिया ना? आई हैव कुश्तिया ऑन द अदर साइड एंड नदिया, द जीडीपी, द हेल्थ इंडिकेटर्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बांग्लादेश आर एक्चुअली बेटर। Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India.
0: देश में जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ को बेकार का हवा बताता है उसे महुआ मित्रा की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर बैठे इन घुसपैठियों को देखना चाहिए, जिन्हें अक्सर कई राजनीतिक दल और नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए झुठलाते हैं।
3: हाकिमपुर चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट के उस पार बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सातखीरा डिस्ट्रिक्ट है और सातखीरा डिस्ट्रिक्ट में इन्हें भेजा जाएगा। और जो प्रोसेस ये बताया गया है कि अमूमन जितने लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ सिलेक्ट किया जाता है, उनके दस्तावेज लिया जाता है, बांग्लादेश के जो दस्तावेज रहे हैं।
0: याद करिए बंगाल में जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तब भी ऐसे ही बॉर्डर पर लोग बांग्लादेश जाना शुरू हुए थे।
7: ये लॉकडाउन बहुत आगे মানে আর্লি লকডাউন শুরু হয়ে
8: কিভাবে
7: আর জাতি বাড়েনি সুরাই পথে এলাম
8: কোন জায়গা
7: ইয়ে তোমার বেলা ফল
8: সেটা কত বছর মোটামুটি
7: এই লকডাউন কয় বছর আছে
9: আমি 2 বছর 1 মাস হয়েছে এখানে আসছিলাম চোরাই পথে আসছি কোন পথে আসছি সেটা বলতে পারবো না
8: কেন এসেছিলাম
9: আসছিলাম আমার ওয়াইফ অনেক অসুস্থ ছিল তার মানসিক হয়েছে কিডনির সমস্যা ছিল
0: तब डर था लेकिन कुछ दिन का हो सकता है इन्हें लगा हो कि जैसा पहले है वैसा ही चलता रहेगा। जैसे ये बांग्लादेश जाकर पश्चिम बंगाल में रहते आए हैं रहते रहेंगे, लेकिन बीजेपी न सिर्फ सत्ता में आई बल्कि शपथ लेने के 20 दिन से कम वक्त में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया और बांग्लादेशी घुसपैठिए डर के मारे अब खुद ही बंगाल छोड़ने लगे।
10: बहुत कष्ट कर रहे, खूब कष्ट कर रहे,
11: দিনে আসা যায় রাতেও আসা
12: যায়, রাতেও আসা যায়। তো এখানে কি জন্য এসেছে?
11: কাজ করার জন্য।
12: কাজ করার জন্য।
0: তো বাংলাদেশ সে ঘুসপাঠ করবানে কা বঙ্গাল মে অবৈধ কারোবার চলতা হ্যায় জো 9000 রুপয়ে কি রিশওয়াত লেকার বাংলাদেশিয়ো কি বঙ্গাল মে এন্ট্রি করবা দেতা হ্যায়। সবসে বড়ি বাত ইয়ে কি বাংলাদেশ জানে ওয়ালে ইয়ে লোগ ইয়া তো কাম কি তালাশ মে ভারত আতে হ্যায় ইয়া ফির ইলাজ করবানে কি। मतलब भारत में बांग्लादेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं और भविष्य दिखता है जो उन्हें घुसपैठ के लिए प्रेरित करता है, जो उस दावे के बिल्कुल उल्टा है कि भारत में कोई क्यों आना चाहेगा। लेकिन इस मामले में सबसे खबरदार करने वाली बात यह है कि भारत में घुसपैठ करना आसान है और घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजना थोड़ा कठिन।
3: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए 3D नीति अपनाई है, यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। और इसी के तहत अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर में एक बार फिर सैकड़ों तादाद में लोग जो अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत प्रवेश किए थे, उनकी भीड़ नजर आ रही है। एक के बाद एक लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा।
5: पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बदलते जनसांख्यिकी का परिवर्तन को लेकर खबरदार कर दिया है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद इसे रोकने के लिए जहां बांग्लादेश की सीमा पर बाढ़ लगाई जा रही है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में घुसपैठ रोकने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है।
2: बॉर्डर के सुरक्षित करा, अभारतीयों देर दर्जा देखिए दा, घुसपैठिया हटाओ, जाओ जहां से आया था उस रास्ता से जाओ वापस, जाओ बांग्लादेश।
0: पश्चिम बंगाल जीतने के बाद बीजेपी सरकार अब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए चक्रव्यूह रच चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की योजना पूरे देश में घुसपैठ रोकने के साथ डेमोग्राफी बदलने का सपना देखने वालों के मंसूबे ध्वस्त करने की है।
13: कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें।
0: तो जो लोग भारत की सीमाओं में चोरी छिपे घुसकर फर्जी दस्तावेज बनवाकर इस देश की डेमोग्राफी बदलने का सपना देख रहे थे, उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जिस महामिशन का संकल्प लिया,
14: घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने उस पर मुहर लगाते हुए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज के गठन का ऐलान कर दिया है, जो पूरे भारत में अवैध प्रवास और दूसरे कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन का अध्ययन करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सीमा को स्मार्ट बॉर्डर बनाने की है, जहां से घुसपैठ करना असंभव होगा।
13: ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
0: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 1647 किलोमीटर पर ही बाड़ लगाई गई है। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बीएसएफ को तारबंदी के लिए जमीन सौंप दी गई, जिसने बॉर्डर पर अपना काम भी शुरू कर दिया। बीजेपी अपने DDD फॉर्मूले यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट को सख्ती से लागू कर रही है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में सिर्फ मिजोरम में बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह की योजना बीजेपी शासित राज्यों में बांग्लादेश से घुसपैठ करीब करीब खत्म करने के लिए बीएसएफ को स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल करके घुसपैठ के हर रूट को खत्म करने का मंत्र दिया गया है।
13: अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, इस सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है।
0: घुसपैठ रोकने के इसी प्लान पर अमित शाह त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बीच होल्डिंग सेंटर बनने के बाद जिस तरह से खलबली देखी जा रही है, उसने भारत में घुसपैठ की समस्या और चुनौती को एक बार फिर सबके सामने लाने का काम किया है।
5: सत्ता बंगाल में लंबे वक्त तक टीएमसी की रही, तो दावा यह कि गुंडागर्दी की घुसपैठ आम लोगों को परेशान करती रही, जहां पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर को टीएमसी के कब्जे से नहीं छुड़ा पाया करते थे और बीजेपी राज आने पर टीएमसी के कब्जे से अपना ऑफिस कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आजाद करवाया है।
0: पूजा करते हुए घड़ियाल बजाते इस चेहरे को देखिए, नाम विश्वजीत मंडल, दक्षिण 24 परगना की कैनिंग पूर्व विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता 5 साल बाद अपने घर में वापस आ पाए? वो घर जिसे 2021 विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी नेता के डर से विश्वजीत मंडल को दावा है छोड़ना पड़ा, वो घर जो दावा है कि टीएमसी के नेता शौकत मुल्ला के कहने पर इसलिए बुलडोजर चलवाकर कई जगहों पर गिरवा दिया गया क्योंकि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता विश्वजीत मंडल रहते थे। दावा है कि टीएमसी के नेता यहां चाहते थे कि बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं के घर तोड़कर इतना डरा दो कि कभी यहां बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई ना बचे। लेकिन बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु सरकार आने के बाद हिम्मत वापस मिली तो बीजेपी के नेता विकास सरदार के साथ विश्वजीत मंडल अपने उस घर में वापस लौटे, पूजा पाठ किया, लोगों को दोबारा गृह प्रवेश का प्रसाद खिलाया।
15: सारा पश्चिम बंगाल मानुष तादेर जीवने बाँचार एकटा स्वाद पेयेछे যে আমরা অন্তত হিন্দু মানুষ এই পশ্চিমবঙ্গে বাস করতে পারবো। এতদিন আমাদের কোনো মানুষ পাশে দাঁড়ায়নি, অ্যাকচুয়ালি এখানে বোমাবন্দুকের রাজত্ব হয়, যেটা শৌকত মোল্লাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু এনআইএ তদন্ত করে যদি এখন এই অস্ত্র উদ্ধার করা হয়, হাজার হাজার অস্ত্র এখান থেকে উদ্ধার হবে।
0: বিশ্বজিৎ মন্ডল কে এস বাত কে সবুত হ্যায় কি হর বার বঙ্গাল মে চুনাও কে বাদ জো হিংসা হোতি রহি উসমে টিএমসি কে লোগ চুন চুন কর নিশানা বানাতে থে। लेकिन अब की बार न केवल उस हिंसा पर रोक लगी है बल्कि सत्ता बदलने पर साहस जुटाकर लोग घर भी लौटने लगे। वहीं बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कहीं लेफ्ट और टीएमसी राज की तरह कटमनी का चलन न चलने लगे, इसलिए खुद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चेतावनी दे रहे हैं।
16: बहुत लोग 4 घंटा में भगवा गुलाल लगा लिया, हाथ में बीजेपी का झंडा उठा लिया और कारखाना के दरवाजे में पहुंच गया, तो इसको चिन्हित करने का काम सिर्फ हमारा नहीं आपका भी है। जो पैसा मांगेगा मांग लीजिएगा, जो यूनियन करेगा आपका कंपनी में जाकर, हम आपको बोलकर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नाम पर कोई सिंडिकेट नहीं है, किसी को पैसा मत दीजिए।
5: राजस्थान में कोटा के सरकारी अस्पताल में नकली ऑक्सीटोसिन दवा से जुड़े मामले में अब पता ये चला है कि ये नकली दवा राजस्थान के कोटा के अलावा दिल्ली, इंदौर और यूपी के गोंडा में भी सप्लाई की गई है, जिसकी सूचना आगे दे दी गई है। चिंता पैदा करने वाला सवाल इसलिए क्योंकि 4 मई से 17 मई के बीच राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पताल में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई थी जिन्हें ये नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था।
17: आपकी बच्ची होती तो क्या करते आपकी बच्ची, आपकी बहू होती तो क्या करते आप?
0: परिवार रोते रहे, मौतें होती रही। माएं खौफ में जीती रही, हेल्थ डिपार्टमेंट सोता रहा। आंसू दर आंसू गर्भवती मां बच्चों को जन्म देकर दम तोड़ती रही, परिवार बिलखता रहा। धीरे धीरे आंदोलन बनने लगा कि आखिर गर्भवती महिलाओं की जान क्यों जा रही है। गर्भवती पायल ने 4 मई को दोपहर 12:58 पर दम तोड़ दिया। गर्भवती ज्योति ने 4 मई को ही दोपहर 1:35 पर अंतिम सांस ली। गर्भवती पिंकी महावर की मौत 7 मई को दोपहर 3 हुई। गर्भवती प्रिया महावर की जान 8 मई सुबह 8 चली गई। शिरीन ने 17 मई दोपहर 3 दम तोड़ा। राजस्थान के एक ही जिले कोटा में 4 मई से 17 मई 14 दिन में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई। कभी कहा गया किडनी फेल हो गई, कहीं कहा गया हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल यानी दोनों सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की मौत एक बड़ा सवाल बन गई। महिलाओं की जान जाती रही और तब जाकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर नींद से आधे जागे अस्पताल का दौरा करके खाना पूर्ति कराए। पर अब जाकर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के भीतर मौत की अंधेर नगरी से खबरदार होना जरूरी है, क्योंकि जहां कोटा के सरकारी अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक गर्भवती महिलाओं की मौत पर पर्दा डालता रहा, वहां दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के कहने पर हुई दवाओं की जांच से डराने वाला सच सामने आया। सच गर्भवती महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन लगने का जिसमें दवा का कंटेंट 0 निकला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को लगाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जांच रिपोर्ट का पन्ना है। इस पन्ने पर साफ साफ लिखा है कि अमृतसर की जैक्सन लेबोरेटरीज की तरफ से बनाया गया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसकी जांच में ये नमूना आईपी के अनुरूप नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं। इसी रिपोर्ट में कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गंभीर रूप से अवमानक है, यानी मानक के विपरीत। मतलब जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डिलीवरी के दौरान प्रसव प्रक्रिया को सुगम बनाने, लेबर पेन में आगे की प्रक्रिया को सरल करने और डिलीवरी के बाद होने वाले खून के बहाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उस इंजेक्शन में वो ड्रग ही नहीं थी, उसका कंटेंट 0 था। तो क्या इसी वजह से कोटा में 5 गर्भवती महिलाओं की जान चली गई? आज तक मैं सीधे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से ही सवाल किया।
18: कोटा में जो 5 प्रसूताओं की जो मौत हुई थी, उसका जो सैंपल कोलकाता भेजा गया था, वो ड्रग्स में फेल हो चुका है।
19: अभी ऐसा कि पूरे ड्रग्स इंजेक्टेबल्स जो 20% दवाइयां जो हमारा मेडिकल कॉलेज ने खरीदे हैं, वो और हमारे जो RMSCL की दवाइयों की उनकी पूरी जांच करके पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था। इसमें बेसिकली क्या है कि कोई इतनी जल्दी 7 के अंदर कोई मौत के कगार पे आ जाए और उसके 7-8 में डेथ हो जाए, ये कोई चीज है जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है।
18: प्रथम दृष्टि कोई लापरवाही लग रही है, बड़ी कार्रवाई एक्शन की
19: अब देखिए ऐसा है, बड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर सब तथ्य सामने आ जाए उसके पश्चात मैं उसका जवाब।
0: मंत्री जी देखिए, अब आप यही वो जांच रिपोर्ट है जो राजस्थान के खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण विभाग ने जारी की, लेकिन शर्मनाक हालत है। 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई और जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उन्हें लगा वो दवा ही पूरी नकली निकली, मतलब उसमें ऑक्सीटोसिन का कंटेंट था ही नहीं। रिपोर्ट सबके सामने है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं जांच रिपोर्ट आने दीजिए।
19: पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था।
0: 22 दिन बीत चुके हैं, राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग अब तक मौत का कारण खुलकर बोल नहीं पा रहा। मंत्री जांच रिपोर्ट का इंतजार करा रहे हैं, जबकि जांच करने वाले उन्हीं के राज में दवा का सच बता देते हैं।
20: कोटा में लास्ट 15-20 बैक हमने जो सैंपल्स अराउंड 20 अलग अलग टाइप के मेडिसिन लिए थे, उसमें 19 वेर ऑल स्टैंडर्ड। एक मेडिसिन जो टोसिन है, जैक्सन फार्मा का है, उसमें जो टोसिन जो ब्रांड नेम है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन करके दवा होना चाहिए, तो उस में दवा था नहीं, उसका कंटेंट 0 निकला है।
0: जिस नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में दवा के नाम पर कुछ था ही नहीं, वो कोटा में स्थानीय स्तर पर ही खरीदी गई थी। 10,000 इंजेक्शन जेके लोन अस्पताल गए और 2,479 इंजेक्शन न्यू मेडिकल कॉलेज।
4: जो सैंपलिंग जितनी दवाइयों की गई थी उसमें से ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन का एक बेच, उसमें एक्टिव कंटेंट नहीं मिला है जांच में, तो उसके लिए हमने उच्च स्तर पर कार्रवाई के लिए लिख भी दिया है। ये मेडिकल कॉलेज कोटा की आरसी पे हम लोगों ने परचेज ऑर्डर दिया था।
21: प्रिंसिपल होने का अर्थ कतई ये नहीं है कि मैं किसी के क्लिनिकल जजमेंट पे कोई क्वेश्चन करूं।
22: नहीं सर, आपकी बात सही है, पर जो
21: मैं अपना जवाब दे चुका हूं।
22: जो महिलाओं को ये दिक्कत हुई सर, तो इसमें डॉक्टरों को क्यों नहीं पता लगा इनको कि
21: ये डॉक्टर बता सकता है, मैं नहीं बता सकता।
0: मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं मैं क्या बताऊं, अधीक्षक कहते हैं दवा तो मेडिकल कॉलेज की मंजूरी से खरीदी और स्वास्थ्य मंत्री 3 हफ्ते बाद भी जांच रिपोर्ट का इंतजार करके मामला लटकाते हैं।
2: आखिर कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में ये नकली दवा पहुंची कैसे? इमरजेंसी खरीद के नाम पर सब स्टैंडर्ड दवाइयों के खरीद का बड़ा रैकेट सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। दवा खरीदने वाले अधीक्षक कह रहे हैं कि अगर ये दवा नकली थी तो फिर डॉक्टर ने दूसरी दवा का प्रयोग क्यों नहीं किया। डॉक्टर का कहना है कि दवा नकली है, यह पता कैसे चलेगा जो दूसरी दवाइयों का प्रयोग करेंगे। अब बड़ा सवाल है कि जब इन दवाइयों से मौत नहीं हुई है तो फिर मौतें कैसे हुई है, इसके बारे में आखिर कौन बताएगा।
0: राजस्थान सरकार ने टोसिन इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी जैक्सन लेबोरेटरीज के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराने के आदेश दिए, जिसके मालिक कहते हैं कि कमी इंजेक्शन में नहीं है, राजस्थान के सरकारी विभाग में है।
23: वो तो स्टोरेज के ऊपर भी डिपेंडेंट है, स्टोरेज जब मतलब गलत हो जाएगी तो इसका इफेक्ट होगा। आज हम किसी भी दवा को अगर 1 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं तो उसके कंटेंट्स खत्म हो जाते हैं, तो ये ऐसी ही कोई नेग्लिजेंस हुई है।
0: एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालकर जांच रिपोर्ट आने दीजिए बताकर चेहरा बचाने का काम हो रहा है, लेकिन इस सच को तो कोई नहीं झुठला सकता कि नकली बेकार जो किसी के काम के लायक इंजेक्शन नहीं था वो गर्भवती महिलाओं को लगा, जिनकी मौत बाद में हुई है। अब जरूरी है कि इन्हीं चेहरों के साथ जांच आगे की जाए। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
5: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

जंग से जूझती दुनिया के हालात पर क्वेड में मंथन, सुपर शक्तियों के सामने भारत की दो टूक, हर हाल में आतंक का अंत जरूरी, चारों देशों का साझा बयान, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता जरूरी। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृहमंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। कर्नाटक के सीएम हो सकते हैं डीके शिवकुमार, सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धरमैया, दिल्ली में आलाकमान ने दोनों के साथ की थी बैठक। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सिलीगुड़ी साइबर थाने में केस, पिछले साल सनातन धर्म पर की थी अभद्र टिप्पणी। और ओएसएम पोर्टल हैक होने के दावे को सीबीएसई ने खारिज किया, कहा असली मूल्यांकन का कोर्ट का यूआरएल अलग है, छात्रों के अंक या अन्य डेटा पोर्टल पर नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, खासतौर से घुसपैठ को लेकर। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ पहुंची थी, वैसी ही भीड़ बांग्लादेश की सीमा से सटे बॉर्डर पर वापसी का इंतजार कर रही है। घुसपैठियों की इस चिंता को शुभेंदु ने यह कहकर और ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से भगाकर ही रहेंगे।

0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास इन चेहरों को गौर से देखते जाइए। ये लोग वो घुसपैठिए हैं जो जल्द से जल्द अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने राज्य में रहने वाले हर घुसपैठिए को ये कहकर खबरदार कर दिया, भागो जल्दी भागो।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा,
0: तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाग घुसपैठिया भाग। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की इस दो टूक ने राज्य में छिपे घुसपैठियों में खलबली मचा दी। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पर पहुंच गए। सवाल है कि क्या बांग्लादेश इन्हें वापस लेगा?
1: बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, तो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेंगे। तो ये सब बांग्लादेशी है तो ले लेना चाहिए।
0: तो शुभेंदु अधिकारी को भरोसा है कि बांग्लादेश इन सब घुसपैठियों को वापस ले लेगा। क्या वाकई में बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना इतना आसान होगा?
2: पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया।
0: शुभेंदु सरकार घुसपैठियों को चुन चुन कर राज्य से निकालना चाहती है। इसके लिए मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर खोला गया। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर में लाकर हिरासत में रखा गया। इनमें 3 महिलाएं, 6 नाबालिग शामिल। जैसे ही खबर राज्य में छिप कर रहने वाले घुसपैठियों तक पहुंची, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया, बांग्लादेश की सीमा के पास पहुंचने लगे।
3: ये वही हकीमपुर है जहां साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे। SIR जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी, तो अब लोग यहां पर काफी तादाद में यहां पहुंचे थे। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे वो यहां पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाएं।
0: शुभेंदु सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की रही है। इसी सिलसिले में मुर्शिदाबाद में प्रशासन ने एक साथ 3 लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा। इन 3 बांग्लादेशी नागरिकों ने मुर्शिदाबाद के लालगोला और भगवानगोला सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। ऐसा ही एक घुसपैठिया आज तक संवाददाता तापस सिंह गुप्ता को हकीमपुर बॉर्डर में मिलता है, जिसने खुद कबूल किया कि वो पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहा था।
3: आप हिंदी बोल सकते हैं?
4: बांग्ला।
3: अच्छा, अपना नाम की?
4: असद अली।
3: असद अली, अपना बाड़ी को था?
4: नोला दृष्टि
3: जशोर। कत बचर आगे?
4: 5 बचर आगे।
3: 5 बचर आगे की जन्म
4: ब्रेन डाक्তার দেখাইছে।
3: ডাক্তার দেখানোর জন্য এসেছিলেন না? আপনি কি পাসপোর্টে এসেছিলেন?
4: না, আমি ব্ল্যাকে এসেছিলাম।
3: কিসে ব্ল্যাকে এসেছিলেন?
4: জি,
3: মানে দালালের মারফত?
4: না, একা চলে এসেছি।
3: একাই এসেছি?
4: হ্যাঁ, তখন দালাল ছিল।
3: আচ্ছা,
4: একা কাটি চলে এসেছি।
3: একা হেঁটে চলে এসেছি? কোনো কারো কি কোনো টাকা দিতে হয়নি?
4: না।
3: আচ্ছা, তারপর কতদিন ধরে চিকিৎসা চালাচ্ছে?
4: দেখেন এখানে লেখা আছে 6 বছর।
3: আচ্ছা, এটা
0: তো আজ তক সে বাতচিত মে বাংলাদেশ থেকে ঘুসপাইঠিয়ে নে খুদ বাতায়া কি ও পিছলে 5 সাল সে পশ্চিম বঙ্গাল মে রহতা হ্যায়, ও ভি বিনা পাসপোর্ট কে अवैध रूप से बड़े आराम से बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ करने में कामयाब रहा और पिछले 5 साल में सुरक्षा एजेंसियों की उस पर नजर भी नहीं पड़ी।
3: ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से, और ये देख सकते कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपने जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 जून 2024, और तब से वो यहाँ पर है। कह रहे हैं कि 5 साल थे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एटा कौन हॉस्पिटल, CNM, अच्छा चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये कोलकाता के बेनियापुकुर में एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर वो इस अपना मेडिकल इलाज करवाने के लिए आए थे।
0: तो सोचिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में असद अली नाम का बांग्लादेशी घुसपैठिया पांच साल से रहता है, जो बांग्लादेश के जैसोर शहर के नाला दृष्टि का रहने वाला है, जो कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन असद अली जैसे घुसपैठियों को जैसे ही पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर खुलने की खबर लगती है, ये भागकर वापस बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच जाते हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है, देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये।
0: शुभेंदु अधिकारी सरकार की योजना बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ को सौंपने की है। शुभेंदु कह भी चुके हैं कि वो घुसपैठियों को अदालत नहीं बल्कि सीधे बॉर्डर ले जाएंगे ताकि डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू की जा सके। बंगाल में नई सरकार के तेवरों का ही असर है कि राज्य में इधर उधर छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद सीमा पर पहुंच रहे हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
3: यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ज्यादातर लोग जिनसे हम बात कर रहे थे वो 5-6 साल या 8 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन हर किसी का एक अलग कहानी है। लेकिन अगर दूसरे छोर से देखा जाए कि अवैध तरीके से रात के अंधेरे में वो भारत में प्रवेश किए थे, सवाल ये है कि वो इस तरीके से प्रवेश किए, सालों साल वो पश्चिम बंगाल में रहे और बिना डिटेक्शन के, अब जब होल्डिंग कैंप की बात की जा रही है तब एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। पुलिस की ओर से भी इन्हें कहा गया है, ये बता रहे हमें कि इस वजह से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है।
5: 12 मई को शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की गले मिलते हुए एक फोटो वायरल हुई थी, जिस पर हिमंत बिस्व सरमा ने लिखा था बुरे दिन। इसके आगे उन्होंने लिखा आप जानते हैं कौन और साथ में शुभेंदु अधिकारी को टैग कर दिया था। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी तुरंत जवाब दिया, उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कोई इनाम नहीं होगा।
6: आई हैव अ बॉर्डर कंस्टिट्यूएंसी, हु वांट्स टू लिव इन इंडिया ना? आई हैव कुश्तिया ऑन द अदर साइड एंड नदिया, द जीडीपी, द हेल्थ इंडिकेटर्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बांग्लादेश आर एक्चुअली बेटर। Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India.
0: देश में जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ को बेकार का हवा बताता है उसे महुआ मित्रा की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर बैठे इन घुसपैठियों को देखना चाहिए, जिन्हें अक्सर कई राजनीतिक दल और नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए झुठलाते हैं।
3: हाकिमपुर चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट के उस पार बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सातखीरा डिस्ट्रिक्ट है और सातखीरा डिस्ट्रिक्ट में इन्हें भेजा जाएगा। और जो प्रोसेस ये बताया गया है कि अमूमन जितने लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ सिलेक्ट किया जाता है, उनके दस्तावेज लिया जाता है, बांग्लादेश के जो दस्तावेज रहे हैं।
0: याद करिए बंगाल में जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तब भी ऐसे ही बॉर्डर पर लोग बांग्लादेश जाना शुरू हुए थे।
7: ये लॉकडाउन बहुत आगे मैंने आठली लॉकडाउन शुरू हुई आर जाति बारे सुराय होते
8: कौन
7: ये तुम्हारा बेलाफल

0: बल्कि शपथ लेने के 20 दिन से कम वक्त में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया और बांग्लादेशी घुसपैठिए डर के मारे अब खुद ही बंगाल छोड़ने लगे।
1: बहुत कष्ट करेछे, खूब कष्ट करेछे।
2: দিনে আসা যায়, রাতেও আসা
3: যায়। রাতেও আসা যায়। তো এখানে কি জন্য এসেছে?
2: কাজ করার জন্য।
3: কাজ করার জন্য।
0: তো বাংলাদেশ থেকে ঘুসপাঠ করানে কা বঙ্গাল মে অবৈধ কারোবার চলতা জো 9000 রুপে কি রিশওয়াত লেকার বাংলাদেশিয়ো কি বঙ্গাল মে এন্ট্রি করবা দেতা। সবসে বড়ি বাত ইয়ে কি বাংলাদেশ সে আনে ওয়ালে ইয়ে লোগ ইয়া তো কাম কি তলাশ মে ভারত আতে হ্যায় ইয়া ফির ইলাজ করবানে কি, মতলব ভারত মে বাংলাদেশ কে লোগো কো বেহতর সুবিধা আর ভবিষ্য দিখতা হ্যায় জো উনহে ঘুসপাঠ কে লিয়ে প্রেরিত করতা হ্যায়, জো উস দাবে কে বিলকুল উল্টা হ্যায় कि भारत में कोई क्यों आना चाहेगा। लेकिन इस मामले में सबसे खबरदार करने वाली बात यह है कि भारत में घुसपैठ करना आसान है और घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजना थोड़ा कठिन।
4: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए 3D नीति अपनाई है, यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। और इसी के तहत अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर में एक बार फिर सैकड़ों तादाद में लोग जो अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत प्रवेश किए थे उनकी भीड़ नजर आ रही है। एक के बाद एक लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा।
5: पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बदलते जनसांख्यिकी का परिवर्तन को लेकर खबरदार कर दिया है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद इसे रोकने के लिए जहां बांग्लादेश की सीमा पर बाढ़ लगाई जा रही है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में घुसपैठ रोकने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है।
6: बॉर्डर के सुरक्षित करा, अभारतीय देर दर्जा देखिए दा, घुसपैठिया हटाओ, जाओ जहां से आया था उस रास्ता से जाओ वापस, जाओ बांग्लादेश।
0: पश्चिम बंगाल जीतने के बाद बीजेपी सरकार अब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए चक्रव्यूह रच चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की योजना पूरे देश में घुसपैठ रोकने के साथ डेमोग्राफी बदलने का सपना देखने वालों के मंसूबे ध्वस्त करने की है।
7: कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें।
0: तो जो लोग भारत की सीमाओं में चोरी छिपे घुसकर फर्जी दस्तावेज बनवाकर इस देश की डेमोग्राफी बदलने का सपना देख रहे थे, उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जिस महामिशन का संकल्प लिया,
8: घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने उस पर मुहर लगाते हुए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज के गठन का ऐलान कर दिया है, जो पूरे भारत में अवैध प्रवास और दूसरे कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन का अध्ययन करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सीमा को स्मार्ट बॉर्डर बनाने की है, जहां से घुसपैठ करना असंभव होगा।
7: ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।

0: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 1647 किलोमीटर पर ही बाड़ लगाई गई है। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बीएसएफ को तारबंदी के लिए जमीन सौंप दी गई, जिसने बॉर्डर पर अपना काम भी शुरू कर दिया। बीजेपी अपने ट्रिपल डी फॉर्मूले यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट को सख्ती से लागू कर रही है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में सिर्फ मिजोरम में बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह की योजना बीजेपी शासित राज्यों में बांग्लादेश से घुसपैठ करीब करीब खत्म करने के लिए बीएसएफ को स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल करके घुसपैठ के हर रूट को खत्म करने का मंत्र दिया गया है।
1: अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, इस सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है।
0: घुसपैठ रोकने के इसी प्लान पर अमित शाह त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बीच होल्डिंग सेंटर बनने के बाद जिस तरह से खलबली देखी जा रही है, उसने भारत में घुसपैठ की समस्या और चुनौती को एक बार फिर सबके सामने लाने का काम किया है।
2: सत्ता बंगाल में लंबे वक्त तक टीएमसी की रही, तो दावा यह कि गुंडागर्दी की घुसपैठ आम लोगों को परेशान करती रही, जहां पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर को टीएमसी के कब्जे से नहीं छुड़ा पाया करते थे, और बीजेपी राज आने पर टीएमसी के कब्जे से अपना ऑफिस कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आजाद करवाया है।
0: पूजा करते हुए घड़ियाल बजाते इस चेहरे को देखिए, नाम विश्वजीत मंडल, दक्षिण 24 परगना की कैनिंग पूर्व विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता 5 साल बाद अपने घर में वापस आ पाए? वो घर जिसे 2021 विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी नेता के डर से विश्वजीत मंडल को दावा है छोड़ना पड़ा। वो घर जो दावा है कि टीएमसी के नेता शौकत मुल्ला के कहने पर इसलिए बुलडोजर चलवाकर कई जगहों पर गिरवा दिया गया क्योंकि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता विश्वजीत मंडल रहते थे। दावा है कि टीएमसी के नेता यहां चाहते थे कि बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं के घर तोड़कर इतना डरा दो कि कभी यहां बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई ना बचे। लेकिन बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के बाद, शुभेंदु सरकार आने के बाद हिम्मत वापस मिली तो बीजेपी के नेता विकास सरदार के साथ विश्वजीत मंडल अपने उस घर में वापस लौटे, पूजा पाठ किया, लोगों को दोबारा गृह प्रवेश का प्रसाद खिलाया।
3: सारा पश्चिमबंगाल मानुष तादेर जीवने बाँचार एकटा स्वाद पेयेछे যে আমরা অন্তত হিন্দু মানুষ এই পশ্চিমবঙ্গে বাস করতে পারবো। এতদিন আমাদের কোনো মানুষ পাশে দাঁড়ায়নি। অ্যাকচুয়ালি এখানে বোমা বন্দুকের রাজত্ব হয়, যেটা শৌকত মোল্লাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু এনআইএ তদন্ত করে যদি এখন এই অস্ত্র উদ্ধার করা হয়, হাজার হাজার অস্ত্র এখান থেকে উদ্ধার হবে।
0: বিশ্বজিৎ মন্ডল কে ইস বাত কে সবুত হ্যায় কি হর বার বঙ্গাল মে চুনাও কে বাদ জো হিংসা হোতি রহি উসমে টিএমসি কে লোক চুন চুন কর নিশানা বানাতে থে। लेकिन अब की बार न केवल उस हिंसा पर रोक लगी है बल्कि सत्ता बदलने पर साहस जुटाकर लोग घर भी लौटने लगे। वहीं बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कहीं लेफ्ट और टीएमसी राज की तरह कटमनी का चलन न चलने लगे, इसलिए खुद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चेतावनी दे रहे हैं।
4: बहुत लोग 4 घंटा में भगवा गुलाल लगा लिया, हाथ में बीजेपी का झंडा उठा लिया और कारखाना के दरवाजे में पहुंच गया। तो इसको चिन्हित करने का काम सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी है। जो पैसा मांगेगा मान लीजिएगा, जो यूनियन करेगा आपका कंपनी में जाकर, हम आपको बोलकर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नाम पर कोई सिंडिकेट नहीं है, किसी को पैसा मत दीजिए।
2: राजस्थान में कोटा के सरकारी अस्पताल में नकली ऑक्सीटोसिन दवा से जुड़े मामले में अब पता यह चला है कि यह नकली दवा राजस्थान के कोटा के अलावा दिल्ली, इंदौर और यूपी के गोंडा में भी सप्लाई की गई है, जिसकी सूचना आगे दे दी गई है। चिंता पैदा करने वाला सवाल इसलिए क्योंकि 4 मई से 17 मई के बीच राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पताल में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई थी जिन्हें ये नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था।
5: आपकी बच्ची होती तो क्या करते आपकी बच्ची, आपकी बहू होती तो क्या करते आप?
0: परिवार रोते रहे, मौतें होती रही। माए खौफ में जीती रही, हेल्थ डिपार्टमेंट सोता रहा। आंसू दर आंसू गर्भवती माँ बच्चों को जन्म देकर दम तोड़ती रही, परिवार बिलखता रहा। धीरे धीरे आंदोलन बनने लगा कि आखिर गर्भवती महिलाओं की जान क्यों जा रही है। गर्भवती पायल ने 4 मई को दोपहर 12:58 पर दम तोड़ दिया। गर्भवती ज्योति ने 4 मई को ही दोपहर 1:35 पर अंतिम सांस ली। गर्भवती पिंकी महावर की मौत 7 मई को दोपहर 3 बजे हुई। गर्भवती प्रिया महावर की जान 8 मई सुबह 8 बजे चली गई। शिरीन ने 17 मई दोपहर 3 बजे दम तोड़ा। राजस्थान के एक ही जिले कोटा में 4 मई से 17 मई 14 दिन में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई। कभी कहा गया किडनी फेल हो गई, कहीं कहा गया हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल यानी दोनों सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की मौत एक बड़ा सवाल बन गई। महिलाओं की जान जाती रही और तब जाकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर नींद से आधे जागे अस्पताल का दौरा करके खाना पूर्ति कराए, पर अब जाकर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के भीतर मौत की अंधेर नगरी से खबरदार होना जरूरी है, क्योंकि जहां कोटा के सरकारी अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक गर्भवती महिलाओं की मौत पर पर्दा डालता रहा, वहां दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के कहने पर हुई दवाओं की जांच से डराने वाला सच सामने आया। सच गर्भवती महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन लगने का जिसमें दवा का कंटेंट 0 निकला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को लगाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जांच रिपोर्ट का पन्ना है। इस पन्ने पर साफ साफ लिखा है कि अमृतसर की जैक्सन लेबोरेटरीज की तरफ से बनाया गया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसकी जांच में ये नमूना आईपी के अनुरूप नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं। इसी रिपोर्ट में कहा जाता है कि ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गंभीर रूप से अवमानक है, यानी मानक के विपरीत। मतलब जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डिलीवरी के दौरान प्रसव प्रक्रिया को सुगम बनाने, लेबर पेन में आगे की प्रक्रिया को सरल करने और डिलीवरी के बाद होने वाले खून के बहाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उस इंजेक्शन में वो ड्रग ही नहीं थी, उसका कंटेंट 0 था। तो क्या इसी वजह से कोटा में 5 गर्भवती महिलाओं की जान चली गई? आज तक ने सीधे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से ही सवाल किया।
6: कोटा में जो 5 प्रसूताओं की जो मौत हुई थी, उसका जो सैंपल कोलकाता भेजा गया था, वो ड्रग्स में फेल हो चुका है।
7: अभी ऐसा कि पूरे ड्रग्स इंजेक्टेबल्स जो 20% दवाइयां जो हमारा मेडिकल कॉलेज ने खरीदे हैं, वो और हमारे जो RMSCL की दवाइयों की उनकी पूरी जांच करके पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था। इसमें बेसिकली क्या है कि कोई इतनी जल्दी 7 घंटों के अंदर कोई मौत के कगार पे आ जाए और उसके 7-8 घंटे में डेथ हो जाए, ये कोई चीज है जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है।
6: प्रथम दृष्टया कोई लापरवाही लग रही है, बड़ी कार्रवाई एक्शन की जरूरत है?
7: देखिए ऐसा है, बड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर सब तथ्य सामने आ जाए उसके पश्चात मैं उसका जवाब।
0: मंत्री जी देखिए अब आप, यही वो जांच रिपोर्ट है जो राजस्थान के खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण विभाग ने जारी की, लेकिन शर्मनाक हालत है। 5-5 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई और जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उन्हें लगा वो दवा ही पूरी नकली निकली, मतलब उसमें ऑक्सीटोसिन का कंटेंट था ही नहीं। रिपोर्ट सबके सामने है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं जांच रिपोर्ट आने दीजिए।
7: पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था।
0: 22 दिन बीत चुके हैं, राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग अब तक मौत का कारण खुलकर बोल नहीं पा रहा। मंत्री जांच रिपोर्ट का इंतजार करा रहे हैं, जबकि जांच करने वाले उन्हीं के राज में दवा का सच बता देते हैं।
8: कोटा में लास्ट 15-20 डेज बैक हमने जो सैंपल्स अराउंड 20 अलग अलग टाइप के मेडिसिन लिए थे, उसमें 19 वेर ऑल स्टैंडर्ड। एक मेडिसिन जो टोसिन है, जैक्सन फार्मा का है, उसमें जो टोसिन जो ब्रांड नेम है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन करके दवा होना चाहिए, तो उस में दवा था नहीं, उसका कंटेंट जीरो निकला है।
0: जिस नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में दवा के नाम पर कुछ था ही नहीं, वो कोटा में स्थानीय स्तर पर ही खरीदी गई थी। 10,000 इंजेक्शन जेके लोन अस्पताल गए और 2,479 इंजेक्शन न्यू मेडिकल कॉलेज।
9: जो सैंपलिंग जितनी दवाइयों की गई थी उसमें से ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन का एक बैच, उसमें एक्टिव कंटेंट नहीं मिला है जांच में, तो उसके लिए हमने उच्च स्तर पर कार्रवाई के लिए लिख भी दिया है। ये मेडिकल कॉलेज कोटा की आरसी पे हम लोगों ने परचेज ऑर्डर दिया था।
10: प्रिंसिपल होने का अर्थ कतई ये नहीं है कि मैं किसी के क्लिनिकल जजमेंट पे कोई क्वेश्चन करूं।
11: नहीं सर, आपकी बात सही है, पर जो
10: मैं अपना जवाब दे चुका हूं।
11: जो महिलाओं को ये दिक्कत हुई सर, तो इसमें डॉक्टरों को क्यों नहीं पता लगा इनको कि
10: ये डॉक्टर बता सकता है, मैं नहीं बता सकता।
0: मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं मैं क्या बताऊं, अधीक्षक कहते हैं दवा तो मेडिकल कॉलेज की मंजूरी से खरीदी, और स्वास्थ्य मंत्री 3 हफ्ते बाद भी जांच रिपोर्ट का इंतजार करके मामला लटकाते हैं।
12: आखिर कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में ये नकली दवा पहुंची कैसे? इमरजेंसी खरीद के नाम पर सब स्टैंडर्ड दवाइयों के खरीद का बड़ा रैकेट सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। दवा खरीदने वाले अधीक्षक कह रहे हैं कि अगर ये दवा नकली थी तो फिर डॉक्टर ने दूसरी दवा का प्रयोग क्यों नहीं किया। डॉक्टर का कहना है कि दवा नकली है, यह पता कैसे चलेगा जो दूसरी दवाइयों का प्रयोग करेंगे। अब बड़ा सवाल है कि जब इन दवाइयों से मौत नहीं हुई है तो फिर मौतें कैसे हुई है, इसके बारे में आखिर कौन बताएगा।
0: राजस्थान सरकार ने टोसिन इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी जैक्सन लेबोरेटरीज के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराने का आदेश दिए, जिसके मालिक कहते हैं कि कमी इंजेक्शन में नहीं है, राजस्थान के सरकारी विभाग में है।
13: वो तो स्टोरेज के ऊपर भी डिपेंडेंट है, स्टोरेज जब मतलब पे गलत हो जाएगी तो इसका इफेक्ट होगा। आज हम किसी भी दवा को अगर 1 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं तो उसके कंटेंट्स खत्म हो जाते हैं, तो ये ऐसी ही कोई नेग्लिजेंस हुई है।
0: एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालकर जांच रिपोर्ट आने दीजिए बताकर चेहरा बचाने का काम हो रहा है, लेकिन इस सच को तो कोई नहीं झुठला सकता कि नकली बेकार जो किसी के काम के लायक इंजेक्शन नहीं था वो गर्भवती महिलाओं को लगा जिनकी मौत बाद में हुई है। अब जरूरी है कि इन्हीं चेहरों के साथ जांच आगे की जाए। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
2: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

जंग से जूझती दुनिया के हालात पर क्वेड में मंथन, सुपर शक्तियों के सामने भारत की दो टूक, हर हाल में आतंक का अंत जरूरी, चारों देशों का साझा बयान, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता जरूरी। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृहमंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। कर्नाटक के सीएम हो सकते हैं डीके शिव कुमार, सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धरमैया, दिल्ली में आलाकमान ने दोनों के साथ की थी बैठक। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सिलीगुड़ी साइबर थाने में केस, पिछले साल सनातन धर्म पर की थी अभद्र टिप्पणी। और ओएसएम पोर्टल हैक होने के दावे को सीबीएसई ने खारिज किया, कहा असली मूल्यांकन का कोर्ट का यूआरएल अलग है, छात्रों के अंक या अन्य डेटा पोर्टल पर नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, खासतौर से घुसपैठ को लेकर। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ पहुंची थी, वैसी ही भीड़ बांग्लादेश की सीमा से सटे बॉर्डर पर वापसी का इंतजार कर रही है। घुसपैठियों की इस चिंता को शुभेंदु ने यह कहकर और ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से भगाकर ही रहेंगे।

0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास इन चेहरों को गौर से देखते जाइए। ये लोग वो घुसपैठिए हैं जो जल्द से जल्द अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने राज्य में रहने वाले हर घुसपैठिए को ये कहकर खबरदार कर दिया, भागो जल्दी भागो।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये।
0: तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाग घुसपैठिया भाग। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की इस दो टूक ने राज्य में छिपे घुसपैठियों में खलबली मचा दी। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पर पहुंच गए। सवाल है कि क्या बांग्लादेश इन्हें वापस लेगा?
1: बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, तो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेंगे। तो ये सब बांग्लादेशी है तो ले लेना चाहिए।
0: तो शुभेंदु अधिकारी को भरोसा है कि बांग्लादेश इन सब घुसपैठियों को वापस ले लेगा। क्या वाकई में बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना इतना आसान होगा?
2: पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया।
0: शुभेंदु सरकार घुसपैठियों को चुन चुन कर राज्य से निकालना चाहती है। इसके लिए मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर खोला गया। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर मिलाकर हिरासत में रखा गया। इनमें 3 महिलाएं, 6 नाबालिग शामिल। जैसे ही खबर राज्य में छिप कर रहने वाले घुसपैठियों तक पहुंची, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया, बांग्लादेश की सीमा के पास पहुंचने लगे।
3: ये वही हकीमपुर है जहां साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे। SIR जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी, तो अब लोग यहां पर काफी तादाद में यहां पहुंचे थे। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे वो यहां पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाएं।
0: शुभेंदु सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की रही है। इसी सिलसिले में मुर्शिदाबाद में प्रशासन ने एक साथ 3 लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा। इन 3 बांग्लादेशी नागरिकों ने मुर्शिदाबाद के लालगोला और भगवानगोला सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। ऐसा ही एक घुसपैठिया आज तक संवाददाता तापस सेन गुप्ता को हकीमपुर बॉर्डर में मिलता है, जिसने खुद कबूल किया कि वो पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहा था।
3: आप हिंदी बोल सकते हैं?
4: ना, बांग्ला में।
3: अच्छा, अपना नाम की?
4: असद अली।
3: असद अली, अपना बाड़ी को था?
4: नोला दृष्टि
3: जशोर। कत बचर आगे?
4: 5 बचर आगे।
3: 5 बचर आगे की जन्म
4: डाक्তার দেখাইছে?
3: ডাক্তার দেখানোর জন্য এসেছিলেন। আপনি কি পাসপোর্টে এসেছিলেন?
4: না, আমি ব্ল্যাক এসেছিলাম।
3: কিসে ব্ল্যাকে এসেছিলেন?
4: জি,
3: মানে দালালের মারফত?
4: না, একা চলে
3: এসেছি।
4: একাই এসেছি? তখন দালাল ছিল।
3: আচ্ছা,
4: একা চলে এসেছি।
3: একা হেঁটে চলে এসেছি? কোনো কারো কি কোনো টাকা দিতে হয়নি?
4: না।
3: আচ্ছা, তারপর কতদিন ধরে চিকিৎসা
4: চালাচ্ছে? দেখেন এখানে লেখা আছে 6 বছর।
3: আচ্ছা, এটা
0: তো আজ তক সে বাতচিত মে বাংলাদেশ থেকে আয় ঘুসপাইঠিয়ে নে খুদ বাতায়া কি ও পিছলে 5 সাল সে পশ্চিম বঙ্গাল মে রহতা হ্যায়, ও ভি বিনা পাসপোর্ট কে अवैध रूप से बड़े आराम से बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ करने में कामयाब रहा और पिछले 5 साल में सुरक्षा एजेंसियों की उस पर नजर भी नहीं पड़ी।
3: ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से और ये देख सकते कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपने जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 जून 2024 और तब से वो यहाँ पर है। कह रहे हैं कि 5 साल थे और यहाँ आप देख सकते हैं कि एटा कौन हॉस्पिटल? CNM। अच्छा, चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये कोलकाता के बेनियापुकुर में एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर वो इस अपना मेडिकल इलाज करवाने के लिए आए थे।
0: तो सोचिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में असद अली नाम का बांग्लादेशी घुसपैठिया पांच साल से रहता है, जो बांग्लादेश के जैसोर शहर के नाला दृष्टि का रहने वाला है, जो कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन असद अली जैसे घुसपैठियों को जैसे ही पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर खुलने की खबर लगती है, ये भागकर वापस बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच जाते हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, ये दामाद है।
5: शुभेंदु
1: जल्दी भागो,
5: शुभेंदु
1: भागो नहीं तो जो करना है सरकार करेगा।
0: शुभेंदु अधिकारी सरकार की योजना बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ को सौंपने की है। शुभेंदु कह भी चुके हैं कि वो घुसपैठियों को अदालत नहीं बल्कि सीधे बॉर्डर ले जाएंगे ताकि डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू की जा सके। बंगाल में नई सरकार के तेवरों का ही असर है कि राज्य में इधर उधर छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद सीमा पर पहुंच रहे हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
3: यहां आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ज्यादातर लोग जिनसे हम बात कर रहे थे वो 5-6 साल या 8 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन हर किसी का एक अलग कहानी है। लेकिन अगर दूसरे छोर से देखा जाए कि अवैध तरीके से रात के अंधेरे में वो भारत में प्रवेश किए थे, सवाल ये है कि वो इस तरीके से प्रवेश किए, सालों साल वो पश्चिम बंगाल में रहे और बिना डिटेक्शन के, अब जब होल्डिंग कैंप की बात की जा रही है तब एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। पुलिस की ओर से भी इन्हें कहा गया है, ये बता रहे हमें कि इस वजह से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है।
6: पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बदलते जनसांख्यिकी का परिवर्तन को लेकर खबरदार कर दिया है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद इसे रोकने के लिए जहां बांग्लादेश की सीमा पर बाढ़ लगाई जा रही है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में घुसपैठ रोकने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है।
2: बॉर्डर के सुरक्षित करा, अभारतीय देर दर्जा देखिए दा, घुसपैठिया हटाओ, जाओ जहां से आया था उस रास्ता से जाओ वापस, जाओ बांग्लादेश।
0: पश्चिम बंगाल जीतने के बाद बीजेपी सरकार अब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए चक्रव्यूह रच चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की योजना पूरे देश में घुसपैठ रोकने के साथ डेमोग्राफी बदलने का सपना देखने वालों के मंसूबे ध्वस्त करने की है।
7: कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें।
0: तो जो लोग भारत की सीमाओं में चोरी छिपे घुसकर फर्जी दस्तावेज बनवाकर इस देश की डेमोग्राफी बदलने का सपना देख रहे थे, उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जिस महामिशन का संकल्प लिया,
8: घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे, घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने उस पर मुहर लगाते हुए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज के गठन का ऐलान कर दिया है, जो पूरे भारत में अवैध प्रवास और दूसरे कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन का अध्ययन करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सीमा को स्मार्ट बॉर्डर बनाने की है, जहां से घुसपैठ करना असंभव होगा।
7: ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए,
5: ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
0: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 1647 किलोमीटर पर ही बाड़ लगाई गई है। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बीएसएफ को तारबंदी के लिए जमीन सौंप दी गई, जिसने बॉर्डर पर अपना काम भी शुरू कर दिया। बीजेपी अपने ट्रिपल डी फॉर्मूले यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट को सख्ती से लागू कर रही है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में सिर्फ मिजोरम में बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह की योजना बीजेपी शासित राज्यों में बांग्लादेश से घुसपैठ करीब करीब खत्म करने के लिए बीएसएफ को स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल करके घुसपैठ के हर रूट को खत्म करने का मंत्र दिया गया है।
5: अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, इस सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है।
0: घुसपैठ रोकने के इसी प्लान पर अमित शाह त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बीच होल्डिंग सेंटर बनने के बाद जिस तरह से खलबली देखी जा रही है, उसने भारत में घुसपैठ की समस्या और चुनौती को एक बार फिर सबके सामने लाने का काम किया है।
6: सत्ता बंगाल में लंबे वक्त तक टीएमसी की रही, तो दावा यह कि गुंडागर्दी की घुसपैठ आम लोगों को परेशान करती रही, जहां पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर को टीएमसी के कब्जे से नहीं छुड़ा पाया करते थे और बीजेपी राज आने पर टीएमसी के कब्जे से अपना ऑफिस कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आजाद करवाया है।
0: पूजा करते हुए घड़ियाल बजाते इस चेहरे को देखिए, नाम विश्वजीत मंडल, दक्षिण 24 परगना की कैनिंग पूर्व विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता 5 साल बाद अपने घर में वापस आ पाए? वो घर जिसे 2021 विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी नेता के डर से विश्वजीत मंडल को दावा है छोड़ना पड़ा। वो घर जो दावा है कि टीएमसी के नेता शौकत मुल्ला के कहने पर इसलिए बुलडोजर चलवाकर कई जगहों पर गिरवा दिया गया क्योंकि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता विश्वजीत मंडल रहते थे। दावा है कि टीएमसी के नेता यहां चाहते थे कि बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं के घर तोड़कर इतना डरा दो कि कभी यहां बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई ना बचे। लेकिन बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के बाद, शुभेंदु सरकार आने के बाद हिम्मत वापस मिली तो बीजेपी के नेता विकास सरदार के साथ विश्वजीत मंडल अपने उस घर में वापस लौटे, पूजा पाठ किया, लोगों को दोबारा गृह प्रवेश का प्रसाद खिलाया।
9: सारा पश्चिमबंगाल मानुष तादेर जीवने बाँचार एकटा स्वाद पेयेछे, যে আমরা অন্তত হিন্দু মানুষ এই পশ্চিমবঙ্গে বাস করতে পারবো। এতদিন আমাদের কোনো মানুষ পাশে দাঁড়ায়নি, অ্যাকচুয়ালি এখানে বোমা বন্দুকের রাজত্ব হয়, যেটা শৌকত মোল্লাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু এনআইএ তদন্ত করে যদি এখন এই অস্ত্র উদ্ধার করা হয়, হাজার হাজার অস্ত্র এখান থেকে উদ্ধার হবে।
0: বিশ্বজিৎ মন্ডল কে এস বাত কে সবুত হ্যায় কি হর বার বঙ্গাল মে চুনাও কে বাদ জো হিংসা হোতি রহি উসমে টিএমসি কে লোগ চুন চুন কর নিশানা বানাতে থে। लेकिन अब की बार न केवल उस हिंसा पर रोक लगी है बल्कि सत्ता बदलने पर साहस जुटाकर लोग घर भी लौटने लगे। वहीं बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कहीं लेफ्ट और टीएमसी राज की तरह कटमनी का चलन न चलने लगे, इसलिए खुद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चेतावनी दे रहे हैं।
10: बहुत लोग 4 घंटा में भगवा गुलाल लगा लिया, हाथ में बीजेपी का झंडा उठा लिया और कारखाना के दरवाजे में पहुंच गया, तो इसको चिन्हित करने का काम सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी है। जो पैसा मांगेगा मान लीजिएगा, जो यूनियन करेगा आपका कंपनी में जाकर, हम आपको बोलकर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नाम पर कोई सिंडिकेट नहीं है, किसी को पैसा मत दीजिए।
6: राजस्थान में कोटा के सरकारी अस्पताल में नकली ऑक्सीटोसिन दवा से जुड़े मामले में अब पता यह चला है कि यह नकली दवा राजस्थान के कोटा के अलावा दिल्ली, इंदौर और यूपी के गोंडा में भी सप्लाई की गई है, जिसकी सूचना आगे दे दी गई है। चिंता पैदा करने वाला सवाल इसलिए क्योंकि 4 मई से 17 मई के बीच राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पताल में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई थी, जिन्हें ये नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था।
11: आपकी बच्ची होती तो क्या करते आप? आपकी बच्ची, आपकी बहू होती तो क्या करते आप?
0: परिवार रोते रहे, मौतें होती रही। माएं खौफ में जीती रही, हेल्थ डिपार्टमेंट सोता रहा। आंसू दर आंसू गर्भवती मां बच्चों को जन्म देकर दम तोड़ती रही, परिवार बिलखता रहा। धीरे धीरे आंदोलन मनने लगा कि आखिर गर्भवती महिलाओं की जान क्यों जा रही है। गर्भवती पायल ने 4 मई को दोपहर 12:58 पर दम तोड़ दिया। गर्भवती ज्योति ने 4 मई को ही दोपहर 1:35 पर अंतिम सांस ली। गर्भवती पिंकी महावर की मौत 7 मई को दोपहर 3 हुई। गर्भवती प्रिया महावर की जान 8 मई सुबह 8 चली गई। शिरीन ने 17 मई दोपहर 3 दम तोड़ा। राजस्थान के एक ही जिले कोटा में 4 मई से 17 मई 14 दिन में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई। कभी कहा गया किडनी फेल हो गई, कहीं कहा गया हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल यानी दोनों सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की मौत एक बड़ा सवाल बन गई। महिलाओं की जान जाती रही और तब जाकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर नींद से आधे जागे अस्पताल का दौरा करके खाना पूर्ति कराए, पर अब जाकर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के भीतर मौत की अंधेर नगरी से खबरदार होना जरूरी है, क्योंकि जहां कोटा के सरकारी अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक गर्भवती महिलाओं की मौत पर पर्दा डालता रहा, वहां दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के कहने पर हुई दवाओं की जांच से डराने वाला सच सामने आया। सच गर्भवती महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन लगने का जिसमें दवा का कंटेंट 0 निकला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को लगाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जांच रिपोर्ट का पन्ना है। इस पन्ने पर साफ साफ लिखा है कि अमृतसर की जैक्सन लेबोरेटरीज की तरफ से बनाया गया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसकी जांच में ये नमूना आईपी के अनुरूप नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं। इसी रिपोर्ट में कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गंभीर रूप से अवमानक है, यानी मानक के विपरीत। मतलब जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डिलीवरी के दौरान प्रसव प्रक्रिया को सुगम बनाने, लेबर पेन में आगे की प्रक्रिया को सरल करने और डिलीवरी के बाद होने वाले खून के बहाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उस इंजेक्शन में वो ड्रग ही नहीं थी, उसका कंटेंट 0 था। तो क्या इसी वजह से कोटा में 5 गर्भवती महिलाओं की जान चली गई? आज तक ने सीधे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से ही सवाल किया।
12: कोटा में जो 5 प्रसूताओं की जो मौत हुई थी, उसका जो सैंपल कोलकाता भेजा गया था, वो ड्रग्स में फेल हो चुका है।
13: अभी ऐसा कि पूरे ड्रग्स इंजेक्टेबल्स जो 20% दवाइयां जो हमारा मेडिकल कॉलेज ने खरीदे हैं, वो और हमारे जो RMSCL की दवाइयों की उनकी पूरी जांच करके पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था। इसमें बेसिकली क्या है कि कोई इतनी जल्दी 7 के अंदर कोई मौत के कगार पे आ जाए और उसके 7-8 में डेथ हो जाए, ये कोई चीज है जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है।
12: प्रथम दृष्टया कोई लापरवाही लग रही है, बड़ी कार्रवाई एक्शन की जरूरत है?
13: देखिए ऐसा है, बड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर सब तथ्य सामने आ जाए उसके पश्चात मैं उसका जवाब।
0: मंत्री जी देखिए, अब आप यही वो जांच रिपोर्ट है जो राजस्थान के खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण विभाग ने जारी की, लेकिन शर्मनाक हालत है। 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई और जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उन्हें लगा वो दवा ही पूरी नकली निकली, मतलब उसमें ऑक्सीटोसिन का कंटेंट था ही नहीं। रिपोर्ट सबके सामने है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं जांच रिपोर्ट आने दीजिए।
13: पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था।
0: 22 दिन बीत चुके हैं, राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग अब तक मौत का कारण खुलकर बोल नहीं पा रहा। मंत्री जांच रिपोर्ट का इंतजार करा रहे हैं, जबकि जांच करने वाले उन्हीं के राज में दवा का सच बता देते हैं।
14: कोटा में लास्ट 15-20 डेज बैक हमने जो सैंपल्स अराउंड 20 अलग अलग टाइप के मेडिसिन लिए थे, उसमें 19 वेर ऑल स्टैंडर्ड। एक मेडिसिन जो टोसिन है, जैक्सन फार्मा का है, उसमें जो टोसिन जो ब्रांड नेम है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन करके दवा होना चाहिए, तो उस में दवा था नहीं, उसका कंटेंट जीरो निकला है।
0: जिस नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में दवा के नाम पर कुछ था ही नहीं, वो कोटा में स्थानीय स्तर पर ही खरीदी गई थी। 10,000 इंजेक्शन जेके लोन अस्पताल गए और 2,479 इंजेक्शन न्यू मेडिकल कॉलेज।
15: जो सैंपलिंग जितनी दवाइयों की गई थी उसमें से ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन का एक बेच, उसमें एक्टिव कंटेंट नहीं मिला है जांच में, तो उसके लिए हमने उचित स्तर पर कार्रवाई के लिए लिख भी दिया है। ये मेडिकल कॉलेज कोटा की आरसी पे हम लोगों ने परचेज ऑर्डर दिया था।
16: प्रिंसिपल होने का अर्थ कतई ये नहीं है कि मैं किसी के क्लिनिकल जजमेंट पे कोई क्वेश्चन करूं।
17: नहीं सर, आपकी बात सही है, पर जो
16: मैं अपना जवाब दे चुका हूं।
17: जो महिलाओं को ये दिक्कत हुई सर, तो इसमें डॉक्टरों को क्यों नहीं पता लगा इनको कि
16: ये डॉक्टर बता सकता है, मैं नहीं बता सकता।
6: केदारनाथ में दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु हर मुसीबत सहते हुए झेलकर पहुंच रहे हैं, लेकिन दावा यह है कि आज से 12 घंटे लाइन में खड़े होकर भी उन्हें दर्शन नहीं हो पा रहे। इसकी वजह श्रद्धालुओं के मुताबिक वीआईपी लाइन की दीवार है, जिसे तोड़ने के बजाय प्रशासन उसे और ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है।
18: एक बजे से लाइन में लगे हुए हैं, ना कोई व्यवस्था है, ना लाइन चल रही है। 8 बजे लाइन चलनी चालू हुई है,
19: पर हम 1 बजे रात से ही लाइन लगे हैं। 1 बजे रात से, जबकि हमको अभी मन के चलिए अभी टाइम हो रहा है, अभी हमको दर्शन हुआ है, ठीक है।
0: ये उस आम आदमी का दर्द है जो भक्ति के दम पर केदारनाथ तो पहुंच गया, लेकिन वहां प्रशासन की बद इंतजामी ने इसका मन खट्टा कर दिया। दुर्भाग्य ये कि अकेले नहीं।
18: और मैं नोएडा से आया हूँ और मैंने यहाँ पे मतलब की रात में 1 बजे से दर्शन की लाइन में लगा था और सुबह के 8 बजे तक लाइन में लगा था, लेकिन लाइन में 1% ली नहीं है। और पुलिस वाले बोलते हैं कि अभी भी ये ऐसे ही रहेगी, तो इसलिए मैं हम लोगों ने बाहर आ गया उसको छोड़ के, अब दोबारा से वो अंदर जाने ही
20: नहीं। मैनेजमेंट कैसा आपका?
18: मैनेजमेंट एक बकवास है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। हम लोग बोल रहे धक्का मुक्की हो गया तो पुलिस वाले कुछ कर नहीं है, वो रिएक्शन नहीं ले।
0: केदारनाथ में भक्तों के इसी सैलाब के दम पर आने वाले दिनों में अपनी कामयाबी का डंका सत्ताधारी सरकार और व्यवस्था पीटती दिखेगी, लेकिन उस कहानी में जयपुर के श्याम खंडेलवाल के साथ हुई बदसलूकी का जिक्र नहीं होगा, जिनसे पुलिस वालों ने धक्का मुक्की की और गाली गलौज तक की।
21: समस्या यही है, बुजुर्गों को भी गालियां निकाल के धक्के दे रहे थे, औरतों को धक्के मारे थे बदतमीजी से।
22: इतने बुजुर्ग हैं, यहाँ कहा जाता है कि 60 साल से ऊपर वालों के लिए दर्शन।
21: अरे उन्होंने कहा कोई वीआईपी नहीं है सब, मतलब कुछ बद्दी बद्दी गालियां बोली उन्होंने।
0: उत्तराखंड सरकार ने पूरे देश को केदारनाथ आने का न्योता तो दिया।
23: श्रद्धालु आ रहे हैं, हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक प्रकार से उनके दर्शन एक प्रकार से आना जाना हो सुव्यवस्थित, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। बहुत अच्छी सबके दर्शन भी हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं।
0: भक्त भी देश के कोने कोने से वहां पहुंचे, लेकिन सरकारी बद इंतजामी की वजह से आम आदमी क्या यहां भी पीछे छूटा? दर्शन करने में उसके पसीने छूट गए, अगर कुछ याद रह गया तो प्रशासन की नाकामी और लापरवाही।
18: बारिश से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है, आने जाने के लिए भी ऐसे बदमाशी भी करते हैं, रास्ते में शैतानी करते हैं घोड़ो कच्चर वाले। एक मित्र था कल, उसके साथ भैरव ना, मतलब कि लैट्रिन बाथरूम कैसी कोई व्यवस्था, एक एक घंटे बाथरूम करने के लिए एक एक घंटे रुकना पड़ता है यहाँ पे।
24: लगे थे लोग सुबह 3 बजे उठ करके 4 बजे से लाइन में लगे हैं, अभी 12:30 बज गया, अभी तक नंबर नहीं आया, अभी मंदिर बंद हो गया।
0: केदारनाथ में महीने भर के अंदर 9 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके, पहले कभी इतने श्रद्धालु दर्शन करने नहीं पहुंचे। रविवार को 29,787 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। इस तरह केदारनाथ में श्रद्धालुओं को करीब 3 सेकंड दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन केदार मंदिर समिति की रिकॉर्ड कमाई के बावजूद बाबा के भक्तों की क्या बेकदरी होती है? भगवान के दरबार में भी आम और खास में क्या भेदभाव होता है? केदारनाथ का वीआईपी गेट देखिए, जहां दर्शनों के लिए कितनी भीड़ उमड़ी है, धक्का मुक्की हो रही है। बद इंतजामी का आलम ये कि हर कोई इससे बचने के लिए 2,500 रुपए की वीआईपी पर्ची कटवा कर अंदर जाना चाहता है। इसके बावजूद केदार बाबा के दर्शन करने की मुराद आम आदमी की पूरी नहीं हो पा रही।
1: यहाँ पे डंके ना कुछ सेवा पानी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बेचारी बूढ़ी माँ है मेरी, बहुत बेचारी परेशान है,
2: चक्कर आ रहे
1: यहाँ कुछ भी नहीं है। सही का प्रशासन कुछ नहीं है,
2: कमी है, बहुत ज्यादा बड़ी है।
1: रात के 10 बजे खड़े हैं इधर पे, अब तक 100 मीटर आगे नहीं सरके।
0: तो केदारनाथ में प्रशासन ने भक्तों को तो बुला लिया, लेकिन तस्वीरें गवाही दे रही कि बद इंतजामी भी इस बार नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। सवाल है कि ये घंटों में लाइन लगने के बावजूद श्रद्धालु दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे? प्रशासन और बद्री केदार मंदिर समिति क्या भक्तों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की जिम्मेदारी लेगा? जिस वीआईपी लाइन को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही उसे लेकर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? इतने सारे सवालों के बीच प्रशासन मान किसी दूसरी दुनिया में जी रहा, कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। केदारनाथ में भक्त दुनिया भर की मुसीबतों को हंसते हुए सिर्फ इसलिए झेल रहा है ताकि उसे अपने भगवान के दर्शन हो जाए। प्रशासन चाहे जितनी अपनी पीठ ठोक ले, लेकिन देश देख रहा है कि पहाड़ी से गिरने वाले पत्थरों के खतरे से बचते बचाते भोलेनाथ के वक्त हर कुर्बानी देते हुए केदारनाथ पहुंच रहे हैं। लेकिन आम आदमी की इस भावना की कद्र न करके वीआईपी लोगों को दर्शन करवाने के लिए आम लोगों को दावा है कि इंतजार करवाया जा रहा है।
6: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

जंग से जूझती दुनिया के हालात पर क्वेड में मंथन, सुपर शक्तियों के सामने भारत की दो टूक, हर हाल में आतंक का अंत जरूरी, चारों देशों का साझा बयान, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता जरूरी। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृहमंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। कर्नाटक के सीएम हो सकते हैं डीके शिवकुमार, सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धरमैया, दिल्ली में आलाकमान ने दोनों के साथ की थी बैठक। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सिलीगुड़ी साइबर थाने में केस, पिछले साल सनातन धर्म पर की थी अभद्र टिप्पणी। और ओएसएम पोर्टल हैक होने के दावे को सीबीएसई ने खारिज किया, कहा असली मूल्यांकन का पोर्ट का यूआरएल अलग है, छात्रों के अंक या अन्य डेटा पोर्टल पर नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, खासतौर से घुसपैठ को लेकर। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ पहुंची थी, वैसी ही भीड़ बांग्लादेश की सीमा से सटे बॉर्डर पर वापसी का इंतजार कर रही है। घुसपैठियों की इस चिंता को शुभेंदु ने यह कहकर और ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से भगाकर ही रहेंगे।

0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास इन चेहरों को गौर से देखते जाइए। ये लोग वो घुसपैठिए हैं जो जल्द से जल्द अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने राज्य में रहने वाले हर घुसपैठिए को ये कहकर खबरदार कर दिया, भागो जल्दी भागो।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है। जल्दी जल्दी भागो
2: सुवेंद्र,
1: भागो नहीं तो जो करना है सरकार करेगा।
0: तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाग घुसपैठिया भाग। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की इस दो टूक ने राज्य में छिपे घुसपैठियों में खलबली मचा दी। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पर पहुंच गए। सवाल है कि क्या बांग्लादेश इन्हें वापस लेगा?
1: अरे लोग चला जाना चाहिए, और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, तो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेंगे। तो ये सब बांग्लादेशी है तो ले लेना चाहिए।
0: तो शुभेंदु अधिकारी को भरोसा है कि बांग्लादेश इन सब घुसपैठियों को वापस ले लेगा। क्या वाकई में बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना इतना आसान होगा?
3: पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया।
0: शुभेंदु सरकार घुसपैठियों को चुन चुन कर राज्य से निकालना चाहती है। इसके लिए मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर खोला गया। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर में लाकर हिरासत में रखा गया। इनमें 3 महिलाएं, 6 नाबालिग शामिल। जैसे ही खबर राज्य में छिप कर रहने वाले घुसपैठियों तक पहुंची, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया, बांग्लादेश की सीमा के पास पहुंचने लगे।
4: ये वही हकीमपुर है जहां साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे। SIR जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी, तो अब लोग यहां पर काफी तादाद में यहां पहुंचे थे। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे वो यहां पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाएं।
0: शुभेंदु सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की रही है। इसी सिलसिले में मुर्शिदाबाद में प्रशासन ने एक साथ 3 लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा। इन 3 बांग्लादेशी नागरिकों ने मुर्शिदाबाद के लालगोला और भगवानगोला सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। ऐसा ही एक घुसपैठिया आज तक संवाददाता तापस सिंह गुप्ता को हकीमपुर बॉर्डर में मिलता है, जिसने खुद कबूल किया कि वो पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहा था।
4: आप हिंदी बोल सकते हैं?
5: ना, बांग्ला में।
4: अच्छा, अपना नाम की?
5: असद अली।
4: असद अली, अपना बाड़ी कोथा है?
5: नोला दृष्टि,
4: जशोर। कत बचर आगे?
5: 5 बचर आगे।
4: 5 बचर आगे की जन्म
5: ब्रेन आउटब्रेक डाक्তার দেখাইছে।
4: ডাক্তার দেখানোর জন্য এসেছিলেন? না, আপনি কি পাসপোর্টে এসেছিলেন?
5: না, আমি ব্ল্যাকে এসেছিলাম।
4: কিসে ব্ল্যাকে এসেছিলেন?
5: জি,
4: মানে দালালের মারফত?
5: না, একা চলে এসেছি।
4: একাই এসেছি?
5: না, তখন দালাল ছিল।
4: আচ্ছা,
5: একা হেঁটে চলে এসেছি।
4: একা হেঁটে চলে এসেছি? কোনো কারো কি কোনো টাকা দিতে হয়নি?
5: না।
4: আচ্ছা, তারপর কতদিন ধরে চিকিৎসা চালাচ্ছে?
5: দেখেন, এখানে লেখা আছে 6 বছর।
4: আচ্ছা, এটা
0: তো আজ তক সে বাতচিত মে বাংলাদেশ তে আয় ঘুসপাইঠিয়ে নে খুদ বাতায়া কি ও পিছলে 5 সাল সে পশ্চিম বঙ্গাল মে রহতা আয়, ও ভি বিনা পাসপোর্ট কে अवैध रूप से बड़े आराम से बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ करने में कामयाब रहा, और पिछले 5 साल में सुरक्षा एजेंसियों की उस पर नजर भी नहीं पड़ी।
4: ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से, और ये देख सकते कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपनी जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 जून 2024, और तब से वो यहाँ पर है। कह रहे हैं कि 5 साल थे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एटा कौन हॉस्पिटल, CNM, अच्छा चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये कोलकाता के बेनियापुकुर में एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर वो इस अपना मेडिकल इलाज करवाने के लिए आए थे।
0: तो सोचिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में असद अली नाम का बांग्लादेशी घुसपैठिया पांच साल से रहता आया, जो बांग्लादेश के जैसोर शहर के नाला दृष्टि का रहने वाला है, जो कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन असद अली जैसे घुसपैठियों को जैसे ही पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर खुलने की खबर लगती है, ये भागकर वापस बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच जाते हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये।
5: शुभेंदु
1: जल्दी भागो,
2: शुभेंदु
1: बांग्लादेश भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा।
0: शुभेंदु अधिकारी सरकार की योजना बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ को सौंपने की है। शुभेंदु कह भी चुके हैं कि वो घुसपैठियों को अदालत नहीं बल्कि सीधे बॉर्डर ले जाएंगे ताकि डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू की जा सके। बंगाल में नई सरकार के तेवरों का ही असर है कि राज्य में इधर उधर छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद सीमा पर पहुंच रहे हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
4: यहां आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ज्यादातर लोग जिनसे हम बात कर रहे थे वो 5-6 साल या 8 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन हर किसी का एक अलग कहानी है। लेकिन अगर दूसरे छोर से देखा जाए कि अवैध तरीके से रात के अंधेरे में वो भारत में प्रवेश किए थे, सवाल ये है कि वो इस तरीके से प्रवेश किए, सालों साल वो पश्चिम बंगाल में रहे और बिना डिटेक्शन के, अब जब होल्डिंग कैंप की बात की जा रही है तब एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। पुलिस की ओर से भी इन्हें कहा गया है, ये बता रहे हमें कि इस वजह से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है।
6: 12 मई को शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के गले मिलते हुए एक फोटो वायरल हुई थी, जिस पर हिमंत बिस्व शर्मा ने लिखा था बुरे दिन। इसके आगे उन्होंने लिखा आप जानते हैं कौन और साथ में शुभेंदु अधिकारी को टैग कर दिया था। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी तुरंत जवाब दिया, उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कोई इनाम नहीं होगा।
7: आई हैव अ बॉर्डर कंस्टिट्यूएंसी, हु वांट्स टू लिव इन इंडिया ना? आई हैव कुश्तिया ऑन द अदर साइड एंड नदिया, द जीडीपी, द हेल्थ इंडिकेटर्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बांग्लादेश आर एक्चुअली बेटर। Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India.
0: देश में जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ को बेकार का हवा बताता है उसे महुआ मित्रा की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर बैठे इन घुसपैठियों को देखना चाहिए, जिन्हें अक्सर कई राजनीतिक दल और नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए झुठलाते हैं।
4: हाकिमपुर चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट के उस पार बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सातखीरा डिस्ट्रिक्ट है और सातखीरा डिस्ट्रिक्ट में इन्हें भेजा जाएगा। और जो प्रोसेस ये बताया गया है कि अमूमन जितने लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ सिलेक्ट किया जाता है, उनके दस्तावेज लिया जाता है, बांग्लादेश के जो दस्तावेज रहे हैं।
0: याद करिए बंगाल में जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तब भी ऐसे ही बॉर्डर पर लोग बांग्लादेश जाना शुरू हुए थे।
8: ये लॉकडाउन बहुत आगे माने आर्ली लॉकडाउन शुरू हुई आर जाती बारे सुराय होते ही ये तुम्हार बेला फल दे ये लॉकडाउन कोई बसर आच्छे
9: আমি 2 বছর 1 মাস হয়েছে এখানে আসছিলাম, চোরাই পথে আসছিলাম, কোন পথে আসছি সেটা বলতে পারবো না।
10: কেন এসেছিলাম?
9: আসছিলাম আমার ওয়াইফ অনেক অসুস্থ ছিল, তার মানসিক হয়েছে, কিডনির সমস্যা ছিল।
0: তব ডর থা লেকিন কুছ দিন কা হো সকতা হ্যায় ইনহে লাগা হো কি জ্যাসা পহলে হ্যায় ওয়্যাসা হি চলতা রহেগা। জ্যাসে ইয়ে বাংলাদেশ জাকার পশ্চিম বঙ্গাল মে রহতে আয়ে রহতে রহেঙ্গে, লেকিন বিজেপি না সিরফ সত্তা মে আয়ি बल्कि शपथ लेने के 20 दिन से कम वक्त में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया और बांग्लादेशी घुसपैठिए डर के मारे अब खुद ही बंगाल छोड़ने लगे।
11: बहुत कष्ट कर रहे, खूब कष्ट कर रहे,
12: दिन आसा जाए रात आसा
13: जाए,
12: काज करार जन्य।
0: तो बांग्लादेश

0: वाले ये लोग या तो काम की तलाश में भारत आते हैं या फिर इलाज करवाने के, मतलब भारत में बांग्लादेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं और भविष्य दिखता है जो उन्हें घुसपैठ के लिए प्रेरित करता है, जो उस दावे के बिल्कुल उल्टा है कि भारत में कोई क्यों आना चाहेगा। लेकिन इस मामले में सबसे खबरदार करने वाली बात यह है कि भारत में घुसपैठ करना आसान है और घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजना थोड़ा कठिन।
1: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए 3D नीति अपनाई है, यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। और इसी के तहत अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर में एक बार फिर सैकड़ों तादाद में लोग जो अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत प्रवेश किए थे, उनकी भीड़ नजर आ रही है। एक के बाद एक लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा।
2: पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बदलते जनसांख्यिकी का परिवर्तन को लेकर खबरदार कर दिया है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद इसे रोकने के लिए जहां बांग्लादेश की सीमा पर बाढ़ लगाई जा रही है, वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश भर में घुसपैठ रोकने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है।
3: बॉर्डर के सुरक्षित करा और भारतीयों देर दर्जा देखिए दा घुसपैठिया हटाओ, जाओ जहां से आया था उस रास्ता से जाओ वापस, जाओ बांग्लादेश।
4: पश्चिम बंगाल जीतने के बाद बीजेपी सरकार अब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए चक्रव्यूह रच चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की योजना पूरे देश में घुसपैठ रोकने के साथ डेमोग्राफी बदलने का सपना देखने वालों के मंसूबे ध्वस्त करने की है।
5: कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें।
4: तो जो लोग भारत की सीमाओं में चोरी छिपे घुसकर फर्जी दस्तावेज बनवाकर इस देश की डेमोग्राफी बदलने का सपना देख रहे थे, उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जिस महामिशन का संकल्प लिया,
6: घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा।
4: गृहमंत्री अमित शाह ने उस पर मुहर लगाते हुए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज के गठन का ऐलान कर दिया है, जो पूरे भारत में अवैध प्रवास और दूसरे कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन का अध्ययन करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सीमा को स्मार्ट बॉर्डर बनाने की है, जहां से घुसपैठ करना असंभव होगा।
5: ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
4: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 1647 किलोमीटर पर ही बाड़ लगाई गई है। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बीएसएफ को तारबंदी के लिए जमीन सौंप दी गई, जिसने बॉर्डर पर अपना काम भी शुरू कर दिया। बीजेपी अपने DDD फॉर्मूले यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट को सख्ती से लागू कर रही है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में सिर्फ मिजोरम में बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह की योजना बीजेपी शासित राज्यों में बांग्लादेश से घुसपैठ करीब करीब खत्म करने

0: के लिए बीएसएफ को स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल करके घुसपैठ के हर रूट को खत्म करने का मंत्र दिया गया है।
1: अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, इस सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है।
0: घुसपैठ रोकने के इसी प्लान पर अमित शाह त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बीच होल्डिंग सेंटर बनने के बाद जिस तरह से खलबली देखी जा रही है, उसने भारत में घुसपैठ की समस्या और चुनौती को एक बार फिर सबके सामने लाने का काम किया है।
2: सत्ता बंगाल में लंबे वक्त तक टीएमसी की रही, तो दावा यह कि गुंडागर्दी की घुसपैठ आम लोगों को परेशान करती रही, जहां पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर को टीएमसी के कब्जे से नहीं छुड़ा पाया करते थे, और बीजेपी राज आने पर टीएमसी के कब्जे से अपना ऑफिस कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आजाद करवाया है।
0: पूजा करते हुए घड़ियाल बजाते इस चेहरे को देखिए, नाम विश्वजीत मंडल, दक्षिण 24 परगना की कैनिंग पूर्व विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता 5 साल बाद अपने घर में वापस आ पाए? वो घर जिसे 2021 विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी नेता के डर से विश्वजीत मंडल को दावा है छोड़ना पड़ा। वो घर जो दावा है कि टीएमसी के नेता शौकत मुल्ला के कहने पर इसलिए बुलडोजर चलवाकर कई जगहों पर गिरवा दिया गया क्योंकि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता विश्वजीत मंडल रहते थे। दावा है कि टीएमसी के नेता यहां चाहते थे कि बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं के घर तोड़कर इतना डरा दो कि कभी यहां बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई ना बचे। लेकिन बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु सरकार आने के बाद हिम्मत वापस मिली तो बीजेपी के नेता विकास सरदार के साथ विश्वजीत मंडल अपने उस घर में वापस लौटे, पूजा पाठ किया, लोगों को दोबारा गृह प्रवेश का प्रसाद खिलाया।
3: सारा पश्चिमबंगाल मानुष तादेर जीवने बाँचार एकटा स्वाद पेयेछे যে আমরা অন্তত হিন্দু মানুষ এই পশ্চিমবঙ্গে বাস করতে পারবো। এতদিন আমাদের কোনো মানুষ পাশে দাঁড়ায়নি, অ্যাকচুয়ালি এখানে বোমা বন্দুকের রাজত্ব হয়, যেটা শৌকত মোল্লাকে মমতা ব্যানার্জী পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু এনআইএ তদন্ত করে যদি এখন এই অস্ত্র উদ্ধার করা হয়, হাজার হাজার অস্ত্র এখানে উদ্ধার হবে।
0: বিশ্বজিত মন্ডল কে ইস বাত কে সবুত হ্যায় কি হর বার বঙ্গাল মে চুনাও কে বাদ জো হিংসা হোতি রহি উসমে টিএমসি কে লোগ চুন চুন কর নিশানা বানাতে থে। लेकिन अब की बार न केवल उस हिंसा पर रोक लगी है बल्कि सत्ता बदलने पर साहस जुटाकर लोग घर भी लौटने लगे। वहीं बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कहीं लेफ्ट और टीएमसी राज की तरह कटमनी का चलन न चलने लगे, इसलिए खुद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चेतावनी दे रहे हैं।
4: बहुत लोग 4 घंटा में भगवा गुलाल लगा लिया, हाथ में बीजेपी का झंडा उठा लिया और कारखाना के दरवाजे में पहुंच गया, तो इसको चिन्हित करने का काम सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी है। जो पैसा मांगेगा मान लीजिएगा, जो यूनियन करेगा आपका कंपनी में जाकर, हम आपको बोलकर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नाम पर कोई सिंडिकेट नहीं है, किसी को पैसा मत दीजिए।
2: राजस्थान में कोटा के सरकारी अस्पताल में नकली ऑक्सीटोसिन दवा से जुड़े मामले में अब पता यह चला है कि यह नकली दवा राजस्थान के कोटा के अलावा दिल्ली, इंदौर और यूपी के गोंडा में भी सप्लाई की गई है, जिसकी सूचना आगे दे दी गई है। चिंता पैदा करने वाला सवाल इसलिए क्योंकि 4 मई से 17 मई के बीच राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पताल में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई थी जिन्हें ये नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था।
5: आपकी बच्ची होती तो क्या करते आप? आपकी बच्ची, आपकी बहू होती तो क्या करते आप?
0: परिवार रोते रहे, मौतें होती रही। माएं खौफ में जीती रही, हेल्थ डिपार्टमेंट सोता रहा, आंसू दर आंसू, गर्भवती माँ बच्चों को जन्म देकर दम तोड़ती रही, परिवार बिलखता रहा। धीरे धीरे आंदोलन बनने लगा कि आखिर गर्भवती महिलाओं की जान क्यों जा रही है। गर्भवती पायल ने 4 मई को दोपहर 12:58 पर दम तोड़ दिया। गर्भवती ज्योति ने 4 मई को ही दोपहर 1:35 पर अंतिम सांस ली। गर्भवती पिंकी महावर की मौत 7 मई को दोपहर 3 बजे हुई। गर्भवती प्रिया महावर की जान 8 मई सुबह 8 बजे चली गई। शिरीन ने 17 मई दोपहर 3 बजे दम तोड़ा। राजस्थान के एक ही जिले कोटा में 4 मई से 17 मई 14 दिन में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई। कभी कहा गया किडनी फेल हो गई, कहीं कहा गया हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल यानी दोनों सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की मौत एक बड़ा सवाल बन गई। महिलाओं की जान जाती रही और तब जाकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर नींद से आधे जागे अस्पताल का दौरा करके खाना पूर्ति कराए। पर अब जाकर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के भीतर मौत की अंधेर नगरी से खबरदार होना जरूरी है, क्योंकि जहां कोटा के सरकारी अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक गर्भवती महिलाओं की मौत पर पर्दा डालता रहा, वहां दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के कहने पर हुई दवाओं की जांच से डराने वाला सच सामने आया। सच गर्भवती महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन लगने का जिसमें दवा का कंटेंट जीरो निकला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को लगाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जांच रिपोर्ट का पन्ना है। इस पन्ने पर साफ साफ लिखा है कि अमृतसर की जैक्सन लेबोरेटरीज की तरफ से बनाया गया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसकी जांच में ये नमूना आईपी के अनुरूप नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं। इसी रिपोर्ट में कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गंभीर रूप से अवमानक है, यानी मानक के विपरीत। मतलब जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डिलीवरी के दौरान प्रसव प्रक्रिया को सुगम बनाने, लेबर पेन में आगे की प्रक्रिया को सरल करने और डिलीवरी के बाद होने वाले खून के बहाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उस इंजेक्शन में वो ड्रग ही नहीं थी, उसका कंटेंट जीरो था। तो क्या इसी वजह से कोटा में 5 गर्भवती महिलाओं की जान चली गई? आज तक ने सीधे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से ही सवाल किया।
6: कोटा में जो 5 प्रसूताओं की जो मौत हुई थी, उसका जो सैंपल कोलकाता भेजा गया था, वो ड्रग्स में फेल हो चुका है।
7: अभी ऐसा कि पूरे ड्रग्स इंजेक्टेबल्स जो 20% दवाइयां जो हमारा मेडिकल कॉलेज ने खरीदे हैं, वो और हमारे जो RMSCL की दवाइयों की उनकी पूरी जाँच करके पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था। इसमें बेसिकली क्या है कि कोई इतनी जल्दी 7 घंटों के अंदर कोई मौत के कगार पे आ जाए और उसके 7-8 घंटे में डेथ हो जाए, ये कोई चीज है जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है।
6: प्रथम दृष्टया कोई लापरवाही लग रही है, बड़ी कार्रवाई एक्शन की जरूरत है?
7: देखिए ऐसा है, बड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर सब तथ्य सामने आ जाए उसके पश्चात मैं उसका जवाब।
0: मंत्री जी देखिए बाप, यही वो जांच रिपोर्ट है जो राजस्थान के खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण विभाग ने जारी की, लेकिन शर्मनाक हालत है। 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई और जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उन्हें लगा वो दवा ही पूरी नकली निकली, मतलब उसमें ऑक्सीटोसिन का कंटेंट था ही नहीं। रिपोर्ट सबके सामने है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं जांच रिपोर्ट आने दीजिए।
7: पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था।
0: 22 दिन बीत चुके हैं, राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग अब तक मौत का कारण खुलकर बोल नहीं पा रहा। मंत्री जांच रिपोर्ट का इंतजार करा रहे हैं, जबकि जांच करने वाले उन्हीं के राज में दवा का सच बता देते हैं।
8: कोटा में लास्ट 15-20 डेज बैक हमने जो सैंपल्स अराउंड 20 अलग अलग टाइप के मेडिसिन लिए थे, उसमें 19 वेर ऑल स्टैंडर्ड। एक मेडिसिन जो टोसिन है, जैक्सन फार्मा का है, उसमें जो टोसिन जो ब्रांड नेम है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन करके दवा होना चाहिए, तो उस में दवा था नहीं, उसका कंटेंट जीरो निकला है।
0: जिस नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में दवा के नाम पर कुछ था ही नहीं, वो कोटा में स्थानीय स्तर पर ही खरीदी गई थी। 10,000 इंजेक्शन जेके लोन अस्पताल गए और 2,479 इंजेक्शन न्यू मेडिकल कॉलेज।
9: जो सैंपलिंग जितनी दवाइयों की गई थी उसमें से ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन का एक बैच उसमें एक्टिव कंटेंट नहीं मिला है जांच में, तो उसके लिए हमने उच्च स्तर पर कार्रवाई के लिए लिख भी दिया है। ये मेडिकल कॉलेज कोटा की आरसी पे हम लोगों ने परचेज ऑर्डर दिया था।
10: प्रिंसिपल होने का अर्थ कतई ये नहीं है कि मैं किसी के क्लिनिकल जजमेंट पे कोई क्वेश्चन करूं।
11: नहीं सर, आपकी बात सही है, पर जो
10: मैं अपना जवाब दे चुका हूं।
11: जो महिलाओं को ये दिक्कत हुई सर, तो इसमें डॉक्टरों को क्यों नहीं पता लगा इनको कि
10: ये डॉक्टर बता सकता है, मैं नहीं बता सकता।
0: मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं मैं क्या बताऊं, अधीक्षक कहते हैं दवा तो मेडिकल कॉलेज की मंजूरी से खरीदी और स्वास्थ्य मंत्री 3 हफ्ते बाद भी जांच रिपोर्ट का इंतजार करके मामला लटकाते हैं।
12: आखिर कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में ये नकली दवा पहुंची कैसे? इमरजेंसी खरीद के नाम पर सब स्टैंडर्ड दवाइयों के खरीद का बड़ा रैकेट सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। दवा खरीदने वाले अधीक्षक कह रहे हैं कि अगर ये दवा नकली थी तो फिर डॉक्टर ने दूसरी दवा का प्रयोग क्यों नहीं किया। डॉक्टर का कहना है कि दवा नकली है, यह पता कैसे चलेगा जो दूसरी दवाइयों का प्रयोग करेंगे। अब बड़ा सवाल है कि जब इन दवाइयों से मौत नहीं हुई है तो फिर मौतें कैसे हुई है इसके बारे में आखिर कौन बताएगा।
0: राजस्थान सरकार ने टोसिन इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी जैक्सन लेबोरेटरीज के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराने के आदेश दिए।
13: तो स्टोरेज के ऊपर भी डिपेंडेंट है, स्टोरेज जब मतलब गलत हो जाएगी तो इसका इफेक्ट होगा। आज हम किसी भी दवा को अगर 1 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं तो उसके कंटेंट्स खत्म हो जाते हैं, तो ये ऐसी ही कोई नेग्लिजेंस हुई है।
0: एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालकर जांच रिपोर्ट आने दीजिए बताकर चेहरा बचाने का काम हो रहा है, लेकिन इस सच को तो कोई नहीं झुठला सकता कि नकली बेकार जो किसी के काम के लायक इंजेक्शन नहीं था वो गर्भवती महिलाओं को लगा जिनकी मौत बाद में हुई है। अब जरूरी है कि इन्हीं चेहरों के साथ जांच आगे की जाए। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
2: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

जंग से जूझती दुनिया के हालात पर क्वेड में मंथन, सुपर शक्तियों के सामने भारत की दो टूक, हर हाल में आतंक का अंत जरूरी, चारों देशों का साझा बयान, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता जरूरी। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृहमंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। कर्नाटक के सीएम हो सकते हैं डीके शिवकुमार, सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धरमैया, दिल्ली में आलाकमान ने दोनों के साथ की थी बैठक। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सिलीगुड़ी साइबर थाने में केस, पिछले साल सनातन धर्म पर की थी अभद्र टिप्पणी। और ओएसएम पोर्टल हैक होने के दावे को सीबीएसई ने खारिज किया, कहा असली मूल्यांकन का कोर्ट का यूआरएल अलग है, छात्रों के अंक या अन्य डेटा पोर्टल पर नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, खासतौर से घुसपैठ को लेकर। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ पहुंची थी, वैसी ही भीड़ बांग्लादेश की सीमा से सटे बॉर्डर पर वापसी का इंतजार कर रही है। घुसपैठियों की इस चिंता को शुभेंदु ने यह कहकर और ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से भगाकर ही रहेंगे।

0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास इन चेहरों को गौर से देखते जाइए। ये लोग वो घुसपैठिए हैं जो जल्द से जल्द अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों में इस खौफ की वजह शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने राज्य में रहने वाले हर घुसपैठिए को ये कहकर खबरदार कर दिया, भागो जल्दी भागो।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा,
0: तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाग घुसपैठिया भाग। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की इस दो टूक ने राज्य में छिपे घुसपैठियों में खलबली मचा दी। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पर पहुंच गए। सवाल है कि क्या बांग्लादेश इन्हें वापस लेगा?
1: बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, तो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लें। ये सब बांग्लादेशी है तो ले लेना चाहिए।
0: तो शुभेंदु अधिकारी को भरोसा है कि बांग्लादेश इन सब घुसपैठियों को वापस ले लेगा। क्या वाकई में बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना इतना आसान होगा?
2: पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया।
0: शुभेंदु सरकार घुसपैठियों को चुन चुनकर राज्य से निकालना चाहती है। इसके लिए मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर खोला गया। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर में लाकर हिरासत में रखा गया। इनमें 3 महिलाएं, 6 नाबालिग शामिल। जैसे ही खबर राज्य में छिप कर रहने वाले घुसपैठियों तक पहुंची, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया, बांग्लादेश की सीमा के पास पहुंचने लगे।
3: ये वही हकीमपुर है जहां साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे। SIR जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी, तो अब लोग यहां पर काफी तादाद में यहां पहुंचे थे। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे वो यहां पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाए।
0: शुभेंदु सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की रही है। इसी सिलसिले में मुर्शिदाबाद में प्रशासन ने एक साथ 3 लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा। इन 3 बांग्लादेशी नागरिकों ने मुर्शिदाबाद के लालगोला और भगवानगोला सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। ऐसा ही एक घुसपैठिया आज तक संवाददाता तापस सेन गुप्ता को हकीमपुर बॉर्डर में मिलता है, जिसने खुद कबूल किया कि वो पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहा था।
3: आप हिंदी बोल सकते हैं?
4: ना, बांग्ला में।
3: अच्छा, अपना नाम की?
4: असद अली।
3: असद अली, अपना बाड़ी को था?
4: नोला दृष्टि
3: जशोर। कत बचर आगे?
4: 5 बचर आगे।
3: 5 बचर आगे की जन्म
4: ब्रेन आउट बोले डाक्তার দেখাইছে।
3: ডাক্তার দেখানোর জন্য এসেছিলেন? আপনি কি পাসপোর্টে এসেছিলেন?
4: না, আমি ব্ল্যাকে এসেছিলাম।
3: কিসে ব্ল্যাকে এসেছিলেন?
4: জি,
3: মানে দালালের মারফত?
4: না, একা একা চলে এসেছি।
3: একাই এসেছি?
4: হ্যাঁ, তখন দালাল ছিল।
3: আচ্ছা,
4: একা হেঁটে চলে এসেছি।
3: একা হেঁটে চলে এসেছিলেন? কোনো কারো কি কোনো টাকা দিতে হয়নি?
4: না।
3: আচ্ছা, তারপর কতদিন ধরে চিকিৎসা চালাচ্ছে?
4: দেখেন, এখানে লেখা আছে 6 বছর।
3: আচ্ছা, এটা
0: তো আজ তক সে বাতচিত মে বাংলাদেশ সে আয় ঘুসপাইঠিয়ে নে খুদ বাতায়া কি ও পিছলে 5 সাল সে পশ্চিম বঙ্গাল মে রহতা হ্যায়, ও ভি বিনা পাসপোর্ট কে अवैध रूप से बड़े आराम से बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ करने में कामयाब रहा और पिछले 5 साल में सुरक्षा एजेंसियों की उस पर नजर भी नहीं पड़ी।
3: ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से, और ये देख सकते कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपनी जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 जून 2024, और तब से वो यहाँ पर है। कह रहे हैं कि 5 साल थे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एटा कौन हॉस्पिटल? CNM। अच्छा, चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये कोलकाता के बेनियापुकुर में एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर वो इस अपना मेडिकल इलाज करवाने के लिए आए थे।
0: तो सोचिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में असद अली नाम का बांग्लादेशी घुसपैठिया पांच साल से रहता है, जो बांग्लादेश के जैसोर शहर के नाला दृष्टि का रहने वाला है, जो कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन असद अली जैसे घुसपैठियों को जैसे ही पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर खुलने की खबर लगती है, ये भागकर वापस बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच जाते हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है।
5: शुभेंदु
1: जल्दी भागो,
5: शुभेंदु
1: भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा।
0: शुभेंदु अधिकारी सरकार की योजना बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ को सौंपने की है। शुभेंदु कह भी चुके हैं कि वो घुसपैठियों को अदालत नहीं बल्कि सीधे बॉर्डर ले जाएंगे ताकि डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू की जा सके। बंगाल में नई सरकार के तेवरों का ही असर है कि राज्य में इधर उधर छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद सीमा पर पहुंच रहे हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
3: यहां आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ज्यादातर लोग जिनसे हम बात कर रहे थे वो 5-6 साल या 8 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन हर किसी का एक अलग कहानी है। लेकिन अगर दूसरे छोर से देखा जाए कि अवैध तरीके से रात के अंधेरे में वो भारत में प्रवेश किए थे, सवाल ये है कि वो इस तरीके से प्रवेश किए, सालों साल वो पश्चिम बंगाल में रहे और बिना डिटेक्शन के, अब जब होल्डिंग कैंप की बात की जा रही है तब एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। पुलिस की ओर से भी इन्हें कहा गया है, ये बता रहे हमें कि इस वजह से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है।
6: 12 मई को शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की गले मिलते हुए एक फोटो वायरल हुई थी, जिस पर हिमंत बिस्व सरमा ने लिखा था बुरे दिन। इसके आगे उन्होंने लिखा आप जानते हैं कौन, और साथ में शुभेंदु अधिकारी को टैग कर दिया था। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी तुरंत जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कोई इनाम नहीं होगा।
7: I have a border constituency. Who wants to live in India now? I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators and a lot of things in Bangladesh are actually better. Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India.
0: देश में जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ को बेकार का हवा बताता है उसे महुआ मित्रा की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर बैठे इन घुसपैठियों को देखना चाहिए, जिन्हें अक्सर कई राजनीतिक दल और नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए झुठलाते हैं।
3: हाकिमपुर चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट के उस पार बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सातखीरा डिस्ट्रिक्ट है और सातखीरा डिस्ट्रिक्ट में इन्हें भेजा जाएगा। और जो प्रोसेस ये बताया गया है कि अमूमन जितने लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ सिलेक्ट किया जाता है, उनके दस्तावेज लिया जाता है, बांग्लादेश के जो दस्तावेज रहे हैं।
0: याद करिए बंगाल में जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तब भी ऐसे ही बॉर्डर पर लोग बांग्लादेश जाना शुरू हुए थे।
8: लॉकडाउन बहुत आगे मैंने आर्ली लॉकडाउन शुरू आर जाती बारे में सुराय होते ही
9: कौन गया
8: ये तुम्हारा बड़ा फल
9: সেটা কত বছর মোটামুটি
8: এই লকডাউন কয় বছর আছে
10: আমি 2 বছর 1 মাস হয়েছে এখানে আসছিলাম চোরাই পথে আসছি কোন পথে আসছি সেটা বলতে পারবো না
9: কেন এসেছিলে
10: আসছিলাম আমার ওয়াইফ অনেক অসুস্থ ছিল তার মানসিক হয়েছে কিডনির সমস্যা ছিল
0: তব ডর থা লেকিন কুছ দিন কা হো সকতা হ্যায় ইনহে লাগা হো কি জ্যাসা পহলে হ্যায় ওয়্যাসা হি চলতা রহেগা জ্যাসে ইয়ে বাংলাদেশ জাকার পশ্চিম বঙ্গাল মে রহতে আয়ে হ্যায় রহতে রহেঙ্গে लेकिन बीजेपी न सिर्फ सत्ता में आई बल्कि शपथ लेने के 20 दिन से कम वक्त में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया और बांग्लादेशी घुसपैठिए डर के मारे अब खुद ही बंगाल छोड़ने लगे।
11: बहुत कष्ट करेछे, खूब कष्ट करेछे।
12: দিনে আসা যায়, রাতেও
13: আসা যায়। তো এখানে কি জন্য এসেছে?
12: কাজ করার জন্য।
0: তো বাংলাদেশ থেকে ঘুসপাঠ করানে কা বঙ্গাল মে অবৈধ কারোবার চলতা হ্যায় जो 9000 रुपए की रिश्वत लेकर बांग्लादेशियों की बंगाल में एंट्री करवा देता है। सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश से आने वाले ये लोग या तो काम की तलाश में भारत आते हैं या फिर इलाज करवाने के, मतलब भारत में बांग्लादेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं और भविष्य दिखता है, जो उन्हें घुसपैठ के लिए प्रेरित करता है, जो उस दावे के बिल्कुल उल्टा है कि भारत में कोई क्यों आना चाहेगा। लेकिन इस मामले में सबसे खबरदार करने वाली बात यह है कि भारत में घुसपैठ करना आसान है और घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजना थोड़ा कठिन।
3: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए 3D नीति अपनाई है, यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। और इसी के तहत अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर में एक बार फिर सैकड़ों तादाद में लोग जो अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत प्रवेश किए थे, उनकी भीड़ नजर आ रही है। एक के बाद एक लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा।
6: पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बदलते जनसांख्यिकी का परिवर्तन को लेकर खबरदार कर दिया है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद इसे रोकने के लिए जहां बांग्लादेश की सीमा पर बाढ़ लगाई जा रही है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में घुसपैठ रोकने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है।
2: बॉर्डर के सुरक्षित करा, अभारतीयों देर दर्जा देखिए दा, घुसपैठिया हटाओ, जाओ जहां से आया था उस रास्ता से जाओ वापस, जाओ बांग्लादेश।
5: पश्चिम बंगाल जीतने के बाद बीजेपी सरकार अब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए चक्रव्यूह रच चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की योजना पूरे देश में घुसपैठ रोकने के साथ डेमोग्राफी बदलने का सपना देखने वालों के मंसूबे ध्वस्त करने की है।
12: कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें।
5: तो जो लोग भारत की सीमाओं में चोरी छिपे घुसकर फर्जी दस्तावेज बनवाकर इस देश की डेमोग्राफी बदलने का सपना देख रहे थे, उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जिस महामिशन का संकल्प लिया,
14: घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा।
5: गृहमंत्री अमित शाह ने उस पर मुहर लगाते हुए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज के गठन का ऐलान कर दिया है, जो पूरे भारत में अवैध प्रवास और दूसरे कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन का अध्ययन करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सीमा को स्मार्ट बॉर्डर बनाने की है, जहां से घुसपैठ करना असंभव होगा।
12: ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
5: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 1647 किलोमीटर पर ही बाढ़ लगाई गई है। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बीएसएफ को तारबंदी के लिए जमीन सौंप दी गई, जिसने बॉर्डर पर अपना काम भी शुरू कर दिया। बीजेपी अपने DDD फॉर्मूले यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट को सख्ती से लागू कर रही है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में सिर्फ मिजोरम में बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह की योजना बीजेपी शासित राज्यों में बांग्लादेश से घुसपैठ करीब करीब खत्म करने के लिए बीएसएफ को स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल करके घुसपैठ के हर रूट को खत्म करने का मंत्र दिया गया है।
12: अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, इस सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है।
5: घुसपैठ रोकने के इसी प्लान पर अमित शाह त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बीच होल्डिंग सेंटर बनने के बाद जिस तरह से खलबली देखी जा रही है, उसने भारत में घुसपैठ की समस्या और चुनौती को एक बार फिर सबके सामने लाने का काम किया है।
6: सत्ता बंगाल में लंबे वक्त तक टीएमसी की रही तो दावा यह कि गुंडागर्दी की घुसपैठ आम लोगों को परेशान करती रही, जहां पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर को टीएमसी के कब्जे से नहीं छुड़ा पाया करते थे और बीजेपी राज आने पर टीएमसी के कब्जे से अपना ऑफिस कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आजाद करवाया है।
5: पूजा करते हुए घड़ियाल बजाते इस चेहरे को देखिए, नाम विश्वजीत मंडल, दक्षिण 24 परगना की कैनिंग पूर्व विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता 5 साल बाद अपने घर में वापस आ पाए, वो घर जिसे 2021 विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी नेता के डर से विश्वजीत मंडल को दावा है छोड़ना पड़ा, वो घर जो दावा है कि टीएमसी के नेता शौकत मुल्ला के कहने पर इसलिए बुलडोजर चलवा कर कई जगहों पर गिरवा दिया गया क्योंकि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता विश्वजीत मंडल रहते थे। दावा है कि टीएमसी के नेता यहां चाहते थे कि बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं के घर तोड़कर इतना डरा दो कि कभी यहां बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई ना बचे, लेकिन बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के बाद, शुभेंदु सरकार आने के बाद हिम्मत वापस मिली तो बीजेपी के नेता विकास सरदार के साथ विश्वजीत मंडल अपने उस घर में वापस लौटे, पूजा पाठ किया, लोगों को दोबारा गृह प्रवेश का प्रसाद खिलाया।
15: सारा पश्चिमबंगाल मानुष तादेर जीवने बाँचार एकटा स्वाद पेयेछे যে আমরা অন্তত হিন্দু মানুষ এই পশ্চিমবঙ্গে বাস করতে পারবো, এতদিন আমাদের কোনো মানুষ পাশে দাঁড়ায়নি, অ্যাকচুয়ালি এখানে বোমা বন্দুকের রাজত্ব হয়, যেটা শৌকত মোল্লাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বলেছেন, কিন্তু এনআইএ তদন্ত করে যদি এখন এই অস্ত্র উদ্ধার করা হয় হাজার হাজার অস্ত্র কিন্তু উদ্ধার হবে।
5: বিশ্বজিৎ মন্ডল কে ইস বাত কে সবুত হ্যায় কি হর বার বঙ্গাল মে চুনাও কে বাদ জো হিংসা হোতি রহি উসমে টিএমসি কে লোক চুন চুন কর নিশানা বানাতে থে, लेकिन अब की बार न केवल उस हिंसा पर रोक लगी है बल्कि सत्ता बदलने पर साहस जुटाकर लोग घर भी लौटने लगे। वहीं बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कहीं लेफ्ट और टीएमसी राज की तरह कटमनी का चलन न चलने लगे, इसलिए खुद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चेतावनी दे रहे हैं।
16: बहुत लोग 4 घंटा में भगवा गुलाल लगा लिया, हाथ में बीजेपी का झंडा उठा लिया और कारखाना के दरवाजे में पहुंच गया, तो इसको चिन्हित करने का काम सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी है। जो पैसा मांगेगा मान लीजिएगा, जो यूनियन करेगा आपका कंपनी में जाकर, हम आपको बोलकर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नाम पर कोई सिंडिकेट नहीं है, किसी को पैसा मत दीजिए।
6: राजस्थान में कोटा के सरकारी अस्पताल में नकली ऑक्सीटोसिन दवा से जुड़े मामले में अब पता यह चला है कि यह नकली दवा राजस्थान के कोटा के अलावा दिल्ली, इंदौर और यूपी के गोंडा में भी सप्लाई की गई है, जिसकी सूचना आगे दे दी गई है। चिंता पैदा करने वाला सवाल इसलिए क्योंकि 4 मई से 17 मई के बीच राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पताल में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई थी जिन्हें यह नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था।
17: आपकी बच्ची होती तो क्या करते आपकी बच्ची, आपकी बहू होती तो क्या करते आप?
5: परिवार रोते रहे, मौतें होती रही। माएं खौफ में जीती रही, हेल्थ डिपार्टमेंट सोता रहा। आंसू दर आंसू गर्भवती मां बच्चों को जन्म देकर दम तोड़ती रही, परिवार बिलखता रहा। धीरे धीरे आंदोलन बनने लगा कि आखिर गर्भवती महिलाओं की जान क्यों जा रही है।
0: गर्भवती पायल ने 4 मई को दोपहर 12:58 पर दम तोड़ दिया। गर्भवती ज्योति ने 4 मई को ही दोपहर 1:35 पर अंतिम सांस ली। गर्भवती पिंकी महावर की मौत 7 मई को दोपहर 3 बजे हुई। गर्भवती प्रिया महावर की जान 8 मई सुबह 8 बजे चली गई। शिरीन ने 17 मई दोपहर 3 बजे दम तोड़ा। राजस्थान के एक ही जिले कोटा में 4 मई से 17 मई 14 दिन में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई। कभी कहा गया किडनी फेल हो गई, कहीं कहा गया हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल यानी दोनों सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की मौत एक बड़ा सवाल बन गई। महिलाओं की जान जाती रही और तब जाकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर नींद से आधे जागे अस्पताल का दौरा करके खाना पूर्ति कराए। पर अब जाकर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के भीतर मौत की अंधेर नगरी से खबरदार होना जरूरी है, क्योंकि जहां कोटा के सरकारी अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक गर्भवती महिलाओं की मौत पर पर्दा डालता रहा, वहां दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के कहने पर हुई दवाओं की जांच से डराने वाला सच सामने आया। सच गर्भवती महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन लगने का जिसमें दवा का कंटेंट 0 निकला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को लगाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जांच रिपोर्ट का पन्ना है। इस पन्ने पर साफ साफ लिखा है कि अमृतसर की जैक्सन लेबोरेटरीज की तरफ से बनाया गया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसकी जांच में ये नमूना आईपी के अनुरूप नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं। इसी रिपोर्ट में कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गंभीर रूप से अवमानक है, यानी मानक के विपरीत। मतलब जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डिलीवरी के दौरान प्रसव प्रक्रिया को सुगम बनाने, लेबर पेन में आगे की प्रक्रिया को सरल करने और डिलीवरी के बाद होने वाले खून के बहाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उस इंजेक्शन में वो ड्रग ही नहीं थी, उसका कंटेंट 0 था। तो क्या इसी वजह से कोटा में 5 गर्भवती महिलाओं की जान चली गई? आज तक ने सीधे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से ही सवाल किया।
18: कोटा में जो 5 प्रसूताओं की जो मौत हुई थी, उसका जो सैंपल कोलकाता भेजा गया था, वो ड्रग्स में फेल हो चुका है।
19: अभी ऐसा कि पूरे ड्रग्स इंजेक्टेबल्स जो 20% दवाइयां जो हमारा मेडिकल कॉलेज ने खरीदे हैं, वो और हमारे जो RMSCL की दवाइयों की उनकी पूरी जांच करके पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था। इसमें बेसिकली क्या है कि कोई इतनी जल्दी 7 घंटों के अंदर कोई मौत के कगार पे आ जाए और उसके 7-8 घंटे में डेथ हो जाए, ये कोई चीज है जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है।
18: प्रथम दृष्टया कोई लापरवाही लग रही है, बड़ी कार्रवाई एक्शन की जरूरत है।
19: देखिए ऐसा है, बड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर सब तथ्य सामने आ जाए उसके पश्चात मैं उसका जवाब दूंगा।
0: मंत्री जी देखिए, अब आप यही वो जांच रिपोर्ट है जो राजस्थान के खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण विभाग ने जारी की, लेकिन शर्मनाक हालत है। 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई और जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उन्हें लगा वो दवा ही पूरी नकली निकली, मतलब उसमें ऑक्सीटोसिन का कंटेंट था ही नहीं। रिपोर्ट सबके सामने है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं जांच रिपोर्ट आने दीजिए।
19: पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था।
0: 22 दिन बीत चुके हैं, राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग अब तक मौत का कारण खुलकर बोल नहीं पा रहा। मंत्री जांच रिपोर्ट का इंतजार करा रहे हैं, जबकि जांच करने वाले उन्हीं के राज में दवा का सच बता देते हैं।
20: कोटा में लास्ट 15-20 डेज बैक हमने जो सैंपल्स अराउंड 20 अलग अलग टाइप के मेडिसिन लिए थे, उसमें 19 वेर ऑल स्टैंडर्ड। एक मेडिसिन जो टोसिन है, जैक्सन फार्मा का है, उसमें जो टोसिन जो ब्रांड नेम है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन करके दवा होना चाहिए, तो उस में दवा था नहीं, उसका कंटेंट 0 निकला है।
0: जिस नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में दवा के नाम पर कुछ था ही नहीं, वो कोटा में स्थानीय स्तर पर ही खरीदी गई थी। 10,000 इंजेक्शन जेके लोन अस्पताल गए और 2,479 इंजेक्शन न्यू मेडिकल कॉलेज।
21: जो सैंपलिंग जितनी दवाइयों की गई थी उसमें से ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन का एक बैच, उसमें एक्टिव कंटेंट नहीं मिला है जांच में, तो तो उसके लिए हमने उच्च स्तर पर कार्रवाई के लिए लिख भी दिया है। ये मेडिकल कॉलेज कोटा की आरसी पे हम लोगों ने परचेज ऑर्डर दिया था।
1: प्रिंसिपल होने का अर्थ कतई ये नहीं है कि मैं किसी के क्लिनिकल जजमेंट पे कोई क्वेश्चन करूं।
4: नहीं सर, आपकी बात सही है, पर जो
1: मैं अपना जवाब दे चुका हूं।
4: जो महिलाओं को ये दिक्कत हुई सर, तो इसमें डॉक्टरों को क्यों नहीं पता लगा इनको कि
1: ये डॉक्टर बता सकता है, मैं नहीं बता सकता।
0: मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं मैं क्या बताऊं, अधीक्षक कहते हैं दवा तो मेडिकल कॉलेज की मंजूरी से खरीदी, और स्वास्थ्य मंत्री 3 हफ्ते बाद भी जांच रिपोर्ट का इंतजार करके मामला लटकाते हैं।
22: आखिर कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में ये नकली दवा पहुंची कैसे? इमरजेंसी खरीद के नाम पर सब स्टैंडर्ड दवाइयों के खरीद का बड़ा रैकेट सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। दवा खरीदने वाले अधीक्षक कह रहे हैं कि अगर ये दवा नकली थी तो फिर डॉक्टर ने दूसरी दवा का प्रयोग क्यों नहीं किया। डॉक्टर का कहना है कि दवा नकली है, यह पता कैसे चलेगा जो दूसरी दवाइयों का प्रयोग करेंगे। अब बड़ा सवाल है कि जब इन दवाइयों से मौत नहीं हुई है तो फिर मौतें कैसे हुई है, इसके बारे में आखिर कौन बताएगा।
0: राजस्थान सरकार ने टोसिन इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी जैक्सन लेबोरेटरीज के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराने का आदेश दिए, जिसके मालिक कहते हैं कि कमी इंजेक्शन में नहीं है, राजस्थान के सरकारी विभाग में है।
23: वो तो स्टोरेज के ऊपर भी डिपेंडेंट है, स्टोरेज जब मतलब पे गलत हो जाएगी तो इसका इफेक्ट होगा। आज हम किसी भी दवा को अगर 1 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं तो उसके कंटेंट्स खत्म हो जाते हैं, तो ये ऐसी ही कोई नेग्लिजेंस हुई है।
0: एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालकर जांच रिपोर्ट आने दीजिए बताकर चेहरा बचाने का काम हो रहा है, लेकिन इस सच को तो कोई नहीं झुठला सकता कि नकली बेकार जो किसी के काम के लायक इंजेक्शन नहीं था वो गर्भवती महिलाओं को लगा, जिनकी मौत बाद में हुई है। अब जरूरी है कि इन्हीं चेहरों के साथ जांच आगे की जाए। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
6: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

जंग से जूझती दुनिया के हालात पर क्वेड में मंथन, सुपर शक्तियों के सामने भारत की दो टूक, हर हाल में आतंक का अंत जरूरी, चारों देशों का साझा बयान, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता जरूरी। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृहमंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। कर्नाटक के सीएम हो सकते हैं डीके शिवकुमार, सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धरमैया, दिल्ली में आलाकमान ने दोनों के साथ की थी बैठक। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सिलीगुड़ी साइबर थाने में केस, पिछले साल सनातन धर्म पर की थी अभद्र टिप्पणी। और ओएसएम पोर्टल हैक होने के दावे को सीबीएसई ने खारिज किया, कहा असली मूल्यांकन का पोर्टल का यूआरएल अलग है, छात्रों के अंक या अन्य डेटा पोर्टल पर नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, खासतौर से घुसपैठ को लेकर। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ पहुंची थी, वैसी ही भीड़ बांग्लादेश की सीमा से सटे बॉर्डर पर वापसी का इंतजार कर रही है। घुसपैठियों की इस चिंता को शुभेंदु ने यह कहकर और ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से भगाकर ही रहेंगे।

0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास इन चेहरों को गौर से देखते जाइए। ये लोग वो घुसपैठिए हैं जो जल्द से जल्द अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों में स्टॉफ की वजह शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने राज्य में रहने वाले हर घुसपैठिए को ये कहकर खबरदार कर दिया, भागो जल्दी भागो।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये।
0: तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाग घुसपैठिया भाग। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की इस दो टूक ने राज्य में छिपे घुसपैठियों में खलबली मचा दी। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पर पहुंच गए। सवाल है कि क्या बांग्लादेश इन्हें वापस लेगा?
1: बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, तो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेंगे। तो ये सब बांग्लादेशी है तो ले लेना चाहिए।
0: तो शुभेंदु अधिकारी को भरोसा है कि बांग्लादेश इन सब घुसपैठियों को वापस ले लेगा। क्या वाकई में बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना इतना आसान होगा?
2: पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया।
0: शुभेंदु सरकार घुसपैठियों को चुन चुन कर राज्य से निकालना चाहती है। इसके लिए मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर खोला गया। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर मिलाकर हिरासत में रखा गया। इनमें 3 महिलाएं, 6 नाबालिग शामिल। जैसे ही खबर राज्य में छिप कर रहने वाले घुसपैठियों तक पहुंची, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया, बांग्लादेश की सीमा के पास पहुंचने लगे।
3: ये वही हकीमपुर है जहां साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे। SIR जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी, तो अब लोग यहां पर काफी तादाद में यहां पहुंचे थे। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे वो यहां पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाएं।
0: शुभेंदु सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की रही है। इसी सिलसिले में मुर्शिदाबाद में प्रशासन ने एक साथ 3 लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा। इन 3 बांग्लादेशी नागरिकों ने मुर्शिदाबाद के लालगोला और भगवानगोला सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। ऐसा ही एक घुसपैठिया आज तक संवाददाता तापस सिंह गुप्ता को हकीमपुर बॉर्डर में मिलता है, जिसने खुद कबूल किया कि वो पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहा था।
3: आप हिंदी बोल सकते हैं?
4: ना, बांग्ला में।
3: अच्छा, अपना नाम की?
4: असद अली।
3: असद अली, अपना बाड़ी को था?
4: नोला दृष्टि
3: जशोर। कत बचर आगे?
4: 5 बचर आगे।
3: 5 बचर आगे की जन्म
4: डॉक्टर
3: ডাক্তার দেখানোর জন্য এসেছিলেন? আপনি কি পাসপোর্টে এসেছিলেন?
4: না, আমি ব্ল্যাক এসেছিলাম।
3: কিসে ব্ল্যাক এসেছিলেন?
4: জি,
3: মানে দালালের মারফত?
4: না, একা চলে
3: এসেছি।
4: একাই দালাল ছিল?
3: আচ্ছা,
4: একা চলে এসেছি।
3: একা হেঁটে চলে এসেছি? কোনো কারো কি কোনো টাকা দিতে হয়নি?
4: না।
3: আচ্ছা, তারপর কতদিন ধরে চিকিৎসা
4: চালাচ্ছে? দেখেন এই লেখা আছে 6 বছর।
3: আচ্ছা, এটা
0: তো আজ তক সে বাতচিত মে বাংলাদেশ তে আয় ঘুসপাইঠিয়ে নে খুদ বাতায়া কি ও পিছলে 5 সাল সে পশ্চিম বঙ্গাল মে রহতা হ্যায়, ও ভি বিনা পাসপোর্ট কে अवैध रूप से बड़े आराम से बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ करने में कामयाब रहा और पिछले 5 साल में सुरक्षा एजेंसियों की उस पर नजर भी नहीं पड़ी।
3: ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से, और ये देख सकते कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपने जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 जून 2024, और तब से वो यहाँ पर है। कह रहे कि 5 साल थे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एटा कौन हॉस्पिटल? CNM। अच्छा, चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये कोलकाता के बेनियापुकुर में एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर वो इस अपना मेडिकल इलाज करवाने के लिए आए थे।
0: तो सोचिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में असद अली नाम का बांग्लादेशी घुसपैठिया पांच साल से रहता है, जो बांग्लादेश के जैसोर शहर के नाला दृष्टि का रहने वाला है, जो कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन असद अली जैसे घुसपैठियों को जैसे ही पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर खुलने की खबर लगती है, ये भाग कर वापस बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच जाते हैं, ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है।
5: शुभेंदु
1: जल्दी भागो,
5: शुभेंदु
1: भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा।
0: शुभेंदु अधिकारी सरकार की योजना बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ को सौंपने की है। शुभेंदु कह भी चुके हैं कि वो घुसपैठियों को अदालत नहीं बल्कि सीधे बॉर्डर ले जाएंगे, ताकि डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू की जा सके। बंगाल में नई सरकार के तेवरों का ही असर है कि राज्य में इधर उधर छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद सीमा पर पहुंच रहे हैं, ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
3: यहां आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ज्यादातर लोग जिनसे हम बात कर रहे थे वो 5-6 साल या 8 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन हर किसी का एक अलग कहानी है। लेकिन अगर दूसरे छोर से देखा जाए कि अवैध तरीके से रात के अंधेरे में वो भारत में प्रवेश किए थे, सवाल ये है कि वो इस तरीके से प्रवेश किए, सालों साल वो पश्चिम बंगाल में रहे और बिना डिटेक्शन के, अब जब होल्डिंग कैंप की बात की जा रही है, तब एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। पुलिस की ओर से भी इन्हें कहा गया है, ये बता रहे हमें कि इस वजह से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है।
6: 12 मई को शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के गले मिलते हुए एक फोटो वायरल हुई थी, जिस पर हिमंत बिस्व सरमा ने लिखा था बुरे दिन। इसके आगे उन्होंने लिखा आप जानते हैं कौन और साथ में शुभेंदु अधिकारी को टैग कर दिया था। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी तुरंत जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कोई इनाम नहीं होगा।
7: आई हैव अ बॉर्डर कंस्टिट्यूएंसी, हु वांट्स टू लिव इन इंडिया ना? आई हैव कुश्तिया ऑन द अदर साइड एंड नदिया, द जीडीपी, द हेल्थ इंडिकेटर्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बांग्लादेश आर एक्चुअली बेटर। Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India.
0: देश में जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ को बेकार का हवा बताता है, उसे महुआ मित्रा की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर बैठे इन घुसपैठियों को देखना चाहिए, जिन्हें अक्सर कई राजनीतिक दल और नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए झुठलाते हैं।
3: हाकिमपुर चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट के उस पार बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सातखीरा डिस्ट्रिक्ट है और सातखीरा डिस्ट्रिक्ट में इन्हें भेजा जाएगा। और जो प्रोसेस ये बताया गया है कि अमूमन जितने लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ सिलेक्ट किया जाता है, उनके दस्तावेज लिया जाता है, बांग्लादेश के जो दस्तावेज रहे हैं।
0: याद करिए बंगाल में जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तब भी ऐसे ही बॉर्डर पर लोग बांग्लादेश जाना शुरू हुए थे।
8: ये लॉकडाउन बहुत आगे মানে আর্লি লকডাউন শুরু হয়ে যায়
9: কিভাবে
8: আর রাতি বারে সুরাই ফতে এলাম
9: কোন জায়গা
8: ইয়ে তোমার বেলা ফল
9: সেটা কত বছর মোটামুটি
8: এই লকডাউন কয় বছর আছে
10: আমি 2 বছর 1 মাস হয়েছে এখানে আসছিলাম চেরাই পথে আসছি কোন পথে আসছি সেটা বলতে পারবো না
9: কেন এসেছি
10: আসছিলাম আমার ওয়াইফ অনেক অসুস্থ ছিল তার মানসিক হয়েছে কিডনির সমস্যা ছিল
0: तब डर था लेकिन कुछ दिन का हो सकता है इन्हें लगा हो कि जैसा पहले है वैसा ही चलता रहेगा। जैसे ये बांग्लादेश जाकर पश्चिम बंगाल में रहते आए हैं रहते रहेंगे, लेकिन बीजेपी न सिर्फ सत्ता में आई बल्कि शपथ लेने के 20 दिन से कम वक्त में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया और बांग्लादेशी घुसपैठिए डर के मारे अब खुद ही बंगाल छोड़ने लगे।
11: बहुत कष्ट करेछे, खूब कष्ट करेछे।
0: तो बांग्लादेश से घुसपैठ करवाने का बंगाल में अवैध कारोबार चलता है, जो 9,000 रुपए की रिश्वत लेकर

0: जांच करवाने की, मतलब भारत में बांग्लादेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं और भविष्य दिखता है जो उन्हें घुसपैठ के लिए प्रेरित करता है, जो उस दावे के बिल्कुल उल्टा है कि भारत में कोई क्यों आना चाहेगा। लेकिन इस मामले में सबसे खबरदार करने वाली बात यह है कि भारत में घुसपैठ करना आसान है और घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजना थोड़ा कठिन।
1: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए 3D नीति अपनाई है, यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। और इसी के तहत अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर में एक बार फिर सैकड़ों तादाद में लोग जो अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत प्रवेश किए थे, उनकी भीड़ नजर आ रही है। एक के बाद एक लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा।
2: पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बदलते जनसांख्यिकी का परिवर्तन को लेकर खबरदार कर दिया है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद इसे रोकने के लिए जहां बांग्लादेश की सीमा पर बाढ़ लगाई जा रही है, वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश भर में घुसपैठ रोकने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है।
3: बॉर्डर के सुरक्षित करा, अभारतीयों देर दर्जा देखिए था, घुसपैठिया हटाओ, जाओ जहां से आया था उस रास्ता से जाओ वापस, जाओ बांग्लादेश।
4: पश्चिम बंगाल जीतने के बाद बीजेपी सरकार अब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए चक्रव्यूह रच चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की योजना पूरे देश में घुसपैठ रोकने के साथ डेमोग्राफी बदलने का सपना देखने वालों के मंसूबे ध्वस्त करने की है
5: कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें।
4: तो जो लोग भारत की सीमाओं में चोरी छिपे घुसकर फर्जी दस्तावेज बनवाकर इस देश की डेमोग्राफी बदलने का सपना देख रहे थे, उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जिस महामिशन का संकल्प लिया,
6: घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा।
4: गृहमंत्री अमित शाह ने उस पर मुहर लगाते हुए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज के गठन का ऐलान कर दिया है, जो पूरे भारत में अवैध प्रवास और दूसरे कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन का अध्ययन करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सीमा को स्मार्ट बॉर्डर बनाने की है, जहां से घुसपैठ करना असंभव होगा।
5: ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
4: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 1647 किलोमीटर पर ही बाड़ लगाई गई है। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बीएसएफ को तारबंदी के लिए जमीन सौंप दी गई, जिसने बॉर्डर पर अपना काम भी शुरू कर दिया। बीजेपी अपने DDD फॉर्मूले यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट को सख्ती से लागू कर रही है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में सिर्फ मिजोरम में बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं है, गृहमंत्री अमित शाह की योजना बीजेपी शासित

0: गतिविधियों में बांग्लादेश से घुसपैठ करीब करीब खत्म करने के लिए बीएसएफ को स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल करके घुसपैठ के हर रूट को खत्म करने का मंत्र दिया गया है।
1: अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, इस सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है।
0: घुसपैठ रोकने के इसी प्लान पर अमित शाह त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बीच होल्डिंग सेंटर बनने के बाद जिस तरह से खलबली देखी जा रही है, उसने भारत में घुसपैठ की समस्या और चुनौती को एक बार फिर सबके सामने लाने का काम किया है।
2: सत्ता बंगाल में लंबे वक्त तक टीएमसी की रही, तो दावा यह कि गुंडागर्दी की घुसपैठ आम लोगों को परेशान करती रही, जहां पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर को टीएमसी के कब्जे से नहीं छुड़ा पाया करते थे और बीजेपी राज आने पर टीएमसी के कब्जे से अपना ऑफिस कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आजाद करवाया है।
0: पूजा करते हुए घड़ियाल बजाते इस चेहरे को देखिए, नाम विश्वजीत मंडल, दक्षिण 24 परगना की कैनिंग पूर्व विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता 5 साल बाद अपने घर में वापस आ पाए? वो घर जिसे 2021 विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी नेता के डर से विश्वजीत मंडल को दावा है छोड़ना पड़ा, वो घर जो दावा है कि टीएमसी के नेता शौकत मुल्ला के कहने पर इसलिए बुलडोजर चलवाकर कई जगहों पर गिरवा दिया गया क्योंकि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता विश्वजीत मंडल रहते थे। दावा है कि टीएमसी के नेता यहां चाहते थे कि बीजेपी के बड़े कार्यकर्ताओं के घर तोड़कर इतना डरा दो कि कभी यहां बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई ना बचे। लेकिन बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के बाद, शुभेंदु सरकार आने के बाद हिम्मत वापस मिली तो बीजेपी के नेता विकास सरदार के साथ विश्वजीत मंडल अपने उस घर में वापस लौटे, पूजा पाठ किया, लोगों को दोबारा गृह प्रवेश का प्रसाद खिलाया।
3: सारा पश्चिमबंग मानुष तादेर जीवने बाँचार एकटा स्वाद पेयेछे যে আমরা অন্তত হিন্দু মানুষ এই পশ্চিমবঙ্গে বাস করতে পারবো। এতদিন আমাদের কোনো মানুষ পাশে দাঁড়ায়নি, অ্যাকচুয়ালি এখানে বোমা বন্দুকের রাজত্ব হয়, যেটা শকুন্তলাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু এনআইএ তদন্ত করে যদি এখন এই অস্ত্র উদ্ধার করা হয়, হাজার হাজার অস্ত্র এখান থেকে উদ্ধার হবে।
0: বিশ্বজিৎ মন্ডল কে এস বাত কে সবুত হ্যায় কি হর বার বঙ্গাল মে চুনাও কে বাদ জো হিংসা হোতি রহি উসমে টিএমসি কে লোক চুন চুন কর নিশানা বানাতে থে। लेकिन अब की बार न केवल उस हिंसा पर रोक लगी है बल्कि सत्ता बदलने पर साहस जुटाकर लोग घर भी लौटने लगे। वहीं बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कहीं लेफ्ट और टीएमसी राज की तरह कटमनी का चलन न चलने लगे, इसलिए खुद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चेतावनी दे रहे हैं।
4: बहुत लोग 4 घंटा में भगवा गुलाल लगा लिया, हाथ में बीजेपी का झंडा उठा लिया और कारखाना के दरवाजे में पहुंच गया, तो इसको चिन्हित करने का काम सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी है। जो पैसा मांगेगा मान लीजिएगा, जो यूनियन करेगा आपका कंपनी में जाकर, हम आपको बोलकर जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नाम पर कोई सिंडिकेट नहीं है, किसी को पैसा मत दीजिए।
2: राजस्थान में कोटा के सरकारी अस्पताल में नकली ऑक्सीटोसिन दवा से जुड़े मामले में अब पता ये चला है कि ये नकली दवा राजस्थान के कोटा के अलावा दिल्ली, इंदौर और यूपी के गोंडा में भी सप्लाई की गई है, जिसकी सूचना आगे दे दी गई है। चिंता पैदा करने वाला सवाल इसलिए क्योंकि 4 मई से 17 मई के बीच राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पताल में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई थी जिन्हें ये नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था।
5: आपकी बच्ची होती तो क्या करते आप? आपकी बच्ची, आपकी बहू होती तो क्या करते आप?
0: परिवार रोते रहे, मौतें होती रही। माएं खौफ में जीती रही, हेल्थ डिपार्टमेंट सोता रहा। आंसू दर आंसू गर्भवती माँ बच्चों को जन्म देकर दम तोड़ती रही, परिवार बिलखता रहा। धीरे धीरे आंदोलन बनने लगा कि आखिर गर्भवती महिलाओं की जान क्यों जा रही है। गर्भवती पायल ने 4 मई को दोपहर 12:58 पर दम तोड़ दिया। गर्भवती ज्योति ने 4 मई को ही दोपहर 1:35 पर अंतिम सांस ली। गर्भवती पिंकी महावर की मौत 7 मई को दोपहर 3 बजे हुई। गर्भवती प्रिया महावर की जान 8 मई सुबह 8 बजे चली गई। शिरीन ने 17 मई दोपहर 3 बजे दम तोड़ा। राजस्थान के एक ही जिले कोटा में 4 मई से 17 मई 14 दिन में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई। कभी कहा गया किडनी फेल हो गई, कहीं कहा गया हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल यानी दोनों सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की मौत एक बड़ा सवाल बन गई। महिलाओं की जान जाती रही और तब जाकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर नींद से आधे जागे अस्पताल का दौरा करके खाना पूर्ति कराए। पर अब जाकर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के भीतर मौत की अंधेर नगरी से खबरदार होना जरूरी है, क्योंकि जहां कोटा के सरकारी अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक गर्भवती महिलाओं की मौत पर पर्दा डालता रहा, वहां दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के कहने पर हुई दवाओं की जांच से डराने वाला सच सामने आया। सच गर्भवती महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन लगने का जिसमें दवा का कंटेंट 0 निकला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को लगाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जांच रिपोर्ट का पन्ना है। इस पन्ने पर साफ साफ लिखा है कि अमृतसर की जैक्सन लेबोरेटरीज की तरफ से बनाया गया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसकी जांच में यह नमूना आईपी के अनुरूप नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं। इसी रिपोर्ट में कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गंभीर रूप से अवमानक है, यानी मानक के विपरीत। मतलब जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डिलीवरी के दौरान प्रसव प्रक्रिया को सुगम बनाने, लेबर पेन में आगे की प्रक्रिया को सरल करने और डिलीवरी के बाद होने वाले खून के बहाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उस इंजेक्शन में वो ड्रग ही नहीं थी, उसका कंटेंट 0 था। तो क्या इसी वजह से कोटा में 5 गर्भवती महिलाओं की जान चली गई? आज तक ने सीधे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से ही सवाल किया।
6: कोटा में जो 5 प्रसूताओं की जो मौत हुई थी, उसका जो सैंपल कोलकाता भेजा गया था, वो ड्रग्स में फेल हो चुका है।
7: अभी ऐसा है कि पूरे ड्रग्स इंजेक्टेबल्स जो 20% दवाइयां जो हमारा मेडिकल कॉलेज ने खरीदे हैं, वो और हमारे जो RMSCL की दवाइयों की उनकी पूरी जांच करके पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था। इसमें बेसिकली क्या है कि कोई इतनी जल्दी 7 घंटों के अंदर कोई मौत के कगार पे आ जाए और उसके 7-8 घंटे में डेथ हो जाए, ये कोई चीज है जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है।
6: प्रथम दृष्टया कोई लापरवाही लग रही है, बड़ी कार्रवाई
7: देखिए ऐसा है, बड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर सब तथ्य सामने आ जाए उसके पश्चात मैं उसका जवाब।
0: मंत्री जी देखिए बाप, यही वो जांच रिपोर्ट है जो राजस्थान के खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण विभाग ने जारी की, लेकिन शर्मनाक हालत है। 5-5 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई और जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उन्हें लगा वो दवा ही पूरी नकली निकली, मतलब उसमें ऑक्सीटोसिन का कंटेंट था ही नहीं। रिपोर्ट सबके सामने है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं जांच रिपोर्ट आने दीजिए।
7: पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था।
0: 22 दिन बीत चुके हैं, राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग अब तक मौत का कारण खुलकर बोल नहीं पा रहा। मंत्री जांच रिपोर्ट का इंतजार करा रहे हैं, जबकि जांच करने वाले उन्हीं के राज में दवा का सच बता देते हैं।
8: कोटा में लास्ट 15-20 डेज बैक हमने जो सैंपल्स अराउंड 20 अलग अलग टाइप के मेडिसिन लिए थे, उसमें 19 वेर ऑल स्टैंडर्ड। एक मेडिसिन जो टोसिन है, जैक्सन फार्मा का है, उसमें जो टोसिन जो ब्रांड नेम है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन करके दवा होना चाहिए, तो उस में दवा था नहीं, उसका कंटेंट 0 निकला है।
0: जिस नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में दवा के नाम पर कुछ था ही नहीं, वो कोटा में स्थानीय स्तर पर ही खरीदी गई थी। 10,000 इंजेक्शन जेके लोन अस्पताल गए और 2,479 इंजेक्शन न्यू मेडिकल कॉलेज।
9: जो सैंपलिंग जितनी दवाइयों को की गई थी उसमें से ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन का एक बेच उसमें एक्टिव कंटेंट नहीं मिला है जांच में, तो उसके लिए हमने उचित स्तर पर कार्रवाई के लिए लिख भी दिया है। ये मेडिकल कॉलेज कोटा की आरसी पे हम लोगों ने परचेज ऑर्डर दिया था।
10: प्रिंसिपल होने का अर्थ कतई ये नहीं है कि मैं किसी के क्लिनिकल जजमेंट पे कोई क्वेश्चन करूं।
11: नहीं सर, आपकी बात सही है, पर जो
10: मैं अपना जवाब दे चुका हूं।
11: जो महिलाओं को ये दिक्कत हुई सर, तो इसमें डॉक्टरों को क्यों नहीं पता लगा इनको कि
10: ये डॉक्टर बता सकता है, मैं नहीं बता सकता।
2: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

जंग से जूझती दुनिया के हालात पर क्वेड में मंथन, सुपर शक्तियों के सामने भारत की दो टूक, हर हाल में आतंक का अंत जरूरी, चारों देशों का साझा बयान, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता जरूरी। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृहमंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। कर्नाटक के सीएम हो सकते हैं डीके शिवकुमार, सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धरमैया, दिल्ली में आलाकमान ने दोनों के साथ की थी बैठक। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सिलीगुड़ी साइबर थाने में केस, पिछले साल सनातन धर्म पर की थी अभद्र टिप्पणी। और ओएसएम पोर्टल हैक होने के दावे को सीबीएसई ने खारिज किया, कहा असली मूल्यांकन का कोर्ट का यूआरएल अलग है, छात्रों के अंक या अन्य डेटा पोर्टल पर नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, खासतौर से घुसपैठ को लेकर। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ पहुंची थी, वैसी ही भीड़ बांग्लादेश की सीमा से सटे बॉर्डर पर वापसी का इंतजार कर रही है। घुसपैठियों की इस चिंता को शुभेंदु ने यह कहकर और ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से भगाकर ही रहेंगे।

0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास इन चेहरों को गौर से देखते जाइए। ये लोग वो घुसपैठिए हैं जो जल्द से जल्द अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने राज्य में रहने वाले हर घुसपैठिए को ये कहकर खबरदार कर दिया, भागो जल्दी भागो।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा,
0: तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाग घुसपैठिया भाग। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की इस दो टूक ने राज्य में छिपे घुसपैठियों में खलबली मचा दी। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पर पहुंच गए। सवाल है कि क्या बांग्लादेश इन्हें वापस लेगा?
1: बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, तो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेंगे। तो ये सब बांग्लादेशी है तो ले लेना चाहिए।
0: तो शुभेंदु अधिकारी को भरोसा है कि बांग्लादेश इन सब घुसपैठियों को वापस ले लेगा। क्या वाकई में बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना इतना आसान होगा?
2: पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया।
0: शुभेंदु सरकार घुसपैठियों को चुन चुन कर राज्य से निकालना चाहती। इसके लिए मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर खोला गया। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर में लाकर हिरासत में रखा गया। इनमें 3 महिलाएं, 6 नाबालिग शामिल। जैसे ही खबर राज्य में छिप कर रहने वाले घुसपैठियों तक पहुंची, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया, बांग्लादेश की सीमा के पास पहुंचने लगे।
3: और ये वही हकीमपुर है जहां साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे। SIR जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी, तो अब लोग यहां पर काफी तादाद में यहां पहुंचे थे। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे वो यहां पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाएं।
0: शुभेंदु सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की रही है। इसी सिलसिले में मुर्शिदाबाद में प्रशासन ने एक साथ 3 लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा। इन 3 बांग्लादेशी नागरिकों ने मुर्शिदाबाद के लालगोला और भगवानगोला सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। ऐसा ही एक घुसपैठिया आज तक संवाददाता तापस सेन गुप्ता को हकीमपुर बॉर्डर में मिलता है, जिसने खुद कबूल किया कि वो पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहा था।
3: आप हिंदी बोल सकते हैं?
4: ना, बांग्ला में।
3: अच्छा, अपना नाम की?
4: असद अली।
3: असद अली, अपना बाड़ी कोथा है?
4: नोला दृष्टि,
3: जशोर। कत बचर आगे?
4: 5 बचर आगे।
3: 5 बचर आगे की जन्म
4: ब्रेन आउटब्रेक डाक्তার দেখাইছে।
3: ডাক্তার দেখানোর জন্য এসেছিলেন না? আপনি কি পাসপোর্টে এসেছিলেন?
4: না, আমি ব্ল্যাকে এসেছিলাম।
3: কিসে ব্ল্যাকে এসেছিলেন?
4: জি,
3: মানে দালালের মারফত?
4: না, একা চলে এসেছি।
3: একাই এসেছি?
4: না, তখন দালাল ছিল না।
3: আচ্ছা,
4: একা হেঁটে চলে এসেছি।
3: একা হেঁটে চলে এসেছিলেন? কোনো কারো কি কোনো টাকা দিতে হয়নি?
4: না।
3: আচ্ছা, তারপর কতদিন ধরে চিকিৎসা চালাচ্ছে?
4: দেখেন এইখানে লেখা আছে 6 বছর।
3: আচ্ছা, এটা
0: তো আজ তক সে বাতচিত মে বাংলাদেশ সে আয় ঘুসপাইঠিয়ে নে খুদ বাতায়া কি ও পিছলে 5 সাল সে পশ্চিম বঙ্গাল মে রহতা হ্যায়, ও ভি বিনা পাসপোর্ট কে अवैध रूप से बड़े आराम से बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ करने में कामयाब रहा और पिछले 5 साल में सुरक्षा एजेंसियों की उस पर नजर भी नहीं पड़ी।
3: ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से और ये देख सकते कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपनी जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 जून 2024 और तब से वो यहाँ पर है। कह रहे हैं कि 5 साल थे और यहाँ आप देख सकते हैं कि एटा कौन हॉस्पिटल? CNM। अच्छा, चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये कोलकाता के बेनियापुकुर में एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर वो इस अपना मेडिकल इलाज करवाने के लिए आए थे।
0: तो सोचिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में असद अली नाम का बांग्लादेशी घुसपैठिया पांच साल से रहता है, जो बांग्लादेश के जैसोर शहर के नाला दृष्टि का रहने वाला है, जो कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन असद अली जैसे घुसपैठियों को जैसे ही पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर खुलने की खबर लगती है, ये भागकर वापस बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच जाते हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है।
4: शुभेंदु
1: जल्दी भागो,
5: शुभेंदु
1: बांग्लादेश भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा।
0: शुभेंदु अधिकारी सरकार की योजना बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ को सौंपने की है। शुभेंदु कह भी चुके हैं कि वो घुसपैठियों को अदालत नहीं बल्कि सीधे बॉर्डर ले जाएंगे ताकि डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू की जा सके। बंगाल में नई सरकार के तेवरों का ही असर है कि राज्य में इधर उधर छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद सीमा पर पहुंच रहे हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
3: यहां आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ज्यादातर लोग जिनसे हम बात कर रहे थे वो 5-6 साल या 8 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन हर किसी का एक अलग कहानी है। लेकिन अगर दूसरे छोर से देखा जाए कि अवैध तरीके से रात के अंधेरे में वो भारत में प्रवेश किए थे, सवाल ये है कि वो इस तरीके से प्रवेश किए, सालों साल वो पश्चिम बंगाल में रहे और बिना डिटेक्शन के, अब जब होल्डिंग कैंप की बात की जा रही है तब एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। पुलिस की ओर से भी इन्हें कहा गया है, ये बता रहे हमें कि इस वजह से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है।
6: 12 मई को शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की गले मिलते हुए एक फोटो वायरल हुई थी, जिस पर हिमंत बिस्व सरमा ने लिखा था बुरे दिन। इसके आगे उन्होंने लिखा आप जानते हैं कौन, और साथ में शुभेंदु अधिकारी को टैग कर दिया था। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी तुरंत जवाब दिया, उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कोई इनाम नहीं होगा।
7: I have a border constituency. Who wants to live in India now? I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators and a lot of things in Bangladesh are actually better. Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India.
0: देश में जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ को बेकार का हवा बताता है उसे महुआ मित्रा की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर बैठे इन घुसपैठियों को देखना चाहिए, जिन्हें अक्सर कई राजनीतिक दल और नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए झुठलाते हैं।
3: ये हाकिमपुर चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट के उस पार बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सातखीरा डिस्ट्रिक्ट है और सातखीरा डिस्ट्रिक्ट में इन्हें भेजा जाएगा। और जो प्रोसेस ये बताया गया है कि अमूमन जितने लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ सिलेक्ट किया जाता है, उनके दस्तावेज लिया जाता है, बांग्लादेश के जो दस्तावेज रहे हैं।
0: याद करिए बंगाल में जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तब भी ऐसे ही बॉर्डर पर लोग बांग्लादेश जाना शुरू हुए थे।
8: ये लॉकडाउन बहुत आगे माने आर्ली लॉकडाउन शुरू हुई आर जाती बारे में ये तुम्हार बेला फल
9: दे
8: लॉकडाउन कई बसर आछे
9: आमी दो बसर एक मास होइछे एखाने आसछिलाम चोराई पथे आसछि कोन पथे आसछि सेटा बोलते पारबो ना
10: केन एसेछि
9: आसछिलाम आमार वाइफ अनेक अस्वस्थ छिलो तार मानसिक होइछे किडनीर समस्या छिलो
0: तब डर था लेकिन कुछ दिन का हो सकता है इन्हें लगा हो कि जैसा पहले है वैसा ही चलता रहेगा। जैसे ये बांग्लादेश जाकर पश्चिम बंगाल में रहते आए हैं रहते रहेंगे, लेकिन बीजेपी न सिर्फ सत्ता में आई बल्कि शपथ लेने के 20 दिन से कम वक्त में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया और बांग्लादेशी घुसपैठिए डर के मारे अब खुद ही बंगाल छोड़ने लगे।
11: बहुत कष्ट कर रहे खूब कष्ट कर रहे
12: দিনে আসা যায় রাতেও
13: আসা যায়। এখানে কি জন্য এসেছে?
12: কাজ করার জন্য।
0: তো বাংলাদেশ থেকে ঘুসপাঠ করানোর কা বঙ্গাল মে অবৈধ কারোবার চলতা জো 9000 রুপে কি রিশওয়াত লেকার বাংলাদেশিও কি বঙ্গাল মে এন্ট্রি করবা দেতা। সবসে বড়ি বাত ইয়ে কি বাংলাদেশ জানে ওয়ালে ইয়ে লোক ইয়া তো কাম কি তালাশ মে ভারত আতে হ্যায় ইয়া ফির ইলাজ করবানে কি, মতলব ভারত মে বাংলাদেশ কি লোগো কো বেহতর সুবিধা অর ভবিষ্য দিখতা হ্যায় জো উনহে ঘুসপাঠ কে লিয়ে প্রেরিত করতা হ্যায়, জো উস দাবে কে বিলকুল উল্টা হ্যায় कि भारत में कोई क्यों आना चाहेगा। लेकिन इस मामले में सबसे खबरदार करने वाली बात यह है कि भारत में घुसपैठ करना आसान है और घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजना थोड़ा कठिन।
3: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए 3D नीति अपनाई है, यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। और इसी के तहत अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर में एक बार फिर सैकड़ों तादाद में लोग जो अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत प्रवेश किए थे, उनकी भीड़ नजर आ रही है। एक के बाद एक लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा।
6: पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बदलते जनसांख्यिकी का परिवर्तन को लेकर खबरदार कर दिया है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद इसे रोकने के लिए जहां बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाई जा रही है, वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश भर में घुसपैठ रोकने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है।
2: बॉर्डर के सुरक्षित करा, अभारतीयों देर दर्जा देखिए दा, घुसपैठिया हटाओ, जाओ जहां से आया था उस रास्ता से जाओ वापस, जाओ बांग्लादेश।
5: पश्चिम बंगाल जीतने के बाद बीजेपी सरकार अब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए चक्रव्यूह रच चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की योजना पूरे देश में घुसपैठ रोकने के साथ डेमोग्राफी बदलने का सपना देखने वालों के मंसूबे ध्वस्त करने की है।
12: कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें।
5: तो जो लोग भारत की सीमाओं में चोरी छिपे घुसकर फर्जी दस्तावेज बनवाकर इस देश की डेमोग्राफी बदलने का सपना देख रहे थे, उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जिस महामिशन का संकल्प लिया,
14: घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा।
5: गृहमंत्री अमित शाह ने उस पर मुहर लगाते हुए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज के गठन का ऐलान कर दिया है, जो पूरे भारत में अवैध प्रवास और दूसरे कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन का अध्ययन करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सीमा को स्मार्ट बॉर्डर बनाने की है, जहां से घुसपैठ करना असंभव होगा।
12: ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
5: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 1647 किलोमीटर पर ही बाड़ लगाई गई है। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बीएसएफ को तारबंदी के लिए जमीन सौंप दी गई, जिसने बॉर्डर पर अपना काम भी शुरू कर दिया। बीजेपी अपने DDD फॉर्मूले यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट को सख्ती से लागू कर रही है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में सिर्फ मिजोरम में बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह की योजना बीजेपी शासित राज्यों में बांग्लादेश से घुसपैठ करीब करीब खत्म करने के लिए बीएसएफ को स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल करके घुसपैठ के हर रूट को खत्म करने का मंत्र दिया गया है।
12: अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, इस सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है।
5: घुसपैठ रोकने के इसी प्लान पर अमित शाह त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बीच होल्डिंग सेंटर बनने के बाद जिस तरह से खलबली देखी जा रही है, उसने भारत में घुसपैठ की समस्या और चुनौती को एक बार फिर सबके सामने लाने का काम किया है।
6: राजस्थान में कोटा के सरकारी अस्पताल में नकली ऑक्सीटोसिन दवा से जुड़े मामले में अब पता ये चला है कि ये नकली दवा राजस्थान के कोटा के अलावा दिल्ली, इंदौर और यूपी के गोंडा में भी सप्लाई की गई है, जिसकी सूचना आगे दे दी गई है। चिंता पैदा करने वाला सवाल इसलिए क्योंकि 4 मई से 17 मई के बीच राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पताल में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई थी, जिन्हें ये नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था।
15: आपकी बच्ची होती तो क्या करते आप? आपकी बच्ची, आपकी बहू होती तो क्या करते आप?
5: परिवार रोते रहे, मौतें होती रही। माए खौफ में जीती रही, हेल्थ डिपार्टमेंट सोता रहा। आंसू दर आंसू गर्भवती माँ बच्चों को जन्म देकर दम तोड़ती रही, परिवार बिलखता रहा। धीरे धीरे आंदोलन बनने लगा कि आखिर गर्भवती महिलाओं की जान क्यों जा रही है। गर्भवती पायल ने 4 मई को दोपहर 12:58 पर दम तोड़ दिया। गर्भवती ज्योति ने 4 मई को ही दोपहर 1:35 पर अंतिम सांस ली। गर्भवती पिंकी महावर की मौत 7 मई को दोपहर 3 हुई। गर्भवती प्रिया महावर की जान 8 मई सुबह 8 चली गई। शिरीन ने 17 मई दोपहर 3 दम तोड़ा। राजस्थान के एक ही जिले कोटा में 4 मई से 17 मई 14 दिन में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई। कभी कहा गया किडनी फेल हो गई, कहीं कहा गया हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल यानी दोनों सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की मौत एक बड़ा सवाल बन गई। महिलाओं की जान जाती रही और तब जाकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर नींद से आधे जागे अस्पताल का दौरा करके खाना पूर्ति कराए, पर अब जाकर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के भीतर मौत की अंधेर नगरी से खबरदार होना जरूरी है, क्योंकि जहां कोटा के सरकारी अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक गर्भवती महिलाओं की मौत पर पर्दा डालता रहा, वहां दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के कहने पर हुई दवाओं की जांच से डराने वाला सच सामने आया। सच गर्भवती महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन लगने का जिसमें दवा का कंटेंट 0 निकला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को लगाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जांच रिपोर्ट का पन्ना है। इस पन्ने पर साफ साफ लिखा है कि अमृतसर की जैक्सन लेबोरेटरीज की तरफ से बनाया गया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसकी जांच में ये नमूना आईपी के अनुरूप नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं। इसी रिपोर्ट में कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गंभीर रूप से अवमानक है, यानी मानक के विपरीत। मतलब जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डिलीवरी के दौरान प्रसव प्रक्रिया को सुगम बनाने, लेबर पेन में आगे की प्रक्रिया को सरल करने और डिलीवरी के बाद होने वाले खून के बहाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उस इंजेक्शन में वो ड्रग ही नहीं थी, उसका कंटेंट 0 था। तो क्या इसी वजह से कोटा में 5 गर्भवती महिलाओं की जान चली गई? आज तक मैं सीधे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से ही सवाल किया।
16: कोटा में जो 5 प्रसूताओं की जो मौत हुई थी, उसका जो सैंपल कोलकाता भेजा गया था, वो ड्रग्स में फेल हो चुका है।
17: अभी ऐसा कि पूरे ड्रग्स इंजेक्टेबल्स जो 20% दवाइयां जो हमारा मेडिकल कॉलेज ने खरीदे हैं, वो और हमारे जो आरएमएससीएल की दवाइयों की उनकी पूरी जांच करके पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था। इसमें बेसिकली क्या है कि कोई इतनी जल्दी 7 घंटों के अंदर कोई मौत के कगार पे आ जाए और उसके 7-8 घंटे में डेथ हो जाए, ये कोई चीज है जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है।
18: प्रथम दृष्टि को लापरवाही लग रही है, बड़ी कार्रवाई एक्शन की जरूरत है।
17: देखिए ऐसा है, बड़ी कार्रवाई की जाएगी पर सब तथ्य सामने आ जाए उसके पश्चात मैं उसका जवाब दूंगा।
0: मंत्री जी देखिए अब आप, यही वो जांच रिपोर्ट है जो राजस्थान के खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण विभाग ने जारी की, लेकिन शर्मनाक हालत है। 5-5 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई और जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उन्हें लगा वो दवा ही पूरी नकली निकली, मतलब उसमें ऑक्सीटोसिन का कंटेंट था ही नहीं। रिपोर्ट सबके सामने है लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं जांच रिपोर्ट आने दीजिए।
17: पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था।
0: 22 दिन बीत चुके हैं, राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग अब तक मौत का कारण खुलकर बोल नहीं पा रहा। मंत्री जांच रिपोर्ट का इंतजार करा रहे हैं जबकि जांच करने वाले उन्हीं के राज में दवा का सच बता देते हैं।
19: कोटा में लास्ट 15-20 डेज बैक हमने जो सैंपल्स अराउंड 20 अलग अलग टाइप के मेडिसिन लिए थे, उसमें 19 वेर ऑल स्टैंडर्ड। एक मेडिसिन जो टोसिन है, जैक्सन फार्मा का है, उसमें जो टोसिन जो ब्रांड नेम है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन करके दवा होना चाहिए, तो उस में दवा था नहीं, उसका कंटेंट जीरो निकला है।
0: जिस नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में दवा के नाम पर कुछ था ही नहीं, वो कोटा में स्थानीय स्तर पर ही खरीदी गई थी। 10,000 इंजेक्शन जेके लोन अस्पताल गए और 2,479 इंजेक्शन न्यू मेडिकल कॉलेज।
20: जो सैंपलिंग जितनी दवाइयों की गई थी उसमें से ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन का एक बैच, उसमें एक्टिव कंटेंट नहीं मिला है जांच में, तो उसके लिए हमने उच्च स्तर पर कार्रवाई के लिए लिख भी दिया है। ये मेडिकल कॉलेज कोटा की आरसी पे हम लोगों ने परचेज ऑर्डर दिया था।
21: प्रिंसिपल होने का अर्थ कतई ये नहीं है कि मैं किसी के क्लिनिकल जजमेंट पे कोई क्वेश्चन करूं।
22: नहीं सर, आपकी बात सही है पर जो
21: मैं अपना जवाब दे चुका हूं।
22: जो महिलाओं को ये दिक्कत हुई सर, तो इसमें डॉक्टरों को क्यों नहीं पता लगा इनको कि
21: ये डॉक्टर बता सकता है, मैं नहीं बता सकता।
6: केदारनाथ में दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु हर मुसीबत सहते हुए झेलकर पहुंच रहे हैं, लेकिन दावा यह है कि आज से 12 घंटे लाइन में खड़े होकर भी उन्हें दर्शन नहीं हो पा रहे। इसकी वजह श्रद्धालुओं के मुताबिक वीआईपी लाइन की दीवार है जिसे तोड़ने के बजाय प्रशासन उसे और ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है।
23: एक बजे से लाइन में लगे हुए हैं, ना कोई व्यवस्था है, ना लाइन चल रही है। 8 बजे लाइन चलनी चालू हुई है
24: पर हम 1 बजे रात से ही लाइन लगे हैं। 1 बजे रात से, जबकि हमको अभी मन के चलिए अभी टाइम हो रहा है, कितना अभी हमको दर्शन हुआ है, ठीक है।
0: ये उस आम आदमी का दर्द है जो भक्ति के दम पर केदारनाथ तो पहुंच गया लेकिन वहां प्रशासन की बद इंतजामी ने इसका मन खट्टा कर दिया। दुर्भाग्य ये कि अकेले नहीं।
23: और मैं नोएडा से आया हूँ और मैंने यहाँ पे मतलब की रात में 1 बजे से दर्शन की लाइन में लगा था और सुबह के 8 बजे तक लाइन में लगा था, लेकिन लाइन में 1% ली नहीं है। वहाँ पे पुलिस वाले बोलते हैं कि अभी भी ये ऐसे ही रहेगी, तो इसलिए मैं हम लोगों ने बाहर आ गया उसको छोड़ के, अब दोबारा से वो अंदर जाने ही
25: नहीं। मैनेजमेंट कैसा है?
23: मैनेजमेंट एक बार बकवास है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। हम लोग बोल रहे धक्का मुक्की हो गया तो पुलिस वाले कुछ कर नहीं है, वो रिएक्शन नहीं ले।
0: केदारनाथ में भक्तों के इसी सैलाब के दम पर आने वाले दिनों में अपनी कामयाबी का डंका सत्ताधारी सरकार और व्यवस्था पीटती दिखेगी, लेकिन उस कहानी में जयपुर के श्याम खंडेलवाल के साथ हुई बदसलूकी का जिक्र नहीं होगा, जिनसे पुलिस वालों ने धक्का मुक्की की और गाली गलौज तक की।
25: समस्या ये है, बुजुर्गों को भी गालियां निकाल के धक्के दे रहे थे, औरतों को धक्के मारे थे बदतमीजी से।
26: इतने बुजुर्ग हैं, यहाँ कहा जाता है कि 60 साल से ऊपर वालों के लिए दर्शन,
25: अरे उन्होंने कोई वीआईपी नहीं है सब, मतलब कुछ बद्दी बद्दी गालियां बोली उन्होंने।
0: उत्तराखंड सरकार ने पूरे देश को केदारनाथ आने का न्योता तो दिया।
27: श्रद्धालु आ रहे हैं, हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक प्रकार से उनके दर्शन एक प्रकार से आना जाना हो सुव्यवस्थित, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। बहुत अच्छी सबके दर्शन भी हो रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं।
0: भक्त भी देश के कोने कोने से वहां पहुंचे, लेकिन सरकारी बद इंतजामी की वजह से आम आदमी क्या यहां भी पीछे छूटा? दर्शन करने में उसके पसीने छूट गए, अगर कुछ याद रह गया तो प्रशासन की नाकामी और लापरवाही।
23: बारिश से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है, आने जाने के लिए भी ऐसे
1: बदमाशी भी करते हैं, रास्ते में शैतानी करते हैं, घोड़ो कच्चर वाले। एक मित्र था कल, उसके साथ हम राजस्थान अलवर से बहरोड ना, मतलब कि लैट्रिन बाथरूम कैसी कोई व्यवस्था, एक एक घंटे बाथरूम करने के लिए एक एक घंटे रुकना पड़ता है यहाँ पे।
4: लगे थे लोग सुबह 3 बजे उठ करके 4 बजे से लाइन में लगे है, अभी 12:30 बज गया, अभी तक नंबर नहीं आया, अभी मंदिर बंद हो गया।
0: केदारनाथ में महीने भर के अंदर 9 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके, पहले कभी इतने श्रद्धालु दर्शन करने नहीं पहुंचे। रविवार को 29,787 श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। इस तरह केदारनाथ में श्रद्धालुओं को करीब 3 सेकंड दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन केदार मंदिर समिति की रिकॉर्ड कमाई के बावजूद बाबा के भक्तों की क्या बेकदरी होती है? भगवान के दरबार में भी आम और खास में क्या भेदभाव होता है? केदारनाथ का VIP गेट देखिए, जहां दर्शनों के लिए कितनी भीड़ उमड़ी, धक्का मुक्की हो रही है। बदइंतजामी का आलम ये कि हर कोई इससे बचने के लिए 2,500 रुपए की VIP पर्ची कटवा कर अंदर जाना चाहता है। इसके बावजूद केदार बाबा के दर्शन करने की मुराद आम आदमी की पूरी नहीं हो पा रही।
7: यहाँ पे ढंग की ना कुछ सेवा पानी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बेचारी बूढ़ी माँ है मेरी, बहुत परेशान है,
8: चक्कर आ रहे।
7: यहाँ कुछ भी नहीं है, सही का प्रशासन कुछ नहीं है,
8: कमी है बहुत ज्यादा बड़ी है।
7: रात के 10 बजे खड़े हैं इधर पे, अब तक 100 मीटर आगे नहीं सर के।
0: तो केदारनाथ में प्रशासन ने भक्तों को तो बुला लिया, लेकिन तस्वीरें गवाही दे रही कि बदइंतजामी भी इस बार नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। सवाल है कि ये घंटों में लाइन लगने के बावजूद श्रद्धालु दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे? प्रशासन और बद्री केदार मंदिर समिति क्या भक्तों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की जिम्मेदारी लेगा? जिस VIP लाइन को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही उसे लेकर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? इतने सारे सवालों के बीच प्रशासन मान किसी दूसरी दुनिया में जी रहा, कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। केदारनाथ में भक्त दुनिया भर की मुसीबतों को हंसते हुए सिर्फ इसलिए झेल रहा है ताकि उसे अपने भगवान के दर्शन हो जाए। प्रशासन चाहे जितनी अपनी पीठ ठोक ले, लेकिन देश देख रहा है कि पहाड़ी से गिरने वाले पत्थरों के खतरे से बचते बचाते भोलेनाथ के वक्त हर कुर्बानी देते हुए केदारनाथ पहुंच रहे हैं। लेकिन आम आदमी की इस भावना की कद्र न करके VIP लोगों को दर्शन करवाने के लिए आम लोगों को दावा है कि इंतजार करवाया जा रहा है।
6: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

जंग से जूझती दुनिया के हालात पर क्वेड में मंथन, सुपर शक्तियों के सामने भारत की दो टूक, हर हाल में आतंक का अंत जरूरी, चारों देशों का साझा बयान, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता जरूरी। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृहमंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। कर्नाटक के सीएम हो सकते हैं डीके शिवकुमार, सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धरमैया, दिल्ली में आलाकमान ने दोनों के साथ की थी बैठक। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सिलीगुड़ी साइबर थाने में केस, पिछले साल सनातन धर्म पर की थी अभद्र टिप्पणी। और ओएसएम पोर्टल हैक होने के दावे को सीबीएसई ने खारिज किया, कहा असली मूल्यांकन का कोर्ट का यूआरएल अलग है, छात्रों के अंक या अन्य डेटा पोर्टल पर नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, खासतौर से घुसपैठ को लेकर। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ पहुंची थी, वैसी ही भीड़ बांग्लादेश की सीमा से सटे बॉर्डर पर वापसी का इंतजार कर रही है। घुसपैठियों की इस चिंता को शुभेंदु ने यह कहकर और ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से भगाकर ही रहेंगे।

0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास इन चेहरों को गौर से देखते जाइए। ये लोग वो घुसपैठिए हैं जो जल्द से जल्द अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने राज्य में रहने वाले हर घुसपैठिए को ये कहकर खबरदार कर दिया, भागो जल्दी भागो।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये।
0: तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाग घुसपैठिया भाग। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की इस दो टूक ने राज्य में छिपे घुसपैठियों में खलबली मचा दी। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए बॉर्डर पर पहुंच गए। सवाल है कि क्या बांग्लादेश इन्हें वापस लेगा?
1: बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, तो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेंगे। तो ये सब बांग्लादेशी है तो ले लेना चाहिए।
0: तो शुभेंदु अधिकारी को भरोसा है कि बांग्लादेश इन सब घुसपैठियों को वापस ले लेगा। क्या वाकई में बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना इतना आसान होगा?
2: पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया।
0: शुभेंदु सरकार घुसपैठियों को चुन चुन कर राज्य से निकालना चाहती। इसके लिए मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर खोला गया। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर में लाकर हिरासत में रखा गया। इनमें 3 महिलाएं, 6 नाबालिग शामिल। जैसे ही खबर राज्य में छिप कर रहने वाले घुसपैठियों तक पहुंची, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया, बांग्लादेश की सीमा के पास पहुंचने लगे।
3: ये वही हकीमपुर है जहां साल भर पहले हजारों के तादाद में लोग आए थे। SIR जब लागू किया गया था, लागू करने की बात हो रही थी, तो अब लोग यहां पर काफी तादाद में यहां पहुंचे थे। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर में सैकड़ों के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहते थे वो यहां पर आकर जुटे हैं और वो चाहते हैं कि वो उस पार चले जाएं।
0: शुभेंदु सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की रही है। इसी सिलसिले में मुर्शिदाबाद में प्रशासन ने एक साथ 3 लोगों को होल्डिंग सेंटर भेजा। इन 3 बांग्लादेशी नागरिकों ने मुर्शिदाबाद के लालगोला और भगवानगोला सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। ऐसा ही एक घुसपैठिया आज तक संवाददाता तापस सेन गुप्ता को हकीमपुर बॉर्डर में मिलता है, जिसने खुद कबूल किया कि वो पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहा था।
3: आप हिंदी बोल सकते हैं?
4: ना, बांग्ला में।
3: अच्छा, अपना नाम की?
4: असद अली।
3: अपना बाड़ी कोथा है?
4: नोला दृष्टि,
3: जशोर। कत बचर आगे?
4: 5 बचर आगे।
3: 5 बचर आगे की जन्म
4: ब्रेन डाक्तर देखे?
3: ডাক্তার দেখানোর জন্য এসেছিলেন। আপনি কি পাসপোর্টে এসেছিলেন?
4: না, ব্ল্যাকে এসেছিলেন।
3: কিসে ব্ল্যাকে এসেছিলেন?
4: জি,
3: মানে দালালের মারফত?
4: না, একা চলে এসেছি।
3: একাই এসেছি?
4: না, তখন দালাল ছিল না।
3: আচ্ছা,
4: একা চলে এসেছি।
3: একা হেঁটে চলে এসেছি? কোনো কারো কি কোনো টাকা দিতে হয়নি?
4: না।
3: আচ্ছা, তারপর কতদিন ধরে চিকিৎসা চালাচ্ছে?
4: দেখেন, এখানে লেখা আছে 6 বছর।
3: আচ্ছা, এটা
0: তো আজ তক সে বাতচিত মে বাংলাদেশ তে আয় ঘুসপাইঠিয়ে নে খুদ বাতায়া কি ও পিছলে 5 সাল সে পশ্চিম বঙ্গাল মে রহতা হ্যায়, ও ভি বিনা পাসপোর্ট কে अवैध रूप से बड़े आराम से बांग्लादेश से बंगाल में घुसपैठ करने में कामयाब रहा और पिछले 5 साल में सुरक्षा एजेंसियों की उस पर नजर भी नहीं पड़ी।
3: ये मेडिकल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे बांग्लादेश से, और ये देख सकते कि ये अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी बकायदा यहाँ पर अपने जो पत्नी है उनकी उनका नाम है रिपा बीबी, तो उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो यहाँ पर आए थे 7 जून 2024, और तब से वो यहाँ पर है। कह रहे कि 5 साल थे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एटा कौन हॉस्पिटल, CNM, अच्छा चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ये कोलकाता के बेनियापुकुर में एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर वो इस अपना मेडिकल इलाज करवाने के लिए आए थे।
0: तो सोचिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में असद अली नाम का बांग्लादेशी घुसपैठिया पांच साल से रहता आया, जो बांग्लादेश के जैसोर शहर के नाला दृष्टि का रहने वाला है, जो कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर है। लेकिन असद अली जैसे घुसपैठियों को जैसे ही पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर खुलने की खबर लगती है, ये भागकर वापस बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच जाते हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये।
5: शुभेंदु
1: जल्दी भागो,
6: शुभेंदु
1: बांग्लादेश भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा।
0: शुभेंदु अधिकारी सरकार की योजना बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ को सौंपने की है। शुभेंदु कह भी चुके हैं कि वो घुसपैठियों को अदालत नहीं बल्कि सीधे बॉर्डर ले जाएंगे ताकि डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू की जा सके। बंगाल में नई सरकार के तेवरों का ही असर है कि राज्य में इधर उधर छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद सीमा पर पहुंच रहे हैं ताकि शुभेंदु सरकार की कार्रवाई से बचा जा सके।
3: यहां आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ज्यादातर लोग जिनसे हम बात कर रहे थे वो 5-6 साल या 8 साल पहले यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन हर किसी का एक अलग कहानी है। लेकिन अगर दूसरे छोर से देखा जाए कि अवैध तरीके से रात के अंधेरे में वो भारत में प्रवेश किए थे, सवाल ये है कि वो इस तरीके से प्रवेश किए, सालों साल वो पश्चिम बंगाल में रहे और बिना डिटेक्शन के, अब जब होल्डिंग कैंप की बात की जा रही है तब एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। पुलिस की ओर से भी इन्हें कहा गया है, ये बता रहे हमें कि इस वजह से उन्हें वापस जाना पड़ रहा है।
7: 12 मई को शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की गले मिलते हुए एक फोटो वायरल हुई थी, जिस पर हिमंत बिस्व शर्मा ने लिखा था बुरे दिन। इसके आगे उन्होंने लिखा आप जानते हैं कौन और साथ में शुभेंदु अधिकारी को टैग कर दिया था। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी तुरंत जवाब दिया, उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कोई इनाम नहीं होगा।
8: आई हैव अ बॉर्डर कंस्टिट्यूएंसी, हु वांट्स टू लिव इन इंडिया ना? आई हैव कुश्तिया ऑन द अदर साइड एंड नदिया, द जीडीपी, द हेल्थ इंडिकेटर्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बांग्लादेश आर एक्चुअली बेटर। Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India.
0: देश में जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठ को बेकार का हवा बताता है उसे महुआ मित्रा की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर बैठे इन घुसपैठियों को देखना चाहिए, जिन्हें अक्सर कई राजनीतिक दल और नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए झुठलाते हैं।
3: हाकिमपुर चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट के उस पार बांग्लादेश है, बांग्लादेश का सातखीरा डिस्ट्रिक्ट है और सातखीरा डिस्ट्रिक्ट में इन्हें भेजा जाएगा। और जो प्रोसेस ये बताया गया है कि अमूमन जितने लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों को यहाँ सिलेक्ट किया जाता है, उनके दस्तावेज लिया जाता है, बांग्लादेश के जो दस्तावेज रहे हैं।
0: याद करिए बंगाल में जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तब भी ऐसे ही बॉर्डर पर लोग बांग्लादेश जाना शुरू हुए थे।
9: ये लॉकडाउन बहुत आगे माने आर्ली लॉकडाउन शुरू हुई आर जाती बारे सुराय होते ही
10: कौन
9: ये तुम्हार बेनाफल लॉकडाउन कई बस
10: আমি 2 বছর 1 মাস হয়েছে এখানে আসছিলাম, চোরাই পথে আসছিলাম, কোন পথে আসছি সেটা বলতে পারবো না।
11: কেন এসেছি?
10: আসছিলাম আমার ওয়াইফ অনেক অসুস্থ ছিল, তার মানসিক হয়েছে, কিডনির সমস্যা ছিল।
0: তব ডর থা লেকিন কুছ দিন কা হো সকতা হ্যায় ইনহে লাগা হো কি জ্যাসা পহলে হ্যায় ওয়্যাসা হি চলতা রহেগা। জ্যাসে ইয়ে বাংলাদেশ জাকার পশ্চিম বঙ্গাল মে রহতে আয়ে হ্যায় রহতে রহেঙ্গে, লেকিন বিজেপি না সিরফ সত্তা মে আয়ি बल्कि शपथ लेने के 20 दिन से कम वक्त में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया और बांग्लादेशी घुसपैठिए डर के मारे अब खुद ही बंगाल छोड़ने लगे।
12: बहुत कष्ट कर रहे, खूब कष्ट कर रहे,
13: दिन आशा जाए रात आशा
14: जाए
13: काज करार जन्य।
0: तो बांग्लादेश से घुसपैठ करवाने का बंगाल में अवैध कारोबार चलता है, जो 9000 रुपए की रिश्वत लेकर बांग्लादेशियों की बंगाल में एंट्री करवा देता है। सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश से आने वाले ये लोग या तो काम की तलाश में भारत आते हैं या फिर इलाज करवाने के, मतलब भारत में बांग्लादेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं और भविष्य दिखता है, जो उन्हें घुसपैठ के लिए प्रेरित करता है, जो उस दावे के बिल्कुल उल्टा है कि भारत में कोई क्यों आना चाहेगा। लेकिन इस मामले में सबसे खबरदार करने वाली बात यह है कि भारत में घुसपैठ करना आसान है और घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजना थोड़ा कठिन।
3: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए 3D नीति अपनाई है, यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। और इसी के तहत अलग अलग जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर में एक बार फिर सैकड़ों तादाद में लोग जो अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत प्रवेश किए थे, उनकी भीड़ नजर आ रही है। एक के बाद एक लोग गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा।
7: पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बदलते जनसांख्यिकी का परिवर्तन को लेकर खबरदार कर दिया है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद इसे रोकने के लिए जहां बांग्लादेश की सीमा पर बाढ़ लगाई जा रही है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में घुसपैठ रोकने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है।

0: पश्चिम बंगाल जीतने के बाद बीजेपी सरकार अब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए चक्रव्यूह रच चुकी है। वहीं केंद्र सरकार की योजना पूरे देश में घुसपैठ रोकने के साथ डेमोग्राफी बदलने का सपना देखने वालों के मंसूबे ध्वस्त करने की है
1: कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें।
0: तो जो लोग भारत की सीमाओं में चोरी छिपे घुसकर फर्जी दस्तावेज बनवाकर इस देश की डेमोग्राफी बदलने का सपना देख रहे थे, उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जिस महामिशन का संकल्प लिया,
2: घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने उस पर मुहर लगाते हुए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज के गठन का ऐलान कर दिया है, जो पूरे भारत में अवैध प्रवास और दूसरे कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन का अध्ययन करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजना बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सीमा को स्मार्ट बॉर्डर बनाने की है, जहां से घुसपैठ करना असंभव होगा।
1: ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
0: पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से सिर्फ 1647 किलोमीटर पर ही बाड़ लगाई गई है। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बीएसएफ को तारबंदी के लिए जमीन सौंप दी गई, जिसने बॉर्डर पर अपना काम भी शुरू कर दिया। बीजेपी अपने ट्रिपल डी फॉर्मूले यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट को सख्ती से लागू कर रही है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में सिर्फ मिजोरम में बीजेपी और एनडीए की सरकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह की योजना बीजेपी शासित राज्यों में बांग्लादेश से घुसपैठ करीब करीब खत्म करने के लिए बीएसएफ को स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल करके घुसपैठ के हर रूट को खत्म करने का मंत्र दिया गया है।
1: अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून थून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है।
0: घुसपैठ रोकने के इसी प्लान पर अमित शाह त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इससे पहले ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बीच होल्डिंग सेंटर बनने के बाद जिस तरह से खलबली देखी जा रही है, उसने भारत में घुसपैठ की समस्या और चुनौती को एक बार फिर सबके सामने लाने का काम किया है।
3: राजस्थान में कोटा के सरकारी अस्पताल में नकली ऑक्सीटोसिन दवा से जुड़े मामले में अब पता यह चला है कि यह नकली दवा राजस्थान के कोटा के अलावा दिल्ली, इंदौर और यूपी के गोंडा में भी सप्लाई की गई है, जिसकी सूचना आगे दे दी गई है। चिंता पैदा करने वाला सवाल इसलिए

0: क्योंकि 4 मई से 17 मई के बीच राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पताल में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई थी जिन्हें ये नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया गया था।
1: आपकी बच्ची होती तो क्या करते आप? आपकी बच्ची, आपकी बहू होती तो क्या करते आप?
2: परिवार रोते रहे, मौतें होती रही। माएं खौफ में जीती रही, हेल्थ डिपार्टमेंट सोता रहा। आंसू दर आंसू गर्भवती माँ बच्चों को जन्म देकर दम तोड़ती रही, परिवार बिलखता रहा। धीरे धीरे आंदोलन बनने लगा कि आखिर गर्भवती महिलाओं की जान क्यों जा रही है। गर्भवती पायल ने 4 मई को दोपहर 12:58 पर दम तोड़ दिया। गर्भवती ज्योति ने 4 मई को ही दोपहर 1:35 पर अंतिम सांस ली। गर्भवती पिंकी महावर की मौत 7 मई को दोपहर 3 बजे हुई। गर्भवती प्रिया महावर की जान 8 मई सुबह 8 बजे चली गई। शिरीन ने 17 मई दोपहर 3 बजे दम तोड़ा। राजस्थान के एक ही जिले कोटा में 4 मई से 17 मई 14 दिन में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई। कभी कहा गया किडनी फेल हो गई, कहीं कहा गया हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल यानी दोनों सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की मौत एक बड़ा सवाल बन गई। महिलाओं की जान जाती रही और तब जाकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर नींद से आधे जागे अस्पताल का दौरा करके खाना पूर्ति कराए। पर अब जाकर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के भीतर मौत की अंधेर नगरी से खबरदार होना जरूरी है, क्योंकि जहां कोटा के सरकारी अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक गर्भवती महिलाओं की मौत पर पर्दा डालता रहा, वहां दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के कहने पर हुई दवाओं की जांच से डराने वाला सच सामने आया। सच गर्भवती महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन लगने का जिसमें दवा का कंटेंट 0 निकला है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को लगाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जांच रिपोर्ट का पन्ना है। इस पन्ने पर साफ साफ लिखा है कि अमृतसर की जैक्सन लेबोरेटरीज की तरफ से बनाया गया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जिसकी जांच में यह नमूना आईपी के अनुरूप नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीटोसिन बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं। इसी रिपोर्ट में कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गंभीर रूप से अवमानक है, यानी मानक के विपरीत। मतलब जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन डिलीवरी के दौरान प्रसव प्रक्रिया को सुगम बनाने, लेबर पेन में आगे की प्रक्रिया को सरल करने और डिलीवरी के बाद होने वाले खून के बहाव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उस इंजेक्शन में वो ड्रग ही नहीं थी, उसका कंटेंट 0 था। तो क्या इसी वजह से कोटा में 5 गर्भवती महिलाओं की जान चली गई? आज तक ने सीधे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से ही सवाल किया।
3: कोटा में जो 5 प्रसूताओं की जो मौत हुई थी, उसका जो सैंपल कोलकाता भेजा गया था, वो ड्रग्स में फेल हो चुका है।
4: अभी ऐसा कि पूरे ड्रग्स इंजेक्टेबल्स जो 20% दवाइयां जो हमारा मेडिकल कॉलेज ने खरीदे हैं, वो और हमारे जो RMSCL की दवाइयों की उनकी पूरी जांच करके पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था। इसमें बेसिकली क्या है कि कोई इतनी जल्दी 7 घंटों के अंदर कोई मौत के कगार पे आ जाए और उसके 7-8 घंटे में डेथ हो जाए, ये कोई चीज है जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है।
3: प्रथम दृष्टया कोई लापरवाही लग रही है, बड़ी कार्रवाई एक्शन की जरूरत है?
4: देखिए ऐसा है, बड़ी कार्रवाई की जाएगी, पर सब तथ्य सामने आ जाए उसके पश्चात मैं उसका जवाब।
2: मंत्री जी देखिए, अब आप यही वो जांच रिपोर्ट है जो राजस्थान के खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण विभाग ने जारी की, लेकिन शर्मनाक हालत है। 5-5 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई और जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उन्हें लगा वो दवा ही पूरी नकली निकली, मतलब उसमें ऑक्सीटोसिन का कंटेंट था ही नहीं। रिपोर्ट सबके सामने है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं जांच रिपोर्ट आने दीजिए।
4: पूरी रिपोर्ट आने पर लगभग अगले 2-3 दिन के अंदर हमें मालूम पड़ जाएगा कि कारण क्या था।
2: 22 दिन बीत चुके हैं, राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग अब तक मौत का कारण खुलकर बोल नहीं पा रहा। मंत्री जांच रिपोर्ट का इंतजार करा रहे हैं, जबकि जांच करने वाले उन्हीं के राज में दवा का सच बता देते हैं।
5: कोटा में लास्ट 15-20 डेज बैक हमने जो सैंपल्स अराउंड 20 अलग अलग टाइप के मेडिसिन लिए थे उसमें 19 वेर ऑल स्टैंडर्ड. एक मेडिसिन जो टोसिन है जैक्सन फार्मा का है उसमें जो टोसिन जो ब्रांड नेम है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन करके दवा होना चाहिए तो उस में दवा था नहीं, उसका कंटेंट जीरो निकला है.
2: जिस नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में दवा के नाम पर कुछ था ही नहीं वो कोटा में स्थानीय स्तर पर ही खरीदी गई थी. 10,000 इंजेक्शन जेके लोन अस्पताल गए और 2,479 इंजेक्शन न्यू मेडिकल कॉलेज.
6: जो सैंपलिंग जितनी दवाइयों को की गई थी उसमें से ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन का एक बैच उसमें एक्टिव कंटेंट नहीं मिला है जांच में, तो उसके लिए हमने उचित स्तर पर कार्रवाई के लिए लिख भी दिया है. ये मेडिकल कॉलेज कोटा की आरसी पे हम लोगों ने परचेज ऑर्डर दिया था.
7: प्रिंसिपल होने का अर्थ कतई ये नहीं है कि मैं किसी के क्लिनिकल जजमेंट पे कोई क्वेश्चन करूं.
8: नहीं सर, आपकी बात सही है पर जो
7: मैं अपना जवाब दे चुका हूं.
8: जो महिलाओं को ये दिक्कत हुई सर, तो इसमें डॉक्टरों को क्यों नहीं पता लगा इनको कि
7: ये डॉक्टर बता सकता है, मैं नहीं बता सकता.
2: मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं मैं क्या बताऊं, अधीक्षक कहते हैं दवा तो मेडिकल कॉलेज की मंजूरी से खरीदी और स्वास्थ्य मंत्री 3 हफ्ते बाद भी जांच रिपोर्ट का इंतजार करके मामला लटकाते हैं.
9: आखिर कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में ये नकली दवा पहुंची कैसे? इमरजेंसी खरीद के नाम पर सब स्टैंडर्ड दवाइयों के खरीद का बड़ा रैकेट सरकारी अस्पतालों में चल रहा है. दवा खरीदने वाले अधीक्षक कह रहे हैं कि अगर ये दवा नकली थी तो फिर डॉक्टर ने दूसरी दवा का प्रयोग क्यों नहीं किया. डॉक्टर का कहना है कि दवा नकली है, यह पता कैसे चलेगा जो दूसरी दवाइयों का प्रयोग करेंगे. अब बड़ा सवाल है कि जब इन दवाइयों से मौत नहीं हुई है तो फिर मौतें कैसे हुई है, इसके बारे में आखिर कौन बताएगा.
2: राजस्थान सरकार ने टोसिन इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी जैक्सन लेबोरेटरीज के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराने का आदेश दिए हैं, जिसके मालिक कहते हैं कि कमी इंजेक्शन में नहीं है, राजस्थान के सरकारी विभाग में है.
10: वो तो स्टोरेज के ऊपर भी डिपेंडेंट है. स्टोरेज जब मतलब गलत हो जाएगी तो इसका इफेक्ट होगा. आज हम किसी भी दवा को अगर 1 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं तो उसके कंटेंट्स खत्म हो जाते हैं. तो ये ऐसी ही कोई नेग्लिजेंस हुई है.
2: एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालकर जांच रिपोर्ट आने दीजिए बताकर चेहरा बचाने का काम हो रहा है, लेकिन इस सच को तो कोई नहीं झुठला सकता कि नकली बेकार जो किसी के काम के लायक इंजेक्शन नहीं था वो गर्भवती महिलाओं को लगा जिनकी मौत बाद में हुई है. अब जरूरी है कि इन्हीं चेहरों के साथ जांच आगे की जाए. कोटा से चेतन गुर्जर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक.
0: इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए. आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक.

जंग से जूझती दुनिया के हालात पर क्वेड में मंथन, सुपर शक्तियों के सामने भारत की दो टूक, हर हाल में आतंक का अंत जरूरी, चारों देशों का साझा बयान, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता जरूरी। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के मिशन पर गृहमंत्री, राजस्थान में भारत पाक सीमा का दौरा, बॉर्डर को मजबूत बनाने की रणनीति, घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। कर्नाटक के सीएम हो सकते हैं डीके शिवकुमार, सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने को राजी हुए सिद्धरमैया, दिल्ली में आलाकमान ने दोनों के साथ की थी बैठक। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सिलीगुड़ी साइबर थाने में केस, पिछले साल सनातन धर्म पर की थी अभद्र टिप्पणी। और ओएसएम पोर्टल हैक होने के दावे को सीबीएसई ने खारिज किया, कहा असली मूल्यांकन का पोर्ट का यूआरएल अलग है, छात्रों के अंक या अन्य डेटा पोर्टल पर नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, खासतौर से घुसपैठ को लेकर। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ पहुंची थी, वैसी ही भीड़ बांग्लादेश की सीमा से सटे बॉर्डर पर वापसी का इंतजार कर रही है। घुसपैठियों की इस चिंता को शुभेंदु ने यह कहकर और ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से भगाकर ही रहेंगे।

0: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के पास इन चेहरों को गौर से देखते जाइए। ये लोग वो घुसपैठिए हैं जो जल्द से जल्द अपने देश बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने राज्य में रहने वाले हर घुसपैठिए को ये कहकर खबरदार कर दिया, भागो जल्दी भागो।
1: लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा,
2: दामाद
1: है। जो करना है सरकार करेगा।